0: अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे।
2: सूर्य ग्रहण का कैसा पड़ सकता है आपके जीवन पर प्रभाव? सूर्य ग्रहण से बढ़ेंगी मुश्किलें या होगा लाभ? सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें उपाय कि विपदा टल जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: देशभर में जश्न आजादी की तैयारी, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 150 नाव के साथ तिरंगा यात्रा, दरभंगा और टिहरी गढ़वाल में भी रैली। सहारनपुर से यूपी को तिरंगे के रंग में रंगने की तैयारी, दिन रात तिरंगे बना रही महिलाएं, हर घर तिरंगा अभियान के लिए 200,000 तिरंगा बनाने का लक्ष्य। सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग, भारत चीन सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट, समारोह में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद मेगा सफाई अभियान, पहली बार ड्रोन से सफाई की निगरानी, सोलर डस्टबिन का भी ट्रायल। इस बार मेले में पहुंचे करीब 4,80,00,000 कांवड़िए। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे, चांदी के गहनों से किया हाथियों का श्रृंगार, गजराज का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो ऐसी कहानी गढ़ दी जाती जो असलियत से कोसों दूर हो। लोग बिना जांचे परखे इसे सच मान लेते हैं और इसे लगातार शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सच और झूठ की रेखा के बीच का फर्क मिटाते हैं। पुरानी घटना कभी कभी नहीं बताकर परोसी जाती, हम हर उस खबर की तहकीकात करते हैं और साथ ही साथ आप तक लेकर आते हैं सही सच्ची और सटीक खबर, ताकि आप किसी अफवाह का शिकार ना हो। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के करीब आते ही सांसद सानी घोष के स्वर बदल गए। यूजर्स एक वीडियो के जरिए सानी घोष पर लगातार तंज कस रहे हैं। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि वीडियो यूपी के गोंडा का है, जहां एक गांव में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं पर के घर पर हमला कर दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करेंगे फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
4: तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद सानी घोष का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और इसमें दो क्लिप्स हैं। इसके जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह से उनके स्वर बदल गए। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
5: बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर।
6: सांसद सायोनी घोष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इसमें दो क्लिप्स हैं। पहले क्लिप में वो बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं।
5: आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता।
6: वहीं दूसरी क्लिप में वो पाकिस्तान के लिए कहती हैं कि उनके झंडे में चांद है, लेकिन भारत का झंडा चांद पर है। वो ये भी कहती हैं कि वो 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं, और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूड़ी और हलवा बांटा करते हैं।
5: आजम, आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं, और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूड़ी और हलवा बांटा करते हैं।
6: सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि पहली क्लिप तब की है जब सायोनी घोष टीएमसी के साथ थी, और दूसरी क्लिप अभी की है जब वो टीएमसी से बागी होकर एनडीए के करीब आ चुकी हैं। इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह उनके बोल बदल गए। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पूरा सिस्टम ही रिबूट हो गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर सांसद सानी घोष की ये दो क्लिप्स तेजी से वायरल हो रही हैं। कुछ यूजर्स इसे वायरल करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि जब वो टीएमसी में थी तो बीजेपी पर हमला पर थी, बागी होती राष्ट्रवादी बनकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने लगी। इसके जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी के करीब आते ही किस तरह से उनके बोल बदल गए हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा, और इस दौरान हमने ये गौर किया कि वायरल हो रहे दोनों क्लिप्स एक ही भाषण के हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने दोनों क्लिप्स को ध्यान से देखा तो हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही महिला पर गया। ये महिला दोनों क्लिप्स में नजर आ रही है, इससे ये तो इशारा मिल गया कि ये दोनों ही क्लिप्स एक ही वीडियो के हो सकते हैं। इसके अलावा दोनों क्लिप्स में सानी घोष एक जैसी ही साड़ी पहने हुए भी नजर आ रही है, इससे भी इशारा मिलता है कि एक ही समय के दोनों क्लिप्स हो सकती हैं। संसद में दिए गए किसी भाषण से इसे उठाया गया है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि सांसद सायनी घोष का वायरल हो रहा वीडियो कब का है। दूसरा सवाल ये कि ये कहीं सांसद सायनी घोष के बयान को दो हिस्सों में बांटकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट को जानना।
6: दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें सायोनी घोष का ये पूरा भाषण संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो 29 जुलाई 2025 का है। घोष ने ये भाषण संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान दिया था। 16 मिनट के इस वीडियो में वो दोनों क्लिप मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग वक्त का बताकर शेयर किया जा रहा है। करीब 3 मिनट 32 सेकंड पर पहली क्लिप देखी जा सकती है, जब घोष सरकार को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएं तो आप हमें देश प्रेमी बोलेंगे और अगर सवाल पूछ लें तो देशद्रोही कहेंगे।
5: सर हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही।
6: इसके अलावा 7 मिनट पर वो कहती हैं कि क्या ये सही मौका और समय नहीं था कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए कि उनके झंडे में चांद है और हमारा झंडा चांद पर है। पाकिस्तान को बताया जाए कि वो 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटते हैं।
5: But wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं।
6: वायरल वीडियो की दूसरी क्लिप यहीं से ली गई है, लेकिन इसमें वो सरकार से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात करती हैं। दोनों वायरल क्लिप्स उनके एक ही भाषण की हैं, जो उन्होंने उस वक्त दिया था जब वो टीएमसी के साथ थी। हालांकि ये भी सच है कि टीएमसी से बागी होने के बाद उनके कुछ ऐसे बयान जरूर सामने आए हैं जो मौजूदा सरकार के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में भी हिस्सा लिया था। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा था कि विपक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।
7: और ये जो आंदोलन हुआ था, जो कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवा देश के बच्चों ने शुरू किया, वो अपनी रोटी सेकने खुद आ गए। ये सही बात नहीं है, ये उचित चीज नहीं है।
6: 7 अगस्त को सायोनी घोष ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इसकी तस्वीरें एक्स पर शेयर की थी। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहे दोनों क्लिप्स उनके एक ही भाषण की हैं, वो भी उस वक्त की जब वो टीएमसी में ही थी। इस भाषण में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए सरकार पर कई सवाल उठाए थे।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कुछ लोग घास फूस से बनी किसी अस्थायी दीवार को जबरन तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोंडा का ये वीडियो है, जहां पर एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं पर हमला किया। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
8: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सफेद कुर्ता पजामा और टोपी पहने एक व्यक्ति घास फूस से बना किसी अस्थायी दीवार को जबरन तोड़ते हुए नजर आ रहा है। वीडियो किसी ग्रामीण इलाके का लग रहा है। उस वीडियो के साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो बाउंड्री हटाने में उसका साथ दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश के गोंडा का मामला है, जहां एक गांव में कुछ मुसलमानों ने इकट्ठा होकर हिंदुओं के घर पर हमला कर दिया। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के अंतर्गत इटिया थोक गांव गिरधरपुर में संगठित होकर मुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों में होला हमला, गांव में फैला दहशत का माहौल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग घास फूस से बनी किसी अस्थायी दीवार पर जबरन उसे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोंडा के इटियाथोक गांव गिरधरपुर में एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदुओं के घर पर हमला किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, लिहाजा इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के दावे पर शक हुआ। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग घास फूस से बनी अस्थायी दीवार को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगर जबरन कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी इस हरकत का विरोध जरूर हुआ होगा। पूरे वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वीडियो के जरिए यह इशारा भी मिल रहा है कि ये आपसी विवाद का वीडियो हो सकता है, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सही है तो ये घटना कब की। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
8: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम तहकीकात में जुटी। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले गोंडा के इटिया थोक थाना प्रभारी कमलकांत त्रिपाठी से बात की और घटना की जानकारी मांगी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये वीडियो गोंडा के गजातपुर गांव का ही है और लगभग 2 महीने पुराना है, लेकिन उन्होंने इस घटना में किसी भी हिंदू मुस्लिम एंगल से साफ इनकार कर दिया और कहा कि सरकारी सड़क पर अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 मुस्लिम गुटों के बीच कहा सुनी हो गई थी। ये वीडियो उसी वक्त का है। वायरल वीडियो वाले एक एक्स पोस्ट के जवाब में गोंडा पुलिस ने 7 अगस्त को एक स्पष्टीकरण दिया था। इसमें पुलिस ने बताया था कि ये वीडियो 5 जून 2026 का है। गांव में एक सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर ये विवाद हुआ था। बबलू उर्फ अफरोज ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। वकील अहमद, इसरार अहमद, सलीम और तस्लीम ने जब अतिक्रमण हटाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ जो बाद में मारपीट में बदल गया। शिकायत पर पुलिस ने BNS की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने इसके बाद 16 जून 2026 को मौके पर पहुंचकर सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण है। इस तरह हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो गोंडा का ही है, लेकिन इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। ये एक गांव में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 मुस्लिम पक्षों में हुए विवाद का वीडियो है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
9: महाराष्ट्र के अमरावती के एक स्कूल में छात्रों ने अपने पसंदीदा शिक्षक का तबादला होने पर उन्हें जाने नहीं दिया। शिक्षक के जाने की खबर से कई छात्र भावुक होकर रोने लगे और उनसे गले मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ छात्रों ने तो स्कूल का गेट तक बंद कर दिया ताकि शिक्षक वहां से जा ना सकें। इस भावुक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसे देखकर लोग छात्रों और शिक्षक के बीच के इस खास रिश्ते की तारीफ भी कर रहे हैं। बच्चों ने जिस तरह अपने शिक्षक के प्रति प्यार और सम्मान जताया वो लोगों को छू गया। शिक्षक उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, फिर भी बच्चों ने दिया कि उनके लिए वो कितने खास हैं।
10: क्वेश्चन क्या है? वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है?
11: क्यों हो रही है वन्य जीवों की संख्या में गिरावट?
10: क्यों हो रही है? तुम यहाँ पे लिखे हो कि जानवर किडनैप हो रहे हैं।
9: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में मैडम बच्चों की टेस्ट कॉपी देख रही हैं।
12: इतने पेड़ पौधे कट रहे हैं और जानवर किडनैप हो रहे हैं,
9: जिसपे एक कॉपी को लेकर वो बहुत हंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल टेस्ट में सवाल पूछा गया था कि जंगलों से वन्य जीव कम क्यों होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। इस सवाल का जवाब एक बच्चे ने बहुत मजेदार दिया।
10: वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है?
11: क्यों हो रही है वन्य जीवों की संख्या में गिरावट?
10: क्यों हो रही है? तुम यहाँ पे लिखे हो कि जानवर किडनैप हो रहे हैं।
9: बच्चे ने कॉपी में प्रश्न का जवाब लिखा कि जंगलों से वन्य जीव इसलिए गायब हो रहे हैं क्योंकि वो किडनैप हो रहे हैं और फिर उनको जू में लाया जा रहा है। वायरल वीडियो को हजारों लोगों ने लाइक्स किया है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये तेजी से वायरल हो रहा है।
10: वन्य जीवों की संख्या में गिरावट होती जा रही है। हमने यही आंसर लिखवाया था,
13: मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।
10: तो तुम 7 दिन नहीं आए थे तो तुम यही लिखोगे कि जानवर किडनैप हो रहे हैं, इसीलिए वन्य जीव कम हो रहे हैं। किडनैप किए हो क्या तुम? किसको? बकरी को लेके?
14: परी के दर्शन कराती हूँ, परी के इंस्टाग्राम और बॉलीवुड वाली ही रियल लाइफ परी दिखाती हूँ।
9: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का दिल जीत ले रहा है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर यही कह रहे हैं कि आखिर बेटी क्यों अपने पिता की दुलारी होती है। इस दृश्य को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है वीडियो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म का है। वहां पर पिता अपनी बेटी की गोद में सिर रखकर सोया हुआ है। इस दौरान बेटी भी बिना कोई सवाल जवाब किए पापा के बालों को सहला रही है। प्यार, अपनापन और देखभाल जताने का ये खूबसूरत तरीका लोगों को पसंद आ रहा है।

देशभक्ति और उत्साह की एक प्यारी सी झलक लद्दाख के एक छोटे से गांव से सामने आई, जहां नन्हे बच्चे स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में पूरे जोश के साथ जुटे दिखे। बच्चों के मासूम चेहरे, सादगी भरी तैयारियां और देश के प्रति उनका उत्साह लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में लद्दाख के गांव का खूबसूरत माहौल नजर आ रहा है। पहाड़ों और सुंदर वादियों के बीच रहने वाले छोटे छोटे बच्चे स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके लिए 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि देश के लिए गर्व महसूस करने का खास दिन है। बच्चे अपनी क्षमता के हिसाब से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। कोई हाथ में तिरंगा लेकर चलता दिख रहा है, तो कोई उस दिन होने वाली परेड की तैयारी कर रहा है। बच्चों के चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी बता रही है कि स्वतंत्रता दिवस का इंतजार उन्हें भी उतना ही रहता है जितना देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले बच्चों को। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल है। दरअसल पिता को जब घर के पास बच्ची नहीं मिली तो वो घबरा गया, उसे ढूंढने लगा। खोजबीन के दौरान बच्ची सड़क के किनारे बिल्कुल शांत बैठी मिली और एक छोटे पपी के साथ ऐसे बातचीत कर रही थी जैसे कोई पुराना दोस्त हो। ये प्यारा और मासूम पल इंटरनेट पर काफी पसंद किया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये प्यारा पल लोगों का ध्यान खींच रहा है, जहां पढ़ाई में व्यस्त बच्चों के बीच एक कुत्ता बिना किसी शोर शराबे के पहुंचा और कुछ ही देर में वो पूरी स्टडी सेशन की जान बन गया। वायरल हो रहे वीडियो में बच्चे बाहर बैठकर पढ़ते हुए दिखते हैं, सभी अपने अपने पढ़ाई के काम में बिजी हैं और आसपास का माहौल भी काफी शांत नजर आ रहा है। इसी दौरान एक डॉगी वहां पहुंचता है। आमतौर पर कोई कुत्ता बच्चों के बीच पहुंचता है तो उसके साथ खेलने या उसे प्यार करने के लिए बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है, लेकिन इस कुत्ते ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने किसी को परेशान करने के बजाय चुपचाप अपने लिए एक आरामदायक जगह ढूंढ ली। कुत्ते को जैसे ही आराम करने के लिए सही जगह मिली, वो वहीं बैठ गया और कुछ ही देर में एक बच्चे की गोद में जाकर आराम से सो भी गया। आसपास बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहे और डॉगी अपनी ही दुनिया में सुकून से झपकी लेता रहा। उसकी सबसे प्यारी बात यही थी कि उसने किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की, ना कोई शरारत, ना भौंकना, ना ही बच्चों की किताबों के साथ छेड़छाड़। वो तो बस आराम से लेटकर अपनी नींद पूरी करता नजर आया।

इन दिनों सावन की कावड़ यात्रा पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ चल रही है। सड़कों पर चारों तरफ केसरिया रंग और बम बम भोले और बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग तारीफ किए बगैर रह नहीं पा रहे।

दरअसल दो शिव भक्तों ने अपनी साधारण सी बाइक को भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी का बिल्कुल जीवंत रूप दे दिया। जी हाँ, एक चलती फिरती नंदी बाइक। वीडियो में इस मोटरसाइकिल को पूरी तरह से मॉडिफाई किया गया।

0: बाइक को एक अद्भुत और असली जैसा लुक देने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। मोटरसाइकिल की पूरी बॉडी को ही सफेद रंग के मुलायम और रोएदार कवर से ढका गया, जो बिल्कुल नंदी की खाल जैसा एहसास कराता है। बाइक की हेडलाइट के ठीक ऊपर नंदी महाराज का एक बेहद खूबसूरत और अस्थायी चेहरा लगाया गया, जिसे देख पहली नजर में धोखा हो जाए कि ये कोई असली बैल है या बाइक। दो श्रद्धालु इस अनोखे वाहन पर बड़े गर्व के साथ सवार होकर कांवड़ यात्रा के जुलूस का हिस्सा बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बनारस का है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमेशा बड़ी मदद या महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती। कई बार तो एक छोटी सी कोशिश भी किसी के लिए बेहद खास बन जाती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देखिए, जिसमें एक लड़की ऑटो रिक्शा में सफर करती नजर आ रही है। रास्ते में उसकी नजर एक आइसक्रीम की दुकान पर पड़ती है। लड़की ऑटो ड्राइवर से कुछ देर रुकने की इजाजत मांगती है। वो उससे कहती है कि क्या वो करीब 5 मिनट के लिए ऑटो रोक सकता है, क्योंकि उसे आइसक्रीम खानी है। ड्राइवर भी बगैर किसी परेशानी के उसकी बात मान लेता है और मुस्कुराते हुए ऑटो रोक देता है। लड़की आइसक्रीम लेने के लिए दुकान की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटती है तो उसके हाथ में सिर्फ अपने लिए आइसक्रीम नहीं होती, वो ऑटो चालक के लिए भी एक आइसक्रीम लेकर आती है। इसके बाद वो बेहद सहज अंदाज में ड्राइवर को आइसक्रीम देते हुए कहती है, ये उसके लिए है और वो इसे जरूर खाए। लड़की की इस छोटी सी पहल को देखकर ड्राइवर के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। वो पहले थोड़ी झिझक के साथ आइसक्रीम लेने से इनकार करता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। इसके जवाब में लड़की उसे सहजता से धन्यवाद कहती है। दोनों के बीच कुछ सेकंड की बातचीत पूरे वीडियो को बेहद प्यारा बना देती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: 15 अगस्त यानी वो दिन जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा नजर आता है, लेकिन इस बार आजादी का जश्न सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि नदियों और झीलों की लहरों पर भी नजर आने लगा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर एक अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 150 बोट और इन बोट्स पर शान से लहराता तिरंगा। नर्मदा की लहरों के बीच जब ये नावें एक साथ आगे बढ़ी तो नजारा वाकई देखने लायक था, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को सलाम करने का अनोखा अंदाज है। और देश के दूसरे छोर पर तस्वीर जम्मू कश्मीर की देखिए। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत डल झील पर तिरंगे के रंग नजर आ रहे हैं। यहां शिकारा पर अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। डल झील की शांत लहरों के बीच जब शिकारे तिरंगा लेकर आगे बढ़े तो कश्मीर की खूबसूरती और देशभक्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। एक तरफ मध्य प्रदेश की नर्मदा और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की डल झील, दोनों जगहों पर खूबसूरत नजारा। वो तिरंगा कितनी शान से यहां लहरा रहा है। पानी की लहरें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन तिरंगे के नीचे पूरा देश एक है और ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है।

0: Almanya.
1: देशभक्ति, स्वदेशी और पर्यावरण संरक्षण, इन तीनों को एक धागे में पिरो रही है सहारनपुर की गौशाला, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के जश्न के साथ ही रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है। देशभक्ति के रंग में रंगा ये छोटा सा तिरंगा बाज दिखने में भले सामान्य लगे, लेकिन इसे तैयार करने का तरीका बहुत खास है। ये बाज प्लास्टिक या फिर किसी सिंथेटिक मटीरियल से नहीं, बल्कि गाय के गोबर से तैयार किया गया है। सहारनपुर की इस गौशाला में गौवंश संरक्षण के साथ ही गोबर के उपयोगी उत्पादों में बदलने को प्रयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पिछले साल करीब 3000 बैच बनाए गए थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 5000 पहुंच गई है, यानी कि हर साल इस स्वदेशी और पर्यावरण अनुकूल पहल का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि सबसे खास

0: तरह से बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी इस्तेमाल के बाद इन्हें गमले में डाला जा सकता है जहां से ये खाद भी बन जाएगी। तो खास राखियां भी रक्षाबंधन से पहले तैयार की जा रही हैं। सिक्किम के धेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग देखने को मिला। यहां भारत चीन सीमा के करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आजादी दिवस समारोह के तहत इस प्रतियोगिता में खेल के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सीमावर्ती इलाके में उत्साह का संदेश भी देखने को मिला। बर्फीली हवाओं और बेहद चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने जज्बे का प्रदर्शन किया। ये फुटबॉल टूर्नामेंट न सिर्फ युवाओं के खेल कौशल का एक मंच है बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में खेल और देशभक्ति की भावना को भी मजबूत करता है। इस भव्य आयोजन में खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका उत्साह भी देखने लायक था। इस खास कार्यक्रम का मकसद स्वतंत्रता दिवस के जश्न को सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंचाने के साथ साथ युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सूर्य ग्रहण का कैसा पड़ सकता है आपके जीवन पर प्रभाव? सूर्य ग्रहण से बढ़ेंगी मुश्किलें या होगा लाभ? सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें उपाय कि विपदा टल जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आज, लाल किले के आसपास सुबह 10 बजे तक बंद रहेगा सामान्य ट्रैफिक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आजादी की धुन समारोह में 100 युवा कलाकारों ने दी संगीत में प्रस्तुति, देशभक्ति के गीतों से बांधा समा। अयोध्या के राम मंदिर में आज से पुजारियों के ड्रेस कोड में होगा बदलाव। रामानंदाचार्य परंपरा के अनुसार पुजारी अब बिना सिले पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे। पश्चिमी यूरोप के कई इलाकों में दिखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा। पेरिस के आईफिल टावर से आई सूर्य ग्रहण की खूबसूरत तस्वीर। चीन के ल्हासा में धूमधाम से मनाया गया शोटेन फेस्टिवल। भगवान बुद्ध की विशाल पेंटिंग का अनावरण, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे पर्यटक। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
5: भगवान कृष्ण के एक प्रिय सखा बोले हैं कैसे, बोले ब्राह्मण हैं। अच्छा, सुदामा जी ही है। बोले ब्रह्म को जानने वाले हैं, वाह, पर उनके अंदर खूबी क्या है? बोले विरक्त हैं। विरक्त का मतलब जिसे अपने से भी प्रेम ना हो ठाकुर के अलावा, वो विरक्त है। जिसे खुद के रक्त से भी विरक्ति आए, वो विरक्त है। सुदामा जी ऐसे ही हैं, इंद्रियों पर निग्रह करने वाले हैं। सुदामा जी की जो पत्नी है ना, उसका नाम सुशीला है। क्या नाम है? यथा नाम तथा गुण। सुशीला का जैसा नाम है ना, वैसा गुण है महाराज। पूरी जिंदगी एक साड़ी में गुजार दी, कभी अपने पति से शिकायत नहीं की, ताना नहीं दिया, उल्टा सीधा ना बोली। चार चार बच्चे हैं, चार बच्चे कभी कभी भूखे सो जाते हैं, भोजन नहीं मिलता।

सुशीला झूठ बोल देती बच्चों से। सुदामा जी का नियम है, पांच घर ही मांगने जाएंगे, जो मिल गया सो ठीक, नहीं मिला सो ठीक। कई बार एक भी घर पे नहीं मिलता, तो सुशीला झूठ क्या बोलती बच्चों से, बेटा आज एकादशी है, कल खा लेना। बच्चे रोज रोज एकादशी सुनते सुनते एक दिन कह ही पड़े, माँ ये एकादशी रोज आ जाती है। बिचारी सुशीला क्या बोली, कोने में जाकर रोने लगती। बच्चे सूख गए, उठ नहीं पा रहे। और सुदामा जी एक ही काम दिन ना रात, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, केवल मंत्र का जप करते रहते। एक धोती है पहनने की, उसी को ओढ़ लेते ठंडियों में, उसी को दिन में लपेट लेते। कभी कभी भगवान की याद में वो धोती भी गीली हो जाती। भैया एक बात बोले, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब का तो केवल परमात्मा होता है, गरीब का कोई नहीं होता। सुदामा जी का साथ भी किसी ने नहीं दिया। भैया हम दूसरों का अनुभव नहीं, अपना ही अनुभव कह रहे हैं। जिस गांव में हम बैठे हैं, इसी गांव में हमने घर घर आटा मांगा, किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल दिए, किसी ने आलू दिए, किसी ने मिर्चा और नमक दे दिया, तब जाके हमारे घर पे रोटी बनती थी। भैया हमने वो दिन भी देखे जब अंधेरी रात पूरी गुजारते थे, दीपक जलाने को भी तेल नहीं हुआ करता था। भोजन की तो छोड़ो, पहनने को एक ही कुर्ता रहता था, दो दो ढाई ढाई साल तक वो फट जाता था, तो माँ हमारी तार से बांध देती थी ताकि फटा हुआ ना दिखे। एक ही साड़ी माँ के पास थी। वो दिन हमने देखे हैं, वो अभाव के दिन देखे, उन दिनों को हमने नजदीक से देखा जब हमारी वो हालत थी, कोई साथ खड़े होने को तैयार नहीं था, कोई साथ। भैया आज तो लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, पर कब, ये जो आप टीवी पर देख रहे हैं ना, ये हमारी जन्म स्थली है, यही वो मकान ऐसा था जहां बैठकर दिन गुजारे। इसी कमरे में माताजी पिताजी पांचों लोग रहते थे, एक कमरे में इसी में बैठ करके जीवन जिए। आज जरूर बड़ा पंडाल लगा, बड़ा नाम है, देश में विदेश में बुलाया जाता, पर भैया एक बात हम पूरे सनातनियों से कहना चाह रहे, तुम दुनिया पर भरोसा मत करना, भगवान पर भरोसा करना। दुनिया कभी साथ नहीं देती, परमात्मा के अलावा कोई साथ नहीं देता, और गरीब का तो सिर्फ भगवान होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आपके अंदर कभी मदद का भाव जगे ना, अमीरों को तो सब मदद कर देते हैं, पहुंच वालों को सब मदद कर देते हैं, कभी उनकी मदद करना जिनका कोई नहीं होता है। कोई देखे या ना देखे, भगवान जरूर देखता है, जरूर देखता है, जरूर देखता है। भैया भगवान गरीबी किसी को ना दे, सबसे बड़ा अपराध लगता है गरीबी। जब त्योहार आते हैं, दूसरों के घरों पर उत्सव मनाया जाता और खुद के घर में रोटी भी खाने को ना हो, तब लगता है इससे अच्छा तो भगवान जन्म ना देते तो अच्छा रहता। लेकिन मेरे पागलो, हम तुमसे एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं आज कथा के विश्राम पर, हो सके
तो किसी ऐसे की मदद जरूर करना जिसका कोई साथी ना हो। तुम्हें भगवान बलवान बनाए, उसकी मदद जरूर करना। सुदामा जी का जीवन बड़ा विचित्र है, पर एक बात बोले, सुदामा जैसा मित्र भगवान को मिलना कठिन है। आप सुनकर चौंक रहे होंगे, हाँ सुदामा जैसा मित्र नहीं हो सकता। आप लोगों ने कथा के बारे में पढ़ रखा, सुन रखा कि सुदामा जी ने भगवान के साथ छल किया, चना चोरी से खा लिए, इसलिए सुदामा जी को ये भोगना पड़ा। पर कथा दूसरी है। आपको पता है वो चना क्या थे? वो चने एक बूढ़ी मां के थे जो खेतों में जाकर दाने बीनती थी। वो चने बीन कर लाई, उसने पोटली बनाकर रख दी अपनी झोपड़ी में। एक चोर आया, पैसों के चक्कर में चने की पोटली चुरा कर ले गया। अब बूढ़ी मां ने जब देखा कि हमारे कोई चने चोरी कर ले गया, तो बूढ़ी मां ने दिल से श्राप दे दी कि जो भी वो चने खाएगा वो जीवन भर गरीब रहेगा, दरिद्र रहेगा। वही चोर पोटली लेकर जब भागा, तो जहां भगवान कृष्ण सुदामा पढ़ते थे सांदीपनी आश्रम, उसी के सामने वो गिर पड़ा। और जब पैर में चोट लगी, वो गिर पड़ा तो चने छूट गए। वो डर के मारे कोई पकड़ ना ले, तो चनों की पोटली को छोड़कर भाग गया। गुरु माता बाहर निकली भगवान कृष्ण की, उन्होंने चनों को बीन लिया और रख लिया। जिस दिन बरसात हुई, सुदामा जी और भगवान कृष्ण लकड़ियां काटने के लिए वन में जाने लगे, तो भगवान थोड़ा आगे चले गए, सुदामा जी थोड़ा पीछे। सुदामा को बुला के गुरु मां ने कहा, सुदामा आ, तू जंगल जा रहा, भूख लगेगी दोनों को, मेरे पास आज कुछ है नहीं खिलाने के लिए, ये पोटली ले जा और सुन, आधा आधा बांट के खा लेना, पूरा मत खाना। जो आज्ञा मां। पोटली चनों की ली और सुदामा जी चल पड़े, भगवान आगे आगे, सुदामा जी पीछे पीछे। सुदामा जी ने पोटली खोल कर देखे तो चने बोल पड़े, सुदामा हम तो श्रापित हैं, श्रापित, हमें श्राप दे रखा, जिस बूढ़ी मां ने हमको बीना था उन्होंने श्राप दे रखा कि जो भी हमको खाएगा वो जीवन भर दरिद्री रहेगा। तो सुदामा तुम्हारी गुरु मां ने कहा आधे आधे बांट के खा लेना, सुदामा आधी जिंदगी तुम्हें दरिद्रपन में जीना पड़ेगा, आधी जिंदगी श्याम सुंदर को दरिद्रपन में जीना पड़ेगा। सुदामा ने सोचा मित्र किस काम का, जो मित्र को आधी जिंदगी दरिद्रपन में देखे, भाड़ में गया, हम भगवान को ना खिलाएंगे, खुद ही पूरे खा जाएंगे। हम भले ही दरिद्र रहें, पर भगवान को दरिद्र ना होने देंगे। और कथा वही है, सुदामा जी ने वन में जाकर कटकटाते हुए चनों को खा लिया। भगवान बोले, सुदामा क्या हुआ? सुदामा जी बोले, दांत कटकटा रहे, लेकिन वो चने साधारण नहीं थे, श्रापित थे। पर क्यों खाए? ताकि हम दरिद्र जीवन भर भोग लें, पर हमारा श्याम सुंदर राजा बना रहे। ये है मित्रता। हमारा मित्र दरिद्र नहीं होना चाहिए। उसी का परिणाम है सुदामा जी के जीवन में ये हाल है। एक दिन एक महात्मा घर आए, सुदामा की पत्नी सुशीला से बोले, देवी तुम्हारे पति पता है किसके मित्र हैं? किसके मित्र हैं? अरे वो तो द्वारकाधीश के मित्र हैं, द्वारका के राजा के। अच्छा। सुदामा जब घर आए तो पत्नी ने पूछा सुशीला ने, नाथ क्या आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं? हाँ, पर तुझे किसने बताया? एक महात्मा बता गए थे। आधे से ज्यादा जिंदगी निकल गई दरिद्रपन में, भोजन नहीं है घर पर, अब बच्चे भी बड़े हो गए। एक काम करो, हमने सुना तुम्हारे मित्र ना ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं, उनसे कुछ मांग लाओ, गरीबी दूर हो जाए। सुदामा जी बोले, देवी जाने का तो हम बहुत बार सोचे, पर मन में आया ये फटी हालत में कैसे जाएं,
मित्र के घर, राजा के घर, गुरु के घर यदि जाएं तो खाली हाथ जाना उचित नहीं लगता, हाथ में कुछ ना कुछ तो हो। हम लोगों के पास तो खाने को ही नहीं है, उन्हें देने को क्या है। सुशीला बोली, चिंता मत करो, मैं अभी लाती हूं कुछ मांग कर। पड़ोस में गई, दो तीन घरों से कुछ मुट्ठी चावल ले आई, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और चावल बांट करके बांध कर दे दिया, ले हमारी तरफ से ये भेंट दे देना। अब तू जिद कर रही है तो जाते हैं। सुदामा जी का मन तो नहीं था, पर पत्नी की जिद के आगे नहीं चली। सुदामा जी भगवान से मिलने चल पड़े।

पूछ रहा हूं मात्र। भगवान ने जैसे ही सुदामा जी को देखा, सुदामा जी को देख करके भाव पूर्वक सुदामा जी को बैठाया, अपनी पटरानियों से कहा जाओ ये हमारे मित्र आए हैं, तुरंत उनके लिए जल लेकर आओ। सभी भागी भागी गई सुदामा जी के लिए जल लेकर के आई। सुदामा जी ने देखा अनेक कलश आ गए, भैया ये किस लिए है? स्नान के लिए, चरण धोने के लिए। लेकिन जब तक कलश रख पाते, भगवान ने चरण को थाली में रखा, हाथ से सुदामा के चरण को पकड़ा, ऐसो

0: सुदामा की दीन दशा देखकर दयावान करुणा निधि द्वारकाधीश भी पिघल गए, आंखों से अश्रुपात बहने लगा, पैर में कांटा और कंकड़ को देखा, रक्त को देखा तो हमारे द्वारकाधीश आहा करुणा में भर गए। सुदामा जी के चरणों को धोया, चरणों को धोकर सुदामा जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और 56 भोग बनवाया। आज बड़े दिन बाद आए हो, सब काम बंद कर दिया ठाकुर जी ने, हमारा मित्र आया है, मित्र आया है मित्र। आहा, अब भगवान 56 भोग स्वयं परोस रहे। सुदामा जी ने 56 भोग देखा, ठाकुर जी की तरफ देखा और मन ही मन भूख को गाली दे रहे, अरे भूख, जब भोजन नहीं था तब तू बड़ा सताती थी, आज भोजन आ गया तो तू लग नहीं रही, मन ही मन गाली देने लगे। सुदामा जी ने प्रसाद पाया, भगवान कपड़े नए पहनाकर अपने कक्ष में लाते हैं, अंतःपुर में अपने बिस्तर पर लिटाया, चरणों को दबाने लगे। सुदामा तुम तो बचपन से ही बड़े वैरागी टाइप के थे, वैराग भाव में रहते थे, शादी वादी हुई है कि ऐसे ही घूम रहे? सुदामा जी सिर हिला के बोले, हुई तो है। अच्छा, अब सुदामा जी को कोई बात करने का मौका मिला तो सुदामा जी ने पूछा, लाला तू तो बचपन से बड़ा चंचल रहा कन्हैया, तेरी शादी भाई कि नहीं भाई, ऐसे ही डोल रहा हो? सुदामा जी की बात सुन के ठाकुर जी बोले, हम मिलवाई देते हैं, आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी बोले, हाँ बुलाओ बुलाओ बुलाओ। भगवान ने सब रानियों को खबर कर दी, आ जाओ, बड़े बड़े वाले पंडित जी आए हैं, इनका आशीर्वाद विफल नहीं होता सफल होता। सब रानियां सज्ज करके घूंघट डाल के आ गईं। सबसे पहले रुक्मणी जी आईं, आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। फिर मित्र सत्यभामा आई, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। मित्र वृंदा आई, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। भगवान की तरफ देख के सुदामा जी बोले, तीन तीन? भगवान बोले, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, ये तो टेलर है टेलर। सुदामा जी ने सोचा, कितनी होगी? 7-8 होंगी, और क्या राजा है तो राजाओं को 7-8 को चलती है। हाँ हाँ बुला बुला, जो जो आवे, सत्या भद्रा लक्ष्मणा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा। 40-50 को तो आशीर्वाद दे ही पाए के थक गए। सुदामा जी बोले, जे बता भैया, तू जिंदगी भर शादी करता रहा क्या और काम धाम ना करे? तो भगवान बोले, भैया अब इसमें ना पड़ो, बहुत लंबी लाइन लग रही है, जैसे आज यहाँ पादुका पूजन की लग रही, जैसे ही लंबी लाइन सुदामा जी के आशीर्वाद की लग रही थी, बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जैसे आज हम लोग और हमारे धाम के लोग, प्रशासन के लोग ये सोच रहे कि लाइन कब खत्म होगी, ऐसे ही सुदामा जी चिंता में लंबी घूंघट डाल के लाइन लगी। सुदामा जी ने ऐसे झांक के देखा, बोले, कन्हैया ये जितनी घूंघट डाले हुए खड़ी हैं, ये सब तेरी हैं क्या? भगवान सिर हिला के बोले, हाँ अपनी है। सुदामा जी बोले, पूरे खानदान की लग रही है, जैसे पूरा नगर आ गया। भगवान बोले, नहीं नहीं निजी है, निजी पर्सनल अपनी। वाह भैया वाह, तेरी जय हो। चलो कितनी होगी, 200-500? कोई बात नहीं, आशीर्वाद देंगे, राजा है ऐसे तो होते ही। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा। 100-200 को आशीर्वाद दिया, अब सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती गायब हो गया। भवा भवा भवा भवा भवा भवा भवा भवा भवा चल रहा। 400-500 को दिया आशीर्वाद। सुदामा जी सांस भरते हुए बोले, भैया हमको तुम लगता है आज आशीर्वाद में ही निपट जाएंगे, घर वापस ना जा पाएंगे। भगवान बोले, वाह 1000 रानियों को आपने आशीर्वाद दे दिया, बाकी जो 15,000 बची उनका क्या? सुदामा जी बोले, 15,000 बची? भगवान बोले, तो क्या समझ रहे हो गई? सुदामा जी बोले, भैया ये लफड़ा तू ही कर सके, एक काम कर, एक उपाय है मोरे पास। भगवान बोले, क्या? बोले, भैया सबके बदले तू आशीर्वाद ले ले और तू बांट देना, वरना हमारी तेरवी हो जाएगी। अच्छा
1: ये बात है,
0: भगवान लेट गए दंडवत चरणों में, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, खूब जय हो, विजयी रहो, अजय रहो, आशीर्वाद मंगलम भवा, मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु, मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनास्तत्तु, मित्राणाम मित्राणाम मुदियस्तवाहा, आशीर्वाद आशीर्वाद। आहा, भगवान ने प्रणाम किया। अब भगवान ने धीरे से पूछा, सुदामा भाभी ने कुछ भेजा नहीं? अब सोचा इतनी स्त्री, इनकी रानियां खड़ी हैं, अर्धांगनी खड़ी हैं, इनके सामने हम चावल निकालेंगे, इनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो भगवान को वैभव को देखकर सुदामा जी ने पोटली को छिपा लिया, इशारा किया ना कुछ नहीं भेजा, बाद में भेजने को बोला। भगवान हंस के बोले, सुदामा तुमसे झूठ बोलना भी नहीं आता, हाथ हटाओ। और पोटली को पकड़ लिया। सुदामा जी बेचारे संकोच में पीछे छिप गए। भगवान ने पोटली खोली और

0: सूर्य ग्रहण का कैसा पड़ सकता है आपके जीवन पर प्रभाव? सूर्य ग्रहण से बढ़ेंगी मुश्किलें या होगा लाभ? सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें उपाय कि विपदा टल जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आज, लाल किले के आसपास सुबह 10 बजे तक बंद रहेगा सामान्य ट्रैफिक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आजादी की धुन समारोह में 100 युवा कलाकारों ने दी संगीत में प्रस्तुति, देशभक्ति के गीतों से बांधा समा। अयोध्या के राम मंदिर में आज से पुजारियों के ड्रेस कोड में होगा बदलाव, रामानंदाचार्य परंपरा के अनुसार पुजारी अब बिना सिले पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे। पश्चिमी यूरोप के कई इलाकों में दिखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा, पेरिस के आइफल टावर से आई सूर्य ग्रहण की खूबसूरत तस्वीर। चीन के ल्हासा में धूमधाम से मनाया गया शोटोन फेस्टिवल, भगवान बुद्ध की विशाल पेंटिंग का अनावरण, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे पर्यटक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: पेरिस में देखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा, सूरज का कुछ हिस्सा चांद के पीछे छिप गया, आइफल टावर के ऊपर आसमान कुछ देर के लिए अंधेरा दिखा। पेरिस के लोग छतों और पार्कों में जमा हुए, उन्होंने कहा चश्मों से सूर्य ग्रहण देखा। एक परिवार ने खास तरीके से मनाया अपने बेटे का जन्मदिन, आइफल टावर से ग्रहण देखना उनकी उम्मीद से भी ज्यादा शानदार रहा। सूर्य ग्रहण देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़, गर्मी के बावजूद लोगों ने इस खास खगोलीय घटना को कैमरे में कैद किया और जमकर आनंद लिया। पेरिस में अगला आंशिक सूर्य ग्रहण अगस्त 2027 में दिखेगा, लेकिन तब सूरज का कम हिस्सा छिपेगा। पश्चिमी यूरोप के कई इलाकों में 27 साल बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया, आइसलैंड और उत्तरी स्पेन में इसे देखने के लिए लाखों लोग जमा हुए। सूर्य ग्रहण देखने के लिए उत्तरी स्पेन और बैलरिक द्वीपों में करीब 60 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान, लोग खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में ग्रहण देखने के लिए जुटे। स्पेन में सूर्य ग्रहण के कुछ ही समय बाद सूरज डूब गया, इस वजह से वहां का नजारा और भी ज्यादा खास और देखने लायक बन गया। आइसलैंड में बुधवार को पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया, राजधानी रेकवाविक में लोगों ने अंधेरा छाते ही खुशी से तालियां बजाई। लंदन में देखा सूर्य ग्रहण। इंग्लैंड के ज्यादातर हिस्सों में चांद ने सूरज का 90% से ज्यादा हिस्सा ढक लिया। रायपुर में 100 युवा कलाकारों ने एक साथ लाइव बैंड पर देशभक्ति की धुनें बजाई। अलग अलग वाद्य यंत्रों से निकाली आवाजों से पूरे ऑडिटोरियम को देशभक्ति के रंग में रंग दिया।

0: आजादी की धुन में कलाकारों ने देशभक्ति के कई गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। गीतों के साथ दर्शक भी राष्ट्र प्रेम के जोश में नजर आए। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए 100 युवा कलाकारों ने मिलकर संगीत की प्रस्तुति दी। एक साथ बजते वाद्य यंत्रों ने कार्यक्रम को खास बना दिया। युवा कलाकारों की जोशीली परफॉर्मेंस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रही। लाइव बैंड की प्रस्तुति ने जीता दिल।
1: समय सदा एक है।
0: संगीत और सुरों के संगम ने रायपुर की शाम को यादगार बना दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में शिरकत की। मध्य प्रदेश के खंडवा से आई देशभक्ति की शानदार तस्वीरें। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। अनोखी रैली में तिरंगे से सजी 150 नावें हुई शामिल। नर्मदा की लहरों पर दिखा देशभक्ति का माहौल। नाव तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। हरियाणा के नूह से आई देशभक्ति की शानदार तस्वीरें। एक हाथ में पवित्र कुरान और दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर निकले मुस्लिम समुदाय के लोग। इस अनोखी तिरंगा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के करीब 100 धार्मिक नेता, मदरसों में पढ़ाने वाले करीब 200 बच्चे और करीब 150 महिलाएं हुई शामिल। नूह के यासिन मेव डिग्री कॉलेज से गांधी पार्क तक निकाली गई है अनोखी तिरंगा यात्रा। पसमांदा विकास फाउंडेशन की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निकली तिरंगा यात्रा में हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर हुए शामिल। यात्रा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए श्रीनगर में पुलिस और बीएसएफ ने बढ़ाई निगरानी। गाड़ियों की सख्त तलाशी करते दिखे जवान। दिल्ली में लाल किले के पास चांदनी चौक में क्रांतिकारियों का अनोखा मंदिर। देश के बलिदानियों के इस मंदिर में लगी है कई गुमनाम क्रांतिकारियों की तस्वीरें। क्रांतिकारी स्वर्ण लाल परूथी ने बनवाया था ये मंदिर। अलग अलग राज्यों के 100 क्रांतिकारियों की लगवाई तस्वीर। क्रांतिकारियों के योगदान का भी जिक्र। इस मंदिर में लगी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद करने वाले क्रांतिकारी की तस्वीर। उस क्रांतिकारी का भी जिक्र जिसने अपने 6 बेटों को बनाया था क्रांतिकारी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देशभक्ति के साथ पर्यावरण का दिया जा रहा है संदेश। स्वतंत्रता दिवस के लिए गोबर से बनाए जा रहे हैं तिरंगा चेस्ट बैच। मां शाकंभरी कान्हा गौशाला की ओर से स्वतंत्रता दिवस के लिए बनाए जा रहे हैं 5,000 तिरंगा चेस्ट बैच। सहारनपुर नगर निगम करता है गौशाला का संचालन। सहारनपुर में गोबर से बनाई जा रही है इको फ्रेंडली राखियां। इनोवेशन के लिए मां शाकंभरी कान्हा गौशाला के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक समेत कई सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के लिए सहारनपुर में तिरंगा बनाने में जुटा महिलाओं का समूह। मांग पूरी करने के लिए तिरंगा बनाने में जुटी है महिलाएं। सहारनपुर जिले को 2,00,000 तिरंगे बनाने का लक्ष्य। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं बना रही हैं तिरंगा। तिरंगा निर्माण से महिलाओं को मिल रहा है रोजगार। सिक्किम के थेगू में 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल प्रतियोगिता देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है आयोजन। भारतीय सेना की ब्लैक कैट डिवीजन और यूथ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी थेगू संयुक्त रूप से कर रही है आयोजन। थेगू स्कूल ग्राउंड में खेले जा रहे हैं मैच। प्रतियोगिता को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह। जनरल सगत सिंह मेमोरियल हाई ऑल्टीट्यूड फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 में कुल 34 टीमें ले रही हैं हिस्सा। जुलाई से शुरू हुई प्रतियोगिता में खेले जा रहे नॉकआउट मुकाबले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को खेला जाएगा खिताबी मैच। नशामुक्त सिक्किम है फुटबॉल प्रतियोगिता की थीम। खेल के जरिए युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देना मकसद। 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले भोपाल रेलवे स्टेशन पर देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन। रेलवे सुरक्षा बल के बैंड ने दी शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस। आरपीएफ बैंड ने अपनी परफॉर्मेंस से बांधा समा। देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना में डूबे लोग। कार्यक्रम में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी हुए शामिल। बिहार के मुजफ्फरपुर में निकाली गई तिरंगा रैली। तिरंगा रैली में पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता, डीएमएसएसपी और आम लोगों के साथ स्कूली छात्र छात्राएं भी हुए शामिल। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा। हटवाल गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से मुख्य बाजार तक निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। गुजरात के नर्मदा में महिला डॉक्टर ने बचाई शख्स की जान। महिला डॉक्टर ने समय रहते सीपीआर देकर बचाई शख्स की जान। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस में एक दिन बाकी। सुरक्षा के अभेद किले में बदला दिल्ली का लाल किला। स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 25,000 लोग होंगे शामिल। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए करीब 15,000 सुरक्षा कर्मी होंगे तैनात। 1,000 से ज्यादा कैमरे और FRS तकनीक से भी निगरानी। फुल ड्रेस रिहर्सल आज। गुजरात के मेहसाणा में स्कूली बच्चों ने नहीं मानी हार। मेहनत से रचा इतिहास। स्कूल में नहीं था मैदान तो खेतों में दौड़कर जीते 138 मेडल। स्कूल में जरूरी सुविधाएं न होने पर गांव के किसानों ने किया सहयोग। खेतों को समतल कर बनाया खेल का मैदान। खेलों में अच्छे प्रदर्शन का पढ़ाई में भी हुआ लाभ। बिरसोड़ा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने अपनी इच्छा शक्ति के जरिए किया कमाल। सिर्फ 3 साल में एथलेटिक्स में जीते 56 स्वर्ण, 40 रजत और 42 कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बदल रही है सरकारी स्कूलों की तस्वीर। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा का भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण। ट्रेनिंग से मजबूत हो रहे हैं बच्चे। कन्नौज जिले के 458 सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जा रही है जूडो और टाइकोंडो की ट्रेनिंग का ट्रेनिंग। बच्चों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीते 17 पदक। फिल्म बंटवारा के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची अभिनेत्री प्रीति जिंटा। प्रीति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में छात्रों से शेयर की फिल्म से जुड़ी बातें। फिल्म बंटवारा के जरिए करीब 8 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है प्रीति जिंटा। 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म बंटवारा 1947। प्रीति ने फिल्म की कहानी को बताया दिल के करीब। आमिर खान प्रोडक्शन के तले बनी फिल्म बंटवारा 1947 का राजकुमार संतोषी ने किया है निर्देशन। उत्तराखंड के मसूरी में दिखी करीब 500 साल पुरानी परंपरा। भट्टा गांव से विधि विधान के साथ निकाली गई नाग देवता की डोली। भागवत कथा का भी शुभारंभ। क्यारकुली स्थित नागदेव मंदिर के लिए रवाना। डोली में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शामिल हुए लोग। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। डोली में सर पर कलश लेकर शामिल हुई महिलाएं। क्यारकुली भट्टा क्षेत्र के रक्षक देवता माने जाते हैं नागदेव। हर साल नागपंचमी से पहले निकलती है डोली। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में चढ़ावे की गिनती का तीसरा दिन। सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में चढ़ावे की गणना, वीडियोग्राफी भी की जा रही है। मंदिर में मौजूद कुल 41 से ज्यादा दान पेटियों में से 30 पेटियां खोली गई। 32 लोगों की टीम कर रही है गिनती। गणना में अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि मिली।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: सूर्य ग्रहण का कैसा पड़ सकता है आपके जीवन पर प्रभाव? सूर्य ग्रहण से बढ़ेंगी मुश्किलें या होगा लाभ? सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें उपाय कि विपदा टल जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपको आज बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के बाद आप अपनी राशि के अनुसार क्या दान करें कि जो दान करने से सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से बच सकें। हम आज आपको बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण जो लग रहा है इसके समाप्त होने के बाद आपको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए ताकि आपको लाभ हो। सबसे पहले एक बार समझते हैं कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, सूर्य ग्रहण 12 और 13 अगस्त की मध्य रात्रि को लगा। ये ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में है। इसका प्रभाव देश दुनिया पर अगले 3 महीने तक बड़ी गहराई से पड़ेगा और अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर अगले 15 दिन से 1 महीने तक इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा अलग अलग राशियों के माध्यम से। कुछ राशियों को इससे लाभ होगा और कुछ राशियों को इससे समस्या होगी। ये ग्रहण 12 और 13 अगस्त की मध्यरात्रि में लग रहा है, तो इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के अगले दिन सूर्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब राशियों पर आ जाते हैं और ये समझते हैं कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और ग्रहण के बाद 13 अगस्त को इनको क्या दान करना चाहिए। मेष राशि वालों की अगर बात करें तो ग्रहण से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ग्रहण के बाद अगर आप गुड़ का दान करें तो परेशानियां कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, ग्रहण आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। ग्रहण के बाद 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा निगेटिव है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो 13 अगस्त को दिन के समय में गुड़ और गेहूं के आटे का दान करिएगा। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्क राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके करियर पर और आपके रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है। करियर और रिश्तों की समस्या हो सकती है। ग्रहण के बाद यानी 13 अगस्त को गुड़ और आटे का दान अगर आप करेंगे
तो ग्रहण का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब जानते हैं कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोग ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या दान करेंगे। सिंह राशि की अगर बात करें तो ग्रहण का प्रभाव आपकी सेहत पर खराब हो सकता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ग्रहण के बाद यानी 13 अगस्त को गेहूं या गेहूं के आटे का दान अगर आप करें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। कन्या राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अच्छा है, खास तौर से धन और करियर के मामले में आपको लाभ होगा। ग्रहण के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल शिव जी के मंदिर में अगर आप जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, ग्रहण आपके करियर के लिए और आपकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए अच्छा है। करियर की मुश्किलों को दूर करेगा और आपकी तमाम समस्याओं को समाप्त करेगा। जीवन में आगे बढ़ेंगे इस समय। ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, ग्रहण आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। अगले 1 महीने तक सतर्क रहिएगा। और ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को दिन में किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर देंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग ग्रहण के बाद क्या करेंगे। धनु राशि की बात करें तो ग्रहण आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, चोट चपेट लग सकती है, हड्डियों में समस्या हो सकती है। ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान करिएगा, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। मकर राशि, ग्रहण आपके करियर में समस्या पैदा कर सकता है, करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, नौकरी जा सकती है। इसलिए ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को गुड़ का और गेहूं के आटे का दान करिएगा, आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। कुंभ राशि, ग्रहण आपके लिए अनुकूल है और कुंभ राशि वालों को ग्रहण से लाभ होगा, स्वास्थ्य और करियर में इनके सुधार होगा। ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जल अर्पित करिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। मीन राशि, ग्रहण आपके महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रोक सकता है। ग्रहण के कारण महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, इसीलिए ग्रहण के बाद अगले दिन
13 अगस्त को दिन में किसी भी समय किसी भी मात्रा में गुड़ और गेहूं के आटे का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर धन की बचत करने में समस्या आ रही हो, धन की बचत ना हो पा रही हो, तो एक सोने या पीतल

0: पैसा मिले, हर बुधवार को किसी भी समय गाय को हरा चारा खिलाइए और प्रार्थना करिए कि डूबा हुआ धन आपको मिले। लगातार 1 से 3 महीने तक आप ये उपाय करेंगे, फंसे हुए रुके हुए पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आज, लाल किले के आसपास सुबह 10 बजे तक बंद रहेगा सामान्य ट्रैफिक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आजादी की धुन समारोह में 100 युवा कलाकारों ने दी संगीत में प्रस्तुति, देशभक्ति के गीतों से बांधा समा। अयोध्या के राम मंदिर में आज से पुजारियों के ड्रेस कोड में होगा बदलाव, रामानंदाचार्य परंपरा के अनुसार पुजारी अब बिना सिले पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे। पश्चिमी यूरोप के कई इलाकों में दिखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा, पेरिस के आइफल टावर से आई सूर्य ग्रहण की खूबसूरत तस्वीर। चीन के ल्हासा में धूमधाम से मनाया गया शोटेन फेस्टिवल, भगवान बुद्ध की विशाल पेंटिंग का अनावरण, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे पर्यटक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
5: नमस्कार। गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: नमस्कार।
5: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के शो का चर्चा का विषय क्या है। पंडित जी के साथ जो हम बातें करने वाले हैं वो बातें होंगी सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण चूंकि है तो सूर्य ग्रहण के बाद आपको क्या कुछ करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो आपके तमाम भ्रमों को दूर कर सकते हैं, अगर आपको डर लगता है कि सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में उथल पुथल हो सकती है, उससे बचने के लिए आपको क्या कुछ करना है, कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो सूर्य ग्रहण के बाद आपको निश्चित ही करने चाहिए, उसके बारे में विस्तार से पंडित जी आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।

0: समस्या आ रही हो, धन की बचत ना हो पा रही हो, तो एक सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखिए, इससे पैसा आएगा भी और बचेगा भी।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं 13 अगस्त 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
0: दिनांक 13 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्राम

0: चरण कर रहे हैं प्रातः 6:06 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। शुरुआत में हमने आपको बताया सूर्य ग्रहण की स्थिति के बारे में, आपको बताएंगे इसका प्रभाव क्या होता है वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पंडित जी आपको ये समझाएंगे कि सूर्य ग्रहण की स्थिति जो होती है वो पंडित जी होती क्या है, इसका प्रभाव क्या और कैसे पड़ता है।
0: जी, हम आज आपको बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण जो लग रहा है इसके समाप्त होने के बाद आपको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए ताकि आपको लाभ हो। सबसे पहले एक बार समझते हैं कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, सूर्य ग्रहण 12 और 13 अगस्त की मध्य रात्रि को लगा। ये ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में है। इसका प्रभाव देश दुनिया पर अगले 3 तक बड़ी गहराई से पड़ेगा और अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर अगले 15 से 1 तक इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा अलग अलग राशियों के माध्यम से। कुछ राशियों को इससे लाभ होगा और कुछ राशियों को इससे समस्या होगी। इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के अगले दिन सूर्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
1: चलिए, इस विषय के बारे में और भी बहुत सारे सवाल हैं जो पंडित जी से आगे जाके लेंगे, लेकिन आते हैं राशिफल पर और पहली 3 राशियों का हाल जान लेते हैं पंडित जी से ही। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की, जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है।
0: मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती दिखाई दे रही है, संतान की उन्नति होगी, वाहन सावधानी से चलाएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, चिकित्सा में लापरवाही ना करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, रिश्ते मधुर होंगे, अनाज का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए पंडित जी से अब ये जान लेते हैं कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के लोगों को इस ग्रहण के बाद क्या कुछ अचूक उपाय करने चाहिए। पंडित जी,
0: अब राशियों पर आ जाते हैं और ये समझते हैं कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और ग्रहण के बाद 13 अगस्त को इनको क्या दान करना चाहिए। मेष राशि वालों की अगर बात करें तो ग्रहण से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ग्रहण के बाद अगर आप गुड़ का दान करें तो परेशानियां कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, ग्रहण आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। ग्रहण के बाद 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा निगेटिव है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो 13 अगस्त को दिन के समय में गुड़ और गेहूं के आटे का दान करिएगा। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्क राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके करियर पर और आपके रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है, करियर और रिश्तों की समस्या हो सकती है। ग्रहण के बाद यानी 13 अगस्त को गुड़ और आटे का दान अगर आप करेंगे तो ग्रहण का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
1: चले आते हैं वापस राशिफल पर। अगली 3 राशियों का हाल भी पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसा रहने वाला है। अभी बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है।
0: कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, खान पान में सावधानी रखें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, संतान की चिंता हो सकती है। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, यानी दर्शकों के सवाल, आप सभी के सवाल और पंडित जी के जवाब। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, कोई दिक्कत है, परेशानी है आपके जीवन की, उसका निवारण आप चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल इस शो में भेजिए। ईमेल के जरिए अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ पंडित जी।
0: जी, आज का पहला प्रश्न पायल जी ने हमें लिखा है और पायल जी हमें गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून 1982, शाम के 7:55, जन्म स्थान है देवरिया। ये कह रही हैं कि मेरे स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें बनी रहती हैं और स्वास्थ्य की समस्याओं से मैं बहुत परेशान हूं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। पायल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ज्यादातर समस्याएं मानसिक हैं, शारीरिक समस्याएं उतनी ज्यादा नहीं हैं जितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है या आपको मानसिक तनाव है। तो अगर आप अपने मन को बेहतर कर लें, मानसिक स्थिति को सुधार लें, तो स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आपकी स्थिति वैसे कुल मिला जुला के फरवरी 2027 के बाद बेहतर दिखाई दे रही है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें और पूर्णिमा का उपवास रखें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
1: चलिए इसी के साथ वक्त चला है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का और जानते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल है अगला सवाल पंडित जी के पास।
0: जी, अगला प्रश्न सुजीत कुमार ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 सितंबर 1978, जन्म का समय 7:00, जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा? सुजीत कुमार जी, बिल्कुल आपको व्यापार में अभी जाना चाहिए, आपके व्यापार का उपयुक्त समय चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से अभी आप बिजनेस और नौकरी दोनों बराबर से चलाते रहिए। अगले साल 2027 के जून के बाद आप पूरी तरह से नौकरी छोड़कर बिजनेस में स्विच कर जाइएगा तो बेहतर रहेगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के तमाम जो लोग हैं उनको ग्रहण के बाद कौन कौन से अचूक उपाय करने चाहिए जो उनके लिए कारगर होंगे।
0: अब जानते हैं कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोग ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या दान करेंगे। सिंह राशि की अगर बात करें तो ग्रहण का प्रभाव आपकी सेहत पर खराब हो सकता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ग्रहण के बाद यानी 13 अगस्त को गेहूं या गेहूं के आटे का दान अगर आप करें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। कन्या राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अच्छा है, खास तौर से धन और करियर के मामले में आपको लाभ होगा। ग्रहण के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल शिव जी के मंदिर में अगर आप जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, ग्रहण आपके करियर के लिए और आपकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए अच्छा है।

तक नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 6:06 तक

0: आगे बढ़ेंगे समय। ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, ग्रहण आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, अगले एक महीने तक सतर्क रहिएगा। और ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को दिन में किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर देंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे।
1: चलिए इसी के साथ वापस आते हैं राशिफल पर और अगली तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। तुला, वृश्चिक और धनु वालों की बारी है।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, करियर की समस्या हल होगी, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए अब पंडित जी से जानते हैं, अब धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के तमाम जो लोग हैं उनको इस ग्रहण के बाद कौन कौन से अचूक उपाय करने चाहिए।
0: अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग ग्रहण के बाद क्या करेंगे। धनु राशि की बात करें तो ग्रहण आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, चोट चपेट लग सकती है, हड्डियों में समस्या हो सकती है। ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान करिएगा, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। मकर राशि, ग्रहण आपके करियर में समस्या पैदा कर सकता है, करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, नौकरी जा सकती है, इसलिए ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को गुड़ का और गेहूं के आटे का दान करिएगा, आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। कुंभ राशि, ग्रहण आपके लिए अनुकूल है और कुंभ राशि वालों को ग्रहण से लाभ होगा, स्वास्थ्य और करियर में इनके सुधार होगा। ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जल अर्पित करिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। मीन राशि, ग्रहण आपके महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रोक सकता है। ग्रहण के कारण महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, इसीलिए ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को दिन में किसी भी समय किसी भी मात्रा में गुड़ और गेहूं के आटे का दान करिएगा, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए इसके साथ पहुंच गए हैं राशियों के अंत की तरफ और अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की, इनके भाग्य में क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिए, ऑफिस में विवादों से बचें, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दीजिए। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें ताकि दिन बेहतर हो। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए वापस आते हैं दर्शकों के सवालों के ऊपर और अगले दर्शक का कौन सा सवाल आज के इस शो में हम शामिल करने जा रहे हैं, पंडित जी से ही जानकारी लेते हैं।
0: जी अगला प्रश्न सरजू प्रसाद जी ने हमें लिखा है और सरजू प्रसाद जी हमें मेल लिखते हैं पटना बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 30 मई 1980, जन्म का समय सुबह के 6 बजे, जन्म स्थान है सीतामढ़ी बिहार। सरजू प्रसाद जी कह रहे हैं कि परिवार में प्रॉपर्टी के डिवीजन को लेकर विवाद चल रहा है, क्या मेरा हिस्सा मुझे मिल सकेगा और आगे का भविष्य कैसा रहेगा। सरजू प्रसाद जी, आपके परिवार में जो प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहे हैं, ये विवाद अभी 2 महीने में हल हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर के समय में प्रॉपर्टी का बंटवारा निपट जाएगा, ये विवाद हल होगा और आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और मंगलवार को गुड़ का दान करें। अगर ये

0: से निपट जाएगा।
1: चलिए इसी के साथ बारी आ गई है दर्शकों के अंतिम सवाल को इस शो में शामिल करने की, और जानते हैं कौन से दर्शक ने अपना सवाल पंडित जी तक पहुंचाया है।
0: जी

0: अंतिम प्रश्न अंजलि शर्मा ने हमें लिखा है और अंजलि शर्मा हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 11 अक्टूबर 1982। जन्म का समय सुबह के 7 बजे। जन्म का स्थान है राजपुरा पटियाला पंजाब और मेल लिखती हैं गुड़गांव से। अंजलि कह रही हैं कि मेरी नौकरी में पॉलिटिक्स बहुत है, दिक्कतें बहुत हो रही हैं और मैं नौकरी बदलना चाहती हूं लेकिन मेरी नौकरी बदल नहीं पा रही है, तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अंजलि, आपको नौकरी बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां नौकरी करती हैं वहीं स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। अक्टूबर खत्म होने का इंतजार करिए, उसके बाद स्थितियां यहीं पर बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि अगर इस समय नौकरी बदलने का प्रयास किया जाए तो हो सकता है उसके परिणाम बहुत अच्छे ना हो। ऑफिस में आपको समस्या ना हो, दिक्कतें ना हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 13 अगस्त को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनका गुड डे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।

0: 13 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में किसी भी तरह का जोखिम ना लें, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। हालांकि अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रां राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष भर जप करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए पंडित जी से जानते हैं इस शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझाना उचित है? ज्यादातर लोग केक पर मोमबत्तियां लगाते हैं अपनी उम्र के बाद और फिर फूंक करके मोमबत्तियां बुझा देते हैं, क्या ये उचित है? देखिए, भारतीय परंपरा में दीपक को बुझाना अशुभ माना जाता है, और आप चाहें तो केक काटकर खुशियां मना सकते हैं, लेकिन इस शुभ अवसर पर मोमबत्ती ना बुझाएं। मोमबत्ती बुझाना एक अशुभ क्रिया है, वो नहीं करना चाहिए।
1: अब पंडित जी से जान लेते हैं 13 अगस्त 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 13 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामलों में आपको लाभ होगा।
1: तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि आपकी गुड लक राशि, आज की राशि कौन सी है?
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग भगवान शिव की पूजा कैसे करें कि उन्हें लाभ हो। आज की गुड लक राशि है कर्क। आपको शिवलिंग पर नियमित रूप से केवल जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आप भावनात्मक और मानसिक समस्याओं से बचे रहेंगे।
1: चलिए, इस शो से जुड़े हुए उपाय और जानकारियां तो आपने प्राप्त कर ली हैं, बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। तो पंडित जी से ही जानते हैं कि आज का महा उपाय पंडित जी क्या है।
0: जी,

0: आपको बताते हैं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या किसी को उधार दिया है, बहुत सारा पैसा आपका मार्केट में या लोगों के पास फंस गया है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और प्रार्थना करिए कि फंसा हुआ पैसा मिले। हर बुधवार को किसी भी समय गाय को हरा चारा खिलाइए और प्रार्थना करिए कि डूबा हुआ धन आपको मिले। लगातार 1 से 3 महीने तक आप ये उपाय करेंगे, फंसे हुए रुके हुए पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और अब बात राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पद के चयन के लिए इंटरव्यू किए जा रहे हैं। देशभर से सीईओ पद के लिए 5,300 आवेदन आए हैं और इंटरव्यू के लिए 18 उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया है। हालांकि उम्मीदवारों का इंटरव्यू उनके अनुभव, धार्मिक कार्यों, भगवान राम में आस्था और पारिवारिक बैकग्राउंड के आधार पर ही किया गया। अब इनमें से 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिनमें से ट्रस्ट अपनी बैठक में किसी एक नाम पर ही मोहर लगा। ट्रस्ट की यह बैठक 2 सितंबर को अयोध्या में होगी और सीईओ के नाम की घोषणा 3 सितंबर को की जाएगी।

0: भगवान राम में आस्था है। जनेऊ पहनते हैं या नहीं, भोजन शाकाहारी करते हैं और हिंदू रीति रिवाजों की जानकारी है या नहीं, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे अयोध्या में राम मंदिर का सीईओ बनने पहुंचे उम्मीदवारों का सामना हुआ। राम मंदिर के सीईओ का इंटरव्यू देकर वापस आते पूर्व आईएएस अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा का नाम भी चर्चा में है, जो अयोध्या के जिलाधिकारी रह चुके हैं। योगेश्वर राम मिश्रा के अलावा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे पूर्व आईपीएस राजेश पांडे भी इंटरव्यू देने पहुंचे थे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए कल यानी मंगलवार से इंटरव्यू शुरू हो गए। हर आवेदक से लगभग एक घंटे से अधिक समय तक सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सवालों के जरिए उनकी प्रभु राम लला के प्रति आस्था परखी जा रही है। देश भर से आए 5300 से ज्यादा आवेदकों में से 18 योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। पहले दिन 8 लोगों का इंटरव्यू लिया जा चुका है। इनमें 3 पूर्व आईएएस अफसर, 1 पूर्व आईपीएस अफसर और 4 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल थे।
1: राम मंदिर के नए सीईओ के पद के लिए साक्षात्कार चल रहा है, आज दूसरा दिन है। कई चेहरे, कई नाम, इन लोगों ने अभी तक अपना इंटरव्यू दे दिया है और जो संख्या है वो तकरीबन 18 से 24 लोग जो शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं उनका साक्षात्कार हो रहा है। जिन नामों की चर्चा है उसमें राजेश पांडे, उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। इसके अलावा योगेश्वर राम मिश्रा हैं जो कि डीएम रह चुके हैं मिर्जापुर के, उनको उनके पास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अनुभव है। अब परेश सक्सेना हैं, दिनेश चंद्र हैं, ऐसे कई नाम हैं जो कहीं ना कहीं मंदिरों के प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोग इंटरव्यूज देने आ रहे हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक इस पद के लिए ज़्यादातर जो पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं या फिर जो रिटायर्ड नौकरशाह हैं, ऐसे लोगों को तवज्जो मिल सकती है। अगर उनका काल, उनका कामकाज बेदाग रहा है, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता है।
0: उम्मीदवारों से इंटरव्यू से पहले लगभग 3 दर्जन सवालों वाला ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरवाया गया। इंटरव्यू में उम्मीदवारों से धार्मिक संस्थानों के संचालन के पुराने अनुभव और मंदिर प्रबंधन को लेकर उनके विजन से जुड़े सवाल भी पूछे गए। इंटरव्यू में कैंडिडेट से राम मंदिर और भगवान श्री राम के लिए आस्था की गहराई को भी परखा गया। उनके सीवी में दिए गए डिटेल्स के बारे में पूछा गया और उनकी पसंद नापसंद को लेकर भी सवाल पूछे गए। उम्मीदवारों से पूछा गया कि क्या वो शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी भोजन करते हैं। इसके अलावा शराब पीने और हिंदू धार्मिक परंपराओं के हिसाब से पोशाक पहनने में सहज होने से जुड़े सवाल भी पूछे गए। उम्मीदवारों से उनके परिवार और बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन को लेकर भी जानकारी मांगी गई।
1: कल भी इंटरव्यूज हुए हैं, तकरीबन 12 लोगों के आसपास, 1 दर्जन लोगों ने कल इंटरव्यू दिया है। आज भी लगभग 1 दर्जन भर के आसपास इंटरव्यूज होंगे। चर्चा थी कि सिर्फ 18 लोग शॉर्टलिस्टेड हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि लगभग 24 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जिनका कि इंटरव्यू होना है। आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का ये इंटरव्यू एक एक जो व्यक्ति हैं उन्हें देना पड़ रहा है और कई ऐसे सवाल इसमें पूछे गए हैं कि आप सनातन में कितना यकीन रखते हैं, किस तरीके का आपका परिवार है, संस्कार कैसे हैं, जो वेज नॉन वेज क्या अब आप खाते हैं या नहीं खाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे लेकर के एक गूगल ड्राइव का जो फॉर्म है वो फिलअप किया गया है। और ज़्यादातर ऐसे लोग जो या तो मंदिरों से जुड़े रहे हैं, जैसे ऐसे नौकरशाह, ऐसे अधिकारी जिनका कुछ ना कुछ अनुभव मंदिरों को लेकर रहा है, ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोई पुराना नौकरशाह, खास करके पीसीएस से निकल कर आया हुआ या फिर आर्मी बैकग्राउंड के लोग को वरीयता दी जा सकती है। 2 सितंबर को जब बैठक होगी राम मंदिर ट्रस्ट की, तो उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि जितने लोगों के इंटरव्यूज हुए हैं उसमें से कौन राम मंदिर के इस सीईओ पद के लिए चुना जाएगा, कौन इसके काबिल है।
0: नया सीईओ राम मंदिर ट्रस्ट का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होगा और उसके जिम्मे प्रशासनिक, वित्तीय, कानूनी, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं से जुड़े बड़े फैसले होंगे। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने सीईओ नियुक्त करने का फैसला किया है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए 3 सदस्यीय विशेष समिति बनाई गई है। इस समिति में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश हावड़े और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी शामिल हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ के लिए इंटरव्यू आज खत्म हो गए। अब इस इंटरव्यू के बाद समिति सबसे योग्य 3 नामों का पैनल तैयार कर ट्रस्ट को सौंपेगी। इस पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्टी विचार विमर्श करके सीईओ का चयन करेंगे। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: पन्ना, जिसे यूं ही हीरो की नगरी नहीं कहा जाता, यहां कब किसकी किस्मत चमक जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब सरकोहा गांव के 7 मजदूरों की किस्मत एक ऐसे हीरे ने चमका दी है जिसकी चमक ने उनके अधूरे सपने में नई उम्मीद भर दी है। खदान से 16.96 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा निकला है जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है, लेकिन इस हीरे की असली चमक उन सपनों में दिखाई दे रही है जो अब पूरे होने की उम्मीद जगा रहे हैं।
3: ये कोई मामूली चमक नहीं है, ये है 16.96 कैरेट का नायाब हीरा जिसने पन्ना के सरकोहा गांव के इन 7 मजदूरों की किस्मत बदलने की उम्मीद जगा दी। दरअसल इस गांव की हीरा खदान में मजदूर रोज की तरह मेहनत कर रहे थे। बारिश के दौरान खदान की चाल का निरीक्षण करने पहुंचे पटाधारक अखिलेश पाल की नजर मिट्टी के बीच चमकते हुए इस पत्थर पर पड़ी। जब जांच हुई तो पता चला कि ये जेम क्वालिटी डायमंड है। इसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल मजदूरों ने हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है।
4: अखिलेश पाल है, सनाफ श्री गणेश पाल, ये निवासी है नारंगी बाग पुरुषोत्तमपुर जिला पन्ना के, और इनको सरकोहा क्षेत्र में इनको हीरा मिला है और इनके द्वारा पूर्व में खदान लगाई गई थी जिसकी चाल को धो करके और वो करके इनके कुछ पार्टनर थे इनके साथ में मिलकर के हीरा मिला हुआ है। 16.96 कैरेट का बेस कीमती उज्जवल किस्म का हीरा है और जो इन्होंने हीरा कार्यालय में जमा कराया है।
3: इस हीरे की सबसे खास चमक उन 3 मजदूरों पर दिखाई दे रही है जिनकी आंखों में बरसों से एक सपना है। संतोष, सरमन और अरुण, जिनकी 30 से 38 साल की उम्र के इन मजदूरों की आर्थिक स्थिति ऐसी रही है कि शादी अब तक नहीं हो सकी। इन मजदूरों को अब उम्मीद है कि हीरे से मिलने वाली रकम उनकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है।
5: अपनी शादी कराएंगे, मम्मी की सेवा करेंगे, घर बनाएंगे।
6: अच्छा, शादी पहला काम रहेगा आपका?
5: हाँ, शादी पहला काम है।
6: कितने साल के?
5: उम्र ज्यादा हो गई।
6: कितने साल के हो गए
5: आप? 35 साल के हो गए हम।
7: अभी हीरा पकड़ेंगे और घर मकान बनाएंगे, शादी करेंगे और घर और भी कुछ करेंगे।
3: जिस मिट्टी में रोज पसीना बहाया उसी मिट्टी ने आज जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद दे दी। किसी के लिए ये सिर्फ 16.96 कैरेट का हीरा है, लेकिन इन मजदूरों के लिए ये बेहतर जिंदगी, अपना घर और अधूरे सपनों को पूरा करने की उम्मीद है। पन्ना से दिलीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियो जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।

खेल देखिए, मजा ना आए तो कहिए। नन्हे नन्हे बच्चों का ये खेल इतना मजेदार है कि इसे देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल है। लाइन में खड़े बच्चों को एक रेड पाइप दिया गया है। अब बच्चों को इसे अपने पैरों के नीचे से पीछे खड़े साथी तक पहुंचाना है। देखने में आसान लग रहा है ये गेम, बच्चों के लिए काफी दिलचस्प है। बच्चों का उत्साह और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश वीडियो को और भी मजेदार बना रही है।

मंदिर में पूजा करने के लिए सजना तो जरूरी है। अब इस प्यारी सी बच्ची को ही देख लीजिए, सफेद साड़ी में सजी बच्ची, माथे पर श्रृंगार और चेहरे पर मासूम है, हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठी है। बच्ची का ये प्यारा अंदाज हर किसी का मन मोह रहा है। मासूम चेहरा और भक्ति में डूबी बच्ची को देख कर ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद भगवान का आशीर्वाद लेने आई हो। सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

0: क्लास में बच्चों की तैयारियां जोरों पर हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस अब दूर नहीं। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे प्लेन की ड्राइंग बनाकर उसमें अलग अलग रंग भरते नजर आ रहे हैं। कोई रंगों को बड़े ध्यान से भर रहा है तो कोई अपनी कल्पना से ड्राइंग को और खूबसूरत बना रहा है। बच्चों का ये डेडिकेशन देखकर साफ है कि आज़ादी के जश्न का उत्साह अभी से नजर आने लगा है। यही वजह है कि लोगों को बच्चों का ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है।
1: अरे मैं हूँ ना रैपर, इसको गाना गाना नहीं आता, रैपर बनेगी
2: है? अभी पता लग जाएगा।
1: हाँ।
2: पहले सुनाओ आप।
1: पहाड़ों में घर, हरे हरे पत्ते, यही का जी गाना गाना नहीं आ रहा, तू बनेगी रैपर?
2: आप सुनाओ फिर।
1: ओहो,
0: सास बहू की ये जोड़ी सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। वीडियो में बहू कुछ कहने लगती है तभी सास उसे चुप कराते हुए बड़े ही मजेदार अंदाज में कहती है, मैं हूँ रैपर। इसके बाद सास का रैप शुरू होता है। उनका अंदाज, कॉन्फिडेंस और रैप करने का तरीका इतना मजेदार है कि बहू भी हंसने लगती है। वीडियो देखने वाले भी सास के इस टैलेंट को देख कर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। तेरे देश को मैंने देखा।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आज लाल किले के आसपास सुबह 10 बजे तक बंद रहेगा, सामान्य ट्रैफिक।
9: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आजादी की धुन समारोह में 100 युवा कलाकारों ने दी संगीतमय प्रस्तुति, देशभक्ति के गीतों से बांधा समा।
8: स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में दिख रहे देशभक्ति के रंग, रामबन में निकाली गई 1400 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा, एकता और देश प्रेम का दिया संदेश।
9: अयोध्या के राम मंदिर में आज से पुजारियों के ड्रेस कोड में होगा बदलाव।

आचार्य परंपरा के अनुसार पुजारी अब बिना सिले पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे। पश्चिमी यूरोप के कई इलाकों में दिखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा, पेरिस के आइफल टावर से आई सूर्य ग्रहण की खूबसूरत तस्वीर। लहासा में धूमधाम से मनाया गया शोटोन फेस्टिवल, भगवान बुद्ध की विशाल पेंटिंग का अनावरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे पर्यटक।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: उम्मीदों भरे पहर की खुशभरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ दीपिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की पांच उन खबरों पर है जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: शुभ समाचार की शुरुआत दक्षिण के सावन और आजादी के उत्सव के साथ करेंगे। गली गली आजादी के तराने गूंज रहे हैं, हर घर तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है, तो उधर श्रीनगर की डल झील पर भी तिरंगे का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है।
2: आजादी के पर्व से पहले देश भर में तिरंगा रैलियों का जोश भी नजर आ रहा है। आम हो या फिर खास, हर कोई तिरंगे के साथ कदम से कदम मिला रहा है। शहर में अलग अलग लेकिन जज्बा एक ही है। देशभक्ति की बयार हर तरफ बहती हुई नजर आ रही है और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यानी देश में आजादी के जश्न का रंग पूरी तरह से छा चुका है, तो ये रंग भी आपको आगे दिखाएंगे।
1: तो साथ ही बात नागपंचमी की तैयारी की भी करेंगे। मसूरी में नाग देवता की पालकी निकाली गई है। मसूरी के भट्टा गांव में ये परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस पालकी यात्रा के बाद सोमवार को नागपंचमी के दिन नाग देवता के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा, तो इस पर भी हम आगे करेंगे बात।
2: तो वहीं उधर अयोध्या के राम मंदिर में आज से पुजारियों के ड्रेस कोड में बदलाव हो रहा है। आपको बता दें रामानंद आचार्य परंपरा के अनुसार पुजारी अब बिना सिले पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे, तो कैसा है ये ड्रेस कोड बताएंगे आगे।
1: इसके अलावा आपको अनाज एटीएम भी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में आधुनिक तकनीक से लैस पहले अनाज एटीएम की शुरुआत की गई। भिलाई में इस एटीएम से लोग बड़ी आसानी से अपना राशन ले सकते हैं, तो कैसे काम करता है ये अनाज एटीएम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौ गुड न्यूज का।
2: पेरिस में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा नजर आया। सूरज का कुछ हिस्से के पीछे चांद छिप गया। आईफिल टावर के ऊपर आसमान में कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। सूर्य ग्रहण देखने के लिए पेरिस के लोग छतों और पार्कों में जमा हुए। उन्हें खास चश्मों से सूर्य ग्रहण दिखा।
1: रायपुर में 100 युवा कलाकारों ने एक साथ लाइव बैंड पर देशभक्ति की धुनें बजाई। अलग अलग वाद्य यंत्रों से निकाली आवाजों ने पूरे ऑडिटोरियम को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। आजादी की धुन में कलाकारों ने देशभक्ति के कई गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। गीतों के साथ दर्शक भी राष्ट्रप्रेम के जोश में नजर आए।
2: देशभर से आजादी की सालगिरह के जश्न की तस्वीरें आने लगी हैं। ये तस्वीर भोपाल की है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ बैंड ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी, जिससे राष्ट्रीय गौरव देशभक्ति और उत्साह से भरा माहौल बन गया। जश्न के माहौल को और बढ़ाने के लिए स्टेशन पर वंदे मातरम और यशो लभस्व लोगो वाला एक खास सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया।
1: उत्तराखंड के मसूरी में करीब 500 साल पुरानी परंपरा दिखी। भट्टा गांव से विधि विधान के साथ नागदेवता की डोली निकाली गई। भागवत कथा का भी शुभारंभ किया गया। क्यारकुली स्थित नागदेव मंदिर के लिए रवाना डोली में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोग शामिल हुए। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए।
2: सिक्किम के थेगू में देशभक्ति का अनोखा रंग नजर आया। भारत और चाइना की सीमा के पास करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। ये प्रतियोगिता स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को खेला जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर के गुरेज से भारतीय सेना के जवान वन विभाग की मदद से मुश्किलों में फंसे एक हिमालयन भालू की मदद करते दिखे। तस्वीरें बांदीपुरा के गुरेज घाटी की हैं, जहां एलओसी के पास खापुरी गांव में एक ग्रेट हिमालयन भालू का मुंह एक टिन के डब्बे में बुरी तरह से फंस गया था। इससे उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे पा रहा था। भारतीय जवानों की नजर जब उस पर पड़ी तो उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर उसे ढूंढा और सूझबूझ और बहादुरी के साथ उसे टिन के डब्बे से आजाद किया।
2: छत्तीसगढ़ के भिलाई में राज्य के पहले अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की शुरुआत हो गई। इससे सरकारी राशन लेने वालों को अब लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि वो खुद कार्ड नंबर डालकर बायोमेट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल कर सकेंगे और किसी भी समय इस मशीन से चावल निकाल पाएंगे।
1: बिहार के कटिहार में ट्रैक्टर में बारात लेकर आए जूल्हे की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि बाराती बाइक पर है लेकिन ट्रैक्टर से काफिला देखने लायक है और सबसे शानदार बात यह है दूल्हे का अंदाज, खुद भी सजे हैं और ट्रैक्टर को भी खूब सजाया है। दिलचस्प तो ये है कि ट्रैक्टर की स्टीयरिंग भी खुद ही संभाल रखी है। शादी को यादगार बनाने का ये अच्छा तरीका है।
2: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी 18 सालों के बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाली है। दोनों प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में दिखाई देंगे। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जिसमें रहस्य, रोमांच और बेचैनी से भरी कहानी की झलक देखने को मिल रही है। हैवान 11 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: समाचार की शुभ शुरुआत सावन शिवम सुंदरम के साथ। देशभर में सावन के रंग बिखरने लगे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत सावन के खूबसूरत रंग में रंग चुका है। उत्तर भारत में सावन आधा बीत चुका है, लेकिन मध्य और दक्षिण भारत में सावन की आज से शुरुआत हो गई है। गुजरात में इस पवित्र और पावन शिव महीने की शुरुआत धूमधाम से डमरू यात्रा के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि उत्तर भारत पूर्णिमा चंद्र हिंदू कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत अमावस्या यानी अमांत चंद्र हिंदू पंचांग का पालन किया जाता है। उत्तर भारत में पूर्णिमान पंचांग फॉलो करने वालों की वजह से महीना पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है, जिस वजह से उत्तर भारत में सावन का महीना आमतौर पर 15 दिन पहले शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में अमावस्या अमांत पंचांग फॉलो किया जाता है, जिसमें महीने की शुरुआत अमावस्या के बाद होती है। लिहाजा दक्षिण भारत में सावन का महीना उत्तर भारत की तुलना में 15 दिन बाद से शुरू होता है। मध्य और दक्षिण भारत में सावन शुरू होने से मंदिरों में भक्तों में मेला शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग दर्शन पूजन के लिए यहां पहुंच रहे हैं।
1: तो जैसा कि आप जानते हैं, सावन शिव शक्ति का महापर्व है। इस महीने महादेव की भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सोमनाथ धाम में सुबह से ही महादेव का पूजन चल रहा है, देखिए तस्वीरें। सोमनाथ धाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है, आरती की जा रही है, सावन जारी है और यहां पर खासा जोश नजर आ रहा है, उत्साह नजर आ रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

और गुजरात के वडनगर में महादेव के सावन के महीने की शुरुआत आज से हो गई है। मौके पर शहर में भव्य डमरू यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भगवान शिव का जयघोष किया और यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए।

और अब बात आजादी के उत्सव की कर लेते हैं। गली गली आजादी के तराने गूंज रहे हैं, हर घर तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल है तो देशभर में आजादी के पर्व से पहले तिरंगा रैलियों का जोश दिखाई दे रहा है। आम हो या खास, हर कोई तिरंगे के साथ कदम से कदम मिला रहा है। शहर में अलग अलग जगह आपको नया जज्बा देखने को मिलेगा, तो देशभक्ति के बयान हर तरफ बह रही है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। श्रीनगर की डल झील पर तिरंगे का अद्भुत नजारा दिखा तो मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी तिरंगा रैलियों ने देशभक्ति का रंग और गहरा कर दिया। हर हाथ में तिरंगा, हर दिल में हिंदुस्तान, पूरा देश एक ही रंग में रंगा नजर आ रहा है। तो वहीं चंडीगढ़ के सुकमा लेक के किनारे सीआरपीएफ के बैंड ने संगीतमय कार्यक्रम पेश किया और इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के बैंड ने देशभक्ति की कई मधुर धुनें भी बजाई। सुनिए।

चंडीगढ़ में सीआरपीएफ बैंड के कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने देशभक्ति धुन पर जमकर डांस किया। देखिए किस तरह से महिलाएं हाथों में तिरंगा लेकर जमकर डांस कर रही हैं, और ये नजारा है चंडीगढ़ का, जहां सीआरपीएफ के बैंड के कार्यक्रम में शामिल जो महिलाएं हैं उन्होंने देशभक्ति की धुन पर जमकर डांस किया।

0: तो देश पर आजादी की जश्न का रंग पूरी तरह से छा चुका है। घर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह पर तिरंगा रैली निकाली जा रही है। कहीं बाइक तो कहीं बोट रैली की तस्वीरें नजर आ रही हैं। जहां कभी नक्सलवाद का बोलबाला था, वहां भी शान से तिरंगा लहराता दिखाई दे रहा है। तिरंगा रैली में लोग पूरे जोश के साथ शामिल होकर देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं।
1: पूरा देश आजादी के जश्न के रंग से सराबोर नजर आ रहा है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जगह जगह तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसकी छटा देखते ही बन रही है। जमीन से लेकर आसमान तक तिरंगा ही तिरंगा लहराता नजर आ रहा है। पहले ये दो तस्वीरें देखिए। ये दो तस्वीरें नदी से लेकर झील तक लहराते तिरंगा की है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर की है, जहां नर्मदा नदी की लहरों पर 150 नावों के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ब्रह्मपुरी घाट से नागर घाट तक आयोजित इस नौका रैली में देशभक्ति की शानदार छटा दिखी। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की मशहूर डल झील की है, जहाँ हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भव्य शिकारा तिरंगा रैली निकाली गई। इस दिव्य रैली में सैकड़ों शिकारों पर शान से तिरंगा लहराता नजर आया। जम्मू कश्मीर में जगह जगह तिरंगा रैली आयोजित हुई, जिसके जरिए देशभक्ति का संदेश दिया गया। बारामूला जिले में सोपोर में पुलिस की ओर से एक शानदार बाइक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवकों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। रैली में शामिल लोगों ने तिरंगा लहराया और देशभक्ति के नारे लगाए, जिससे पूरे शहर में उत्साह और माहौल नजर आया।
2: आज देखो कि आप यूथ यहाँ पर कितना खुश है। यहाँ पर
3: बहुत खुश है इससे। ये घर घर तिरंगा जो है, ये तो अपनी खुशी से आ रहे हैं। कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं हम, कि ये अपने देश का स्वतंत्रता दिन है, इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है।
1: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर शोपियांग और गांदरबल तक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। श्रीनगर में निकाली गई तिरंगा रैली की ड्रोन से ली गई तस्वीर को देखिए, जिसमें हाथों में तिरंगा लेकर चलती भीड़ दिख रही है। वहीं शोपियांग में जिला प्रशासन, पुलिस और बाकी दूसरे विभागों ने मिलकर इस रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल नजर आए। तो गांदरबल में निकाली गई तिरंगा रैली में शामिल स्टूडेंट समेत हर किसी में देशभक्ति का गजब का जज्बा दिखा। देश की राजधानी दिल्ली समेत जगह जगह तिरंगा रैली का आयोजन हुआ, जिसमें हर किसी के चेहरे पर देशभक्ति की चमक छाई दिखी। यहां निकाली गई बाइक रैली में अलग अलग सुरक्षा बलों के जवानों के साथ एनएसजी कमांडो भी शामिल नजर आए। छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों में भी अब शान से तिरंगा लहराता नजर आ रहा है, जो कभी नक्सल प्रभावित रहा। बस्तर संभाग में आने वाले नारायणपुर जिले में तिरंगा यात्रा रैली को लेकर लोगों में गजब का जोश दिखा। पूरा वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंजता रहा। हर हाथों में लहराते तिरंगों के बीच यहां से बाइक रैली को झंडी दिखाई गई और फिर शुरू हो गई तिरंगा यात्रा। नारायणपुर से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा उन इलाकों से होकर गुजरेगी जो नक्सल प्रभावित था। बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले से गुजरते हुए इस यात्रा का समापन 14 अगस्त को बीजापुर के करेगुटा पहाड़ी पर तिरंगा फहरा कर किया जाएगा।
4: बस्तर में लोगों ने स्वयं ही कहा है कि हमको लग रहा है कि हम अभी आजाद हुए, देश अभी आजाद हुआ है। और जब उनकी ऐसी भावना है, उस समय बस्तर में राष्ट्रीय पर्व के समय के ठीक पहले ये तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, इस भाव के साथ निकाला गया है।
1: हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में रैली आयोजित हो रही है, जिसमें हर उम्र और हर वर्ग के लोग पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड के गांवों तक में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। ये तस्वीरें टिहरी गढ़वाल के हटवाल गांव की है, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की ओर से निकाली गई रैली में स्टूडेंट्स पूरे जोश के साथ हर घर तिरंगा का नारा बुलंद करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो आजादी के रंग के साथ रक्षाबंधन के त्योहार का रंग घुल गया है। अजमेर के बाजारों में तिरंगे वाली राखियों की खासा डिमांड है। खाटू श्याम की तस्वीर वाली राखी भी काफी डिमांड में है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अब राखियां सज चुकी हैं शहर में, अब कुछ इस तरह से बाजार लग चुके हैं, अब रंग बिरंगी राखियों वाली डिमांड शुरू हो चुकी है, बाजार सजने लग गए हैं। राखी आ रही है 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाई जाएगी और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे वाली राखी अब मार्केट्स में ज्यादा डिमांड में नजर आ रही है। तो एक तरफ जहां स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जारी हैं, शहर शहर में रिहर्सल हो रहे हैं, तिरंगे के रंग में सजा हुआ पूरा देश दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर राखियों पर भी इसकी छाप नजर आ रही है। अब तिरंगे वाली राखियां मार्केट में आना शुरू हो चुकी हैं और लोगों के बीच काफी डिमांड में भी दिखाई दे रही हैं। शहर शहर में बाजार सज चुके हैं। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। विशेषकर लाल किले के पास हर तरह से निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा को लेकर जवानों की तैनाती के साथ ही आसमान से लेकर जमीन तक और जल से हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 15 अगस्त को आजादी के उत्सव की तैयारी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर एक तरफ लाल किला पर जोर शोर से तैयारी चल रही है तो वहीं सुरक्षा की जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाए रखने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहे हैं। पुलिस हर व्यक्ति और गाड़ियों की जाँच करने के बाद ही उन्हें आगे जाने दे रही है। हर जगह पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। लाल किला के पास हर स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
1: देखिए किस तरह से अच्छीवा स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये कंट्रोल रूम दिखा देती हूँ जहां से जो है 1000 से भी ज्यादा जो है कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस पे, और उसी की जो यहां से मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चौकसी हर एक शख्स पे, हर एक व्यक्ति पे जो है, हर एक रास्ते पे जो है वो यहां पर रखी जा रही है। अच्छा, ये तो मैं सिर्फ आपको एक कंट्रोल रूम की तस्वीर दिखा रही हूँ जबकि ऐसे 3 कंट्रोल जो है यहां पर बनाए गए हैं क्योंकि कैमरे जो है उनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा जो है कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं ताकि एक एक हर एक चीज पर जो है नजर रखी जा सके। लाल किले की तस्वीर जो है वो दिखेगी क्योंकि ये सबसे अहम पड़ाव है जहां से देश के प्रधानमंत्री जो है यहीं पर ही आपको जो है 15 अगस्त के दिन जो है वो नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो निगरानी है वो की जा रही है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग पूरी तरीके से हर वक्त 24 घंटे की जा रही है।
0: लाल किला के आसपास 12,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। AI आधारित फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, ड्रोन सर्विलांस के साथ ही कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
1: लाल किले की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, हालांकि लाल किला इस वक्त आपको कम नजर आएगा क्योंकि इस वक्त लाल किला जो है वो सुरक्षा किला बन चुका है। सबसे पहले तो ये बाहर की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको बैरिकेडिंग जो है नजर आ जाएगी। छोटी बैरिकेडिंग जो है यहाँ पर की गई है हर एक रास्ते में, और उसके साथ ही पूरी आपको सुरक्षा बल जो है वो नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये लोग हर तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा आपको सीसीटीवी कैमरे जो है वो नजर आएंगे। FRS सिस्टम जो है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो इन हर एक कैमरे में जो है वो आपको नजर आएगा ताकि हर तकनीक जो इस्तेमाल जो यहाँ पर की जा रही है उससे कोई भी संदिग्ध इंसान है उसको देखा जा सके, उसको समय रहते पकड़ा जा सके। डॉग स्क्वाड भी जो है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। हर तरीके से जो है यहाँ पर आपको कमांडो जो है वो नजर आएंगे। तो इस वक्त पूरी तरीके से लाल किला जो है वो सुरक्षा किला बन चुका है।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जमीन से लेकर आसमान और जल तक से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यमुना नदी में बोट पेट्रोलिंग के जरिए उन इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है जहां से किसी तरह की घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधि की आशंका हो सकती है।
2: 15 अगस्त की सुरक्षा की किस तरीके की तैयारी की गई है यमुना नदी की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि सिर्फ सड़क और हवाई मार्ग नहीं बल्कि लाल किले के पीछे जो यमुना नदी बह रही है उस पर किस तरीके की तैयारी है। आप देखिए, हमारे साथ आपको दिल्ली पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे। इस तरीके की गश्त हो रही है जो पूरे दिल्ली बॉर्डर पर, जो पूरी यमुना नदी है दिल्ली में, उसको इस तरीके से नजर रखा जा रहा है। लाल किले की तरफ से होते हुए हम आप देखिए ITO के पास पहुंच गए हैं और यहां पर आप देखिए इस तरीके की गश्त लगातार जारी है। सामने आप देखिए ITO का जो पुल है वो आपको नजर आएगा, वहीं पीछे कुछ ही दूरी पर लाल किला है। तो इस पूरे इलाके में राउंड द क्लॉक आपको सिक्योरिटी नजर आएगी।
0: सुरक्षा एजेंसियों का फोकस सिर्फ लाल किला तक सीमित नहीं है। दिल्ली के बॉर्डर, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बाजार, होटल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी चेकिंग बढ़ाई गई है। इसके अलावा ड्रोन, पैराग्लाइडर और अन्य हवाई गतिविधियों पर भी पाबंदी लगाई गई है। लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए करीब 25,000 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। इस बार वंदे मातरम थीम पर होने वाले समारोह के हिसाब से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए बुलेटिन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे बुलेट ट्रेन की।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल, लाल किले के आसपास सुबह 10 बजे तक बंद रहेगा सामान्य ट्रैफिक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आजादी की धुन समारोह में 100 युवा कलाकारों ने संगीतमय प्रस्तुति दी, देशभक्ति के गीतों से बांधा समा। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में दिख रहे हैं देशभक्ति के रंग, रामबन में निकाली गई 1400 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा, एकता और देश प्रेम का दिया संदेश। गुजरात में आज से श्रावण मास का शुभारंभ, सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, वडनगर में निकली भव्य डमरू यात्रा। अयोध्या के राम मंदिर में आज से पुजारियों के ड्रेस कोड में होगा बदलाव, रामानंदाचार्य परंपरा के अनुसार पुजारी अब बिना सिले पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे। लासा में धूमधाम से मनाया गया शोटोन फेस्टिवल, भगवान बुद्ध की विशाल पेंटिंग का अनावरण, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे पर्यटक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबर।
2: और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लाल किले, जहां स्वतंत्रता दिवस की रिहर्सल परेड जारी है। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, विशेषकर लाल किले के पास हर तरह से निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा को लेकर जवानों की तैनाती के साथ ही आसमान से लेकर जमीन और जल तक से हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

0: देखिए किस तरह से लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल लगातार की जा रही है। 15 अगस्त का मौका आने वाला है और उससे पहले दिल्ली में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के बीच रिहर्सल परेड चल रही है। आप देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर जो है वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तिरंगा उड़ रहा है और ये जवानों की परेड जो है वो लगातार जारी है लाल किले पर। किस तरह से फुल ड्रेस में, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, आप देखिए किस तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है और आज़ादी के उत्सव किसी के साथ तैयारियां चल रही हैं बेहद जोरों शोरों के साथ। आप देखिए तीनों सेनाओं के जवान जो हैं अपनी यूनिफॉर्म में ड्रेस रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जवानों का काफिला लगातार कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा है और आपको तीनों सेनाओं के जल थल और वायु की ड्रेस रिहर्सल परेड ये हम दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर, जिस तरह से तीनों सेनाओं के जवान कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं।
1: और चलिए अब बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, जब दिन में छा गया अंधेरा।

0: कल दुनिया के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को मिला। ये कितना अहम पल था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिमी यूरोप में 27 सालों में ये पहला सूर्य ग्रहण था और सूर्य ग्रहण की वजह से स्पेन की आरिजा शहर अंधेरे में डूब गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस खगोलीय घटना का लुत्फ उठाया। स्पेन के आर्कोस डी लास सालिनास मौजूद जावलंबे ऑब्जर्वेटरी में अंधेरा छा गया। इस समय सूर्य ग्रहण पूरे चरम पर था और इस नजारे को देखने वालों में एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया के कई एक्सपर्ट्स तो थे ही, साथ ही क्वीन बैंड के गिटारिस्ट ब्रायन भी मौजूद थे। आपको बता दें वहीं लंदन में आंशिक सूर्य ग्रहण के दीदार के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। रोम की बात करें तो यहाँ पर 25 किलोमीटर दूर फ्रेजेन शहर में लोग बीच पर आंशिक सूर्य ग्रहण देखने के लिए पहुंचे, तो वहीं पेरिस में आंशिक सूर्य ग्रहण के ने पूरे शहर की मशहूर साइकलाइन को स्काईलाइन को अनोखी रोशनी में बदल दिया। और खास बात यह रही कि चंद्रमा ने आईफिल टावर के ऊपर सूरज के बड़े हिस्से को ढक लिया था। वहीं ब्रसेल्स के हिस्टोरिक आर्क से पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। बेल्जियम में भी गहरा आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया जिस दौरान सूरज का 90% हिस्सा ढक गया। यहाँ पर 1999 के बाद से देश में दिखाई देने वाला ये सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण था। ग्रीनलैंड के लोगों ने बारिश की परवाह किए बिना सूर्य ग्रहण की झलक को पाने की कोशिश की, भले ही बादलों ने इस नजारे को ढक लिया था। कुछ ऐसा ही नजारा नूक में भी देखने को मिला। यहाँ पर भी लोगों ने घने बादलों के बीच इस कुदरती घटना को देखा।
1: और जमीन से तो आपने सूर्य ग्रहण का नजारा देख ही लिया, अब आसमान से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। स्पेन में सूर्य ग्रहण को लेकर गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिला। यहाँ की इबेरिया एयरलाइन की एक स्पेशल फ्लाइट में सवार होकर यात्रियों का एक दल मैड्रिड से पूर्ण सूर्य ग्रहण का दुर्लभ नजारा देखने के लिए रवाना हुआ। ये फ्लाइट स्पेन के आसमान में उत्तर दिशा में उड़ी। ये वही समय था जब चंद्रमा ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया था। हम आपको बता दें कि शेलियोस प्रोजेक्ट के रिसर्चर्स ने इस खास फ्लाइट का इस्तेमाल ग्रहण के दौरान सूरज की बनावट यानी मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए किया। वैज्ञानिकों ने यह भी स्टडी की इस घटना को देखने का यात्रियों और जमीन पर मौजूद लोगों के व्यवहार और भावनाओं पर क्या असर पड़ा। सूर्य ग्रहण के बाद विमान मैड्रिड लौट आया और कुदरत के सबसे दुर्लभ नजारों में से एक करीब से देखने का अनुभव इन रिसर्चर्स के चेहरे पर साफ दिखाई दिया। तो अब आपको बता दें कि दुनिया के किस किस देश में इस दुर्लभ नजारे को देखा गया।
0: आपको बता दें ग्रीनलैंड के पूर्वी हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा दिखाई दिया। यहाँ पर चंद्रमा ने कुछ समय के लिए सूर्य देव को पूरी तरह से ढक दिया जिससे दिन में ही रात जैसा आभास हुआ। तो वहीं पश्चिमी आइसलैंड में भी शाम के समय सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ दिखाई दिया। तो वहीं बात करें उत्तरी रशिया की तो यहाँ पर भी पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। इस इलाके में दोपहर के वक्त ही सूर्य पर चांद की छाया को देखा गया। उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर से भी सूर्य ग्रहण का नजारा दिखा। तो वहीं स्पेन पोर्टुगल फ्रांस जर्मनी इटली यूरोप के कई देशों में आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आया। देश भर में बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। काम की इस रफ्तार से जुड़ा एक वीडियो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। अगले साल 15 अगस्त तक बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है।
2: इस वीडियो ने पटरियों पर रफ्तार की उम्मीदों को पंख लगा दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश की पहली बुलेट ट्रेन की तैयारियों का एक वीडियो शेयर किया। बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत अगले साल 15 अगस्त को करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद रूट पर दौड़ेगी। इस रूट पर काम भी बुलेट की रफ्तार से चल रहा है और ये वीडियो इसी की तस्दीक कर रहा है। वीडियो में गुजरात के नवसारी में बुलेट ट्रेन रूट पर चल रहे काम को दिखाया गया है। वीडियो में इंजीनियर और कर्मचारी आधुनिक मशीनों के जरिए ट्रैक पर बिजली के सिस्टम लगाते हुए दिख रहे हैं। रेल मंत्री ने जानकारी दी है कि ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर जिस काम की झलक रेल मंत्री ने दिखाई है उसमें नवसारी में 1125 किलोमीटर ट्रैक पर काम हो रहा है। इस ट्रैक पर 22,000 ओवरहेड इक्विपमेंट मास्टर लगाए गए हैं। ओवरहेड वायर असेंबली के लिए 25,700 कैंटिलीवर फीट लगाए जा रहे हैं। ये असेंबली ही रफ्तार के लिए बुलेट ट्रेन को बिजली सप्लाई करती है। सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत अगले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हो जाएगी। इस रूट पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इस ट्रेन का सबसे ज्यादा फायदा मुंबई अहमदाबाद रूट के मुसाफिरों को होगा। इन दो शहरों के बीच सफर में फिलहाल 6 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने से ये दूरी महज 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो गुड न्यूज ये है कि अब बुलेट ट्रेन का सपना आकार लेने लगा है। उम्मीद है अगले साल इन्हीं दिनों में बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ने लगेगी। इसी लक्ष्य के साथ निर्माण कार्य भी जारी है। इस ट्रेन के लिए मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। गुड न्यूज ये है कि निर्माण कार्य बुलेट की रफ्तार से जारी है।
0: तो वहीं आपको बता दें, इस कॉरिडोर की लंबाई 508 किलोमीटर है और इस रूट पर ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ये देश की पहली बुलेट ट्रेन का निर्माण बेंगलुरु की BEML कंपनी में किया जा रहा है।
1: तो बुलेट ट्रेन परियोजना अगले साल अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद भी है। तो छत्तीसगढ़ में आधुनिक तकनीक से लैस पहले अनाज ATM की शुरुआत की गई थी। तो भिलाई में इस ATM से लोग बड़ी आसानी से अपना राशन ले सकते हैं।
0: आपको बता दें, इस ATM से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।

0: डिजिटल स्क्रीन पर राशन कार्ड नंबर टाइप किया और फिर फिंगरप्रिंट लगाते ही एटीएम से हो गई अनाज की डिलीवरी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी, सुलभ और आधुनिक बनाने में ये मिशन मील का पत्थर साबित हो रही है। भिलाई में लगा छत्तीसगढ़ का ये पहला अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम लोगों के लिए सहूलियत की सौगात बन गया है। दुर्ग जिले के वैशाली नगर भिलाई में अब पारंपरिक राशन की दुकान की बजाय आधुनिक मशीन ही लोगों को राशन वितरण कर रही है। इस मशीन का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करता है। राशन लेने वालों को पहले अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर टाइप करना होता है। इसके बाद फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है। फिंगरप्रिंट अप्रूव होते ही एटीएम से तय मात्रा में अनाज मशीन से बाहर आ जाता है।
1: अभी मैं चावल उठाने के लिए आया था तो एटीएम के थ्रू मैं पैसा निकालते हुए देखा, पानी निकलते हुए सुना था। आज मैं चावल खुद अपने हाथों से निकाला हूँ तो उसमें राशन कार्ड नंबर देने पड़ता है। राशन कार्ड नंबर डाला हूँ, उसके बाद फिंगरप्रिंट लगाया हूँ और चावल 35 किलो आया है।
0: इससे पहले राशन की दुकान से राशन लेना इतना आसान नहीं था। राशन की दुकान तय वक्त पर ही खुलती थी, लेकिन ये मशीन 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए तैयार रहेगी। इससे नौकरी पेशा लोगों के साथ प्रवासी श्रमिकों को किसी भी समय अनाज प्राप्त करने की सुविधा मिल गई है। इसके लिए अब पहले जैसे अनाज की दुकान पर कतार भी नहीं लगानी होगी। पारंपरिक अनाज की दुकानों पर कई बार कम अनाज मिलने की शिकायत भी आती थी, लेकिन अब इस ऑटोमेटिक मशीन की शुरुआत होने से लोगों को तय मात्रा में अनाज पूरी पारदर्शिता के साथ मिल रहा है।
2: हितग्राहियों को उनके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के पश्चात में पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न की प्राप्ति होती है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी प्रवासी श्रमिक रहे, जो अन्य जगह भी निवासरत हैं, वो वर्किंग आवर्स में नहीं आ सकते, वर्किंग आवर्स के पश्चात भी उनको खाद्यान्न प्राप्त होगा। इसमें
0: मशीन से निकलने वाले अनाज का वजन नापने के लिए इसमें एक खास सेंसर भी लगा है। इस सेंसर से अनाज निर्धारित मात्रा में ही एटीएम से बाहर निकलता है। एटीएम से निकले अनाज का वजन सुनिश्चित करने के लिए एक यहाँ वजन नापने वाली दूसरी मशीन भी रखी गई है। छत्तीसगढ़ का ये ग्रेन एटीएम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बेहद अहम कदम माना जा रहा है। पहले एटीएम की कामयाबी के बाद अब इस ग्रेन एटीएम सिस्टम को दूसरी जगहों पर भी शुरू करने की योजना है। आधुनिक तकनीक पर आधारित ये सिस्टम आज अनाज वितरण में पारदर्शिता और सहूलियत की मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात अयोध्या की कर लेते हैं, जहां राम मंदिर के पुजारियों की ड्रेस में फिर से बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत राम मंदिर पुजारी अब बिना सिले हुए वस्त्र पहनेंगे। पिछले दिनों ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से नवगठित धार्मिक न्यास समिति ने इस ड्रेस कोड के प्रस्ताव को अपनी सहमति दी थी। इससे पहले श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहले भी एक ड्रेस कोड लागू किया था, जिसके तहत पुजारियों को पगड़ी, पीली चौबंदी और सफेद धोती पहननी होती थी, लेकिन इन कपड़ों को वैष्णव परंपराओं के खिलाफ माना गया था, इसलिए ड्रेस कोड बदलने का फैसला किया गया।
4: विन्यास का ध्यान रखा जाए, उसके लिए सिल्क के वस्त्र, पीत वस्त्र में अपने ड्रेस में रहेंगे, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनेंगे और ऊपर उत्तरीय धारण करेंगे। शरद कालीन होगा तो उसी ढंग से कुछ ऊनी वस्त्र धारण करेंगे, जिससे वहाँ की पुजारियों की भी और वहाँ स्वच्छता पवित्रता भी बनी रहे।
3: नागपंचमी से पहले मसूरी में नाग देवता की पालकी निकाली गई। मसूरी के भट्टा गांव में ये परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। इस पालकी यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पालकी यात्रा के बाद नागपंचमी के दिन नाग देवता के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा।
0: पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ जब निकली नाग देवता की पालकी तो आस्था के रंग में रंगी संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिली। नाग पंचमी से पहले मसूरी के भट्टा गांव में नाग देवता की डोली क्यारकुली नाग देवता मंदिर के लिए रवाना हुई। बारिश के मौसम के बावजूद इस डोली यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नाग देवता के सम्मान में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। ढोल और दमाओं की थाप पर नाग देवता के जयकारों से वादियां गूंज उठी। मसूरी में नाग देवता की डोली यात्रा की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि नाग देवता क्यार कुरली भट्टा क्षेत्र के रक्षक और ग्राम देवता हैं। ये डोली यात्रा क्यार कुरली में नाग देवता के मंदिर तक जाती है जो करीब 500 साल पुराना है। नाग पंचमी से पहले होने वाली ये डोली यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि इस क्षेत्र की करीब सदियों पुरानी लोक आस्था और परंपरा का अभिन्न हिस्सा भी है। इस डोली यात्रा के साथ ही क्यारकुली नाग देवता के मंदिर में भागवत कथा का शुभारंभ भी हो गया। इस भागवत कथा का समापन 17 अगस्त को नाग पंचमी के शुभ अवसर पर होगा। इसके बाद नाग पंचमी के दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ मेले का आयोजन भी किया जाएगा। बदलते दौर में ये डोली यात्रा पहाड़ों के लोक आस्था और संस्कृति को जीवंत रखने का काम कर रही है। इस यात्रा में बड़े बुजुर्गों के साथ बड़ी संख्या में नई पीढ़ी का शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा की जड़ें यहाँ लोगों के दिलों की गहराइयों में बसी है। मसूरी से सागर शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
3: तो यूपी के प्रयागराज में गंगा के घाट पर सावन के इस महीने में शिव भक्तों का हर दिन तांता लग रहा है। वो यहां से जल भरकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए ले जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि ये शिव भक्त केसरिया के अलावा दो और रंगों के वस्त्र धारण कर जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए,
0: सावन की शिवरात्रि का त्योहार भले ही संपन्न हो चुका है लेकिन सावन मास अभी चल ही रहा है, इसीलिए भगवान भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए पवित्र नदियों से जल भरने का सिलसिला भी जारी है। यूपी के प्रयागराज में शिव भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और यहां से जल भरकर वो उस स्थान के लिए जा पहुंचे हैं जहां के शिवालय में वो जल अर्पित करेंगे। प्रयागराज में दारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट पर हर दिन बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल भरने पहुंच रहे हैं। इस दौरान शिव भक्त के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। लगातार पहुंच रहे शिव भक्तों से दशाश्वमेध घाट, डमरू वरदान और भगवान शिव और मां पार्वती के जयकारों की गूंज से गुलजार हो रहा है। यहां पूजा अर्चना के साथ ही शिव भक्त उठक बैठक लगाते नजर आते हैं। विशेष बात यह है कि यहां कांवड़िए तीन रंग के कपड़ों में जल भरने पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा केसरिया वस्त्रों में वो दिखते हैं लेकिन उनके साथ काले और सफेद कपड़ा पहने शिव भक्त भी नजर आते हैं।
5: काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे और बाबा का हमने संपूर्ण वस्त्र धारण किया और हमें भोले बाबा का काशी विश्वनाथ में दर्शन करना है क्योंकि ये भोले बाबा का प्रिय कब वस्त्र है, इसलिए हमने काला वस्त्र पहना है।
6: भोले बाबा का कपड़ा है इसलिए हमने भी पहना है।
0: काले कपड़े धारण करने वाले भक्त जहां इस रंग को भगवान शिव का रंग बताते हैं वहीं सफेद वस्त्र पहनने वाले भक्त इस रंग को शांति का प्रतीक बता रहे हैं।
7: व्हाइट ड्रेस जो है कि ये शांति का प्रतीक है। हम लोग यहाँ भगवान शिव जी की आराधना में आए हैं पूजा जल अर्पित करने के लिए। हम लोग अभी विद्यार्थी हैं, हम लोग की मनोकामना थी कि हम लोग यहाँ पर आए दर्शन करें, भगवान बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाएं, इसी मनोकामना से हम लोग निकले थे।
8: खाएगा स्कूल में के व्हाइट ड्रेस हमारा शांति का प्रतीक है। हम इसलिए हम लोगों का कामना यह है कि परिवार में शांति रहे और आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़े।
0: इन शिव भक्तों का ड्रेस कोड भले ही अलग हो लेकिन तीनों ही रंगों के वस्त्र पहने भक्तों की भावना शिव भक्ति की ही है। सभी अपनी अपनी मनोकामना लेकर गंगा जल भरने प्रयागराज पहुंच रहे हैं ताकि वो अपने आराध्य के प्रिय महीने में उन्हें जल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। टीम इंडिया 15 अगस्त को श्रीलंका के खिलाफ गोल में पहला टेस्ट खेलेगी। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर टीम की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें खिलाड़ी पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारत श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज में दो टेस्ट मैच खेलेगा। पहला मुकाबला 15 अगस्त से गोल में जबकि दूसरा मैच कोलंबो में 23 अगस्त से खेला जाएगा। फैंस के लिए गुड न्यूज ये भी है कि भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज में दर्शकों को फ्री एंट्री मिलेगी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। जाहिर है श्रीलंका की स्पिनिंग ट्रैक पर टीम इंडिया का ध्यान होगा। पिछले कुछ सालों में रेड बॉल क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लिहाजा टीम इंडिया तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 15 अगस्त से गोल में शुरू होने वाले पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने कोलंबो में बल्लेबाजों को अभ्यास कराया। और इंस्टा स्टोरी में बाप को उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने में भी पीछे नहीं है। देखिए अपेक्षा मालविया की फनी इंस्टा स्टोरी।
9: सुनो।
10: हाँ जी
9: भैया भाभी आ रहे हैं तुम्हारे।
10: मैं चाय पकौड़ी बना लेती
11: हूँ। एक सवाल का जवाब प्यार से दोगी?
10: कौन सा सवाल?
11: तुम्हारा नाम क्या है?
12: पतले होने लोकी की नहीं करते, जिम कर देने, डाइट कर देने, तू क्यों नहीं कुछ कर दी?
13: तेनू की लगता मैं जिम नहीं कर सकती, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, जे मेरे दिल दी प्रॉब्लम ना होंगी तो मैं सारा कुछ कर लेना सी।
12: की होया तेरे दिल नु?
13: यार मेरा नहीं दिल करता कुछ करन नु, की करूं?
3: और इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
17: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आजादी की धुन समारोह में 100 युवा कलाकारों ने संगीतमय प्रस्तुति दी। देशभक्ति के गीतों से बांधा समा। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में दिख रहे देशभक्ति के रंग। रामबन में निकाली गई 1400 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा एकता और देश प्रेम का दिया संदेश।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपको आज बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के बाद आप अपनी राशि के अनुसार क्या दान करें कि जो दान करने से सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से बच सकें। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अगस्त 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:41 तक, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 6:06 तक, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 6:06 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण जो लग रहा है इसके समाप्त होने के बाद आपको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए ताकि आपको लाभ हो। सबसे पहले एक बार समझते हैं कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए सूर्य ग्रहण 12 और 13 अगस्त की मध्य रात्रि को लगा। ये ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में है। इसका प्रभाव देश दुनिया पर अगले 3 तक बड़ी गहराई से पड़ेगा और अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर अगले 15 से 1 तक इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा अलग अलग राशियों के माध्यम से। कुछ राशियों को इससे लाभ होगा और कुछ राशियों को इससे समस्या होगी। ये ग्रहण 12 और 13 अगस्त की मध्य रात्रि में लग रहा है तो इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के अगले दिन सूर्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती दिखाई दे

रही है, संतान की उन्नति होगी, वाहन सावधानी से चलाएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, चिकित्सा में लापरवाही ना करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, रिश्ते मधुर होंगे, अनाज का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, खान पान में सावधानी रखें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब राशियों पर आ जाते हैं और ये समझते हैं कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और ग्रहण के बाद 13 अगस्त को इनको क्या दान करना चाहिए। मेष राशि वालों की अगर बात करें तो ग्रहण से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ग्रहण के बाद अगर आप गुड़ का दान करें तो परेशानियां कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, ग्रहण आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। ग्रहण के बाद 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा निगेटिव है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो 13 अगस्त को दिन के समय में गुड़ और गेहूं के आटे का दान करिएगा। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्क राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके करियर पर और आपके रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है, करियर और रिश्तों की समस्या हो सकती है। ग्रहण के बाद यानी 13 अगस्त को गुड़ और आटे का दान अगर आप करेंगे तो ग्रहण का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, संतान की चिंता हो सकती है, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोग ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या दान करेंगे। सिंह राशि की अगर बात करें तो ग्रहण का प्रभाव आपकी सेहत पर खराब हो सकता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ग्रहण के बाद यानी 13 अगस्त को गेहूं या गेहूं के आटे का दान अगर आप करें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। कन्या राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अच्छा है, खास तौर से धन और करियर के मामले में आपको लाभ होगा। ग्रहण के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल शिव जी के मंदिर में अगर आप जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, ग्रहण आपके करियर के लिए और आपकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए अच्छा है, करियर की मुश्किलों को दूर करेगा और आपकी तमाम समस्याओं को समाप्त करेगा, जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस समय ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, ग्रहण आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, अगले 1 महीने तक सतर्क रहिएगा। और ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को दिन में किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर देंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। धनु राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, करियर की समस्या हल होगी, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिए, ऑफिस में विवादों से बचें, महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
मीन राशि, परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें ताकि दिन बेहतर हो। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग ग्रहण के बाद क्या करेंगे। धनु राशि की बात करें तो ग्रहण आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। चोट चपेट लग सकती है, हड्डियों में समस्या हो सकती है। ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान करिएगा, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। मकर राशि, ग्रहण आपके करियर में समस्या पैदा कर सकता है, करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, नौकरी जा सकती है, इसलिए ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को गुड़ का और गेहूं के आटे का दान करिएगा, आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। कुंभ राशि, ग्रहण आपके लिए अनुकूल है और कुंभ राशि वालों को ग्रहण से लाभ होगा, स्वास्थ्य और करियर में इनके सुधार होगा। ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को शिव जी के मंदिर में जल अर्पित करिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। मीन राशि, ग्रहण आपके महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रोक सकता है। ग्रहण के कारण महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, इसीलिए ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को दिन में किसी भी समय किसी भी मात्रा में गुड़ और गेहूं के आटे का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर धन की बचत करने में समस्या आ रही हो, धन की बचत ना हो पा रही हो, तो एक सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखिए, इससे पैसा आएगा भी और बचेगा भी। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और प्रार्थना करिए कि फंसा हुआ पैसा मिले। हर बुधवार को किसी भी समय गाय को हरा चारा खिलाइए और प्रार्थना करिए कि डूबा हुआ धन आपको मिले। लगातार 1 से 3 महीने तक आप ये उपाय करेंगे, फंसे हुए रुके हुए पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: चीजों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

भगवान कृष्ण के एक प्रिय सखा बोले हैं कैसे, बोले ब्राह्मण हैं। अच्छा, सुदामा जी ही हैं। बोले ब्रह्म को जानने वाले हैं, वाह, पर उनके अंदर खूबी क्या है? बोले विरक्त हैं। विरक्त का मतलब जिसे अपने से भी प्रेम ना हो ठाकुर के अलावा, वो विरक्त है। जिसे खुद के रक्त से भी विरक्ति आए, वो विरक्त है। सुदामा जी ऐसे ही हैं, इंद्रियों पर निग्रह करने वाले हैं। सुदामा जी की जो पत्नी है ना, उसका नाम सुशीला है। क्या नाम है? यथा नाम तथा गुण। सुशीला का जैसा नाम है ना, वैसा गुण है महाराज। पूरी जिंदगी एक साड़ी में गुजार दी, कभी अपने पति से शिकायत नहीं की, ताना नहीं दिया, उल्टा सीधा ना बोली। चार चार बच्चे हैं, चार बच्चे कभी कभी भूखे सो जाते हैं, भोजन नहीं मिलता। सुशीला झूठ बोल देती बच्चों से। सुदामा जी का नियम है, पांच घर ही मांगने जाएंगे, जो मिल गया सो ठीक, नहीं मिला सो ठीक। कई बार एक भी घर पे नहीं मिलता, तो सुशीला झूठ क्या बोलती बच्चों से, बेटा आज एकादशी है, कल खा लेना। बच्चे रोज रोज एकादशी सुनते सुनते एक दिन कह ही पड़े, मां ये एकादशी रोज आ जाती है। बिचारी सुशीला क्या बोली, कोने में जाकर रोने लगती। बच्चे सूख गए, उठ नहीं पा रहे। और सुदामा जी एक ही काम दिन ना रात, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, केवल मंत्र का जप करते रहते। एक धोती है पहनने की, उसी को ओढ़ लेते ठंडियों में, उसी को दिन में लपेट लेते। कभी कभी भगवान की याद में वो धोती भी गीली हो जाती। भैया एक बात बोलें, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब का तो केवल परमात्मा होता है, गरीब का कोई नहीं होता। सुदामा जी का साथ भी किसी ने नहीं दिया। भैया हम दूसरों का अनुभव नहीं, अपना ही अनुभव कह रहे हैं। जिस गांव में हम बैठे हैं, इसी गांव में हमने घर घर आटा मांगा, किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल दिए, किसी ने आलू दिए, किसी ने मिर्चा और नमक दे दिया, तब जाके हमारे घर पे रोटी बनती थी। भैया हमने वो दिन भी देखे जब अंधेरी रात पूरी गुजारते थे, दीपक जलाने को भी तेल नहीं हुआ करता था। भोजन की तो छोड़ो, पहनने को एक ही कुर्ता रहता था, दो दो ढाई ढाई साल तक वो फट जाता था, तो मां हमारी तार से बांध देती थी ताकि फटा हुआ ना दिखे। एक ही साड़ी मां के पास थी। वो दिन हमने देखे हैं, वो अभाव के दिन देखे। उन दिनों को हमने नजदीक से देखा जब हमारी वो हालत थी, कोई साथ खड़े होने को तैयार नहीं था, कोई साथ। भैया आज तो लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, पर कब? ये जो आप टीवी पर देख रहे हैं ना, ये हमारी जन्म स्थली है, यही वो मकान ऐसा था जहां बैठकर दिन गुजारे। इसी कमरे में माताजी पिताजी पांचों लोग रहते थे एक कमरे में, इसी में बैठ करके जीवन जिए। आज जरूर बड़ा पंडाल लगा, बड़ा नाम है, देश में विदेश में बुलाया जाता, पर भैया
एक बात हम पूरे सनातनियों से कहना चाह रहे, तुम दुनिया पर भरोसा मत करना, भगवान पर भरोसा करना। दुनिया कभी साथ नहीं देती, परमात्मा के अलावा कोई साथ नहीं देता, और गरीब का तो सिर्फ भगवान होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आपके अंदर कभी मदद का भाव जगे ना। अमीरों को तो सब मदद कर देते हैं, पहुंच वालों को सब मदद कर देते हैं, कभी उनकी मदद करना जिनका कोई नहीं होता है। कोई देखे या ना देखे, भगवान जरूर देखता है। भैया, भगवान गरीबी किसी को ना दे। सबसे बड़ा अपराध लगता है गरीबी। जब त्योहार आते हैं, दूसरों के घरों पर उत्सव मनाया जाता और खुद के घर में रोटी भी खाने को ना हो, तब लगता है इससे अच्छा तो भगवान जन्म ना देते तो अच्छा रहता। लेकिन मेरे पागलों, हम तुमसे एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं आज कथा के विश्राम पर। हो सके तो किसी ऐसे की मदद जरूर करना जिसका कोई साथी ना हो। तुम्हें भगवान बलवान बनाए, उसकी मदद जरूर करना। सुदामा जी का जीवन बड़ा विचित्र है, पर एक बात बोले, सुदामा जैसा मित्र भगवान को मिलना कठिन है। आप सुनकर चौंक रहे होंगे, हाँ, सुदामा जैसा मित्र नहीं हो सकता। आप लोगों ने कथा के बारे में पढ़ रखा, सुन रखा कि सुदामा जी ने भगवान के साथ छल किया, चना चोरी से खा लिए, इसलिए सुदामा जी को यह भोगना पड़ा। पर कथा दूसरी है। आपको पता है वो चना क्या थे? वो चने एक बूढ़ी मां के थे जो खेतों में जाकर दाने बीनती थी। वो चने बीन कर लाई, उसने पोटली बनाकर रख दी अपनी झोपड़ी में। एक चोर आया, पैसों के चक्कर में चने की पोटली चुरा कर ले गया। अब बूढ़ी मां ने जब देखा कि हमारे कोई चने चोरी कर ले गया, तो बूढ़ी मां ने दिल से श्राप दे दी कि जो भी वो चने खाएगा वो जीवन भर गरीब रहेगा, दरिद्र रहेगा। वही चोर पोटली लेकर जब भागा, तो जहां भगवान कृष्ण सुदामा पढ़ते थे सांदीपनी आश्रम, उसी के सामने वो गिर पड़ा। और जब पैर में चोट लगी, वो गिर पड़ा तो चने छूट गए। वो डर के मारे कोई पकड़ ना ले, तो चनों की पोटली को छोड़कर भाग गया। गुरु माता बाहर निकली भगवान कृष्ण की, उन्होंने चनों को बीन लिया और रख लिया। जिस दिन बरसात हुई, सुदामा जी और भगवान कृष्ण लकड़ियां काटने के लिए वन में जाने लगे, तो भगवान थोड़ा आगे चले गए, सुदामा जी थोड़ा पीछे। सुदामा को बुला के गुरु मां ने कहा, सुदामा आ, तू जंगल जा रहा, भूख लगेगी दोनों को, मेरे पास आज कुछ है नहीं खिलाने के लिए, ये पोटली ले जा और सुन, आधा आधा बांट के खा लेना, पूरा मत खाना। जो आज्ञा मां। पोटली चनों की ली और सुदामा जी चल पड़े, भगवान आगे आगे, सुदामा जी पीछे पीछे। सुदामा जी ने पोटली खोल कर देखे तो चने बोल पड़े, सुदामा हम तो श्रापित हैं, श्रापित, हमें श्राप दे रखा, जिस बूढ़ी मां ने हमको बीना था उन्होंने श्राप दे रखा कि जो भी हमको खाएगा वो जीवन भर दरिद्री रहेगा। तो सुदामा, तुम्हारी गुरु मां ने कहा आधे आधे बांट के खा लेना। सुदामा, आधी जिंदगी तुम्हें दरिद्रपन में जीना पड़ेगा, आधी जिंदगी श्याम सुंदर को दरिद्रपन में जीना पड़ेगा। सुदामा ने सोचा, मित्र किस काम का, जो मित्र को आधी जिंदगी दरिद्रपन में देखे, भाड़ में गया, हम भगवान को ना खिलाएंगे, खुद ही पूरे खा जाएंगे। हम भले ही दरिद्र रहें, पर भगवान को दरिद्र ना होने देंगे। और कथा वही है, सुदामा जी ने वन में जाकर कटकटाते हुए चनों को खा लिया। भगवान बोले, सुदामा क्या हुआ? सुदामा जी बोले, दांत कटकटा रहे,
लेकिन वो चने साधारण नहीं थे, श्रापित थे। पर क्यों खाए? ताकि हम दरिद्र जीवन भर भोग लें, पर हमारा श्याम सुंदर राजा बना रहे। ये है मित्रता। हमारा मित्र दरिद्र नहीं होना चाहिए। उसी का परिणाम है सुदामा जी के जीवन में ये हाल है। एक दिन एक महात्मा घर आए, सुदामा की पत्नी सुशीला से बोले, देवी तुम्हारे पति पता है किसके मित्र हैं? किसके मित्र हैं? अरे वो तो द्वारकाधीश के मित्र हैं, द्वारका के राजा के। अच्छा। सुदामा जब घर आए तो पत्नी ने पूछा सुशीला ने, नाथ क्या आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं? हाँ, पर तुझे किसने बताया? एक महात्मा बता गए थे। आधे से ज्यादा जिंदगी निकल गई दरिद्रपन में, भोजन नहीं है घर पर, अब बच्चे भी बड़े हो गए। एक काम करो, हमने सुना तुम्हारे मित्र ना ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं, उनसे कुछ मांग लाओ, गरीबी दूर हो जाए। सुदामा जी बोले, देवी जाने का तो हम बहुत बार सोचे, पर मन में आया ये फटी हालत में कैसे जाएं? और मित्र के घर, राजा के घर, गुरु के घर यदि जाएं तो खाली हाथ जाना उचित नहीं लगता, हाथ में कुछ ना कुछ तो हो। हम लोगों के पास तो खाने को ही नहीं है, उन्हें देने को क्या है? सुशीला बोली, चिंता मत करो, मैं अभी लाती हूं कुछ मांग कर। पड़ोस में गई, दो तीन घरों से कुछ मुट्ठी चावल ले आई, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और चावल बांट करके बांध कर दे दिया, ले हमारी तरफ से ये भेंट दे देना। अब तू जिद कर रही है तो जाते हैं। सुदामा जी का मन तो नहीं था, पर पत्नी की जिद के आगे नहीं चली, सुदामा जी भगवान से मिलने चल पड़े।

क्षमातन। भगवान ने जैसे सुदामा जी को देखा, सुदामा जी को देख करके भाव पूर्वक सुदामा जी को बैठाया, अपनी पटरानियों से कहा जाओ ये हमारे मित्र आए हैं, तुरंत इनके लिए जल लेकर आओ। सभी भागी भागी गई सुदामा जी के लिए जल लेकर के आई। सुदामा जी ने देखा अनेक कलश आ गए, भैया ये किस लिए है? स्नान के लिए, चरण धोने के लिए। लेकिन जब तक कलश रख पाते, भगवान ने चरण को थाली में रखा, हाथ से सुदामा के चरण को पकड़ा, ऐसा

0: सुदामा की दीन दशा देखकर दयावान करुणा निधि द्वारकाधीश भी पिघल गए, आंखों से अश्रुपात बहने लगा, पैर में कांटा और कंकर को देखा, रक्त को देखा तो हमारे द्वारकाधीश आहा हा करुणा में भर गए। सुदामा जी के चरणों को धोया, चरणों को धोकर सुदामा जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और 56 भोग बनवाया। आज बड़े दिन बाद आए हो, सब काम बंद कर दिया ठाकुर जी ने, हमारा मित्र आया है, मित्र आया है, मित्र आहा। अब भगवान 56 भोग स्वयं परोस रहे। सुदामा जी ने 56 भोग देखा, ठाकुर जी की तरफ देखा और मन ही मन भूख को गाली दे रहे, अरी भूख, जब भोजन नहीं था तब तू बड़ा सताती थी, आज भोजन आ गया तो तू लग नहीं रही, मन ही मन गाली देने लगे। सुदामा जी ने प्रसाद पाया, भगवान कपड़े नए पहनाकर अपने कक्ष में लाते हैं, अंतःपुर में अपने बिस्तर पर लिटाया, चरणों को दबाने लगे। सुदामा तुम तो बचपन से ही बड़े वैरागी टाइप के थे, वैराग्य भाव में रहते थे, शादी वादी हुई है कि ऐसे ही घूम रहे? सुदामा जी सिर हिला के बोले, हुई तो है। अच्छा, अब सुदामा जी को कोई बात करने का मौका मिला तो सुदामा जी ने पूछा, लाला तू तो बचपन से बड़ा चंचल रहा कन्हैया, तेरी शादी भाई कि नहीं भाई, ऐसे ही डोल रहा हो? सुदामा जी की बात सुन के ठाकुर जी बोले, हम मिलवाई देते हैं, आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी बोले, हाँ बुलाओ बुलाओ बुलाओ। भगवान ने सब रानियों को खबर कर दी, आ जाओ, बड़े बड़े वाले पंडित जी आए हैं, इनका आशीर्वाद विफल नहीं होता सफल होता है। सब रानियां सधज करके घूंघट डाल के आ गई, सबसे पहले रुक्मणी जी आई, आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। फिर मित्र सत्यभामाएं आई, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। मित्र वृंदाएं आई, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। भगवान की तरफ देख के सुदामा जी बोले, तीन तीन? भगवान बोले, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, ये तो टेलर है टेलर। सुदामा जी ने सोचा, कितनी होगी? 7-8 होंगी, और क्या राजा है तो राजाओं को 7-8 तो चलती है। हाँ हाँ बुला बुला, जो जो आवे, सत्या भद्रा लक्ष्मणा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा। 40-50 को तो आशीर्वाद दे ही पाए के थक गए। सुदामा जी बोले, जे बता भैया, तू जिंदगी भर शादी करता रहा क्या और काम धाम ना करे? तो भगवान बोले, भैया अब इसमें ना पड़ो, बहुत लंबी लाइन लग रही है, जैसे आज यहाँ पादुका पूजन की लग रही, जैसे ही लंबी लाइन सुदामा जी के आशीर्वाद की लग रही थी, बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जैसे आज हम लोग और हमारे धाम के लोग, प्रशासन के लोग ये सोच रहे कि लाइन कब खत्म होगी, ऐसे ही सुदामा जी चिंता में लंबी घूंघट डाल के लाइन लगी। सुदामा जी ने ऐसे झांक के देखा, बोले, कन्हैया ये जितनी घूंघट डाले हुए खड़ी हैं, ये सब तेरी हैं क्या? भगवान सिर हिला के बोले, हाँ अपनी हैं। सुदामा जी बोले, पूरे खानदान की लग रही हैं, जैसे पूरा नगर आ गया हो। भगवान बोले, नहीं नहीं निजी हैं, निजी पर्सनल अपनी। वाह भैया वाह, तेरी जय हो। चलो कितनी होगी? 200-500, कोई बात नहीं, आशीर्वाद देंगे, राजा है ऐसे तो होते ही। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा। 100-200 को आशीर्वाद दिया, अब सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती गायब हो गया। भवा भवा भवा भवा भवा भवा भवा भवा भवा चल रहा। 400-500, 1000 को दिया आशीर्वाद। सुदामा जी सांस भरते हुए बोले, भैया हमको तो लगता है आज आशीर्वाद में ही निपट जाएंगे, घर वापस ना जा पाएंगे। भगवान बोले, वाह 1000 रानियों को आपने आशीर्वाद दे दिया, बाकी जो 15,000 बची उनका क्या? सुदामा जी बोले, 15,000 बची? भगवान बोले, तो क्या समझ रहे, हो गई? सुदामा जी बोले, भैया ये लफड़ा तू ही कर सके, एक काम कर, एक उपाय है मोरे पास। भगवान बोले, क्या? बोले, भैया सबके बदले तू आशीर्वाद ले ले और तू बांट देना, वरना हमारी 13वीं हो जाएगी। अच्छा
1: ये बात है,
0: भगवान लेट गए दंडवत चरणों में, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, खूब जय हो, विजयी रहो, अजय रहो, आशीर्वाद मंगलम भवा, मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु, मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनास्तत्तु, मित्राणाम मित्राणाम मुदियस्तवाः, आशीर्वाद आशीर्वाद। आहा, भगवान ने प्रणाम किया। अब भगवान ने धीरे से पूछा, सुदामा भाभी ने कुछ भेजा नहीं? अब सोचा इतनी स्त्री, इनकी रानियां खड़ी हैं, अर्धांगनी खड़ी हैं, इनके सामने हम चावल निकालेंगे, इनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो भगवान को वैभव को देखकर सुदामा जी ने पोटली को छिपा लिया, इशारा किया ना कुछ नहीं भेजा बात।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
9: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
10: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
11: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
8: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
1: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
12: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
8: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
13: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
8: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
14: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
8: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
15: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
16: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
15: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
8: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
13: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
8: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
8: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किस किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
1: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
18: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
19: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
8: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
20: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
8: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
21: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
8: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
14: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
22: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर उन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
10: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
8: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
0: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
6: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
7: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
8: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
11: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
8: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
23: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
8: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: दिल्ली के लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस की जबरदस्त तैयारी, की गई फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा कारणों से वाहनों की भी हो रही है सघन चेकिंग। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में दिख रहे हैं देशभक्ति के रंग, राममन में निकाली गई 1400 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा, एकता और देश प्रेम का दिया संदेश। गुजरात में आज से श्रावण मास का शुभारंभ, सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ रहा सैलाब, वडनगर में निकली भव्य डमरू यात्रा। अयोध्या के राम मंदिर में आज से पुजारियों के ड्रेस कोड में होगा बदलाव, रामानंद आचार्य परंपरा के अनुसार पुजारी अब बिना सिले पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे। लहासा में धूमधाम से मनाया गया शोटोन फेस्टिवल, भगवान बुद्ध की विशाल पेंटिंग का अनावरण, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे पर्यटक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
8: दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर एक बार फिर दिखी देश की आन बान और शान, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत हुई फुल ड्रेस रिहर्सल।

0: रिहर्सल में सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, एनसीसी कैडेट्स हुए शामिल। देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया लाल किला परिसर। फुल ड्रेस रिहर्सल में देखा देश के जवानों का जोश, पूरे जोश में कदम ताल करते हुए नजर आए जवान। मार्चिंग बैंड ने बजाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन। स्वतंत्र भारत के गौरव की शानदार अनुभूति से सराबोर हुआ पूरा वातावरण। रिहर्सल के दौरान एक बार फिर हेलीकॉप्टर बरसा गए फूल। कल आजादी के पर्व को मनाने के लिए देश भर से जुटेंगे लोग। स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। कल लाल किले के आसपास 7 सड़कें बंद। कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी। दिल्ली में 20,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। लाल किले के आसपास 1,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमें कर रही हैं निगरानी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी की गई। बॉर्डर पर हो रही है सघन चेकिंग। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई। आरपीएफ और जीआरपी ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड से प्लेटफॉर्म और परिसर की जांच। छत्तीसगढ़ के बस्तर में तिरंगा रैली की शुरुआत। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के गंदरबल में तिरंगा रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गंदरबल की सड़कें देशभक्तों से गुलजार हुई। हर गली हर मोहल्ले में देशभक्ति के गूंजे तराने। अनंतनाग में मेगा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। रामबन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति में लीन नजर आया हर कोना। लोगों ने एकजुटता का दिया संदेश। पुंछ में मदरसा छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। छात्रों ने लगाए भारत माता की जय के जयकारे। गया की सड़कें देशभक्तों से गुलजार हुई। हर गली हर मोहल्ले में देशभक्ति के गूंज तराने। तिरंगा रैली में लोगों को दिखा जबरदस्त उत्साह। रैली के दौरान लोगों ने लगाए देशभक्ति के नारे। आंध्र प्रदेश के एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन। जिला प्रशासन ने जिला कलेक्टर कार्यालय से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक निकाली रैली। कानपुर में वीर सम्मान अभियान। स्वतंत्रता दिवस से पहले पूर्व सैनिकों का सम्मान। उनकी वीर गाथाएं सोशल मीडिया पर भी होंगी साझा। मध्य प्रदेश खंडवा से आई देशभक्ति की शानदार तस्वीरें। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। अनोखी रैली में तिरंगे से सजी 150 नावें हुई शामिल। नर्मदा की लहरों पर दिखा देशभक्ति का माहौल। नाव तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। बिलासपुर से मुख्यमंत्री सुक्खू ने सौगात दी। मुख्यमंत्री मत्स्यकर सम्मान निधि योजना के तहत 1500 मछुआरों को बांटे 52 लाख रुपए। गुजरात में आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत। राज्यभर के शिवालयों में लगी भक्तों की लंबी कतार। गुजरात में डमरू यात्रा से सावन महीने का आगाज हुआ। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी समेत बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गुजरात के गिर सोमनाथ मंदिर में सावन के पहले दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। राजकोट में सावन के पहले दिन मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला। बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा की। सावन के पहले दिन भक्तों ने बेलपत्र गंगा जल से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के लगाए जयकारे। कांवड़ यात्रा में भी दिख रहे हैं देशभक्ति के रंग। सबसे आगे तिरंगा लिए विशाल महाकाल महादेव की प्रतिमा लेकर आगे बढ़ रहे हैं कांवड़। छोटे बच्चों को कांवड़ में बैठाकर पवित्र यात्रा पर निकले हैं शिव भक्त। बोल बम के उद्घोष के साथ जारी है यात्रा। गणेश चतुर्थी के नजदीक आते ही तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में भगवान गणेश की सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाने का काम पूरी रफ्तार से जारी। बाजार में इन मूर्तियों की खास डिमांड है। आधे फीट से लेकर 10 फीट तक की मूर्तियां बना रहे हैं कारीगर। अलग अलग मोहक मुद्राओं में तैयार की जा रही हैं मूर्तियां। मूर्तियों को सजाने के लिए प्राकृतिक और इको फ्रेंडली रंगों का किया जा रहा है इस्तेमाल। डिंडीगुल के साथ साथ मदुरई त्रिची और करूर जैसे पड़ोसी जिलों में भी भारी डिमांड। गोपालगंज पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी। थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। कटिहार की छात्रा लक्ष्मी ने पेश की हिम्मत की नई मिसाल। दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद पैरों से लिखकर पढ़ाई कर रही हैं। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली लक्ष्मी आम बच्चों की तरह ही करती हैं सभी काम। बड़े होकर शिक्षक बनने की इच्छा है। तेलंगाना में बाढ़ के बीच नजर आई एक मानवीय तस्वीर। कंधों पर स्ट्रेचर उठाकर गर्भवती महिला को पार कराई नदी। भारी बारिश के कारण टूटा सड़क संपर्क जिसके बाद ग्रामीणों ने 7 महीने की गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल। कल बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी दो बड़ी फिल्में। बंटवारा 1947 में सनी देओल की एक्शन को आवारापन 2 में अपने रोमांस से टक्कर देंगे इमरान हाशमी। पीरियड ड्रामा फिल्म है बंटवारा 1947। फिल्म के निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी और इसे आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया है। सनी देओल एक बार फिर अपना एक्शन अवतार दिखाएंगे। उनके साथ प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा इमरान हाशमी का जुनूनी अवतार। आवारापन 2 में अब एक बार फिर से रोमांटिक रोल में दिखेंगे इमरान हाशमी। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन का सीक्वल है ये फिल्म। फिल्म कई पुराने गाने भी रिक्रिएट किए गए।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके पढ़ना।
2: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा, जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य
3: कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: गुजरात में आज से श्रावण मास का शुभारंभ, सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, वडनगर में निकली भव्य डमरू यात्रा। दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की जबरदस्त तैयारी की गई, फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा कारणों से वाहन की भी हो रही है सघन चेकिंग। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में दिख रहे हैं देशभक्ति के रंग, रामबन में निकाली गई 1400 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा, एकता और देश प्रेम का दिया संदेश। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी में बांदकी महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार का मिला बड़ा मौका, आजादी के जश्न के लिए तैयार कर रही हैं 2 लाख तिरंगे। लहासा में धूमधाम से मनाया गया शोटोन फेस्टिवल, भगवान बुद्ध की विशाल पेंटिंग का अनावरण, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे पर्यटक।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज जीएनटी स्पेशल में बात करेंगे देश की आन बान और शान तिरंगे। पूरा देश आजादी के जश्न के रंग में रंग गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा शान से लहरा रहा है। शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और देशवासी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए राष्ट्रभक्ति का संदेश दे रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। दिल्ली में रिहर्सल परेड के जरिए जवान परेड की अंतिम तैयारियों को परख रहे हैं। दिल्ली में लाल किले पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे, लिहाजा लाल किले से लेकर चांदनी चौक तक के पूरे इलाके में कैमरों का ऐसा इंद्रजाल तैयार किया गया है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लाल किले के आसपास 3 दिनों तक सुरक्षा का भेद दे घेरा मौजूद रहने वाला है और रिहर्सल जारी रहने वाली है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ जहां परेड की रिहर्सल करते हुए जवान नजर आ रहे हैं, सारे जहान की अच्छा की धुन पर यहां पर परेड की रिहर्सल की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तीनों सशस्त्र बल यहां पर परेड करते हुए रिहर्सल करते हुए लाल किले की ये तस्वीरें हैं। लाल किले को यहां पर सजाया जा चुका है और यहां पर धूमधाम से तैयारियां कर ली गई हैं स्वतंत्रता दिवस को मनाने की। पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ एक तरफ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर लाल किले पर फुल ड्रेस में रिहर्सल जारी है। वहीं चंडीगढ़ में सुकना लेक के किनारे सीआरपीएफ के बैंड ने संगीतमय कार्यक्रम पेश किया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के बैंड ने देशभक्ति की कई मधुर धुन बजाई है, सुनिए।

तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर सीआरपीएफ बैंड का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर यहां महिलाओं ने देशभक्ति धुन पर जमकर नृत्य भी किया है। तिरंगा हाथों में लिए हुए देशभक्ति के धुन पर यहां पर नृत्य करती हुई महिलाएं नजर आई हैं।

तो तिरंगा सिर्फ एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। और यही वजह है कि तिरंगा यात्राओं के जरिए लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में निकल रही इन यात्राओं में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल देशभक्तिमय हो चुका है। देश भर से आ रही तिरंगा यात्रा की तस्वीरें साफ बता रही है कि तिरंगे को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। तिरंगे की शान में निकली ये यात्राएं देश की एकता और अखंडता का संदेश दे रही हैं। ये 7 तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था, जिसका आयोजन अब हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया जाता है। इस साल भी 15 अगस्त से ठीक पहले ये यहाँ पर अभियान चलाया गया। भव्य रूप ले चुका है यह अभियान। हर शहर, हर गांव, कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी वानगी आपके सामने है।

तो वहीं उधर जम्मू कश्मीर भी देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1400 मीटर लंबी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर हाथों में तिरंगा लिए हुए अधिकारी मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं और स्थानीय लोग भी यहां पर मौजूद हैं और एक साथ कदम ताल करते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं, देशभक्ति के रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा है। तो ये तस्वीर, ऐतिहासिक तस्वीर कह सकते हैं इसे, जो जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है। युवा मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, कई अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 1400 मीटर लंबी तिरंगा रैली है ये, जिसका आयोजन यहाँ पर किया गया। तो हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत देश के अलग अलग शहरों में इन दिनों भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको।

0: में तिरंगा, साइकिल पर तिरंगा, बाइक पर तिरंगा, हर तरफ देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहरा रहा है। श्रीनगर में डल झील की लहरों पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। घाटी की सड़कों पर हाथों में तिरंगा लिए लोगों का हुजूम निकल रहा है। कहीं बच्चों में देशभक्ति का जोश दिखाई दे रहा है, तो कहीं सड़कों पर तिरंगे के साथ भारत माता के जयकारे गूंज रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में निकली तिरंगा रैली में जिला प्रशासन के अधिकारी, स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। सभी के हाथों में तिरंगा और चेहरे पर मुस्कान दिखी।
1: लोग जोश और जज्बे के साथ इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं और गांधरबल में भी आज जिला इंतजामिया की तरफ से और बाकी जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। आज रैली का एहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितने स्कूली बच्चों का यहाँ मौजूद, ये इस बात की अक्कासी करता है कि लोगों को कितना जोश है, जज्बा है इस तिरंगा रैली से।
0: जम्मू कश्मीर के सोपोर में भव्य बाइक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें शामिल लोग राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और हर बाइक पर तिरंगा, दिल में देश के लिए गर्व का भाव भरा हुआ नजर आया।
2: पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 15 अगस्त की तैयारी बड़े जोशों में है और इस वक्त हम मौजूद है सोपोर में और आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहां पे बाइक रैली का इनेकाद होने वाला है और आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहां पे जो खासकर सोपोर का जो यूथ है वो वॉलंटियर इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे साथ एक जवान है। सर, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे इस हवाले से, ये जो आज पुलिस की तरफ से जो बाइक रैली है?
3: जी, मेरा नाम सफियान मुश्ताक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतनी रैली नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है इससे बड़ी होनी चाहिए जी। क्योंकि ये हमारा हक है, ये कश्मीर का हक है, क्यों हम इंडिया का पार्ट है, इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का दिल है।
4: हम तो इस दिन पर बहुत खुश है, इस दिन पर तो हमें नाज है। इस दिन के लिए तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं ने लाखों की तादाद में शहादत की है और हम तो बहुत खुश है इससे। ये घर घर तिरंगा जो है ये तो अपनी खुशी से आ रहे हैं।
0: श्रीनगर में ही सीआरपीएफ की ओर से हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लहराते इन बच्चों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दिलों में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा है।
5: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस तिरंगा रैली का आयोजन से हमारा मैसेज है यूथ को, आने वाले फ्यूचर को, कि वो अपना जो स्वतंत्रता है, जो इंडिपेंडेंस मिली है, उसके महत्व को समझें। लोगों ने इसको पाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, इस झंडे को पाने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उसके महत्व को समझें, अपने संस्कृति और कल्चर को समझें और इस देश को महान बनाने के लिए अपना योगदान दें।
0: देश की राजधानी दिल्ली में भी भव्य बाइक पर तिरंगा रैली निकाली गई। इस तिरंगा रैली में भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक जवान और सांसद शामिल हुए।
6: 2022 से देश भर में हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू किया गया और उसी के तहत ये तिरंगा यात्रा भारत मंडपम से हर साल निकाली जाती है। इस साल भी आपको जो विजुअल्स दिखेंगे उसमें बीएसएफ के जवान और एनएसजी के जवान दिखाई देंगे, साथ में एनडीए के सांसद, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं भारत मंडपम से निकले इस तिरंगा यात्रा में। और इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि सीपी राधा कृष्णन साहब ने तिरंगा यात्रा को फ्लैग ऑफ किया और अब ये यात्रा नेशनल स्टेडियम की तरफ बढ़ चला है।
0: स्वतंत्रता दिवस आने में कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में बाइक रैली को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी देशभक्ति के गीत गाते नजर आए।
6: मनोज तिवारी हैं हमारे साथ। तो देखिए, तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। मनोज जी, आप अपने अंदाज में हर बार बताते हैं हम लोगों को, क्या मैसेज है?
7: मैं आज 4 लाइन सबको समर्पित करना चाहता हूँ। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला, सुधा बरसाने वाला इस परतन अर्पण तन मन सारा झंडा ऊंचार मैंने कर दिया
6: रोज तिवारी झंडा ऊंचा रहे हमारा गाना गाते हुए तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये जो छटाएं ये जो रंग इस वक्त आपको दिखाई दे रही है ये भारत मंडपम से आगे बढ़ने वाली नेशनल स्टेडियम की तरफ बढ़ने वाली तिरंगा यात्रा की तस्वीरें हैं।
0: ये तस्वीर किसी एक शहर की नहीं बल्कि देश भर में ज्यादातर शहरों में देशभक्ति का यही तिरंगा रंग चढ़ा हुआ है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर है तिरंगा रैली को लेकर देश भर के युवाओं में जोश हाई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा रैली में उमड़ती भीड़ इस बात की गवाह है कि देश का हर नागरिक देशभक्ति के जोश और उत्साह से भरा हुआ है। आलम ये है कि बाजारों में तिरंगे की मांग बढ़ गई है। ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश के कई शहरों में तिरंगा बनाने का काम तेज हो गया है। दिल्ली के सदर बाजार में अब्दुल भी दिन रात तिरंगे बनाने में जुटे हैं।
8: लहराते हुए तिरंगे को देखकर हम सब कितना खुश होते हैं, सीना जैसे गर्व से फूल जाता है। लेकिन आज हम आपको दिल्ली के सदर बाजार में एक ऐसी दुकान पर लेकर आ रहे हैं जहां पर पीढ़ियां दर पीढ़ियां तिरंगे को बनाने में, उसको तैयार करने में, उसकी सिलाई करने में लगी हुई हैं।
0: यहां कहीं कपड़े की कटिंग हो रही है तो कहीं मशीनों पर सिलाई का काम चल रहा है। यानी तिरंगे की कटिंग से लेकर सिलाई, पैकिंग और सप्लाई तक हर काम पूरी रफ्तार से जारी है।
8: आप लोग की भी बड़ी जिम्मेदारी है, फ्लैग बनाना वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदारी का काम है, तो किन बातों का ख्याल आप लोग रखते हैं जिसमें बनाते हैं? खासकर जो हमारा अशोक चक्र है उसमें कितनी उसकी लाइंस होंगी, कैसा चक्र होगा, सब कुछ डिसाइड करते होंगे?
9: जैसा कि आपने बताया, मेरे फादर इन लॉ हैं फ्लैग अंकल के नाम से, बहुत फेमस हैं, और उसी उन्होंने जो हमें काम सौंपा है वो काम हम लेके चल रहे हैं। जैसे आपने मेरे से सवाल करा कि हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं अपने फ्लैग को बनाने में, सबसे पहले मैं बताऊंगा हम पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारा जो फ्लैग है एक इसकी आन बान है, तो हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। हम इसको प्रिंटिंग में जो है पूरा ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रिंटिंग वर्क हो।
8: तो और कुछ क्या क्या है हमारे पास?
10: देखिए, हमारे पास ये इस तरीके के बैंड भी बनाए जाते हैं जिसमें इंडिया लिखा होता है, ठीक है, और इस तरह की बाइक के ऊपर झंडे लगाने वाले होते हैं, ये इसके अंदर भारत का नक्शा भी हमने डाला हुआ है।
8: अच्छा।
10: जी, इस पे आप गौर करेंगे तो भारत का नक्शा दिखाई देगा आपको, ठीक है। और इस तरीके बैजेस होते हैं जिन पे इंडिया और अशोक चक्र दोनों आते हैं, ठीक है। कुछ साइज छोटे होते हैं, कुछ साइज बड़े होते हैं, और ये हमारा भारत का नक्शा है, ये प्लास्टिक के अंदर होता है, हमने इसके अंदर भारत का नक्शा डाल दिया, मतलब कम से कम रेंज के अंदर तमाम भारतीयों के पास पहुँचना चाहिए।
0: इनके लिए तिरंगा बनाना महज रोजगार नहीं बल्कि देश के प्रति अपने जज्बे और सम्मान को रंगों में पिरोने का एक जरिया है। इनमें करोड़ों भारतीयों का गर्व, सम्मान और देशभक्ति का जज्बा जुड़ा हुआ है। जब यही तिरंगे घरों, दुकानों और सड़कों पर लहराते हैं तो हर तरफ एक ही रंग नजर आता है, तिरंगे का रंग और हिंदुस्तान का गौरव। श्रीनगर से माजिद फारूक और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
11: दिल्ली के लाल किले के पास 21 तोपों की सलामी का रिहर्सल शुरू हो चुका है। 15 अगस्त को 105 mm लाइट फील्ड गन से 52 सेकंड में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों के अलावा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भी 21 तोपों की सलामी देने की परंपरा है। हालांकि ये रिवाज उससे भी पुराना है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के अलावा देश के दूसरे शहरों में तकनीक के दम पर अदृश्य सुरक्षा घेरा भी तैयार हो चुका है जिसको लांघना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा।

देश के लिए बलिदान, संघर्ष और एकता के प्रतीक स्वतंत्रता दिवस में सिर्फ 4 दिन शेष है। 15 अगस्त को भारत अपनी स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे करने जा रहा है। 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में देश के दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली भी जुटी है। जश्न आजादी के मौके पर भारतीय सेना के तोपों की भी गर्जना सुनाई देने वाली है। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस साल भी उसके लिए रिहर्सल शुरू हो चुका है। 2023 से 21 तोपों की सलामी के लिए स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल हो रहा है। सेना की परंपरा के मुताबिक इन तोपों से फायरिंग अभ्यास से पहले उनकी सफाई कर पूरे विधि विधान से पूजा की गई। भारतीय सैन्य संस्कृति में विधि विधान से की जाने वाली इस पूजा को शस्त्र पूजा कहा जाता है। सेना की सेरेमोनियल बैटरी की तरफ से पूरी निष्ठा से निभाई जाने वाली ये रस्म तोपों और शस्त्रों के प्रति सम्मान, सुरक्षा और देश के विजय की कामना के लिए होती है।

0: साल 1982 से कई मोर्चों पर देश की सेवा कर रहे इन तोपों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए गोलों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से स्वदेशी तोप गोले दागने के बजाय फायरिंग की आवाज पैदा करती है। 105 mm लाइट फील्ड तोप से बहस 52 सेकंड में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में 96 घंटे से कम समय बचा है। देश की आजादी से जुड़ा ये वो ऐतिहासिक दिन है जब हर भारतवासी गर्व महसूस करता है। आजादी के आंदोलन के दौरान देश पर अपनी जान न्योछावर करने वाले हर बलिदानी के सम्मान में लाल किले की प्राचीर से भी तिरंगा फहराया जाएगा। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा दूसरी गणमान्य हस्तियां मौजूद होंगी, जिनकी सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस दूसरे सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है।
1: इस 15 अगस्त को भारत की आजादी के 80 साल पूरे हो जाएंगे और जाहिर सी बात है इस मौके पर सेलिब्रेशंस भी और बड़े और व्यापक तौर पर होने वाले हैं, जिसके वजह से दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने काफी डिटेल सुरक्षा जो है वो यहाँ लाल किले पर लगा रखी है। बताया ये जा रहा है कि करीब 25,000 लोग इस बार लाल किले पे प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए आएंगे, जिसको लेकर के तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। इस बार 25,000 लोग तो आएंगे ही, उसके अलावा 15,000 तो बस सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रहेगी यहाँ पे, जो ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अनहोनी या एंटी सोशल एलिमेंट या अराजक तत्व जो है वो इस भीड़ में ना घुस पाए और देश की खुशियों में किसी भी तरह का खलल ना डाल पाए। इसके अलावा जो आप ये कैमरेज देख रहे हैं, ये दर्शक दीर्घा में जो ये कैमरेज लगे हैं, ये सारे कैमराज जो हैं ये FRS यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस हैं। यानी अगर कोई अराजक तत्व यहाँ भीड़ में घुसने की कोशिश करता है तो उसे इन कैमरों से ही आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उसे जल्दी से जल्दी भीड़ से हटा दिया जाएगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा बनाए रखने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसी भी आतंकी घटना में शामिल आतंकी या संदिग्ध तक कम समय में पहुंचने में मदद करेगा। आंख, नाक और जबड़े की बनावट ही किसी तरह की साजिश की राह में रुकावट बनेगी।
2: FRS के अंदर कैमरा है, वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, वो फेस के फीचर्स को कैप्चर करके जो हमारा डोजियर उससे मैच करता है। तो जितनी पब्लिक एंट्रीज हैं वहाँ पे जो CCTV है उनमें सब पे FRS हमने लगाया है और हमारे जो दिल्ली पुलिस का जो डेटाबेस है क्रिमिनल्स का उसके साथ उसको इंटीग्रेट किया है।
0: जश्न आजादी के मौके पर अभिज्ञान ऐप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से बनाया गया ये मोबाइल ऐप पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच की तरह है, जो सिर्फ 35 सेकंड में फिंगरप्रिंट स्कैन करके किसी भी संदिग्ध या अपराधी की पहचान करने में उनकी मदद करेगा।
1: इस 15 अगस्त पे स्पेशल बात यह है कि सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी और AI का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो ये एक ऐप है जो दिल्ली पुलिस ने डेवलप करवाया है। इस ऐप का नाम है अभिज्ञान ऐप। ये ऐप ऐसे काम करता है कि देखिए ऐसे रैंडम चेकिंग होती है। इस वक्त हम लाल किले के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे रैंडमली चेकिंग होती है। रैंडमली चेकिंग में फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और फिंगरप्रिंट लेने के बाद इस तरीके से रिजल्ट आते हैं। अगर ग्रीन रिजल्ट आया है तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति का किसी भी तरीके का कोई भी आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। वहीं अगर इस तरीके से लाल साइन आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके आपराधिक बैकग्राउंड है। सर, कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहली बात ये, इस सर्वर में कितने लोगों का डेटा है और किस तरीके से ये चेकिंग पूरी चलाई जाती है?
3: इस सर्वर में सर पूरे पैन इंडिया का डाटा है। 1,32,00,000 क्रिमिनल का डाटा बेस है, उनके बायोमेट्रिक है। और नेक्स्ट
1: सर, SOP क्या है अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपको आइडेंटिफाई होता है जिसके खिलाफ पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है या हीनियस क्राइम्स में संलिप्त है और बेल पर बाहर है, तो आपका क्या SOP है? आप लोग कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे?
3: सर, कोई भी क्रिमिनल अगर सामने आता है ऐसा सस्पिशियस लगता है और सिटीजन की सेफ्टी के लिए हमें उसकी प्रॉब्लम क्रिएटर जस्ट लाइक दिखता है तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं और इसी प्रोसेस में हम किसी भी इस तरह से रैंडमली किसी सिटीजन को जैसा लगता है सस्पिशियस है बायोमेट्रिक लेते हैं। अगर उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड मिलता है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारा जो टीम है वो उसको वेरीफाई करती है कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड है या नहीं। अगर वो इनकेस ऑफ सेंसिटिविटी है कहीं तो उस पर लीगल एक्शन लेते हैं, अदरवाइज उसको रिलीज कर देते हैं। अगर इसका ग्रीन हिट आता है तो उसको हम उसी वक्त जाने के लिए आदेश
1: यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और थाने ले जाएगा फिर वहां वेरीफिकेशन।
3: यस सर।
0: लाल किले के आसपास के क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए कई पोस्ट और मचान भी बनाए गए हैं, जहां से पैनी नजर रखने के लिए दिल्ली के जवान तैनात होंगे। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह नेहरू प्लेस मार्केट में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं।
4: स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर काफी व्यापक सुरक्षा इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं और यहां पर देख सकते हैं जो कोई भी एंट्री कर रहा है उसको इसी तरीके से चेक इन किया जा रहा है, फिर बाजार में उनको एंट्री दिया जा रहा है और इस तरीके से बैरिकेड्स वगैरह घेर दिया गया है। पहले इस तरीके की नहीं होती थी, लेकिन अब स्वतंत्रता दिवस है और एक काफी मुख्य प्लेस है दिल्ली का। इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: आप दोनों में से सबसे अच्छा रैपर कौन है?
9: मैं हूँ। यो यो।
8: अरे क्या हुआ अम्मा?
9: अरे मैं हूँ ना रैपर, इसको गाना गाना नहीं आता, रैपर बनेगी
8: है? अभी पता लग जाएगा।
9: हाँ।
8: पहले सुनाओ आप।
9: पहाड़ों में घर हरे हरे पत्ते, यही गाना गाना नहीं आ रहा, तू बनेगी रैपर?
8: आप सुनाओ फिर।
9: ओहो
10: सास बहू की ये जोड़ी सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। वीडियो में बहू कुछ कहने लगती है, तभी सास उसे चुप कराते हुए बड़े ही मजेदार अंदाज में कहती है, मैं हूँ रैपर। इसके बाद सास का रैप शुरू होता है। उनका अंदाज, कॉन्फिडेंस और रैप करने का तरीका इतना मजेदार है कि बहू भी हंसने लगती है। वीडियो देखने वाले भी सास के इस टैलेंट को देख कर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, इस गाने पर बच्ची का शानदार एक्सप्रेशन देखकर आप भी उसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। बच्ची एक एक लिरिक्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाती हुई डांस कर रही है। चेहरे के एक्सप्रेशन से लेकर उसके अंदाज तक हर चीज देखने लायक है। बच्ची की मासूमियत और जबरदस्त परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है। यही वजह है कि वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: गुजरात में आज से श्रावण मास का शुभारंभ, सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब, वडनगर में निकली भव्य डमरू यात्रा। दिल्ली के लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस की जबरदस्त तैयारी की गई, फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा कारणों से वाहनों की जा रही है सघन जांच। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रामबन में निकली 1400 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा, तो कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान तिरंगा लेकर निकले। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी में बांदा की महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार का मिला बड़ा मौका, आजादी के जश्न के लिए तैयार कर रही हैं 2 लाख तिरंगे। रायपुर में आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं का रैंप पर जलवा, बदलाव की लिखी कहानी, कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में रैंप पर किया वॉक।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली
1: सज गई है। खबरों की प्लेट तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर एक बार दिखी फिर से देश की आन बान और शान की तस्वीर। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत हुई फुल ड्रेस रिहर्सल।

0: स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी, दिल्ली में 20,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी, आरपीएफ जीआरपी ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड से प्लेटफॉर्म और परिसर की जांच की जा रही। छत्तीसगढ़ के बस्तर में तिरंगा रैली की शुरुआत, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तिरंगा रैली का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में बीजेपी नेता भी इसमें शामिल हुए।
1: कानपुर में वीर सम्मान अभियान, स्वतंत्रता दिवस से पहले पूर्व सैनिकों का सम्मान, उनकी वीर गाथाएं सोशल मीडिया पर होंगी साझा। मध्य प्रदेश के खंडवा से आई देशभक्ति की शानदार तस्वीरें, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, तिरंगे से सजी 150 नाव हुई शामिल। बिलासपुर से मुख्यमंत्री सुखू निधि सौगात, मुख्यमंत्री मत्स्यकर सम्मान निधि योजना के तहत 1500 मछुआरों को बांटे गए 52 लाख से ज्यादा रूपये।

0: कावड़ यात्रा में भी दिख रहे हैं देशभक्ति के रंग। सबसे आगे तिरंगा लिए विशाल महाकाल महादेव की प्रतिमा लेकर आगे बढ़ रहे हैं कावड़। गणेश चतुर्थी के नजदीक आते ही तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में भगवान गणेश की सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाने का काम पूरी रफ्तार से जारी। बाजार में इन मूर्तियों की खास डिमांड। गुजरात में आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत। राज्यभर के शिवालयों में लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें। गोपालगंज पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, थावे दुर्गा मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। कटिहार की छात्रा लक्ष्मी ने पेश की हिम्मत की नई मिसाल। दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद पैरों से लिखकर पढ़ाई कर रही चौथी कक्षा में पढ़ने वाली लक्ष्मी। बिहार में निजी बीएड संस्थानों का महाविद्यालय के रूप में होगा विकास। बीएड के साथ दूसरे विषयों की भी होगी पढ़ाई, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। तेलंगाना में बाढ़ के बीच में नजर आई एक मानवीय तस्वीर। कंधों पर स्ट्रेचर उठाकर गर्भवती महिला को पार करवाई गई नदी। कल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी बटवारा 1947 फिल्म के निर्देशक है राजकुमार संतोषी और इसे आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया।
1: ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का।
2: खुदा के लिए यहाँ से निकलिए।
0: आवारापन 2 में एक बार फिर से रोमांटिक रोल में दिखेंगे इमरान हाशमी। 2007 में आई इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन का सीक्वल ये फिल्म। टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का बोलबाला, लगातार 21 महीनों से नंबर 1 के स्थान पर काबिज। वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल भी नंबर 1 पर 801 रेटिंग के साथ टॉप पोजीशन पर बने हुए हैं शुभमन। कल से भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत। गोल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच।
3: चीन के ल्हासा में हर साल होने वाले शोटोन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मठों और धार्मिक कार्यक्रमों में पहुंचे। अमेरिका के वॉशिंगटन में ड्राइवरलेस कारों की तैयारी। सुरक्षित साबित होने पर 200 कारों तक चलाने की मिल सकती है अनुमति। ब्रिटेन की जेसीबी ने हाइड्रोजन से चलने वाली कार से करीब 654 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। रिकॉर्ड अमेरिका के बॉनविल सॉल्ट फ्लैट्स में बनाया गया। रॉसी नाम का दुर्लभ समुद्री कछुआ 2023 में अमेरिका से भटककर वेल्स पहुंच गया था। वेल्स के एंग्लेसी सी जू में रॉसी की करीब 2.5 साल तक देखभाल की गई। चीन में पांडा के जन्मदिन पर उनके लिए खास खाने और खेल तैयार किए गए। पांडा ने पहली बार गेंदों, गाजर और तरबूज का मजा लिया।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
3: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
0: गुजरात में आज से श्रावण महीने का आगाज। सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब।
3: अयोध्या के राम मंदिर में आज से पुजारियों के ड्रेस कोड में होगा बदलाव। एक परंपरा के मुताबिक पुजारी अब बिना सिले पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे।
0: दिल्ली के लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस की जबरदस्त तैयारी की गई है, फुल ड्रेस रिहर्सल। सुरक्षा कारणों से वाहनों की हो रही है सघन जांच।
3: देशभर में आजादी का जश्न, शहर शहर निकाली जा रही तिरंगा यात्राएं।
0: कल फिल्मी फ्राइडे पर रिलीज होगी सनी देओल की बटवारा 1947 और इमरान हाशमी की आवारापन 2। दोनों फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर होगा जोरदार मुकाबला।
3: और और चलिए लंच टाइम में आज हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं फिल्मी सफर पर। कल फिल्मी फ्राइडे है और इस बार सिने प्रेमियों को एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलने वाला है, क्योंकि सनी देओल स्टार बंटवारा 1947 और इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म आवारापन 2 दोनों ही स्टार्स की अपनी फैन फॉलोइंग है और दोनों ही फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं।
0: बंटवारा 1947 देश के विभाजन पर बनी उस दौर की कहानी को सामने लाती है जो खौफ और दहशत से भरी है। फिल्म में सनी देओल ने सिकंदर मिर्जा का किरदार निभाया जो कि डर और नफरत के ऊपर साहस को चुनता है। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 जिसमें 2007 की कल्ट हिट फिल्म आवारापन का सीक्वल है, करीब 19 साल पहले रिलीज हुई। आवारापन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, लेकिन बाद में अपने गानों और कहानी को लेकर ये मूवी टीवी पर आकर सबकी फेवरेट बन गई।
3: और देखिए अब आवारापन 2 का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एडवांस बुकिंग के मामले में बंटवारा 1947 पर भारी पड़ती हुई भी ये फिल्म नजर आ रही है।

0: तो बटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए मेकर्स ने 12 शहरों का टूर प्लान किया है। सनी देओल अपने बेटे करण देओल और प्रीति के साथ पंजाब से लेकर पटना, लखनऊ से लेकर अहमदाबाद तक कई शहरों में पहुंचे, बड़े मंच पर फिल्म का जमकर प्रमोशन किया।
1: और जहां जहां भी देखिए सनी देओल पहुंचे, उनके एक झलक पाने को सैकड़ों हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। उनके साथ सेल्फी लेने, ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग बेताब नजर आए और अब उम्मीद ये है कि यही भीड़ और बेताबी कल से थिएटर में भी दिखाई देगी।
2: देश की आजादी मुबारक हो।
3: आपको भी बहुत मुबारक हो।
4: कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का।
5: खुदा के लिए यहाँ से निकलिए।
6: वक्त आ गया है जब इस जोश, जज्बे और जुनून से सिल्वर स्क्रीन गुलजार होगी। पर्दे पर सनी देओल की दहाड़ सुनाई देगी और हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठेगा।
7: अम्मा यहाँ कोई है?
8: कौन है आप?
7: तुम कहो जी, तुम कौन हो जो मेरे कार में घुस आए?
8: कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है, आप यहाँ नहीं रह सकती।
6: क्योंकि कल दस्तक देने जा रही है एक्शन और रोमांच से भरपूर फिल्म बटवारा 1947, एक ऐसी फिल्म जिसका वास्ता हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तानियों से है, करीब 79 साल पहले हुए मुल्क के बंटवारे से है।
9: पंगा लेना है?
2: इरादा तो नहीं, पर
6: 28 जुलाई को बटवारा 1947 का दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ था। रिलीज के साथ ही ट्रेलर को दर्शकों का शानदार रिस्पांस भी मिला और इसके ठीक एक दिन के बाद यानी 29 जुलाई से हिंदुस्तान की आवाम के दिलों तक पहुंचने के लिए सनी देओल ने फिल्म का मेगा प्रमोशन भी शुरू कर दिया। 12 शहरों के राष्ट्रव्यापी प्रमोशन टूर पर पहला पड़ाव बना जयपुर। जयपुर के ऐतिहासिक राज मंदिर सिनेमा में फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए यहां पहुंचे। सनी के साथ उनके बेटे करण देओल और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी भी पहुंचे थे। जयपुर प्रमोशन के दौरान बंटवारा टीम के साथ सनी देओल ने ऐतिहासिक हवा महल का भी दौरा किया। सनी के फैंस की दीवानगी का कुछ ऐसा ही आलम पटना में भी दिखा। 3 अगस्त को बेटे करण देओल के साथ सनी देओल पटना पहुंचे थे। यहां भी फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया और फिर सनी देओल मीडिया से मुखातिब हुए।
10: उस तरह की कहानी आती है, हम कोई कॉन्ट्रोवर्सी किसी चीज में नहीं थे और हर फिल्म उस तरह से अलग अलग रही है और हमारी बंटवारा भी उस तरह की फिल्म है। जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा।
6: पटना टूर के दौरान सनी देओल और प्रीति जिंटा ने तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के दर्शन किए, जो कि सिखों का दूसरा सबसे पवित्र तख्त और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्म स्थली है। शहर शहर बंटवारा 1947 के प्रमोशन का अगला पड़ाव बना लखनऊ। 7 अगस्त को सनी देओल, करण देओल और प्रीति जिंटा लखनऊ पहुँचे। अपने चहेते स्टार को देखने यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। सनी और प्रीति ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की और राजधानी के पुराने ऐतिहासिक इमारतों का दौरा किया। इस दौरान ऐतिहासिक रूमी गेट पर तांगी की सवारी भी की। बंटवारा 1947 की ये स्टार कास्ट फिल्म के धुआंधार प्रमोशन के लिए चंडीगढ़ गई। करण और प्रीति जिंटा के साथ सनी देओल एक बड़े मैदान में पहुंचे, जहां हजारों की भीड़ अपने पसंदीदा स्टार्स को देखकर काफी एक्साइटेड नजर आई। सनी देओल के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो अपने चाहने वालों से रूबरू होकर कितने ज्यादा खुश हैं। पंजाब दौरे के दौरान सनी देओल अमृतसर के पार्टीशन म्यूजियम भी पहुंचे। यहां वो इतिहास को याद कर बेहद भावुक नजर आए। संग्रहालय में मौजूद एक एक ऐतिहासिक चीज को सनी ने बेहद करीब से देखा, समझा और उसे महसूस किया। के अलावा सनी देओल बंटवारा 1947 का प्रमोशन करने अहमदाबाद, कोलकाता और दिल्ली भी आए और दर्शकों से फिल्म देखने की अपील की। 1947 में भारत का विभाजन मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापना और त्रासदियों में से एक था। अब तक कई बॉलीवुड फिल्में इस विषय पर बन चुकी है। अलग अलग फिल्मकारों ने किसी न किसी किताब या उपन्यास को आधार बनाकर अपने अपने नजरिए से इस ऐतिहासिक त्रासदी को पर्दे पर उतारा है। इस बार निर्देशन की कमान संभाली है राजकुमार संतोषी ने और भारत पाक विभाजन के दौरान की एक अनोखी कहानी को लेकर सामने आए हैं। बंटवारा 1947 असगर वजाहत के विश्व प्रसिद्ध नाटक जिस लाहौर नहीं व्याख्या ओ जनयाई नहीं पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट टुडे स्टडी।
9: सरहद सीधा घुस के मारेंगे।
0: वहीं नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हनुमान अंश को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं।
1: वहीं देखिए दर्शकों ने भी फिल्म को काफी पसंद किया। हालांकि फिल्म को लेकर ज्यादा चर्चा ना होने के चलते इसकी ओपनिंग खास नहीं रही, लेकिन फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। आध्यात्मिक कहानी पर बनी इस फिल्म की मेकिंग और इसमें बाबा नीम करौली के किरदार के बारे में फिल्म के एक्टर शोभिनव सत्य ने खुलकर बातचीत की है और उन्होंने ही यही बताया कि कैसे बाबा नीम करौली के किरदार में वो ढल गए और किस तरह ये फिल्म बनकर पर्दे पर आई। उन्होंने फिल्म की शूटिंग के कुछ खास पलों को भी याद किया।
11: मेरे माइंड में ये सब चल रहा था कि सर ने मुझे कास्ट तो कर दिया है, लेकिन अगर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने बोला कि पता नहीं किसको बाबा बना दिया है, क्या कर दिया है, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। लेकिन ये सबसे पहले जो कहानी है वो ये है कि मैंने इस फिल्म में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया था। मैं इस फिल्म में एज सेकेंड एडी था और हमारे जो इससे पहले लीड एक्टर थे उनकी कुछ कारणोंवश तबीयत खराब हो जाती है, तो सर वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेते हैं कि भाई फिल्म को रुकने नहीं देना है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आ गए थे, बहुत सारे लोगों की मेहनत थी।
12: चित्रकूट में थे।
11: Exactly, यस। तो सर ने मुझे कास्ट करने के लिए मेरा टेस्ट लिया। अब वो टेस्ट 5 घंटे तक चला, जिसमें से 4.5 घंटे तो मेरे माइंड में सिर्फ यही बात चल रही थी कि अरे क्या होगा, मैं वही पत्रकार बन गया कि दुनिया क्या कहेगी, कहीं मुझे जो है कुछ तो ऐसा चल रहा था। सर ने वहाँ पे मुझे काम किया और सर ने बोला कि ये सब सोचना तुम्हारी वो जिम्मेदारी नहीं है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मैं मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है देख लो। ऐसा एक दिन में कोई कैरेक्टर, इतना बड़ा कैरेक्टर, वो भी एक काइंड ऑफ बायोपिक ही है, आप उसको जस्टिफाई कर पाओ एक दिन में नहीं पॉसिबल है। सो सर ने क्या किया कि कॉम्प्लिकेट करने की बजाय मुझे मेरी जो पर्सनल आदतें थी उससे कैरेक्टर को कनेक्ट कर दिया सर ने, तो मेरे लिए और आसान हो गया। बाबा का नेचर ऐसा था कि इट्स लाइक के वो तो हंसते ही रहते थे, हरदम हंसते रहते थे। हाँ, हरदम हंसते रहते थे, लेकिन वहाँ पे ना एक बड़ा प्यारा सा है, एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, हल्का सा, हल्का दिखा था ना। वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल गोपाल कहते, गोपाल गोपाल, तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
0: चलिए अब आपको दिखाते हैं जंगल की रपटीली राहों से रैंप तक के सफर और जिंदगी में बेहतरीन बदलाव की कहानी। कभी बस्तर के जंगलों में आतंक के साए में रहने वाली कई पूर्व महिला नक्सलियों की पहचान अब बदल चुकी है, क्योंकि ये महिलाएं अब फैशन शो के रैंप पर उतरकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पहनावे को प्रमोट कर रही हैं।
13: ये सिर्फ एक रैंप वॉक नहीं, ये जिंदगी की बदली हुई राह की तस्वीर है। कदम वही है लेकिन अब मंजिल बदल चुकी है। भरपूर आत्मविश्वास के साथ रैंप पर वॉक कर रही ये महिलाएं कभी बस्तर के घने जंगलों में हथियार लेकर चलती थी, लेकिन आज इनके हाथों में हथियार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर रायपुर के ऑडिटोरियम में रैंप पर जैसे ही इन महिलाओं ने कदम रखा, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा। इन्होंने यहां पर पारंपरिक हथकरघा परिधान, कोसा सिल्क और छत्तीसगढ़ के स्थानीय वस्त्रों को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। इस स्वदेशी फैशन शो में पूर्व महिला नक्सलियों ने पेशेवर मॉडलों के साथ रैंप साझा किया। बस्तर की इन महिलाओं ने कभी नक्सलवाद का रास्ता चुना था, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद अभी मुख्य धारा की जिंदगी की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। इनके दिलों में आने वाले वक्त में कुछ बेहतर करने और अपने अतीत से आगे बढ़कर एक नई पहचान बनाने का जज्बा है। जिन जंगलों में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, वहां से आई महिलाओं की जिंदगी में रंगों और उम्मीद की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये बदलाव सिर्फ कपड़ों का नहीं है, बल्कि ये सोच और जिंदगी के रास्ते में आए नए परिवर्तन की कहानी है, जिसके जरिए इन्होंने एक नई शुरुआत की है। इनकी पहचान अब बंदूक से नहीं, बल्कि हुनर, संस्कृति और सकारात्मक सोच से जिंदगी में आ रहे बदलाव से है। रिपोर्ट न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब बात आजादी के उत्सव की। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले शहर शहर तिरंगा यात्रा की तस्वीरों की।

तो गली गली आजादी के तराने गूंज रहे हैं, हर घर तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल है तो देशभर में आजादी के पर्व से ठीक पहले तिरंगा रैलियों का जोश दिखाई दे रहा है। आम हो या खास हो, हर कोई तिरंगे के साथ कदम ताल करता हुआ आपको नजर आएगा। शहर अलग अलग है लेकिन जज्बा एक है, देशभक्ति के बयार हर तरफ आपको दिखाई देगी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। श्रीनगर की डल झील पर तिरंगे का अद्भुत नजारा दिखा तो मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी तिरंगा रैलियों ने देशभक्ति का रंग और गहरा कर दिया। हर हाथ में तिरंगा, हर दिल में हिंदुस्तान, पूरा देश एक ही रंग में रंगा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो वहीं चंडीगढ़ में सुखना लेक के किनारे सीआरपीएफ के बैंड ने संगीतमय कार्यक्रम पेश किया और इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के बैंड ने देशभक्ति की कई मधुर धुन भी बजाई है। सुनिए।

तो देश पर आजादी के जश्न का रंग पूरी तरह से छा चुका है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह तिरंगा रैली निकाली जा रही है, कहीं बाइक तो कहीं बोट रैली की तस्वीरें दिख रही हैं। नक्सलवाद, जहां पर कभी नक्सलवाद का बोलबाला था, वहां भी शान से तिरंगा लहराता नजर आ रहा है।

0: पूरा देश आजादी के जश्न के रंग से सराबोर नजर आ रहा है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जगह जगह तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसकी छटा देखते ही बन रही है। जमीन से लेकर आसमान तक तिरंगा ही तिरंगा लहराता नजर आ रहा है। पहले ये दो तस्वीरें देखिए। ये दो तस्वीरें नदी से लेकर झील तक लहराते तिरंगा की है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर की है, जहां नर्मदा नदी की लहरों पर 150 नावों के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ब्रह्मपुरी घाट से नागर घाट तक आयोजित इस नौका रैली में देशभक्ति की शानदार छटा दिखी। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की मशहूर डल झील की है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भव्य शिकारा तिरंगा रैली निकाली गई। इस दिव्य रैली में सैकड़ों शिकारों पर शान से तिरंगा लहराता नजर आया। जम्मू कश्मीर में जगह जगह तिरंगा रैली आयोजित हुई, जिसके जरिए देशभक्ति का संदेश दिया गया। बारामूला जिले में सोपोर में पुलिस की ओर से एक शानदार बाइक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवकों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। रैली में शामिल लोगों ने तिरंगा लहराया और देशभक्ति के नारे लगाए, जिससे पूरे शहर में उत्साह और माहौल नजर आया।
1: आज देखो कि आप यूथ यहाँ पर कितना खुश है, यहाँ पर
2: बहुत खुश है। इससे ये घर घर तिरंगा जो है, ये तो अपनी खुशी से आ रहे हैं, कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं हम, कि ये अपने देश का स्वतंत्र दिन है, इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है।
0: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर शोपियांग और गांदरबल तक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। श्रीनगर में निकाली गई तिरंगा रैली की ड्रोन से ली गई तस्वीर को देखिए, जिसमें हाथों में तिरंगा लेकर चलती भीड़ दिख रही है। वहीं शोपियांग में जिला प्रशासन, पुलिस और बाकी दूसरे विभागों ने मिलकर इस रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल नजर आए। तो गांदरबल में निकाली गई तिरंगा रैली में शामिल स्टूडेंट समेत हर किसी में देशभक्ति का गजब का जज्बा दिखा। देश की राजधानी दिल्ली समेत जगह जगह तिरंगा रैली का आयोजन हुआ, जिसमें हर किसी के चेहरे पर देशभक्ति की चमक छाई दिखी। यहां निकाली गई बाइक रैली में अलग अलग सुरक्षा बलों के जवानों के साथ एनएसजी कमांडो भी शामिल नजर आए। छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों में भी अब शान से तिरंगा लहराता नजर आ रहा है, जो कभी नक्सल प्रभावित रहा। बस्तर संभाग में आने वाले नारायणपुर जिले में तिरंगा यात्रा रैली को लेकर लोगों में गजब का जोश दिखा। पूरा वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंजता रहा। हर हाथों में लहराते तिरंगों के बीच यहां से बाइक रैली को झंडी दिखाई गई और फिर शुरू हो गई तिरंगा यात्रा। नारायणपुर से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा उन इलाकों से होकर गुजरेगी जो नक्सल प्रभावित था। बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले से गुजरते हुए इस यात्रा का समापन 14 अगस्त को बीजापुर के करेगुटा पहाड़ी पर तिरंगा फहराकर किया जाएगा।
3: बस्तर में लोगों ने स्वयं ही कहा है कि हमको लग रहा है कि हम अभी आजाद हुए, देश अभी आजाद हुआ है। और जब उनकी ऐसी भावना है, उस समय बस्तर में राष्ट्रीय पर्व के समय के ठीक पहले ये तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इस भाव के साथ निकाला गया है।
0: हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में रैली आयोजित हो रही है, जिसमें हर उम्र और हर वर्ग के लोग पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड के गांवों तक में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। ये तस्वीरें टिहरी गढ़वाल के हटवाल गांव की है, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की ओर से निकाली गई रैली में स्टूडेंट्स पूरे जोश के साथ हर घर तिरंगा का नारा बुलंद करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: आजादी के रंग के साथ रक्षाबंधन के त्योहार का रंग भी घुल गया है। अजमेर के बाजारों में तिरंगे वाली राखियों की खासी डिमांड है। खाटू श्याम की तस्वीर वाली राखी की भी यहां पर काफी ज्यादा डिमांड हो गई है। तो एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए सावन में ताले वाले महादेव मंदिर की रौनक।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: गुजरात में आज से श्रावण माह का शुभारंभ। सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब, वडनगर में निकली भव्य डमरू यात्रा। दिल्ली के लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस की जबरदस्त तैयारी की गई, फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा कारणों से वाहनों की भी हो रही है सघन जांच। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रामबन में निकली 1400 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा, तो कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान तिरंगा लेकर निकले। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी में बांदा की महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार का मिला बड़ा मौका, आजादी के जश्न के लिए तैयार कर रही है 2 लाख तिरंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: तो देश भर में सावन के रंग बिखरने लगे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक सावन के खूबसूरत रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। उत्तर भारत में सावन आधा बीत चुका है, लेकिन मध्य और दक्षिण भारत में सावन की आज से शुरुआत हो गई। गुजरात में इस पवित्र और पावन शिव महीने की शुरुआत धूमधाम से डमरू यात्रा के साथ हुई।
3: बड़ी संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए। आपको बता दें कि उत्तर भारत पूर्णिमांत चंद्र हिंदू कैलेंडर के फॉलो किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में अमावस्या यानी कि अमांत चंद्र हिंदू पंचांग का पालन किया जाता है। उत्तर भारत में पूर्णिमांत पंचांग फॉलो करने की वजह से महीना पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है, जिस वजह से उत्तर भारत में सावन का महीना आमतौर पर 15 दिन पहले शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में अमावस्या अमांत पंचांग फॉलो किया जाता है, जिसमें महीने की शुरुआत अमावस्या के बाद होती है, लिहाजा दक्षिण भारत में सावन महीना उत्तर भारत की तुलना में 15 दिन बाद से शुरू होता है। मध्य और दक्षिण भारत में सावन शुरू होने से मंदिरों में भक्तों में मेला शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में गंगा के घाट पर सावन के इस महीने में शिव भक्तों का हर दिन तांता लग रहा है। वो यहां से जल भरकर भगवान शिव को अर्पित करने ले जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि ये शिव भक्त केसरिया के अलावा 2 और रंग के वस्त्र धारण कर जल लेने पहुंच रहे हैं।
4: सावन की शिवरात्रि का त्योहार भले ही संपन्न हो चुका है, लेकिन सावन मास अभी चल ही रहा है, इसीलिए भगवान भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए पवित्र नदियों से जल भरने का सिलसिला भी जारी है। यूपी के प्रयागराज में शिव भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और यहां से जल भरकर वो उस स्थान के लिए जा पहुंचे हैं जहां के शिवालय में वो जल अर्पित करेंगे। प्रयागराज में दारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट पर हर दिन बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल भरने पहुंच रहे हैं। इस दौरान शिव भक्त के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। लगातार पहुंच रहे शिव भक्तों से दशाश्वमेध घाट, डमरू वरदान और भगवान शिव और मां पार्वती के जयकारों की गूंज से गुलजार हो रहा है, जहां पूजा अर्चना के साथ ही शिव भक्त उठक बैठक लगाते नजर आते हैं। विशेष बात यह है कि यहां कांवड़िए 3 रंग के कपड़ों में जल भरने पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा केसरिया वस्त्रों में वो दिखते हैं, लेकिन उनके साथ काले और सफेद कपड़ा पहने शिव भक्त भी नजर आते हैं।
5: काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे और बाबा का हमने संपूर्ण वस्त्र धारण किया और हमें भोले बाबा का काशी विश्वनाथ में दर्शन करना है, क्योंकि ये भोले बाबा का प्रिय वस्त्र है, इसलिए हमने काला वस्त्र पहना है।
6: भोले बाबा का कपड़ा है इसलिए हमने भी पहना है।
4: काले कपड़े धारण करने वाले भक्त जहां इस रंग को भगवान शिव का रंग बताते हैं, वहीं सफेद वस्त्र पहनने वाले भक्त इस रंग को शांति का प्रतीक बता रहे हैं।
7: व्हाइट ड्रेस जो है कि ये शांति का प्रतीक है। हम लोग यहाँ भगवान शिव जी की आराधना में आए हैं पूजा जल अर्पित करने के लिए। हम लोग अभी विद्यार्थी हैं, हम लोग की मनोकामना थी कि हम लोग यहाँ पर आए दर्शन करें, भगवान बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाएं, इसी मनोकामना से हम लोग निकले थे।
8: खायागा स्कूल में के व्हाइट ड्रेस हमारा शांति का प्रतीक है, हम इसलिए हम लोगों का कामना यह है कि परिवार में शांति रहे और आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़े।
4: इन शिव भक्तों का ड्रेस कोड भले ही अलग हो, लेकिन तीनों ही रंगों के वस्त्र पहने भक्तों की भावना शिव भक्ति की ही है। सभी अपनी अपनी मनोकामना लेकर गंगाजल भरने प्रयागराज पहुंच रहे हैं, ताकि वो अपने आराध्य के प्रिय महीने में उन्हें जल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: प्रयागराज में भगवान शिव का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसे श्रद्धालु नाथेश्वर नाथ महादेव मंदिर यानी ताले वाले महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर अपनी अनूठी परंपरा की वजह से दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ ही मंदिर परिसर में एक ताला लगाते हैं। मान्यता ये है कि भोलेनाथ उनकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं और इच्छा पूरी होने पर श्रद्धालु दोबारा मंदिर पहुंचकर उसी ताले को खोलते हैं और भगवान शिव का विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं। मंदिर परिसर की दीवारों, जालियों और आसपास के हिस्सों पर लाखों ताले लगे हुए हैं। हर ताला किसी न किसी श्रद्धालु की आस्था, उसके विश्वास और उम्मीद का प्रतीक है। कई श्रद्धालु अपने ताले पर अपना नाम, पता या कोई विशेष पहचान पाते हैं ताकि मनोकामना पूर्ण होने पर वो अपने ताले को आसानी से पहचान सके।
9: बहुत लोग दर्शन करने आ रहे हैं, एकदम अलग सी स्थल है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी अपनी यही मन्नत मानकर हम भी अपना ताला लगाएंगे और जब मन्नत पूरी होगी तो आकर उसको
10: यहाँ मन्नतों के लिए, अपने दुखों के लिए, अपने कष्टों के निवारण हेतु, मतलब जो भी समस्या है उसके लिए लोग आते हैं। बीमारी के लिए, रोजी के लिए, रोजगार के लिए और शादी के लिए, विवाह के लिए, औलाद के लिए, नौकरी के लिए, हर चीज के लिए लोग ताला लगाते हैं और अपने भाग्य का ताला यहाँ खोलते हैं।
11: सावन का महीना चल रहा है और हम इस वक्त एक ऐसे मंदिर में है जब खास मंदिर है, इसे ताले वाले महादेव के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है नाथेश्वर महादेव मंदिर। हमारे पीछे मंदिर है और जहां तक आपकी पूरे मंदिर में नजर जाएगी, ताले ही ताले यहां पर देखने को मिलेंगे। एक दो नहीं, हजार लाख करोड़ ताले यहां पर इस मंदिर में लगाए हुए हैं। यहां पर ये कहा जाता है कि जो लोग अपनी मनोकामनाएं के लिए आते हैं और यहां से ताला खरीदते हैं, इससे नाम लिखा जाता है, इसके बाद इस मंदिर में उसको लगा दिया जाता है और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद यहाँ पर प्रसाद के रूप में उसको चढ़ा दिया जाता है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो ये दुकानदार है, ये बताइए, यहाँ पर लोग आते हैं, ताला लगाते हैं, किस तरह से यहाँ नाम लिखवाते हैं?
12: नाम लिखा जाता है, पहचान के लिए रहता है। फिर अंदर जाएंगे, पंडित जी द्वारा संकल्प होता है, संकल्प करके बांधा जाता है राड में। राड का एक सीरियल नंबर होता है, उसकी फोटो रहती है। जब काम उनका मन्नत पूरा हो जाएगा तो वो खोलना रहता है।
11: अच्छा, कितने ताले लगे होंगे?
12: इसकी कोई गिनती नहीं।
11: देखो, यहाँ पर जो भक्त हैं आते हैं अपनी मन्नतों के लिए, ताले लगाते हैं। ये देखिए, हर तरफ सिर्फ ताले ही ताले आपको दिखाई पड़ेंगे और यहाँ से भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो दिखाई पड़ता है। आप अंदर देख सकते हैं कि महादेव यहाँ पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, ताले लगे हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए भक्त यहाँ पर ताले लगाते हैं। मंदिर भी जाने की कोशिश करेंगे कि पहले अपने कैमरामैन से कहेंगे जाएं, वो शिवलिंग को दिखाएं किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। तो भक्त यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं के लिए ताले यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। तो शिवलिंग यहाँ पर है, भक्त यहाँ पूजा कर रहे हैं, अपने हाथ में ताला लिए हैं, अपनी जो भी मन्नत है उसको लेकर के यहाँ पर आए हैं। और तरफ बाहर हो या अंदर, सिर्फ ताले ही ताले आपको दिखाई पड़ेंगे और सभी के मन्नतों के ताले यहाँ पर लगे हैं। अब जब भोलेनाथ यहाँ पर भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करते हैं, उसके बाद इस ताले को खोला जाता है और यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। तो सभी भक्त यहाँ पर जब आते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी मन्नत होती है और यहाँ पर ताला लगा करके अपनी मन्नतों की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये कहा जाता है कि यहाँ भाग्य के ताले खुलते हैं। तो इस मंदिर में तमाम भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगती है, अपनी मन्नतों का ताला लगाते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाने के बाद यहाँ से उसको निकाला जाता है। प्रयागराज का ये अनोखा मंदिर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
2: नाग पंचमी से पहले मसूरी में नाग देवता की पालकी निकाली गई। मसूरी के भट्टा गांव में ये परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पालकी यात्रा के बाद नाग पंचमी के दिन नाग देवता के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा।
13: पा... पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ जब निकली नाग देवता की पालकी तो आस्था के रंग में रंगी संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिली। नाग पंचमी से पहले मसूरी के भट्टा गांव में नाग देवता की डोली क्यारकुली नाग देवता मंदिर के लिए रवाना हुई। बारिश के मौसम के बावजूद इस डोली यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नाग देवता के सम्मान में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। ढोल और दमाओं की थाप पर नाग देवता के जयकारों से वादियां गूंज उठी। मसूरी में नाग देवता की डोली यात्रा की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि नाग देवता क्यारकुली भट्टा क्षेत्र के रक्षक और ग्राम देवता हैं। ये डोली यात्रा क्यारकुली में नाग देवता के मंदिर तक जाती है जो करीब 500 साल पुराना है। नाग पंचमी से पहले होने वाली ये डोली यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि इस क्षेत्र की करीब सदियों पुरानी लोक आस्था और परंपरा का अभिन्न हिस्सा भी है। इस डोली यात्रा के साथ ही क्यारकुली नाग देवता के मंदिर में भागवत कथा का शुभारंभ भी हो गया। इस भागवत कथा का समापन 17 अगस्त को नाग पंचमी के शुभ अवसर पर होगा। इसके बाद नाग पंचमी के दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ मेले का आयोजन भी किया जाएगा। बदलते दौर में ये डोली यात्रा पहाड़ों के लोक आस्था और संस्कृति को जीवंत रखने का काम कर रही है। इस यात्रा में बड़े बुजुर्गों के साथ बड़ी संख्या में नई पीढ़ी का शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा की जड़ें यहाँ लोगों के दिलों की गहराइयों में बसी है। मसूरी से सागर शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
2: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पद के लिए चयन के लिए इंटरव्यूज किए जा चुके हैं। देशभर से सीईओ पद के लिए 5300 आवेदन आए थे और इंटरव्यू के लिए 18 उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया था।
3: हालांकि उम्मीदवारों का इंटरव्यू उनके अनुभव, धार्मिक कार्य, भगवान राम में आस्था और पारिवारिक बैकग्राउंड के आधार पर किया गया। अब इनमें से 3 नाम को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिनमें से ट्रस्ट अपनी बैठक में किसी एक नाम पर मुहर लगाएगा। ट्रस्ट की यह बैठक 2 सितंबर को अयोध्या में होगी और सीईओ के नाम की घोषणा 3 सितंबर को की जाएगी।

0: भगवान राम में आस्था है? जनेऊ पहनते हैं या नहीं? भोजन शाकाहारी करते हैं? और हिंदू रीति रिवाजों की जानकारी है या नहीं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे अयोध्या में राम मंदिर का सीईओ बनने पहुंचे उम्मीदवारों का सामना हुआ। राम मंदिर के सीईओ का इंटरव्यू देकर वापस आते पूर्व आईएएस अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा का नाम भी चर्चा में है, जो अयोध्या के जिलाधिकारी रह चुके हैं। योगेश्वर राम मिश्रा के अलावा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे पूर्व आईपीएस राजेश पांडे भी इंटरव्यू देने पहुंचे थे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए कल यानी मंगलवार से इंटरव्यू शुरू हो गए। हर आवेदक से लगभग एक घंटे से अधिक समय तक सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सवालों के जरिए उनकी प्रभु राम लला के प्रति आस्था परखी जा रही है। देश भर से आए 5300 से ज्यादा आवेदकों में से 18 योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। पहले दिन 8 लोगों का इंटरव्यू लिया जा चुका है। इनमें 3 पूर्व आईएएस अफसर, 1 पूर्व आईपीएस अफसर और 4 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल थे।
1: राम मंदिर के नए सीईओ के पद के लिए साक्षात्कार चल रहा है, आज दूसरा दिन है। कई चेहरे, कई नाम, इन लोगों ने अभी तक अपना इंटरव्यू दे दिया है और जो संख्या है वो तकरीबन 18 से 24 लोग जो शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं उनका साक्षात्कार हो रहा है। जिन नामों की चर्चा है उसमें राजेश पांडे उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। इसके अलावा योगेश्वर राम मिश्रा हैं जो कि डीएम रह चुके हैं मिर्जापुर के, उनको उनके पास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अनुभव है। परेश सक्सेना हैं, दिनेश चंद्र हैं, ऐसे कई नाम हैं जो कहीं ना कहीं मंदिरों के प्रबंधन से जुड़े लोग हैं। ऐसे लोग इंटरव्यूज देने आ रहे हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक इस पद के लिए ज़्यादातर जो पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं या फिर जो रिटायर्ड नौकरशाह हैं, ऐसे लोगों को तवज्जो मिल सकती है। अगर उनका काल, उनका कामकाज बेदाग रहा है, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता है।
0: उम्मीदवारों से इंटरव्यू से पहले लगभग 3 दर्जन सवालों वाला ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरवाया गया। इंटरव्यू में उम्मीदवारों से धार्मिक संस्थानों के संचालन के पुराने अनुभव और मंदिर प्रबंधन को लेकर उनके विजन से जुड़े सवाल भी पूछे गए। इंटरव्यू में कैंडिडेट से राम मंदिर और भगवान श्री राम के लिए आस्था की गहराई को भी परखा गया। उनके सीवी में दिए गए डिटेल्स के बारे में पूछा गया और उनकी पसंद नापसंद को लेकर भी सवाल पूछे गए। उम्मीदवारों से पूछा गया कि क्या वो शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी भोजन करते हैं। इसके अलावा शराब पीने और हिंदू धार्मिक परंपराओं के हिसाब से पोशाक पहनने में सहज होने से जुड़े सवाल भी पूछे गए। उम्मीदवारों से उनके परिवार और बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन को लेकर भी जानकारी मांगी गई।
1: कल भी इंटरव्यूज हुए हैं, तकरीबन 12 लोगों के आसपास, 1 दर्जन लोगों ने कल इंटरव्यू दिया है। आज भी लगभग दर्जन भर के आसपास इंटरव्यूज होंगे। चर्चा थी कि सिर्फ 18 लोग शॉर्टलिस्टेड हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि लगभग 24 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जिनका कि इंटरव्यू होना है। आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का ये इंटरव्यू एक एक जो व्यक्ति हैं उन्हें देना पड़ रहा है। और कई ऐसे सवाल इसमें पूछे गए हैं कि आप सनातन में कितना यकीन रखते हैं, किस तरीके का आपका परिवार है, संस्कार कैसे हैं, जो वेज नॉन वेज क्या अब आप खाते हैं या नहीं खाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे लेकर के एक गूगल ड्राइव का जो फॉर्म है वो फिलअप किया गया है। और ज़्यादातर ऐसे लोग जो या तो मंदिरों से जुड़े रहे हैं, जैसे ऐसे नौकरशाह, ऐसे अधिकारी जिनका कुछ ना कुछ अनुभव मंदिरों को लेकर रहा है, ऐसे लोगों के इंटरव्यूज हो रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोई पुराना नौकरशाह, खास करके पीसीएस से निकल कर आया हुआ या फिर आर्मी बैकग्राउंड के लोग को वरीयता दी जा सकती है। 2 सितंबर को जब बैठक होगी राम मंदिर ट्रस्ट की, तो उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि जितने लोगों के इंटरव्यूज हुए हैं उसमें से कौन राम मंदिर के इस सीईओ पद के लिए चुना जाएगा, कौन इसके काबिल है।
0: नया सीईओ राम मंदिर ट्रस्ट का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होगा और उसके जिम्मे प्रशासनिक, वित्तीय, कानूनी, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं से जुड़े बड़े फैसले होंगे। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने सीईओ नियुक्त करने का फैसला किया है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए 3 सदस्यीय विशेष समिति बनाई गई है। इस समिति में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश हावड़े और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी शामिल हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ के लिए इंटरव्यू आज खत्म हो गए। अब इस इंटरव्यू के बाद समिति सबसे योग्य 3 नामों का पैनल तैयार कर ट्रस्ट को सौंपेगी। इस पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्टी विचार विमर्श करके सीईओ का चयन करेंगे। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुजरात के बनासकांठा जिले का दीसा शहर जल्द ही वन्यजीव पर्यटन के नक्शे पर एक ऐतिहासिक मुस्कान हासिल करने जा रहा है। दरअसल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की ओर से यहां पर एशिया के पहले डेजर्ट थीम वाला ड्राइव थ्रू नाइट सफारी को मंजूरी मिल गई है, जिसके साथ ही जूलॉजिकल पार्क बनने का रास्ता साफ हो गया है। यह अनूठा प्रोजेक्ट न केवल राज्य बल्कि पूरे महाद्वीप के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। इस पार्क दिशा में लगभग 103 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 542 करोड़ से ज्यादा तय की गई है। इस पार्क में 83 प्रजातियों के लगभग 2700 देसी और विदेशी जानवरों और पक्षियों को रखा जाएगा। इस पूरे परिसर का मुख्य आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नाइट सफारी होगी, जहां पर पर्यटक रात के समय वन्य जीवों की गतिविधियों को करीब से देख सकेंगे। इसके अलावा यहां दिन के लिए एक अलग चिड़ियाघर और 5 विशेष नाइट सफारी बाड़े भी बनाए जाएंगे।

0: लंच टाइम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामे का डबल डोज। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: चलिए ये न्यूज आपको दिखाते हैं। देश में बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है, काम की इस रफ्तार से जुड़ा हुआ एक वीडियो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। अगले साल 15 अगस्त तक बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है।
7: इस वीडियो ने पटरियों पर रफ्तार की उम्मीदों को पंख लगा दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश की पहली बुलेट ट्रेन की तैयारियों का एक वीडियो शेयर किया। बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत अगले साल 15 अगस्त को करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद रूट पर दौड़ेगी। इस रूट पर काम भी बुलेट की रफ्तार से चल रहा है और ये वीडियो इसी की तस्दीक कर रहा है। वीडियो में गुजरात के नवसारी में बुलेट ट्रेन रूट पर चल रहे काम को दिखाया गया है। वीडियो में इंजीनियर और कर्मचारी आधुनिक मशीनों के जरिए ट्रैक पर बिजली के सिस्टम लगाते हुए दिख रहे हैं। रेल मंत्री ने जानकारी दी है कि ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर जिस काम की झलक रेल मंत्री ने दिखाई है, उसमें नवसारी में 1125 किलोमीटर ट्रैक पर काम हो रहा है। इस ट्रैक पर 22,000 ओवरहेड इक्विपमेंट मास्टर लगाए गए हैं। ओवरहेड वायर असेंबली के लिए 25,700 कैंटिलीवर फीट लगाए जा रहे हैं। ये असेंबली ही रफ्तार के लिए बुलेट ट्रेन को बिजली सप्लाई करती है। सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत अगले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हो जाएगी। इस रूट पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इस ट्रेन का सबसे ज्यादा फायदा मुंबई अहमदाबाद रूट के मुसाफिरों को होगा। इन दो शहरों के बीच सफर में फिलहाल 6 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने से ये दूरी महज 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: तो गुड न्यूज ये है कि अब बुलेट ट्रेन का सपना साकार होने लगा है। उम्मीद है कि अगले साल इन्हीं दिनों में बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच में दौड़ने लगेगी। इसी लक्ष्य के साथ निर्माण कार्य भी जारी है।
8: दरअसल इस ट्रेन के लिए मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। गुड न्यूज ये है कि निर्माण कार्य बुलेट की रफ्तार से जारी है।
6: इस कॉरिडोर की लंबाई 508 किलोमीटर है। इस रूट पर ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ दौड़ेगी।
8: तो देश की पहली बुलेट ट्रेन का निर्माण बेंगलुरु की BEML कंपनी में किया जा रहा है और बुलेट ट्रेन परियोजना अगले साल अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद भी की जा रही है। तो एक अच्छी खबर है सभी के लिए। और इसी के साथ लंच टाइम में आज के लिए इन तमाम खबरों के बाद बस इतना ही।
6: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: गुजरात के डीसा में बनेगा एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला नाइट सफारी और जू, लगभग 2700 जानवर और 83 प्रजातियों का होगा बसेरा। दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की जबरदस्त तैयारी की गई, फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा कारणों से वाहनों की भी हो रही है सघन जांच। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रामबन में निकली 1400 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा, तो कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान तिरंगा लेकर निकले। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी के बांदा में महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार का मिला बड़ा मौका, आजादी के जश्न के लिए तैयार कर रही हैं 2,00,000 तिरंगे। रायपुर में आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं का रैंप पर जलवा, बदलाव की लिखी कहानी, कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में रैंप वॉक।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: दिल्ली के लाल किले के प्राचीर पर एक बार फिर दिखी देश की आन बान और शान। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। रिहर्सल में सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, एनसीसी के रेड्स हुए शामिल। देश भर के रंग में रंगा हुआ नजर आया लाल किला परिसर। फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा देश के जवानों का जोश। पूरे जोश में कदम ताल करते हुए नजर आए जवान। मार्चिंग बैंड ने बजाई सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा।

से बरसाए गए फूल, शनिवार को आजादी के पर्व को मनाने के लिए देश भर से जुटेंगे लोग। स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कल लाल किले के आसपास 7 सड़कें बंद, कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी, दिल्ली में 20,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। लाल किले के आसपास 1,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमें कर रही हैं निगरानी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा घेरा बनाया गया, बॉर्डर पर हो रही है सघन चेकिंग। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई, आरपीएफ और जीआरपी ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड से प्लेटफॉर्म और परिसर की जांच। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी की गई, फुल ड्रेस रिहर्सल। इस साल समारोह में छत्तीसगढ़ महिला पुलिस बल का बैक पाइपर बैंड दस्ता होगा आकर्षण का मुख्य केंद्र, सीएम भूपेश बघेल लेंगे परेड की सलामी। रिहर्सल के दौरान घुड़सवारों ने दिखाए शानदार करतब, डॉग स्क्वाड ने भी खींचा सभी का ध्यान। जम्मू में भी स्वतंत्रता दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, पूरे जोश में नजर आए जवान। कलाकारों ने पेश किए शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, दिखी कश्मीरी संस्कृति की खूबसूरत झलक।

हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत लखनऊ में बनाए जा रहे हैं लाखों तिरंगे। राष्ट्रीय ध्वज बनाने में दिन रात जुटी हैं महिलाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में लहराए ये तिरंगे, घर घर गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। बांदा में बड़े स्तर पर बनाए जा रहे हैं तिरंगे झंडे, महिलाओं द्वारा 2 लाख से ज्यादा झंडे बनाने का लक्ष्य है। गांव प्रधान और सचिव वितरित करेंगे झंडे, सरकारी कार्यालयों में भी लगाए जाएंगे ये तिरंगे। कुलगाम में आयोजित की गई विशाल तिरंगा रैली, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कई सुरक्षा जवानों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ की बस्तर में तिरंगा रैली की शुरुआत, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तिरंगा रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में बीजेपी नेता शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में तिरंगा रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। गांधरबल की सड़कें देशभक्तों से गुलजार हुई, हर गली हर मोहल्ले में देशभक्ति के गूंजे तराने। अनंतनाग में मेगा तिरंगा रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। रामबन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति में लीन नजर आया हर कोना, लोगों ने एकजुटता का संदेश दिया। पुंछ में मदरसा छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, छात्रों ने लगाए भारत माता के जयकारे। गया की सड़कें हुई देशभक्तों से गुलजार, हर गली हर मोहल्ले में देशभक्ति के गूंजे तराने। तिरंगा रैली में लोगों को दिखा जबरदस्त उत्साह, रैली के दौरान लोगों ने लगाए देशभक्ति के नारे। आंध्र प्रदेश के एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिला प्रशासन ने जिला कलेक्टर कार्यालय से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक निकाली रैली। कानपुर में वीर सम्मान अभियान, स्वतंत्रता दिवस से पहले पूर्व सैनिकों का सम्मान, उनकी वीर गाथाएं सोशल मीडिया पर भी होंगी साझा। मध्य प्रदेश खंडवा से आई देशभक्ति की शानदार तस्वीरें, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। अनोखी रैली में तिरंगे से सजी 150 नावें शामिल हुई, नर्मदा की लहरों पर दिखा देशभक्ति का नजारा, नाव तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बिलासपुर में सीएम सुक्खू ने दी सौगात, मुख्यमंत्री मत्स्यकर सम्मान निधि योजना के तहत 1,500 मछुआरों को 52 लाख बांटे। गुजरात में आज से पवित्र सावन के महीने की शुरुआत, राज्य भर के शिवालयों में लगी भक्तों की लंबी कतार। गुजरात की डमरू यात्रा से सावन महीने का आगाज हुआ, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल। गुजरात के गिर सोमनाथ मंदिर में सावन के पहले दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। राजकोट में सावन के पहले दिन मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा की। सावन के पहले दिन भक्तों ने बेलपत्र गंगा जल से किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। कांवड़ यात्रा में भी दिख रहे हैं देशभक्ति के रंग, सबसे आगे तिरंगा लिए विशाल महाकाल महादेव की प्रतिमा लेकर आगे बढ़ रहे हैं कांवड़िए। छोटे बच्चों को कांवड़ में बिठाकर पवित्र यात्रा पर निकले हैं शिव भक्त, बोलबम के उद्घोष के साथ जारी है यात्रा।
गणेश चतुर्थी के नजदीक आते ही तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में भगवान गणेश की सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाने का काम रफ्तार से जारी। बाजार में इन मूर्तियों की खास डिमांड है। आधे फीट से लेकर 10 फीट तक की मूर्तियां बना रहे हैं कारीगर। अलग अलग मोहक मुद्राओं से तैयार की जा रही हैं मूर्तियां। मूर्तियों को सजाने के लिए प्राकृतिक और इको फ्रेंडली रंगों का किया जा रहा है इस्तेमाल। डिंडीगुल के साथ साथ मदुरई, त्रिची और करूर जैसे पड़ोसी जिलों में भी भारी मांग। रायपुर में आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली महिलाओं ने भव्य स्वदेशी फैशन शो में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। पेशेवर मॉडल्स के साथ रैंप वॉक करती हुई नजर आई आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली महिलाएं। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बढ़ाया मनोबल।

0: रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में स्वदेशी फैशन शो की थीम के साथ हुआ ये शो। स्थानीय कोसा सिल्क और पारंपरिक हैंडलूम कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी महिलाएं। IRCTC लॉन्च कर रहा है बेहतरीन हवाई टूर पैकेज। सितंबर के महीने में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर सहित इन पर्यटक स्थलों का कर सकेंगे भ्रमण। 20 अगस्त से शुरू होगा 4 रात और 5 दिन का ये पैकेज। 42,500 होगा प्रति व्यक्ति किराया। गोपालगंज पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, इटावे के दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। कटिहार की छात्रा लक्ष्मी ने पेश की हिम्मत की नई मिसाल। दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद पैरों से लेकर कर रही हैं पढ़ाई। 4th कक्षा में पढ़ने वाली लक्ष्मी आम बच्चों की तरह ही करती हैं काम। बड़े होकर शिक्षक बनने की इच्छा है। तेलंगाना में बाढ़ के बीच नजर आई एक मानवीय तस्वीर। कंधों पर स्ट्रेचर उठाकर गर्भवती महिला को पार कराई नदी। भारी बारिश के कारण टूटा सड़क संपर्क, जिसके बाद ग्रामीणों ने 7 महीने की गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल। कल बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी 2 बड़ी फिल्में। बंटवारा 1947 में सनी देओल के एक्शन को आवारापन 2 में अपने रोमांस से टक्कर देंगे इमरान हाशमी। पीरियड ड्रामा फिल्म है बंटवारा 1947। फिल्म के निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी और इसे आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया।
1: हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का।
2: खुदा के लिए यहाँ से निकलिए।
0: सनी देओल एक बार फिर अपना एक्शन अवतार दिखाएंगे। उनके साथ प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे।
3: मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है।
0: दूसरी तरफ देखने को मिलेगा इमरान हाशमी का जुनूनी अवतार। आवारापन 2 में एक बार फिर से रोमांटिक रोल में दिखेंगे इमरान। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन का सीक्वल है ये फिल्म। फिल्म कई पुराने गाने भी रिक्रिएट करती है। वही साउथ के स्टार सूर्या भी अपना चार्म फैलाने के लिए तैयार हैं। फैमिली ड्रामा फिल्म विश्वनाथ एंड सन्स होगी रिलीज। फिल्म में ममता बैजू, रवीना टंडन, राधिका सरत कुमार जैसे स्टार्स शामिल। थिएटर के बाद अब OTT पर रिलीज के लिए तैयार है कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता। 14 अगस्त को Z5 पर रिलीज होगी। 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अब कल से OTT पर कमाल करेगी कॉकटेल 2। नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी OTT पर होगी स्ट्रीम। इस साल मई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी ये फिल्म। थ्रिलर फिल्म आरोपी भी OTT रिलीज के लिए तैयार है। हिंदी, मलयालम और तमिल भाषाओं में उपलब्ध होगी फिल्म।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामे का डबल डोज। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: देश में बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। काम की इस रफ्तार से जुड़ा एक वीडियो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। अगले साल 15 अगस्त तक बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है।
2: इस वीडियो ने पटरियों पर रफ्तार की उम्मीदों को पंख लगा दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश की पहली बुलेट ट्रेन की तैयारियों का एक वीडियो शेयर किया। बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत अगले साल 15 अगस्त को करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद रूट पर दौड़ेगी। इस रूट पर काम भी बुलेट की रफ्तार से चल रहा है और ये वीडियो इसी की तस्दीक कर रहा है। वीडियो में गुजरात के नवसारी में बुलेट ट्रेन रूट पर चल रहे काम को दिखाया गया है। वीडियो में इंजीनियर और कर्मचारी आधुनिक मशीनों के जरिए ट्रैक पर बिजली के सिस्टम लगाते हुए दिख रहे हैं। रेल मंत्री ने जानकारी दी है कि ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर जिस काम की झलक रेल मंत्री ने दिखाई है उसमें नवसारी में 1125 किलोमीटर ट्रैक पर काम हो रहा है। इस ट्रैक पर 22,000 ओवरहेड इक्विपमेंट मास्टर लगाए गए हैं। ओवरहेड वायर असेंबली के लिए 25,700 कैंटिलीवर फीट लगाए जा रहे हैं। ये असेंबली ही रफ्तार के लिए बुलेट ट्रेन को बिजली सप्लाई करती है। सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत अगले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हो जाएगी। इस रूट पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इस ट्रेन का सबसे ज्यादा फायदा मुंबई अहमदाबाद रूट के मुसाफिरों को होगा। इन दो शहरों के बीच सफर में फिलहाल 6 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने से ये दूरी महज 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: गुजरात के डीसा में बनेगा एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला नाइट सफारी और जू, लगभग 2700 जानवर और 83 प्रजातियों का होगा बसेरा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रामबन में निकली 1400 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा, कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान तिरंगा लेकर निकले। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी में बांदा की महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार का मिला बड़ा मौका, आजादी के जश्न के लिए तैयार कर रही हैं 2,00,000 तिरंगे। रायपुर में आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं का रैंप पर जलवा, बदलाव की लिखी कहानी, कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में रैंप पर वॉक किया। गुजरात में आज से श्रावण मास का शुभारंभ, सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, वडनगर में निकली भव्य डमरू यात्रा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और बेटियां यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। जब तेज धूप होती है ना तो एक सही पेयर ऑफ सनग्लासेस सिर्फ हमें प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि हमारे लुक को भी बना देता है स्टाइलिश। ये जो सनग्लासेस है ना, ये सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करने का जरिया नहीं है बल्कि आजकल तो ये हैं एक फैशन स्टेटमेंट। और देखिए इनमें है कितनी सारी वैरायटी, जैसे कि राउंड, रेक्टेंगुलर, ओवल, ओवरसाइज, एविएटर, कैट आई, जो हर फेस टाइप और हर पर्सनालिटी के लिए एक अलग स्टाइल है। तो आज तो सनग्लासेस के आसपास ही हम करेंगे एंटरटेनमेंट की बातें। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप सनग्लासेस खरीदने जाएं सिर्फ फैशन को ही ना देखें बल्कि यूवी प्रोटेक्शन और उसके साथ साथ उसका फिट कैसा है आपके चेहरे पर उसे भी जरूर चेक करें। तो चलिए फिर शेयर करेंगे आज आपके साथ ढेर सारी टिप्स स्पेशली सनग्लासेस को लेकर और उसके साथ साथ आई केयर भी। शुरू करते हैं हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
4: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, नयनिका पर फिर लगेंगे इल्जाम, नयनिका देगी करारा जवाब।
5: जानना चाहती थी तो यदि सच है, ये सच है कि मैं शान से प्यार करती हूँ।
4: सीरियल इश्क जुनूनी में शुरू होगा बंदूक ड्रामा, रूहानी मारेगी गौतम को थप्पड़। घर से भागेगा विहान, घर वाले होंगे परेशान।
6: सामने आ जाना।
4: ईशा और सूरज के घर में आएंगी खुशियाँ, कहानी में आएगा नया मोड़।
7: केसरिया तेरा इश्क है पिया।
4: सावन के खास मौके पर रुचिता और निहाल करेंगे डांस, दिखेगी उनकी शिव भक्ति।
7: सारा तेरी फिक्र में प्यारे प्यारे लम्हे, प्यारी प्यारी बातें।
4: और 108 बेस हॉस्पिटल पूरी में पूरी के लॉन्च पे लगेगा सितारों का मेला, दिखेंगे कलर्स टीवी के परिवार, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: देखिए, सही पेयर ऑफ सनग्लासेस ना हमारे चेहरे को और भी अट्रैक्टिव बना देते हैं, लेकिन आप ऊपर से कितना भी खूबसूरत दिखें, अगर आपका मन ही सुंदर नहीं है तो फिर क्या फायदा। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको ऐसे ही शो के सेट पर जिसके तो नाम में ही सुंदरता है, मन सुंदर। तो क्या कुछ हो रहा है नाहर और रूही की इस कहानी में आज, लेट्स चेक इट आउट।
1: केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं।
2: शिव भक्ति में लीन रुचिता और निहाल, शिव जी ने बना दी जोड़ी।
1: खैर मनाऊं,
2: दिखा रुचिता और निहाल का नच।
1: पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी।
2: दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में सावन का त्योहार मनाया जा रहा है और निहाल के घर में रखी है शिव जी की ये खास पूजा, जिसमें खास मेहमान बनकर आई है रुचिता और जानवी। लेकिन यहाँ स्टेज पर तो डांस करने के लिए पहुँच गई है रुचिता, और देखिए कैसे शिव जी की भक्ति में ये लीन होकर कर रही है डांस।

0: घर से।
1: ऐसे में स्टेज पर रुचिता के साथ डांस करने के लिए पहुंच जाते हैं निहाल।
2: सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी।
1: भाई पहले तो रुचिता घबरा जाती है, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे की ताल से ताल मिलाते हैं और देखिए स्टेज पर कैसे समा ही बंध गया जब रुचिता और निहाल ने एक साथ डांस किया।

असल में निहाल ने भांग पी ली है और उसी नशे में वो स्टेज पर पहुंचते हैं रुचिता संग डांस करने के लिए। कभी डमरू लेकर तो कभी ये चुनरी लेकर देखिए कैसे निहाल मग्न होकर डांस कर रहे हैं, तो वहीं रुचिता भी अपने इस नच में हो गई है दीवानी।

0: एकदम क्रेजी सा सीन चल रहा है जहाँ पे मैं डांस कर रही हूँ. एकदम एकदम ऐसा डिवोशनल डांस, शिव जी का डांस है जो. एंड आई एम सो मच इन टू दैट डांस कि एकदम क्रेजी मेरे को मज़ा आ गया डांस करके एकदम. हाँ, सो बेसिकली वो ऐसा एक बैक थोड़ा सा स्टोरी है कि आई कैन रिवील दैट स्टोरी, बट ही हैड भांग. सो उसके वजह से ही इज़ थोड़ा नशे में. दैट्स वाई फिर डांस होने के बाद वो ऐसे डिसबैलेंस हो जाता है, इसलिए फिर मैं जाके पकड़ती हूँ. फिर बाद में मेरे को दिख जाता है कि दादी वहाँ पे बैठी है जिनसे बहुत ऐसा टॉर्चर मिला है मुझे, तो उनको देख के मैं डर जाती हूँ, इसलिए फिर वो एंडिंग में थोड़ा सा वो डर था.
1: तो भाई रब ने तो इनकी जोड़ी बना दी है, लेकिन क्या वाकई इनका प्यार अंजाम तक पहुंचेगा ये देखना होगा, क्योंकि यही तो है सीरियल की कहानी.
2: निहाल बेटा कहाँ है, जल्दी आ.
1: मुंबई से कैमरामैन सिद्धेश आजगांवकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
3: और हाँ सुनो, उस दिन के लिए सॉरी, मैंने तुम्हें चोर समझा.
4: इन्होंने तो मुझे सॉरी कहा, मुझे तो लगा था कि वो मुझे डांटेंगे.
5: डार्क शेड्स, इंटेंस नजरें और थोड़ा सा एटीट्यूड. अगर प्यार का कोई सनग्लासेस वाला लुक होता ना, तो उसका नाम होता इश्क जुनूनी. तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको गुरु और रूहानी के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में. आज इनकी कहानी भी लेकर आती है हमारे लिए एंटरटेनमेंट जोरदार, क्योंकि कुछ ना कुछ कहानी में ऐसा होता ही रहता है जो लेकर आता है बदलाव. लेट्स चेक इट आउट.
1: गौतम का बंदूक तमाशा. रूहानी ने मारा गौतम को चाटा. रूहानी ने शादी से किया इनकार, लगाई गुरु को पुकार. दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज घर की सभी औरतें डरी सहमी सी हैं, क्योंकि गौतम बंदूक की नोक पर रूहानी से शादी करना चाहता है. और तो और, उसने दादी को काम पर लगा रखा है जहां पर दादी रूहानी के लिए चुन्नी तैयार कर रही है. लेकिन दादी आदत से मजबूर गौतम को सुनाने लगती है, वो भी खरी खोटी. ऐसे में गौतम बर्दाश्त नहीं कर पाता और दादी के साथ ही बदतमीजी करना शुरू कर देता है.
6: सुल्तानपुर की बड़ी अम्मा अपनी औकात भूल गई है. अपनी आंखें खोल बुढ़िया और देख, अब न तो ये कोठी तेरी है और ना ये सिंहासन. ये कोठी मेरी है और यहां हुक्म भी मेरा चलेगा. उठ उठ, प्रवचन देने प्रवचन देने चल.
7: सोच है तू, सत्य है तू, दुश्मन का काल है तू, आड़ है तू.
6: और एक अच्छी नौकरानी की तरह जो काम बोला है ना वो करो, वरना
1: भाई. दादी तो डर जाती है, घर की औरतें भी डरी सहमी सी हैं, लेकिन रूहानी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और देखिए कैसे गुस्से में आकर वो गौतम को चाटा जड़ देती है और तो और कर देती है शादी से इनकार भी.

0: ये संस्कार है तुम्हारे, ये मर्यादा है तुम्हारी। हाँ, तुम्हारी माँ और दादी की उम्र के औरत के साथ तुम ये सलूकी करते हो? तुम्हारे झूठे अहंकार ना और तुम्हारी परवरिश साफ साफ दिख रही है यहाँ पर। औरत केसर करना तो तुम्हें आता ही नहीं। तो शौक है ना तुम्हें धमकियां देने का? तो एक धमकी मैं भी तुम्हें देती, नहीं करूंगी मैं तुमसे शादी। जो करना है कर। तुम्हारे मनसूबे ना कभी पूरे नहीं होंगे।
1: रूहानी का ये फैसला सुनकर गौतम को हंसी आने लगती है, क्योंकि उसने ऐसी प्लानिंग की है कि रूहानी चाहकर भी शादी से इनकार नहीं करती। तभी तो देखिए कैसे मुस्कुराते हुए गौतम ने अपना मोबाइल निकाला और रूहानी को दिखा दिया कि घर के बाहर त्रिपुरारी ने घर के सभी आदमियों को अपना बंधक बना रखा है, वो भी बंदूक की नोक पर। ये देख रूहानी डर जाती है। इतना ही नहीं, गौतम तो ये भी बताता है कि गुरु उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा, लेकिन रूहानी को पूरा यकीन है कि उसका गुरु जरूर आएगा।
2: मुझे अंदाजा भी नहीं है कि तुम यहाँ उसी के घर में।
0: रूहानी तकलीफ में और गुरु ने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता गौतम से। मैं आवाज और मेरी आवाज माता रानी गुरु तक पहुंचाएगी। धर्म और अधर्म की लड़ाई में जीत हमेशा धर्म की होती, और मेरा गुरु जरूर आएगा। तुम बस देखना गौतम से।
1: अब गौतम भले ही जबरन रूहानी को ले गया है बिहार जाने के लिए, पर उसे ये नहीं पता कि रूहानी का गुरु जल्द आने वाला है उसकी बैंड बजाने के लिए।
3: रूहानी को संभाल, मैं यहाँ संभालता हूँ।
4: गुरु मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ।
5: नहीं भैया, गौतम सिंह की हैवानियत को सिर्फ हम समझते हैं, इसलिए अकेले जाएंगे।
3: अगर तुमने शादी करने में कोई नाटक किया ना तो मेरे एक इशारे पे गुरु चौधरी खत्म।
5: आपका चीता ही जीतेगा पुष्पी मौसी, हम आ रहे कंपाउंडर।
1: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
6: कभी सनग्लासेस फैशन एक्सेसरी होते हैं तो कभी होते हैं ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी। उसी तरह ये जो हमारे पास एंटरटेनमेंट का मिक्स है ना, इसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब आप पूछेंगे कैसे? वेल, तो आप भी हो जाएं हमारी एयरलाइन पर सवार, लेकर चलेंगे हम आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर। गेट सेट गो।
1: जी टीवी के सीरियल तो ही रे दिल में आज वृंदा का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि स्वाति उसके गांव चली गई है और वहां जाकर उसे सच का पता भी चलने वाला है। और यहां दूसरी तरफ वृंदा को भी गिल्ट हो रहा है कि उसने स्वाति के साथ काफी गलत किया है। ऐसे में वो देखिए कैसे फूट फूट कर रो तो रही है, साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रही है।
7: ये सब जानते हुए भी मैं इतना बड़ा पाप, मैं ये बता देती हूँ कुछ नहीं हो पाएगा। आप मुझे माफ कर दो, बट आप तो मेरी जिंदगी के बारे में सब जानते हो। मैं माँ सब आपको सब पता है कि मैं क्यों कह रही थी। बस मैम और स्वाति दीदी के बीच का रिश्ता ठीक हो जाए उसके लिए, पर वो दीदी ने मेरी मेरी माँ की जान बचाई है। मैं उन्हें और दुख नहीं दे सकती। इतना इतना इतना हाथ मुझे किसी ने नहीं दिया। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं ये नहीं कर सकती। बस आप स्वाति दीदी का ख्याल रखना। मैं माँ
4: अक्षय भी वृंदा को पता चल रहा है कि स्वाति ने बाकी जानी चाहिए, मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है किसी ऐसे इंसान को जो बहुत मासूम है ऐसा प्ले करना कि वो बहुत रफ टफ है और उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं है. और एज इफ अगर मैं अपनी मम्मा से गुस्सा हूँ तो मैं, मतलब आप हो ही नहीं सकते अपनी मम्मा से गुस्सा, है ना, आप दिख रूड बन के दिखा ही नहीं सकते. तो वही चीज़ होती है. तो उसके पीछे भी वृंदा का कितना स्ट्रगल चल रहा होगा, वो सब चल रहा होगा, वो इतना रूड थी. माधवी जी ने बोला था कि तुम कुछ ऐसा करो कि स्वाति खुद ही तुमसे नफरत करने लग जाए और तुम्हें घर से बाहर निकाल दे, तो मेरे और स्वाति के बीच में सब ठीक हो जाएगा. तो वृंदा की मासूमियत की वजह से वो मान जाती है ये बात और वो कोशिश करती है. माधवी उसे सब सिखाती थी ऐसे ऐसे बोलो ये सब करो, कोशिश करती है पूरी कि वो ये सब बोले और ऐसे करे. और फिर इन द एंड ये होता है कि उसे एट अ पॉइंट ये पता चलता है कि स्वाति ने बा की जान बचाई है. अब समझो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो इंसान मेरे लिए इतना कर रहा है, अपने परिवार से लड़ रहा है, मुझे अपनी छोटी बहन बोल रहा है बार बार, मेरी बा की जान बचाई है, आप समझ लो. तो फिर वो होता ना कि आप खुद को ऐसे एकदम रफ टफ करके देखते हो, फिर एकदम से आप बिखर जाते हो, खुल जाते हो अपने अकेले रूम में आके. बस ये वही वाला सीन था.
1: इन्हीं सब ड्रामों के बीच जहाँ वृंदा काफी उदास है तो वहीं वो लेती है फैसला घर छोड़कर जाने का. लेकिन तभी आती है खबर कि स्वाति का एक्सीडेंट हो गया है, जिस बात से वृंदा काफी परेशान हो गई है.
8: मैं तो कब की अम्बिमा के पास पहुंच गई होगी.
7: स्वाति दीदी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं इतनी पत्थर दे नहीं हूँ, उससे नहीं हो पाएगा, मैं उन्हें और दुख नहीं दे सकती, मैं यहाँ से चली जाऊंगी.
9: क्या बोल रहे हैं आप, स्वाति का एक्सीडेंट हो गया.
1: तो भाई अब देखना होगा कि वृंदा क्या करती है और कैसे स्वाति को बचाती है. जी टीवी के सीरियल जगधात्री में जगधात्री किसी काम से बाहर जा रही है, लेकिन इसमें अड़ंगा लगाने के लिए पहुंच गई है तपस्या, जो नहीं चाहती कि जगधात्री घर से बाहर जाए. ऐसे में देखिए कैसे दोनों बहनों के बीच छीना झपटी भी हो रही है, क्योंकि जगधात्री के पास फाइल है जो तपस्या देखना चाहती है कि आखिरकार इस फाइल में क्या है, क्योंकि इस फाइल में है मूसा यानी कि शिवाय के पापा के सभी राज, जो जगधात्री किसी को भी दिखाना नहीं चाहती. लेकिन इस छीना झपटी में फाइल उछल जाती है और पेपर्स बाहर गिर जाते हैं.
10: आदी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर जगधात्री को स्कूल जाने की परमिशन मिलेगी ना, तो मैं भी ऑफिस जाऊंगी.
11: ना तो जगधात्री को बाहर जाने की परमिशन मिली है और ना ही तुम्हें परमिशन मिलेगी.
10: वैसे ये फाइल में क्या है
11: तपस्या? क्या इस फाइल में जगधात्री?
10: ये वैसी वाली फाइल तो नहीं है जो तू मीडिया में जाके लीक करेगी. हाँ तो ये फाइल दे मुझे फाइल दी.
7: आखिर
10: खोले से
7: तपस्या
11: कर रही हो तुम? तपस्या जगधात्री क्या ये सब? अरे माया ताई वो.
1: इतना ही नहीं, आज तो तपस्या जगधात्री की गैर मौजूदगी में उसका पर्स भी चेक कर रही होती है कि तभी वहाँ पर माया आ जाती है, जो तपस्या को ऐसा करने से रोक देती है.
11: क्या कर रही हो तुम तपस्या? बिना पूछे किसी के भी पर्स में हाथ डालना गलत बात है.
1: भाई बात करें फाइल्स के पेपर्स की, तो यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जगधात्री ने शायद पहले ही फाइल चेंज कर दी होती है. तभी तो जब पेपर्स उड़ते हैं तो उसमें है ढेर सारी ड्राइंग्स, यानी कि ये राज अब राज ही है. और जगधात्री सबूत के साथ आएगी मूसा यानी शिवाय के पापा को पकड़ने के लिए, जो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है.

0: जी टीवी के सीरियल तुम से तुम तक के पूरे हो चुके हैं 400 एपिसोड और ऐसे में हो रहा है सेलिब्रेशन, जहां आज मीडिया के सामने साथ साथ नजर आए अनु और आर्या। देखिए कैसे दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं और मना रहे हैं 400 एपिसोड्स पूरे होने की खुशी। इस खास मौके पर अनु और आर्या यानी कि निहारिका और शरद ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, बताई अपनी ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में और साथ ही की ढेर सारी बातें।
1: आज तक मैंने किसी को भी इस कमरे में अंदर जाने नहीं दिया, पहली बार तुम्हें अंदर लेके जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सवाल अपने जवाब मिल जाए।
2: अब कुछ लुक्स इतने शानदार होते हैं कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां पर है आपके लिए एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ, क्योंकि यहां है अलग अलग खबरें, कुछ कर देंगी आपको शॉक तो कुछ सरप्राइज। रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। देख लीजिए जी टीवी के सीरियल गंगा माई की बेटिया का नया प्रोमो, जहां कहानी में आएगा नया ट्विस्ट और शुरू होगी गंगा माई की नई पारी।
3: हे चौरा माता, हमको इतनी हिम्मत देना कि हम इस खाना बनाने की प्रतियोगिता में सब अच्छा कर पाए।
4: इस गांव की इज्जत, नाम और पहचान अब तुम्हारे हाथों में गंगा। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव।
3: हौसलों की आँच पर मुश्किलों को अपनी ताकत बनाना है, ये गंगा का प्रण है। अब हर चुनौती से जीत कर दिखाना है।
5: भारत का स्वाद सरताज की अगली कंटेस्टेंट है गंगा माई।
6: बिखरे सपनों को समेटने आ रही है गंगा माई।
0: नजर डाल लीजिए प्राप्ति शुक्ला के इस वीडियो पर, जहां वो हो गई है डांस की दीवानी।

0: इसी के साथ नजर डाल लीजिए कौन बनेगा करोड़पति के इस नए प्रोमो पर, जहां पर आएंगे कुछ खास मेहमान स्पेस की दुनिया से सीधा हॉट सीट तक।
1: एक देश एक संकल्प, न कोई साधन न सुविधाएं थी, बस देश प्रेम का एक जुनून, ये स्काई रूट है क्या?
2: जब भी हम दूसरे जगह जाना चाहते हैं हम टैक्सी लेंगे, अगर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना है तो हम रॉकेट से जाएंगे, तो इसलिए स्काई रूट स्पेस का टैक्सी जैसा है।
3: इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई नेवर थॉट इट वाज पॉसिबल।
4: स्काई रूट की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: बोलिए भारत माता की।
0: हुई ट्विटर्स की पार्टी जिसमें सितारों ने किया ढेर सारा एंजॉयमेंट और साथ ही लगा एंटरटेनमेंट का तड़का। देख लीजिए पार्टी के ये नजारे।
5: जिंदगी में ट्रेटर, आप खुद से गर्म से ट्रेटर
6: है।
5: I love that. Baby, I'm innocent. Huh? Innocent.
6: Innocent. Are you a traitor or innocent? I'm a innocent innocent. मुझसे innocent आदमी नहीं दुनिया में भाई।
5: You wish you were
0: a traitor. इसी के साथ शहनील गिल फोर्थ ट्रेटर चुने गए हैं और अब पूरी हो चुकी है ट्रेटर की गैंग।

0: खतरों के खिलाड़ी का नया प्रोमो देख लीजिए, जहां अविनाश को करना होगा डर का सामना और खेलना होगा खतरों से।
1: यार हमारा जो ओल्ड मैच है ना, इसमें घुसने के लिए ना एक रिचुअल और वो रिचुअल है थोड़ा सा एक्सप्लेन।
2: इस हफ्ते अविनाश के सामने आएगा खतरों का सबसे एक्सट्रीम दौर।
0: जी टीवी के सीरियल वसुधा में जल्दी होने वाली है एक्टर संदेश नायक की एंट्री, जो कहानी में नया ट्विस्ट लाएंगे।

0: रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में आएगी राधे माँ बनकर खास मेहमान और साथ ही करेगी भविष्यवाणी। देख लीजिए ये खास प्रोमो।
1: राधे माँ जी, पवन भाई को अच्छा जीवन साथी मिलेगा। इस मामले में आप बहुत बार धोखे खाए हैं।
2: सामने आओ।
1: इसका दिल बहुत साफ है। इसको 45 साल में एक बहुत अच्छी लविंग वाइफ मिलेगी। अमरपाली जी ऐसी गिंड भी दी। 4 साल बाद ये वाला डांस होगा, खुलेंगी।
0: फिर एक बार साथ साथ काम करते नजर आएंगे अनिल कपूर और नाना पाटेकर। खबरों की माने तो ये रियूनाइट कर रहे हैं एक जॉम्बी कॉमेडी मूवी के लिए, जिसमें नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ और शनाया कपूर।

जल्द आने वाली है हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है चुड़ैल, जिसमें नजर आएंगी सनी लियोनी, साथ होंगी मंदाना करीमी और राहुल देव।

0: शिल्पा शिरोडकर फिर एक बार करने वाली है बॉलीवुड में अपना कमबैक। 26 सालों बाद वो फिर एक बार मालामाल वीकली 2 मूवी में नजर आएंगी, जिसमें होंगे रितेश देशमुख, परेश रावल और राजपाल यादव। देख लीजिए फिल्म 7 डॉग्स का ट्रेलर, जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स यानी कि सलमान खान, संजय दत्त, नजर डाल लीजिए इस ट्रेलर पर।
1: और तुम उसे पकड़ने आए हो?
2: जूलिया लियोन है।
3: अच्छा नाम है।
2: और आप?
3: मैं भविष्य बताता हूँ, मैं देख रहा हूँ आपका तो नुकसान होने वाला है।
2: मैं तुम्हारे सभी राज जानती हूँ।
0: जल्द आने वाली है नई फिल्म प्रेम केतानो, जिसमें नजर आएंगे अपार शक्ति खुराना, वीर पहाड़िया, आफिया सैयद, राकेश बेदी और निखिल विजय। ये फिल्म रिलीज होगी 2 अक्टूबर 2026 को। सनग्लासेस खरीदते वक्त सिर्फ ट्रेंड मत देखिए, अपनी फेस शेप, अपनी पर्सनालिटी को भी देखिए कि वो आपको सूट कर रहा है या नहीं। इनफैक्ट क्या वो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस कर रहा है क्या नहीं। इसी इंपॉर्टेंट टिप के साथ अब देख लीजिए हमारी ये स्पेशल स्टोरी, जिसे संभाल कर रखा है हमने खास आपके लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, तो चलिए देख लीजिए इसे राइट हियर राइट नाउ।
4: मुंबई में जगमगाती शाम और टीवी का ओम शांति ओम हमें देखने को मिला।

0: क्योंकि यहाँ पर उरी में आज मन्नत भी है।
1: सेवा की मिसाल मेजर नैना,
0: डॉक्टर आरभी भी, खतरों के खिलाड़ी भी है और महादेव एंड सन्स भी।
2: आज की पहचान मेजर समीर,
0: साथ में बरेली के बच्चन भी यहाँ पर आए हैं और आए हैं बिग बॉस के चेहरे भी।
3: समर्पण का प्रतीक मेजर अनिरुद्ध
0: भाई, यहाँ पर जूही बोई भी अपनी फैमिली के साथ आई है, तो साथ ही कलर्स के नए पुराने चेहरे भी हैं। तो एक तरह से ये कलर्स का गेट टुगेदर है, क्योंकि आ रहा है कलर्स का नया शो 108 बेस हॉस्पिटल उरी, जिसमें एरिका फर्नांडिस और कश्मीर महाजनी की जोड़ी है और साथ में है उनके साथी।

0: के लिए शिकवे भुलाकर तीनों एक साथ लड़ते हैं एक बड़े मकसद के लिए।
1: ये 108 बेस हॉस्पिटल जहाँ हर चीज पेशेंट के हित नहीं होती,
2: वो उनकी जान बचाते हैं।
3: भाई इन सब के शो का लॉन्च हुआ और पूरी कलर्स फैमिली इन्हें मुबारकबाद देने पहुंची। एरिका फर्नांडिस को खास विश करने आज शहीद शेख भी आए हैं। जी हाँ, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी की टीम का हुआ महामिलन।

और साथ में शो के प्रोड्यूसर समीर आर्या अपनी मम्मी सुलभा आर्या और पूरी फैमिली के साथ है क्योंकि उन्होंने ही इस शो को क्रिएट किया है। इसी के साथ शबाना आजमी भी यहाँ पर खास मेहमान बनकर आई। तो आइए एक एक करके टीवी की इस ओम शांति ओम में शामिल होते हैं, मिलते हैं मेहमानों से। टीम आरंभी, जी हाँ, ऐश्वर्या खन्ना यानी आरंभी यहाँ पर आई है और उसके साथ उनकी फैमिली भी। तो मिलते हैं कि आरंभी की टीम से यहाँ पर कौन कौन आया।

भाई बरेली के सारे बच्चन आज यहाँ पर इस शो के लॉन्च पर नजर आए। जी हाँ, ईशा सिंह यहाँ पर आई है अपनी फैमिली के साथ। अपनी मम्मी, भाई और इनके पापा यानी संजय सूरी भी यहाँ पर है।

सरगुन मेहता और उनकी फैमिली। वे सरगुन मेहता कलर्स पर ढेर सारे शोज बना रही हैं। उनके शोज की शूटिंग तो चंडीगढ़ में होती है, लेकिन सरगुन मेहता ने उस कवि को पूरा किया अपनी इस व्हाइट ड्रेस के साथ। भाई पार संतान कलर्स का शहर कर रहे हैं और इस मौके पर अपनी कलर्स फैमिली को विश करने वो यहाँ पर पहुँचे। अब मिलते हैं खतरों के खिलाड़ी की फैमिली से। जी हाँ, खतरों के खिलाड़ी से मुनव्वर फारूकी हो, फराना भट्ट हो या फिर हो ऋत्विक धनजानी और करण भाई, भाई सब स्टंट मारते हुए यहाँ पर पहुँचे।

बॉलीवुड से ऋषभ सहानी और शबाना आजमी ने उस कमी को पूरा किया, साथ में आहाना कोबरा भी है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करें तो रूहानिका धवन, नकुल मेहता, शालीन भनोट, इजाज खान, ये सब भी यहाँ पर नजर आए।

0: इसके अलावा मकरंद देशपांडे, रणवीर शौरी जैसे कलाकार भी इस खास शहर का सब ले। अब मिलते हैं उरी की फैमिली से, तो देखिए ये सारे कलाकार कैसे गाड़ी पर आए हैं और इनसे करते हैं बातचीत, तो जानते हैं कि ये शो क्यों खास है।
1: साहस, समर्पण,
2: बेरंगी सांसों में हमको रंग भरना है। बोलता है आगे पे चलता है, हिम्मत के आगे हर दर्द पिघलता है।
3: Hi guys, my name is Nikhil Khurana और 15 अगस्त 2026 जो कि कुछ ही दिन दूर है, हमारा नया शो कॉल्ड 108 बेस हॉस्पिटल रिलीज़ हो रहा है और ये एक आर्मी हॉस्पिटल की कहानी है जो कि उरी में बेस्ड है। एक रियल हॉस्पिटल की कहानी है जहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आप में एक भी सांस बाकी है तो आप फिक्र ना करें, हम आपको बचा लेंगे। दैट्स द होल प्रीमाइस ऑफ द शो और उसमें मैं एक

0: फील्ड ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ, कॉम्बैट ऑफिसर मेजर समीर दीक्षित, जो कि डॉक्टर नहीं है, लेकिन उस डॉक्टर के वर्ल्ड के बाहर जो भी आर्मी की डीलिंग्स होती हैं वो मैं कर रहा हूँ. लेकिन डॉक्टर के वर्ल्ड से हमारे साथ हैं मिस मिली बैनर्जी, कैप्टन मिली बैनर्जी, जो आपको इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे.
1: हेलो, आज मैं आयुषी तालुकदार, ये मेरा पहला शो है एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. यहाँ पे सभी मेरे सीनियर्स हैं, जैसे रियल लाइफ में वैसे शो में भी मिली के सारे सीनियर्स हैं. मिली जूनियर डॉक्टर है, कैप्टन है, एंड आई थिंक वो दो ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभाती है. शी इज़ ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर एंड अ डॉक्टर, सो आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखने वाला है, जो एज आयुषी मैं भी उसे सीख रही हूँ. सो आई थिंक आप जब एक आर्मी ऑफिसर का किरदार प्ले करते हो उसमें ऑब्वियसली डिसिप्लिन तो चाहिए, बट यूनिफॉर्म पहनने से ही कुछ अलग आपको एक फील मिल ही जाता है. आई थिंक यू गेट इन टू द कैरेक्टर एज सून एज यू वेयर द यूनिफॉर्म. सो एंड एज वेल एज निखिल के बारे में मैं बोल सकती हूँ, वो हाफ आर्मी ऑफिसर खुद ऐसे ही है इन रियल लाइफ ऑल्सो, सो वो तो है उसमें इनबॉर्न. बट फॉर मी यस, you have to have a perfect body language because it's a lot of responsibility playing an army officer. So yeah, that's been the journey and the challenge.
0: मैं मेरा जो नॉर्मल रूटीन है वही काफ़ी अच्छा है. आई डू माई रनिंग, आई डू माई वेट ट्रेनिंग, आई डू माई कैलिस्थेनिक्स. तो फिजिकली मैं एनीवे पहले से ही एक उस शेप में था और उस जोन में था कि मैं इसको ढाल सकता था. मैं ऐसी शेप में रहता हूँ कि मैं किसी भी किरदार में जा पाऊँ. तो फिजिकली इट वॉज नॉट लाइक कि मैंने ऐसा कुछ बदलाव लाया, बिकॉज मेरा ऑलरेडी सही चल रहा था. बट टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर एंड टू प्ले दिस कैरेक्टर, मैं उसके माइंडसेट को समझा, जो कि मैं पहले से समझता आ रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से आर्मी ऑफिसर्स, एक वॉरियर की रिसर्च, एक मेरा आउट ऑफ माई ओन क्यूरोसिटी मैंने एक माइंडसेट ऑलरेडी दिमाग में था, जिसको एग्जीक्यूट करने का मौका इस शो के थ्रू मिला, जो मैंने किया. एंड मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आएगा और प्लीज़ देखिए.
1: आई थिंक हम तो बॉर्न ही देशभक्त होते हैं. आई थिंक इट्स विद इन अस, सो आई थिंक अलग से कुछ, वी आर ऑल बॉर्न लाइक दैट एंड पेट्रियोटिज्म इज इनसाइड अस मुझे लगता है. बट इंडिपेंडेंस डे के दिन जो मुझे याद आता है वो स्कूल के बारे में है, क्योंकि हम स्कूल में वो फ्लैग्स का छोटा छोटा बैच पहन के घूमते थे, फ्लैग होस्टिंग एंड ऑल दिस, वो सब तो है ही. बट इस बार का इंडिपेंडेंस डे बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है हम सब के लिए, क्योंकि हमारा शो भी आने वाला है, तो उसका एक एक्साइटमेंट है, एक अलग फीलिंग है.

0: नमस्कार, मैं कश्मीर महाजनी और मैं 108 बेस हॉस्पिटल में मेजर अनिरुद्ध जायसवाल का डॉक्टर, मेजर अनिरुद्ध जायसवाल और ये जो है ये जूनियर मेजर डॉक्टर नैना, क्या है सान्या लेना तुम्हारे सर ने उसमें क्या है,
1: क्योंकि थोड़ा ऐसे और बहुत कुछ और दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि फाइनाइट सीरीज में यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू नो वेयर द शो इज गोइंग, और एक्चुअली द होल यू नो एवरीवन्स पैशन, एवरीवन्स व्हाट यू कॉल योर जोश ऑफ डूइंग द शो इज इवन मोर जब फाइनाइट होता है. तो आपको क्या कहना है?
0: Genuinely, I had a great time. I think she's one of the loveliest person people I've met and worked with. I think she's very non-judgmental, very friendly, and very professional also at the same time. And she's very resourceful also. So yeah. So you feel very comfortable when Erica is around. It's all about Erica. I'm telling you. अभी उसके बारे में सब अच्छा ही बोला तो अग्री करेगी ना, कहाँ बोलेगी नहीं नहीं नहीं मैं तो बड़ी खराब हूँ, मेरे साथ मजा नहीं आता काम करने में, बहुत अनकंफर्टेबल कर लेते लोगों को, ऐसे थोड़ी बोलेगी. सच थोड़ी बोलेगी वो या मैं, है ना. अरे नहीं, मैं सच ही बोल रहा हूँ.
1: हाँ, माइंड में नहीं, बट आई थिंक आई हैव वॉच्ड Jennifer play an army officer before, but inspiration, if you're saying, I don't think I have taken inspiration, because I think we've played the character as ourselves.
0: No, I haven't. Inspiration I have not taken from it. I think I remember the first person would be Vicky Kaushal in Sam Bahadur. The way he's played him is crazy. It's amazing, really amazing. हाँ, सैम बहादुर is what I was saying. Yeah, yeah. साथ में और सबकी तारीफ करनी है. आप बता दो, सभी अच्छे हैं, लेकिन everybody's done a great job. What? अरे? You did something like this.
1: I'm just laughing.
0: Like this. This was like a meaningful, different kind of a laugh. Anyway, I'll start with myself. I think मेरे लिए देशभक्ति क्या है? Just being very aware. And a responsible citizen. Secondly, ये शो करने के टाइम पे जब हम गए थे बॉर्डर पे, या बॉर्डर मतलब हम लोग कश्मीर में गए थे, विच वॉज लाइक कुछ सेंसिटिव एरियाज में भी हमने शूट किया, तो वहाँ पे जिस माहौल में, जिन कंडीशंस में हमने देखा कि असली फौजी जो है वो तैनात रहते हैं 18-18 घंटे सालों साल वहाँ पे होते हैं, हमारे लिए लड़ रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है उनके लिए जो इज्जत है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई, और एक तरह से एक काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड जिंदगी में आई है कि हम बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी पा रहे हैं, और एक एक ग्रैटिट्यूड आई कि भाई ये सच में हमारी फौज कितनी महान है, और क्या क्या मतलब किस कंडीशन में, क्योंकि एक टेरेन था जिसमें हम लोग दौड़ रहे थे जो क्लाइमैक्स के वक्त, तो हम लोग दौड़ते दौड़ते फिसल रहे थे, तो मैंने एक बार वो निखिल जो हमारा समीर दीक्षित प्ले कर रहे हैं मेरे साथ, ही इज लाइक द पैरेलल लीड, सो आई टोल्ड हिम कि यार तू ये सोच कि ये हमें सिर्फ यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, नकली गोलियाँ हैं, नकली टेररिस्ट है, सब नकली है यहाँ पे, हम सब नकली फाइटिंग कर रहे हैं, फिर भी ये इतना मुश्किल हो रहा है, तुम सोचो इस वक्त एक फौजी अगर इस टेरेन पे दौड़ रहा हो और सच्ची वाली गोली चल रही है और आप कभी भी उस गोली के शिकार बन सकते हो, इस क्या तरीके का माइंड सेट होगा और किस माहौल में जीते होंगे वो लोग, और फिर भी एक चेहरे पे वार्म स्माइल होती है हमेशा उनके जब भी आप उनसे मिलो, तो 10 गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा अपनी फौज के लिए इज्जत बढ़ गई हमारे मन में.
1: Yeah, all he said, but you know, when we were shooting also in those areas, those certain areas, jahan pe, when we were shooting in Bazarwa, so we were also being escorted and protected by the army. Aur jab humne hum wahan pe shoot kar rahe the, to we were like, they are protecting us at this point so much, and we are so unaware of the fact that how much are they actually doing for us when we are leading our lives. So that also, that the sense of again, there's a lot of respect that we have only just because we've played this character, we know more about it. So people who have not, who are jo normally apne lives jee rahe hote aur unko nahi pata hota ki hamare piche kya ho raha hai, so I am also very grateful for the fact that they are doing so much for us, and it's actually also a very thankless job which they are doing, and they are doing it with pure, you know, they give their heart and soul for it, they give their life for it, so hats off to you guys.
2: तो भाई उम्मीद करते हैं कि कुछ हटके कहानी लेकर आने वाला ये शो लोगों को पसंद है। एरिका फर्नांडिस लंबे समय के बाद एक शो में दिख रही हैं। इबली से फेमस होने वाले अश्विन महाजनी का भी नया शो है। जीजा जी सत्य हैं कि निखिल भी यहाँ पर एक नए अंदाज में दिख रहे हैं। 15 अगस्त के मौके पर एक नया शो जो कुछ अलग कहानी कह रहा है इस बार लेकर आया है, लेकिन सबसे खास थी ये खाम कलर्स के रंग बिरंगी हुई शाम, जिसके खास नजारे लेकर आए सास बहू और बेटियां। मुंबई से रूपम मौर्य के साथ ब्यूरो।

0: 108 बेस हॉस्पिटल
1: शुरू होने जा रहा है 15 अगस्त से
0: हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ कलस पर।
2: यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं स्ट्रेचर पे, लेकिन जाते हैं अपने पैरों पे चल के।
3: जिस तरह सही सनग्लासेस आपके लुक को पूरा बदल देते हैं, उसी तरह ये जो ट्विस्ट आते हैं ना हमारी कहानियों में, ये इन्हें पूरी तरह बदल देते हैं। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ट्विस्ट का ये सिलसिला, वो भी एक साथ, क्योंकि जितनी सारी कहानियां हैं हमारे पास उतने ही सारे हैं उनमें आए हुए ट्विस्ट। ये ट्विस्ट ही तो बनाते हैं इन कहानियों को और भी मजेदार। तो चलिए लेट्स ट्विस्ट।
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
5: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई फिर एक बार मायरा मुश्किलों में फंसने वाली है, और इस बार इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि दमानीज का परिवार है।
6: मेरे परिवार पे खतरा आने वाला है।
7: कबीर, हाउ डेयर यू? कबीर कौन है?
8: पूछिए अपनी बेटी से कि मेरा बेटा कहाँ है।
9: आई स्वेयर मुझे नहीं पता कबीर कहाँ है।
7: इसे सच पता है लेकिन ये बता नहीं रही है।
10: बस कीजिए मिस्टर दमानी, ये क्या नॉनसेंस बोले जा रहे हैं आप?
7: मैं सच बोल रहा हूँ।
8: आपकी बेटी एडल्ट है मिस्टर पोता, अपनी करनी का भुगतान तो इसे करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन तो इसे चलना पड़ेगा।
5: भाई वैसे तो कहानी में अरमान मायरा और उस अनजान दोस्त को लेकर काफी परेशान है, लेकिन देखिए कैसे अभीरा उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अरमान है कि वह उसकी टेंशन कम होने का नाम ही नहीं ले रही है।
11: पहले तो तुम आंधी बनके जयपुर चले गए मंकी से मिलने के लिए, और अब जब वो घर आ गई है तो तुम यहाँ कमरे में बैठे हुए हो। क्लियरली कुछ तो हुआ है।
12: तुम मंकी के आने से हैप्पी कम हैसल्ड ज्यादा लग रहे हो, क्यों?
13: मायरा ने हमें ट्रिप के बारे में सब कुछ बताया, सिवाय एक बात के कि वो किसी लड़के के साथ आई है।
14: अभी ना मैं टैक्सी वाले को पैसे देने गया तो उसने मुझे बताया

0: एक तो ये तो के रिएक्शन से मुझे बहुत चिढ़ है।
1: तो रिएक्शन देना ही क्यों है?
0: अभीरा तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारी बेटी एक लड़के के साथ।
1: Listen. देखो हम लोगों के टाइम में दोस्तों और सहेलियों में डिफरेंस हुआ करता था, लेकिन अब इस नई जनरेशन के लिए दोनों सेम ही बात है।
0: अभीरा दोस्त के साथ आना अलग बात है, पर एक अजनबी लड़के के साथ में अकेले इतनी लंबी ट्रिप टैक्सी में करना इज नॉट ओके।
1: हमारी टेंशन बिल्कुल गलत नहीं है, पर देखो हम कब से यही तो बात कर रहे हैं कि हमें मंकी पर ट्रस्ट करना होगा। अब अगर उसे ऐसा लगा कि वो उस लड़के के साथ सेफ रहेगी तो हमें उसके जजमेंट को ट्रस्ट करना होगा, और देखो उसका जजमेंट सही भी तो निकला।
2: ऐसे में बातों बातों में भी मायरा अपनी ट्रिप के बारे में बता देती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर अरमान आता है देखिए कैसे वही उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है।
3: वैसे आजकल के बॉयज उतने भी बुरे नहीं है।
1: बेटू ये लड़का आपका क्लोज फ्रेंड बन गया?
3: नहीं मम्मा, हम दोनों बस फेस्ट में मिले और ऐसे ही दोस्ती हो गई, फिर हम दोनों की बस मिस हो गई और हम दोनों को सेम ही सिटी आना था इसीलिए साथ में ही आ गए।
1: उदयपुर में कहाँ रहता है वो?
3: पता नहीं, मुझे तो आप सबसे मिलने की इतनी जल्दी हो रही थी तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसे चौक पे ड्रॉप कर दूँ, वो वहाँ से वॉक करके चला जाएगा। मैंने तो चैन की सांस ली कि उसके सड़े हुए जोक से छुटकारा मिलेगा, वो इतना इरिटेटिंग है कि ब्रो तो कितनी इरिटेटिंग है। मैंने चुप रहना।
4: तुम देना साथ मेरा।
2: स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में मैं अपराजिता की ये लुका छुपी वाली मुलाकात देखिए कैसे रोमांस में बदल गई, जहां वो आ गई रक्षित के करीब, लेकिन भाई इतने करीब होने के बाद भी इनके बीच काफी दूरियां हैं। रक्षित कर रहा है अपराजिता को उसके घर से सेफली बाहर निकालने की पूरी कोशिश।
5: वहाँ कहाँ जा रही हो?
6: आप नहीं तो कहाँ जाओ?
5: अरे लेकिन वहाँ से क्यों जा रही हो?
6: यही
1: वहीं से तो आई थी।
5: पाइप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं करी हो तो?
6: नहीं, लेकिन
5: घर में सीढ़ी है, दरवाजा है, यहाँ से भी जा सकती हो ना?
6: लेकिन किसी ने देख लिया तो?
5: ओ यार, चलिए रास्ते में मौमसी का कमरा भी पड़ता है, मैं बाहर जाऊंगा, दरवाजे के बाहर जाकर देखूंगा मैं, अगर कोई भी है ना तो मैं एक वार्निंग साइन दूंगा।
6: वार्निंग साइन क्या?
5: बिल्ली, फॉलो मी।

0: महादेव एंड सन्स।
1: कल इस टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में भैरजी का गुस्सा सातवें आसमान पर है और देखिए कैसे धीरज उसे समझाने की कोशिश कर रहा है।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नर्मदा भाभी अभी भी सीरियस है और तुम ये झगड़े सुलगा रही हो? हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है रज्जी, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि तुम पूरी दुनिया में आग लगा दोगे। ये सब करके तुमने खानदानी रंजिश में सिर्फ और सिर्फ घी डालने का काम किया रज्जी।
3: ये सारी गलती ना तुम्हारी और आशू दादा की है। हमने बोला था इस मोगरा की सच्चाई सबको बता देते, तुमने एक भी सुनी हमारी। अगर उस दिन मोगरा की सच्चाई बता दी होती ना तो आज नर्मदा भाभी का ये हाल नहीं होता। इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती उनके साथ, ये सब उस मोगरा ने किया है।
2: तुम्हें ये बात कैसे पता कि ये सब मोगरा भाभी ने किया है या परेश पोपा ने करा है?
3: तुम सच्चाई भूल गए या तुम्हारा दिमाग सुन पड़ गया है? मोगरा ही है सबके पीछे। चिल्ला चिल्ला के थक गए हम कि मोगरा इस घर के लिए सही नहीं है, पर तुम नहीं सुनते हो।
2: ठीक है, लेकिन इस वक्त हम अपने भाई के बारे में सोच रहे हैं, अपनी भाभी के बारे में सोच रहे हैं जिसने अपनी संतान खोई है, अपने भाई के बारे में सोच रहे हैं जिसने अपनी औलाद खोई है, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं जिसने अपना चिराग खोया है। रज्जी, इस वक्त हम अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं। हो सकता है जो कुछ भी तुम कह रही हो वो सब सच हो सकता है ये सब मोगरा भाभी ने किया हो या फिर यश मामा ने किया हो, लेकिन ये वक्त नहीं है बदला लेने का, ये वक्त नहीं है खानदानी रंजिश का। हमारी बात को समझने की कोशिश करो रज्जी, ये वक्त अपने परिवार के साथ खड़े होने का।
1: तो वही दूसरी ओर देखिए कैसे नर्मदा भी रज्जी पर बेहद नाराज है। भाई पहले तो उसने उसके हाथ से खाना खाने से इनकार कर दिया और दूसरी ही तरफ जहाँ इनडायरेक्टली उसे घर छोड़कर जाने का फरमान भी दे दिया।
3: हमारे पास बता दो किससे कहोगे हमसे दूर रहे।

0: सहर होने को है।
1: कलर्स टीवी के सीरियल सहर में भाई माहिद और सहर देखिए कैसे आज फिर एक बार नोक झुक करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई असल में माहिद चाहते हैं कि सहर के साथ उसकी मंगनी कैंसिल हो जाए, तो वहीं दूसरी ओर सहर माहिद से मंगनी करना चाहती है, जिस बात को लेकर इन दोनों के बीच चल रही है बहसबाजी।
2: आपको वाकई में लगता है हम इतने बेबस है कि मंगनी रोकने के लिए हमें आपकी जरूरत पड़ेगी? आप फिक्र मत कीजिए, मंगनी तो हम होने नहीं देंगे। तो अगर आपके दिमाग में कोई टेढ़ी मेढ़ी तरकीब चल रही है उसे यही दफना दे।
3: कोई बात,
4: लेकिन हम ये मंगनी नहीं रुकवाना चाहते।

0: क्योंकि नाजिम अभी भी फरार है ना, वो दोबारा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती। अगर फिर से कोई जहर या कोई दवा दे दी तो हमें बहुत फिक्र है आपकी, हमें आसपास ही रहना होगा आपकी।
1: बहाने मत मारे।
0: माहिर बैठो।
1: सर कैसी नफरत है आपकी ये सर, अपने दुश्मन के लिए फिक्र होने लगे आपको।
0: आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया।
1: कुछ नहीं किया हमने। अब दोबारा वो बहाना मत शुरू कीजिए। हमने आपके लिए क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया, और अगर ऐसी बात है तो आपने हमारी जान बचाकर वो बदला पूरा चुका दिया है। आपको हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मंगनी नहीं होगी। बस
0: पूरे शहर में दावतनामे बढ़ चुके हैं माहिर, अगर आप मंगनी नहीं करेंगे तो पूरे शहर में आपकी बदनामी होगी।
1: तो जो होगा हमारे साथ होगा सर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी बदनामी रोकने के लिए आप ये मंगनी करने के लिए तैयार है? कल को कोई और मजबूरी रोकने के लिए आपको हमसे निकाह करना पड़े तो आप वो भी करेंगी?
2: जिंदगी में कभी तेज धूप होती है तो कभी सुकून की छांव, और इन्हीं बदलते मौसमों जैसा है ये शो जिसका नाम है सैराब। दौनिका और ईशान की ये कहानी। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि यहाँ से आ रही हो हमारे लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़, लेकिन जैसा ही हम ऐसा सोचते हैं ना, कहानी में आ जाता है एक नया ट्विस्ट जो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। लेकर चलते हैं आपको सैराब के सेट पर।
3: दौनिका ने किया ईशान से अपने प्यार का इजहार, घर वालों के सामने किया सच बयां। प्यार की बात सुन घर वालों को लगा जोर का झटका।
4: क्यों जाती आप? साफ साफ बोलो मां, क्यों जाती आप? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। तुम भी सच ही जानना चाहती हो तो यही सच है, ये सच है कि मैं ईशान से प्यार करती हूँ।

0: इससे बेहतर होता कि मैं मर जाती।
1: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर टिन्नी और सभी घरवाले नयनिका को ईशान के पास जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि घरवाले नहीं चाहते कि फिर नयनिका ईशान से मिले। और उसने टिन्नी से वादा भी किया था कि वो ईशान से अब कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेगी, लेकिन ईशान की तबीयत खराब है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ऐसे में नयनिका का ईशान के पास जाना उतना ही जरूरी हो गया है, लेकिन घर वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। वो तो नयनिका और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, और इन सब में घर वालों का साथ दे रही है टिन्नी भी। लेकिन आज नयनिका भी चुप नहीं बैठी, उसने सभी घर वालों को करारा जवाब दिया।
2: ये बताओ तुम्हें हॉस्पिटल से कॉल आया?
0: आप लोग मुझसे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकते, मैं किसी के भी सवालों के जवाब देने के लिए बाउंड नहीं।
3: नयनिका,
0: मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मेरे मामलों के बीच में मत बोलो, बहाने वाली बात करी भूल गई कि तुमने कितने बहाने मारे थे, याद नहीं है तुम्हें? और आज तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो मुझसे। मेरी 3 साल की बेटी, उसकी जिंदगी, मेरा घर परिवार संसार सब तुम्हारे कारण बर्बाद हुआ है, और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। तुम शायद भूल गई हो कि तुम मेडिकल कैंप में गई थी, वहां से प्रेग्नेंट होकर आई हो बस किसी और के हस्बैंड के साथ। बस इतनी बस, बच्चे घर में है वो सुन लेंगे, तो बच्चों को सुनने दो। उषा, बच्चों के सामने मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है, मुझे कैरेक्टर लेस साबित करा जा रहा है, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि कैरेक्टर लेस तो इसी परिवार के खून में है और ये कई सालों पहले हो चुका है।
4: स्टॉप इट नयनिका, बहुत बेइज्जती कर दी तुमने मेरे माँ बाप की, और पुरानी बातों को निकाल के कोई फायदा नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो, और मैं भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारी और दिल्ली की जिम्मेदारी उठाना चाहता था। तुमने मुझे इस घर से जाने के लिए कहा, मैं खुद नहीं जाना चाहता था।
0: खबरदार नहीं, तुम अपनी वाइफ के सामने ये सब बातें मत करो, तो पता नहीं तुम्हें अब और क्या सहन करना पड़ सकता है। मैं मानती हूँ कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं दूसरी औरत के साथ ऐसा अन्याय होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें अंगना के पास मजबूरी में भेजा कि मैं एक धोखेबाज इंसान के साथ भी नहीं जीना चाहती थी।
4: और इसीलिए आज तुमने ईशान पर भरोसा बनाए रखा है और उम्मीदें, राइट?
0: ईशान से अपनी तुलना मत करो, चाहे मैं उसकी लाइफ में कुछ भी ना, लेकिन फिर भी आज उसके ऐसे मुश्किल समय में जहाँ पर वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं उसके पास जाऊंगी और उसके साथ ही रहूंगी।
1: भाई नयनिका सवालों के घेरे में ऐसी फंसी कि उसने आखिर कह ही दिया सभी घर वालों के सामने कि वो ईशान से प्यार करती है, जिसे सुनकर टिन्नी को तो जोर का झटका लगा ही, बाकी घर वाले भी शॉक हो गए।
0: ईशान किसी मुंबई के हॉस्पिटल में भी होता ना, मैं तब भी जाती।
5: क्यों क्यों जाती आप? साफ साफ बोलो, क्यों जाती आप?
0: क्योंकि मैं ईशान से प्यार करती हूं।
6: बेहतर होता कि मैं मर जाती।
0: जानना चाहती थी ना, तो ये सच है, मैं सच में ईशान से बहुत प्यार करती हूं। मैंने टिन्नी से वादा किया कि मैं शाम से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, क्योंकि टिन्नी मेरी लाइफ में सबसे ऊपर आती है, टिन्नी मेरी प्रायोरिटी है, इसलिए मैंने अपना वादा निभाया है।
2: बस मामा, अब तो मुझे भी लगने लगा है तुम पूरी तरह से अपने दोष को बैठ ठीक नहीं सुना। मामा, पूरे परिवार के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? माफ करना, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि तुम्हें किसी को नहीं समझा।
0: देखिए, आप लोगों को जो कहना है आपके लिए, लेकिन उससे सच्चाई।
7: नयनिका वैसे बहुत ज़्यादा अभी कश्मकश में चल रही है, बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी लाइफ में ये जो पहलू चल रहा है जहाँ पर उसको उसकी बेटी और ईशान के बीच में चुनना पड़ रहा है। तो फिलहाल ईशान हॉस्पिटल में है और वो उसके लिए लड़ाई कर रही है कि जब जब उस पर कोई संकट आएगा तब मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी, चाहे मैं उससे कोई रिश्ता रखूँ या ना रखूँ, या बात करूँ या ना करूँ, बट मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। तो अभी जस्ट वो ऑपरेशन थिएटर से निकली और ईशान से उसकी बात हुई, उसने ईशान को फोन लगाया और वो वापस आया है, तो उसके लिए थोड़ा सा अभी उसकी जान में जान आई है। अब वंस शी कम्स बैक होम, अब यहाँ पर उसकी लाइफ में फिर से एक और ट्विस्ट आ गया। जितनी बार वो घर आती है उतनी बार उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक नया ट्विस्ट आ रहा है। तो अब ये जो ट्विस्ट आया ये ऐसा आया कि सब ने बोल दिया कि आप इस घर से या तो चले जाओ या फिर ईशान को भूल जाओ। तो ही और शी टेक्स अ स्टैंड कि मैं जब जब ईशान को प्रॉब्लम होगी मैं हमेशा उसके लिए खड़ी रहूँगी, बट उसके अलावा मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। तो अगर आपको ये एक्सेप्टेबल तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं शिफ्ट हो जाऊंगी।
1: भाई नयनिका तो बस इसी जिद पर अड़ी है कि उसे ईशान के पास जाना है, और टिन्नी ने नयनिका का हाथ पकड़ा हुआ है, वो उसे जाने नहीं देना चाहती। ऐसे में माँ बेटी के बीच हो गई है बहस शुरू। और लगता है कि इस रिश्ते में दरार भी पड़ चुकी है, क्योंकि नयनिका तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं।
0: रजिस्ट्री ने मुझे कैसे रोक कर रखा हुआ है, मेरा जाना कितना जरूरी है, परेशान की हालत ठीक नहीं है, उसका दूसरा ऑपरेशन होने वाला है, प्लीज इसे समझा, मैं हाथ छोड़ा, मुझे जाने दे।
5: मैं किसी के भी समझाने से नहीं समझूंगी मॉम, मैं आपको नहीं जाने दूंगी शायद के पास।
4: नयनिका तुम सिर्फ ये सोचती हो कि हम तुम्हारा बुरा चाहते हैं, मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, इसे पछाड़ों में बात करो, लोग तुम्हें चीर के रख देंगे, ये सोशल मीडिया प्रेस वाले सब यही जजमेंट देंगे कि पहला ऑपरेशन तुमने ठीक से नहीं किया।
0: ऐसी बातें कर रहे हो तुम, ये भी मत कहो नहीं, बेवकूफों की तरह मुझे ये मत समझाओ। ईशान का जो मैंने ऑपरेशन किया था वो बिल्कुल सक्सेसफुल था, उसके दूसरे ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन आए हैं।
5: इनको इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये तो बस अपने बारे में सोचती है, इन्हें अपने अलावा और कुछ नहीं समझ आता।
0: तू कह रही है
5: तो मम्मीशा के पास चली जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जाए।
3: दीदी सब कुछ तेरी मर्जी के हिसाब से हुआ क्या, आंटी की अपनी मर्जी नहीं है।
5: एक मिनट शिशो, तुम्हारी अभी नई नई दोस्ती है बिन्नी के साथ, अब तुम दोनों के बीच में जो भी है दोस्ती है रिश्ता है हमें नहीं पता, आगे जाके वो रहेगा नहीं रहेगा तो तुम किस हद से हम सब के बीच में बोल रहे हो।
0: लेकिन अभी मैं आप लोगों में अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती
5: मॉम, आज मेरे लाइफ में शीशु की बहुत अहमियत, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती, आज उसके कहने पर मैं आपका हाथ छोड़ लूँ। लेकिन एक बात अज्ञात है, आपका मुझे छोड़ के ईशान के पास जाना, आपका मुझे छोड़ ईशान के पास जाने का मतलब ये है कि अब हमेशा के लिए मुझे छोड़ के जा रही हूँ। अब कभी भी मैं आपसे उस तरह से प्यार, अब कभी भी मैं आपको प्यार या रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगी।
7: ईशान हॉस्पिटल में है और उसकी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, तो नयनिका को बींग अ डॉक्टर उसे ये पता है कि वो कुछ चीज़ें हैंडल कर सकती है अगर वो वहाँ पर रहेगी ऑपरेशन के दौरान, बट घर में इतनी सारी बातें चालू हैं तो वो हॉस्पिटल पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो जाती है, तो ऑपरेशन हो जाता है एंड देन शी रीचेस, तो वो ये समय बचाना चाहती थी, इसलिए वो फ्लो में बोल देती है कि मैं प्यार करती हूँ उससे और दैट इज़ द रीज़न आई वांट टू सेव हिम, एंड अगर वो कभी भी कुछ भी उससे परेशानी होती है तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ।
1: आखिर में नयनिका धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि टिन्नी ने उसके आगे शर्त रख दी कि वो ईशान और टिन्नी में से किसी एक को चुने, लेकिन इस घड़ी में नयनिका ने ईशान को चुना, उसे पता है कि वो टिन्नी को तो बाद में भी समझा लेगी और ये कहकर वो वहाँ से चली गई ईशान से मिलने के लिए।
5: आपको चूज करना होगा कि अपनी बेटी या फिर ईशान,
1: भाई ऐसे में अब रिश्तों में दरार पड़ चुकी है नयनिका के एक फैसले से, अब देखना होगा कि नयनिका अपने सभी रिश्तों को किस तरह से संभालती है और कैसे इन सिचुएशंस का सामना करती है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: क्या आपने भी नोटिस किया है कि कभी कभी कोई इंसान जब सनग्लासेस पहनता है तो उसका एटीट्यूड अपने आप बढ़ जाता है, तभी तो हम कहते हैं कि कुछ एक्सेसरीज देती हैं हमें मच नीडेड कॉन्फिडेंस। स्पेशली आपने अपने फेवरेट सेलेब्स को देखा ही होगा जो हमेशा फ्लॉन्ट करते हैं स्टाइलिश सनग्लासेस। वैसे देखिए स्टाइल की बिल्कुल भी कमी नहीं है यहाँ भी, यहाँ तो है एंटरटेनमेंट और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बो। मैं तो बात कर रही हूँ पति ब्रह्मचारी की इस कहानी की जो बन गई है आप सबकी फेवरेट। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ और दिखाते हैं इस कहानी का क्विक अपडेट।
1: सूरज और ईशा के हैप्पी फैमिली मोमेंट्स।

0: 来可笑。दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है, अब निकाह खुलासा हो चुका है और ईशा और सूरज ने मिलकर उसका प्लान भी फेल कर दिया है और बचा लिया है अपने परिवार वालों को। ऐसे में आज सभी परिवार वाले एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। हालांकि परिवार वाले सदमे में जरूर हैं, लेकिन ईशा और सूरज माहौल को लाइट करने की और घर में खुशियां भरने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो ईशा बनाकर लाई है गर्मा गर्म पराठे, तो वहीं चाय बनाकर लेकर आया है सूरज और पूरा परिवार साथ मिलकर नाश्ता कर रहा है।
1: अरे आ जाइए, हम साथ बैठ के नाश्ता करेंगे।
2: ना कहीं कभी मेरा दिल।
3: और साथ ही साथ सूरज स्पेशल चाय भी तैयार है आप सभी के लिए।
0: भाई परिवार वाले तो इस खाने को एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार ईशा और सूरज का चाय वाला रोमांस शुरू हो गया है, जहाँ ईशा की झूठी चाय पी रहे हैं सूरज।

0: क्योंकि यहाँ पे ये हुआ है कि 15 अगस्त का दिन जो था बहुत ही बोलते ना संकट भरा था हमारे पूरे परिवार के ऊपर, पूरी फैमिली किडनैप हो गई थी। एक तरफ ईशा जी यहाँ पे सीएम हमारे मोहल्ले में आए हुए थे, उनकी देख रेख में थी कि और बॉम्ब फिट की थी अवनी का खात्मा होना, अवनी का मतलब पूरा एंड होना, पुलिस पकड़ के लेकर जाना, ये सब पूरे सब घर वाले मॉर्निंग में उठे हैं, सब सदमे में बैठे हुए हैं, मतलब अपने अपने में है, नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, बट कोई नॉर्मल है नहीं। तो सूरज और ईशा आपस में दिमाग दौड़ाते हैं कि लेट्स डू समथिंग। तो सूरज स्पेशल चाय बना के लाता है अपना, और ईशा जी पराठा और मक्खन लेकर आती हैं सबके लिए, एंड सबको नॉर्मल करने की कोशिश रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद सब नॉर्मल भी होने लगते हैं। फिर एक प्यारा सा क्यूट सा मोमेंट है सूरज और ईशा के बीच में कि फाइनली हम दोनों जहाँ साथ रहेंगे वहाँ पे सब एक साथ हो ही जाएंगे।
1: ईशा और सूरज ने तो सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन अब भी मोनिका सदमे में है। तभी तो देखिए कैसे वो घर में ही है लेकिन फिर भी डर गई है अवनी के ख्याल से। ऐसे में ईशा मोनिका को समझाने और शांत करने की कोशिश कर रही है, तो वही ताई जी का भी इमोशन बाहर आ गया जहां वो खुद को ही कोस रही है। लेकिन इन सब में ईशा इन सभी का सहारा बनी हुई है।
2: मुझे लगता था मैं इंसान को बहुत अच्छे से पहचान सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं गलत निकली। मेरे साथ होते हो।

0: एक ड्रामा खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आने वाला है। जी हाँ, अभी रिश्तों के बवाल देखने को मिलेंगे। असल में सूरज को पता चल गया है कि बंटी उसकी बहन से प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन है क्योंकि बंटी तो करता है रिया से प्यार, लेकिन सूरज को लग रहा है कि बंटी काव्या से प्यार करता है। ऐसे में पहले तो बंटी को लगा कि सूरज उसे मारने आया है, तभी तो वो उसके पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा है।
1: मैं अंडमान निकोबार से भी दूर चला जाऊंगा, प्लीज मुझे मत मारना भैया, मैं कभी जिंदगी में शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको। तो मार लो, लेकिन थोपड़े पे मत मारना, वो मैं हट तो मरना चाहता हूँ।
2: तुझे क्या लगता है कि तू मेरी बहन को छोड़कर दूर भाग जाए? ये बैग ये रास्ते में पड़ा था बच्चों का, तो बस हटा लिया था।
0: लेकिन फिर सूरज बंटी को बताता है कि उसे सब पता है और वो बंटी को जीजा जी बनाने को तैयार है। ऐसे में खुशी से वो बंटी को गले लगा लेता है, लेकिन यहाँ बंटी को ये नहीं पता कि सूरज काव्या से बंटी की शादी की बात कर रहा है, लेकिन प्यार तो बंटी रिया से करता है।
2: अबे वही जीजू, तेरे पास मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बची, समझ गया?
3: यहाँ पे न्यूज चैनल है, गालियाँ नहीं बरसा सकते, नहीं तो बहुत सारे जगह पे प्रथा है कि जीजा जी को गालियाँ भी देते हैं, है ना?
4: वो मेरे साले साहब बन जाएंगे
3: ये।
4: यार मेरे को ऑकवर्ड लग रहा है, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, मुंह से बोल रहे हैं।
3: नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है,
4: भैया भैया बोल रहा हूँ।
3: हाँ तो भैया भैया भैया अभी कहीं ना कहीं साले में कन्वर्ट हो रहा है और ये मेरा जीजा बन रहा है, जीजू बन रहा है। तो ऐसा नहीं कि मतलब ये भैया का रिस्पेक्ट भूल जाएगा, जीजा बिहेव करेगा। इसके दिल में हमेशा सूरज भैया के लिए सूरज भैया की ही जगह रहेगी और सूरज के दिल में बंटी के लिए बंटी की ही जगह रहेगी।
5: कन्फ्यूजन बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है और बहुत इमोशनल कन्फ्यूजन है एक्चुअली में, क्योंकि अब इतने टाइम के बाद बंटी और रिया का ने एक बहुत प्यारा खूबसूरत बॉन्ड बनाया। अब वो बॉन्ड इस लेवल पे आ गया कि मतलब वो लाइक मेड फॉर ईच अदर वाला जोन आ गया है। बट कन्फ्यूजन ये हो गई है कि फाइनली जो रिया है बहुत टाइम से उसको बोल रही थी कि बोल दे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। अब फाइनली जब उसने बोला तब उसका फील हुआ कि वो जाके सिर्फ उसने बोला और सूरज भैया को, और सूरज भैया ने वो सुना नहीं, मतलब उन्होंने सोचा काव्या के लिए, मतलब कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ। तो बस अब कंफ्यूजन ऐसी हो गई कि जिससे बहुत हार्ट ब्रेकिंग वाला सीन होने वाला है।
3: सूरज एक्चुअली काव्या के लिए लड़का ढूंढ ही रहा था, लेकिन लड़के मिल नहीं पा रहे थे, ईशा जी भी ढूंढ रही थी। तो कहीं ना कहीं काव्या के साथ कुछ ऐसा होता है कि हाथ में चोट वोट लगी रहती है और बंटी उसे लेकर जाता है। सूरज बोलता है बंटी लेकर जा, थोड़ा सा इलाज करवा के लेकर, और जब ये आता है और काव्या को जस्ट घर में हैंड ओवर करता ही है और बोल देता है कि भैया मुझे आपकी बहन क्या
5: मुझे आपकी कुछ ऐसा इंस्टेंट लगातार बोल, मुझे आपकी बहन से प्यार है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस।
3: हाँ,
0: तो भाई इस प्यार और शादी के कंफ्यूजन को लेकर रिश्तों में कौन से बवाल आएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है।
6: आज एक वादा करते हैं कि हम दोनों किसी को एक दूसरे से दूर करने की इजाजत नहीं देंगे।
0: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: हमारी डॉक्टर आलम भी हमसे यही कह रही हैं कि जो सनग्लासेस हैं ये सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी नहीं है, प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस हमें हार्मफुल यूवी रेस से बचाते हैं। तो स्टाइल के साथ साथ यहाँ पर सेल्फ केयर भी, वैसे हम तो चाहते हैं कि यहाँ आप भी रखें अपना ख्याल, क्योंकि देखिए आपकी कहानी में इतना तूफान है, इतना तूफान है, इतने ट्विस्ट हैं कि यहाँ आपकी आंखों में हमेशा बने रहते हैं आंसू, जबकि हम तो देखना चाहते हैं आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर आरबी के सेट पर।
0: घर से भागा विहान,

0: हुआ परेशान। क्या खतरे में है आरंभी के बेटे की जान? कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आरंभी का बेटा विहान दो कदम आगे निकल गया। असल में आरंभी को ससुराल से निकाल दिया है, ऐसे में विहान बस अपनी माँ से मिलना चाहता है, लेकिन घर वालों ने विहान की निगरानी में सौंदर्या को रखा है। ऐसे में सौंदर्या विहान को सुला रही है, लेकिन विहान कोशिश कर रहा है कि सौंदर्या सो जाए और वो मौका पाते ही फरार हो जाए। ऐसे में देखिए कैसे सौंदर्या जब गहरी नींद में जाती है तो विहान जाकर उसे चेक करता है और चेक करने के बाद वो कोशिश करता है कि अपना सामान ले सके, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है क्योंकि गलती से उसके हाथों से वो सामान गिर जाता है। भाई मानना पड़ेगा विहान को, उसे देखकर तो सौंदर्या चकमा खा गई, और जैसे ही सौंदर्या फिर से गहरी नींद में चली गई तो विहान ने अपना बैग उठाया। अपना सामान लिया और वहाँ से निकल भागा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कमरे में आ जाता है ध्रुव और विहान को ना पाकर वो ढूंढने लगता है विहान को। इतना ही नहीं, वो सौंदर्या को भी जगाकर विहान के बारे में पूछता है और तब सौंदर्या को भी लगता है जोरदार झटका।
1: सौंदर्या उठो, विहान का है। यही सो रहे थे, पर यहाँ नहीं है ना सौंदर्या, कहाँ गया होगा विहान, को आइडिया है?
2: मैं आरंभी दीदी को क्या जवाब दूंगी, मुझे विहान बाबा का ख्याल रखना चाहिए, पता चला तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। विहान बाबा किधर चले गए?
1: सौंदर्या रिलैक्स रिलैक्स, तुम खुद प्रेग्नेंट हो, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई आइडिया है कि विहान कहाँ जा सकता है? शायद घर में कहीं छुपा हो। एक तो विश्वास और उसका पूरा परिवार सिर्फ तमाशा करने में इंटरेस्टेड होते हैं, अब विहान गायब हुआ है, उसका भी पूरा टाइम आरंभी पे जाएगा।
0: यहाँ ध्रुव सौंदर्य को डांट रहा था कि तभी ध्रुव को आ जाता है आरंभी का कॉल। ऐसे में आरंभी उसे बताती है कि उसे सिक्योरिटी गार्ड ने कॉल करके बताया है कि विहान बैग लेकर कहीं निकला है। ऐसे में वो अपना डर जाहिर करती है, लेकिन विहान उसके डर को दूर करता है और उसका साथ देने का वादा करता है।
1: हम है ना, हम ढूंढ लेंगे विहान को, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, विहान को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू, मिल जाएगा।
3: आप जल्दी आइए सर, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती मैं।
0: खैर विहान आनन फानन में वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा है और जाते जाते सौंदर्या को समझा कर जा रहा है कि अगर गलती से विहान आ जाए तो उसे पहले फोन करके बताएं। ऐसे में सौंदर्या भी डरी हुई है कि कहीं डिंपल को पता चल गया कि विहान घर से भाग गया है, नया बवाल खड़ा होगा जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: आपने एक सिंपल व्हाइट शर्ट के साथ डेनिम्स पहन रखे हैं, बस उसके साथ आप एविएटर या फिर ओवरसाइज ग्लासेस लगाइए, देखेगा इंस्टेंटली आपका लुक चेंज हो जाएगा, स्टाइलिश एंड ग्लैमरस। देखा, मैं तो शेयर करती हूँ आपके साथ हमेशा अमेजिंग स्टाइलिंग टिप्स, और उसी के साथ साथ लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए अगली खबर जिससे परोस रहे हैं हम आपको राइट हियर राइट नाउ, वो भी गर्मा गर्म। कैसे? ऐसे।
5: दीपिका मोनालिसा और अद्रिजा पर चढ़ा डांस का फीवर। बर्थडे पार्टी में लगा सितारों का मेला। मोनालिसा के नच का टशन। पहले की शाम हुई बर्थडे पार्टी बालाजी के टैलेंट हेड मोहम्मद नगमा लतीफ की, जिसमें लग गया सितारों का मेला।

यहाँ खास मेहमान बनकर पहुँची हैं भाभी जी यानी कि शुभांगी अत्रे, जिन्होंने आज पार्टी के लिए व्हाइट रंग चुना है। तो वही पहुँची मोनालिसा अपने हुस्न का काला जादू चलाने।

0: सुर भी चांदना जो अपने हस्बैंड संग यहाँ पहुँची।
1: आढ़ा टेढ़ा डांस मेरा अच्छा लगे तुमको, जैसे मैं करता हूँ।
0: इसके अलावा पुनः राजू भी इस पार्टी में पहुँची।

देखिए सभी ने मिलकर केक काटा, डांस से समा बांधा और पार्टी में लगा दिए चार चांद। तो भाई हमारी तरफ से भी इन्हें बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: आज के हैप्पी आवर्स भी होंगे सनग्लासेस की तरह कूल और स्टाइलिश। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज, क्योंकि ये तो है एंटरटेनमेंट के हैप्पी आवर्स। चले आएंगे आपके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट।
1: All the best guys,
2: kill it. All the best guys, everyone. Let's do it. Let's do it.
1: Going for start. 3, 2, 1, go. डाल दे, हाथ डाल दे बस।
3: रूही शुरू में लगेगा, बस हो जाएगा। मम्मी मम्मी मम्मी मम्मी मम्मी मम्मी
1: सीधा बाजू पे डाल के इकट्ठा कर बस।
3: मम्मी मम्मी मम्मी
1: सच्चा पता लेगा फैजल। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया?
4: आराम से
1: रूही हाथ हिलाती रहे।
5: सुहाने का की मूविंग योर हैंड डोंट लाइक गो ऑन द सेम स्पॉट आल्सो।
1: वेरी गुड हार्ट।
3: तू
2: गिरा रहा है, तेरे को इससे स्क्रेप करना है अंदर। हाँ वो क्या सब कर रहे हो देख।
5: आज हाथ को कप बनाओ के ले लो।
2: कौन सा कप?
3: ऐसे ऐसे।
4: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
2: भाई, बहुत गर्म है भाई।
3: गुड रोहानिका, गुड गुड रोहानिका, गुड गुड। ऐसे करो, ऐसे करो।
1: बहुत बढ़िया दिखी है इसे।
0: तो आज के एपिसोड में हमने देखे इन शेड्स के कितने सारे स्टाइल्स एंड कलर्स। देखिए ये जो सनग्लासेस हैं सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी नहीं है, बल्कि आपकी आंखों की केयर के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फैशन एक्सेसरी है। तो आज के बाद जब भी आप सनग्लासेस खरीदने जाएं, सिर्फ उसके लुक को ना देखें, बल्कि ये देखें कि वो आपके चेहरे पर फिट कैसा होता है और उसमें यूवी प्रोटेक्शन कितना है। क्योंकि देखिए फैशन तो तभी हिट होता है जब उसके साथ साथ सेल्फ केयर भी हो। अब लेते हैं आपसे इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे स्टाइलिश।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुजरात के डीसा में बनेगा एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला नाइट सफारी और जू। लगभग 2700 जानवर 83 प्रजातियों का होगा बसेरा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर लहराया राष्ट्रध्वज। आम लोगों से भी जुड़ने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी में बांदा की महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार का मिला बड़ा मौका। आजादी के जश्न के लिए तैयार कर रही 2,00,000 तिरंगे। रायपुर में पूर्व नक्सली महिलाओं ने बदलाव की लिखी कहानी। कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में रैंप पर किया वॉक। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश। दिल्ली यूपी समेत 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। हिमाचल में 13 से 19 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर एक बार फिर से दिखी देश के आन बान और शान की तस्वीर। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, एनसीसी कैडेट्स भी शामिल हुए। देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया लाल किला परिसर। फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा देश के जवानों का जोश। पूरे जोश में कदम ताल करते हुए नजर आए जवान। मार्चिंग बैंड ने बजाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन। स्वतंत्र भारत के गौरव की शानदार अनुभूति से सराबोर हुआ वातावरण। रिहर्सल के दौरान हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। शनिवार को आजादी के पर्व को मनाने के लिए देशभर से जुटेंगे लोग। स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी। कल लाल किले के आसपास 7 सड़कें बंद। कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी। दिल्ली में 20,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। लाल किले के आसपास 1,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमें कर रही निगरानी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी। बॉर्डर पर हो रही सघन चेकिंग। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी। आरपीएफ जीआरपी ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड से प्लेटफॉर्म परिसर की जांच। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। इस साल समारोह में छत्तीसगढ़ महिला पुलिस बल का बैगपाइपर बैंड दस्ता होगा आकर्षण का मुख्य केंद्र। सीएम भूपेश बघेल लेंगे परेड की सलामी। रिहर्सल के दौरान घुड़सवारों ने दिखाए शानदार करतब। डॉग स्क्वाड ने भी खींचा सबका ध्यान। जम्मू में भी स्वतंत्रता दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। पूरे जोश में नजर आए जवान। कलाकारों ने पेश किए शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम। दिखी कश्मीरी संस्कृति की खूबसूरत झलक। हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत लखनऊ में बनाए जा रहे लाखों तिरंगे। राष्ट्रध्वज बनाने में दिन रात जुटी हैं महिलाएं। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर पूरे प्रदेश में लहराए गए तिरंगे। घर घर गूंजेगा भारत माता की जय का जयकारा। बांदा में बड़े स्तर पर बनाए जा रहे तिरंगे झंडे। महिलाओं द्वारा 2,00,000 से ज्यादा झंडे बनाने का टारगेट। गांव प्रधान और सचिव वितरित करेंगे झंडे। सरकारी कार्यालयों में भी लगाए जाएंगे तिरंगे। कुलगाम में आयोजित की गई विशाल तिरंगा रैली। जम्मू कश्मीर पुलिस

0: के साथ कई सुरक्षा जवानों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में तिरंगा रैली की शुरुआत डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तिरंगा रैली का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में बीजेपी नेता शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में तिरंगा रैली का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। गांधरबल की सड़कें देशभक्तों से गुलजार, हर गली हर मोहल्ले में देशभक्ति के गूंजे तराने। अनंतनाग में मेगा तिरंगा रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लगाए भारत माता की जय के जयकारे। रामबन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति में लीन नजर आया हर कोना, लोगों ने एकजुटता का दिया संदेश। पुंछ में मदरसा छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, छात्रों ने लगाए भारत माता के जयकारे। गया की सड़कें देशभक्तों से गुलजार हुई, हर गली हर मोहल्ले हर कूचे में देशभक्ति के गूंजे तराने। तिरंगा रैली में लोगों का जबरदस्त उत्साह नजर आया, रैली के दौरान लोगों ने देशभक्ति के तराने गाए। आंध्र प्रदेश की एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन हुआ, जिला प्रशासन ने जिला कलेक्टर कार्यालय से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक निकाली रैली। कानपुर में वीर सम्मान अभियान, स्वतंत्रता दिवस से पहले पूर्व सैनिकों का सम्मान, उनकी वीर गाथाएं सोशल मीडिया पर भी होंगी साझा। मध्य प्रदेश के खंडवा से आई देशभक्ति की शानदार तस्वीरें, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। अनोखी रैली में तिरंगे से सजी 150 नावें हुई शामिल, नर्मदा की लहरों पर दिखा देशभक्ति का पूरा माहौल। बिलासपुर से मुख्यमंत्री सुक्खू ने दी सौगात, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 1500 मछुआरों को बांटे लगभग 53 लाख। राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में फिर से बदलाव, अब बिना सिले पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे पुजारी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीला रंग भगवान श्री राम का प्रिय। 15 अगस्त से एक ही निर्धारित पोशाक में नजर आएंगे सभी पुजारी, निर्धारित ड्रेस के अनुसार नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय वस्त्र धारण करेंगे अर्चक। रेशम यानी सिल्क का होगा ये वस्त्र, रेशमी वस्त्र की पवित्रता और शुद्धता को ख्याल में रखते हुए ड्रेस कोड में बदलाव। सावन महीने में प्रयागराज के नाथेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी, ताले वाले महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं भोलेनाथ। मंदिर में दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मंदिर परिसर में लगाते हैं ताला, इच्छा पूरी होने पर श्रद्धालु दोबारा मंदिर पहुंचकर उसी ताले को खोलते हैं। गुजरात में आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत, राज्य भर के शिवालयों में लगी भक्तों की कतारें। गुजरात में डमरू यात्रा से सावन महीने का आगाज हुआ, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी समेत बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गुजरात के गिर सोमनाथ मंदिर में सावन के पहले दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। राजकोट में सावन के पहले दिन मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। सावन के पहले दिन भक्तों ने बेलपत्र गंगा जल से किया बाबा का भोलेनाथ का जलाभिषेक, हर हर महादेव के लगाए जय घोष। कांवड़ यात्रा में दिख रहे देशभक्ति के रंग, सबसे आगे तिरंगा लिए विशाल महाकाल महादेव की प्रतिमा लेकर आगे बढ़ते नजर आए कांवड़िए। छोटे बच्चों को कांवड़ में बिठाकर पवित्र यात्रा पर निकले शिव भक्त, बोलबम के उद्घोष के साथ जारी यात्रा। गणेश चतुर्थी के नजदीक आते ही तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में भगवान गणेश की सुंदर आकर्षक मूर्तियां बनाने का काम रफ्तार के साथ जारी, बाजार में इन मूर्तियों की खासी डिमांड।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं। आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: गुजरात के डीसा में बनेगा एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला नाइट सफारी और जू, लगभग 2700 जानवर, 83 प्रजातियों का होगा बसेरा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर लहराया राष्ट्र ध्वज, आम लोगों से भी जुड़ने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी में बांदा की महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार का मिला बड़ा मौका, आजादी के जश्न के लिए तैयार कर रही हैं 2,00,000 तिरंगे। रायपुर में पूर्व नक्सली महिलाओं ने बदलाव की लिखी कहानी, कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में रैंप पर किया वॉक। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, दिल्ली यूपी समेत 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट, हिमाचल में 13 से 19 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। शिव में भक्ति और शक्ति में शिव समाये हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए शिव शक्ति की संयुक्त कृपा के बिना संसार गतिमान ही नहीं हो सकता। भगवान शिव की उपासना बिना शक्ति आराधना की अधूरी मानी जाती है। शिव शक्ति एक है और इसके सूचक हैं भगवान अर्धनारेश्वर। आज हम आपको भगवान शिव के अर्धनारेश्वर स्वरूप की महिमा बताएंगे और जानेंगे शिव के नारेश्वर स्वरूप से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। तो चलिए करते हैं देवादिदेव महादेव के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव सृजन भी करते हैं और संहार भी। सनातनी आस्था कहती है कि ब्रह्मांड का शक्ति पुंज है देवादिदेव महादेव। शिव निराकार भी है और साकार भी। प्रकृति और सृजन को समर्पित शिव का एक अद्भुत स्वरूप है अर्धनारीश्वर। माना जाता है कि शिव के इसी स्वरूप से सृष्टि का संतुलन जुड़ा है, ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। क्योंकि शिव के इसी स्वरूप में समाई है प्रकृति रूपी शक्ति, जिसके आधे आकार ने प्रकृति को आधार दिया। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव के इसी स्वरूप से जीवन संभव हुआ है, क्योंकि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। आप कह सकते हैं कि शिव में समाई है शक्ति, शक्ति में समाई है शिव। अद्भुत है शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की महिमा बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये स्वरूप समाज में स्त्री और पुरुष की पूर्ण समानता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार है।
1: ये भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप स्पष्ट हमें इंगित करता है कि भगवान की प्रकृति और भगवान के पुरुषत्व अर्थात भगवान की शक्ति को दो आयाम में नहीं कह सकते, एक ही शक्ति के दो स्वरूप है। तो हमारे यहाँ जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का अनुभव किया जाता है, ये दोनों भगवान की प्रदत्त शक्ति के द्वारा पुरुष द्वारा संपादित है, यही भगवान अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें बताता है।
0: माना जाता है कि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की उपासना करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। सुख और समृद्धि के साथ ही आपके जीवन में एक साथ शिव और शक्ति की कृपा बरसती है। लेकिन शिव के स्वरूप का जन्म कैसे हुआ, तो हम आपको बता दें कि भगवान के इस परम कल्याणकारी स्वरूप से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसमें शिव के इस रूप में अवतरित होने का रहस्य छिपा है। आइए आपको वो कथा सुनाते हैं। एक ऋषि थे, नाम था भृंगी। वो महादेव के परम भक्त थे। ऋषि भृंगी भगवान शिव की आराधना करते थे, लेकिन माता पार्वती को नहीं पूछते थे। हालांकि उनकी भक्ति पवित्र और अदम्य थी, लेकिन वो माता पार्वती को हमेशा ही शिव से अलग समझते थे। ऋषि शिव और केवल शिव को ही पूजते थे, उन्हें शिव के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। भृंगी ऋषि एक बार कैलाश पर भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे, लेकिन वो पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे। ऋषि के इस कृत्य पर माता पार्वती ने ऐतराज जताया और कहा कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन भृंगी ऋषि ने पार्वती जी को अनसुना कर दिया और भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए बढ़े। ऐसा देखकर माता पार्वती शिव से सट कर बैठ गई। इस पर भृंगी ने सर्प का रूप धरा और दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। अब भृंगी ऋषि क्या करते, गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिव पार्वती को बीच से कुतरने लगे। ऋषि की इस हरकत पर आदिशक्ति को क्रोध आ गया और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी माँ से मिला है, वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह छोड़ देगा।
1: केवल शिव की ही उपासना करने वाले भृंगी ऋषि माता से उनको पृथक करते थे और भक्ति केवल शिव की करते थे। तो भगवान की परिक्रमा करते हुए माता को छोड़ते हुए शिव और माता के बीच से सर्प रूप में परिक्रमा करने का प्रयास किया, जिससे भगवान शिव की समाधि भंग हो गई। और भगवान की इस स्थिति को देखते हुए माता ने उनको श्राप दिया कि आप माता को अपने पिता से अलग मान रहे हो, इस कारण से आपके शरीर में जो मात्र शक्ति है वो समाप्त हो जाए। तो माता के श्राप से जब ये अलग हो गए, भृंगी अनंत जो है पीड़ा में धरती पर पड़ गए। माता से क्षमा याचना की, तब माता ने उनकी पीड़ा दूर करके और तब उनकी गलती क्या है समझाते हुए भगवान अर्धनारीश्वर रूप से प्रकट हुए थे, जिसमें वामांगी माता सती थी और दाहिने हिस्से में त्रिशूलधारी भगवान शिव थे। यही भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप की कथा कहलाती है।
0: विज्ञान भी कहता है कि इंसान के शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां पिता की देन होती हैं, जबकि खून और मांस माता की देन होते हैं। आज मानव के अस्तित्व की इस कथा का आरंभ हुआ था एक पौराणिक कथा से, अर्धनारीश्वर की कहानी। श्राप के तुरंत प्रभाव से भृंगी ऋषि के शरीर से खून और मांस गिर गया। भृंगी ऋषि निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। ऋषि भृंगी ने माँ पार्वती से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। माँ पार्वती ने द्रवित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, लेकिन भृंगी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। माना जाता है कि सृष्टि के निर्बाध संचालन के लिए शिव ने ये लीला रची। कहने को तो ये कथाएं हैं, लेकिन वास्तव में यही प्रकृति के जीवंत होने का आरंभ था। कहते हैं कि भक्त भृंगी के कारण ऐसे हुआ था महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का उदय। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप से जुड़ी एक और रोचक कथा है, वो हम आपको आगे सुनाएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: कथा कहती है कि जब परमपिता ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्हें जरूरत महसूस हुई कि सृष्टि की उत्पत्ति के बाद निरंतर इसका विकास कैसे हो। ब्रह्मा जी की इसी उलझन को सुलझाने के लिए परमात्मा शिव ने एक रूप धारण किया, जिसे अर्धनारीश्वर शिव के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप से जुड़ी है एक और रोचक कथा। आइए आपको वो परम कल्याणकारी कथा सुनाते हैं।

0: शिव की है शक्ति और शक्ति के हैं शिव। परम कल्याणकारी हैं अर्धनारीश्वर शिव। शिव की शक्ति का क्या कहना, शिव से ही संसार गतिमान है। हर तरफ शिव की महिमा का ही गुणगान है। माना जाता है कि अलग अलग रूपों में भगवान शिव अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं। प्रभु के अलग अलग रूपों की अपनी परिभाषा और अपना महत्व है। शिव के कल्याणकारी उन्हीं रूपों में एक है अर्धनारीश्वर शिव। माना जाता है कि शिव के स्वरूप का विधिवत पूजन करने से न सिर्फ विवाह की अड़चन दूर होती है बल्कि दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आती है।
1: किसी भी व्यक्ति को अगर प्रकृति से प्रेम है और प्रकृति प्राप्त न हो रही हो, अर्थात तो उसका विवाह संबंधी आदों में तकलीफ चल रही हो, विवाह न हो रहा हो, तब उसको अर्धनारीश्वर स्वरूप की कामना और उनका पूजन करने से विवाह संबंध आदि तय होते हैं और उसको स्त्री सुख प्राप्त होता है, शक्ति उसके जीवन में अवश्य आती है।
0: शास्त्रों में शक्ति को शिव का अविभाज्य अंग माना जाता है। शिव नर के घोतक है तो शक्ति नारी की। शिव के बिना शक्ति का और शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी जीवों की उत्पत्ति करने में असमर्थ रहे तब शिव जी ने इसी रूप में प्रकट होकर उन्हें सृजन की प्रेरणा दी।
1: इस धरती पे जब ब्रह्मा जी ने नारायण के दर्शन करके कहा कि आप कौन हैं, उनकी कमल नाल से नीचे उतरते हुए, तब उन्होंने कहा कि मैं इस धरती का रचयिता हूँ। उसने कहा तो मैं हूँ रचयिता, तो कहने लगे आप तो मेरे नाभि कमल से रचना हुई है। तब उन्होंने कहा आप एक मूल प्रकृति को भूल रहे हो, उनका नाम है शिव, सदाशिव। तब उनके योग बल से शिव के दर्शन करके उनको एहसास हुआ कि सबसे प्रथम शक्ति ही भगवान शिव और नारायण है। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो आप ये समझिए कि शक्ति तो भगवान की असीमित है, वो तो मूलधार है किसी भी प्रकृति किसी भी सृजन के।
0: भगवान शिव के इस अद्भुत और परम कल्याणकारी स्वरूप से जुड़ी एक रोचक कथा भी मिलती है जिसमें भगवान के अर्धनारीश्वर अवतार से जुड़ा रहस्य है। आइए आपको वो पौराणिक कथा सुनाते हैं। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि में जीवों की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया, परंतु तब तक शिव से शक्ति का उत्पन्न नहीं हुआ था। कथा कहती है कि तब ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की तपस्या से शिव संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर उनके पास गए और अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपने अंश से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की रचना की जिसने दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया।
1: भगवान शिव ही इस सृष्टि के रक्षा करने वाले पालन करने वाले हैं, इसलिए शिव के साथ ही प्रकृति है, वही तो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। और ब्रह्मा जी को इस स्वरूप का दर्शन उनको यही प्रेरणा देने के लिए दिया था है, क्योंकि नहीं तो ब्रह्मा जी जो मानस अपने है ना उत्पन्न करते जाते थे जीव, वो एक समय पश्चात समाप्त हो जाते थे, सृष्टि को पुनः पुनः ब्रह्मा जी को रचना पड़ता था। इसलिए भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि जैसे शिव और शक्ति है यानी कि अर्धनारीश्वर स्वरूप है, तो स्त्री और पुरुष संज्ञात्मक प्रजनात्मक सृष्टि का रचन करें, तब ये सृष्टि लगातार बढ़ती रहेगी।
0: शिव को समझना कतई आसान नहीं। बड़े बड़े योगी ज्ञानी शिव के रहस्य से आज तक अनजान है, क्योंकि परमात्मा शिव आदि और अंत से परे है। शास्त्रों में त्रिलोकी नाथ की महिमा की कोई था नहीं है, लेकिन शक्ति के बिना शिव साधना का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव शव समान हो जाते हैं।
1: शिव का नाम ही है कल्याण। शिव का अर्थ है जो शिव को भजेगा उसका कल्याण ही होगा। इस धरती के ऊपर ये जो भगवान का स्वरूप है केवल कल्याण करने के लिए आया है। अगर शत्रुओं का संहार भी किया तो धरती का संहार भी किया, प्रकृति का संहार भी किया, तो मात्र कल्याण की भावना से ही। और शिव और शव में वही इकार प्रकृति अर्थात माता सती की शक्ति का ही अंतर है। जो वो माता सती अगर कभी अलग हो गई तो शिव शव बन जाते हैं, ऐसा बताया गया।
0: शिव की शक्ति की महिमा। शिव कारण है और शक्ति कारक। शिव संकल्प करते हैं और शक्ति संकल्प सिद्धि। शक्ति मस्तिष्क है और शिव हृदय। शिव ब्रह्मा है और शक्ति सरस्वती। शिव विष्णु है और शक्ति लक्ष्मी। शिव महादेव है और शक्ति पार्वती। शिव रुद्र है और शक्ति महाकाली। शिव सागर के जल समान है और शक्ति सागर की लहर। यही है शिव और उनकी शक्ति का संबंध। तो प्रार्थना करें शिव शक्ति के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप की। भगवान अर्धनारीश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। आगे हम आपको भगवान शिव से जुड़ी कुछ और खास बातें बताएंगे। भगवान शिव अर्धनारीश्वर क्यों है और इसका अर्थ क्या है, शिव नाम का मतलब क्या है और क्या है शिवलिंग की महिमा, आइए इन सभी सवालों का जवाब भी अब हम आपको बता देते हैं।

0: जिनकी कृपा से ये संसार गतिमान है, जिनकी उपासना से हर मुश्किल आसान है, वही है देवों के देव महादेव। भगवान शिव को अलग अलग रूपों और अलग अलग नामों से भक्त याद करते हैं। इसी का एक रूप है अर्धनारीश्वर शिव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव ही अर्धनारीश्वर क्यों बने, बाकी देव क्यों नहीं? शिव अर्धनारीश्वर क्यों बने? इसका अर्थ ये नहीं कि शिव आधे पुरुष ही हैं या उनमें संपूर्णता नहीं। ये शिव ही है जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। ये सृष्टि के आधार और रचियता यानी स्त्री पुरुष शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं। इनके मिलन और सृजन से ये संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना प्रकृति। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्परिकता के प्रतीक है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव का दायां भाग पुरुष तत्व यानी चेतना का प्रतीक है, जबकि शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती उनके बाएं भाग में समाहित है। माना जाता है कि ये स्त्री तत्व प्रकृति की ऊर्जा का प्रतीक है। ये रूप बताता है कि ऊर्जा के बिना चेतना निष्क्रिय है और चेतना के बिना ऊर्जा निरर्थक है। यानी शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप एक दूसरे के पूरक है।
1: तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में यही तो भगवान संदेश देते हैं कि शक्ति अर्थात प्रकृति और पुरुष यानी के भगवान शिव दोनों अलग ही नहीं है। तो भगवान की जैसे अलग अलग अवतार हुए, अलग अलग रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, उसी प्रकार से उनकी शक्तियां भी उनके समांगी ही अवतरित हुई हैं। तो पांच शक्तियों का कहना भगवान का गलत होगा, परंतु भगवान की शक्ति तो असीमित है।
0: भगवान शिव अंतर्यामी है, वो करुणा के सागर है। शिव ही परम सत्य है। शिव से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। शिव की शक्ति उनके नाम में समाई है, आप खुद ही देख लीजिए। शिव नाम से है जगत में उजाला। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांति दाता बताया गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि व का अर्थ देने वाला यानी दाता। भगवान शिव की उपासना सबसे ज्यादा शिवलिंग स्वरूप में ही की जाती है, इसकी भी एक वजह है, आइए आपको बताते हैं।
1: शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीकात्मक स्वरूप है। ये प्रकृति और पुरुष का सम्मिलित स्वरूप कहलाता है, जैसे अर्धनारीश्वर। तो ये कई लोग मन में भावना रख लेते हैं कि लिंग स्वरूप है। लिंग नहीं, वो प्रकृति और शक्ति का एकात्मकता दिखाता है। भगवान शिव का कल्याण स्वरूप और धरती का पालन करने वाला स्वरूप है।
0: शिवलिंग की महिमा। शिव की दो काया है, एक वो जो स्थूल रूप से व्यक्त किए जाए, दूसरी वो जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है। शिव की सबसे ज्यादा पूजा शिवलिंग स्वरूप में ही की जाती है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह। इसी अर्थ में ये शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। माना जाता है कि शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही होती है मनवांछित फलों की प्राप्ति। तो आप भी शिव का ध्यान पूरे मनोयोग से कीजिए, जिससे आपके सभी पापों का समूल नाश करके भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाएं।
2: और चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार के आज के इस एपिसोड में। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: नाग पंचमी से पहले मसूरी में नाग देवता की पालकी निकाली गई। मसूरी के भट्टा गांव में ये परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पालकी यात्रा के ठीक बाद नाग पंचमी के दिन नाग देवता के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की गई।
6: पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ जब निकली नाग देवता की पालकी तो आस्था के रंग में रंगी संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिली। नाग पंचमी से पहले मसूरी के भट्टा गांव में नाग देवता की डोली क्यारकुली नाग देवता मंदिर के लिए रवाना हुई। बारिश के मौसम के बावजूद इस डोली यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नाग देवता के सम्मान में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। ढोल और दमाओं की थाप पर नाग देवता के जयकारों से वादियां गूंज उठी। मसूरी में नाग देवता की डोली यात्रा की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि नाग देवता क्यारकुरली भट्टा क्षेत्र के रक्षक और ग्राम देवता हैं। ये डोली यात्रा क्यारकुरली में नाग देवता के मंदिर तक जाती है, जो करीब 500 साल पुराना है। नाग पंचमी से पहले होने वाली ये डोली यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि इस क्षेत्र की करीब सदियों पुरानी लोक आस्था और परंपरा का अभिन्न हिस्सा भी है। इस डोली यात्रा के साथ ही क्यारकुली नाग देवता के मंदिर में भागवत कथा का शुभारंभ भी हो गया। इस भागवत कथा का समापन 17 अगस्त को नाग पंचमी के शुभ अवसर पर होगा। इसके बाद नाग पंचमी के दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ मेले का आयोजन भी किया जाएगा। बदलते दौर में ये डोली यात्रा पहाड़ों के लोक आस्था और संस्कृति को जीवंत रखने का काम कर रही है। इस यात्रा में बड़े बुजुर्गों के साथ बड़ी संख्या में नई पीढ़ी का शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा की जड़ें यहाँ लोगों के दिलों की गहराइयों में बसी है। मसूरी से सागर शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
7: भगवान शिव की कौन सी स्तुति करके बड़ी से बड़ी समस्या को टाला जा सकता है? भगवान शिव की कौन सी स्तुति से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है? कौन सी हैं भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
5: गुजरात के डीसा में बनेगा रेगिस्तान थीम वाला एशिया का पहला नाइट सफारी और जू, लगभग 83 प्रजातियों के करीब 2700 जानवरों का होगा बसेरा।
9: अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर लहराया राष्ट्रध्वज। आम लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी में बांदा में महिलाओं को मिला रोजगार का मौका। आजादी के जश्न के लिए तैयार कर रही 2 लाख तिरंगे। रायपुर में दिखी बदलाव की बयार। कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक।

दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। यूपी समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में 19 अगस्त तक बारिश का अलर्ट।

मौत के बाद भी जिंदगी, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज है वर्ल्ड ऑर्गन डे। किसी को नई जिंदगी देने से बड़ा उपहार कहते हैं कि कुछ और नहीं हो सकता। हमारे देश में हर साल हजारों लोग वक्त से पहले सिर्फ इसलिए दुनिया छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे देश में जरूरत के मुताबिक अंग दान करने वाले नहीं है। आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है और आज भी लाखों लोग एक एक अंग के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जितनी जरूरत है उससे काफी कम लोगों को ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, क्योंकि अंगदान करने वालों की सूची काफी छोटी है और वजह कारण इसके बहुत सारे हैं। तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे पर सबसे बड़ा सवाल यही कि अंगदान को लेकर कब बदलेगी सोच। एक संकल्प से आठ जीवनदान, मौत के बाद भी जिंदगी, इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने डॉक्टर, समाज सेवी और खुद ऑर्गन डोनर भी।

0: तो अंगदान बेशकीमती है और इसी को लेकर आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जा रहा है। भारत में अंगों की कमी से सालाना करीब 5 लाख जीवन पर संकट होता है। नोटो की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक करीब 90,000 मरीज वेटिंग लिस्ट में थे। नोटो यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है। यह भी बताते चले कि साल 2025 में करीब 20,000 ऑर्गन ही ट्रांसप्लांट हो सके हैं। अगर ऑर्गन डोनेशन हुआ तो एक इंसान 8 लोगों को जीवन दान कर सकता है। एक शरीर 50 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बना सकता है। भारत में अंगदान को लेकर जागरूकता का अभाव है। भारत में 10 लाख की आबादी पर केवल एक व्यक्ति है जो अंगदान करता है। वैसे स्थिति विदेशों में भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। विदेशों की भी अगर बात कर ले तो वहां पर भी बहुत कम लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं, लेकिन आंकड़ा फिर भी भारत से बेहतर है। अगर हम स्पेन की बात कर लें तो 10 लाख में 54 ऑर्गन डोनर्स हैं, जो कि अगेन बहुत ज्यादा कम है। अमेरिका की बात करें तो वहां भी 10 लाख में 50 डोनर्स हैं। यूएसए में डीएल बनाते समय ही अंगदान पर सवाल पूछे जाते हैं, यानी आप अंगदान करना चाहते हैं या फिर नहीं। हालांकि ऐसे कुछ प्रावधान हमारे देश में भी शुरू किए गए हैं कहीं कहीं जगह। अगर हम पुर्तगाल की बात करें तो 10 लाख की आबादी में केवल 37 लोग अंगदान करते हैं। तो अंगदान के लिए संकल्प बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है। अंगदान पर सोच बदलने की का समय अब आ गया है। तो एक एक अंग की अहमियत क्या है इसको समझना और समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी कीमत वही मरीज जान सकता है जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उन्हें किसी अंग की जरूरत है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय कराती हूँ, फिर उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर कर्नल अवनीश सेठ, ये कंट्री हेड है मणिपाल ऑर्गन शेयरिंग एंड ट्रांसप्लांट से। डॉक्टर नीरव गोयल सीनियर कंसल्टेंट हैं और हेड ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी अपोलो अस्पताल से। हमारे साथ सुनैना सिंह हैं, सीईओ हैं ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क की। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जसकरण सिंह मौजूद हैं, जो कि ऑर्गन डोनर हैं खुद, और साथ ही उनकी पत्नी जिनको उन्होंने ऑर्गन दिया था निमृत कौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अगर हम चर्चा की शुरुआत करें तो सबसे पहले कल्याण अविनाश, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। ये जो स्थिति है, जो आंकड़े हैं, हम कहते हैं कि भारत में 10 लाख में केवल एक ही शख्स अंगदान करता है, लेकिन स्थिति बाहर के मुल्कों में, दूसरे देशों में भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। 10 लाख लोग, कहीं 54 है, कहीं 36 है, कहीं सिर्फ एक ही है, ये क्या दिखाता है?
1: देखिए, जरूरत बहुत है अंगों की, खासतौर पे भारत में, और पिछले 20 साल में अगर देखें तो बहुत बदलाव आया है। धीरे धीरे अब जहां कोई डोनेशन नहीं होती थी, अब 1200 के करीब लोगों ने अपना सारा अंगदान किया। तो ये जो सोच होती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है बदलने में, कि अगर हम मरने के बाद कुछ दूसरों के लिए करें। पर अब हमने, जैसे आपने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस में भी आप ऑप्शन है आपके पास, स्कूल के 10वीं क्लास के सिलेबस में है। तो जब तक अवेयरनेस नहीं होती, इसका इम्प्रूवमेंट होना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अंगदान होते हैं ज़्यादातर ब्रेन डेथ के बाद होते हैं, मस्तिष्क मृत्यु के बाद। तो उसमें क्या होता है कि अभी हार्ट अभी भी बीट कर रहा होता है, तो जब रिलेटिव्स देखते हैं कि हमारा अभी

0: हार्ट चल रहा है रिश्तेदार का और हम कह रहे हैं कि अभी दुनिया में नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ डेफिनेट इम्प्रूवमेंट तो हम देख रहे हैं पिछले 15-20 साल में।
1: बिल्कुल डॉक्टर नीरव, मैं चाहूंगी क्योंकि आज का दिन बहुत अहम हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे साथ दो एक डोनर भी हैं, एक रिसीवर भी हैं, उनके पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को समझाने के लिए आंकड़ा क्या है ये वाकई बताता है कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, जागरूकता की कमी, उसके कारण क्या है उस पर भी हम आगे जाएंगे, लेकिन डॉक्टर नीरव जरा आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए समझाइए ऑर्गन डोनेशन क्या है, कैसे एक शख्स अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता है, कौन से ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं, अगर ऑर्गन डोनेट होते हैं तो उससे कितने मरीजों को फायदा हो सकता है?
2: देखिए, ऑर्गन डोनेशन अंग दान से ज्यादा बड़ा कोई और जिंदगी में कोई डोनर हासिल नहीं कर सकता है, कोई और मुकाम। एक इंसान 8 जनों की लाइफ बचा सकता है। सो इफ आई बिकम एन ऑर्गन डोनर तो कम से कम मैं 2 किडनी डोनेट कर सकता हूँ अपनी मृत्यु पे, लिवर डोनेट कर सकता हूँ, हार्ट डोनेट कर सकता हूँ, लंग्स, 2 लंग्स डोनेट कर सकते हैं, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सब भी हम डोनेट कर सकते हैं। तो 8 जनों की लाइफ, 8 जनों की फैमिलीज आप रिफर्बिश कर सकते हैं, उनकी जिंदगी वापस दे सकते हैं उनको एक अंगदान से। इसके अलावा कॉर्नियाज हैं जो आप डोनेट कर सकते हैं, स्किन, हार्ट वाल्व्स, बोन्स, टेंडन्स, ये सब डोनेशन करे जाते हैं। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये मृत्यु के बाद हो रहा है, जब ब्रेन डेथ हो गई है, जैसे अभी डॉक्टर अविनाश ने बताया, ब्रेन डेथ होने के बाद ये डोनेशन होती है, और कार्डियक डेथ के बाद भी अब प्रावधान है जिसमें ऑर्गन डोनेशन किया जाता है कि ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन से पहले अगर हार्ट रुक जाए तो उसमें भी ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया करी जा सकती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी फैमिली में लोग डिस्कस करें इस चीज को। इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स टू डिस्कस कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी डेथ पे, ताकि आपके रिश्तेदारों को आसानी हो ये समझना और डिसीजन लेना आपकी मृत्यु पे कि वो ये अंगदान कर सके या ना कर सके।
1: हालांकि
2: आई थिंक
1: इसका
2: एक
1: इसको लेकर डॉक्टर साहब अवेयरनेस बहुत जगह चल भी रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले कम से कम 1.5 या 2 दशक से हम देख भी रहे हैं टेलीविजन में किस तरीके से तमाम एड्स भी आती है, उसके जरिए अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन एक बात सुनैना जी आपको मैं इंक्लूड करना चाहूंगी, एक कॉमन मिथ्स लोग जानते हैं क्योंकि आज की तारीख में स्पेशली अगर मैं कुछ एक जैसे लिवर या फिर किडनी डोनर्स की भी बात करूं, उनकी स्थिति कैसी होती है, परिवार के ही किसी सदस्य की जिंदगी किस तरीके से उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं हालात, ये जानते हैं लोग, बावजूद इसके जब उन पे बात आती है तो वो ऑर्गन डोनेशन के लिए रेडी नहीं होते। एक कॉमन मिथ्स, कॉमन जो धारणा लोगों के बीच में है जिसको तोड़ने की जरूरत है, वो समझाइए क्या है।
3: तो काफी सारे मिथ्स हैं लोगों के माइंड में, बट सबसे पहले तो लोग हमसे ये पूछते हैं कि हम क्यों करें, हमको क्या मिलेगा। अदरवाइज दान का काफी हमारे देश में काफी लोग दान करना चाहते हैं, बट उनको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन, अंगदान होता क्या है, वो कब होता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि ब्रेन डेथ के बाद होता है, उनको ये तक पता नहीं है कि ब्रेन डेथ क्या है, तो उनको वो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरे ऐसे मिथ्स हैं लोगों के कि नहीं, वो डॉक्टर अगर उनको पता चल गया कि हम अंगदाता हैं तो वो हमारे पे काम नहीं करेंगे, हमारी जान बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर उनको ये भी समझाना पड़ता है कि ऐसा नहीं होता। सिर्फ ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन के बाद ही ऑर्गन डोनेशन की बात आती है। और तीसरी चीज, वो समझते हैं कि अच्छा हमारे अंगों को लेके बेच दिया जाएगा, कुछ कर दिया जाएगा, जो अमीर लोग हैं उनको दे दिया जाएगा, तो फिर उनको ये भी समझाना पड़ता है कि नहीं, पूरा सिस्टम है भारत में, नोटो है, रोटोस है, सोटोस है हर स्टेट में, और एलोकेशन उनके ही थ्रू होती है, या अस्पताल की एग्जैक्टली टोटली अस्पताल ही नहीं है जो इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, तो ये सब समझाने के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। एंड आई थिंक काफी, मतलब पिछले 5-10 साल से काफी इन्फॉर्मेशन जा चुकी है पब्लिक को,
1: सुनैना
3: बट
1: जी अगर
3: ये
1: मैं गलत
3: बहुत
1: नहीं हूं, क्या सिस्टम वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग इसमें उलझना नहीं चाहते, एक ये कारण भी हो सकता है?
3: उनको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उनको फिर समझाना पड़ता है कि नहीं, बेसिकली हॉस्पिटल में अगर किसी की ब्रेन डेथ डिक्लेयर हुई है, फिर हॉस्पिटल उनको अप्रोच करेगा, डॉक्टर अप्रोच करेंगे और बताएंगे कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, एक में से एक ऑप्शन है कि आप अंग दान कर लो। उसको समझने में ही टाइम लग जाता है, फैमिलीज को उन्होंने पहले सुना नहीं है, या अगर सपोज जो जिसकी डेथ हो गई है उनको उन्होंने ऑर्गन डोनेशन कार्ड भी साइन किया हो, लेकिन उन्होंने अपने फैमिली को नहीं बताया कि मुझे ये करना है, उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे आई डोनेशन करनी है, ऑर्गन डोनेशन, फिर फैमिली को थोड़ा टाइम लगेगा, वो दूसरे लोगों को पूछेंगे, इधर उधर कॉल करेंगे, समझने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, लेकिन ज्यादातर टाइम अगर अच्छी तरह से समझ जाए लोग, फिर वो
1: ठीक है,
3: ना नहीं बोलेंगे, बट प्रॉब्लम इज उनको
1: बेसिकली
3: पता ही
1: पहले
3: नहीं
1: से
3: है।
1: ही अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक समय ऐसा भी होता है जब परिवार खुद ही ट्रॉमा में रहता है। चलिए, इसको लेकर हम चर्चा आप तीनों से आगे करेंगे। और आज एक बड़ा एग्जाम्पल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जसकरण सिंह हैं और साथ ही साथ उनकी पत्नी हैं निर्मलजीत कौर। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे ख्याल से आज की डेट में, क्योंकि आज हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि क्यों ऑर्गन डोनेट करना जरूरी है और कितने लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। आप दोनों से आज हम समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं आज की तारीख में, इस वक्त ये शो जो देख रहे हैं। जसकरण जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, पहले तो बताइए स्थिति कैसी थी, कब आपने डिसाइड किया, प्रोसीजर कितना लंबा था, क्योंकि लोगों के बीच में ये बहुत सारी मिथ्स भी रहते हैं कि क्या हम दें या नहीं दें, हालांकि आपने अपनी पत्नी को ही दिया है, लेकिन दूर के रिलेशनशिप में जब ऐसी बातें आती हैं तो लोग संकोच कर जाते हैं, झिझकते हैं लोग।
4: मैं सबको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने आज इस प्लेटफॉर्म पे हमें इनवाइट किया। तो रफली अराउंड जब कोविड स्टार्ट होना था, तब एक जनरल ब्लड टेस्ट से हमें पता चला था कि इनके क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा सा हायर साइड पे जाना स्टार्ट हो गया है। तो उसके बाद रेगुलर आपने चेकअप्स कराया, डॉक्टर्स को दिखाया, उसके बाद डिफाइन होता गया कि इनके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बाद ये आफ्टर 1 ईयर तक ये मेडिसिन पे चले ड्यूरिंग कोविड टाइम। आफ्टर दैट फिर डायलिसिस स्टार्ट हुआ, किडनीज फुली डैमेज हो गई। उसके बाद 1 ईयर का प्रोसीजर और लगा। उसके बाद फेब 9, 2022 में हमारा मैंने इनको किडनी डोनेट की। जो किडनी डोनेशन डोनेट करने का प्रोसेस है, नो डाउट वो थोड़ा लंबा है उसके लिए, क्योंकि किडनी डोनेट हर बंदा नहीं कर सकता। ऑलवेज हेल्दी डोनर चाहिए होता है, क्योंकि ऑलवेज ये मेन होता है कि जरूरी नहीं है कि उनके पास पहले एक पेशेंट है, वो एक और एड ऑन पेशेंट नहीं करना चाहता। वो ओनली फिट डोनर से ही किडनी को या कोई भी ऑर्गन जो है, जैसे लिवर है या किडनी है, वो डोनेट करते हैं, तभी ताकि उनके पास दोनों हेल्थ रिसिपियंट एंड डोनर बोथ आर हमेशा हेल्दी रहे। ये मेन इनका प्रोसेस है। तो आफ्टर अब 4.5 साल हो चुके हैं, बहुत हेल्दी लाइफ एंड अच्छी लाइफ चल रही है। आफ्टर ट्रांसप्लांट हम दोनों ने गेम्स वगैरह भी स्टार्ट किए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लास्ट ईयर हम वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भी पार्टिसिपेट करके आए हैं। वो सारा इनिशिएट जो है ऑर्गन इंडिया का इनिशिएटिव है, उन्होंने हमें गाइड किया, उनके ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए। मतलब ऑल ऑफ हेल्दी लाइफ हो जाती है आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। आप ये देखिए कि रिसिपिएंट और बहुत बढ़िया रहता है।
1: निर्मल जी, जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल समय आपके लिए रहा होगा, कितना ये कॉम्प्लिकेटेड पूरा प्रोसेस था?
5: नमस्कार मैम, और धन्यवाद आज आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इस चीज के ऊपर जो अवेयरनेस है वो बहुत ही कम है, और अगर मीडिया के माध्यम से इसमें ज्यादा अवेयरनेस आएगी तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैम, एक्चुअली मेरा 2020 में मुझे डायग्नोज हुआ था, एक रूटीन ब्लड टेस्ट, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि उसमें पता चला था कि मेरा क्रिएटिनिन 1.3 आया था। और उसके बाद जैसे जैसे मेरी सारी टेस्टिंग हुई तो मुझे पता चला कि मुझे आईजीए नेफ्रोपैथी करके एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, उसकी वजह से मेरी किडनी जो है वो डैमेज हो रही है। और फर्दर टेस्टिंग पे पता चला कि वो कंप्लीटली डैमेज हो गई है, और डॉक्टर्स ने जैसे जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 1 ईयर मेरे मेडिसिन पर ठीक चला, बट लेटर ऑन उन्होंने बोल दिया था कि ट्रांसप्लांट ये एक प्रोसीजर है। तो इमिडिएटली मेरे हस्बैंड आगे आए और इन्होंने बोला कि मैं अपनी किडनी
1: अच्छा,
5: डोनेट करने
1: एक
5: के लिए
1: चीज
5: तैयार
1: निर्मल जी,
5: हूँ।
1: जी क्या
5: हाँ जी,
1: क्या जैसे आपके हस्बैंड ने कहा कि वो किडनी देंगे, लेकिन इससे पहले क्या ऐसा भी था कि आप किसी और डोनर को भी सर्च कर रहे थे?
5: जी मेरे हस्बैंड से पहले मेरे फादर ने मतलब अपने टेस्टिंग करवाई थी, बट उनके कुछ टेस्टिंग हुई जैसे 2-3 मंथ्स लगे, बट एज रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से डॉक्टर्स ने उन्होंने उन्हें मना कर दिया, और साथ के साथ ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं डोनेट करूंगा।
1: ठीक है।
5: तो मेरे फैमिली में से ही मतलब दोनों जने
1: बिल्कुल।
5: आगे आए। हाँ जी, और ड्यूरिंग दैट टाइम क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट जैसे पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा था, तो वहां पे एक लिस्ट होती है, उसमें भी मेरा नाम रजिस्टर हो गया था, बट वो जो वेटिंग लिस्ट है वो काफी लंबी रहती है, तो वहां पे कब तक मतलब किडनी मिलेगी कैडेवर में कि नहीं मिलेगी वो कुछ इतना पता नहीं होता कि कब तक नंबर आएगा, 10 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ मतलब कंफर्म नहीं होता कि कब तक आपको कोई डोनर मिल पाएगा।
1: ठीक है, एक मैं लौटती
5: हाँ
1: हूँ
5: जी
1: डॉक्टर अविनाश, अब आपके पास आऊंगी। देखिए भारत की अगर मैं अब ये आंकड़ों को इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि 2025 में सिर्फ 20,000 लोगों ने अपना अंगदान किया है। भारत में 10 लाख में एक, स्पेन में 10 लाख में 54, अमेरिका की बात करें तो 10 लाख में 50, और पुर्तगाल 10 लाख में 37 लोग ही अंगदान करते हैं, बहुत कम है। कारण हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये जो लाइव एग्जाम्पल सर हमारे हमारे साथ है, जब हम परिवार की बात करते हैं परिवार में तो इजीली हमें कोई ना कोई डोनर मिल जाता है, ये तो लकी है कि चलिए इनका चीजें मैच कर गई और इनको इजीली किडनी मिल गई। परिवार के लिए जब बात आती है तब इजी होता है, लेकिन यही बात अगर हम अंगदान की बात करें कि किसी थर्ड पर्सन को जरूरत है, और ऐसे भी लोग सर हमने देखे हैं जो पैसा देने के लिए तैयार हैं कि बस हमें अंगदान, जैसे किडनी या लिवर, ये सबसे कॉमन चीजें हैं जो लोगों को नहीं मिलती जिस वजह से उनकी जान चली जाती है।
0: जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 8 लोग एक फैमिली के ऑफिस में आते हैं और बोलते हैं कि हमें लिवर नहीं मिल रहा है और हमारे जो रिलेटिव हैं वो दुनिया में नहीं रहेंगे, तो हमें लिवर जल्दी दिला दीजिए। तो हम उनसे बोलते हैं कि आप 8 लोग बताइए कि आप 8 लोगों में से कितनों ने अपना डोनर का प्लेज लिया है, एंड देन यू रियलाइज कि उनमें से किसी ने भी डोनर प्लेज नहीं लिया। सो हमारे देश में अगर हम ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन्स लेना चाहते हैं तो देने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। सो एट सम स्टेज अच्छा रहेगा अगर हम इसराइल जैसा कोई मॉडल रखें कि ऑर्गन्स उन्हीं को मिलने चाहिए जिन्होंने ऑर्गन्स अपने प्लेज किए हैं देने के लिए। और आप कह रहे हैं कि 80-90,000 वेटिंग लिस्ट है हमारी, हमें यह भी देखना है कि जरूरत तो 4-5 लोगों, 4-5 लाख लोगों का जरूरत है ट्रांसप्लांट की, लेकिन हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम ट्रांसप्लांट कराएं तो हम वेटिंग लिस्ट तक आते ही नहीं है। तो रिक्वायरमेंट इज मच मोर देन 80-90,000, और कॉमन मैन के लिए ये अवेलेबल करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपसे जब चर्चा की शुरुआत हुई थी मैंने आपसे थोड़ा प्रोसीजर भी जानने की कोशिश की थी, लेकिन अगर
0: जी
1: रिसीवर को कोई अंग चाहिए उसका क्या पूरा प्रोसीजर होता है, अगर आप हमें समझा पाए तो।
0: तो जिस अस्पताल में, जैसे इनकी बात करें निर्मल जीत जी की, जिस अस्पताल में डायलिसिस चल रहा हो किडनी का या आपका कोई भी ऑर्गन का फेलियर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, उस हॉस्पिटल के पास वो पासवर्ड वगैरह होता है, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अपने सॉटो की या रोटो की या नोटो की वेबसाइट पे जाके अपना सारा डेटा डाल देते हैं और फिर एक वेट लिस्ट नंबर गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हो जाता है जो कि ब्लड ग्रुप वाइज होता है। तो ब्लड ग्रुप ए की अलग लिस्ट होती है, बी की अलग होती है, ए बी की अलग होती है, ओ की अलग होती है। सो बेस्ड ऑन दी प्रायोरिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखे हैं, ऑर्गन्स अकॉर्डिंगली अलॉट होते रहते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर नीरव, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एक कोई शख्स अगर ऑर्गन डोनेट करता है फिर उसे उस मरीज तक पहुंचाना, इसके पूरे प्रोसेस और नियम क्या है, खर्चा कितना होता है, समय कितना रहता है, क्या प्रोसेस है, अगर आप समझा पाएं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बार ग्रीन कॉरिडोर्स भी बनाए जाते हैं, ये कितना इजी प्रोसेस है या कहें कि बहुत ज्यादा टफ प्रोसेस है।
2: देखिए, जब भी ऑर्गन अवेलेबल होता है इट इज ऑलवेज एन इमरजेंसी। आप नॉर्मली क्या होता है कि अगर शाम तक रात तक आते आते एपनिया टेस्ट होते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि पेशेंट एक्चुअली ब्रेन डेड है या नहीं, तो देयर आर सेट ऑफ 4 डॉक्टर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ट्रांसप्लांट टीम जो आएंगे और 6-6 घंटे के अंतराल पे चेक करेंगे, एंड वंस दे हैव कन्विंस कि 2 एपनिया टेस्ट हुए हैं जिसमें कि श्योरली पेशेंट ब्रेन डेड है, तब फैमिली से बात करी जाती है और फॉर ऑर्गन डोनेशन। एक बारी फैमिली ने हाँ भरी है ऑर्गन डोनेशन की, देन वन कॉन्टेक्ट्स द रेसिपियंट्स जिनको ऑर्गन मिलना है, तो पहले नोटो के पास इंफॉर्मेशन जाएगी एंड कौन से हमारे पास लिस्ट है उन रेसिपिएंट्स की जाएगी एंड देन रेसिपिएंट इज सिलेक्टेड। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि फैमिलीज जिन जो डोनेट कर रही हैं वो यूजली चाहते हैं कि उनको जो रिमेन्स है पेशेंट के वो बाय मॉर्निंग मिल जाए सो दैट दे कैन डू द लास्ट राइट्स वॉट एवर द रिलीजन। तो यूजली 8 से 10 घंटे का गैप होता है जिसमें रेसिपिएंट को आना भी है और ट्रांसप्लांट भी होना है, तो इट इज ऑलवेज एन इमरजेंसी। तो रेसिपिएंट्स को पहले से वर्कअप करके रखा जाता है एंड देन दे आर कॉल्ड, दे विल कम एंड इन द नाइट और अर्ली मॉर्निंग ट्रांसप्लांट एक्टिविटी स्टार्ट होती है। एंड वंस द ऑर्गन्स हैव बीन रिट्रीव, जब निकाल लिए जाते हैं वो ऑर्गन जो डोनेट करने के लिए वो एग्री करे हैं, उसके बाद बॉडी को हैंड ओवर कर दिया जाता है रेसिपिएंट जो फैमिली है उनको उनको फुल ऑनर्स के साथ वो बॉडी वापस दिया जाता है। जहां तक रेसिपिएंट्स का है, दे हैव टू बी ऑलवेज मेंटली फाइनेंशियली रेडी फॉर अ ट्रांसप्लांट। ऑर्गन किसी और हॉस्पिटल से यहाँ पे आ रहा है, किसी और शहर से इस शहर में आ रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ग्रीन कॉरिडोर्स की प्रोविजंस दी हैं जिसमें हमको कांटेक्ट करना होता है SHO से एंड नोटो से और वो वहां से इंफॉर्मेशन जाती है उस जगह की पुलिस अधिकारियों को और ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करा जाता है जहाँ पे नो रेड लाइट्स एम्बुलेंस जाती है एंड एवरी रेड लाइट इज ओपन्ड अप फॉर द व्हीकल ताकि ऑर्गन जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट करा जा सके। अगर हार्ट रिट्रीव हुआ है तो उसमें हमारे पास बस 3 घंटे हैं, 3 से 4 घंटे जिसमें ऑर्गन लगना है। लिवर है तो हमारे पास 8 से 10 घंटे हैं, अगर किडनी है तो उसमें भी तकरीबन 6 से 8 घंटे का टाइम है जिसमें ऑर्गन लगने है। तो ये ग्रीन कॉरिडोर्स क्रिएट करे जाते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो और ऑर्गन अपनी सही जगह पे टाइमली पहुंच जाए।
1: डॉक्टर अवनीश, एक सवाल आपसे कि क्या कोई एज लिमिट भी है ऑर्गन डोनेशन की? सर ऑडियो म्यूट है। जी जी
0: 50 साल के हो सकते हैं और आपके ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, और आप 70-80 साल के भी हो सकते हैं और आपके ऑर्गन्स ठीक होते हैं। तो ये सारा डिसीजन होता है लास्ट डे पे, जो ICU में डॉक्टर्स होते हैं, ट्रांसप्लांट टीम्स होती हैं, वही डिसाइड करती हैं। हम चाहते हैं कि हर लोग अपनी एज को ना देखते हुए ऑर्गन्स प्लेच करें ताकि अवेयरनेस बढ़े, और डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दें। ऑन द लास्ट डे हर एक ऑर्गन को असेस किया जाता है, उसके स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होते हैं, और अगर सब क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं तो हम ऑर्गन्स ले लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि 70, 75, 80 साल तक आराम से लिवर किडनीज वगैरह हमारे देश में ट्रांसप्लांट होते हैं।
1: बिल्कुल सुनैना जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक कॉमन मिथ, लोगों में कुछ धार्मिक धारणाएं भी होती हैं, ये इस पर जरा मैं चाहूंगी कि आप बताएं क्या क्या विचार लोगों के मन में आते हैं जब वो ऑर्गन डोनेट करते हैं।
3: आई थिंक इतना रिलीजियस एंगल नहीं होता, थोड़ा बहुत तो यस होता है, बट मोस्टली यही होता है कि उनको ऑर्गन डोनेशन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। बहुत सालों से ऑर्गन डोनेशन का बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन, 90s में, 2000s में मूवीज आती थी, ऑर्गन ट्रेडिंग, ऑल ऑफ दैट, तो लोगों के मन में थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन आ गया है। बट वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा अब कम हो रहा है क्योंकि मीडिया इतना सारा प्रमोशन करती है, गवर्नमेंट में भी शुरू हो गया है, NGOs भी करते हैं। तो आई डोंट थिंक रिलीजियस एंगल इतना है, थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली है। मतलब मुझे अपने हमारे अपने फ्रेंड्स जो बहुत एजुकेटेड हैं, कई लोगों के आके बोला कि नहीं, अगर हम आंखें दान करते फिर अगले जन्म में आंखें नहीं मिलेंगी, ये सब है थोड़ा बहुत, बट मोस्टली रिलीजन का इतना ज्यादा रोल नहीं है।
1: बिल्कुल। इसके अलावा क्या वजह है कि लोग झिझकते हैं अंगदान करने में? सुनैना
3: जस्ट
1: जी,
3: उनको पता नहीं है, नेगेटिविटी होती है इसके
1: अवेयरनेस
3: अराउंड,
1: नहीं है
3: नहीं
1: बिल्कुल भी।
3: मैंने कहाँ
1: हाँ
3: पे पढ़ा, मतलब हर हर अगर आप कोई भी सीरीज देखोगे, मूवी या कोई भी सीरीज चल रही है OTT पे, उनमें हर एक में एक एपिसोड तो ऐसा होगा जिसमें कुछ ऑर्गन ट्रेडिंग का हो रहा है, राइट? इंडियन भी, बाहर के भी। सो लोग वो देखते हैं, उनमें थोड़ा सा वो डर बैठ जाता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होती है कभी कभी मूवीज में, शोज में, दैट अफेक्ट्स पीपल ऑब्वियसली, क्योंकि वो इतने बड़े, सो मेनी थाउजेंड, इतने सारे लोग देख रहे हैं। अदरवाइज आई थिंक मोस्टली जो हम मिलते हैं लोग बहुत अच्छी तरह से रिसीव करते हैं, दे उनको पता ही नहीं होता पहले कि अच्छा ऑर्गन डोनेशन होता है, तो उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्पेशली यंग बच्चे, उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक अंग लेके आप दूसरे किसी के और की बॉडी में डाल रहे हो, तो इतना अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है उनके लिए. वो आगे आके बहुत अच्छी तरह बातें करते हैं, उनको जानना पड़ता है. सो आई थिंक यूथ इस समरी आपको थोड़ा टारगेट करना चाहिए कि उनको उनको पता चले, फिर वो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, पूरे पूरी जिंदगी होगी, और फिर वो आगे जाके अगर उनके फैमिली में या ऐसे कुछ हुआ, ऐसी कुछ घटना हुई, फिर वो सोचेगी हाँ कि मैंने ये सीखा है और ये बहुत अच्छी चीज है.
1: ठीक है, आपने ऑर्गन ट्रेडिंग की बात की, क्या वाकई, क्योंकि इसको लेकर भी खबरें बहुत ज्यादा आती हैं, लोगों के जहन में इसको लेकर एक डर भी होता है, कितना बड़ा बाजार है अगर हम देखें, इलीगल मार्केट्स भी इसमें बहुत ज्यादा है, मैं उस पर आगे बात करूंगी. लेकिन जसकरण, एक बार आपके पास आते हुए, हालांकि अभी निर्मल जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और भगवान उन्हें तंदुरुस्ती बख्शे आप दोनों को, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, कभी आपने सुना था ऑर्गन डोनेशन के बारे में इससे पहले, या मन में कभी आया था? क्योंकि
4: हाँ,
1: देखिए
4: मैं एक्चुअली
1: खबरें
4: मैं
1: चर्चाएं तो बहुत होती है, हम सब जानते हैं, तमाम जगहों पर और टीवी में आज भी बहुत ज्यादा इसको लेकर आती हैं.
4: मैं आपको एक जनरली बात बताता हूँ. मेरी मैं रेगुलर ब्लड डोनर रहा हूँ, तो मैं रेगुलरली ब्लड डोनेट करता रहा हूँ. किसी को प्लेटलेट काउंट की रिक्वायरमेंट है तब भी एज अ नॉन अल्कोहलिक उसके लिए बेस्ट डोनर मैं मोस्टली मैं रेगुलरली डोनेट करता रहा हूँ. तो ऑर्गन डोनेशन के लिए नो डाउट सुना जरूर था, बट ये नहीं था कि बाय लक मुझे ये ऑर्गन डोनेट करना पड़ेगा और मुझे 1% भी कोई भी माइंड में कोई इफ एंड बट नहीं
1: परिवार
4: था.
1: में क्या
4: मेरे
1: चर्चा
4: लिए
1: हुई?
4: सिंपल ये, परिवार में मेरे फैमिली बहुत क्लियर है कि सबसे पहले लाइफ है. एज अ वेटनेरियन मुझे ये लगता है कि नहीं, सबसे पहले अगर हम किसी को बचा सकते हैं तो उसको बचाना सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो है. और उसके लिए बेशक नो डाउट बाय चांस बाय भगवान को पता है कि ये हमारी प्रॉब्लम हमारे पे आई, ये अगर किसी भी आदमी, मैं फिर भी आगे रहता. मेरा तो ये है कहना.
1: निर्मल जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर, परिवार में क्या बातें, क्या चर्चाएं होती थी?
5: इनकी फैमिली बहुत ही सपोर्टिंग थी इस चीज में, इवन कि मेरे मदर इन लॉ भी इस चीज के लिए आगे थे. जैसे क्योंकि एक थोड़ा सा सोसाइटी में ये रहता है कि मेल मेंबर फीमेल को नहीं देते जनरली, बट इनके घर में ऐसा कुछ नहीं था. इवन सब लोग ही रेडी थे कि हम अपना टेस्ट कराते हैं. इवन मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरे मदर, बट मेरे मदर डायबिटिक थे तो उनके उनको भी मना कर दिया था. तो फिर इनको मैंने एक बार बोला था कि आप क्यों, तो ये कहते कि आप डॉक्टर नहीं हो इस चीज के, तो डॉक्टर अगर मना करेगा तो ही मैं पीछे हटूंगा. जब तक मुझे डॉक्टर कह रहे कि आप टेस्ट करा सकते हो, अपना सारा चेकअप करवाओ, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे. तो कहते अगर मुझे डॉक्टर ने यस बोला है तो मैं करूंगा ही करूंगा. तो आप डिसाइड, मतलब मैं डिसाइड ना करूं, डॉक्टर को डिसाइड करूं.
1: यानी ये कॉमन मिथ्स रहती, वही जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि सोसाइटी में अभी भी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है. डॉक्टर अवनीश, एक बार आपके पास आते हुए, सुनैना जी ने बड़ा अच्छा एक टॉपिक उठाया भी, इसको लेकर सर खबरें बहुत आती, क्योंकि हम लोग खुद न्यूज इंडस्ट्री में लगातार ये खबरें आती रहती हैं कि ऑर्गन्स का एक अलग मार्केट, व्यापार भी है, लीगली तरीके से चल रहा है. ये भी लोगों के जहन में एक एक डर भी रहता है कहीं ना कहीं.
0: से उनकी साइड से देखिए कि अगर आपका कोई लव्ड वन मरने वाला है और कहीं से आपको अंग नहीं मिल रहे हैं, तो फिर एक डेस्परेशन आ जाती है सिस्टम में कि हम कहाँ से किसी को पैसे दे के क्या करें. तो ये हमारी सोसाइटी में अगर सब लोग अंगदान करना शुरू कर देंगे तो डेस्परेशन नहीं आएगी और ये सारे इस तरह के जो होते रहते हैं सेंसेशनलिज्म, ये फिर इसमें कम हो जाएगा. अभी जो अंगदान होता है इसको हम बहुत ही बड़ी बात मानते हैं, लेकिन सिचुएशन ये होनी चाहिए कि जब किसी की ब्रेन डेथ होती है तो एज अ रूटीन अंगदान होना चाहिए. एक सेंसेशनल न्यूज ना होते हुए मरने के बाद सबको अपने अंगदान कर देने चाहिए. ये यहां तक सोसाइटी हमारी पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कहीं ना कहीं डेस्परेट सिचुएशंस होती रहती हैं. और जो भी अपने लव्ड वन का अंगदान करते हैं मरने के बाद, वो जरूर चाहेंगे कि एक बहुत फेयर सिस्टम से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो. ऐसा ना हो कि किसी कनेक्टेड पर्सन को या कोई वेल्दी पर्सन को, अमीर लोगों को ये मिले और गरीब को ना मिले. तो ये ट्रांसपेरेंसी भी उसमें बहुत जरूरी है और हमारे गवर्नमेंट एजेंसी इसको बहुत अच्छे से इस बात को निभाते हैं।
1: बिल्कुल, चलिए सर आपसे चर्चा आगे जारी रखेंगे। तो मौत के बाद भी जिंदगी, अंगदान का संकल्प लेना बहुत जरूरी है, और इसी को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: मौत के बाद भी जिंदगी, आज है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, जिसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। अंगदान कितना जरूरी है, कैसे अंगदान लोगों की जिंदगी बचा सकता है और क्यों हमें अंगदान करना चाहिए। वैसे आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो बहुत पीछे हैं। 10 लाख में बहुत ही कम। भारत की बात करें तो केवल 1 शख्स है जो अंगदान करता है। अमेरिका की बात करें तो 50 लोग हैं जो अंगदान करते हैं। पुर्तगाल में 10 लाख की आबादी में केवल 37 लोग अंगदान करते हैं। स्पेन में 10 लाख की आबादी में केवल 54 लोग अंगदान करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंतजार में है। चर्चा इसी को लेकर आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए डॉक्टर नीरव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब हम कॉरिडोर की बात करते हैं, आपने समझाया कि किस तरीके से जब किसी को जरूरत होती है ऑर्गन की तो एक स्पेशल कॉरिडोर वहां पर बनाकर उन तक पहुंचाया जाता है। सर, बड़े शहरों में इट इज वेरी इजी, बहुत आसान होता है, हम देखते भी हैं, लेकिन गांव देहात छोटे शहरों में वहां पर किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है और क्या इतना आसान रहता है वहां पर, क्या वो समय सीमा तक ऑर्गन पहुंच जाता है?
1: देखिए, अब आजकल कनेक्टिविटी तो काफी ज्यादा बढ़ गई है हमारे देश में, बट यस, जब कोई बहुत ही पेरिफेरल लोकेटेड सेंटर हो तो वहां पे ये दिक्कत आ सकती है। आजकल अब नई तकनीक आ गई है जिसमें मशीन परफ्यूजन हम एक फैसिलिटी होती है जो अवेलेबल होती है कि जहाँ पे सपोज करो आप किसी बहुत ही दूर के इलाके से आप ऑर्गन रिट्रीव कर रहे हो और वहां से आपको अपने सेंटर तक पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है, तो अब आजकल ये फैसिलिटीज है कि आप इन पर्टिकुलर मशीन्स में ऑर्गन को लगा सकते हैं और वो एक काइंड ऑफ सर्कुलेशन बना देता है ऑर्गन में ब्लड का और सब कुछ, जिससे आप मेजर कर सकते हो कि ऑर्गन कैसा बिहेव कर रहा है और उसके उस मशीन के द्वारा आप इस ऑर्गन को और लंबा मेंटेन कर सकते हो विदाउट पुटिंग इट इन द रेसिपिएंट। मतलब कि जहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर लिवर को 6 से 8 घंटे का हम स्टोरेज टाइम दे सकते हैं तो वहां पर हम इसको बढ़ा के 12 घंटे तक लेके जा सकते हैं, बट ये फैसिलिटीज अभी हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। इंडिया में ये मशीन्स अभी आनी शुरू हुई हैं एंड दिस इज बेसिकली टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि जब बहुत ही ज्यादा आप पिछड़े एरियाज में जा रहे हो और वहां से आप ऑर्गन रिट्रीव करके ला रहे हो, वहां के लिए ये फैसिलिटी बन सके। बट जो ग्रीन कॉरिडोर की फैसिलिटी है वो हर शहर हर स्टेट देता है। इट कम्स थ्रू सोटो जो कि स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं और आजकल तो इंडिया में ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है।
0: हमने देखा भी था सर, अभी हाल फिलहाल में वंदे भारत को उस ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, वंदे भारत से ऑर्गन भेजा गया था। सुनैना जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, बहुत बार लोग इस चीज को लेकर अवेयर नहीं होते, क्या लास्ट मोमेंट, अगर मरीज का एक आखिरी समय है, क्या परिवार तब डिसाइड कर सकता है और क्या मरीज जिस वक्त लास्ट में, क्योंकि कहते हैं कि ब्रेन डेड के बाद ही आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल रहता है?
2: उसके लिए प्रोटोकॉल ये है कि ब्रेन डेथ एक कमेटी होती है हॉस्पिटल में और वहां डराते हैं और टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट 2 बार ही होते हैं, उनमें 6 घंटे का जरूरी है कि 6 घंटे का एक टेस्ट के बाद 6 घंटे के बाद आप दूसरा कर सकते हैं, फिर वही डॉक्टर आके दोबारा टेस्ट करते हैं और उस टाइम पेशेंट को ब्रेन डेथ डिक्लेयर करा जा सकता है, कर दिया जाता है रादर। और फिर जो काउंसलर्स हैं, जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, फिर वो फैमिली को अप्रोच करेंगे और उनसे उनको बताएंगे कि ये सब हो गया है, ये ब्रेन डेथ, दिस पर्सन इज नो मोर, और आपके पास ये ऑप्शन है। फिर फैमिली को अपने आप फिर अपने में डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको क्या करना है, क्या उनको ऑर्गन डोनेशन करना है, क्या उनको नहीं करना, और जितनी जल्दी फैमिली डिसाइड करे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि फिर ऑर्गन्स जल्दी निकाले जाएंगे, वो बेटर कंडीशन में होंगे और वो ज्यादा जल्दी दूसरे रिसिपियंट के पास जाएंगे, और That's the process. और जितना जल्द हो सके उतना बेटर होता है। और जब वो रिसिपियंट के पास जाएगा, जो भी हॉस्पिटल वो रिसिपियंट हो, वो जरूरी नहीं है कि वो सेम सिटी में हो, कभी कभी जैसे आपने बोला ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू बाहर जाते हैं, उसके बाद फिर रिसिपियंट का ऑर्गन जो बॉडी होती है वो बहुत अच्छी तरह बहुत रिस्पेक्ट के साथ वापस दिया जाता है फैमिली को। फिर वो लास्ट राइट्स होते हैं बहुत टाइम, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल ऑफिशियल्स होते हैं, वो क्रिमेशन के लिए या बेरियल के लिए भी जाते हैं। और फिर ऑर्गन डोनर जो फैमिली जो होती है उनको यूजली काफी मोस्ट स्टेट्स में फिलिसिटेशन पे होता है उनका, या तो ऑर्गन डोनेशन डे पे या फिर किसी और डे पे।
0: बिल्कुल डॉक्टर अवनीश, इसका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि किसी शख्स ने अपने आ, आ, आ, जब वो बिल्कुल ठीक ठाक थे उस समय उन्होंने कोई फॉर्म भर दिया हो कि हाँ मैं आंखें दान करूंगा, या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे अंग दान किए जाएं। क्या इसका कोई रिकॉर्ड भी होता है और कहाँ वो मेंटेन होता है?
3: अभी कुछ 1-2 साल से आधार के नंबर के साथ ऑर्गन डोनेशन की प्लेजिंग लिंक हो गई है, लेकिन अभी ये यूनिवर्सली अवेलेबल नहीं है डेटा कि किसी अस्पताल में कोई कंप्यूटर खोल के देख ले कि इस व्यक्ति ने प्लेज किया था कि नहीं किया था। तो सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि जब आप प्लेज करते हैं, कहीं भी साइन करते हैं, तो अपने घर में जरूर उसके बारे में बात करें। आपके फैमिली मेंबर्स को पता होने चाहिए कि आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली आपको हेड इंजरी या स्ट्रोक होता है और आप ब्रेन डेड हो जाते हैं, तो आप तो किसी पोजीशन में थोड़ी होंगे किसी को बताने के लिए। आपकी फैमिली का साइन करना अनिवार्य होता है। तो अगर हम प्लेज करें और फैमिली को पता ही नहीं, तो वो गलत हो जाता है। लेकिन अभी 1-2 बरस में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है हर एक अस्पताल में, जब भी कोई ब्रेन डेथ होता है, उनका आधार नंबर डाल के वेबसाइट पे देख लेंगे कि इन्होंने प्लेज किया था कि नहीं। और अगर प्लेज किया हो, तो फैमिली से बात करना, उनको समझाना काफी आसान हो जाएगा। वी आर डूइंग ऑल दैट और ये जल्दी शुरू हो जाएगा।
0: बिल्कुल। अब सर ये भी बताते जाइए साथ ही साथ कि कमी कहाँ पर है, क्यों अभी तक हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाए या लोगों में जागरूकता नहीं आ पाई है, यह कमी आप कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर कमी देखते हैं?
3: कमी 3 चीजें होती हैं जिसके ऊपर अंगदान रहता है, 3 लेग्स टू दैट होल स्टोरी। एक तो है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बड़े अच्छे लॉज वगैरह बना दिए, लेकिन कमी ये है कि पूरे देश का काम 5 प्रदेश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सदर्न इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट साइड में अंगदान होता है, तो पूरा देश इसको क्यों नहीं टेकअप करता? 5 प्रदेश पूरे देश का भार अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए अपने अंदर कि हम इसको कैसे बढ़ाएं। दूसरा है डॉक्टर्स में अवेयरनेस। आप पब्लिक अवेयरनेस की बात तो कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि ज्यादा प्रॉब्लम अब और भी हमारे डॉक्टर्स की अवेयरनेस में है कि हम हर एक अस्पताल में क्यों नहीं ब्रेन डेथ डिक्लेयर करते। और ब्रेन डेथ को अर्ली पिकअप करना होता है और उसका कुछ प्रोसेसेस होता है, उसमें भी यही है कि कुछ ही अस्पताल हैं पूरे देश में जो ऐसा करते हैं, और बाकी देशों में ब्रेन डेथ होता है बाकी अस्पतालों में और कोई कुछ करता नहीं है। पब्लिक अवेयरनेस पिछले 20 साल से काफी बढ़ गई है और उस पर हम काम करते रहेंगे तो और बढ़ती जाएगी। बट इफ यू आस्क मी, ग्रीन कॉरिडोर्स की जरूरत हमारे अस्पतालों के अंदर है। जब भी कोई इस तरह का पेशेंट होता है, हमारे अस्पताल में कॉरिडोर चल पड़ने चाहिए कि अब हम इसका क्या करें, कैसे इस फैमिली को अप्रोच करें। वो एक काफी मिसिंग लिंक हमारे अंदर है।
0: बिल्कुल। अब एक बार निर्मल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब आप दोनों एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं। आज आप गुड न्यूज़ टुडे पर बैठे हैं और तमाम लोग आपको देख भी रहे हैं, यकीनन एक मिसाल भी है आप सबके लिए। क्या जब आप लोग, क्योंकि एक अवेयरनेस हम यहाँ एक तो इस मंच से हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, साथ ही साथ क्या आप बाहर जाकर लोगों को काउंसिल करते हैं ऑर्गन डोनेशन को लेकर, या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लोग जुड़े हैं, या लोग आपसे पूछते हैं इसको लेकर क्या? मैम ऑडियो म्यूट है आपका।
4: इट्स ऑन।
0: जी
5: इज आई एम ऑडिबल?
0: जी जी जी
5: हाँ जी मैम, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम ऑर्गन इंडिया जो है एनजीओ है उसके साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि जब उन्होंने हमें पीजीआई के माध्यम से नेशनल गेम्स हुई थी उसके बाद हमने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 में ड्रेसडन में पार्टिसिपेट किया। और साथ ही साथ ही बहुत सारी ऐसी जैसे सुब्रोस है, जीके वाइंडिंग है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इसकी अवेयरनेस के बारे में बात करता है और हमें सबको सपोर्ट करता है। और मैम मैं अपने लेवल पे भी कम्युनिटी में जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ पर भी लोगों को ऑर्गन डोनेशन के लिए अवेयर करती हूँ और अपना खुद का एग्जाम्पल भी देती हूँ, क्योंकि लोग जनरली हमें देखते हैं तो वो कहते हैं आप बहुत फिट हो बहुत मतलब, और जब मैं उनको बताती हूँ कि मेरा ऐसे ऐसे ट्रांसप्लांट हुआ है और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और अगर आपकी फैमिली में या जैसे भी कोई भी है या कई बार कोई पेशेंट मेरे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनको मैं काफी कोशिश करती हूँ कि उनको प्रॉपरली गाइड कर पाऊँ और उनकी फैमिली को भी इस चीज के लिए मोटिवेट कर पाऊँ।
0: जसकरण जी, आप क्या मानते हैं, दो सवाल आपसे, पहली बात तो अवेयरनेस क्यों अभी तक नहीं आ पाई है और लोगों के मन में क्या सवाल रहते हैं ऑर्गन डोनेशन को लेकर और कैसे आप लोगों को एजुकेट करते हैं?
3: मैम आफ्टर एक्चुअली क्या होता है कि जो मेन जो लोग डरते हैं वो ब्लड डोनेशन से भी डरते हैं। उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं बॉडी का कौन सा पार्ट निकल जाएगा।
0: हाँ
3: जब वो
0: एग्जैक्टली
3: मेरे कांटेक्ट में आते हैं, जब मेरे कांटेक्ट में आए, मैंने मोस्टली 3 से 4 आफ्टर मेरे ब्लड सॉरी मेरे ऑर्गन डोनेशन के बाद, फिर मैंने भी 3-4 डोनेशन करवा चुका हूँ जो कि फैमिली मेंबर में मुझे पता लगता है कि किसी की किडनीज का इश्यू आ रहा है। मैं डोनर्स के साथ कांटेक्ट में आता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ कि कुछ नहीं, सब हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल चलती है। जस्ट एक मिथ है माइंड में जो आपके है कि कुछ समथिंग इज मिसिंग, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल लाइफ में रहोगे। तो मतलब उसके बेस के ऊपर मैं मैक्सिमम जितना भी हो सकता है ऑर्गन डोनेशन के लिए ये एडवाइस करता हूँ कि हाँ लिविंग डोनेशन तो करनी ही चाहिए। उसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट जो भी पर्सन होगा उसके कोई ना कोई तो कोरिलेटली उसके कंसर्न में होगा। और अगर बाय चांस सपोज कि अगर उनका ब्लड मैच नहीं भी करता, तो इनमें पीजीआईज हो गए या रोटोज में इनके ब्लड बेसिकली क्या होता है कि इनकी लिस्ट बनी होती है,
0: ठीक
3: वो
0: है।
3: स्वैप केस में भी उनको डोनेशन हो जाती है कि इधर सपोज कि एक फैमिली मेंबर जो अपने रिसिपिएंट को नहीं दे सकता वो दूसरे के रिसिपिएंट से मैच कर देते हैं और उनका डोनर इधर वाले रिसिपिएंट से मैच हो जाता है। और फैमिली डोनेशंस भी बहुत कॉमन हुई हुई है, तो उसके लिए भी मोटिवेट करते हैं कि जो भी पॉसिबल हो सके। मेरा भी ओ पॉजिटिव था, मैंने भी बी को दिया है। ओ वाले को इजी होता है, बट जिन सपोज जिनका ए से बी जाना है उनके लिए भी डोनेशन लिस्ट है। वो भी एक
0: ठीक
3: पॉसिबिलिटी
0: है
3: है कि जितना आप लाइफ को बेटर कर सकते हैं
0: जी।
3: उनको बेटर करना
0: जल्दी
3: चाहिए।
0: से एक छोटा सा सवाल, जब आप लोगों का ये पूरा प्रोसेस, जब आपने अपनी वाइफ को ऑर्गन डोनेट करना था, समय कितना लगा था उसमें?
3: ऑलमोस्ट मैं हमारा 1 ईयर से
0: ठीक है,
3: ज्यादा लग गया था,
0: 1 ईयर
3: रीजन
0: से
3: वाई
0: ज्यादा।
3: कि हमने पीजीआई को प्रेफर किया था।
0: ठीक है, नहीं क्योंकि वो गवर्नमेंट
3: वो
0: हॉस्पिटल है, बिल्कुल आपने पीजीआई को प्रेफर किया।
3: गवर्नमेंट एंड सारे बेसिकली उनमें
5: कोविड चल रहा था
0: हाँ
5: तो कोविड में जो थोड़ी ओपीडीज भी थी वो मतलब ऑन कॉल थी और थोड़े
0: ठीक है।
5: लिमिटेड थी,
0: डॉक्टर
5: वो
0: मीरा,
5: मैं थोड़ा
0: कितना
5: लिमिटेड।
0: समय लग जाता है अमूमन आपके पास डोनर भी अवेलेबल हो तब भी?
1: आते हैं उनके टेस्ट होते हैं रेसिपिएंट के टेस्ट, तो तकरीबन हफ्ता भर लगेगा टेस्ट कंप्लीट करने में। और एक फिर इंडिपेंडेंट कमिटी होती है जो कि आके चेक करेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। एक इंडिपेंडेंट कमिटी जब क्लियर करती है, तो आप मान के चलिए अगर पेशेंट आज आया है और डोनर के साथ आया है, सब कुछ रेडी है, तो इन अबाउट 10 डेज, 8 to 10 डेज ट्रांसप्लांट हो सकता है।
0: ठीक है, अब एक बार सुनैना जी आपसे जानना चाहूंगी, फर्ज कीजिए कि अगर एक शख्स तय कर चुका है कि उसको अपने ऑर्गन डोनेट करने हैं लेकिन उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, तब किस तरीके से वो चीजें ट्रैक होंगी?
2: तो अगर किसी को किसी की इच्छा थी कि हाँ मुझे ये करना है लेकिन और उसने अपनी फैमिली को बता दिया हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी वो फैमिली को ही पूछेंगे, नथिंग विल हैपन अंटिल फैमिली सेज यस। सो अगर आपके पास डोनर कार्ड नहीं है इट्स ओके, यू डोंट हैव टू हैव अ डोनर कार्ड। डोनर कार्ड इसलिए कि आप सबको अच्छी तरह ऑफिशियली बता सकते हो कि देखिए मेरे पास कार्ड है, ये सिर्फ आपकी इच्छा है, यहाँ इट्स नॉट अ लीगल कार्ड इन एनी वे। तो अगर आप बता भी दो अपने फैमिली को अपने फ्रेंड्स को सब सब जगह सुना दो कि मुझे ये करना है, मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है, मुझे नेत्रदान करना है, तो दैट इज इनफ, दैट इज गुड इनफ। सो लोगों को यही करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि ये अच्छी बात है कि नहीं, और अगर उनको अच्छा लगे कि ये कॉन्सेप्ट ही अच्छा लगे कि मेरे जाने के बाद मैं 8 लोगों को जिंदगी दे सकता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को टिश्यूज देके उनकी जिंदगी बेहतर कर सकता हूँ, तो ये बात अच्छी है। और आप अपनी फैमिली को जरूर बताएं, एंड दैट्स इनफ। अगर आप कर सकते हो तो डोनर कार्ड डेफिनेटली भर लो। आप नॉटो की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पे आपको आधार लिंक डोनर कार्ड एकदम मिल जाएगा विद इन अ फ्यू मिनट्स,
0: ठीक है।
2: और वो आपको, आप अपने फैमिली को और सबको बता सकते हो उसके बारे में।
0: डॉक्टर नीरव, एक सवाल आपसे भी। हालांकि लाखों लाख लोग हैं जिनको जरूरत है किसी न किसी ऑर्गन की, लेकिन सबसे ज्यादा अगर डिमांड की बात की जाए तो किस ऑर्गन की, और कितना टफ होता है?
1: सबसे ज्यादा डिमांड तो किडनी ट्रांसप्लांट की रहती है, उसके बाद लिवर, उसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, पैंक्रियास ट्रांसप्लांट। बट यस, जैसे अभी तक डिस्कशन में भी हुआ है कि अबाउट 4 लाख, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख लोगों को जरूरत है, और पिछले साल का अगर हम आंकड़ा देखें तो 20,000 ट्रांसप्लांट्स हुए। सो बहुत ज्यादा गैप है बिटवीन जो डिमांड है एंड जो सप्लाई है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका प्रोग्राम है कि अवेयरनेस फैले लोगों को। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन अ डोनर कार्ड, इज कि आप 5 मिनट अपनी फैमिली में बैठ के डिस्कस करो कि भाई आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो क्या ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट डिसीजन जो फैमिली मेंबर्स के लिए होती है, जब किसी की डेथ होती है किसी करीबी रिश्तेदार की, वो डिसीजन होता है जब हम आके पूछते हैं कि भाई आप ऑर्गन डोनेट करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते, और उनको ये पता ही नहीं होता कि उस जिसके साथ उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई है उसकी क्या विशेष थी। एंड सो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट डिसीजन। अगर आप 5 मिनट बस डिस्कस कर लें अपनी फैमिली में, ये डिसीजन सबसे आसान डिसीजन हो सकती
0: ठीक है
1: है।
0: डॉक्टर। हाँ ठीक है डॉक्टर अवनीश, एक आखिरी सवाल आपसे कि फर्ज कीजिए किसी मरीज ने, उनकी डेथ हो गई, उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया, परिवार के साथ कोई डिस्कशन हुई नहीं है, क्या उसके बाद उनका कोई करीबी ये डिसाइड कर सकता है कि हाँ आप इनके ऑर्गन वो डोनेट करना चाह रहे हैं?
3: जी, यही अक्सर होता है कि लोग तो इस दुनिया से जब चले जाते हैं, ब्रेन डेथ हो जाता है, तो रिश्तेदारों ने ही सारा डिसाइड करना होता है, और डिसाइड करने के लिए जो सिग्नेचर होते हैं वो नियर रिलेटिव्स के ही होते हैं, जैसे इमीडिएट स्पाउस हुआ या बच्चे हुए, पेरेंट्स हुए, वही डिसाइड कर सकते हैं। एंड इसका जो प्रोसेस है काफी अच्छे से अब सेटअप है,
0: ठीक है।
3: और वी आर श्योर कि अब धीरे धीरे और बढ़ेगा ये।
0: चलिए, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े इस अवेयरनेस शो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। जागरूकता बहुत जरूरी है, अंगदान को महादान कहा गया है, तो इसीलिए एक संकल्प लीजिए ताकि हम किसी की जिंदगी बचा सके। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देख रहे हैं।
4: भगवान शिव की कौन सी स्तुति करके बड़ी से बड़ी समस्या को टाला जा सकता है? भगवान शिव की कौन सी स्तुति से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है? कौन सी हैं भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: और असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: नाग पंचमी से पहले मसूरी में नाग देवता की पालकी निकाली गई। मसूरी के भट्टा गांव में ये परंपरा सदियों से निभाई जा रही है और इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पालकी यात्रा के बाद नाग पंचमी के दिन नाग देवता के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा।
11: पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ जब निकली नाग देवता की पालकी तो आस्था के रंग में रंगी संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिली। नाग पंचमी से पहले मसूरी के भट्टा गांव में नाग देवता की डोली क्यारकुली नाग देवता मंदिर के लिए रवाना हुई। बारिश के मौसम के बावजूद इस डोली यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नाग देवता के सम्मान में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। ढोल और दमाओं की थाप पर नाग देवता के जयकारों से वादियां गूंज उठी। मसूरी में नाग देवता की डोली यात्रा की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि नाग देवता क्यारकुली भट्टा क्षेत्र के रक्षक और ग्राम देवता हैं। ये डोली यात्रा क्यारकुली में नाग देवता के मंदिर तक जाती है, जो करीब 500 साल पुराना है। नाग पंचमी से पहले होने वाली ये डोली यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की करीब सदियों पुरानी लोक आस्था और परंपरा का अभिन्न हिस्सा भी है। इस डोली यात्रा के साथ ही क्यारकुली नाग देवता के मंदिर में भागवत कथा का शुभारंभ भी हो गया। इस भागवत कथा का समापन 17 अगस्त को नाग पंचमी के शुभ अवसर पर होगा। इसके बाद नाग पंचमी के दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ मेले का आयोजन भी किया जाएगा। बदलते दौर में ये डोली यात्रा पहाड़ों के लोक आस्था और संस्कृति को जीवंत रखने का काम कर रही है। इस यात्रा में बड़े बुजुर्गों के साथ बड़ी संख्या में नई पीढ़ी का शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा की जड़ें यहाँ लोगों के दिलों की गहराइयों में बसी है। मसूरी से सागर शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: भगवान शिव की कौन सी स्तुति करके बड़ी से बड़ी समस्या को टाला जा सकता है? भगवान शिव की कौन सी स्तुति से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है? कौन सी हैं भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। नई ऊंचाइयों को छू रहा हमारा आसमान है, तकनीक विज्ञान और हमारी विरासत पर नाज करता ये नया हिंदुस्तान है। तो आज विकास के नए नए आयाम बनाते बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर आपको दिखाएंगे चाय पर चर्चा में।
5: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, 2 दिन बाद हम आजादी का जश्न मनाएंगे, ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त नजर आ रही है। ये समझिए कि जवानों की तैनाती के साथ ही आसमान से जमीन और जल तक हर गतिविधि पर निगरानी कड़ी रखी जा रही है, तो आजादी उत्सव की तैयारियां भी हम आपको दिखाएंगे।
4: नमस्कार, मैं श्री गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। 15 अगस्त भले ही देश के लिए आजादी का दिन है, लेकिन इस बार भारतीय क्रिकेट के लिए भी इतिहास रचने का दिन है। गोल में टीम इंडिया का श्रीलंका के खिलाफ 600वां टेस्ट मुकाबला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला कितना खास होने वाला है ये बताएंगे, और साथ ही साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की रोमांचक तस्वीरें भी सामने आई हैं वो भी आपको दिखाएंगे।
6: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक कैरोलिन लेविट अब नहीं रहेंगी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी। आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि लेविट को पद छोड़ना पड़ा, इसके पीछे की इमोशनल स्टोरी भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
5: मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की विहंगम तस्वीरें। ढोल नगाड़ों की धुन के बीच 51,000 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर निकाली कलश यात्रा, भोले की भक्ति में झूमा शहर। गुजरात के डीसा में बनेगा रेगिस्तान थीम वाला एशिया का पहला नाइट सफारी और जू, लगभग 83 प्रजातियों के करीब 2,700 जानवरों का होगा बसेरा। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर लहराया राष्ट्र ध्वज, आम लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी के बांदा में महिलाओं को मिला रोजगार का मौका, आजादी के जश्न के लिए तैयार कर रही 2,00,000 तिरंगे। रायपुर में दिखी बदलाव की बयार, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैप वॉक। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। यूपी समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में 19 अगस्त तक बारिश का अलर्ट।

0: नजर से खूबसूरत हमारा स्टूडियो लग रहा है, समझ ही गए होंगे। देखिए, जश्न आजादी का जोश है, हर तरफ तिरंगा है, हर दिल में देशभक्ति है और हर जुबान पर हिंदुस्तान का नाम है। तो देश के कोने कोने से तिरंगा यात्राओं की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन आज हम आपको सिर्फ तिरंगे के जज्बे की तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिनमें नए भारत का जोश है, नए भारत की रफ्तार है और विकसित भारत का साकार होता सपना।
1: बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं देखिए उसी तस्वीर के साथ जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो सकता है। तस्वीर है देश की पहली बुलेट ट्रेन की, जिसका सपना अब फाइनली साकार होने वाला है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेज रफ्तार से चल रहा है और इसी रफ्तार का एक वीडियो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। टारगेट है अगले साल आने वाले 15 अगस्त तक बुलेट ट्रेन के पहले चरण को शुरू कर देना।

0: इस वीडियो ने पटरियों पर रफ्तार की उम्मीदों को पंख लगा दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश की पहली बुलेट ट्रेन की तैयारियों का एक वीडियो शेयर किया। बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत अगले साल 15 अगस्त को करने का लक्ष्य रखा गया है। पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद रूट पर दौड़ेगी। इस रूट पर काम भी बुलेट रफ्तार से जारी है और ये वीडियो इसी की तस्दीक कर रहा है। वीडियो में गुजरात के नवसारी में बुलेट ट्रेन रूट पर चल रहे काम को दिखाया गया है। वीडियो में इंजीनियर्स और कर्मचारी आधुनिक मशीनों के जरिए ट्रैक पर बिजली सिस्टम लगाते हुए नजर आ रही हैं। रेल मंत्री ने जानकारी दी है कि ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर जिस काम की झलक रेल मंत्री ने दिखाई है, उसमें नवसारी में 1125 किलोमीटर ट्रैक पर काम हो रहा है। इस ट्रैक पर 22,000 ओवरहेड इक्विपमेंट मास्ट लगाए गए हैं। ओवरहेड वायर असेंबली के लिए 25,700 कैंटिलीवर फिट किए जा रहे हैं। ये असेंबली ही रफ्तार के लिए बुलेट ट्रेन को बिजली सप्लाई करती है। सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत अगले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हो जाएगी। इस रास्ते पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। इस ट्रेन का सबसे ज्यादा फायदा मुंबई अहमदाबाद रूट के मुसाफिरों को होगा। इन दो शहरों के बीच सफर में फिलहाल 6 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने से ये दूरी महज 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: वैसे भारत में ना हुनर की कोई कमी नहीं, और जब वो हुनर के साथ हौसला जुड़ जाए तो फिर कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। अब सोचिए, जिन हाथों में कभी बंदूक हुआ करती थी, आज उन्हीं हाथों में हुनर है, आंखों में सपने हैं और कदम रैंप पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कुछ बेटियों ने हिंसा और नक्सलवाद की राह छोड़कर मुख्यधारा की जिंदगी को चुना, और जब अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और रैंप वॉक से लोगों का उन्होंने दिल जीत लिया, वो पल आपको दिखाएंगे।
2: बिल्कुल, देखिए, जिन इलाकों में डर और हिंसा की खबरें सुर्खियां बनाती हैं, आज वहां की बेटियां हुनर, आत्मविश्वास और कामयाबी की कहानी लिख रही हैं। इन बेटियों की कहानी यही संदेश देती है कि रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हौसला हो तो जिंदगी की दिशा बदली जा सकती है।
3: ये सिर्फ एक रैंप वॉक नहीं, ये जिंदगी की बदली हुई राह की तस्वीर है। कदम वही है, लेकिन अब मंजिल बदल चुकी है। भरपूर आत्मविश्वास के साथ रैंप पर वॉक कर रही ये महिलाएं कभी बस्तर के घने जंगलों में हथियार लेकर चलती थी, लेकिन आज इनके हाथों में हथियार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर रायपुर के ऑडिटोरियम में रैंप पर जैसे ही इन महिलाओं ने कदम रखा, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा। इन्होंने यहाँ पर पारंपरिक हथकरघा परिधान कोसा सिल्क और छत्तीसगढ़ के स्थानीय वस्त्रों को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। इस स्वदेशी फैशन शो में पूर्व महिला नक्सलियों ने पेशेवर मॉडलों के साथ रैंप साझा किया। बस्तर की इन महिलाओं ने कभी नक्सलवाद का रास्ता चुना था, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद अभी मुख्य धारा की जिंदगी की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। इनके दिलों में आने वाले वक्त में कुछ बेहतर करने और अपने अतीत से आगे बढ़कर एक नई पहचान बनाने का जज्बा है। जिन जंगलों में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, वहां से आई महिलाओं की जिंदगी में

0: रंगों और उम्मीद की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये बदलाव सिर्फ कपड़ों का नहीं है, बल्कि ये सोच और जिंदगी के रास्ते में आए नए परिवर्तन की कहानी है, जिसके जरिए इन्होंने एक नई शुरुआत की है। इनकी पहचान अब बंदूक से नहीं, बल्कि हुनर, संस्कृति और सकारात्मक सोच से जिंदगी में आ रहे बदलाव से है। रिपोर्ट न्यूज़ टुडे।
1: हिंदुस्तान की तरक्की की तस्वीरें सिर्फ बड़े बड़े शहरों, बड़ी बड़ी इमारतों और हाईटेक मशीनों में नहीं दिखती, बल्कि उस बदलाव में भी दिखाई देती हैं जो सीधे आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाता है। और ऐसी ही एक तस्वीर आई है छत्तीसगढ़ के भिलाई से सामने, जहां अब राशन लेने के लिए लंबी कतारें नहीं लगेंगी, बल्कि अनाज का एटीएम लग गया है।
2: जी हाँ, जिस तरह से एटीएम से पैसे निकालते हैं हम, ठीक उसी तरीके से अनाज एटीएम से लोग अपना राशन ले सकेंगे। और ये सिर्फ तकनीक का कमाल नहीं, ये उस नए हिंदुस्तान की तस्वीर है जहां तकनीक का इस्तेमाल जनता की सुविधा, पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाने के लिए हो रहा है।

0: डिजिटल स्क्रीन पर राशन कार्ड नंबर टाइप किया और फिर फिंगरप्रिंट लगाते ही एटीएम से हो गई अनाज की डिलीवरी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी, सुलभ और आधुनिक बनाने में ये मशीन मील का पत्थर साबित हो रही है। भिलाई में लगा छत्तीसगढ़ का ये पहला अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम लोगों की सहूलियत के लिए सौगात बन गया है। दुर्ग जिले के वैशाली नगर भिलाई में अब पारंपरिक राशन की दुकान की बजाय ये आधुनिक मशीन ही लोगों को राशन बांट रही है। इस मशीन का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करता है। राशन लेने वालों को पहले अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर टाइप करना होता है। इसके बाद फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है। फिंगरप्रिंट अप्रूव होते ही एटीएम से तय मात्रा में अनाज मशीन से बाहर आ जाता है।
1: अभी मैं चावल उठाने के लिए आया था तो एटीएम के थ्रू मैं पैसा निकालते हुए देखा, पानी निकलते हुए सुना था। आज मैं चावल खुद अपने हाथों से निकाला हूँ तो उसमें राशन कार्ड नंबर देने पड़ता है। राशन कार्ड नंबर डाला हूँ, उसके बाद फिंगरप्रिंट लगाया हूँ और चावल 35 किलो आया है।
0: इससे पहले राशन की दुकान से राशन लेना इतना आसान नहीं था। राशन की दुकान तय वक्त पर ही खुलती थी, लेकिन ये मशीन 2400 घंटे लोगों की सेवा के लिए तैयार रहेगी। इससे नौकरी पेशा लोगों के साथ प्रवासी श्रमिकों को किसी भी समय अनाज प्राप्त करने की सुविधा मिल गई है। इसके लिए अब पहले जैसे अनाज की दुकान पर कतार भी नहीं लगानी होगी। पारंपरिक अनाज की दुकानों पर कई बार कम अनाज मिलने की शिकायत भी आती थी, लेकिन अब इस ऑटोमेटिक मशीन की शुरुआत होने से लोगों को तय मात्रा में अनाज पूरी पारदर्शिता के साथ मिल रहा है।
2: हितग्राहियों को उनके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के पश्चात में पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न की प्राप्ति होती है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी प्रवासी श्रमिक रहे, जो अन्य जगह भी निवासरत हैं, वो वर्किंग आवर्स में नहीं आ सकते, वर्किंग आवर्स के पश्चात भी उनको खाद्यान्न प्राप्त होगा। इसमें
0: मशीन से निकलने वाले अनाज का वजन नापने के लिए इसमें एक खास सेंसर भी लगा है। इस सेंसर से अनाज निर्धारित मात्रा में ही एटीएम से बाहर निकलता है। एटीएम से निकले अनाज का वजन सुनिश्चित करने के लिए ही एक यहां वजन नापने वाली दूसरी मशीन भी रखी गई है। छत्तीसगढ़ का ये ग्रीन एटीएम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बेहद अहम कदम माना जा रहा है। पहले एटीएम की कामयाबी और अब इस ग्रीन एटीएम सिस्टम को दूसरी जगहों पर भी शुरू करने की योजना है। आधुनिक तकनीक पर आधारित ये सिस्टम आज अनाज वितरण में पारदर्शिता और सहूलियत की मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, ये जो बुलंद भारत है ये यूं ही बुलंद नहीं हुआ। इसकी नींव में हमारे क्रांतिकारियों का खून, पसीना और कुर्बानियां हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आजादी की इस लड़ाई में ऐसे भी कई जाबाज थे जिनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह गई। आज हम आपको मिलवाएंगे उन्हीं गुमनाम बलिदानियों की वीरगाथा से।
4: देखिए, आजादी के बाद एक पूर्व स्वतंत्रता सेनानी ने ऐसे ही गुमनाम क्रांतिकारियों की कहानियां जुटाई और फिर साल 1970 में दिल्ली के चांदनी चौक में बनवाया गया बलिदानी मंदिर। एक ऐसा मंदिर जहां पूजा के साथ साथ देश के लिए मिट जाने वाले वीरों की गाथाएं भी दर्ज हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस मंदिर में जहां आज भी हर दीवार देशभक्ति और बलिदान की कहानी कहती है।
5: मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ना, अमूमन आप मंदिर जाते हैं तो आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं। कोई मंदिर राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, तो कोई किसी माता का है। लेकिन आज दिल्ली के चांदनी चौक में मैं आपको ऐसे मंदिर में लेकर आया हूँ जहाँ पर कोई ईश्वर, कोई देवता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी जान गंवाने वाले, उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले वीर बलिदानियों की यहाँ फोटो लगी है, तस्वीर लगी है, उनके बारे में जानकारी लिखी गई है। ये वो वीर बलिदानी हैं जिनके बारे में इतिहास में लिखा ही नहीं गया, अगर लिखा गया तो एक दो लाइनों में निपटा दिया गया। आइए आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के भीतर।
0: देश को आजादी दिलाने वाले ये वो महान क्रांतिकारी चेहरे हैं जिन्होंने देश की अस्मिता, मान सम्मान और देश की प्रतिष्ठा के लिए बगैर किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। भले ही उनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर भी कम लोगों की ही जुबान पर हों, लेकिन उनको चांदनी चौक के इस मंदिर में एक सम्मानित जगह दी गई है। जहां एक तरफ लाल किला जैसी ऐतिहासिक इमारत है, तो वहीं पिछले 56 साल से लाल किले के पास बना ये बलिदानी मंदिर देवी देवता का वास नहीं बल्कि 100 से ज्यादा क्रांतिकारियों की पेंटिंग्स और फोटोज को लेकर वतन की विरासत का केंद्र बना है। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर लगी ये तमाम तस्वीरें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए कुछ चर्चित तो कुछ गुमनाम क्रांतिकारियों की याद दिला रही है। दरअसल इस मंदिर को एक पूर्व क्रांतिकारी स्वर्गीय स्वर्णलाल परूथी ने बनवाया था। आजादी के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कई क्रांतिकारियों के नाम गुमनाम रह गए और ये बात उन्हें अक्सर परेशान किया करती थी। ऐसे में उन्होंने अलग अलग राज्यों से 100 क्रांतिकारियों की तस्वीर और उनके बारे में जानकारी जुटाई और यहाँ उनका मंदिर बना दिया। यहाँ हर तस्वीर के नीचे उस क्रांतिकारी की आजादी की लड़ाई में योगदान की कहानी को बयां किया गया है। जैसे इस फोटो गैलरी में एक क्रांतिकारी शहीद भगत राम जी की भी तस्वीर है, जिनके बारे में लिखा गया है कि उन्होंने कभी सुभाष चंद्र बोस की भारत से जाने में अपनी जान पर खेलकर मदद की थी।
5: ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है और यहाँ पर भी आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शहीद भगत राम जी की। इनके बारे में लिखा यह गया है कि शहीद हरि किशन लाल के भाई भगत राम महान देशभक्त थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया और 5 वर्षों तक जेल में रहे। मुद्दे की बात अब ये, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारत से बाहर जाने लगे तो भगत राम जी ने अपनी जान पर खेल कर उन्हें काबुल तक पहुंचाया। आप सोचिए, वो इंसान जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी, उनका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। उनकी तस्वीर ढूंढकर उनके बारे में मुख्य जानकारी निकालकर यहां पर लगाया गया है।
0: बलिदानी मंदिर में ऐसे कई और क्रांतिकारियों की तस्वीरें और उनकी कहानी इस फोटो गैलरी का हिस्सा हैं। इनमें एक क्रांतिकारी श्री गुरदास मल ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने 6 बेटों को क्रांतिकारी बनाया। उन्होंने अपने बेटों को खुद पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग दी थी। उनके एक बेटे ने उस वक्त पंजाब गवर्नर रहे एक अंग्रेज अफसर की हत्या की, जिसके बाद वो बेटा भी फांसी के फंदे पर हंसकर झूल गया। वहीं एक और क्रांतिकारी प्रमोद रंजन चौधरी जो बम बनाकर उसका परीक्षण करते शहीद हुए। इसके अलावा एक क्रांतिकारी ने तो अमेरिका में रहते हुए कई क्रांतिकारियों की मदद की, हालांकि अंग्रेजों ने बाद में उनको भी फांसी दी। यकीनन स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को अपने भीतर समेटे ये बलिदानी मंदिर यहाँ आने वाले लोगों के लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि आजादी की उस लड़ाई की याद है जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी। सोचिए, अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार की खुलकर खिलाफत करना आसान नहीं था और उस वक्त आजादी की राह पाना भी काफी कठिन था। ऐसे में कोई स्वार्थ देखे बिना इन वीरों ने जो साहस, त्याग और देश प्रेम की कहानी लिखी, उसको आने वाली पीढ़ी को बताने की हमारी ही जिम्मेदारी है। आज जब दुनिया भारत की आजादी के इतिहास को किताबों और तस्वीरों के जरिए जान रही है, तो बलिदानी मंदिर जैसी जगह उस इतिहास को हमारी विरासत के रूप में संजोकर रखने का ही काम कर रहा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: कहते हैं हौसले अगर बुलंद हों तो मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं। गुजरात के महसाणा के विरसोडा गांव के इन बच्चों ने इसे सच करके दिखाया है। ना मैदान था, ना बड़े संसाधन थे, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर था। खेतों की मिट्टी को ही इन्होंने अपना खेल का मैदान बना दिया और मेहनत को अपनी पहचान बना लिया।
7: और सिर्फ 3 साल में स्कूल लेवल के एथलेटिक्स में इन बच्चों ने 138 मेडल जीत कर बता दिया कि तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए जज्बा चाहिए। मिट्टी से उठी ये कामयाबी उन तमाम बच्चों के लिए मिसाल है जो सपने देखना और उन्हें जीना जानते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं महसाणा के नन्हे चैंपियंस की कहानी।
8: तस्वीरें किसी बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नहीं है बल्कि गुजरात में महसाणा के एक गांव की है, जहां का ये खेत यहां के बच्चों के लिए खेल का मैदान है। बताया गया कि गांव के स्कूल में मैदान नहीं था, तो ऐसे में किसानों ने बच्चों के लिए अपने खेत दे दिए। खेतों को मैदान बनाने के लिए मेहनत की गई और ऐसे तैयार हुआ बच्चों के लिए एथलेटिक ट्रैक। यहाँ सुबह के 5 बजे से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, कहीं दौड़ तो कहीं लंबी कूद, जबकि कोई हाई जंप की प्रैक्टिस करता नजर आता है। यहाँ सुविधाएं कम है मगर बच्चों की मेहनत रंग लाई। कभी खेतों की पगडंडियों पर दौड़ने वाले ये बच्चे अब राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में छाने लगे हैं। यहाँ ट्रेनिंग ले रहे बच्चों ने पिछले 3 साल में 138 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 56 गोल्ड, 40 रजत और 42 कांस्य पदक शामिल हैं। अब इन बच्चों की नज़र राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं पर है।
9: हम सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करने के लिए जाते, मेहनत करते। मैं वडोदरा रमने के लिए गया और नड़ियाद में छोटाना तालुका में भी मेरा प्रथम नंबर था। लंबी कूद, ऊंची कूद मेरे को बहुत अच्छी लगती।
10: 5 बजे सुबह को उठकर काड़ू भाई के खेतर में और महाराज के खेतर में प्रैक्टिस करने जाते थे। हम 100 मीटर दौड़ में खेल में आगे बढ़ना चाहते।
8: बच्चों की इस प्रतिभा को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने में स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने बड़ी भूमिका निभाई, जिससे बच्चों ने अपनी मेहनत से इस मौके को कामयाबी में बदल दिया।
11: 3 साल से हमारी वो स्कूल बन रही थी, तब हमने वो जब एक खेत था गांव लोगों का, वो हम सहयोग करके वहाँ खेत में वो मैदान बनाया। वहाँ हम सब बच्चे को वहाँ ले गए और वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई। तहसील कक्षा, डिस्ट्रिक्ट कक्षा और स्टेट कक्षा में वो उस अच्छा प्रदर्शन किया और हमने 150 से 200 बच्चे को तैयार किए और 138 मेडल हमने प्राप्त किए।
8: खेल ने इन बच्चों को सिर्फ मेडल ही नहीं दिए बल्कि पढ़ाई में भी आगे बढ़ने का हौसला दिया। खेल गतिविधियों के चलते स्कूल में बच्चों की नियमितता बढ़ी और पढ़ाई में भी बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। महसाणा के इस गांव के बच्चों ने साबित कर दिया है कि कामयाबी के आगे बड़े स्टेडियम से ज्यादा जरूरी है जज्बा और अच्छी सोच। महसाणा से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दिल्ली में खास करके सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा तैयारियां होगी, लेकिन खास बात सबसे अगर मैं स्कूल के टाइम से याद करूं तो 15 अगस्त पे पतंग जरूर उड़ाई जाती थी। अब धीरे धीरे वो कल्चर खत्म होता जा रहा है।
12: सबसे ज्यादा गुजरात और दिल्ली में पतंग उड़ाए जाते हैं इस दिन। हमारे एरिया में तो पतंग नहीं उड़ाए जाते हैं।
13: अमृतसर में बहुत होता है, अमृतसर में तो बकायदा काइट फेस्टिवल और खूब पेचे लड़ते हैं,
12: छोटी छोटी काइट्स है ना,
4: इसी समय 15 अगस्त के
13: टाइम पे
12: या फिर मकर संक्रांति,
4: दोनों टाइम पर होती है।
12: उनको मौका चाहिए पतंग उड़ाने का।
13: ऐसा नहीं है, 15 अगस्त और मकर संक्रांति दोनों समय में, मतलब जितना मुझे पता है अमृतसर में तो
4: होता ही होता है। बिल्कुल, देखिए 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो गई हैं और वो दिन आ गया है जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे और शान से तिरंगा लहराएंगे। जवानों की कदमताल, आसमान से फूलों की बारिश और देश की युवा शक्ति का जोश हर तरफ नजर आएगा। आजादी के इस जश्न को यादगार बनाने के लिए तैयारियां और भी जोरों पर हैं।
14: सबसे पहले तो मैं आपको ये कंट्रोल रूम दिखा देती हूँ, जहाँ से जो है 1000 से भी ज्यादा जो है कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की रेडियस पे, और उसी की जो यहाँ से मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चौकसी हर एक शख्स पे, हर एक व्यक्ति पे जो है, हर एक रास्ते पे जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। अच्छा, ये तो मैं सिर्फ आपको एक कंट्रोल रूम की तस्वीर दिखा रही हूँ, जबकि ऐसे 3 कंट्रोल रूम जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, क्योंकि कैमरे जो है उनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा जो है कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि एक एक हर एक चीज पर जो है नजर रखी जा सके। बारीकी से नजर रखना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ समय पहले जो है यहीं पर चांदनी चौक में ठीक लाल किले के सामने ही जो है ब्लास्ट हुआ था, और उसके बाद जो चौकसी है वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। इस वक्त लाल किले की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, हालांकि लाल किला इस वक्त आपको कम नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त लाल किला जो है वो सुरक्षा किला बन चुका है। सबसे पहले तो ये बाहर की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको बैरिकेडिंग जो है नजर आ जाएगी, छोटी छोटी बैरिकेडिंग जो है यहाँ पर की गई है हर एक रास्ते में, और उसके साथ ही पूरी आपको सुरक्षा बल जो है वो नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये लोग हर तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे कैमरा मॉनिटरिंग की बात की जाए या फिर जितने भी आने वाले शख्स है जो भी, हालांकि यहाँ पर जो आम जनता है उसकी पाबंदी जो है वो रोक दी गई है, अभी वो एंटर नहीं कर सकते लाल किला जो है, आप नहीं घूम सकते, लेकिन बाकी जो लोग जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं फुल चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। 1000 से ज्यादा आपको सीसीटीवी कैमरे जो है वो नजर आएंगे, एफआरएस सिस्टम जो है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो इन हर एक कैमरे में जो है वो आपको नजर आएगा, ताकि हर तकनीक जो इस्तेमाल जो यहाँ पर की जा रही है उससे कोई भी संदिग्ध इंसान है उसको देखा जा सके, उसको समय रहते पकड़ा जा सके। एक सत्य की डॉग स्क्वाड भी जो है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, हर तरीके से जो है यहाँ पर आपको कमांडो जो है वो नजर आएंगे। तो इस वक्त पूरी तरीके से लाल किला जो है वो सुरक्षा किला बन चुका है, हर तरीके से जो है यहाँ तैयारियां की जा रही है। पैनी नजर जो है कंट्रोल रूम, लाल किले के अंदर जो है 3 कंट्रोल रूम बनाए गए ताकि किसी भी तरीके से कोई भी चूक जो है यहाँ पर ना हो सके।
15: 15 अगस्त की सुरक्षा की किस तरीके की तैयारी की गई है यमुना नदी की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि सिर्फ सड़क और हवाई मार्ग नहीं बल्कि लाल किले के पीछे जो यमुना नदी बह रही है उस पर किस तरीके की तैयारी है। आप देखिए, हमारे साथ आपको दिल्ली पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे। इस तरीके की गश्त हो रही है जो पूरे दिल्ली बॉर्डर पर, जो पूरी यमुना नदी है दिल्ली में, उसको इस तरीके से नजर रखा जा रहा है। लाल किले की तरफ से होते हुए हम आप देखिए आईटीओ के पास पहुंच गए हैं और यहां पर आप देखिए इस तरीके की गश्त लगातार जारी है। लेकिन नदी जिसके आसपास काफी सारा जंगल का इलाका रहता है, काफी खाली इलाका रहता है, हर जगह पर नजर रखी नहीं जा सकती है, तो ऐसे में ये यमुना नदी का कोई फायदा ना उठा ले, इधर से कोई आतंकी इस रास्ते को उपयोग करते हुए करीब ना पहुंच जाए, इसलिए चप्पे चप्पे पर लगातार नजर रखी जा रही है। 24 घंटे इस पूरी यमुना पर लगातार इसी तरीके से पेट्रोलिंग दिल्ली पुलिस के अधिकारी और तमाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारी नजर बना के रखे हुए हैं। सामने आप देखिए आईटीओ का जो पुल है वो आपको नजर आएगा, वहीं पीछे कुछ ही दूरी पर लाल किला है। तो इस पूरे इलाके में राउंड द क्लॉक आपको सिक्योरिटी नजर आएगी। कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।
12: और आपको बता दें कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, शहर शहर तिरंगा रैलियां निकाली जा रही है, उसकी तस्वीरें तो आपको हम दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने भी कई खबरें देखी होंगी और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये काफी समय से प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि भाई हर घर तिरंगा का हम अभियान ले। और हमने देखा है रियली जितने भी रेजिडेंसेज हैं, मतलब नोएडा में भी हमने कई घरों में देखा है, नियम से लोग पहले ही 15 अगस्त के पहले जाके तिरंगा खरीदते हैं और अपने अपनी बालकनीज में लगाते हैं।
16: और सिर्फ घरों में नहीं, मैंने देखा है कि चाहे स्कूटर है चाहे गाड़ियां हैं उन पे भी लगाते हैं और पूरे रोड पर भाई तिरंगा ही तिरंगा नजर आता है, वो फीलिंग ही अलग होती है।
17: इस वक्त तो सड़कें ऐसे ही नजर आ रही हैं तिरंगे में पटी हुई।
13: मेरे यहाँ तो 365 दिन घर पे बालकनी में तिरंगा लगा हुआ है, वो दूर से पहचानी जाती है कि ये इनका घर है, क्योंकि मैं आई बिलीव कि एक दिन नहीं, हम जिस देश में रहते हैं हर दिन हमारे लिए
16: सेलिब्रेट करना चाहिए,
13: शुड सेलिब्रेट।
12: बिल्कुल। और जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वो नोएडा की एकमात्र सोसाइटी है जहाँ सबसे ऊंचा तिरंगा लगता है और पूरे साल लगा रहता है, तो वो एक तस्वीर जैसे ही मैं सुबह सुबह हम उठते हैं और बालकनी पहुंचते हैं तो हमें वो तिरंगा नजर आता है और लगता है कि आज ही 15 अगस्त है, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए वैसी ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कश्मीर में जश्न तिरंगा, तो शहर शहर तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं जिनका उद्देश्य लोगों में देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को जगाना है। इन तिरंगा रैलियों में पुलिस, सुरक्षा बल, छात्र और आम नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
16: तो वहीं तिरंगे को सम्मान देते हुए श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 15 अगस्त के जश्न से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। कुछ ऐसी ही फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर से भी निकलकर सामने आई।

0: तो इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार आपको दिखाएंगे सूर्य ग्रहण की अनदेखी तस्वीरें।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
2: भगवान शिव की कौन सी स्तुति करके बड़ी से बड़ी समस्या को टाला जा सकता है? भगवान शिव की कौन सी स्तुति से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है? कौन सी हैं भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: एमपी के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की विहंगम तस्वीरें। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच 51,000 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर निकाली यात्रा। भोलेनाथ की भक्ति में झूमा पूरा शहर। गुजरात के डीसा में बनेगा रेगिस्तान थीम वाला एशिया का पहला नाइट सफारी और जू। लगभग 83 प्रजातियों के करीब 2700 जानवरों का होगा बसेरा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर लहराया राष्ट्रध्वज। आम लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। यूपी समेत 16 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट। रायपुर में दिखी बदलाव की बयार। कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक। सूर्य ग्रहण के दौरान स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड से सूर्यास्त के वक्त आसमान का अद्भुत नजारा कैमरे में कैद हुआ है, उसकी खास तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिन के समय अचानक अंधेरा छाने और सूर्य के कोरोना के बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आई हैं। लेकिन इसी दौरान कई लोगों ने ऐसी ऐसी तस्वीरें भी क्रिएट की हैं जो वाकई में सूर्य ग्रहण का एक अलग ही मोड दिखाती नजर आ रही हैं।
5: बिल्कुल, आपको बता दें कि ऐसी ही छोटी सी क्लिप इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रही है, जो कि स्पेन की ओलंपिक स्केटबोर्डर डैनी लियोन की बताई जा रही है। दरअसल कल सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज और चांद के दुर्लभ अलाइनमेंट के वक्त डैनी ने स्केटबोर्ड पर हवा में एक शानदार ट्रिकी छलांग लगाई। ये वो वक्त था जब चांद ने सूर्य को लगभग ढक दिया था। ठीक उसी पर डैनी का किया गया ये कमाल का स्टंट दुनिया भर में खूब वायरल हो रहा है। और आपको बता दें, जब तक मैंने लास्ट देखा था इस वीडियो को, तो 53.1 मिलियन व्यूज आ चुके थे। आज सुबह मैंने देखा था तो लगभग इतने व्यूज इसके आ चुके थे। और ये कमाल का है, आप देखिए ठीक पीछे, आप देखिए ये वही समय है जब पूरी तरह से ढक लिया गया है, सूर्य ग्रहण पूरा लग गया है और तब ये स्केटबोर्ड पे इन्होंने ये कमाल का ये ट्रिक किया, स्टंट किया है।
0: यकीन मानिए, हम हर किसी ने यहाँ पर कहा वाव, है ना, यही निकला उस
3: पिक्चर को देखकर। अब बात देखिए उसी खगोलीय घटना की, जिसे देखने की दिलचस्पी दुनिया भर में अक्सर रहती है। आसमान में जब चांद सूरज के सामने आकर उसकी रोशनी को ढक लेता है तो नजारा अपने आप में बहुत रोमांचक हो जाता है। इस साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का नजारा भी भारत में तो देखने को नहीं मिला, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में लोगों ने इस अद्भुत खगोलीय घटना को अपनी आंखों से देखा। कहीं दिन के उजाले में आसमान का रंग बदला तो कहीं सूरज के सामने चांद की काली परछाई ने लोगों को हैरान परेशान कर दिया।
6: बिल्कुल, बहरहाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखे गए सूर्य ग्रहण की रोमांचक तस्वीरें, और यहां भी ये भी बताएंगे कि इसको लेकर लोगों में उत्साह कैसा नजर आया।
7: एक बार फिर से आसमान में दिखा अद्भुत खगोलीय नजारा। पल पल गुजरते वक्त के साथ सूरज की रोशनी घटती गई और उसका आकार भी बदलता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें लंदन की है। साल के अंतिम सूर्य ग्रहण को लेकर यहाँ लोगों में उत्सुकता साफ देखी जा सकती है। लंदन के तमाम इलाकों में मौजूद लोगों ने अलग अलग तरीकों से बेहद सावधानी के साथ सूर्य ग्रहण के अनोखे पलों का दीदार किया। भारतीय समय के अनुसार 12 अगस्त की रात को 9:04 पर शुरू होकर 13 अगस्त को रात 1:27 पर खत्म हुए इस सूर्य ग्रहण की तस्वीरें भारतीय दर्शकों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा गया। वही खास बात ये है कि 27 साल में पहली बार ऐसा मौका आया है जब पश्चिमी यूरोप में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। खासतौर से आइसलैंड और स्पेन के इलाकों में इस दौरान थोड़ी देर के लिए तो पूरी तरह अंधेरा छा गया। स्पेन में धरती से तो इस सूर्य ग्रहण की शानदार झलक नजर आई ही, आसमान से भी लोग सूर्य ग्रहण का नजारा देखने के लिए आतुर नजर आए। स्पेन में आइबीरिया एयरलाइन की स्पेशल फ्लाइट में सवार होकर यात्रियों का एक दल मैड्रिड से पूर्ण सूर्य ग्रहण का दुर्लभ नजारा देखने के लिए रवाना हुआ। इस विमान ने स्पेन के आसमान में उत्तर दिशा में, और विमान में सवार लोग उन खास पलों के साक्षी बने जब चंद्रमा ने सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया था।
8: El ambiente, el silencio, o sea, no es lo mismo, entiendo yo, que verlo desde la calle con unas gafas o no, diferente.
7: शैल्यूस प्रोजेक्ट के रिसर्चर ने इस खास फ्लाइट का इस्तेमाल सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज के कोरोना की बनावट यानी मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए किया। वैज्ञानिकों ने इस दौरान ये भी स्टडी किया कि इस घटना को देखने का यात्रियों और जमीन पर मौजूद लोगों के व्यवहार और भावनाओं पर क्या असर पड़ा। सूर्य ग्रहण के बाद विमान मैड्रिड लौट आया और कुदरत के सबसे दुर्लभ नजारों में से एक को बेहद करीब से देखने का संतोष इन रिसर्चर्स के चेहरों पर साफ दिखा।
9: Hemos hecho 4 estudios, uno sobre la morfología de la corona, justamente en el momento de la totalidad. Hemos estado observando el gran campo, lo que sería el entorno solar, para ver si podíamos cazar algunas perseidas que vamos a procesar las imágenes de ellos. Hemos transmitido en directo la señal desde la aeronave a tierra, de ese eclipse total de sol. Hemos hecho un estudio para ver el comportamiento humano, tanto en la aeronave como en tierra, de las emociones y cómo de alguna manera esa energía se contagia a través de esta efervescencia social que genera un fenómeno extraordinario como un eclipse.
7: इतना ही नहीं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के भी एक विशेष विमान ने आसमान से सूर्य ग्रहण को कैमरे में कैद किया। इसके लिए हाई एल्टीट्यूड WB-57 एयरक्राफ्ट के नोज पर खास तौर से कैमरा लगाया गया था, जिसके जरिए ग्रहण के दौरान सूर्य के कोरोना की स्टडी के लिए तस्वीरें ली गई। विमान ने आसमान में उड़ान भरी और आइसलैंड के ऊपर सूर्य ग्रहण के पलों को रिकॉर्ड किया। अब आगे इस पर विस्तार से स्टडी की जाएगी। दुनिया के कई भागों में साल 2026 के अंतिम सूर्य ग्रहण के इस दुर्लभ नजारे के दीदार का मौका लोगों को मिला। इटली में समुद्र के किनारे बीच पर मौजूद लोगों ने इस दौरान न केवल सूरज के बदलते आकार को देखा, बल्कि उस वक्त की यादें संजोए रखने के लिए सेल्फी लेते भी नजर आए। यूरोप में पोलैंड से लेकर उत्तरी अमेरिका में ग्रीनलैंड तक पूर्ण सूर्य ग्रहण नजर आया, जब चंद्रमा ने कुछ समय के लिए सूरज को पूरी तरह ढक दिया था। इसके कारण दिन में ही रात जैसा आभास हुआ। साथ ही उत्तरी रूस में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। वहां दोपहर के वक्त ही सूर्य पर चांद की छाया को देखा गया। इसके अलावा उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तर से भी सूर्य ग्रहण का नजारा दिखाई दिया, जबकि पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी सहित यूरोप के कई देशों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। महज 15 दिन बाद ही 28 अगस्त को दुनिया एक और ग्रहण का गवाह बनेगी, जब चंद्र ग्रहण लगेगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा, जिसे आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। तब तांबे जैसे गहरी लाल रंग का ब्लड मून जैसा अद्भुत खगोलीय नजारा दिखेगा। ये चंद्र ग्रहण उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के आंशिक भागों में दिखाई देगा, पर भारत में नजर नहीं आएगा। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों और खगोलविदों की दिलचस्पी इसमें जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं फिल्मी सफर पर। तो कल फिल्मी फ्राइडे है और इस बार सिनेमा प्रेमियों को एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलने जा रहा है। सनी देओल स्टार बंटवारा 1947 और इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म आवारापन 2, दोनों ही स्टार्स की अपनी फैन फॉलोइंग है और दोनों ही फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बंटवारा 1947 देश के विभाजन पर बनी उस दौर की कहानी को सामने लाती है जो खौफ और दहशत से भरी है। फिल्म में सनी देओल ने सिकंदर मिर्जा का किरदार निभाया है, जो डर और नफरत के ऊपर साहस को चुनता है।
0: और देखिए, वही इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 2007 की कल्ट हिट फिल्म आवारापन का सीक्वल है। करीब 19 साल पहले रिलीज हुई आवारापन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, लेकिन बाद में अपने गानों और कहानी को लेकर ये मूवी टीवी पर आकर सबकी फेवरेट बन गई। अब आवारापन 2 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और एडवांस बुकिंग के मामले में बंटवारा 1947 पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है।
10: बहुत ही अजीब है।
6: बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए मेकर्स ने 12 शहरों का टूर प्लान किया है। सनी देओल अपने बेटे करण देओल और प्रीति जिंटा के साथ पंजाब से लेकर पटना, लखनऊ से लेकर अहमदाबाद तक कई शहरों में पहुंचे और बड़े मंचों पर फिल्म का जमकर प्रमोशन किया।
3: और जहां जहां भी सनी देओल पहुंचे, उनकी एक झलक पाने को सैकड़ों हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग बेताब नजर आए। अब उम्मीद यही है कि यही भीड़ और बेताबी कल थिएटर्स में भी उनको खींच कर लाएगी।
11: देश की आजादी मुबारक हो।
12: आपको भी बहुत मुबारक हो।
13: कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का।
14: खुदा के लिए यहाँ से निकलिए।
15: वक्त आ गया है जब इस जोश, जज्बे और जुनून से सिल्वर स्क्रीन गुलजार होगी। पर्दे पर सनी देओल की दहाड़ सुनाई देगी और हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठेगा।
16: कौन है आप?
17: तुम कहो जी, तुम कौन हो जो मेरे घर घुस है?
16: कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है, आप यहाँ नहीं रह सकती।
15: क्योंकि कल दस्तक देने जा रही है एक्शन और रोमांच से भरपूर फिल्म बंटवारा 1947, एक ऐसी फिल्म जिसका वास्ता हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तानियों से है, करीब 79 साल पहले हुए मुल्क के बंटवारे से है।
11: इरादा तो नहीं,
15: 28 जुलाई को बंटवारा 1947 का दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ था। रिलीज के साथ ही ट्रेलर को दर्शकों का शानदार रिस्पांस भी मिला और इसके ठीक एक दिन के बाद यानी 29 जुलाई से हिंदुस्तान की आवाम के दिलों तक पहुंचने के लिए सनी देओल ने फिल्म का मेगा प्रमोशन भी शुरू कर दिया। 12 शहरों के राष्ट्रव्यापी प्रमोशन टूर पर पहला पड़ाव बना जयपुर। जयपुर के ऐतिहासिक राज मंदिर सिनेमा में फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए यहां पहुंचे। सनी के साथ उनके बेटे करण देओल और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी भी पहुंचे थे। जयपुर प्रमोशन के दौरान बंटवारा टीम के साथ सनी देओल ने ऐतिहासिक हवा महल का भी दौरा किया। सनी के फैंस की दीवानगी का कुछ ऐसा ही आलम पटना में भी दिखा। 3 अगस्त को बेटे करण देओल के साथ सनी देओल पटना पहुंचे थे। यहां भी फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया और फिर सनी देओल मीडिया से मुखातिब हुए।
18: उस तरह की कहानी आती है, हम कोई कॉन्ट्रोवर्सी किसी चीज में नहीं थे और हर फिल्म उस तरह से अलग अलग रही है और हमारी बंटवारा भी उस तरह की फिल्म है। जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा।
15: पटना टूर के दौरान सनी देओल और प्रीति जिंटा ने तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के दर्शन किए, जो कि सिखों का दूसरा सबसे पवित्र तख्त और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्म स्थली है। शहर शहर बंटवारा 1947 के प्रमोशन का अगला पड़ाव बना लखनऊ। 7 अगस्त को सनी देओल, करण देओल और प्रीति जिंटा लखनऊ पहुँचे। अपने चहेते स्टार को देखने यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। सनी और प्रीति ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की और राजधानी के पुराने ऐतिहासिक इमारतों का दौरा किया। इस दौरान ऐतिहासिक रूमी गेट पर तांगे की सवारी भी की। बंटवारा 1947 की ये स्टार कास्ट फिल्म के धुआंधार प्रमोशन के लिए चंडीगढ़ गई। करण और प्रीति जिंटा के साथ सनी देओल एक बड़े मैदान में पहुंचे, जहां हजारों की भीड़ अपने पसंदीदा स्टार्स को देखकर काफी एक्साइटेड नजर आई। सनी देओल के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो अपने चाहने वालों से रूबरू होकर कितने ज्यादा खुश हैं। पंजाब दौरे के दौरान सनी देओल अमृतसर के पार्टीशन म्यूजियम भी पहुंचे। यहां वो इतिहास को याद कर बेहद भावुक नजर आए। संग्रहालय में मौजूद एक एक ऐतिहासिक चीज को सनी ने बेहद करीब से देखा, समझा और उसे महसूस किया। इसके अलावा सनी देओल बंटवारा 1947 का प्रमोशन करने अहमदाबाद, कोलकाता और दिल्ली भी आए और दर्शकों से फिल्म देखने की अपील की। 1947 में भारत का विभाजन मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापना और त्रासदियों में से एक था। अब तक कई बॉलीवुड फिल्में इस विषय पर बन चुकी है। अलग अलग फिल्मकारों ने किसी न किसी किताब या उपन्यास को आधार बनाकर अपने अपने नजरिए से इस ऐतिहासिक त्रासदी को पर्दे पर उतारा है। इस बार निर्देशन की कमान संभाली है राजकुमार संतोषी ने और भारत पाक विभाजन के दौरान की एक अनोखी कहानी को लेकर सामने आया है। बंटवारा 1947 असगर वजाहत के विश्व प्रसिद्ध नाटक जिस लाहौर नहीं व्याख्या ओ जनयाई नहीं पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट टुडे।
10: सरहद सीधा घुस के मारेंगे।
6: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे क्यों इस्तीफा देकर चर्चा में आ गई ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: भगवान शिव की कौन सी स्तुति करके बड़ी से बड़ी समस्या को टाला जा सकता है? भगवान शिव की कौन सी स्तुति से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है? कौन सी हैं भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
1: व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट इस महीने के आखिर में अपना पद छोड़ देंगी। कैरोलिन लेविट हाउस की सबसे कम उम्र की प्रेस सेक्रेटरी हैं, जो प्रेस ब्रीफिंग में तीखे जवाबों के लिए काफी मशहूर रही हैं।
2: और देखिए, बताया ही जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए लेविट सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं आखिर कैरोलिन लेविट ने प्रेस सचिव का पद क्यों छोड़ा और उनके इस एक्शन को लेकर खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने कैसा रिएक्शन दिया।
3: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की दुनिया तक पहुंचाने वाला ये चेहरा अब व्हाइट हाउस में दिखाई नहीं देगा। ट्रंप के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल अमेरिका की सबसे ताकतवर प्रेस सचिवों में गिनी जाने वाली और महज 27 साल की उम्र में इतिहास की सबसे युवा व्हाइट हाउस प्रेस सचिव बनी कैरोलिन लेविट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 28 साल की कैरोलिन महीने के आखिर में व्हाइट हाउस को अलविदा कह देंगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि ट्रंप की इतनी करीबी सहयोगी ने, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहा है, व्हाइट हाउस छोड़ने का फैसला लिया। कैरोलिन लेविट की व्हाइट हाउस से विदाई सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, क्योंकि एक स्क्रिप्ट का अंत है और दूसरी स्क्रिप्ट की शुरुआत। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि कैरोलिन लेविट के जाने की खबर खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को दी। ट्रंप ने लिखा कि हमारी शानदार व्हाइट हाउस प्रेस सचिव और मेरी सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक कैरोलिन लेविट महीने के अंत में अपने पद से विदा लेंगी, ताकि वो अपने छोटे बच्चों और परिवार के साथ अधिक समय बिता पाए। मैं उनके इस फैसले को पूरी तरह समझता हूँ और इसका सम्मान करता हूँ। मई में बेटी को जन्म देने के बाद कैरोलिन कुछ समय के लिए मातृत्व अवकाश पर गई थी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने काम पर वापसी की, लेकिन व्हाइट हाउस लौटने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण राजनीतिक नौकरियों में से एक निभाते हुए वो अपने दो छोटे बच्चों को वो समय नहीं दे पा रही। लेविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक माँ के रूप में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण नौकरियों में से एक को निभाते हुए एक नए बच्चे का स्वागत करना मेरे जीवन का सबसे संतोषजनक लेकिन साथ ही सबसे कठिन दौर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के पद के लिए जरूरी समय, ऊर्जा और ध्यान देते हुए मैं अपने दो छोटे बच्चों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ माँ नहीं बन पा रही हूँ जिसके वो हकदार हैं। यही वजह है कि मैंने भारी मन से व्हाइट हाउस छोड़ने और अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने का फैसला किया है। निजी जिंदगी की बात करें तो कैरोलिन की कहानी किसी राजनीतिक बायोग्राफी से कम दिलचस्प नहीं। दिसंबर 2023 में उन्होंने रियल एस्टेट डेवलपर निकोलस रिकियो से सगाई की। जुलाई 2024 में उनके बेटे का जन्म हुआ। फिर दिसंबर 2025 में कैरोलिन ने ऐलान किया कि वो दूसरी बार मां बनने वाली हैं। 1 मई 2026 को उनकी बेटी का जन्म हुआ और अब उसी बेटी और अपने परिवार को वक्त देने के लिए कैरोलिन ने दुनिया की सबसे हाई प्रोफाइल प्रेस नौकरियों में से एक को छोड़ने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए फिलहाल यहाँ पर कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन चाय पर चर्चा लगातार जारी है। अब देखते रहिए TNT।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: भगवान शिव की कौन सी स्तुति करके बड़ी से बड़ी समस्या को टाला जा सकता है? भगवान शिव की कौन सी स्तुति से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है? कौन सी हैं भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: चलिए अब बात अयोध्या की, जहां राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस में फिर से बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत राम मंदिर पुजारी अब बिना सिले हुए वस्त्र ही पहनेंगे। पिछले दिनों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जुड़ी धार्मिक न्यास समिति ने इस ड्रेस कोड के प्रस्ताव को अपनी सहमति दी थी।
3: श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहले ही एक ड्रेस कोड लागू किया था, जिसके तहत पुजारियों को पगड़ी, पीली चौबंदी और सफेद धोती पहननी होती थी, लेकिन इन कपड़ों को वैष्णव परंपराओं के खिलाफ माना गया था, इसलिए ड्रेस कोड बदलने का फैसला किया गया।
4: वेश विन्यास का ध्यान रखा जाए, उसके लिए सिल्क के वस्त्र, पीत वस्त्र में अपने ड्रेस में रहेंगे, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनेंगे और ऊपर उत्तरीय धारण करेंगे। शरद कालीन होगा तो उसी ढंग से कुछ ऊनी वस्त्र धारण करेंगे, जिससे वहाँ की पुजारियों की भी और वहाँ स्वच्छता पवित्रता भी बनी रहे।
2: चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे चाय पर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
0: भगवान शिव की कौन सी स्तुति करके बड़ी से बड़ी समस्या को टाला जा सकता है? भगवान शिव की कौन सी स्तुति से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है? कौन सी हैं भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
2: मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की विहंगम तस्वीरें, ढोल नगाड़ों की धुन के बीच 51,000 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर निकाली कलश यात्रा, भोले की भक्ति में झूमा शहर। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर लहराया राष्ट्रध्वज, आम लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी में बांदा में महिलाओं को मिला रोजगार का मौका, आजादी के जश्न के लिए तैयार कर रही 2,00,000 तिरंगे। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, यूपी समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, हिमाचल में 19 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। मिर्जापुर के आशीष यादव का कमाल, अमेरिका में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में जीता सिल्वर मेडल। रायपुर में दिखी बदलाव की बयार, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक। गुजरात के डीसा में बनेगा रेगिस्तान थीम वाला एशिया का पहला नाइट सफारी और जू, लगभग 83 प्रजातियों के करीब 2,700 जानवरों का होगा बसेरा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की
2: स्पेशल में स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिले। गोलगप्पे का खट्टा खट्टा पानी, मुंबई का तीखा वड़ा पाव और जयपुर की करारी प्याज वाली कचौरी, मुंह में पानी आ गया ना, पानी आना लाजमी है। आप देखिए स्ट्रीट फूड का जादू ही कुछ ऐसा होता है कि पेट भले ही भर जाए लेकिन नियत भरती ही नहीं है। और अब तो देखिए हमारी इस देसी जायके की दीवानी पूरी दुनिया हो चुकी है, क्योंकि टाइम आउट मैगजीन ने दुनिया के बेस्ट स्ट्रीट फूड शहरों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के एक दो नहीं बल्कि 3-3 शहरों के नाम शामिल हैं। टॉप 20 में जहां मुंबई 10वें स्थान पर है, तो वहीं पिंक सिटी जयपुर 15वें और दिलवालों की दिल्ली है 19वें नंबर पर। अब दिल्ली की पुरानी गलियों की चाट हो, छोले भटूरे हो, मुंबई का चटपटा वड़ा पाव हो, भेलपुरी हो या फिर जयपुर की कचौरी या घेवर हो, भाई जितने मर्जी नाम ले लो ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इन शहरों के जायके में ऐसा कुछ खास है जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना सा बना दिया है। अब क्या कुछ खास है इसमें, ये जानने के लिए हमारे साथ तीन साथी तीनों शहरों के स्ट्रीट फूड का जायका आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रीट फूड के सुपर 3।

वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपुरी, प्याज कचौड़ी, समोसा, मिर्ची वड़ा, चाट, गोलगप्पे और छोले भटूरे जैसे कई स्ट्रीट फूड्स हैं जिनको देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है।

0: की अपनी खासियत होती है। हर शहर का अपना स्वाद, खुशबू और पहचान होती है। कहीं चटपटा स्ट्रीट फूड लोगों का दिल जीत लेता है, तो कहीं शाही अंदाज में बना लजीज खाना आकर्षित करता है। हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। हर राज्य का भोजन, मिठाइयाँ और स्ट्रीट फूड की अपनी खासियत है। अगर बात स्ट्रीट फूड की ही होती है, तो देश में कई शहर ऐसे हैं जहाँ का स्ट्रीट फूड काफी फेमस है। ऐसा सिर्फ हमारे देश में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में कई शहरों की पहचान तो स्ट्रीट फूड की वजह से ही होती है। स्ट्रीट फूड को लेकर लोगों में ऐसी दीवानगी है कि वो सिर्फ खाने के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ऐसे में टाइम आउट ने एक सर्वेक्षण कराया है। बेस्ट स्ट्रीट फूड सिटीज जैसी वैश्विक शहर रैंकिंग और पाक कला सर्वेक्षणों के अनुसार सबसे ज्यादा चर्चित स्ट्रीट फूड स्थल एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में फैले हुए हैं। जिनमें सबसे आगे हैं वियतनाम में हो ची मिन सिटी, मलेशिया का कुआलालंपुर दूसरे पायदान पर है, जबकि इंडोनेशिया का जकार्ता तीसरे नंबर पर है। भारत से मुंबई 10वें नंबर पर, जयपुर 15वें और दिल्ली 19वें नंबर पर है। आज हम भारत के तीन उन मशहूर शहरों के स्ट्रीट फूड की बात करेंगे जिन्होंने टाइम आउट के सर्वे में टॉप 20 में जगह बनाई है। सबसे पहले बात आमची मुंबई की। तो मुंबई का वड़ा पाव स्ट्रीट फूड का बादशाह माना जाता है। मसालेदार आलू के पकौड़े से भरा नरम ब्रेड रोल, चटपटी चटनी और साथ में तली हुई हरी मिर्च, इसकी तुलना आप बर्गर से भी कर सकते हैं। लेकिन वड़ा पाव मुंबई में हर तबके का फूड है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। हर मुंबई कर या बाहर से आने वाले लोग भी वड़ा पाव के दीवाने नजर आते हैं। मुंबई में वैसे तो वड़ा पाव के कई स्वरूप सामने आ गए हैं, यानी भाजी पाव, समोसा पाव, लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा वड़ा पाव की ही है।
1: जो चौपाटी पे फेमस पानी पूरी, भेलपुरी, सेव पूरी, दही पूरी, चाट, बहुत अच्छा है।
2: यहाँ पे आते हैं सब लोग?
1: सब नहीं, बहुत अच्छा आता है, पब्लिक सही देख के आता है, साफ सफाई अच्छा रहता है ना।
2: सबसे पहले क्या मांगते हैं लोग पानी पूरी?
1: पहले तो बच्चे लोग भी आते ही तो भैया जी पानी पूरी दो, पानी पूरी दो, पानी पूरी देना पड़ता है। फिर बाद में सेव पूरी खाते हैं, टिक्की खाते हैं, समोसा खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बस ये आइटम।
2: लास्ट में सूखी पूरी
1: भी? लास्ट में वो तो पहली है, रोड शू भी आ जाता है वापिस।
2: और भी मांगते
1: हैं? हाँ, वो तो देना ही पड़ता है। रोड पर भैया जी सूखा पूरी तो दिया ही नहीं है, लो साहब फिर देना ही पड़ता है।
3: तो यहाँ पर खाने लायक कई चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पसंद की जाती है वो है वड़ा पाव। मैं भी काफी जद्दोजहद के बाद इस वड़ा पाव को पा सका हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी तस्वीरों में देखें, अच्छी खासी लाइन, अच्छी खासी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लगभग 15 मिनट 20 मिनट, आधे घंटे लोग खड़े रहते हैं, फिर काउंटर पे जाते हैं, पर्ची फड़वाते हैं और उसके बाद जहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा छन रहा है वहां जाकर के वड़ा पाव लेते हैं। कोई यहीं पर रुककर खाता है तो कोई अपने मंजिल पर जाकर खाता है। देख रहे हैं लगातार ये जो लाइन है ये बढ़ती ही जा रही है, और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वाकई में वड़ा पाव का स्वाद एक नंबर होता है। थोड़ा सा इस वड़ा पाव की साइज भी देखें, 25 रुपए का एक है, इतना ज्यादा बड़ा है कि एक से ही मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन अगर इसे दो खा लिया जाए तो दिन एकदम मस्त हो जाता है, आदमी एकदम सस्त हो जाता है। चलिए कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर ऐसा है तो क्या खास बात है। मुझे लगता है वड़ा पाव खा चुकी।
4: हाँ, मैंने अभी एक मस्त बड़ा सा वड़ा पाव खाया है।
3: एक में हो गया, पेट भर गया।
4: हाँ, साइज तो अच्छी बड़ी है, सो वो काफी फिलिंग हो जाता है।
3: अच्छा, ये बताएं मुझे कि महीने में कितनी बार खाना होता है?
4: महीने में 4 से 5 बार तो वड़ा पाव मतलब लगता ही है।
3: महाराष्ट्र में ही रहती है? महाराष्ट्र
4: नहीं हूँ।
3: वड़ा पाव की जब भी बात आती है क्या चलता है जहन में? घर में भी तो लोग इसे बनाते हैं, बचपन से खा रहे हैं।
4: यस बचपन से, मतलब अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र हो, तो वड़ा पाव बेसिकली और लाइफ लाइन, मतलब जैसे ट्रेन को, रेलवे को मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है, वैसे जब मुंबई के स्टेपल फूड की बात आती है तो आई कैन इजिली से कि वड़ा पाव मुंबई का स्टेपल फूड है, मतलब काफी लोग। एंड ऐसे भी नहीं कि आपको मतलब वड़ा पाव खा रहे हो तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप गरीब हो या ऐसे कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, आते जाएंगे, हजारों की शॉपिंग करेंगे, आके खड़े रहना है वड़ा पाव की दुकान पे, आना है, खाना है और मस्त मजे से खाते हैं, एकदम स्वाद ले लेके खाते हैं। एंड यस, मतलब जहाँ तक कि

0: मुंबई के स्ट्रीट फूड की बात आती है, जैसे आपने भी कहा कि वड़ा पाव हो, भेलपूरी हो, पाव भाजी हो, ये सारी चीज़ें, तो मतलब अगेन एज अ सर कि ये मुंबई का स्टेपल फूड है, मतलब मुंबई रह ही नहीं सकती इसके बिना। जो बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरे भले दूसरे स्टेट से हो या दूसरे देशों से हो, उन्होंने भी आके एक ना एक बार तो यहाँ का चाट खाना ही, और वो भी ठेले पे खड़े रह के, एक ना एक बार तो टपरी की चाय पीनी ही है या वड़ा पाव खाना ही है। मतलब उससे, उसके अलावा, उसके बगैर कोई जा नहीं सकता यहाँ से। और अगर वो एक बार चख ले ना, तो बस उनको एक बार वो स्वाद आ जाए, तो बस मतलब दे क्रेव फॉर इट।
1: महीने में कितना खाते हैं वड़ा पाव?
2: हर रोज कॉलेज छूटने के बाद।
1: रोज?
2: हाँ,
1: प्रतिदिन यही खाना,
2: प्रतिदिन प्रतिदिन खाना ही खाना है, नहीं तो पेट नहीं भरता है।
1: पेट नहीं भरता? और टेस्ट कैसा लगता है?
2: बहुत मजेदार।
1: यही मुंबई में?
2: मुंबई में रहता हूँ, घाटकोपर में, असलफा।
3: स्ट्रीट फूड में जो मिलेगा भाई सब कुछ खाते हैं अपन,
1: जैसे
3: जो मतलब खा के खुशी मिलती है। स्पाइसी हो गया ज्यादा करके, वड़ा पाव भी अपना फेवरेट है,
1: स्ट्रीट फूड को।
3: हाँ, स्ट्रीट फूड अपन सब कुछ खाते हैं।
1: अच्छा, आपको पता है कि मुंबई में जो है ना, मुंबई ने 10वां नंबर हासिल किया है खाने के मामले में, स्ट्रीट फूड के मामले में, तो क्या रिएक्शन होगा एक मुंबई कर होने के नाते आपका?
3: होना ही चाहिए, क्योंकि वड़ा पाव अभी बहुत जने जो जिनका मतलब जिनके पास खाना नहीं रहता, वो वड़ा पाव पे ही जीते।
1: आप ये बताएं, महीने में कितना ज्यादा वड़ा पाव खाते होंगे? कितने?
4: 30-40-50 खा लेते हैं डेली का, एकदम खाली एक शौक के लिए खाते हैं, खाने का पेट भरने के लिए, हम लोग मजा लेने का थोड़ा शाम को।
1: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या पसंद है फास्ट फूड में, बात करें आपको?
4: सब कुछ है खाने में, सब कुछ, किस खाने को ना नहीं बोलने कोई भी, हर चीज़ एकदम मजे से खाने का टेस्ट इंजॉय करने का, बारिश का मौसम है।
5: वड़ा पाव मुंबई की पहचान है, लेकिन कई और व्यंजन हैं जो आए तो किसी दूसरे राज्य से हैं, लेकिन मुंबई के रंग में रंगते हुए और चटपटे हो गए हैं।
6: हमारा दुकान में इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, दाल वड़ा, चाय, कॉफी, सब सब लोग को पसंद हो जाता है।
7: मुंबई का नाम है खाने पीने में, जो बीच में ज्यादा है,
1: जो बीच में ज्यादा है,
7: जो बीच में।
1: तो क्या क्या आपकी दुकान पे क्या मिलता
7: है? अपना पाव भाजी है, पुलाव राइस है, ये फेमस है यहाँ का, स्पेशल बनता है। हाँ,
1: मुंबई की पाव भाजी
7: बहुत फेमस है, मुंबई की पाव भाजी, जो बीच में तो और भी टेस्टी है पाव भाजी।
1: और वर्ल्ड में ऐसे ही 10वां नंबर मुंबई ने नहीं हासिल किया है, उसमें न केवल एक वड़ा पाव बल्कि समोसा आता है, भजिया पाव आता है, भेलपूरी, पानीपूरी, मुंह में पानी आ गया, पाव भाजी भी आजकल तरह तरह की आने लगी हैं, डोसा, चटनी, साउथ इंडियन डिश, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सैंडविच है, जिन्हें खाने के लिए लोग आते हैं, और बहुत ही कम भाव में ये सारी चीज़ें मिलती भी हैं। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, स्वाद बड़ा अच्छा होता है, और मुझे लगता है कि ऐसा सुनने को भी नहीं मिला है कि इस तरह के स्ट्रीट फूड खा करके स्वास्थ्य को किसी तरीके से कोई परेशानी हुई है। तो आप देखें, लगातार ये कतार बढ़ती जा रही है, और ये जो कतार है न केवल एक वड़ा पाव की दुकान पर आपको मिलेगी, बल्कि वो सारे खाने के जो स्टेशन थे वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल खड़े हैं, अभी तो आए ही हैं, लेकिन और भी देखिए 15 मिनट 20 मिनट से लगातार लोग खड़े हैं, और जब वड़ा पाव मिल जाता है तो कुछ इस तरीके से चटकारे लगाते हैं। वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव, भेलपूरी, पानीपूरी, सैंडविच, इसके अलावा साउथ इंडियन डिशेज जिसमें इडली, मेंदू वड़ा, डोसा, तमाम वो चीज़ें आती हैं, और यही चीज़ें मुंबई वाले तो बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के कोने से भी लोग जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं वो होता है वड़ा पाव। और वड़ा पाव के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वाकई में बहुत कम बजट में होती हैं, अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं, हाइजीन होता है, और जिसे खाकर लोग स्वस्थ होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 15वें नंबर पर जयपुर है, और जयपुर से रिधिमा जैन हमारी सहयोगी अब आपको वहाँ के जो व्यंजन है वहाँ का जायका आपको बताएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।

0: गर्मा गर्म कचौड़ी से उठती खुशबू, कुल्हड़ में जमी मोटी मलाई वाली लस्सी और तवे पर बनते मूंग दाल के चीले, जयपुर की गलियों में कदम रखते ही स्वाद जैसे हर मोड़ पर ही आपका इंतजार कर रहा हो। यहाँ स्ट्रीट फूड सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि शहर की पहचान, उसकी संस्कृति और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का स्वाद है।
1: जहाँ बात स्वाद और चटकारों की आती है, जायके की आती है, वहाँ राजस्थान का नाम जरूर आता है, खास करके चटपटे मसालेदार खाने की बात जब हो। हम ये बता दें कि जयपुर का खाना वाकई में बहुत ज़्यादा जायकेदार होता है, मसालेदार होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी कुछ भी खाने आता है वो एक बार और वापस ज़रूर आता है, चाहे यहाँ की कचौरी हो, समोसा हो या फिर यहाँ की बेजड़ की रोटी हो। जो यहाँ का लोकल फूड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दाल बाटी चूरमा को भी आजकल एक स्ट्रीट फूड स्टाइल में परोसा जा रहा है, तो ये एक मेन कोर्स नहीं बल्कि स्टार्टर्स के रूप में, स्ट्रीट फूड के रूप में यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जयपुर के कैसे मार्केट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं वो लगाए जाते हैं यहाँ पे। आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन या जो आपका जंक फूड में बहुत सारे ऑप्शन होता है वो सब एक ही जगह पे अवेलेबल है। ऐसी जो जगह है, ऐसे जो जॉइंट्स हैं, हर शाम यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी होती है, हर कोई अपने मन पसंद का जो भी उनको खाना है वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो चीज़ यहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो ऐसे में सिर्फ जयपुर के एक ये मार्केट नहीं, ऐसे कई सारे स्ट्रीट फूड मार्केट्स हैं जहाँ पर हर शाम लोगों की भीड़ नज़र आती है। क्योंकि इनोवेशन की मैं बात करूँ तो इनोवेशन भी जयपुर के अब स्ट्रीट फूड में काफ़ी देखने को मिली है। सिर्फ जंक नहीं, हेल्दी ऑप्शंस भी अब स्ट्रीट पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इनोवेशन काफ़ी देखने को मिल रही है। जहाँ पे अगर आप कोई किसी भी तरीके का डोसा ले रहे हैं तो उसमें मूंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर हेल्दी ऑप्शंस कैसे निकाले जा सकते हैं स्ट्रीट फूड में, उसका सॉल्यूशन भी जयपुर के यहाँ पे जो फूड जॉइंट्स हैं वहाँ मिल रहा है।
0: जयपुर के स्ट्रीट फूड बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। यहाँ के हर व्यंजन में राजस्थानी मसालों की खुशबू, देसी घी या पारंपरिक तेल का स्वाद, स्थानीय सामग्री और वर्षों पुरानी रेसिपी का मेल मिलता है। यही वजह है कि यहाँ का हर निवाला सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक विरासत का एहसास कराता है। जयपुर के मशहूर कलकत्ती चाट भंडार पर जायके का बाजार सजता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। ये दुकान 1970 से लगातार लोगों को अपने जायकेदार चीला की महक से आकर्षित करती रही है।
1: कुछ तीखापन, कुछ मिठास तो कुछ चटपटे मसाले, यही चीजें हैं जो किसी भी खाने को और भी ज्यादा जायकेदार बनाती है। और यही खाना है जो विश्व भर में अभी भारत का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। सिर्फ भारत का ही नहीं, भारत के तीन ऐसी सिटीज हैं, एक मुंबई, दूसरा जयपुर और तीसरा दिल्ली, ये तीन सिटीज हैं जो टाइम आउट की लिस्टिंग में टॉप 20 में आई हैं बेस्ट स्ट्रीट फूड के लिए। और जयपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि जयपुर में कौन सा जायकेदार खाना जो है, जो स्ट्रीट फूड है और सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। कितने साल से यहाँ स्टॉल लग रहे? बहुत सालों से तो हम यहाँ आ रहे हैं, आप बता दीजिए कि कुल कितने साल?
2: ये मैडम हमारी दूसरी पीढ़ी है, 56 साल हो गए, 1970 की दुकान है।
1: तो अब देखिए वहाँ बन रहे हैं चीले, तो कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो तो आप हमें पहले बता भी दीजिए और हमारी भी एक प्लेट लगा दीजिए जिससे हम भी वापस से एक बार टेस्ट करें।
2: ये जो चीला बनता है ये 81 आइटम से बनता है, इसमें मूंग की दाल, गरम मसाले, ड्राई फ्रूट्स, पाचक चीजें, गैस्ट्रिक आइटम नहीं है, चना नहीं है, उड़द नहीं है, मोट नहीं है, बेसन नहीं है, उसके अलावा ये चीला तैयार किया है। इसके साथ चार तरह की चटनी, दो तरह का दही, पूरा सिंगार करके चीला देते हैं हम।
1: अच्छा, यहाँ पे दही बड़े भी सर बना रहे हैं आप, उसका भी बता दीजिए कि क्या क्या उसमें डल रहे हैं।
2: वो दही बड़ा मूंग की दाल का बनता है, पेवर पेवर छिलके वाली दाल का बनता है और उसके ऊपर वही चार तरह की चटनी दही डाल के ऐसे सर्व किया जाता है। और हमारे जो चटनी है उनमें भी इमली अमचूर का प्रयोग नहीं करते हम बिल्कुल भी। जो आप हमारी मीठी चटनी खाओगे ना वो खाली खजूर और डाबर के चमनप्रास से बनती है।
0: यहाँ बनने वाला चीला सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि हाई प्रोटीन भी माना गया है। मूंग दाल के साथ कई पौष्टिक सामग्री और खास मसालों का मिश्रण इसे सामान्य स्ट्रीट फूड से कुछ अलग पहचान देता है। वहीं मूंग दाल से तैयार दही भल्ले हल्के, मुलायम और स्वाद से भरपूर होते हैं। यही कारण है कि सुबह से ही यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।
3: बहुत ही अच्छा था, टेस्ट वाइज ऑसम था, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बस टेस्ट वाइज रियली गुड, रियली हेल्दी। यस यस,
4: दही बड़ा और मूंग की दाल का चीला, एब्सोल्युटली फुल ऑफ प्रोटीन, आयुर्वेदिक। इनके जब पिताजी यहाँ बैठा करते थे तब जब हम पे करने जाते थे 60 रुपया, तब उस टाइम पर मैं वो साथ में एक आयुर्वेदिक गोली देते थे जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती थी। मुझे आज भी रिकॉल होता है वो दिन जब यहाँ पर मैं इनके बैक साइड के अंदर में एक थ्री व्हीलर रखा होता था। आज हमने यहाँ खड़े होके खाया, उस टाइम पर मैं हम लोग उस रिक्शा के अंदर में बैठ के खाया करते थे।
0: अगर किसी व्यंजन ने जयपुर की पहचान देश दुनिया तक पहुँचाई है तो वो है प्याज की कचौड़ी। बाहर से सुनहरी कुरकुरी और अंदर से मसालेदार, हल्की मीठी और रसदार प्याज की भरावन वाली ये कचौड़ी हर किसी की पसंद है। प्याज को धीमी आंच पर मसालों के साथ इस तरह पकाया जाता है कि उसका स्वाद ही पूरी तरह निखर कर सामने आता है। कई लोग तो इसे बिना चटनी के ही खाना पसंद करते हैं। जयपुर की लस्सी की बात ही कुछ और है। जयपुर के स्ट्रीट फूड की चर्चा लस्सी वाला के बगैर अधूरी मानी गई है। 1944 में शुरू हुई इस दुकान को आज चौथी पीढ़ी आगे ले जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ आज भी आधुनिक फ्लेवर की जगह पारंपरिक स्वाद को ही तरजीह दी जाती है।
1: चटपटे मसालेदार दही बड़े और साथ ही में जो हेल्दी प्रोटीन चीला है वो तो हमने आपको दिखा दिया, और उसके साथ साथ में जो मसालेदार कचौरियां हैं एकदम खस्ता वो भी हमने आपको जयपुर की दिखा दी है। तो जैसे हमने कहा था कि चटपटा, तीखा और मीठा जो है वो तीनों चीजें जो राजस्थान में फेमस है वो तीनों हम आपको दिखाएंगे। तो अब बारी है मिठास की, और मिठास में हम कोई मिठाई नहीं आपको लेके आएंगे, एकदम रिफ्रेशिंग जगह जो कि है जयपुर का ये बहुत ही फेमस लस्सी वाला जो कि 1944 से यहाँ पे है।
5: और लस्सी की बात करें तो आज हम जो एमआई रोड के सामने जिस लस्सी वाले खड़े हैं, मेरे हिसाब से मोर देन 50 to 80 ईयर्स की लेगेसी है इनकी, और इनके अलावा यहाँ पे लस्सी कोई और नहीं देता है। और खासियत ये है कि ये बहुत अर्ली मॉर्निंग खोलते हैं और 12 से पहले क्लोज भी कर जाते हैं, उसके बाद ये ओपन नहीं करते हैं, और ऐसी लस्सी तो जयपुर में कोई दे ही नहीं पा रहा है। और मुझे मेरे हिसाब से 30 ईयर्स हो गए आज इनकी लस्सी पीते हुए।
0: जयपुर की हर दुकान अपने साथ कई दशक पुरानी कहानी लेकर खड़ी है और हर रेसिपी में पीढ़ियों का अनुभव शामिल है। शायद इसलिए दुनिया के बेहतरीन स्ट्रीट फूड शहरों की सूची में जयपुर ने अपनी जगह बनाई है।
1: जयपुर की कचौरी और लस्सी का स्वाद तो आपने चख ही लिया है। अब हम आपको लेके चलेंगे तीसरी सिटी यानी कि चटोरों की गली के नाम से जो फेमस है, और वो सिटी है दिल्ली 6 जहाँ मिलेगी चाट पापड़ी। तो आइए लिए चलते हैं आपको दिल्ली 6 और वहाँ के चटपटे चाट की गलियों में।

0: अब बात दिल्ली की स्ट्रीट फूड की, क्योंकि दुनिया की मशहूर टाइम आउट मैगजीन ने साल 2026 की वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रीट फूड सिटीज की जो लिस्ट जारी की है, राजधानी दिल्ली 19वें पायदान पर है। यहाँ के चटपटे फूड से लेकर मसालेदार खाने तक हर जायके का लोग बड़े ही चाव से लुत्फ उठाते हैं। कमला नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की पहली पसंद, शॉपिंग का बड़ा ठिकाना और स्ट्रीट फूड का ऐसा अड्डा जहां सुबह से लेकर देर रात तक स्वाद की महफिल जमी रहती है। यहां हर 10 कदम पर एक नई खुशबू मिलेगी और हर गली में एक नया स्वाद।
1: दिल्ली के खाने को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर दिल्ली वाले का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा कर दिया है, मेरा भी कर दिया है, क्योंकि मैं खुद एक दिल्ली वाली हूँ। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड की सूची में दिल्ली का भी नाम है। हालांकि जयपुर का भी नाम है, बॉम्बे का भी नाम है, लेकिन मेरी दिल्ली का भी नाम है। और इस वक्त मैं आ गई हूँ कमला नगर मार्केट में, क्योंकि जब बात दिल्ली की हो तो मैं ये मार्केट डेफिनेटली नहीं भूल सकती। और उससे भी ज़्यादा खास ये हो गया है कि दिल्ली का जो खाना है वो देश भर में तो राज कर रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, अब वो पूरी दुनिया में भी अपना जादू जो है वो फैला रहा है। तो दिल्ली के स्वाद में क्या है कुछ खास, किस तरीके का स्वाद यहाँ पर मिलता है, हर गली में आपको एक खुशबूदार अच्छी खुशबू जो है वो उठती हुई नजर आएगी, हर दुकान पर आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी और हर स्वाद में आपको एक ना एक कहानी वो नजर आएगी। तो कैसा स्वाद है दिल्ली का, ये दिखाने के लिए ले आई हूँ मैं आपको आज कमला नगर मार्केट में।
0: दिल्ली दिल वालों की तो है ही, लेकिन अब स्वाद वालों की भी पसंद बन चुकी है। जरा सोचिए, अगर दुनिया आपसे पूछे कि सबसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड कहाँ मिलता है, तो इसका जवाब सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे रही है। ऐसी ही दिल्ली को स्ट्रीट फूड ऑफ कैपिटल नहीं कहा जाता। अगर दिल्ली की पहचान में व्यंजन की एक प्लेट रखनी हो तो शायद सबसे पहले नाम आएगा छोले भटूरे का। गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे, मसालेदार छोले, ऊपर से अचार, हरी मिर्च और प्याज, बस एक प्लेट और पूरा दिन बन जाएगा।
2: लेन है ना, आप पूरी लेन देखेंगे, डोसा भी मिलता है, चाट पापड़ी मिलती है, परांठा भी मिलता है, कुल्फी भी मिलती है और बहुत ही रीजनेबल है। कहीं से भी कंपेयर करें, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे हाउस होल्ड के लिए, किसी के लिए है।
0: दिल्ली की कचौड़ी के तो कहने ही क्या, बाहर से जितनी कुरकुरी, अंदर मसालेदार भरावन, ऊपर से आलू की सब्जी और फिर शुरू होता है असली स्वाद का धमाका। ये सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं है बल्कि इमोशन है।
1: दिल्ली में अगर कोई रहता है तो वो बिना छोले भटूरे के तो बिल्कुल नहीं रह सकता। और जब बात लंच की हो तो इस तरीके से लाइन जो है आपको हर एक छोले भटूरे की शॉप पे नजर आएगी। अच्छा, मैं इस वक्त हूँ ओम दी हट्टी में, ओम दी हट्टी हो, चाचा की छोले भटूरे हो, इन सब जगह पे सबसे ज्यादा लोगों की जो भीड़ है वो नजर आती है। गरम गरम भटूरे जो है वो निकलते हुए आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से जो स्वाद है वो यहाँ पर आपको तलता हुआ नजर आ जाएगा। और साथ में ये जो काले छोले हैं, जो भरपूर मसालेदार, जो चटपटा स्वाद है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके की जो भीड़ है वो डेफिनेटली जो है मिलने वाली। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सर छोले भटूरे का स्वाद ले रहे हैं, दिख भी रहा है।
3: एक्चुअली मेरा स्कूल यहाँ होता था 15 नंबर 2 में। मैं 92 में यहाँ पढ़ता था। मैं अब रोहिणी शिफ्ट हो गया हूँ, फिर भी मैं आज कमलनगर आया था बहुत दिन बाद। तब तो इनके रेट बहुत कम थे, अब तो 120 फुल प्लेट हो गए। उस टाइम समोसे हम स्कूल के सारे दोस्त यार खाते थे, कई तो ऐसे भाग जाते थे, बिगड़ पैसे थे चले जाते थे, फिर भी कुछ नहीं कहते थे भैया, क्योंकि स्कूल का सब रश नहीं जाता था। बहुत टाइम से आ रहे
1: दिल्ली वाले चटोरे हैं ना, मतलब
3: बहुत ज्यादा।
1: लेकिन ये जो चटोरे हैं वो दिल्ली की वजह से, क्योंकि दिल्ली में जो स्वाद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता।
3: यस,
1: अच्छा दिल्ली में अगर मैं स्ट्रीट फूड की बात करूँ, नंबर 1 नाम लिस्ट में कौन सी डिश का रहता है?
3: स्वीट डिश
1: स्ट्रीट फूड में
3: छोले भटूरे आएंगे सबसे पहले। यस,
1: छोले भटूरे के बाद
3: ब्रेड पकौड़ा।
0: बेडमी पूरी की खुशबू, पुरानी दिल्ली का असली स्वाद, उड़द दाल से बनी बेडमी, मसालेदार आलू, दही और ऊपर से अचार, यानी एक प्लेट और पूरा पेट खुश।
4: हमने तो जी आज तक इनसे बढ़िया बेडमी पूरी का खाई नहीं है। और हमारे संडे का जो सुबह ब्रेकफास्ट होता है वो यहीं पे ही होता है। अभी हमारे कॉलेजेस खुले हैं तो हम यहाँ दिन में एक बार जरूर आते हैं, या तो बेडमी पूरी खाने या इनकी लस्सी। इनकी लस्सी भी बहुत अच्छी है, जो क्वालिटी ये देते हैं हमारे आसपास कहीं नहीं मिलती।
1: अच्छा, दिल्ली की अगर स्ट्रीट फूड की मैं बात करूं तो क्या सबसे पहले आप कौन सी डिश नाम सबसे पहला आता है?
5: बेडमी पूरी होती है, वो हर कोई जैसे नहीं दे पाएगा मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जो ये फ्लेवर्स देते हैं ना, मतलब अल्टीमेट मेरे को पसंद नहीं है सच, बट मैं यहाँ खाना पसंद करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है जैसे देखना बिल्कुल ऐसे मोटी मोटी, मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है इसके।
1: दिल्ली वाले छोले भटूरे की भी फैन होते हैं,
5: हमें ये ज्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों।
0: दिल्ली के स्ट्रीट फूड की बात हो और चाट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आलू टिक्की, दही, हरी चटनी, मीठी चटनी, अनार, सेब और मसालों का ऐसा तड़का कि पहली प्लेट खत्म होते ही दूसरी का मन कर जाए, और अगर मसाले के बाद मीठा चाहिए तो कुल्फी तैयार है। यानी दिल्ली वालों को टेस्ट बैलेंस करना भी बखूबी आता है।
6: बट या द टेस्ट इज गुड, इट्स रिफ्रेशिंग, इट्स कूल, सो या इट वाज गुड।
7: बहुत अच्छा लगा है जी, स्पाइसी है यहाँ का, राजस्थान का थोड़ा सा नॉर्मल टेस्ट रहता है, इसलिए दिल्ली यहाँ का खाने आए हैं स्पेशली। हाँ, स्पेशली स्ट्रीट फूड।
1: पहले आपने चाट ही ट्राई करी है या फिर इसके अलावा भी आपने और व्यंजन ट्राई करे?
7: गोलगप्पे करे हैं ट्राई, और अब ये सेकंड मेरी आइटम पापड़ी चाट है।
0: दिल्ली के स्ट्रीट फूड में इतनी वैरायटीज हैं, आप एक दिन में सभी पकवानों का स्वाद तो ले ही नहीं सकते। लेकिन दिल्ली 6 यानी पुरानी दिल्ली में ऐसी कई दुकानें आपको मिल जाएंगी जो सालों से लोगों का दिल जीतती आई हैं।
1: दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं है बल्कि स्वाद की राजधानी भी, और यहाँ पर आपको हर तरीके का स्वाद एक ही जगह पर मिलेगा, चाहे आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, लेकिन दिल्ली वाले जो स्वाद पसंद करते हैं वो यहाँ डेफिनेटली मिलने वाला है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ चले।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति से सराबोर हुई तस्वीरें। ढोल नगाड़ों की धुन के बीच 51,000 महिलाओं ने सिर पर कलश रख कर निकाली कलश यात्रा, भोले की भक्ति में झूमा शुरू। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, यूपी समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, हिमाचल में 19 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। गुजरात के डीसा में बनेगा रेगिस्तान थीम वाला एशिया का पहला नाइट सफारी और जू, लगभग 83 प्रजातियों के करीब 2700 जानवरों का होगा बसेरा। मिर्जापुर के आशीष यादव का कमाल, अमेरिका में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में जीता सिल्वर मेडल। रायपुर में देखिए बदलाव की बयार, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क को पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर एक बार फिर दिखी देश के आन बान और शान, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। इस रिहर्सल में सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, एनसीसी कैडेट्स हुए शामिल, देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया लाल किला परिसर। फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा देश के जवानों का जोश, पूरे जोश में कदम ताल करते नजर आए जवान। मार्चिंग बैंड ने बजाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन, स्वतंत्र भारत के गौरव की शानदार अनुभूति से सारा बोर हुआ वातावरण। रिहर्सल के दौरान हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, शनिवार को आजादी के पर्व को मनाने के लिए देश भर से जुटेंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कल लाल किले के आसपास 7 सड़कें बंद, कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी, दिल्ली में 20,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। लाल किले के आसपास 1,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमें कर रही निगरानी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी, बॉर्डर पर हो रही सघन चेकिंग। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी, आरपीएफ और जीआरपी ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड से प्लेटफॉर्म परिसर की जांच। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी, की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। इस साल समारोह में छत्तीसगढ़ महिला पुलिस बल का बैक पाइपर बैंड दस्ता होगा आकर्षण का मुख्य केंद्र। रिहर्सल के दौरान घुड़सवारों ने दिखाए शानदार करतब, डॉग स्क्वाड ने खींचा सबका ध्यान। जम्मू में स्वतंत्रता दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल, पूरे जोश में नजर आए जवान। कलाकारों ने पेश किए शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, दिखी कश्मीरी संस्कृति की खूबसूरत झलक। हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत लखनऊ में बनाए जा रहे लाखों तिरंगे, राष्ट्रध्वज बनाने में दिन रात जुटी हैं महिलाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में लहराएंगे ये तिरंगे, घर घर गूंजेगा भारत माता की जय का जयकारा। बांदा में बड़े स्तर पर बनाए जा रहे तिरंगे झंडे, महिलाओं द्वारा 2,00,000 से ज्यादा झंडे बनाने का टारगेट। गांव के प्रधान और सचिव वितरित करेंगे झंडे, सरकारी कार्यालयों में भी लगाए जाएंगे तिरंगे। कुलगाम में आयोजित की गई विशाल तिरंगा रैली, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कई सुरक्षा बलों के जवानों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में तिरंगा रैली की शुरुआत हुई, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में बीजेपी नेता हुए इसमें शामिल। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में तिरंगा रैली का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। गांधरबल की सड़कें देशभक्ति से गुलजार हुई, हर गली हर मोहल्ले में देशभक्ति के गूंजे तराने। अनंतनाग में मेगा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने लगाए भारत माता की जय के जयकारे। एमपी के आगरमालवा में निकली विशाल कलश यात्रा, 51,000 कलश लेकर निकली महिलाएं। आगरमालवा की सड़कें शिव भक्ति में डूबी, हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। बैंड बाजों के साथ निकली भव्य यात्रा, जगह जगह हुआ कलश यात्रा का स्वागत। कलश में जल लेकर निकली शिव भक्त महिलाएं, बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंची यात्रा। भगवान बैजनाथ को चढ़ाया गया जल, श्रावण में शिव भक्ति से भक्तिमय हुआ पूरा शहर। राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में फिर से बदलाव, अब बिना सिले पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे पुजारी। 15 अगस्त से एक ही निर्धारित पोशाक में नजर आएंगे सभी पुजारी, निर्धारित ड्रेस के अनुसार नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय वस्त्र धारण करेंगे अर्चक। रेशम यानी सिल्क का होगा ये वस्त्र, रेशमी वस्त्र की पवित्रता और शुद्धता को ख्याल में रखते हुए ड्रेस में बदलाव। सावन महीने में प्रयागराज के नाथेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी, ताले वाले महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं भोलेनाथ को। मंदिर में दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मंदिर परिसर में लगाते हैं ताला, इच्छा पूरी होने पर श्रद्धालु दोबारा मंदिर पहुंचकर उसी ताले को खोलते हैं। गुजरात में आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत, राज्य भर के शिवालयों में लगी भक्तों की कतारें। गुजरात में डमरू यात्रा से सावन महीने का आगाज, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी समेत बड़ी संख्या में लोग हुए इसमें शामिल। गुजरात के गिर सोमनाथ मंदिर में सावन के पहले दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। राजकोट में सावन के पहले दिन मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। सावन के पहले दिन भक्तों ने बेलपत्र गंगा जल से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, हर हर महादेव के जयकारे लगाए। कांवड़ यात्रा में दिख रहे देशभक्ति के तमाम रंग, सबसे आगे तिरंगा लिए विशाल महाकाल महादेव की प्रतिमा लेकर आगे बढ़ रहे कांवड़िए। छोटे बच्चों को कांवड़ में बिठाकर पवित्र यात्रा पर निकले हैं शिव भक्त, बोलबम के उद्घोष के साथ यात्रा जारी। गणेश चतुर्थी के नजदीक आते ही तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में भगवान गणेश की सुंदर आकर्षक मूर्तियां बनाने का काम पूरी रफ्तार से जारी, बाजार में इन मूर्तियों की खासी डिमांड। आधे फीट से लेकर 10 फीट तक की मूर्तियां बना रहे कारीगर, विभिन्न मोहक मुद्राओं में तैयार की जा रही मूर्तियां। मूर्तियों को सजाने के लिए प्राकृतिक और इको फ्रेंडली रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिंडीगुल के साथ साथ मदुरै, त्रिची और करूर जैसे पड़ोसी जिलों में भारी डिमांड। गुजरात में बनासकांठा जिले के डीसा में बनेगा एशिया का पहला डेजर्ट थीम वाला ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क, सेंट्रल जू अथॉरिटी से मिली मंजूरी। लगभग 103 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर विकसित किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट, 542 करोड़ से ज्यादा है अनुमानित लागत। गुजरात वन विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को मजबूत करना, इको टूरिज्म को बढ़ाना मकसद। पाली में जामुन की खेती से आत्मनिर्भर बन रही आदिवासी महिलाएं फल की गुठली को पीसकर दवा में काम आने वाला पाउडर बनाती हैं। एक निजी कंपनी ने आदिवासी अंचल की महिलाओं के लिए तैयार किया है रोजगार का नया मॉडल, करीब 300 आदिवासी महिलाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा। रायपुर में आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली महिलाओं ने भव्य स्वदेशी फैशन शो में हिस्सा लिया, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। पेशेवर मॉडल्स के साथ रैंप वॉक करती नजर आई आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली महिलाएं, लोगों ने तालियां बजाई। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में स्वदेशी फैशन शो की थीम के साथ हुआ ये शो, स्थानीय कोसा सिल्क और पारंपरिक हैंडलूम कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। IRCTC लॉन्च कर रहा है बेहतरीन हवाई टूर पैकेज, सितंबर के महीने में महाकालेश्वर ओंकारेश्वर समेत इन पर्यटन स्थलों पर कर पाएंगे भ्रमण। 20 अगस्त से शुरू होगा 4 रात और 5 दिन का ये पैकेज, ₹42,500 होगा प्रति व्यक्ति किराया। कल बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी दो बड़ी फिल्में बंटवारा, 1947 सनी देओल के एक्शन को आप देख पाएंगे, अवारापन 2 में अपने रोमांस से टक्कर देंगे इमरान हाशमी। पीरियड ड्रामा फिल्म है बंटवारा 1947, फिल्म के निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी। सनी देओल एक बार फिर से अपना एक्शन अवतार दिखाएंगे, उनके साथ प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी जैसे स्टार्स भी। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा इमरान हाशमी का जुनूनी अवतार अवारापन 2 में, एक बार फिर से रोमांटिक रोल में नजर आएंगे इमरान हाशमी। 2007 में आई इमरान हाशमी की फिल्म अवारापन का ये सीक्वल है, फिल्म कई पुराने गानों के साथ रिक्रिएट हुई। साउथ स्टार सूर्या भी अपना चार्म फैलाने के लिए तैयार है, फैमिली ड्रामा फिल्म विश्वनाथ एंड सन्स होगी फिर से रिलीज। थिएटर के बाद अब ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता, 14 अगस्त को Z5 पर स्ट्रीम होगी। 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अब कल से ओटीटी पर कमाल करेगी कॉकटेल 2, नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी ओटीटी पर होगी स्ट्रीम, इस साल मई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म। हॉरर थ्रिलर फिल्म आरोपी भी ओटीटी रिलीज को तैयार, हिंदी मलयालम तमिल भाषाओं में उपलब्ध होगी ये फिल्म। कल से भारत और श्रीलंका के बीच में दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। इस पहले टेस्ट मैच में पिछले 11 सालों से श्रीलंका से हार नहीं मिली है टीम इंडिया को, शुभमन गिल के नेतृत्व में इस रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। टेस्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत का शानदार रिकॉर्ड है। कुल 46 टेस्ट मैचों में 22 में जीत दर्ज कर चुकी है टीम इंडिया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है ये सीरीज। भारत अगर दोनों टेस्ट जीतता है तो वो WTC अंक तालिका में मिलेगा उसको फायदा। एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे भारतीय क्रिकेट टीम के भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज से क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे रहाणे। चीन में जायंट पांडा की खास बर्थडे पार्टी, सिचुआन में पांडा के लिए सजाया गया खास केक। पांडा बिंग जाय बिंग बाओ ने मनाया पांचवां बर्थडे, फ्रूट केक और बर्फ से हुई खातिरदारी। जॉइंट पांडा को मिले सिचुआन स्टाइल खिलौने, मियान यांग सेंटर में हुआ शानदार जश्न। बांस के खिलौनों से की गई भव्य सजावट, पांडा सेंटर में 400 से ज्यादा जॉइंट पांडा। पांडा के लिए बर्फ के टुकड़ों की खास ट्रीट, जन्मदिन पर बेहद खुश दिखे जॉइंट पांडा। बीजिंग में खुला रोबोट का स्कूल, रोबोट को सिखाए जा रहे रोजमर्रा के काम। पार्सल छांटना रोबोट का बेसिक कोर्स है, अलग अलग रंग और आकार के पैकेट से ट्रेनिंग भी इनको दी जा रही। 6 कैमरों से रिकॉर्ड होता है हाथों का काम, बुजुर्गों की मदद में पहुंच रहे हैं रोबोट, प्लेट कटोरी संभालना भी सीख रहे। चीन के हैनान में बोले प्रॉपर्टी कंपनी के चेयरमैन, एआई के लिए बिजली सबसे जरूरी, एआई का विकास बिजली बनाने की क्षमता पर डिपेंड करता है। एआई की लागत घटा सकती है सोलर एनर्जी, एआई के लिए मजबूत एनर्जी सिस्टम की जरूरत है। चीन के चोंगकिंग में खुला पालतू जानवरों का वाटर पार्क, डॉग्स ने जमकर की पूल पार्टी। गर्मी में पानी में मस्ती करते दिखे पालतू जानवर, 5000 वर्ग मीटर में बना खास पार्क, छोटे बड़े डॉग्स के लिए अलग लॉन और पूल। इंसान और पेट्स साथ में कर सकेंगे वाटर मस्ती, फव्वारे और वाटर स्लाइड से इनका मजा भी बढ़ा। चीन के वुहान में मच्छरों से निपटने का नया तरीका, पार्कों में लगाए गए 10 स्मार्ट बायो मॉस्किटो ट्रैप, स्मार्ट डिवाइस से मच्छरों पर कंट्रोल। कार्बन डाइऑक्साइड से मच्छरों को अपनी ओर खींचता है ये ट्रैप, 20 दिनों में 1,00,000 से ज्यादा मच्छर खत्म। चीन में पहली बार पूरी तरह से इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सर्जरी, 55 साल की महिला के दिमाग में लगाए इलेक्ट्रोड। विचारों से रोबोटिक आर्म चलाने की तैयारी, दिमाग से स्मार्टफोन कंट्रोल कर सकेगी मरीज, विचारों से व्हीलचेयर चलाने का रास्ता खुलेगा। सोच से कंप्यूटर कर्सर चलाने की तकनीक, रीढ़ की हड्डी को बाईपास कर सकेगा BCI, हाथ हिलाने की सोच को कमांड में बदलेगा सिस्टम। परसीड उल्का वर्षा से जगमगाया चीन का आसमान, रेगिस्तान के ऊपर दिखी उल्काओं की चमत्कार लकीरें। चीन के अंतरिक्ष यान शेनझोउ 23 क्रू ने कैद किए खूबसूरत नजारे, त्यांगोंग से दिखे विशाल महासागर और धरती का नजारा। 2027 यूरोविजन की मेजबानी करेगा बुल्गारिया के ब्लैक सी शहर को मिली इसकी मेजबानी। मई 2027 में होगा यूरोविजन का आयोजन, दुनिया भर से कलाकार बुल्गास पहुंचेंगे, करोड़ों दर्शक बनेंगे इसके साक्षी। जैक रॉबिन्सन और खोला पिंटो क्वार्टर फाइनल में, ताहिती प्रो में दोनों का फिर से होगा मुकाबला, रॉबिन्सन ने खेली स्लेटर को हराया। खोला पिंटो ने फिर से दिखाया शानदार प्रदर्शन, खोला पिंटो ने हासिल किया परफेक्ट 10। केटी सिमर्स ने बनाया नया रिकॉर्ड, सिमर्स ने 9 का सबसे बड़ा सिंगल वेव स्कोर बनाया। इटली के सिसिली स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर से तेज विस्फोट हुआ, ढलानों से बहता दिखा लाल गर्म लावा। ज्वालामुखी से राख और चट्टाने गिरी, लावा के बेहद करीब पहुंचे हाइकर्स। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, हवाओं से इलाके में फैली ज्वालामुखी की राख। किलाउआ में फिर से शुरू हुआ ज्वालामुखी विस्फोट, लावा के फव्वारे सैकड़ों फीट ऊपर उठे। सौ फीट तक पहुंचे लावा फव्वारे, ज्वालामुखी का अलर्ट लेवल बढ़ाया गया, एविएशन अलर्ट येलो से ऑरेंज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: भगवान शिव की कौन सी स्तुति करके बड़ी से बड़ी समस्या को टाला जा सकता है? भगवान शिव की कौन सी स्तुति से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है? कौन सी हैं भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: बाबा नीब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों सिनेमाघरों में खूब धूम मचा रही है। 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हनुमान अंश को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं। फिल्म में बाबा नीब करौरी का किरदार निभाने वाले एक्टर शोभिनव सत्य ने फिल्म की मेकिंग और इसमें बाबा नीब करौरी के किरदार के बारे में खुलकर बातचीत की और अपने किस्से बयां किए।
2: मेरे माइंड में ये सब चल रहा था कि सर ने मुझे कास्ट तो कर दिया है, लेकिन अगर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने बोला कि पता नहीं किसको बाबा बना दिया है, क्या कर दिया है, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। लेकिन ये सबसे पहले जो कहानी है वो ये है कि मैंने इस फिल्म में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया था। मैं इस फिल्म में एज सेकेंड एडी था और हमारे जो इससे पहले लीड एक्टर थे उनकी कुछ कारणोंवश तबीयत खराब हो जाती है, तो सर वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेते हैं कि भाई फिल्म को रुकने नहीं देना है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आ गए थे, बहुत सारे लोगों की मेहनत थी,
3: चित्रकूट में थे,
2: exactly, यस। तो सर ने मुझे कास्ट करने के लिए मेरा टेस्ट लिया। अब वो टेस्ट 5 घंटे तक चला, जिसमें से 4.5 घंटे तो मेरे माइंड में सिर्फ यही बात चल रही थी कि अरे क्या होगा, मैं वही पत्रकार बन गया कि दुनिया क्या कहेगी, कहीं मुझे जो है कुछ तो ऐसा चल रहा था। सर ने वहाँ पे मुझे काम किया और सर ने बोला कि ये सब सोचना तुम्हारी वो जिम्मेदारी नहीं है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मैं मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है देख लो। ऐसा एक दिन में कोई कैरेक्टर, इतना बड़ा कैरेक्टर, वो भी एक काइंड ऑफ बायोपिक ही है, आप उसको जस्टिफाई कर पाओ एक दिन में नहीं पॉसिबल है। सो सर ने क्या किया कि कॉम्प्लिकेट करने की बजाय मुझे मेरी जो पर्सनल आदतें थी उससे कैरेक्टर को कनेक्ट कर दिया सर ने, तो मेरे लिए और आसान हो गया। बाबा का नेचर ऐसा था कि इट्स लाइक के वो तो हंसते ही रहते थे, हरदम हंसते रहते थे, हाँ हरदम हंसते रहते थे। लेकिन वहां पे ना एक बड़ा प्यारा सा है, एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, हल्का सा, हल्का दिखा था ना। वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल गोपाल कहते, गोपाल गोपाल, तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़ी गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की सराबोर करने वाली तस्वीरें। ढोल नगाड़ों की धुन के बीच 51,000 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर निकाली कलश यात्रा, भोले की भक्ति में झूमा शहर। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, यूपी समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, हिमाचल में 19 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। गुजरात के डीसा में बनेगा रेगिस्तान थीम वाला एशिया का पहला नाइट सफारी और जू, लगभग 83 प्रजातियों के करीब 2,700 जानवरों का होगा बसेरा। मिर्जापुर के आशीष यादव का कमाल, अमेरिका में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में जीता सिल्वर मेडल। रायपुर में दिखी बदलाव की बयार, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान घेवर का नया अंदाज, बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर, 21,000 रुपए में मिल रहा स्वर्ण श्रृंगार घेवर।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की।
8: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। पूरा देश आजादी के जश्न के रंग में रंग गया है। राजधानी दिल्ली में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज स्वतंत्रता दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, स्वतंत्रता दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। जी हाँ, दिल्ली में आज रिहर्सल परेड के जरिए जवानों ने परेड की अंतिम तैयारियों को परखा। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जवानों की कदमताल से लेकर आसमान में हेलीकॉप्टर से लहराते तिरंगे तक हर अभ्यास बेहद खास रहा।

राजधानी दिल्ली पर आजादी के जश्न का रंग चढ़ गया है। लाल किले से लेकर दिल्ली की सड़कों पर तिरंगा लहरा रहा है। कहीं तिरंगा रैली निकाली जा रही है तो कहीं जवान फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक भारत की आन बान शान तिरंगा लहरा रहा है। वंदे मातरम के संदेश के साथ ये नजारा आकर्षण का केंद्र रहा। हेलीकॉप्टर से बरसते फूलों ने समारोह की भव्य शुरुआत की। ये तैयारी 15 अगस्त के लिए है, वो दिन जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूब जाता है, वो दिन जब हर दिल में देशभक्ति का जज्बा और हर हाथ में तिरंगा नजर आता है। 15 अगस्त के दिन आजादी के महापर्व को खास बनाने के लिए देश भर में तैयारियां आखिरी दौर में हैं। कहीं स्कूल्स में बच्चे स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए रिहर्सल कर रहे हैं तो कहीं पुलिस और सुरक्षा बल भी परेड की तैयारियों में जुटे हैं। लाल किले का नजारा देखते ही बन रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरा लाल किला सुरक्षा के कड़े घेरे में है तो वहीं तीनों सेनाओं के बैंड फुल ड्रेस रिहर्सल में जुटे हैं। बैंड की गूंजती बीट पर जवानों की कदम ताल, ये अद्भुत नजारा देशभक्ति की अलग जगा रहा है। इस रिहर्सल के दौरान सबसे खास रहा विकसित भारत की थीम। फुल ड्रेस रिहर्सल में बड़ी संख्या में लोगों ने विकसित भारत एट 2047 की थीम को खास अंदाज में पेश किया। हजारों लोगों की मौजूदगी ने इस प्रस्तुति को भव्य रूप दिया और भारत के

0: क्षेत्रों में आत्मनिर्भर और अग्रणी शक्ति बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। वैसे केवल दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। परेड में पुलिस जवानों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ कदम ताल की। इस बीच घोड़े पर सवार जवान भी मैदान में उतरे और एक से बढ़कर एक करतब दिखाकर हर किसी को रोमांचित कर दिया। इस परेड रिहर्सल में पुलिस जवानों के साथ साथ खास तौर से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड भी पहुंचा और उसने अपने हैरतअंगेज करतब और अनुशासन के प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है। इस बीच श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का शानदार नजारा देखने को मिला। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान एनसीसी कैडेट पुलिस जवानों और प्रतिभागियों ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ परेड की।
1: तो ड्रेस रिहर्सल हो रही है, बहुत यहाँ पे अभी प्राउड फील आ रहा है। अभी यहाँ पे सारे जेके पीबी है, ये सारे कंटिजेंट है, हम भी आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए।
2: 15 दिन से हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क किया हमने, तो जितने हमने प्रैक्टिस की है उस प्रैक्टिस को हम यहाँ पे दिखाएंगे, कितनी हमने प्रैक्टिस की है और क्या क्या हमने वहाँ पे सीखा है, सब कुछ दिखाएंगे।
0: इसी दौरान कश्मीर की समृद्ध सभ्यता और संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कई कश्मीरी लोक नृत्य की खूबसूरत प्रस्तुति नजर आई। तो कहीं पारंपरिक संगीत और लोक कला के जरिए भारतीय विरासत को मंच पर उतारा गया। जाहिर है आजादी के इस महापर्व के लिए राजधानी समेत पूरा देश ही तैयार है। पुलिस और तीनों सेनाओं के जवान तैयार हैं और अब इंतजार उस ऐतिहासिक पल का ही है जब पूरा देश आजादी का महापर्व धूमधाम के साथ मनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पंद्रह अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। इन रैलियों का मुख्य उद्देश्य लोगों में देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को जगाना है, जिसमें पुलिस, सुरक्षा बल, छात्र और आम नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है सरहद से शहर तक तिरंगे की लहर। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में निकल रही तिरंगा यात्राओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल देशभक्तिमय बन गया है। देश भर से आ रही तिरंगा यात्रा की तस्वीरें साफ बता रही है कि तिरंगे को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। तिरंगे की शान में निकली ये यात्राएं देश की एकता और अखंडता का संदेश दे रही हैं। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। ये अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था, जिसका आयोजन अब हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया जाता है। इस साल भी 15 अगस्त से ठीक पहले ये अभियान भव्य रूप ले चुका है। हर शहर, हर गांव, कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा रैली का उत्साह दिखा। श्रीनगर, रामबन और अनंतनाग समेत राज्य के कई इलाकों में तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर सड़कों पर लोगों का हुजूम पूरे उत्साह के साथ तिरंगा लेकर निकला। वहीं सहारनपुर, कानपुर और नारायणपुर में तिरंगा रैली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा।
4: 9 अगस्त से लेकर 17 तक हर घर तिरंगा कैंपेन और वंदे मातरम की कैंपेन चल रही है। उसी सिलसिले में आज हमारे यहाँ रामबन में मेगा तिरंगा रैली जो है वो मुनक़द की गई। जैसा कि आपने देखा कि इस रैली में कितनी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स ने जो पार्टिसिपेट किया, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों ने इसमें शमूलियत की, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सब ने और सबको इस अपने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए, इसकी आन शान और बान को बनाए रखने के लिए जोश और जज्बा था। आपने देखा होगा कि इस रैली में लोगों में कितना जोश और जज्बा था, कितना वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों की गूंज के बीच ये रैली निकाली गई और इतनी लंबी जो है लाइन आपने देखी होगी कि 3 किलोमीटर तक हमारी ये लंबी रैली थी और अभी यहाँ ये खत्म हुई है। इसके साथ साथ हमारे

0: आने वाले दिनों में भी हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट जगहों का जो मुनक्कद होते रहेंगे और इसी तरह लोग जोश और जज्बे के साथ इसमें हिस्सा लेते रहेंगे।
1: स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। विशेष करके लाल किले के पास हर तरह से निगरानी रखी जा रही है। जल थल और नभ में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है स्वतंत्रता दिवस पर जल थल नभ में सुरक्षा बढ़ी। स्वतंत्रता दिवस पर जवानों की तैनाती के साथ ही आसमान से लेकर जमीन और जल तक हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आजादी के उत्सव की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तरीके अपनाए जा रहे हैं।

0: स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर एक तरफ लाल किला पर जोर शोर से तैयारी चल रही है तो वहीं सुरक्षा की जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाए रखने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहे हैं। पुलिस हर व्यक्ति और गाड़ियों की जाँच करने के बाद ही उन्हें आगे जाने दे रही है। हर जगह पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। लाल किला के पास हर स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
1: देखिए किस तरह से 80वां स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये कंट्रोल रूम दिखा देती हूँ जहां से जो है 1000 से भी ज्यादा जो है कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में, और उसी की जो यहां से मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चौकसी हर एक शख्स पे, हर एक व्यक्ति पे जो है, हर एक रास्ते पे जो है वो यहां पर रखी जा रही है।
0: लाल किला के आसपास 12,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। AI आधारित फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, ड्रोन सर्विलांस के साथ ही कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
1: लाल किले की तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ, हालांकि लाल किला इस वक्त आपको कम नजर आएगा क्योंकि इस वक्त लाल किला जो है वो सुरक्षा किला बन चुका है। सबसे पहले तो ये बाहर की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको बैरिगेटिंग जो है नजर आ जाएगी। छोटी बैरिगेटिंग जो है यहाँ पर की गई है हर एक रास्ते में, और उसके साथ ही पूरी आपको सुरक्षा बल जो है वो नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये लोग हर तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा आपको CCTV कैमरे जो है वो नजर आएंगे।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जमीन से लेकर आसमान और जल तक से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यमुना नदी में बोट पेट्रोलिंग के जरिए उन इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है जहां से किसी तरह की घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधि की आशंका हो सकती है।
2: 15 अगस्त की सुरक्षा की किस तरीके की तैयारी की गई है यमुना नदी की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि सिर्फ सड़क और हवाई मार्ग नहीं बल्कि लाल किले के पीछे जो यमुना नदी बह रही है उस पर किस तरीके की तैयारी है। आप देखिए, हमारे साथ आपको दिल्ली पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे। इस तरीके की गश्त हो रही है जो पूरे दिल्ली बॉर्डर पर, जो पूरी यमुना नदी है दिल्ली में, उसको इस तरीके से नजर रखा जा रहा है।
0: सुरक्षा एजेंसियों का फोकस सिर्फ लाल किला तक सीमित नहीं है। दिल्ली के बॉर्डर, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बाजार, होटल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी चेकिंग बढ़ाई गई है। इसके अलावा ड्रोन, पैराग्लाइडर और अन्य हवाई गतिविधियों पर भी पाबंदी लगाई गई है। लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए करीब 25,000 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। इस बार वंदे मातरम थीम पर होने वाले समारोह के हिसाब से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सहारनपुर में 15 अगस्त की तैयारियां कुछ अलग अंदाज में हो रही है। यहां गोबर से तिरंगा बैच और तिरंगे वाली राखी तैयार की जा रही है। इन बायोडिग्रेडेबल राखियों और बैच के जरिए देशभक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है गोबर से पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति का संदेश। सहारनपुर की गौशाला में गाय के गोबर का इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। गोबर से जहां तिरंगा बैज और राखियां तैयार की जा रही हैं, वहीं उन उत्पादों के जरिए लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली और प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है।

0: पर्व की खुशियों में प्रकृति को बचाने का संदेश जुड़ जाए तो जश्न की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। सहारनपुर में कुछ ऐसी ही अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ गोबर से तैयार हो रहे तिरंगा बैच और राखियाँ देशभक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। सहारनपुर नगर निगम ने एक खास पहल की है। इस पहल के तहत गाय के गोबर से तिरंगा बैच तैयार किए जा रहे हैं। पहले गोबर को आकार दिया जाता है, फिर उसे तिरंगे के रंगों में सजाया जाता है और तैयार हो जाता है देशभक्ति से जुड़ा एक अनोखा चेस्ट बैच।
1: ये गौशाला भारत की पहली ऐसी गौशाला है जिसको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी जीएमपी प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त हमारी गौशाला को ISO सर्टिफिकेशन और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने IBR अचीवर अवार्ड्स का भी सम्मान दिया है। और ये सारे सम्मान पुरस्कार और प्रमाण पत्र हमारे नवाचारों के लिए और गौशाला में बंद है गोत्पादों के निर्माण के लिए हमें प्राप्त हुए हैं।
0: 15 अगस्त के लिए चेस्ट बैच के अलावा यहां रक्षाबंधन के लिए भी गोबर से राखियां तैयार की जा रही हैं। इन राखियों के जरिए भाई बहन के प्यार के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। यानी जो गोबर अक्सर बेकार समझा जाता है उसी का इस्तेमाल कर यहां ऐसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ स्वदेशी उत्पादों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और खास बात यह है कि ये उत्पाद सिर्फ गौशाला तक सीमित नहीं है बल्कि इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बेचा जा रहा है जिसकी बाजार में भी अच्छी मांग देखने को मिल रही है।
1: 15 अगस्त और रक्षाबंधन के दृष्टिगत हमने गाय के शुद्ध गोबर से तिरंगा चेस्ट बैच और राखियों का निर्माण किया है और इनकी विशेषता यह है कि ये पूरी तरह गाय के शुद्ध गोबर से बने हैं और ये बायोडिग्रेडेबल है। अगर हम तिरंगा चेस्ट बैच की बात करें तो इसका मूल्य मात्र 10 रुपए रखा है और वर्ष 2024 से हमने इसका बनाना प्रारंभ किया था। तब हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1000 तिरंगा चेस्ट बैच बनाए थे जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर उसके बाद हमने पिछले वर्ष 3000 बनाए और इस वर्ष हम लगभग 5000 तिरंगा चेस्ट बैच और राखियां बना रहे हैं।
0: गोबर से बनाए गए तिरंगा चेस्ट बैच की कीमत महज 10 रुपए रखी गई है। अधिकारियों का कहना है कि प्लास्टिक से बने बैच इस्तेमाल के बाद इधर उधर फेंक दिए जाते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। इसके मुकाबले गोबर से बने बैच पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इस्तेमाल के बाद इन्हें गमले में डाला जा सकता है जहां यह खाद का काम करेंगे।
1: और अगर हम गोमय उत्पाद का जो हमारा तिरंगा चेस्ट बैच है इसके बात करें तो ये उपयोग के बाद आप अपने गमले की क्यारियों में और गमले में इसमें डाल देंगे तो ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर हम राखियों की बात करें तो इस बार हमने एक अनूठा प्रयास किया है कि अपने राखियों को भी हमने तिरंगा का स्वरूप दिया है जिससे राष्ट्रभक्ति और पर्यावरण संरक्षण दोनों को सम्यक रूप से हम प्रचारित और प्रसारित कर सकें।
0: सहारनपुर की ये गौशाला गोवंश संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण की एक नई मिसाल पेश कर रही है जिसका मकसद सिर्फ गोबर का इस्तेमाल करना नहीं है बल्कि उससे उपयोगी और इको फ्रेंडली उत्पाद तैयार करना है। सहारनपुर से राहुल कुमार, गुड न्यूज टुडे।
2: और गुजरात में आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। यहां के प्रसिद्ध सोमनाथ धाम में आज श्रावण मास के पहले दिन आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह होते ही देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ मंदिर की ओर उमड़ पड़ा। इस मौके पर मंदिर परिसर और आसपास का पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और जय सोमनाथ के जयकारों से गूंज उठा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। गुजरात में पावन सावन महीने की शुरुआत, जी हां, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक सावन के खूबसूरत रंग देखने को मिल रहे हैं। उत्तर भारत में सावन आधा बीत चुका है लेकिन मध्य और दक्षिण भारत में सावन की आज से शुरुआत हुई है। गुजरात में सावन के पहले दिन भगवान सोमनाथ के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना और दर्शन करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में सावन के पहले दिन सुबह से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। किसी के हाथ में फूल और बेलपत्र थे तो कोई भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचा था। श्रद्धालुओं के चेहरे पर भक्ति और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि उत्तर भारत में पूर्णिमांत चंद्र हिंदू कैलेंडर को फॉलो किया जाता है जबकि दक्षिण भारत में अमावस्या यानी कि अमान चंद्र हिंदू पंचांग का पालन किया जाता है। उत्तर भारत में पूर्णिमांत पंचांग फॉलो करने की वजह से महीना पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है जिस वजह से उत्तर भारत में सावन का महीना आमतौर पर 15 दिन पहले शुरू हो जाता है जबकि दक्षिण भारत में सावन का महीना उत्तर भारत की तुलना में 15 दिन बाद से शुरू होता है।
3: देखिए हम यहाँ आकर के तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, चाहे यहाँ का दृश्य हो चाहे यहाँ की व्यवस्था हो, बहुत ही मनमोहक। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, जो कोई मुझे देख पा रहा है, यहाँ पे जरूर आए। और रही बात यहाँ की, अगर व्यवस्था की बात करूँ, बहुत अच्छी है। और प्रार्थना तो मेरी यही है कि जैसे मेरे इतने ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हुए हैं, 9 हुए हैं, वैसे ही और भी बाकी के 12 भी हो जाए।
4: काफी अच्छा लगा, काफी भव्य दर्शन हुए, मैंने जैसे बताया कि काफी अच्छे से मेरे दर्शन हुए। और जितने भी मैं देख रहा हूँ शिव भक्त, सारे अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई मतलब ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, काफी अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर दर्शन करके।
2: छत्तीसगढ़ में कभी जिन हाथों में बंदूक हुआ करती थी, आज उन्हीं हाथों में हुनर है, आंखों में सपने हैं और उनके कदम रैंप पर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। पूर्व महिला नक्सलियों का रैंप वॉक। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में पूर्व महिला नक्सलियों ने हिंसा और नक्सलवाद की राह छोड़कर मुख्यधारा की जिंदगी को चुना है और अब अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और रैंप वॉक से लोगों का दिल जीत रही है।
5: ये सिर्फ एक रैंप वॉक नहीं, ये जिंदगी की बदली हुई राह की तस्वीर है। कदम वही है लेकिन अब मंजिल बदल चुकी है। भरपूर आत्मविश्वास के साथ रैंप पर वॉक कर रही ये महिलाएं कभी बस्तर के घने जंगलों में हथियार लेकर चलती थी, लेकिन आज इनके हाथों में हथियार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर रायपुर के ऑडिटोरियम में रैंप पर जैसे ही इन महिलाओं ने कदम रखा, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा। इन्होंने यहाँ पर पारंपरिक हथकरघा परिधान कोसा सिल्क और छत्तीसगढ़ के स्थानीय वस्त्रों को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। इस स्वदेशी फैशन शो में पूर्व महिला नक्सलियों ने पेशेवर मॉडलों के साथ रैंप साझा किया। बस्तर की इन महिलाओं ने कभी नक्सलवाद का रास्ता चुना था, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद अभी मुख्य धारा की जिंदगी की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। इनके दिलों में आने वाले वक्त में कुछ बेहतर करने और अपने अतीत से आगे बढ़कर एक नई पहचान बनाने का जज्बा है।
6: ये इतने लोग, हजारों लोग आपके स्वागत के लिए आए हैं, बस्तर की बेटियां आई हैं, इसलिए हजारों लोग बैठे हैं, इनके लिए ताली बज रही है, ये सब आपके सम्मान में हो रहा है। हम लोग आए हैं, आप लोगों से मिलने आए हैं कि सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडा से बेटियां आई हैं, बेटियों के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, आत्मविश्वास को देख के।
5: जिन जंगलों में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, वहाँ से आई महिलाओं की जिंदगी में रंगों और उम्मीद की तस्वीरें दिखाई दे रही है। ये बदलाव सिर्फ कपड़ों का नहीं है बल्कि ये सोच और जिंदगी के रास्ते में आए नए परिवर्तन की कहानी है, जिसके जरिए इन्होंने एक नई शुरुआत की है। इनकी पहचान अब बंदूक से नहीं बल्कि हुनर, संस्कृति और सकारात्मक सोच से जिंदगी में आ रहे बदलाव से है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कन्नौज में छात्राओं को पढ़ाई के साथ अब बच्चों को आत्मरक्षा के भी गुर सिखाए जा रहे हैं। जिले के सरकारी स्कूल की छात्राओं को स्कूलों में जूडो और ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। सरकारी स्कूलों में आत्मरक्षा की क्लास। जी हाँ, इस प्रशिक्षण का असर छात्राओं के आत्मविश्वास के साथ साथ खेल के मैदान में भी दिखाई दे रहा है। कन्नौज की छात्राओं ने स्टेट लेवल प्रतियोगिताओं में अब तक 17 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें स्वर्ण और रजत पदक भी शामिल हैं।
7: यूपी के कन्नौज के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रही है। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ आत्मरक्षा के भी गुर सिखाए जा रहे हैं। यहाँ की छात्राओं को ताइक्वांडो और जूडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जिले के 458 विद्यालयों में जूडो और ताइक्वांडो जैसी मार्शल आर्ट जैली विधाओं की ट्रेनिंग छात्राओं को दी जा रही है।
8: कन्नौज में सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदल रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर लगभग 458 विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण बालक और बालिकाओं दोनों को दिया जा रहा है। जो बच्चे इस प्रशिक्षण को पाकर आत्मरक्षा के प्रति सशक्त होंगे, साथ ही साथ इस फील्ड में आगे बढ़कर कन्नौज का भी नाम रोशन कर रहे हैं।
7: इस पहल का असर अब प्रतियोगिताओं में भी दिखाई देने लगा है। कन्नौज के सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने स्टेट लेवल पर 17 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है।
9: वर्ष 2016 में मेरी यहाँ विद्यालय में नियुक्ति हुई थी। कोरोना काल के बाद से हम लोगों ने यहाँ पर ताइक्वांडो का प्रशिक्षण वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा के अंतर्गत चालू किया, जिसके अंतर्गत हमारी बच्चियाँ जिला बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जिला स्तर पर राज्य स्तर पर प्रतिभा कर रही हैं। पिछले तकरीबन 3 वर्षों से हमारे बच्चों ने राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते हुए हैं।
7: स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ हफ्ते में 2 से 3 दिन शारीरिक शिक्षा की क्लास में है प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे छात्राएं किसी भी आपातकालीन स्थिति में अपनी सुरक्षा खुद कर सके।
10: मतलब मैंने खेलने में पहले प्रतिभाग किया था, इससे पहले मुझे आगे बढ़ने की संभावना नहीं दिखी थी। मेरे सर ने कहा कि खेलो तो आगे बढ़ोगे। मैंने खेलने में प्रतिभाग किया, मैं राज्य स्तर पर एक बार गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रांज भी था मेरा,
11: और मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए हमारे सर ने हमको ये गेम खिलाया और मैंने राज्य स्तर पर दो स्वर्ण पदक जीते हैं।
7: बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों में सिर्फ खेल और आत्मरक्षा प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं बच्चों के सीखने के अनुभव को बेहतर बना रही हैं। आधुनिक तकनीक से जुड़ी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक माहौल और बच्चों की प्रतिभा को निखारने वाली गतिविधियां सरकारी विद्यालयों को नई दिशा दे रही हैं। प्रभम श्रीवास्तव, कन्नौज, गुड न्यूज टुडे।
2: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: हिंदुस्तान की सीमा में घुसे चीनी जवान, अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों से भिड़े जवान, नेपाल से भगाए जा रहे मुस्लिम घुसपैठिए, लक्ष्मी पैनों से लिख रही किस्मत, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भगवान शिव की कौन सी स्तुति करके बड़ी से बड़ी समस्या को टाला जा सकता है? भगवान शिव की कौन सी स्तुति से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है? कौन सी हैं भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति से सराबोर कर देने वाली तस्वीरें, ढोल नगाड़ों की धुन के बीच 51,000 महिलाओं ने सर पर कलश रख कर निकाली कलश यात्रा, भोले की भक्ति में झूमे लोग। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान घेवर का नया अंदाज, बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर्स, 21,000 रुपए में मिल रहा स्वर्ण श्रृंगार घेवर। रायपुर में दिखी बदलाव की बयार, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक। गुजरात के डीसा में बनेगा रेगिस्तान थीम वाला एशिया का पहला नाइट सफारी और जू, लगभग 83 प्रजातियों के करीब 2700 जानवरों का होगा बसेरा। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, यूपी समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, हिमाचल में 19 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। मिर्जापुर के आशीष यादव का कमाल, अमेरिका में आयोजित अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में जीता सिल्वर मेडल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर होती है। नतीजा ये है कि लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहाँ वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। ऐसी दो खबरों की पड़ताल आज हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह अरुणाचल प्रदेश का है जहां पर चीनी सेना ने घुसपैठ की है। क्या इसकी सच्चाई आगे जानिए। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल में अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। क्या है वायरल वीडियो और इस दावे की सच्चाई आगे जानिए। शुरुआत करते फैक्ट चेक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आमने सामने खड़े सैनिक आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश का है जहां पर चीनी सेना ने घुसपैठ कर ली है, ये वही का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
3: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसकर कब्जा जमा चुकी है। वीडियो में एक व्यक्ति सेल्फी कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ दूरी पर आमने सामने खड़े सैनिक आपस में बहस करते हुए देखे जा सकते हैं। इस दौरान वहां पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन वाले 60 किलोमीटर अंदर भारत में घुसकर कब्जा कर रहे, चीन का हिस्सा बना रहा है अरुणाचल प्रदेश को। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा ये कर रहे हैं कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसकर कब्जा जमा चुकी है। वीडियो में एक व्यक्ति सेल्फी कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ दूरी पर आमने सामने खड़े सैनिक भी आपस में बहस करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी पुख्ता प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर तक चीनी सेना के घुसने की बात बताई गई हो। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि चीन की ओर से अरुणाचल में कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे सुना तो ये साफ हुआ कि ये बांग्ला भाषा है और वीडियो अरुणाचल प्रदेश का है, तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बांग्ला आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं। ये अपने आप में वीडियो की सत्यता और संदेह पैदा करता है। ऐसा लग रहा है कि ये बांग्लादेश बॉर्डर का वीडियो हो सकता है। साथ ही सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने ऐसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और इसे सर्च किया। इस दौरान हमें इससे हूबहू मिलता जुलता एक वीडियो बांग्लादेशी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मिला। यहाँ इसे 20 जून को पोस्ट किया गया था। कैप्शन के मुताबिक ये घटना बांग्लादेश के चंपई नवाबगंज सीमा की है, जहाँ भारतीय बीएसएफ और बांग्लादेश के फोर्स बीजीबी आमने सामने आ गई थी। इस वीडियो में गुलाबी शर्ट पहने उसी शख्स को देखा जा सकता है जो वायरल क्लिप में भी मौजूद है। इसके अलावा हाथ में डंडा लिए हुए एक व्यक्ति भी दोनों वीडियो में देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें कई बांग्लादेशी आउटलेट्स की रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत से बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश कर रहे 20 लोगों को बांग्लादेशी सुरक्षा बल ने रोक दिया था, जिसे लेकर बीएसएफ और बीजीबी के बीच कहासुनी हो गई थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों को अपने देश लौट जाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश वापस जाने के लिए हजारों लोग सीमा पर एकजुट हुए थे। उसी समय बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसे लोगों की वापसी रोकने की कोशिश की गई, जिसे लेकर दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश का नहीं बल्कि भारत बांग्लादेश सीमा का है और भारत की बीएसएफ और बांग्लादेशी फोर्स बीजीबी के बीच हुई कहासुनी को दिखाता है। रिद्धेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट करते नोकझोंक करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह नेपाल का हालिया वीडियो है, जहां पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।

0: हाल ही में नेपाल के कुछ इलाकों खासकर सुनसरी जिले के देवानगंज इलाके में दो समुदाय के बीच तनाव और हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई थी। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट और नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये नेपाल का हालिया वीडियो है जहां पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर नेपाल से भगाया जा रहा है जो कस्बाए नेपाल बनाने की साजिश के तहत बसाए गए थे। सरकार इनसे वोटिंग राइट्स वापस ले रही है। डेमोग्राफी परिवर्तन पर अलर्ट हुए नेपाल के हिंदू। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: असल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में किसी सड़क पर लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान वहां पर भगदड़ का माहौल भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं, नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि यह नेपाल का हालिया वीडियो है जहां धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये बांग्ला निकली। वीडियो अगर नेपाल का है तो फिर यहां सिर्फ बांग्ला में ही लोग बात क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ अटपटा सा लगा। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और नेपाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। वीडियो अगर वाकई सच्चा है तो फिर ये अपने आप में एक बड़ी खबर होती। मीडिया आउटलेट्स में ये खबर जरूर होती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं दो गुटों के बीच हुई झड़प को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक बांग्लादेशी समाचार के फेसबुक पेज पर 4 जुलाई को पोस्ट किया गया मिला। पोस्ट के कैप्शन के अनुसार ये वीडियो गुलिस्तान में बीएनपी और जमाते कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का है और इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। पड़ताल के दौरान हमें 4 जुलाई 2026 को बांग्लादेश की प्रमुख समाचार वेबसाइट पर भी एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में हमें वायरल क्लिप वाले दृश्य भी नजर आए। रिपोर्ट में बताया गया था कि ये वीडियो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गुलिस्तान का है। यहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के कार्यकर्ता जुलूस के दौरान आपस में भिड़ गए थे। इस हिंसक झड़प में लाठी डंडे भी चले, पथराव हुआ और चाकूबाजी में जमात इस्लामी के एक नेता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सर्च के दौरान हमें एक और बांग्लादेशी समाचार संस्थान के फेसबुक पेज पर भी 4 जुलाई को अपलोड हुआ ये वीडियो मिला। यहां भी बताया गया था कि यह घटना बांग्लादेश के गुलिस्तान की है जहां पर बीएनपी और जमात के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो नेपाल का नहीं है, ये वीडियो बांग्लादेश का है जहां एक जुलूस के दौरान बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
0: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
1: फैक्चर के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
5: स्कूल के मंच पर बच्चों की परफॉर्मेंस हमेशा खास होती है। उनकी छोटी छोटी गलतियाँ और मासूम हरकतें कई बार ऐसा पल बना देती हैं जिसे लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एक नन्ही बच्ची माँ दुर्गा का रूप बनकर स्टेज पर पहुंचती है, लेकिन परफॉर्मेंस के बीच अचानक अपनी लाइन भूल जाती है। इसके बाद बच्ची जो करती है उसे देखकर वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची ने श्लोक की दो लाइनें तो आसानी से बोल दी, लेकिन तीसरी लाइन पर पहुंचते ही वो अटक गई। कुछ पल तक बच्ची सोचती रही कि आगे क्या बोलना है। जब उसे कुछ याद नहीं आया तो उसने स्टेज के सामने खड़े एक व्यक्ति की तरफ देखा और बेहद सहज अंदाज में पूछ लिया, और क्या था। बस बच्ची का इतना कहना था कि पूरा माहौल हंसी और तालियों से गूंज उठा। दर्शकों के साथ साथ वहां मौजूद शिक्षक भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। खास बात ये थी कि बच्ची ने अपनी गलती को लेकर घबराने के बजाय बेहद मासूम अंदाज में मदद मांग ली। उसका यही प्यारा सा रिएक्शन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। अक्सर कहा जाता है कि इंसान के किस्मत की लकीरें उसके हाथों में होती हैं, लेकिन बिहार के कटिहार जिले की रहने वाली मासूम लक्ष्मी ने इस कहावत को पूरी तरह बदल दिया है। जन्म से ही दोनों हाथ न होने के बावजूद लक्ष्मी आज अपने पैरों से अपनी तकदीर की इबारत लिख रही हैं। उसका ये अटूट जज्बा और हिम्मत देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं और सिर सम्मान से झुक जाता है। स्कूल के कमरे में जब लक्ष्मी बैठती है तो उसकी कुछ करने की इच्छा देखने लायक होती है। वो बिना किसी की मदद के अपने पैरों की उंगलियों से बैग के जिप खोलती है, पैर से ही कॉपी निकालती है और पन्ने पलटती है। फिर पैरों के अंगूठे और उंगलियों के बीच पेन दबाकर पन्नों पर इतनी सफाई से लिखती है कि अच्छे अच्छे देखकर दंग रह जाएं।

कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल देखने को मिल जाते हैं जो बिना कुछ कहे ही दिल को छू जाते हैं। न कोई बड़ा भाषण, न कोई खास दिखावा, बस एक छोटी सी हरकत और उसका मतलब बहुत गहरा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक अघोरी बाबा के सामने एक छोटी बच्ची नजर आती है। आमतौर पर लोग अघोरी साधुओं के पास आशीर्वाद लेने और उसका सम्मान करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला। अघोरी बाबा ने खुद इस छोटी बच्चे के सामने झुककर उसका सम्मान किया। उनका ये अंदाज देखकर वहाँ मौजूद लोग भी हैरान रह गए।

सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दो भाइयों का अपनापन, भरोसा और भरपूर प्यार देखने को मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे एक लाइन में बैठकर खाना खा रहे हैं। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ है। जब वो अपने भाई को अकेले बैठा हुआ देखता है तो वो उसके पास पहुँचता है और फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगता है। छोटे भाई आराम से खाना खाए इसका वो खास ख्याल रखता है। इस वीडियो को यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं और दिल खोल कर इस पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। दो भाइयों की इस बॉन्डिंग पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बच्चे और प्यारे पपी का एक साथ खेलते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों की मासूम हरकतें और एक दूसरे के प्रति बेइंतहा प्यार लोगों का दिल जीत रहा है। पपी का बच्चे के पास बार बार जाना, कूदना और प्यार जताना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। लोग इस वीडियो को सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला बता रहे हैं। वीडियो को देखकर यूजर्स यही कह रहे हैं कि कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें ऐसे ही छोटे छोटे पलों में छिपी होती हैं।

0: सोशल मीडिया पर एक पपी का वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पपी एक मजदूर के साथ काम करने की बड़े ही प्यारे ढंग से नकल उतार रहा है। पपी सीधे तौर पर कोई मदद तो नहीं कर पाता, लेकिन फावड़े से मिट्टी हटाते इंसान के पीछे पीछे अपनी नन्ही टांगों से मिट्टी को वैसे ही पीछे ढकेलता नजर आता है। पपी पूरी शिद्दत के साथ इंसान के काम को कॉपी करने की कोशिश करता है। इंटरनेट यूजर्स को पपी की मासूमियत और काम करने का अंदाज बहुत पसंद आ रहा है।
1: पनीर से बनता है और उसके साथ जो चीनी और वो मिक्स करा हुआ है। अच्छा अच्छा।
0: माँ को लगता है कि बेटा दुबला होता जा रहा है, इस चक्कर में वो उसे खूब खिलाती है, लेकिन बेटा फिटनेस फ्रीक हो तो मामला थोड़ा कठिन हो जाता है। एक माँ के सामने ये स्थिति आई तो उन्होंने उसको हैंडल करने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। वीडियो के शुरू में माँ अपने बेटे से कहती हैं, कुछ नहीं होता है, पनीर से बनता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करता बेटा कहता है कि अच्छा पनीर से बनता है, मीठा नहीं होता इसमें? माँ कहती है नहीं। इस दौरान बेड के कोने में छड़ी रखी दिखती है, फिर माँ हाथ में रसगुल्ला लिए हुए ही डंडा उठाती है, मारने को भी होती है, लेकिन वीडियो यही खत्म हो जाते हैं। यूजर्स माँ बेटे के इस क्यूट क्लेश पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के बहुत से मौके अक्सर वायरल हो जाते हैं। कई बार सफर करते हुए लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जो इंटरनेट को खूब पसंद आ जाता है। एक सरदार जी के साथ यही हुआ है। उन्होंने दिल्ली में सफर के दौरान ऐसा गाना गाया कि लोग उनके दीवाने हो गए हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं, इस पर जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं।
2: बाजी ताली बजाओ ना, बाजी ताली, हाँ ताली।

0: कभी कभी जानवरों के साथ बिताया गया एक छोटा सा पल भी चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी होता है। कुछ ऐसा ही नजारा उस वक्त देखने को मिला जब भारतीय वन सेवा अधिकारी परवीन कासवान दो रेस्क्यू किए गए हाथियों से मिले। फलों से शुरू हुई ये मुलाकात देखते ही देखते हाथियों के अपने ही अंदाज वाले टोल टैक्स तक पहुंच गई। वीडियो में परवीन कासवान दोनों हाथियों से लोगों की मुलाकात करवाते हैं। दरअसल गजराज और तीस्ता रानी को उस वक्त रेस्क्यू किया गया था जब हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ा। इसके बाद दोनों को सुरक्षित जगह पर लाया गया और अब उनकी अच्छी तरह देखभाल की जा रही है। हालांकि इन दोनों की खास आदत भी है, जब भी कासवान उनके पास पहुंचते हैं तो हाथी उनसे अपना टोल टैक्स वसूलना नहीं भूलते। वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। कासवान उन्हें फल खिलाते हैं और दोनों हाथी बड़े आराम से उनके पास पहुँच कर अपने हिस्से का फल लेते नजर आते हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंघवा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आज से पश्चिम दिशा में श्रावण मास, भगवान सोमनाथ के दरबार में भक्तों का तांता। जश्न आजादी के जश्न से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल, लाल किले के पास 1000 से ज्यादा तीसरी नजर। और जहां 56 साल से जल रही है देशभक्ति की अलग, आज आपको लिए चलेंगे उसी म्यूजियम। जीएनटी पर बलिदानियों का मंदिर देखिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर किया गया बीटिंग रिट्रीट का फाइनल रिहर्सल। BSF जवानों ने पारंपरिक ड्रिल का किया प्रदर्शन।

देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल। बड़ा तालाब में नावों का की निकाली गई तिरंगा रैली। हजारों की संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर आजादी के जश्न में शिरकत की।

मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति से सराबोर तस्वीरें। ढोल नगाड़ों की धुन के बीच 51,000 महिलाओं ने सर पर कलश रखकर निकाली कलश यात्रा। भोले की भक्ति में लीन नजर आई महिलाएं। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान घेवर का नया अंदाज। बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर, 21,000 रुपए में मिल रहा स्वर्ण श्रृंगार घेवर। रायपुर में दिखी बदलाव की बयार। कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप ऑफ। कई इलाकों में हुई बारिश में लोगों को गर्मी से राहत। यूपी समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 19 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। मिर्जापुर के आशीष यादव का कमाल। अमेरिका में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में जीता सिल्वर मेडल। शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की बात श्रावण मास की, जिसकी रौनक इन दिनों देश भर में देखने को मिल रही है। उत्तर भारत के राज्यों में तो श्रावण मास की शुरुआत 30 जुलाई से हो गई थी, लेकिन पश्चिम भारत के राज्यों जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र में आज से सावन शुरू हुआ है, क्योंकि इन राज्यों में अमान पंचांग का पालन किया जाता है, जबकि उत्तर भारत में पूर्णिमा पंचांग माना जाता है। और यही वजह है कि आज गुजरात के तमाम शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा पाठ के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़े। खासकर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम भगवान सोमनाथ का दरबार भक्तों से गुलजार रहा।

0: द्वादश ज्योतिर्लिंग में पहले भगवान सोमनाथ के दरबार में भक्तों की लगी है कतार। हो रही है देवाधिदेव महादेव की जय जयकार। श्रद्धालुओं में ये उत्साह, ये उमंग और ये हर्षोल्लास इसलिए है क्योंकि गुजरात में आज से सावन महीने की शुरुआत हुई है। लिहाजा सावन महीने के पहले दिन पूजा पाठ के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भगवान सोमनाथ के धाम पर दौड़े चले आए। कोई परिवार संग आया और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के संग आया। दिन भर भक्तों का ये रेला यूं ही लगा रहा।
1: शीश नमात में बहुत भावुक हो चुका हूं और ये सोमनाथ का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे चंद्रमा जी को जो श्राप हुआ था वहाँ से भी मुक्ति मिली थी, तो हम हमारा शीश नमा के शिव जी के चरणों में हम साक्षात खुद को प्रसन्न मानेंगे और शिव जी की कृपा सब पर बनी रहे। श्रावण मास की शुभकामना सबकी।
0: परंपरा के मुताबिक सुबह सवेरे सबसे पहले मंत्रोच्चार के बीच पंचामृत से भगवान का अभिषेक हुआ। इसके बाद चंदन, बेलपत्र और फूलों से मनोहारी श्रृंगार किया गया और फिर घंटे, घड़ियाल और झाल मजीरा के साथ भगवान की मंगला आरती हुई।

0: महोत्सव शुरू हो चुका है, जिसमें कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान मंदिर में किए जाएंगे। इतना ही नहीं, 30 दिनों के दौरान अलग अलग धार्मिक महत्व वाले श्रृंगार भी भगवान के किए जाएंगे, जिसे देखने के लिए हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन ने इन श्रद्धालुओं के सुलभ और सुरक्षित दर्शन के लिए पुख्ता तैयारी की है, चाहे खाने पीने और ठहरने का इंतजाम हो या फिर पार्किंग और सुरक्षा की बात हो।
1: गुजरात में पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। श्रावण मास निमित्त पूरे देश भर से, दुनिया भर से सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में यात्री आएंगे और सोमनाथ महादेव के दर्शन करेंगे। इस संबंध में हर रोज लाखों की संख्या में जो यात्री आएंगे उनकी व्यवस्था करने के लिए, ताकि उनके दर्शन, सोमनाथ महादेव के दर्शन खूब अच्छे तरीके से हो सके और उनके लिए ये जीवन का एक यादगार मोमेंट हो, ऐसा हमारी आयोजन किया है। इसके तहत गीर सोमनाथ जिला पुलिस ने तकरीबन 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी अधिकारियों की तैनाती की है।
2: सबके लिए यहाँ पर्याप्त बंदोबस्त है, साथ साथ ऑनलाइन बिली पूजा का जो कार्यक्रम सिर्फ 21 रुपये में लिया है, वो कार्यक्रम अंतर्गत यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की पूजा की बुकिंग हो चुकी है और सारे महीने के बाद शायद ये 2.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसके साथ साथ हमारे वहां रहने की भी अच्छी सुविधा है, भोजन की भी सुविधा है और पार्किंग में एक इतना बड़ा इंतजाम किया गया है कि वहां से लोग यहां टूरिज्म की एक ट्रेन से आ सकते हैं, जिसे कम से कम असुविधा हो।
3: अनुभूति बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा अनुभव हुआ मुझे।
4: यहाँ के सोमनाथ ट्रस्ट की कैसी व्यवस्था है?
3: ट्रस्ट की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लाइन मैनेजमेंट, सारा चीज, सब चीज सही है। बहुत कम टाइम में ही दर्शन हो जा रहे भगवान के।
4: मुझे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं काफी अच्छी लगी, काफी क्लीन सिटी है, खान पीन की व्यवस्था काफी अच्छी है, बाकी जो सारी सुविधाएं हैं वो काफी अच्छी लगी मुझे।
0: राज्य के दूसरे शिव मंदिरों में भी आस्था और भक्ति का ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिर में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जो भगवान को अर्पित करने के लिए अपने साथ गंगाजल, दूध, दही, बेलपत्र और फल फूल लेकर आ रहे हैं।

0: शरणम प्रमध्ये आज से शुरू हो रहा है श्रावण मास। भगवान शिव, शिव की पूजा अर्चना करने का बार बार सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है कि जन्मांतर बहुत पुण्यम कर्मम आयुष्य विद्यते, जन्मों जन्मांतर के पुण्य प्राप्त होते हैं तब हम शिव पूजा का प्रारंभ करते हैं। जब शिव किसको बुलाते हैं, जब शिव के चरण में जब लोग आते हैं और उसको शिव ही अर्पण करते हैं। बार बार शिव किसी को अर्पण करते नहीं है। ये हम यहाँ राजकोट के लिमड़ा चौक के पंचनाथ महादेव के सानिध्य में हम आज यहाँ पूजा अर्चना करने आए थे।
1: भगवान शिव का पवित्र महीना शुरू हुआ तो क्या आम और क्या खास, हर कोई शिव भक्ति में रमा नजर आ रहा है, जिसकी एक तस्वीर वडनगर से सामने आई है, जहां राज्य के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी डमरू यात्रा में शामिल हुए। इस डमरू यात्रा के बाद वो शिव मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया और राज्य की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना की। गिर सोमनाथ से दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अगली खबर है जश्न आजादी से जुड़ी हुई। देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इन्हीं तैयारियों के तहत आज देश की राजधानी दिल्ली समेत राज्यों की राजधानियों में 15 अगस्त से जुड़े कार्यक्रमों की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसके जरिए तैयारियों को परखा गया। वहीं 15 अगस्त के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है, खासकर दिल्ली और बॉर्डर वाले राज्यों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा इंतजाम में तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है ताकि चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए।

शहर शहर शुरू हो चुके हैं स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम। सरकारी इमारतें भी तिरंगे के रंग में हो चुकी है रोशन और लोगों पर भी छाने लगी है जश्न आजादी की खुमारी। बस एक दिन का और इंतजार जब पूरे देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए आज राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर और राज्यों की राजधानियों में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। पहले बात दिल्ली की, जहां रिहर्सल की शुरुआत पीएम के काफले की एंट्री से हुई। इसके बाद ध्वजारोहण, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और पीएम का राष्ट्र के नाम संबोधन से जुड़ी रिहर्सल की गई।

0: इस रिहर्सल में सेना के बैंड, उनकी टुकड़ियां और समारोह में भाग लेने वाले बच्चे भी शामिल हुए। इस पूरी कवायद के जरिए 15 अगस्त को होने वाले मुख्य कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियों को बारीकी से परखा गया। कमोबेश ऐसी ही रिहर्सल श्रीनगर, लखनऊ और रायपुर समेत दूसरे राज्यों की राजधानियों में भी की गई, जिसमें लोक कलाकारों ने अपनी कला के जरिए अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन बेहद शानदार तरीके से किया।
1: हम बनारस से हैं और हमारी टीम भेड़िया कर रही है, जो कि प्रयागराज का लोक नृत्य है।
2: हमने तो कई कार्यक्रम किए हैं देशों में, मतलब पूरे इंडिया में हम लोग ने कई स्टेट में कार्यक्रम किए हैं और ये मेरा ये दूसरी बार विधानसभा का प्रोग्राम है। हमने 26 जनवरी 2025 के लिए किया था और ये 15 अगस्त फर्स्ट टाइम है हमारा। और मैं इससे पहले राजपथ पे भी कर चुकी हूँ 26 जनवरी 2023 में।
3: किसका रोल कर रहे हैं आप?
2: अभी तो मैं सीता का रोल कर रही हूँ।
0: 15 अगस्त से जुड़ी इन तैयारियों के बीच देश भर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। खासकर देश की राजधानी दिल्ली में विशेष चौकसी बरती जा रही है, जिसके तहत दिल्ली से लगे तमाम राज्यों के बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही लाल किले के आसपास और राजधानी के बाजारों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि राजधानी में 15 अगस्त के लिए 10 से 15,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई, जबकि 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है।
4: ये कंट्रोल रूम दिखा देती हूँ, जहाँ से जो है 1,000 से भी ज्यादा जो है कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस पे, और उसी की जो यहाँ से मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चौकसी हर एक शख्स पे, हर एक व्यक्ति पे जो है, हर एक रास्ते पे जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो आम जनता है उसकी पाबंदी जो है वो रोक दी गई है, अभी वो एंटर नहीं कर सकते, लाल किला जो है आप नहीं घूम सकते, लेकिन बाकी जो लोग जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं फुल चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और यही नॉर्थ डीसीपी का भी कहना है कि आपको भी सुरक्षा में मदद जो है वो करनी पड़ेगी।
0: बड़े खतरे को देखते हुए सुरक्षा के इस काम में तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस इस बार लाल किले की सुरक्षा में अभिज्ञान ऐप का इस्तेमाल कर रही है। अभिज्ञान ऐप बहुत तेज और सटीक तरह से काम करती है। इसके जरिए सुरक्षाकर्मी कुछ ही सेकंड्स में भीड़ में छिपे संदिग्ध की पहचान कर सकते हैं। और इसके अलावा ये ऐप सिर्फ कैमरे के डेटा पर निर्भर न रहकर बायोमेट्रिक जांच की सुविधा भी देता है। इससे पहचान छिपाकर घूम रहे अपराधी भी आसानी से पकड़ में आ सकते हैं।
5: इस 15 अगस्त पे स्पेशल बात यह है कि सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो ये एक ऐप है जो दिल्ली पुलिस ने डेवलप करवाया है। इस ऐप का नाम है अभिज्ञान ऐप। ये ऐप ऐसे काम करता है कि देखिए, ऐसे रैंडम चेकिंग होती है। इस वक्त हम लाल किले के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे रैंडमली चेकिंग होती है। रैंडमली चेकिंग में फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और फिंगरप्रिंट लेने के बाद इस तरीके से रिजल्ट आते हैं। अगर ग्रीन रिजल्ट आया है तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति का किसी भी तरीके का कोई भी आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। वहीं अगर इस तरीके से लाल साइन आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके आपराधिक बैकग्राउंड है।
6: तो ये किस तरीके से काम करता है और कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है?
7: सर, इसकी जो सेटिंग है कैमरे की सेटिंग और उसका जो ग्रेविटी नोटिस करी जाती है कि कितना एग्जैक्ट इसका मैच आता है, उस पे हम फिक्स कर देते हैं। अभी जैसे जिन लोगों का नाम एज वगैरह मेंशन हो रहा है कि एज ग्रुप के हैं, मेल है फीमेल है, इस तरह से आइडेंटिटी आती है। साथ में जैसे कि क्रिमिनल हमारे पास ऑलरेडी जो डाटाबेस में है, अगर उनका कोई फोटो इनसे मैच आता है और कन्फर्म मैच आता है तब उस आदमी से पूछते हैं कि आपका ये बेयर आउट है या नहीं है। पैरेलली हमारे पास इस तरह से और भी यूटिलिटी जैसे अभिज्ञान है या हमारे पास जो क्राइम कंट्री टाइप के जो सॉफ्टवेयर है जिनमें क्रिमिनल का ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है, उन सबको हम वेरीफाई कर लेते हैं। अगर वो एक्चुअली क्रिमिनल लगता है और उस तरह की जगह पे उसका नहीं होना है तो उसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये इस तरह से प्रोसेस है।
5: ये ऑटोमेटिकली काम करता है या आपको कमांड देना पड़ता है कि इस आदमी का आप बैकग्राउंड?
7: नो सर, इसमें ऑटोमेटिक इसकी स्ट्रेंथन किया गया है, सेटिंग की गई है कि अपने आप ही काम करता है इसमें।
0: दिल्ली की तरह ही देश के सरहदी राज्यों में भी 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। चाहे बॉर्डर पर हो या बॉर्डर के अंदर, सुरक्षा से जुड़े जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, ताकि स्वतंत्रता दिवस के जश्न में किसी तरह की खलल न पड़े और लोग हर्षोल्लास के साथ इसे मना पाए। दिल्ली से मनीषा लड्डा और अंशल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: बात आजादी की लड़ाई के उन गुमनाम नायकों की जिनका योगदान देश को स्वाधीनता दिलाने में स्वतंत्रता संग्राम के चर्चित चेहरों के बराबर था, लेकिन फिर भी साझा संघर्ष, त्याग और बलिदान के बावजूद उन्हें आजादी की लड़ाई के मशहूर शख्सियतों की तरह न सम्मान मिला और न ही पहचान। ऐसे ही गुमनाम नायकों के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में एक मंदिर समर्पित है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो गुमनाम न रह जाए। देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने से जुड़ी उनकी वीर गाथा से दिल्ली में भी रहने वाले हर नागरिक परिचित रहे हैं। तो आइए बलिदानियों से जुड़ी ऐसे मंदिर के दर्शन हम आपको कराते हैं जहां पर 56 साल से देशभक्ति की अलख लगातार जल रही है।
9: लाल किले के पास मौजूद ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा या तस्वीरें नहीं है, बल्कि उन लोगों के चित्र हैं जिनके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया। शुरुआती दौर में इतिहास लिखने वाला एक फोकस कुछ गिने चुने बड़े नेताओं और संगठनों तक ही सीमित रह गया। पूरा हिंदुस्तान जिस जश्न आजादी की तैयारी में जुटा है, वो किसी एक व्यक्ति के बलिदान और संघर्ष का नतीजा नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई ऐसे बलिदानी थे जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, फिर भी आने वाली पीढ़ियों के लिए गुमनाम रह गए। अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद इतिहास ने उनके योगदान का सही मूल्यांकन नहीं किया। आजादी के किस्से कहानियों या उससे जुड़े इतिहास के पन्नों में उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। सैकड़ों, हजारों या लाखों क्रांतिकारी गुमनाम नायकों की तरह रह गए। देश की स्वाधीनता के लिए साझा संघर्ष, त्याग और बलिदान के बावजूद उन्हें आजादी की लड़ाई के चर्चित चेहरों या नायकों की तरह न सम्मान मिला और न ही पहचान।
10: मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ना, अमूमन आप मंदिर जाते हैं तो आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं। कोई मंदिर राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, तो कोई किसी माता का है। लेकिन आज दिल्ली के चांदनी चौक में मैं आपको ऐसे मंदिर में लेकर आया हूँ जहाँ पर कोई ईश्वर, कोई देवता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी जान गंवाने वाले, उसके लिए अपना जीवन न्योछावर कर देने वाले वीर बलिदानियों की यहाँ फोटो लगी है, तस्वीर लगी है, उनके बारे में जानकारी लिखी गई है। ये वो वीर बलिदानी हैं जिनके बारे में इतिहास में लिखा ही नहीं गया, अगर लिखा गया तो एक दो लाइनों में निपटा दिया गया। आइए आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के भीतर।
9: दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद शिव शक्ति नाम का ये मंदिर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गुमनाम क्रांतिकारियों को भी उनके हिस्से का यश दिलाता है। इस अनोखे मंदिर को एक पूर्व क्रांतिकारी ने ही बनवाया था जिन्हें देश की आजादी के बाद गुमनाम नायकों के साथ जाने अनजाने हुई अनदेखी परेशान करने लगी थी। अलग अलग राज्यों से 100 क्रांतिकारियों की तस्वीर तब से इस बलिदानी मंदिर की शोभा बढ़ा रही है।
10: चांदनी चौक में इस मंदिर का निर्माण स्वर्गीय स्वर्णलाल पारूथी जी ने करवाया था। उन्हें ये देखकर बहुत टीस पहुंची थी कि कई सारे ऐसे क्रांतिकारी जिनकी बड़ी भूमिका थी उनके बारे में इतिहास में लिखा नहीं गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश भर से ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में सूचनाएं जुटाई और उनकी तस्वीरों के साथ लगभग 100 बलिदानियों की तस्वीर यहाँ पर लगाई, उनके बारे में लिखा। ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है और यहाँ पर भी आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शहीद भगत राम जी की। इनके बारे में लिखा ये गया है कि शहीद हरिकिशन लाल के भाई भगत राम महान देशभक्त थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया और 5 वर्षों तक जेल में रहे। मुद्दे की बात अब ये, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारत से बाहर जाने लगे तो भगत राम जी ने अपनी जान पर खेल कर उन्हें काबुल तक पहुँचाया। आप सोचिए, वो इंसान जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी, उनका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। उनकी तस्वीर ढूंढकर उनके बारे में मुख्य जानकारी निकालकर यहां पर लगाया गया है।
9: पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के रहने वाले क्रांतिकारी नवजीवन घोष भी उन गुमनाम नायकों में शामिल थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। फिर भी आजादी से जुड़े मुख्य धारा के इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिली। जबकि ब्रिटिश पुलिस के भीषण अत्याचार और अमानवीय शारीरिक प्रताड़ना के कारण सितंबर 1934 में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी क्रूरता पर पर्दा डालते हुए उनके मृत्यु को आत्महत्या करार दिया था।
10: ये नाम है नवजीवन घोष का। इनके बारे में लिखा है, मिदनापुर के जिला न्यायाधीश वर्ष की हत्या के बाद नवजीवन के भाई निर्मल जीवन को फांसी पर लटका दिया गया।
9: आजादी से जुड़े इतिहास में खास मुकाम पाने में नाकाम रहे एक क्रांतिकारी ने राष्ट्रवाद का ऐसा बीज बोया कि पूरा परिवार ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के रास्ते पर चल पड़ा। क्रांति की पाठशाला में उन्होंने अपने बेटों को हथियारों का इस्तेमाल करना और सटीक निशाना लगाना सिखाया। देश के लिए बलिदान, त्याग और संघर्ष की ऐसी अनगिनत कहानियां यहां मौजूद हैं, जिनकी गवाही के तौर पर कई और क्रांतिकारियों की तस्वीर यहां लगी है। करीब 56 साल से यह जगह स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों और आजादी से जुड़े उनके योगदान को अपने भीतर समेटे हुए है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आजादी की उस लड़ाई का स्मरण करवाता है जिसके लिए ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
12: भगवान शिव की कौन सी स्तुति करके बड़ी से बड़ी समस्या को टाला जा सकता है? भगवान शिव की कौन सी स्तुति से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है? कौन सी हैं भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना बड़ा सरल है और उनकी कृपा पाने के लिए हमें भगवान शिव की स्तुतियां करनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन में भगवान शिव की कौन सी स्तुति करें और उससे किस तरह का लाभ जीवन में प्राप्त होगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शिव जी की स्तुतियों के बारे में। शिव जी की स्तुतियों का महत्व क्या है पहले ये जानते हैं। देखिए, शिव जी की जो स्तुतियां हैं वो बहुत विशेष मानी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भगवान शिव की स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक होती हैं, गाई जा सकती हैं। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों के लिए उनकी अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है और अलग अलग विशेष स्थितियों में इनकी स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। आप जिस तरह की स्तुति का पाठ करने जा रहे हैं उसके पहले उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान आपको कर लेना चाहिए। भगवान शिव की पहली स्तुति है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र जो है ये भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र की व्याख्या है। ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व की शक्ति से भरा हुआ है। इसका निरंतर पाठ करने से शिव जी की कृपा जीवन में अवश्य मिलती है और अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करे तो उसके ऊपर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप या तो रेगुलरली नमः शिवाय का जप करें या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें, शिव जी की कृपा आपको निरंतर मिलती रहेगी। चर्चा हमारी जारी है लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। भगवान शिव की दूसरी स्तुति है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। आम तौर पर शिव तांडव स्तोत्र को गाया जाता है। किसी भी कठिन से कठिन स्थिति में इस स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। अगर किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, बहुत खराब समय चल रहा हो, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी होता है। अगर आप नृत्य के साथ नाच करके गा करके इसका पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना करिएगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड डमड डमड डमड निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। गा गा कर अगर शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा जाए, कितना भी कठिन वक्त चल रहा हो, उस कठिन वक्त के प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब एक और बड़ी अद्भुत स्तुति की बात करते हैं, उसका नाम है दारिद्र दहन स्तोत्र। दारिद्र दहन स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है या रचा गया है। इसका पाठ रेगुलर करने से दरिद्रता का नाश होता है। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो इसका पाठ अवश्य करना चाहिए, और इसका पाठ दोनों वेला दोनों समय करना चाहिए। अगर आप दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, दरिद्रता बहुत ज्यादा है, पैसे की कठिनाई बहुत है, तो सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें, और जितने दिन इसका पाठ करें सात्विकता बनाए रखें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की भगवान शिव की स्तुतियों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। सावन के महीने में जितने भी दिन संभव हो शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। देखिए, अगर आयु की बाधा हो, स्वास्थ्य में गहरा संकट चल रहा हो, स्वास्थ्य की मुश्किलें बहुत परेशान कर रही हो, तो भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करके चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिएगा। सुबह और शाम शिव जी के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करके अगर आप चंद्रशेखराष्टक का पाठ करें तो ऐसा करने से आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। प्रातः काल भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
0: बात अयोध्या की, जहां राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस में फिर से बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत राम मंदिर पुजारी अब बिना सिले हुए वस्त्र ही पहनेंगे। पिछले दिनों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी धार्मिक न्यास समिति ने इस ड्रेस कोड के प्रस्ताव को अपनी सहमति दी थी। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहले भी एक ड्रेस कोड लागू किया था, जिसके तहत पुजारियों को पगड़ी, पीली शोबंदी और सफेद धोती पहननी अनिवार्य थी, लेकिन इन कपड़ों को वैष्णव परंपराओं के खिलाफ माना गया था और इसीलिए ड्रेस कोड बदलने का फैसला किया गया।
6: ध्यान रखा जाए, उसके लिए सिल्क के वस्त्र, पीत वस्त्र में अपने ड्रेस में रहेंगे, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनेंगे और ऊपर उत्तरीय धारण करेंगे। शरद कालीन होगा तो उसी ढंग से कुछ ऊनी वस्त्र धारण करेंगे, जिससे वहां की पुजारियों की भी और वहां स्वच्छता पवित्रता भी बनी रहे।
0: 15 अगस्त देश के लिए आजादी का दिन और क्रिकेट के लिए इतिहास रचने का, एक तरफ तिरंगे की शान में देश जश्न मनाएगा जबकि दूसरी तरफ गोल में टीम इंडिया एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।
7: पंद्रह अगस्त को एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा होगा तो दूसरी तरफ टीम इंडिया इतिहास रचने के लिए क्रिकेट के मैदान में उतरेगी। 15 अगस्त को भारत और मेजबान श्रीलंका के बीच गोल में टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास का 600वां टेस्ट मैच होगा। टीम इंडिया की टेस्ट जर्नी अपने आप में बेहद शानदार और ऐतिहासिक रही है। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जबकि 1967 में 100वां टेस्ट भी इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला गया। टीम इंडिया ने 1982 में अपना 200वां टेस्ट खेला था और तब सामने पाकिस्तान की टीम थी। इसी तरह 1996 में 300वां टेस्ट मैच खेला गया और तब सामने दक्षिण अफ्रीका टीम थी। 2006 में भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना 400वां टेस्ट खेला था और 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 500वां टेस्ट मैच खेला गया था। अब उसी ऐतिहासिक सफर का 600वां पड़ाव 15 अगस्त को श्रीलंका के खिलाफ आने वाला है। माना जा रहा है कि श्रीलंका की स्पिन और टर्न वाले पिचेस भारतीय खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। ऐसे में अपने 600वें टेस्ट में फतह हासिल करने के लिए भारतीय टीम ने रणनीति भी खास बनाई है। हेड कोच गौतम गंभीर ने कोलंबो में एनसीसी मैदान के एक हिस्से में 22 गज की अनक्यूरेटेड पिच तैयार करवाई। इस पिच पर घास, दरारें और ढीली मिट्टी जानबूझकर छोड़ी गई ताकि बल्लेबाज गोल टेस्ट के चौथे और पांचवें दिन जैसी टर्न और अनियमित उछाल वाली परिस्थितियों में पहले से प्रैक्टिस कर सके। यानी टीम इंडिया ने नेट्स पर ही ऐसी पिच तैयार कर ली जहां गेंद घूमे, बल्लेबाजों की परीक्षा हो और स्पिन के खिलाफ मुकाबले की पूरी तैयारी की जा सके। मतलब टीम का मकसद 600वें टेस्ट को सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि यादगार भी बनाना है। ये सीरीज सिर्फ 600वें टेस्ट के लिहाज से भी अहम नहीं है बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस के लिए भी टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
8: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
9: खबर से पहले अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर दिखा जवानों का जोश। बीटिंग रिट्रीट के फाइनल रिहर्सल में बीएसएफ के जवानों ने की पारंपरिक ड्रिल। देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल। बड़ा तालाब में नाव का पर निकाली गई तिरंगा रैली। हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न में की शिरकत। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें। हजारों महिलाओं ने सर पर कलश रखकर निकाली यात्रा। भोले की भक्ति में झूमा शहर। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान घेवर का नया अंदाज। बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर। 21,000 रुपए में मिल रहा स्वर्ण श्रृंगार घेवर। रायपुर में दिखी बदलाव की बयार। कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। यूपी समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में 19 अगस्त तक बारिश का अलर्ट।

0: में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में जीता सिल्वर मेडल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। ये शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा अमरावती में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए किए गए खास इंतजाम इंस्टीट्यूट ऑन व्हील्स की भी है। आइए देखते हैं।
3: लाल रंग की ये लग्जरी बस बाहर से देखने में भले ही कुछ खास न लगे, लेकिन इसके अंदर जो सुविधाएं मौजूद हैं वो बेहद खास हैं। मेडिकल इक्विपमेंट से सजी इस बस को एक चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर कह सकते हैं। हालांकि यहाँ सर्जरी नहीं होती बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स को टांके लगाने से लेकर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तक की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि मरीजों पर हाथ आजमाने से पहले वो इसकी बारीकियां पहले से सीख जाएं। छात्र यहां प्रोफेसरों की निगरानी में सर्जिकल तकनीकों की प्रैक्टिस करते हैं। इसे नाम दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑन व्हील्स। इसकी खासियत ये है कि ये एक जगह नहीं टिकता बल्कि अलग अलग मेडिकल संस्थानों में पहुंचकर छात्रों को आधुनिक सर्जिकल ट्रेनिंग देता है। ये ट्रेनिंग बस हर 2 साल में छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए मेडिकल संस्थानों में पहुँचती है। नेशनल हैंडलूम डे बीत चुका है लेकिन उस दिन की सबसे सुंदर तस्वीर अब सामने आई है। ये खूबसूरत तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर की है जहां इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए खास फैशन शो आयोजित किया गया और इस भव्य स्वदेशी फैशन शो में रैंप पर उतरी वो महिला नक्सली जिन्होंने अब नक्सलवाद को अलविदा कह दिया है और समाज की मुख्यधारा से जुड़ चुकी हैं। प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ जब ये रैंप पर उतरी तो इनका जलवा देखने लायक था। जो महिलाएं कभी अपने हाथ में हथियार थामकर जंगलों की खाक छानती रहीं, उन्हें इस रूप में देखना सुकून देता है। जेंजी सिर्फ आंदोलन नहीं करते बदलाव की कहानी भी लिखते हैं और कुछ बेहतर हो तो उसे स्वीकार भी करते हैं। कुछ ऐसा ही बताने की कोशिश कर रहे हैं लखनऊ के ये युवा छात्र छात्राएं जो शहर की दीवारों पर राज्य की बदलती तस्वीर को उकेर कर रंगों के जरिए क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश कैसा था, कैसा है और कैसा होना चाहिए, इन तस्वीरों के जरिए यही बताने की कोशिश हो रही है। केरल में करकड़वा वावू के पवित्र मौके पर अलवा महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान यहां बाली तर्पणम अनुष्ठान की परंपरा है। ऐसे में यहां हजारों श्रद्धालुओं ने पेरियार नदी के तट पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह अनुष्ठान किया। मलयालम महीने कर्कटकम की अमावस्या को पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले चंडीगढ़ में आजादी का जश्न देखा। यहां सुखना लेक पर ग्रुप सेंटर CRPF पिंजौर की ओर से भव्य CRPF बैंड डिस्प्ले कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर CRPF के जवानों ने देशभक्ति से ओतप्रोत मधुर धुनों, राष्ट्रभक्ति गीतों और अनुशासित बैंड प्रदर्शन से लोगों का मन मोह लिया।
0: अब बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। आजादी के जश्न के रंग में पूरा देश रंग गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह तिरंगा रैली निकाली जा रही है। कहीं 1400 मीटर लंबा तिरंगा झंडा तो कहीं आजादी के दीवानों का झुंड। देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इन्हीं तैयारियों के तहत आज देश की राजधानी दिल्ली समेत राज्यों की राजधानियों में 15 अगस्त से जुड़े कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई जिसके जरिए तैयारियों को परखा गया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जवानों की कदमताल से लेकर आसमान में हेलीकॉप्टर से लहराते तिरंगे तक हर अभ्यास बेहद खास रहा। वहीं 15 अगस्त के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा सख्त कर दी गई, खास करके दिल्ली और बॉर्डर वाले राज्यों में विशेष चौकसी बरती जा रही है।

0: देश आजादी के जश्न के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जगह जगह शहर शहर तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसकी छटा देखते ही बन रही है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह तिरंगा रैली आयोजित हुई, जिसके जरिए देशभक्ति का संदेश दिया गया। भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर की वादियों में देशभक्ति की ये गूंज हर दिल में बस चुकी है। 3 किलोमीटर लंबी ये तिरंगा यात्रा जिधर से गुजर रही है, इसका कारवां बढ़ता ही जा रहा है। 1400 मीटर लंबा तिरंगा हर दिल में देशभक्ति का जज्बा भर रहा है। हर कंधे पर लहराता ये तिरंगा देशभक्ति के शौर्य और सम्मान को दुगुना कर रहा है। इस तिरंगा यात्रा में स्थानीय नागरिक और स्कूली बच्चों से लेकर प्रशासनिक अमला तक शामिल है। मजेदार बात ये है कि तिरंगा रैली गाजे बाजे के साथ निकाली गई। हर चेहरे पर मुस्कान और दिल में देशभक्ति के जोश से लबरेज ये यात्रा बेहद अनूठी थी।
1: 9 अगस्त से लेकर 17 तक हर घर तिरंगा कैंपेन और वंदे मातरम की कैंपेन चल रही है। उसी सिलसिले में आज हमारे यहाँ रामबन में मेगा तिरंगा रैली जो है वो मुनक्कद की गई। जैसा कि आपने देखा कि इस रैली में कितनी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स ने जो पार्टिसिपेट किया, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों ने इसमें शमूलियत की, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सब ने, और सबको इस अपने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए, इसकी आन शान और बान को बनाए रखने के लिए जोश और जज्बा था। आपने देखा होगा कि इस रैली में लोगों में कितना जोश और जज्बा था, कितना वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों की गूंज के बीच ये रैली निकाली गई। और इतनी लंबी जो है लाइन आपने देखी होगी कि 3 किलोमीटर तक हमारी ये लंबी रैली थी और अभी यहाँ खत्म हुई है।

0: सीआरपीएफ की अगुवाई में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में जवानों के साथ एनसीसी कैडेट्स, छात्र छात्राओं और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हर हाथ में तिरंगा शान से लहरा रहा है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही थी, लोग खुद ब खुद जुड़ते जा रहे थे। ये तिरंगा देश का स्वाभिमान है, जो हर दिल में देशभक्ति का जोश भर देता है। हर घर तिरंगा रैली पूरे देश में जोर शोर से निकाली जा रही है और हर हाथ में तिरंगा भी देखा जा रहा है। और इस तिरंगे को बनाने वाले भी इनकी सप्लाई में रात दिन जुटे हैं। गुजरात के सूरत में देश में बने धागों से तिरंगे बनाए जा रहे हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे तिरंगे झंडे को आखिरी रूप दिया जा रहा है, कैसे इनकी कटिंग और सिलाई की जा रही है। जब ये झंडे बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें देश के अलग अलग राज्यों में बड़े सम्मान के साथ भेजा जाता है।
1: अभी 15 अगस्त आ गई है, हमारे हर भारतीय के लिए 15 अगस्त एक ऐसा पर्व है जिसे एक हर भारतीय मनाता भी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो हर घर तिरंगा का अभियान है, उसके चलते हम लोगों को हर स्टेट से प्रोग्राम है कि हर जगह हम लोग तिरंगा बना के भेज रहे हैं और कंटिन्यू जा भी रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, हर जगह से प्रोग्राम है और हर जगह डिस्पैच हो रहा है।
0: हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में रैली आयोजित हो रही है, जिसमें हर उम्र और वर्ग के लोग पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। राजधानी में लाल किले से लेकर दिल्ली की सड़कों पर तिरंगा लहरा रहा है। कहीं तिरंगा रैली निकाली जा रही है तो कहीं जवान फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। ये तैयारी 15 अगस्त के लिए है, वो दिन जब हर दिल में देशभक्ति का जज्बा और हर हाथ में तिरंगा नजर आता है। आजादी के इस महापर्व को खास बनाने के लिए देश भर में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कहीं स्कूलों में बच्चे स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए रिहर्सल कर रहे हैं, तो कहीं पुलिस और सुरक्षा परेड की तैयारियों में जुटे हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरा लाल किला सुरक्षा के कड़े घेरे में है, तो वहीं तीनों सेनाओं के बैंड फुल ड्रेस रिहर्सल में जुटे हैं। बैंड की गूंजती बीट पर जवानों का कदम ताल, ये अद्भुत नजारा देशभक्ति की अलख जगा रहा है। वैसे केवल दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस परेड रिहर्सल में पुलिस जवानों के साथ साथ खास तौर से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड भी पहुंचा और अपने हैरत अंगेज करतब और अनुशासन के प्रदर्शन से लोगों का दिल जीता। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इस बीच श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का शानदार नजारा देखने को मिला। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान एनसीसी कैडेट्स, पुलिस के जवानों और प्रतिभागियों ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ परेड की।
2: तो ड्रेस रिहर्सल हो रही है, वो यहाँ पे अभी प्राउड फील आ रहा है। अभी यहाँ पे सारे जेके पीबी है, ये सारे कंटिजेंट है, हम भी आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए।
3: 10-15 दिन से हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क किया हमने, तो जितने हमने प्रैक्टिस की है उस प्रैक्टिस को हम यहाँ पे दिखाएंगे, कितनी हमने प्रैक्टिस की है और क्या क्या हमने वहाँ पे सीखा सब कुछ।
0: जाहिर है, आजादी के इस महापर्व के लिए राजधानी समेत पूरा देश तैयार है। पुलिस के जवान और तीनों सेनाएं भी कमर कस चुकी हैं और अब इंतजार है उस ऐतिहासिक पल का, जब पूरा देश आजादी का महापर्व धूमधाम से मनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 15 अगस्त से पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।

0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की सेवा में लगे अर्चकों के लिए अब एक समान ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। 15 अगस्त से सभी पुजारी एक ही निर्धारित पोशाक में नजर आएंगे। अर्चक नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय वस्त्र धारण करेंगे। ये वस्त्र रेशम यानी सिल्क का होगा और इसका रंग पीला रखा गया है। अर्चकों के परिधान को लेकर निर्णय धर्म समिति के संतों ने लिया है। उनके मुताबिक एक समान परिधान से रामलला की सेवा व्यवस्था में अनुशासन, एकरूपता और धार्मिक गरिमा और ज्यादा दिखाई देगी। भारत पाकिस्तान सीमा के पास कच्छ के एक दूरस्थ इलाके में पुरातत्वविदों को एक समृद्ध मध्यकालीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। खुदाई के दौरान यहां मिले प्राचीन बर्तनों और कृषि उपकरणों से ये संकेत मिलता है कि ये कभी एक व्यवस्थित और आबाद समाज था जो खेती और व्यापार में सक्रिय था। माना जा रहा है कि ये बस्ती मुख्य रूप से 11वीं से 14वीं शताब्दी के सुमरा काल के दौरान आबाद थी। कच्छ विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संयुक्त शोध के बाद इस ऐतिहासिक स्थल का अस्थायी नाम बर्बाद गाँव रखा गया है और जूलॉजिकल पार्क को सेंट्रल जू अथॉरिटी से मंजूरी मिल गई है। गुजरात वन विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे इस प्रोजेक्ट का मकसद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को मजबूत करना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और उत्तर गुजरात में रोजगार के अवसर पैदा करना है। वन अधिकारियों के मुताबिक पार्क को डेजर्ट इकोसिस्टम के आधार पर डिजाइन किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी बारिश ने जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं हिमाचल प्रदेश में 19 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने शिमला और मंडी में 14 अगस्त को भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है और यहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर 80वीं स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी चल रही है। ये तस्वीरें उसी की हैं। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभ्यास चल रहा है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचे।
1: और अब बात गुजरात में श्रावण मास की। गुजरात में पवित्र सावन महीने की शुरुआत आज से हो चुकी है। गुजरात में अमांग पंचांग का पालन होता है जिसके कारण उत्तर भारत के मुकाबले गुजरात में सावन करीब 15 दिन बाद से शुरू होता है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में तो श्रावण मास की शुरुआत 30 जुलाई से हो गई थी। लेकिन पश्चिम भारत के राज्यों जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र में आज से सावन शुरू हुआ है और यही वजह है कि आज गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ से लेकर तमाम शिव मंदिरों में पूजा पाठ के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम भगवान सोमनाथ के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं राजकोट के पंचनाथ महादेव मंदिर में भी सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा।
0: द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान रखने वाले भगवान सोमनाथ के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवाधिदेव महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के श्रद्धालुओं में ये उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास इसलिए है क्योंकि गुजरात में आज से सावन महीने की पावन शुरुआत हुई है। सावन महीने के पहले दिन देश विदेश से श्रद्धालु भगवान सोमनाथ के धाम पूजा पाठ के लिए आते हैं। कोई परिवार संग पहुंचा तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के संग आया। दिन भर भक्तों का ये रेला यूं ही लगा रहा।
2: सावन के प्रथम सोमवार के दिन शीश नमाते हुए मैं बहुत भावुक हो चुका हूं और ये सोमनाथ का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे चंद्रमा जी को जो श्राप हुआ था वहाँ से भी मुक्ति मिली थी, तो हम हमारा शीश नमा के शिव जी के चरणों में हम साक्षात खुद को प्रसन्न मानेंगे और शिव जी की कृपा सब पर बनी रहे। श्रावण मास की शुभकामनाएं सबकी।
0: परंपरा के मुताबिक सुबह सबसे पहले मंत्रोच्चार के बीच पंचामृत से भगवान का अभिषेक हुआ। इसके बाद चंदन, बेलपत्र और फूलों से मनोहारी और मनमोहक श्रृंगार किया गया और फिर साज सज्जा के साथ भगवान सोमनाथ की मंगला आरती हुई। इसके बाद भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए। भगवान सोमनाथ के दरबार में कोई परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेने आया है तो कोई कारोबार में तरक्की की कामना लेकर पहुंचा है और किसी ने सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की।
3: मैं लखनऊ से हूँ और हम पहले यहाँ पे काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आए थे, बैद्यनाथ बाबा के दर्शन करके आए थे, फिर महाकालेश्वर के दर्शन किए और अब हम सोमनाथ के दर्शन करने आए हुए हैं। हम यहाँ आकर के तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, चाहे यहाँ का दृश्य हो, चाहे यहाँ की व्यवस्था हो, बहुत ही मनमोहक।
0: सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक आज से भगवान महादेव की धरती पर 30 दिवसीय श्रावण शिव महोत्सव शुरू हो चुका है, जिसमें कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान मंदिर में किए जाएंगे और इस दौरान अलग अलग धार्मिक महत्व वाले श्रृंगार भी भगवान के किए जाएंगे, जिसे देखने के लिए हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है।
4: सबके लिए यहाँ पर्याप्त बंदोबस्त है, साथ साथ ऑनलाइन बिली पूजा का जो कार्यक्रम सिर्फ 21 रुपये में लिया है, वो कार्यक्रम अंतर्गत यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की पूजा की बुकिंग हो चुकी है और सारे महीने के बाद शायद ये 2.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसके साथ साथ हमारे वहाँ रहने की भी अच्छी सुविधा है, भोजन की भी सुविधा है और पार्किंग में एक इतना बड़ा इंतजाम किया गया है कि वहां से लोग यहाँ टूरिज्म की एक ट्रेन से आ सकते हैं, जिसे कम से कम असुविधा हो।
5: बहुत अच्छा अनुभव हुआ मुझे।
6: यहाँ के सोमनाथ ट्रस्ट की कैसी व्यवस्था है?
5: ट्रस्ट की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लाइन मैनेजमेंट, सारी चीज सब चीज सही है, बहुत कम टाइम में ही दर्शन हो जा रहे भगवान।
7: मुझे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं काफी अच्छी लगी, काफी क्लीन सिटी है, खान पीन की व्यवस्था काफी अच्छी है, बाकी जो सारी सुविधाएं हैं वो काफी अच्छी लगी मुझे, तो ओवरऑल सारा सब कुछ अच्छा है यहाँ।
0: प्रशासन ने श्रद्धालुओं के सुलभ और सुरक्षित दर्शन के लिए पुख्ता तैयारी की है, चाहे खाने पीने और ठहरने का इंतजाम हो या फिर पार्किंग और सुरक्षा की बात हो।
8: गुजरात में पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। श्रावण मास निमित्त पूरे देश भर से, दुनिया भर से सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में यात्री आएंगे और सोमनाथ महादेव के दर्शन करेंगे। इस संबंध में हर रोज लाखों की संख्या में जो यात्री आएंगे उनकी व्यवस्था करने के लिए, ताकि उनके दर्शन, सोमनाथ महादेव के दर्शन खूब अच्छे तरीके से हो सके और उनके लिए ये जीवन का एक यादगार मोमेंट हो, ऐसा हमारी आयोजन किया है। इसके तहत गिर सोमनाथ जिला पुलिस ने तकरीबन 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी अधिकारियों की तैनाती की है।
0: सोमनाथ ही नहीं, गुजरात में राजकोट के पंचनाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लग रहा है। भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और फूल चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा की और आशीर्वाद लिया।
9: श्रावण का पहला दिन है और सभी लोग यहाँ पे बहुत आते हुए, पंचनाथ महादेव का बहुत महात्मा है और दर्शन करके आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और श्रावण महीना है तो आपकी जो भी विश है वो एक बार श्रावण महीने शंकर भगवान से मांगते हैं वो पूरी हो जाती है।
0: गुजरात के तमाम शिव मंदिरों में सावन के पहले दिन भगवान शिव का सुंदर फूलों और आभूषणों से श्रृंगार किया गया और विधि विधान से पूजन अर्चन कर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए।

0: शरणम प्रमध्य। आज से शुरू हो रहा है श्रावण मास। भगवान शिव, शिव की पूजा अर्चना करने का बार बार सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है कि जन्मांतर बहुत पुण्यम कर्मम आयुष्य विद्यते, जन्मों जन्मांतर के पुण्य प्राप्त होते हैं तब हम शिव पूजा का प्रारंभ करते हैं। जब शिव किसको बुलाते हैं, जब शिव के चरण में जब लोग आते हैं उसको शिव ही अर्पण करते हैं।
1: भगवान शिव का पवित्र महीना शुरू हुआ तो क्या आम और क्या खास, हर कोई शिव भक्ति में रमा नजर आ रहा है। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। ऐसे में 30 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव सोमनाथ को शिव भक्ति के रंग में रंग देगा। गिर सोमनाथ से दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज पथ पर आ गया है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
1: कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और वेस्ट एशिया में अनिश्चित माहौल के बीच कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। गुरुवार 13 अगस्त को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 113 अंकों की बढ़त के साथ 78,079 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 40 अंकों की गिरावट के साथ 24,395 पर बंद हुआ। गुरुवार को कमजोर ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 2800 रुपए गिरकर 1,57,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 6,000 रुपए गिरकर 2,40,000 रुपए पर पहुंच गई। 13 अगस्त को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 12 पैसे गिरकर 95.45 के स्तर पर बंद हुआ।
2: राजकुमार राव की फिल्म प्रहार की नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
3: पिछले 1.5 साल में इस केस के चलते
1: जब न्याय को एक आवाज की जरूरत पड़ी तो एक शख्स उसका प्रहार बनकर सामने आया। राजकुमार राव स्टारर फिल्म प्रहार की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। फिल्म में राजकुमार राव वकील उज्जवल निकम के किरदार में नजर आएंगे। दिनेश विजन के प्रोडक्शन और अविनाश अरुण के निर्देशन में बनी ये फिल्म अब 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और तरुण शर्मा भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी उज्जवल निकम के जीवन और न्याय के लिए उनकी लड़ाई पर केंद्रित है।
4: गोली मारो इसे, खत्म करो जल्दी। नहीं,
1: इंटरनेशनल एक्शन फिल्म सेवन डॉग्स का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो गया है और फिल्म में इंटरनेशनल सितारों के साथ सलमान खान और संजय दत्त भी नजर आएंगे। फिल्म में मिस्र के सुपरस्टार अहमद एज और करीम अब्दुल अजीज के अलावा मोनिका बेलुची और जियान कार्लो एस्पोसिटो भी अहम भूमिकाओं में हैं। सेवन डॉग्स भारत में 21 अगस्त को हिंदी और इंग्लिश में रिलीज होगी। फिल्म को आदिल अल अरबी और बिलाल फलाह ने डायरेक्ट किया है, जो बैड बॉयज फॉर लाइफ और राइड और डाई जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।
5: सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का।
1: गुजराती सिनेमा की आगामी कॉमेडी ड्रामा फिल्म असंभव का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म इंसानों और कुत्तों के बीच के दिल छू लेने वाले रिश्ते को कहानी का आधार बनाती है। फिल्म को आनंद पंडित और वैशाल शाह ने प्रोड्यूस किया है, जबकि इसकी कहानी लिखने और निर्देशन की जिम्मेदारी पार्थ त्रिवेदी ने संभाली है। फिल्म में मित्रा गढ़वी, रौनक कामदार, शिवानी भारद्वाज और तत्सत मुंशी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। असंभव 4 सितंबर यानी जन्माष्टमी के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ट्रेलर में कॉमेडी के साथ इमोशनल कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है।
6: अनवर को तो पड़
7: एक मिनट, अनवर तो हूँ टोपा,
6: जानवर अनवर ना बनी सके।
1: एक्शन कॉमेडी और सस्पेंस का तड़का लगाने वाली फिल्म हार्ड डिस्क का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म को उदय राज बरुआ ने लिखा है और निर्देशित किया है। कहानी में एक्शन और कॉमेडी के साथ सस्पेंस और थ्रिल का रोमांच देखने को मिलेगा। फिल्म में नंदा यादव, जयहिंद कुमार और अर्णव चंदेल मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा राहुल अरोड़ा, सिद्धार्थ मुखर्जी और छवि गौरगई भी अहम किरदार निभा रहे हैं। हार्ड डिस्क 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को उदय राज बरुआ, नंदा यादव और अभिषेक तिवारी ने प्रोड्यूस किया है। कोर्टरूम ड्रामा, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर का कॉम्बिनेशन लेकर आ रही फिल्म लव लॉटरी का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हो गया है। फिल्म पुरुषों के अधिकारों जैसे विषय को कहानी के केंद्र में रखती है। और इसे सच्ची घटना से प्रेरित बताया गया है। फिल्म में अक्षय ओबेरॉय और हेली दारोवाला मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके साथ कबीर दुहन सिंह, हेमंत पांडे, विजयंत कोहली, इंदिरा कृष्णन और संतोष शुक्ला भी नजर आएंगे। कुलदीप भार्गव के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का निर्देशन अरविंद पांडे ने किया है। लव लॉटरी 18 सितंबर को रिलीज होगी।
2: न्यूज पक में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर दिखा जवानों का जोश। बीटिंग रिट्रीट के फाइनल रिहर्सल में बीएसएफ के जवानों ने की पारंपरिक ड्रिल। देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल। बड़ा तालाब में नावों पर निकाली गई तिरंगा रैली, हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न की शिरकत की।

मध्य प्रदेश के आगरमालवा से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें, हजारों महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर निकाली यात्रा, होली की भक्ति में झूमा शहर। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान घेवर का नया अंदाज, बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर, 21,000 रुपए में मिल रहा स्वर्ण श्रृंगार घेवर। रायपुर में दिखी बदलाव की बयार, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक।

0: दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। यूपी समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में 19 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। चलिए न्यूज पत्र खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: फुकुशिमा का मशहूर अवा ओडोरी डांस इन नन्ही बच्चियों की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। बच्चियों का डांस इतना शानदार है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। हाथों के खूबसूरत मूवमेंट हो या पैरों का जबरदस्त बैलेंस, हर स्टेप बिल्कुल सटीक नजर आ रहा है। सबसे खास है इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, जो पूरे डांस में जान डाल रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को तो पहली नजर में लगा कि ये कोई AI से बनाया गया डांस है, लेकिन ये सच में बच्चियां ही हैं। माँ आखिर माँ होती है, अपने बच्चे को हारते हुए भला कैसे देख सकती है। इस वीडियो में एक बच्ची और गोरिल्ला के बच्चे के बीच रस्सी को लेकर खींचतान चल रही है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। तभी बच्चे की माँ भी मैदान में उतर आती है। माँ ने रस्सी पकड़ी और जोर लगाकर अपने बच्चे को जीत दिला दी। वीडियो सामने आने के बाद लोग माँ के इस अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं और इसे माँ का प्यार बता रहे हैं। गाना बजा तो बच्चों के कदम भी थिरकने लगे और देखते ही देखते क्लासरूम डांस फ्लोर बन गया। दरअसल क्लास खत्म होने के बाद बच्चों का डांस कराया गया था। इस दौरान इन नन्ही बच्चियों ने अपने डांस से ऐसा समा बांधा कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। स्टेप से लेकर स्टाइल तक सब कुछ बेहद शानदार नजर आया। वहीं चेहरे के एक्सप्रेशन और अदाओं ने इस डांस को और भी खास बना दिया। बच्चियों का ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामा के घर आकर डोरेमोन देखने वाला ये भांजा अब खुद डोरेमोन बन गया है। बच्ची ने अपनी पैंट की जेब को ही डोरेमोन की पॉकेट बना ली और उसमें घर का सामान छुपा कर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके जेब से सामान निकालने लगा, जैसे डोरेमोन अपने गैजेट निकाल रहा हो। कभी कोई चीज तो कभी कुछ और, बच्चे का ये अंदाज देखने में बेहद मजेदार है। घर के सामान को अपनी जेब में छुपा कर जिस तरह बच्चा उसे निकाल कर दे रहा है, उसकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया। मैडम जी ने पूरी क्लास लगा रखी है, बच्चे लाइन से बैठे हैं, सामने किताबें खुली हैं और मैडम के हाथ में डंडा भी मौजूद है। गलती की तो डांट पक्की, क्योंकि मैडम की नजर से कोई बच नहीं सकता। दरअसल ये छोटी बच्ची अपनी सभी गुड़ियों को एक साथ बैठा कर उन्हें पढ़ा रही है। किताब खोलकर बाकायदा क्लास चल रही है और मैडम बड़े ध्यान से सभी बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं। बच्ची का ये अंदाज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले भी कह रहे हैं, पढ़ाई करो बच्चों वरना मैडम देख ही रही हैं।
0: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र के पुणे शहर की। पुणे में चाकण इंडस्ट्रियल एरिया से एक बड़ी चौंकाने वाली और चिंताजनक खबर सामने आई। पुणे के चाकण में गड्ढों से बदहाल सड़कें और लगातार ट्रैफिक जाम अब यहां के उद्योगों के लिए मुसीबत बन गया है। दावा किया जा रहा है कि इलाके में रोजाना ट्रैफिक की समस्या से परेशान करीब 20 कंपनियां चाकण MIDC से शिफ्ट होने का मन बना रही है। इन कंपनियों का कुल टर्नओवर लगभग 1,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अगर ये कंपनियां पुणे से बाहर जाती है तो इसका सीधा असर इन कंपनियों में काम करने वाले लगभग 4,000 कर्मचारियों की रोजी रोटी पर पड़ सकता है। पुणे में हमारे सहयोगी श्री कृष्ण पांचाल ने स्थिति का जायजा लिया और इलाके में मौजूद कंपनियों के मालिक और स्टाफ से बात कर उनकी राय जानी।
2: पुणे के चाकण MIDC एरिया में है और यहाँ पे आप देख सकते कि कितनी बड़ी कतार जो है वाहनों की लगी है और इसका कारण यहाँ पर बहुत सारे खड्डे हैं। हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर बड़ा खड्डा है और इस खड्डे की वजह से ये सब भीड़ दिखाई दे रही है। इस भीड़ की वजह से और कुछ और तकनीकी की वजह से यहाँ की जो 20 कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 1,000 से भी ज्यादा है, ये कंपनियां जो लघु उद्योग है वो जाने की कगार पर है। देखिए कितनी दूर तक यहाँ पे लाइन लग चुकी है। हम इन वाहन चालकों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बताना चाहोगे, कितनी देर तक यहाँ पे लाइन में खड़े हो? नीचे कीजिए थोड़ा।
3: एक घंटा हो गया।
2: अच्छा,
3: एक डेढ़ घंटा हो गया लाइन में। हाँ। बहुत ट्रैफिक है।
2: अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये हर दिन रहता है ऐसा?
3: हर दिन रहता है, एक दिन का नहीं, हर दिन रहता है।
2: तो प्रशासन से क्या कहना चाहोगे आप?
3: चलो ट्रैफिक आ गए
2: तो देखिए, और यहाँ के जो अधिक जो लोग हैं उनसे बात करने, ये हर दिन रहता है इस तरह का ट्रैफिक?
4: पूरा 24 आवर्स यही रहता है, सुबह से लेकर शाम 9 बजे तक यही रहता है। हाँ। हमें 10 किलोमीटर जाने में डेढ़ घंटा लगता है रोज, रोज का यही है।
2: नहीं, इसी ट्रैफिक और दूसरी जो समस्या है इनकी वजह से 20 कंपनियां जो है जो बाहर जाने की आशंका जताई जा रही है।
4: अभी वो पूरा तो बाहर नहीं जाएगी, लेकिन जो उनका प्रोडक्शन है ना वो डाउन हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो इधर प्रोडक्शन आने वाला है वो दूसरी तरफ जाएगा, न्यू प्रोडक्शन लाइन इधर नहीं आएगी।
2: देखिए यहाँ पे गड्ढे हैं, और ये जो गड्ढे हैं कितने बड़े गड्ढे हैं आप देख सकते हैं, और इस वजह से ये पूरी जो लाइन है वो दिखाई दे रही है, और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं पूरी तरह वाहनों की कतार जो है लगी है, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर तक ये कतार है।
5: चाकन एरिया में बहुत सारे स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं जिनको हम लोग SME बोलते हैं, उनकी समस्याओं को 2 साल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय और बाकी के कलेक्टर, PMRDA, MIDC इन सभी लोगों से बात करने के बावजूद हम लोगों को इसमें जो ट्रैफिक कंजेशन के जो इश्यूज है उसके कारण जो स्ट्रेस आ रहा है, उसके कारण जो इनएफिशिएंसीज हमारे लोगों के, उसके कारण जो एब्सेंटिज्म आ रहा है, उसके कारण हम लोगों को रिक्रूटमेंट में जो दिक्कतें आ रही है उसमें हमें उपाय नहीं मिल रहा है। लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ नहीं और कहीं जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ आने में ट्रैफिक कंजेशन का बहुत बड़ा इशू है, इसके लिए हम लोग आपके यहाँ आना नहीं चाहते।
6: MSIDC, PMRDA ऐसी एजेंसियाँ हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए वो हुआ नहीं है, उस वजह से रोड में 4-4 किलोमीटर के जाम लग रहे हैं, और समय पे जो हमारे एम्प्लॉय है वो काम पे पहुँच नहीं रहे, हमारी जो शिफ्ट है वो 1-1.5 घंटा डिले हो रही है, उस कारण हमारा प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, सप्लाई रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है समय पे, फिनिश गुड समय पे जा नहीं रहा है, दूसरी तरफ हमारा जो कर्जा है वो भी चालू है, वो हम कैसे पे करेंगे, 10% का डायरेक्ट लॉस है, मार्जिन भी उतना ही है प्रॉफिट का, तो उसमें मेंटेनेंस आ गया वो कहाँ से करेंगे, तो इंडस्ट्री का सर्वाइवल का इशू है।
7: हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं रोड की समस्या, ट्रैफिक जाम, और जो एम्प्लॉयज और जो भुगत रहे एम्बुलेंस लेट होने के वजह से, जो कर्मचारी एक्सीडेंट होने के बाद अस्पताल में देरी से पहुंचते हैं, और जो कर्मचारी काम के लिए घर से निकलते हैं 5 बजे और पहुंचेंगे, ऐसा टाइम हमारा टाइम है कि 1 घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए, लेकिन पहुंचते मॉर्निंग को 8 बजे, दोपहर में निकलते 1 बजे, पहुंचना चाहिए 3 बजे, पहुंचते 5 बजे। ये जो टाइमिंग है 1-1.5 घंटा या 2 घंटे का टाइमिंग, ये 3-3 घंटा ट्रैवलिंग क्यों हो रहा है? ये हमने सरकार से जब पूछा तब हमें जवाब मिला कि हम उस पर काम कर रहे हैं, PMRDA उस पर काम कर रहा है, उस पर वर्किंग हो रहा है, लेकिन ये जो वर्किंग है ये पूरा पेपर बेस्ड वर्किंग है।
8: मेरी दिक्कत है कि जो रास्ता 30 मिनट में ख़त्म होना चाहिए वो रास्ते के लिए 2-2 घंटे हमें लगते हैं, मतलब चाकन से यहाँ पिंपरी चिंचोड़ में आना है तो 30 मिनट में 20 किलोमीटर के लिए 30 मिनट बहुत हो गए, लेकिन 2-2 घंटे रास्ते पे चलना पड़ता है, इतने खड्डे हैं, बाइक चलाना, कार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है सब लोगों के लिए। अभी लास्ट मंथ की बात है, जुलाई मंथ में 6 तारीख को बहुत बारिश थी, तो 4 दिन के लिए हमारी कंपनी बंद थी, कि लगभग 3 करोड़ का लॉस हो गया कंपनी का, मतलब ये इतना डेंजर लेवल पे प्रॉब्लम है लोगों के लिए। ये खाली एक कंपनी की बात नहीं है, ये 7,000-8,000 कंपनी है चाकन एरिया में, और वहाँ काम करने वाले 1 लाख के आसपास लोग रह गए, 50,000-1 लाख जो भी रह गए, वो सबका प्रॉब्लम ही हो।
9: एज पर आवर इंफॉर्मेशन ये जो 20 कंपनियां हैं उसमें से बस 4 ही कंपनी जो है वो MIDC के अंदर है, बाकी की जो कंपनीज है वो चाकन MIDC के अंदर नहीं है, वो आजू बाजू में है, और जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने एसोसिएशन के साथ भी बात किया है कि उनका काम चालू है ऑन साइट पे और मार्च 2027 तक वो खत्म हो जाए।
10: जो गड्ढे है वो MIDC के जो जुरिडिक्स है, MIDC के जुरिडिक्स के अंदर जो गड्ढे है वो उसको जिम्मेदार MIDC है।
2: MIDC का कहना है कि हमारे यहाँ सिर्फ जो है 4 जो कंपनियां है जो बाहर है, बाकी सब जो MIDC के अंदर है वो सब अच्छा है और उसके रास्ते भी अच्छे हैं।
10: खड्डे की जो चर्चा हुई है वो पूरे एमआरडीसी के जुरिडिक्स में जो खड्डे है उन्हीं की चर्चा हुई है, उसका जिम्मेदार एमआरडीसी है एजेंसी। हमारे जो पीएमआरडी के साथ रोड से वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, खड्डे का प्रश्न।
0: आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज बात बिहार के कटिहार जिले की दिव्यांग लक्ष्मी की करेंगे, जिसका हौसला, मेहनत और लगन लोगों को हैरान कर रहा है। बचपन से ही लक्ष्मी के दोनों हाथ नहीं है, पैरों से ही सारा काम करती है। माता पिता मजदूर हैं, आर्थिक तंगी के बीच भी लक्ष्मी ने सपना देखा है टीचर बनने का, और इसके लिए वो हर दिन स्कूल आती है, मन लगाकर पढ़ाई करती है और आम बच्चों की तरह हर काम खुद से करती है।

0: मासूम लक्ष्मी दोनों हाथ नहीं है, बचपन से ही पैरों से ही हाथ का काम लेती है, मगर किसी काम में पीछे नहीं रहती। घर हो या स्कूल, आम बच्चों की तरह अपना हर काम खुद करती है, किताबें खुद निकालती हैं, हाथ की जगह पांव से लिखती हैं। चौथी कक्षा में है, रोज स्कूल आती है, मन लगाकर पढ़ाई करती है, शिक्षकों को शिकायत का मौका नहीं देती, सपनों की उड़ान भरना चाहती है, अपना भविष्य संवारना चाहती है, पढ़ लिख कर शिक्षिका बनना चाहती है।
1: कब से नहीं है?
2: बचपन है।
1: तो कैसे पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं?
2: पैर से।
1: पैर से ही सब कब होते हैं?
2: हाँ।
1: खाना होना कैसे खाते हैं?
2: पैर से।
1: तो स्कूल में आते हैं तो चिढ़ाता रहता भी है क्या?
2: हाँ।
1: क्या बोलता है?
2: बेटा क्या तुम्हारा हाथ नहीं?
1: तो अब क्या बनना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई करके?
2: टीचर।
1: टीचर बनना चाहते हैं?
2: हाँ।
1: कौन क्लास में पढ़ते हैं?
2: चार।
0: सपने बड़े हैं, सो मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं है। शायद इस नन्ही सी उम्र में ही लक्ष्मी ने अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर जीना सीख लिया है। माँ भी नहीं डगमगाई थी जब लक्ष्मी बिना हाथों के पैदा हुई। लोगों ने कहा बोझ बन जाएगी, लेकिन माँ ने जन्म दिया था, खुद से अलग कैसे कर सकती थी। ईश्वर का उपहार मानकर संभाल रही हैं, हौसला बनकर उनके साथ खड़ी हैं। पर आर्थिक तंगी उन्हें कभी कभी कमजोर कर देती है। कहती हैं हम मजदूर हैं, बेटी को कहाँ तक सिर्फ हौसलों से पंख दे पाएंगे।
1: लक्ष्मी का जब जन्म हुआ था क्या बोलते थे लोग, क्या बोलते थे?
2: कोई बोलता था फेंक दो, कोई बोलता था नहीं लक्ष्मी आई है रहने दो। हम लोग बोले कि नहीं, हम जन्म दिए हैं तो रखेंगे इसको, काहे फेंकेंगे, अपना नसीब से ही खाएगा, हम लोग खिलेबे करेंगे। जो कोई बोलता था सरकार भी इसको लाभ देगा।
1: आप लोग क्या काम करते हैं?
2: मजदूरी करते हैं सर। सरकार से सोचते हैं बच्चा का भविष्य बना दे, कोई लाभ दे इसको पढ़ाई लिखाई में। हम लोग गरीब हैं, कहाँ से लाएंगे सर, चार चार बच्चा पालते हैं, कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं।
0: कटिहार के हसनगंज प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय भतौरिया के प्रिंसिपल और लक्ष्मी की क्लास टीचर भी उसके अनुशासित व्यवहार, लगन और मेहनत के कायल हैं।
3: तीन स्कूल आती है ये है, और अच्छा मन लगा के पढ़ती भी है सर। ऐसा हाँ ललक बहुत है इसको, चाहत कुछ सिखाते हैं, एक बार सिखाते हैं तो ये नहीं कि हमको दोबारा वो मौका देगी, सो नहीं, वो बना के ला के दिखाती है। इसके पीछे थोड़ा सा यदि सरकार ध्यान दे दे सर तो
4: बल्ला के देन कहिए जी। पाँव से ही लिखती है, पाँव से ही चम्मच के द्वारा खाना खाते हैं, नहीं रहता है तो कोई अगल बगल में इनसे बड़ी बच्ची को बिठा देते हैं, और ताकि ये भूखल नहीं रहे, MDM का खाना जो बनता है विद्यालय में खाए। क्लास टीचर को स्पेशली बोला हुआ है इस बच्चा पे खास करके ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि बच्चा स्कूल आवे और सही सलामत घर चले जाए।
0: ये लक्ष्मी की मासूमियत, उसकी कर्मठता, जीवटता ही है कि हर कोई उससे प्यार करता है, उसकी मदद करना चाहता है। स्थानीय अखबारों में लक्ष्मी की कहानी पढ़ने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी लक्ष्मी से मिलने पहुंचे और उसे सरकार के समाज कल्याण विभाग से मिलने वाले सभी सरकारी लाभ दिलाने की कोशिश में जुटे हैं।
5: समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ कि ऐसी बच्ची है दिव्यांग, तो हम लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम विद्यालय गई और वहाँ उस बच्ची से मुलाकात किया गया, और हमने वहाँ पर देखा कि उनके पास जो है UDID कार्ड ऑलरेडी पहले से बना हुआ है पिछले साल का, तो UDID कार्ड उनको पहले से प्राप्त है, इसलिए हमने उच्च स्तर पर जो है संबंधित सामाजिक प्रसंग में बात किया, और उस अब आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो समाज कल्याण विभाग के द्वारा उस बच्ची को जो भी फायदा होगा वो सरकारी सहायता मिल सकती है।
0: लक्ष्मी की जीवटता संदेश है उन सब के लिए जो मुश्किलों में हार मान जाते हैं। लक्ष्मी का हौसला एक मिसाल है जो बताता है कि जब रास्ता दिखाई न दे तो रास्ते बनाने पड़ते हैं। कटिहार से विपुल राहुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मचाएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर। लेह में लद्दाख का पहला आर्टिफिशियल आइस हॉकी रिंक खुल गया है। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
0: श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट में भारत 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर उतार सकता है। टीम के बॉलिंग कोच मोर्नी मोरकल ने इसके संकेत दिए हैं। उनके मुताबिक टीम कुलदीप यादव, मानव सुथार और रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में मौका दे सकती है। तीनों गेंदबाज के स्किल्स अलग अलग है। कुलदीप बाएं हाथ के कलाई वाले स्पिन से गेंदबाजी करते हैं, जडेजा लगातार विकेट पर गेंदबाजी करते हैं, वहीं सुथार ऊंचे कद के साथ पुराने दौर वाली बाएं हाथ के स्पिन डालते हैं। हालांकि मोरकल का मानना है कि कप्तान शुभमन गिल इन गेंदबाजों का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये उन पर निर्भर होगा। भारत ने नाइजीरिया के लागोस में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में पहली बार ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारतीय फेंसर्स ने सीनियर और अंडर 23 कैटेगरी में कुल 35 मेडल जीते। इस प्रदर्शन के लिए भारत को विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी भी मिली। ये कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन की ओर से चैंपियनशिप में सबसे अच्छे ओवरऑल प्रदर्शन के लिए दी जाती है। भारत ने पहली बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। लेह में लद्दाख के पहले आर्टिफिशियल आइस हॉकी रिंक का उद्घाटन हुआ। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इसका शुभारंभ किया। लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अत्याधुनिक रिंक में 24/7 चिलिंग सुविधा है, जिससे आइस हॉकी खिलाड़ी मौसम की परवाह किए बिना साल भर ट्रेनिंग कर सकते हैं।
6: तो इसी के साथ मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: आप दोनों में से सबसे अच्छा रैपर कौन है?
8: मैं हूँ। यो यो।
7: अरे क्या हुआ अम्मा?
8: अरे मैं हूँ ना रैपर, इसको गाना गाना नहीं आता, रैपर बनेगी
7: है? अभी पता लग जाएगा।
8: हाँ।
7: पहले सुनाओ आप।
8: पहाड़ों में घर हरे हरे पत्ते, गाना गाना नहीं आ रहा, तू बनेगी रैपर?
7: आप सुनाओ फिर।
8: ओहो,
9: सास बहू की ये जोड़ी सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। वीडियो में बहू कुछ कहने लगती है, तभी सास उसे चुप कराते हुए बड़े ही मजेदार अंदाज में कहती है, मैं हूँ रैपर। इसके बाद सास का रैप शुरू होता है। उनका अंदाज, कॉन्फिडेंस और रैप करने का तरीका इतना मजेदार है कि बहू भी हंसने लगती है। वीडियो देखने वाले भी सास के इस टैलेंट को देख कर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, इस गाने पर बच्ची का शानदार एक्सप्रेशन देखकर आप भी उसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। बच्ची एक एक लिरिक्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाती हुई डांस कर रही है। चेहरे के एक्सप्रेशन से लेकर उसके अंदाज तक हर चीज देखने लायक है। बच्ची की मासूमियत और जबरदस्त परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है। यही वजह है कि वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
0: स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर दिखा जवानों का जोश, बीटिंग रिट्रीट के फाइनल रिहर्सल में BSF के जांबाजों ने की पारंपरिक ड्रिल।
10: देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल, बड़ा तालाब में नावों का निकले तिरंगा रैली, हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न में की शिरकत। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें, हजारों महिलाओं ने सर पर कलश रखकर निकाली यात्रा, भोले की भक्ति में लीन नजर आई महिलाएं। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान का नया अंदाज, बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर, स्वर्ण श्रृंगार घेवर की कीमत 21,000 रुपए। रायपुर में देखिए बदलाव वाली गुड न्यूज, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक।

नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं जश्न आजादी की और जश्न के इस माहौल में अभूतपूर्व सुरक्षा की। 15 अगस्त को देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लाल किले पर शान से तिरंगा लहराएगा, लेकिन इस जश्न की सुरक्षा के लिए लाल किले को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। न सिर्फ लाल किले बल्कि पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। 20,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी राजधानी की सुरक्षा घेरे में तैनात हैं। आज 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली की फुल प्रूफ सुरक्षा पर बात होगी। समझेंगे कि इस दौरान दिल्ली में क्या क्या पाबंदियां रहेंगी और ट्रैफिक रूट कैसा रहेगा। इसके अलावा चलेंगे राजस्थान की सरहद पर, जहां पर बीएसएफ 15 अगस्त को देखते हुए ऑपरेशन अलर्ट चला रही है। करते हैं दिल्ली से। आजादी के जश्न से पहले राजधानी दिल्ली पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में है और लाल किला एक अभेद किला बन चुका है। साथ ही आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हजारों पुलिस कर्मियों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और विशेष सुरक्षा दस्ते तैनात किए गए हैं। तमाम आधुनिक उपकरणों से लैस सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए हमारे संवाददाता मनीषा की रिपोर्ट।

0: आजादी हम सब के लिए बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, उसके मायने हर इंसान के लिए जरूर अलग अलग हो सकते हैं। आजादी से सांस लेना भी आजादी है, आजादी से काम करना भी आजादी है, किसी के लिए घर से बाहर निकलना आजादी है तो कोई नाचने गाने खाने पीने को आजादी मानता है। आजादी दरअसल वो एहसास है जो हमें जीने का मकसद देती है, और 80 साल से इसी आजादी को सलामत रखा है इस हिंदुस्तान। हर बरस इसका जश्न देश के ऐतिहासिक धरोहर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर हर हिंदुस्तानी मनाता है। लेकिन इसके साथ ही हमारी आजादी पर बुरी नजर रखने वाले भी कम नहीं हैं, जो हर बरस हमारी आजादी के जश्न में खलल डालने की ताक में रहते हैं, और वो भूल जाते हैं कि वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उससे पहले उन्हें हमारे सुरक्षा जवान और दिल्ली पुलिस से पार पाना होगा। 20,000 दिल्ली पुलिस के जवान, पैरा मिलिट्री फोर्स, एनएसजी और सीआरपीएफ के कमांडो, हाई राइज बिल्डिंग पर निशानेबाज और स्नाइपर, 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, चेहरे को पढ़ने वाले 75 फेस रिकॉग्निशन कैमरे, पुलिस और कमांडो के स्नाइपर्स, खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी, जगह जगह लगे एंटी ड्रोन सिस्टम, पूरी दिल्ली में नो फ्लाई जोन, पतंगबाजी पर पूरी तरह रोक, QRT यानी इमरजेंसी में एक्शन लेने वाली टीम, NDRF की टीम किसी भी आपदा के लिए तैयार है।
1: जो फंक्शन के वेन्यू की बात करें तो उसके ऊपर हम लोगों ने काफी डिप्लॉयमेंट हमारा रहता है मैन पावर का, उसमें दिल्ली पुलिस की ही कई सारी यूनिट्स रहती हैं, लोकल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से रहती है, उसके अलावा ट्रैफिक रहता है, सिक्योरिटी रहती है, स्पेशल सेल रहता है, स्पेशल ब्रांच रहती है, PCR रहती है, तो ये सारी यूनिट्स वहाँ पे काम में अपने अपने रोल को निभाती हैं। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत टुकड़ियाँ होती हैं, कमांडोज होते हैं जिनको हम लोग कंटिजेंसी रिस्पांस वगैरह के लिए भी रखते हैं, NSG भी रहती है, हिट टीम्स रहती हैं जिसके अंदर हम लोग उनका 15,000 से 20,000 के आसपास का डिप्लॉयमेंट रहता है।
0: ये तो सिर्फ एक झलक है सुरक्षा से जुड़ी उन तैयारियों की जो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर और उसके आसपास देखी जाएगी। पर कुछ तैयारियां तो ऐसी है जो दिखाई तक नहीं देंगी। जमीन और आसमान के अलावा हवा तक पर नजरें हैं कि कहीं इस हवा को कोई जहरीला ना बना दे। बायो वेपन से लेकर केमिकल वेपन तक से कैसे निपटना है इसके लिए भी दिल्ली पुलिस पूरी तरह तैयार है। वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली 365 दिन और 2400 घंटे हाई अलर्ट पर रहती है, लेकिन जब मौका 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का हो और इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार दिल्ली के आतंकवादियों के निशाने पर रहने का अलर्ट भेज रही हो, तो सुरक्षा व्यवस्था का अभूतपूर्व होना लाजमी है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त के लिए सुरक्षा इंतजामों की शुरुआत करीब महीने भर पहले से ही शुरू कर दी थी। अब जब आजादी के जश्न के सबसे बड़े जलसे के महज चंद घंटे बाकी बचे हैं, तो दिल्ली पुलिस ने अपनी ये सुरक्षा व्यवस्था कुछ इतनी दुरुस्त कर ली है कि इसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है।
1: देखिए, 15 अगस्त हमारा बहुत बड़ा फंक्शन है दिल्ली पुलिस का, जो लाल किले पे हर साल होता है, जिसको लेकर बहुत ही डिटेल में और काफी समय पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, तो कई महीनों से हम लोग इसकी तैयारियां कर रहे हैं।

0: डीलर्स हो गए, सिम कार्ड डीलर्स हो गए, सोशल मीडिया पे जो चैटर चल रहा है उसकी हो गई।
1: स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को सिर्फ इसके इंतजामों पर एक निगाह डालकर ही आसानी से समझा जा सकता है। लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण से पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं। कार्यक्रम की सुरक्षा और उसके सुपरविजन का काम दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर DCP की निगरानी में हो रहा है। पिछले 15 दिनों से शहर में आने जाने वाले तमाम बॉर्डर पर सख्त चेकिंग चल रही है। यहाँ तक कि शहर के होटल गेस्ट हाउस की गहन जांच चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए दिल्ली पुलिस पड़ोसी राज्यों की पुलिस के भी लगातार संपर्क में है। ड्रोन और पतंगबाजी दिल्ली में इस वक्त सख्त मना है। कोई सुरक्षा घेरे को ना तोड़ पाए, इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा मैनुअल पुलिसिंग और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम भी चल रहा है। AI बेस्ड CCTV से वांटेड बदमाश और आतंकवादियों की पहचान की जाएगी। दिल्ली पुलिस संदिग्ध और फरार आतंकियों की तस्वीरों वाले पोस्टर भी जगह जगह लगा रही है, ताकि अगर ऐसे नापाक इरादे वाले लोग शहर में या आसपास देखे जाएं, तो फौरन उसकी खबर पुलिस को मिल सके। पुलिस ने स्पेशल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाया है, जिससे ऐसे संदिग्ध चेहरों की फौरन पहचान हो सके। असल में ये एक तरह का डाटा बैंक है, जिसमें अगर संदिग्ध और फरार आतंकी नजर आते हैं तो ये फौरन कंट्रोल रूम में अलर्ट भेजता है और इससे ऐसे संदिग्ध लोगों को फौरन इंटरसेप्ट करना मुमकिन हो जाता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये FRS यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जब फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है अंदर आने के लिए, तो वहाँ पर भी ये CCTV AI बेस्ड कैमरे लगाए जाते हैं, जिसमें ये चेहरों को रिकॉग्नाइज करता है। इनमें वो सभी चेहरे शामिल होते हैं जो किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से पुलिस की रडार पर है, चाहे वो छोटे क्राइम की वजह से हो, बड़े क्राइम की वजह से हो, सीरियस ऑफेंस की वजह से हो, सभी जितने भी पुलिस की नज़र पर हैं वो इस CCTV कैमरे में कैद हो जाएंगे। और अगर वो पुलिस की लिस्ट में पहले से ही है तो पुलिस का ये जो AI बेस्ड CCTV सिस्टम है, जो कैमरा है, वो उसे फौरन ही पकड़ लेगा। पूरी दिल्ली को CCTV निगरानी में रखा गया है। एक एक हरकत पर दिल्ली पुलिस की नजर है, हर पल निगरानी की जा रही है।
0: CCTV कैमरों का हम बहुत ही इंटेंसिव यूज कर रहे हैं। 1,000 से ऊपर CCTV कैमरे हम लोगों ने लगवाए हैं, जिसमें जरूरत के मुताबिक कई जगहों पे CCTV कैमरों के ऊपर AI बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स फीचर्स को भी एनेबल किया गया है, जिसमें FRS है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, इंट्रूजन डिटेक्शन है, ऐसी सारी टेक्निक्स को हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया है और इसकी मॉनिटरिंग और अलर्ट सिस्टम किया जा रहा है। उनके रिस्पॉन्स टीम्स भी हैं, ऑफिसर्स को हमने बॉडी वॉन कैमराज दिए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पे लगाया गया है। जो भी पब्लिक व्यूअर्स देखने आएंगे उन सबकी चेकिंग के लिए यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स के अंदर चेकिंग फ्रिस्किंग का सिस्टम भी लगाया गया है।
1: पूरी दिल्ली इस समय अभेद्य सुरक्षा घेरे में है। इस सुरक्षा घेरे को मजबूत करने में जिसकी सबसे अहम भूमिका है, वो है CCTV कैमरा। तस्वीर आप ये देखिए, ये वाली जो स्क्रीन है ये बता रही है कि कितने लोग एंटर कर रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, यानी कि जो नंबर्स है, जो काउंटिंग है, वो ये जो बार आपको दिख रहा है ये आपको दिखा रहा है। इसके अलावा ये जो CCTV कैमरे अलग अलग लोकेशंस के हैं, आसपास का जितना भी इलाका है जो इस दायरे में आता है, सुरक्षा घेरे में आता है, वो पूरी तरीके से CCTV से लैस है। गाड़ी का नंबर है वो भी यहाँ तक कि देखा जा रहा है। हर एक गाड़ी को, एक एक गाड़ी को जो है वो पूरी तरीके से नोटिसेबल है, नोटिस किया जा रहा है। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं वो 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं कि कहीं भी कोई भी चूक ना हो जाए। ये जहाँ पर ही पूरा कार्यक्रम होना है, जहाँ पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे, वहाँ का जो खास करके पूरा एरिया है उसको किस तरीके से CCTV से लैस किया गया है। ये कुर्सियाँ जहाँ पर लोग बैठेंगे, इसको यहाँ पर अगर कोई भी हलचल होती है तो फौरन वो पकड़ा जाएगा, अगर कोई भी कुछ भी करने की कोशिश करता है। ऊपर देखिए, इसके आसपास का पूरा इलाका वो पूरी तरीके से CCTV से लैस है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये जो मंच बना हुआ है उसके नीचे का इलाका है, नीचे की जगह है, और यहाँ पर भी अगर कोई जंप करता है, कोई आता है या कोई भी ऐसी गतिविधि करने की कोशिश करता है तो वो फौरन ही पकड़ा जाएगा। यहाँ पर क्लिक होगा और वो पकड़ा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर हर साल खासतौर पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन गड़बड़ी फैलाने या हमला करने की साजिश बुनते रहते हैं। इस बार भी पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा और खालिस्तानी संगठनों के 19 आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टर को दिल्ली में जगह जगह चिपकाया गया है, ताकि इनके नजर आते ही पुलिस को खबर मिल सके।
0: एंटी टेरर के अंदर हमारी जो

0: काफ़ी टाइम से तैयारी चल रही है दिल्ली पुलिस की, बहुत ही स्पेशलाइज यूनिट्स है, स्पेशल सेल वगैरह, वो इस पर बहुत ही अच्छे से काम कर ही रहे हैं। लोकल पुलिस के लेवल पे हम सब लोग इसके अंदर, हमारे एरिया के अंदर एक अवेयरनेस बढ़ाना, आईज एंड ईयर्स जो हमारी स्कीम है उसके तहत लोगों को जोड़ना कि किसी को कोई भी संदिग्ध कुछ भी वस्तु व्यक्ति या घटना दिखे तो हमको उसको खबर दे हमें। और उसके अलावा भी जो हमारे काउंटर टेरर यूनिट्स हर थाने के अंदर बनी हैं, अभी उन सबको एक्टिवेट करना कि जानकारी जुटाए, सोशल मीडिया जो चैटर है उसके उससे पता करे क्या घटना, क्या बात चल रही है, क्या सेंटिमेंट है।
1: दिल्ली पुलिस बाकी सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर भी पूरी तैयारी कर रही है, जिससे कि अगर एक बार में एक से ज्यादा जगह पर दुश्मन के नापाक इरादों की नजर पड़ जाए तो उससे कैसे निपटना है। और इस तैयारी को दिल्ली पुलिस ने नाम दिया सुदर्शन शक्ति वी। इस ड्रिल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल स्वाट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस, क्राइम ब्रांच, पीसीआर, मेट्रो यूनिट और आईजीआई एयरपोर्ट की टीमें भी शामिल रही। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हाईटेक और ट्रेंड एनएसजी, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, बीसीएएस, एएआई, डीएमआरसी, फायर सर्विस, एफएसएल, सीएटीएस, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग ने भी हिस्सा लिया। लाल किले की प्राचीर में सिर्फ वही दाखिल हो पाएंगे जिसके पास पहले से ही पास होगा। पीएम मोदी के भाषण को सामने से सुनने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए आपको दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कवच से होते हुए पीएम सिक्योरिटी, एसबीजी की पैनी नजरों के सामने से भी स्कैन होकर जाना होगा। कई लेयर्स को पार कर आप अपनी जगह तक पहुंच पाएंगे। हर परत में दाखिल होने के बाद आपकी बारीकी से जांच की जाएगी, मैनुअली चेकिंग, फ्रिस्किंग, स्कैनिंग, एक एक सामान की तलाशी, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी, स्नाइपर्स की तैनाती है। इन सभी नजरों से गुजरकर आप एक परत को पार करेंगे, लाल किले की उस प्राचीर जहां से पीएम मोदी देश को संदेश देंगे। उस जगह तक जाने के लिए कुल 6 रास्ते हैं और हर दरवाजे पर आपको इस सुरक्षा घेरे से होकर गुजरना ही होगा। लाल किले के परिसर में आने के लिए आपको अलग अलग सिक्योरिटी लेयर से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें आप पहले सीसीटीवी कैमरे में तो कैद हो ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक और सिक्योरिटी लेयर से होकर गुजरना होगा जो कि है चेकिंग और फ्रिस्किंग का। यानी ये जो दरवाज़ा है यहाँ पर चेकिंग और फ्रिस्किंग किया जाएगा, क्योंकि मैंने अपना सिक्योरिटी चेक पहले करवा लिया है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स मुझे फिलहाल नहीं रोकेंगे क्योंकि मैं आपको शूट करने के लिए बता रही हूँ। लेकिन ठीक इसी तरीके का दरवाज़ा, इसी तरह की चेकिंग फ्रिस्किंग आपको अलग अलग जगहों पर मिलेगी इस लाल किले परिसर के अंदर आने के लिए। और तकरीबन 6 दरवाजे यहाँ पर हैं और हर दरवाजा एक अलग यूनिट को डेडिकेटेड है।
0: टोटल अंदर जाने के आप देखें 4 गेट, तो 4 गेट पब्लिक के हैं और 2 वीआईपी गेट्स हैं। जो पब्लिक पर्सन आते हैं वो सबके 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी चेक रहता है उसके ऊपर, और उसके अलावा और जो ऑफिशियल्स हैं उन सबके भी उनके हिसाब से 1 लेयर, किसी पे 2 लेयर सिक्योरिटी चेक रहते हैं।
1: दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के अफसरों के साथ मिलकर दिल्ली के ट्रैफिक को कुछ वक्त के लिए दूसरा रास्ता दे दिया। दिल्ली में ट्रकों और भारी सामान ढोने वाली गाड़ियों की एंट्री को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया। सबसे पहले 12 अगस्त की शाम 5 बजे से होकर अगले दिन यानी 13 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहा, जबकि दूसरा चरण सबसे खास दिन स्वतंत्रता दिवस के लिए 14 अगस्त की शाम 5 बजे से पाबंदी फिर दोबारा शुरू होगी, जो कि 15 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक दिल्ली में ड्रोन समेत सभी तरह के छोटे हवाई प्लेटफॉर्म उड़ाने पर रोक लगी है। दिल्ली पुलिस ने यह आदेश दिया है कि ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट और विमान से पैरा जंपिंग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
0: नो फ्लाइट जोन तो अभी पूरे ही दिल्ली के अंदर सीपी साहब का ऑर्डर है, उसके अंदर तो जितने भी सब एरियल जो व्हीकल्स हैं या फिर ड्रोन्स हैं उन सबको प्रोहिबिट कर रखा है।
2: पतंगबाजी
0: पे हमने भी ऑर्डर इशू किया है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने, पतंगबाजी भी बैन की गई है। 163 बीएनएसएस का ऑर्डर भी उसके लिए पब्लिक प्रोमल्गेट किया गया है, और उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी पतंगबाजी होती है, बट इवेंट के टाइम पे वो बंद है, तो उसके बाद फिर लोग उड़ा सकेंगे, उस टाइम पे उड़ाएंगे तो फिर उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा और काइट कैचर्स भी हमने रखे हैं।
1: दिल्ली उतनी ही आपकी है जितनी दिल्ली पुलिस की, ये हम सब की दिल्ली है, इसीलिए दिल्ली पुलिस का कहना है कि आप दिल्ली पुलिस की आंख और कान बनिए और दिल्ली को महफूज रखने में उनकी मदद कीजिए।
0: हमारा यही मैसेज है कि आप लोग सुरक्षित रहें। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। 80वां स्वतंत्रता दिवस है और हम सब सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। हम किसी भी अफवाह का पार्ट न बने, ना फैलाएं, ना सुने, ना विश्वास करें, उसको वेरीफाई जरूर करें। और उसके अलावा हमारे आसपास कुछ भी संदिग्ध होता है तो उसको तुरंत पुलिस को सूचित करें, पुलिस के आंख और कान बने ताकि हम दिल्ली को सुरक्षित रख सकें और इस फंक्शन को भी बहुत ही शांतिपूर्वक सुरक्षित ढंग से निपटा सकें।
1: तो आइए और इस आजादी के जश्न में आप भी शामिल हो जाएं। जय।
3: स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा का दायरा सिर्फ लाल किले तक सीमित नहीं बल्कि सड़कों से लेकर यमुना तक फैला है। नदी में नावों के जरिए लगातार गश्त की जा रही है और यमुना के किनारे पर भी ये गश्त नजर आ रही है। इसके अलावा दिल्ली में संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी सुरक्षा चाक चौबंद है। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली में भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक है। कुछ रास्तों में भी फेरबदल किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए।

0: राजधानी की सड़कें हों या यमुना की लहरें, जमीन आसमान, गली बाजार, हवा और पानी, हर जगह हर हलचल पर नजर है। मौका है स्वतंत्रता दिवस का, इसीलिए दिल्ली इस वक्त सुरक्षा के ऐसे घेरे में है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। यमुना की लहरों पर आगे बढ़ती ये नाव सिर्फ नदी में गश्त नहीं कर रही, बल्कि उन तमाम इलाकों पर नजर रखे हुए है जहां से कोई संदिग्ध सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, इसीलिए लाल किला और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली में चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और राजधानी के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। सुरक्षा के नजरिए से लाल किले के नजदीक बहने वाली यमुना का मोर्चा भी बेहद अहम है। यमुना का पानी शांत दिखाई देता है, लेकिन इन दिनों इसकी लहरों पर भी चौकसी तेज है।
1: की सुरक्षा की किस तरीके की तैयारी की गई है यमुना नदी की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि सिर्फ सड़क और हवाई मार्ग नहीं बल्कि लाल किले के पीछे जो यमुना नदी बह रही है उस पर किस तरीके की तैयारी है। आप देखिए, हमारे साथ आपको दिल्ली पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे। इस तरीके की गश्त हो रही है जो पूरे दिल्ली बॉर्डर पर, जो पूरी यमुना नदी है दिल्ली में, उसको इस तरीके से नजर रखा जा रहा है। लाल किले की तरफ से होते हुए हम आप देखिए आईटीओ के पास पहुंच गए हैं और यहां पर आप देखिए इस तरीके की गश्त लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस पूरे सड़क मार्ग को उन्होंने पूरी तरीके से कवर किया हुआ, अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 10,000 जवानों को दिल्ली की सुरक्षा में तैनात किया गया है। खासतौर से लाल किले और आसपास के इलाके में ज्यादा तैनाती की गई है, अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे जो चेहरों को पहचान लें, उनका बैकग्राउंड खंगाल लें, ऐसे कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन नदी जिसके आसपास काफी सारा जंगल का इलाका रहता है, काफी खाली इलाका रहता है, हर जगह पर नजर रखी नहीं जा सकती है, तो ऐसे में ये यमुना नदी का कोई फायदा ना उठा ले, इधर से कोई आतंकी इस रास्ते को उपयोग करते हुए करीब ना पहुंच जाए, इसलिए चप्पे चप्पे पर लगातार नजर रखी जा रही है। 24 घंटे इस पूरी यमुना पर लगातार इसी तरीके से पेट्रोलिंग दिल्ली पुलिस के अधिकारी और तमाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारी नजर बना के रखे हुए हैं। सामने आप देखिए आईटीओ का जो पुल है वो आपको नजर आएगा, वहीं पीछे कुछ ही दूरी पर लाल किला है, तो इस पूरे इलाके में राउंड द क्लॉक आपको सिक्योरिटी नजर आएगी।
0: पुलिस कर्मी नावों के जरिए नदी में गश्त कर रहे हैं, किनारों से लेकर आसपास के इलाकों तक निगाह रखे हुए हैं। नदी के रास्ते कोई साजिश कामयाब ना हो, इसके लिए सुरक्षा कर्मी हर वक्त तैयार है। कहां कौन मौजूद है, किस तरह से आवाजाही हो रही है, कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं, इन तमाम पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। यमुना में ये गश्त इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि सुरक्षा का मकसद सिर्फ मुख्य आयोजन स्थल को सुरक्षित रखना नहीं बल्कि उससे जुड़े हर संभावित रास्ते पर भी नजर बनाए रखना है।
1: इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है ठीक सामने लाल किला है, यहाँ पर नदी है, नदी के बीच में कुछ खाली इलाका है जहाँ पर जंगल है। इन सभी जगहों पर, चाहे ये आपको जो खाली इलाका दिख रहा है जंगल, इन सभी जगहों पर पुलिस की निगाह है। और यमुना नदी में तो हम आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से गश्त हो रही है, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, भारत तिब्बत सीमा पुलिस लगातार राउंड द क्लॉक यहाँ पर नजर रखी जा रही है। ये हर इलाका जो निर्जन आपको दिख रहा है, इन सभी जगहों पर दिल्ली पुलिस की राउंड द क्लॉक निगाह है, लगातार एक एक शख्स पर, एक एक मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है। दिल्ली की लाल किले की तरफ आने वाले तमाम सड़कों पर ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो न सिर्फ अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो उसको पहचानेगा बल्कि पूरा डाटा निकाल के रख देगा। बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, दूसरे राज्यों से आने वालों पर नजर रखी जा रही है।
0: दिल्ली में भीड़भाड़ वाले इलाकों में हर जगह चेकिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। दक्षिणी दिल्ली में ही 1600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती है। अतिरिक्त पिकेट, वाहन जांच और ड्रोन निगरानी जैसे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी है, विशेष सुरक्षा टीमें और ऊंची इमारतों से निगरानी जैसे इंतजाम भी है। रास्तों पर नजर है, रूट्स में बदलाव किया गया है। जश्न आजादी है, देश और दिल्ली के लिए खुशियों का दिन है। इस खुशी के रंग में कोई दुश्मन भंग डालने की कोशिश न करे, इसीलिए सुरक्षा की अभेद दीवार तैयार है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अंशुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। आजादी से पहले सरहद पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजस्थान से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर तक जवान 24 घंटे निगरानी में जुटे हुए हैं। राजस्थान में पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है, जिसमें पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में चौकसी तेज हो गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बॉर्डर पार से घुसपैठ और ड्रोन से स्मगलिंग की साजिश हो सकती है, इसीलिए बीएसएफ के जवान सतर्क हैं। जैसलमेर में पुलिस के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है और इसी तरीके से पंजाब की सीमा पर भी बीएसएफ और पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। हर गाड़ी की तलाश ली जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। जम्मू या श्रीनगर आने वाले और जाने वाले हर शख्स पर कड़ी निगाह है। हर गाड़ी की तलाशी हो रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। उधमपुर में नेशनल हाईवे पर सुरक्षा पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई है। दिन हो या रात, जवान यहां लगातार तैनात हैं। उंगलियां ट्रिगर पर हैं, नजर दुश्मन पर। इस इलाके में जश्न आजादी से पहले बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई ताकि दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
1: और अब आज जागरूकता मुहिम की #NoMoreFakeClaims की, जो शुरू की है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान ने। इस मुहिम का उद्देश्य भ्रामक बढ़ा बढ़ा कर किए गए और बिना आधार वाले स्वास्थ्य दावों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। डॉक्टर प्रताप चौहान ने भ्रामक दावों को पूरे हेल्थ केयर के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बताया। ऐसे दावों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है। डॉक्टर चौहान ने आयुर्वेद की विश्वसनीयता को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर में अचारी बॉर्डर पर देखा जवानों का जोश, बीटिंग रिट्रीट के फाइनल रिहर्सल में बीएसएफ के जांबाजों ने की पारंपरिक ड्रिल। देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल, बड़ा तालाब में नावों की निकाली गई तिरंगा रैली, हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न में शिरकत की। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें, हजारों महिलाओं ने सर पर कलश रख कर निकाली यात्रा, भोले की भक्ति में झूमा पूरा शहर। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान घेवर का नया अंदाज, बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर, 21,000 रुपए में मिल रहा है स्वर्ण श्रृंगार घेवर। जयपुर में देखी बदलाव की बाया, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में रैंप वॉक किया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में बना आस्था और भक्ति का रिकॉर्ड, 14 दिन में 28,33,000 भक्तों ने जलार्पण किया। बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन में भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, बोलबम के जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। श्रावणी मेले में लगातार बढ़ रहा शिव भक्तों का तांता, चारों तरफ दिख रही मेले की भव्य रौनक, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा, मंदिर को 3,55,00,000 की हुई आमदनी। दूसरे राज्यों के वाहनों से 38,77,000 का शुल्क, पेड़ा सिंदूर समेत अन्य कारोबार में 2 करोड़ से ज्यादा की आय, औसाई बिजली कनेक्शन से मिले 55,00,000। गुजरात के वडनगर में श्रावणोत्सव का भव्य शुभारंभ, 108 कलाकारों ने एक साथ बजाया डमरू, दिखा आस्था का सैलाब। डमरू की गूंज से शुभमय हुआ वडनगर, शर्मिष्ठ तालाब से निकली भव्य डमरू यात्रा, हाटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची यात्रा। ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरी डमरू यात्रा, डिप्टी सीएम हर्ष सिंघवी ने खुद बजाया डमरू, श्रावण मेले में भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम। वडनगर में शुरू हुई हेरिटेज ऑटो सेवा, वडनगर की थीम पर डिजाइन किए गए ऑटो, हेरिटेज ऑटो पर्यटकों के लिए बना आकर्षण। भविष्य में 120-150 हेरिटेज ऑटो चलाने का लक्ष्य, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में निकली विशाल कलश यात्रा, 51,000 कलश लेकर निकली महिलाएं। आगर मालवा की सड़कें शुभ भक्ति में डूबी, हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। बैंड बाजों के साथ निकली भव्य यात्रा, जगह जगह हुआ कलश यात्रा का स्वागत। कलश में जल लेकर निकली शिव भक्त महिलाएं, बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंची विशाल यात्रा। भगवान बैजनाथ को चढ़ाया गया जल, श्रावण में शक्ति शिव भक्ति से भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। राम मंदिर के पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड, अब बिना सिले पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे पुजारी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पीला रंग भगवान श्री राम का प्रिय। 15 अगस्त से एक ही निर्धारित पोशाक में नजर आएंगे सभी पुजारी, निर्धारित ड्रेस के अनुसार नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय वस्त्र धारण करेंगे अर्चक। रेशम यानी कि सिल्क का होगा ये वस्त्र, रेशमी वस्त्र की पवित्रता और शुद्धता को ध्यान में रखते हुए ड्रेस में किया गया शामिल। सावन महीने में प्रयागराज के नाथेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़, ताले वाले महादेव मंदिर के नाम से जाने जाते भोलेनाथ। मंदिर में दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं के साथ मंदिर परिसर में लगाते हैं ताला, इच्छा पूरी होने पर श्रद्धालु दोबारा मंदिर पहुंचकर उसी ताले को खोलते हैं। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर एक बार फिर से दिखी देश के आन बान और शान, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। रिहर्सल में सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, एनसीसी कैडेट्स हुए शामिल, देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा देश के जवानों का जोश, पूरे जोश में कदम ताल करते नजर आए जवान। नाचिक बैंड ने बजाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन, स्वतंत्र भारत के गौरव की शानदार अनुभूति से सराबोर हुआ वातावरण। रिहर्सल के दौरान हेलीकॉप्टर्स से बरसाए गए फूल, शनिवार को आजादी के पर्व को मनाने के लिए देशभर से जुटेंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कल लाल किले के आसपास 7 सड़कें बंद रहेंगी, कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्शन लागू किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी, दिल्ली में 20,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। लाल किले के आसपास 1,000 सीसीटीवी कैमरे से नजर, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें रहेंगी मुस्तैद। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी, बॉर्डर पर हो रही सघन चेकिंग। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी, आरपीएफ जीआरपी ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड से प्लेटफॉर्म और परिसर की जांच। सहारनपुर में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, बुलडोजर से तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा, पोर्ट रोड पर दिखा अनोखा नजारा। बुलडोजर पर खड़े होकर बरसाए गए फूल, हर घर तिरंगा के नारों से गूंजा पूरा शहर, हर मन तिरंगा के नारों से उत्साह। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, अंबेडकर चौक से रामलीला मैदान तक यात्रा देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। मुजफ्फरपुर में बड़े धूमधाम से निकली तिरंगा यात्रा, सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे, देशभक्ति के नारों से गूंजा पूरा शहर। जगह जगह तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा, लोगों ने कार्यकर्ताओं को खिलाई मिठाइयां। लंगत सिंह कॉलेज से खुदीराम बोस स्मारक तक तिरंगा यात्रा। अमरावती में लग्जरी बस बनी मेडिकल ट्रेनिंग लैब, बस में सर्जरी सीख रहे मेडिकल छात्र, टांके लगाने की ले रहे हैं ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ व्हील्स में प्रैक्टिकल क्लास, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी सीख रहे हैं छात्र, मरीजों पर सर्जरी से पहले मिल रही है ट्रेनिंग। बस के अंदर बना हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर, प्रोफेसरों की निगरानी में सर्जरी की प्रैक्टिस, बढ़ रहा है मेडिकल छात्रों का आत्मविश्वास। मुजफ्फरपुर की सोनी गुप्ता बनी मिसेस बिहार 2026, पहली कोशिश में ही जीता खिताब, तीन बच्चों की मां ने रचा नया मुकाम। शादी के 17 साल बाद उतरी पेजन में, करीब 100 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ा, सोनी को मिला 50,000 रुपए का पुरस्कार। बेंगलुरु में शुरू हुआ भारत का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्वांटम कंप्यूटर, अलायंस यूनिवर्सिटी में लगा 8 क्यूबिट सिस्टम। कैंपस में क्वांटम एआई और रोबोटिक्स की पढ़ाई, भारत में क्वांटम एजुकेशन को मिली नई रफ्तार। एयू क्वेसर में एआई को खास लैब शुरू, छात्रों के लिए डीप टेक इनोवेशन पर जोर, टेक स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेटर भी शुरू। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में चमके मिर्जापुर के आशीष यादव, अमेरिका में जेवलिन थ्रो में जीता रजत पदक। परिवार में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने हैं आशीष, चाचा धर्मराज अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, चाची पूनम यादव भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान। गुजरात में बनासकांठा जिले के डीसा में बनेगा एशिया के पहले डेजर्ट थीम वाला ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जियोलॉजिकल पार्क, सेंट्रल जू अथॉरिटी से मिली मंजूरी। लगभग 103 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर विकसित किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट, 542 करोड़ से भी ज्यादा अनुमानित लागत। गुजरात वन विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को मजबूत करना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है मकसद। पाली में जामुन की खेती से आत्मनिर्भर बन रहे आदिवासी महिलाएं, हल्की गुठली को पीस कर दवा में काम आने वाले उसके पाउडर को बेचकर लाखों की कमाई। एक निजी कंपनी ने आदिवासी अंचल की महिलाओं के लिए तैयार किया है रोजगार का नया मॉडल, करीब 300 आदिवासी महिलाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है रोजगार। कल से भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में पिछले 11 सालों से श्रीलंका से हारी नहीं है टीम इंडिया, शुभमन गिल के नेतृत्व में इस रिकॉर्ड को कायम रखने की होगी बड़ी जिम्मेदारी। टेस्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार, कुल 46 टेस्ट मैचों में 22 में जीत दर्ज कर चुकी है भारतीय टीम। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है यह सीरीज, भारत अगर दोनों टेस्ट जीतता है तो उसे WTC अंक तालिका में मिलेगा बड़ा फायदा। एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज से क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे रहाणे। दिल्ली NCR में फिर झमाझम बारिश, मौसम सुहावना हुआ। दिल्ली के मुनिरका इलाके में बारिश, जगह जगह वाटर लॉगिंग। बारिश के कारण वाहनों की रफ्तार भी थमी, धीमी रही वाहनों की रफ्तार। मुनिरका मार्केट, रिंग रोड जलमग्न, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। दिल्ली के विकास नगर में भी जलजमाव, लोगों को ही परेशानी। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में झमाझम बारिश, मार्केट में दुकानदारों और खरीदारों को हुई परेशानी। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में तेज बारिश, रिंग रोड पर सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली के मोतीबाग मेट्रो स्टेशन के पास भारी जलभराव, लोग हुए परेशान। मोतीबाग में भारी बारिश से सड़कें बनी सैलाब, वाहन चालकों राहगीरों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। दिल्ली NCR में जारी रहेगा बारिश का दौर, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, कई जिलों में 19 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। कल शिमला और मंडी में भी ऑरेंज अलर्ट, ऊना बिलासपुर और कांगड़ा में येलो अलर्ट। गोरखपुर में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में NH-45 पर भीषण लैंडस्लाइड, भारी बारिश से जबलपुर भोपाल मार्ग पर गिरा पहाड़ का मलबा। मलबे से सड़क पर आवागमन प्रभावित, फिलहाल सड़क पर वन वे ट्रैफिक जारी, JCB से हटाया जा रहा है मलबा। चीन में जॉइंट पांडा की खास बर्थडे पार्टी, सिचुआन में पांडा के लिए सजाया गया खास केक। पांडा बिंग जाई बिंग बाओ ने मनाया पांचवा जन्मदिन, फ्रूट केक और बर्फ से हुई खातिरदारी। जॉइंट पांडा को मिले सिचुआन स्टाइल खिलौने, म्यानयांग सेंटर में हुआ शानदार जश्न। बांस के खिलौनों से की गई भव्य सजावट, पांडा सेंटर में 400 से ज्यादा जॉइंट पांडा। पांडा के लिए बर्फ के टुकड़ों की खास ट्रीट, जन्मदिन पर बेहद खुश दिखे जॉइंट पांडा। बीजिंग में खुला रोबोट का स्कूल, रोबोट को सिखाया जा रहा है रोजमर्रा के कामकाज, जूते के फीते बांधना रोबोट के लिए मुश्किल। पार्सल छांटना रोबोट का बेसिक कोर्स, अलग रंग आकार के पैकेट से ट्रेनिंग, रोबोट को सिखाया जा रहा है बिस्तर लगाना। 6 कैमरों से रिकॉर्ड होता है हाथों का काम, बुजुर्गों की मदद में पहुंच रहे रोबोट्स, प्लेट कटोरी संभालना सीख रहे रोबोट्स। चीन के हैनान में बोले प्रॉपर्टी कंपनी के चेयरमैन, AI के लिए बिजली सबसे जरूरी, AI का विकास बिजली बनाने की क्षमता पर निर्भर, AI की लागत घटा सकती है सोलर एनर्जी, AI के लिए मजबूत एनर्जी सिस्टम की जरूरत, AI में कारोबार के नए मौके तलाशने पर जोर। चीन के चोंगकिंग में खुला पालतू जानवरों का वाटर पार्क, डॉग्स ने जमकर की पूल पार्टी, गर्मी में पानी में मस्ती करते नजर आए जानवर। 5000 वर्ग मीटर में बना खास पार्क, छोटे बड़े डॉग्स के लिए अलग लॉन और पूल, इंसान और पेट साथ कर सकेंगे वाटर मस्ती, फव्वारे और वाटर स्लाइड से बढ़ा मजा, इन्फ्लेटेबल रिंग से खेलते दिखे डॉग्स। चीन के वुहान में मच्छरों से निपटने का नया तरीका, पार्क में लगाए गए 10 स्मार्ट बायो मस्किटो ट्रैप, स्मार्ट डिवाइस से मच्छरों पर कंट्रोल। कार्बन डाइऑक्साइड से मच्छरों को अपनी ओर खींचता है ट्रैप, 20 दिन में 1,00,000 से ज्यादा मच्छर खत्म, पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया गया शुरू। चीन में पहली बार पूरी तरह से इनोवेटिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सर्जरी, 55 साल की महिला के दिमाग में लगाए इलेक्ट्रोड, मिलीसेकंड में दिमागी सिग्नल पकड़ेंगे इलेक्ट्रोड, विचारों से रोबोट शाम चलाने की तैयारी, दिमाग से स्मार्टफोन कंट्रोल कर सकेगी मरीज, विचारों से व्हीलचेयर चलाने का रास्ता खुलेगा, सोच से कंप्यूटर कर्सर चलाने की तकनीक, रीढ़ की हड्डी को बाईपास कर सकेगा PCI, हाथ हिलाने की सोच को कमांड में बदलेगा सिस्टम। परसी डोलका वर्षा से जगमगाया चीन का आसमान, रेगिस्तान के ऊपर दिखी उल्काओं की चमकदार लकीरें। चीन के अंतरिक्ष यान शेंझोउ 23 क्रू ने कैद किए खूबसूरत नजारे, त्यांगोंग से दिखे विशाल महासागर, धरती का दिखा मनमोहक दृश्य। 2027 यूरोविजन की मेजबानी करेगा मुर्गास, बुल्गारिया के ब्लैक सी शहर को मिली मेजबानी। मई 2027 में होगा यूरोविजन का आयोजन, दुनिया भर से कलाकार बुर्गास पहुंचेंगे। जैक रॉबिन्सन और कोलापिंटो क्वार्टर फाइनल में, ताइपी प्रो में दोनों का फिर होगा मुकाबला। कोलापिंटो ने फिर दिखाया शानदार प्रदर्शन, कोलापिंटो ने हासिल किया परफेक्ट 10, दो वेव स्कोर 16.67 रहा। कैटी सिमर्स ने बनाया नया रिकॉर्ड, सिमर्स ने 9 का सबसे बड़ा सिंगल वेव स्कोर बनाया। इटली के सिसली स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर से तेज विस्फोट, ज्वालामुखी से राख और चट्टाने गिरी, लावे के बेहद करीब पहुंचे हाइकर्स। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, हवाओं से इलाके में फैली ज्वालामुखी की राख। किलावा में फिर शुरू हुआ ज्वालामुखी विस्फोट, लावा के फव्वारे सैकड़ों फीट ऊपर थे। 100 फीट तक पहुंचे लावा फव्वारे, ज्वालामुखी का अलर्ट लेवल बढ़ाया गया।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: पहली बुलेट ट्रेन की जिसका सपना अब आकार ले रहा है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेज रफ्तार से चल रहा है और इसी रफ्तार का एक वीडियो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। अगले साल 15 अगस्त तक बुलेट ट्रेन के पहले चरण को शुरू करने का लक्ष्य है।

0: इस वीडियो ने पटरियों पर रफ्तार की उम्मीदों को पंख लगा दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश की पहली बुलेट ट्रेन की तैयारियों का एक वीडियो शेयर किया। बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत अगले साल 15 अगस्त को करने का लक्ष्य रखा गया है। पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद रूट पर दौड़ेगी। इस रूट पर काम भी बुलेट रफ्तार से जारी है और ये वीडियो इसी की तस्दीक कर रहा है। वीडियो में गुजरात के नवसारी में बुलेट ट्रेन रूट पर चल रहे काम को दिखाया गया है। वीडियो में इंजीनियर्स और कर्मचारी आधुनिक मशीनों के जरिए ट्रैक पर बिजली सिस्टम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रेल मंत्री ने जानकारी दी है कि ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर जिस काम की झलक रेल मंत्री ने दिखाई है, उसमें नवसारी में 1125 किलोमीटर ट्रैक पर काम हो रहा है। इस ट्रैक पर 22,000 ओवरहेड इक्विपमेंट मास्ट लगाए गए हैं। ओवरहेड वायर असेंबली के लिए 25,700 कैंटिलीवर फिट किए जा रहे हैं। ये असेंबली ही रफ्तार के लिए बुलेट ट्रेन को बिजली सप्लाई करती है। सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत अगले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हो जाएगी। इस रास्ते पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। इस ट्रेन का सबसे ज्यादा फायदा मुंबई अहमदाबाद रूट के मुसाफिरों को होगा। इन दो शहरों के बीच सफर में फिलहाल 6 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने से ये दूरी महज 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर दिखा जवानों का जोश। मीटिंग रिट्रीट के फाइनल रिहर्सल में BSF के जांबाजों ने की पारंपरिक ड्रिल। देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल। बड़ा तालाब में नावों की निकाली गई तिरंगा रैली। हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें। हजारों महिलाओं ने सर पर कलश रख कर निकाली यात्रा। भोले की भक्ति में झूमे लोग। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान का नया अंदाज। बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर। स्वर्ण श्रृंगार घेवर की कीमत 21,000 रुपए। रायपुर में देखी बदलाव वाली गुड न्यूज। कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार।
0: तो आज के शो में हम बृहस्पति के बारे में बात करने वाले हैं। बृहस्पति अगर आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो उसे दूर करने के महा उपाय क्या होने वाले हैं, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, बृहस्पतिवार को किसी भी धर्म स्थान पर जाकर, मंदिर जाकर पीले फूल अर्पित करिएगा। अगर आप हर बृहस्पतिवार को ऐसा करें तो ऐसा करने से आपका संतान पक्ष बेहतर होता जाएगा।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि 14 अगस्त 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या रहने वाला है।
1: दिनांक 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम को 6:46 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि बृहस्पति कितने शुभ होते हैं और इसकी शुभता के जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ते हैं।
1: देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में बृहस्पति का अशुभ प्रभाव हो तो बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को कैसे दूर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति शुभता कैसे देता है। बृहस्पति अगर शुभ है तो क्या होता है। देखिए, ग्रहों में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ और पवित्र माना जाता है। केवल कुंडली में बृहस्पति के शुभ होने पर व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। बृहस्पति अकेला आपके जीवन में संतान, धन और विवाह के मामलों को उत्तम कर देता है। बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। जिस ग्रह पर और जिस भाव पर पड़ती है उसके अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देती है। यानी अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो इसकी शुभता की वजह से जीवन की बहुत सारी मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशि फल क्या है।
1: मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि बृहस्पति के अशुभ प्रभाव पड़ने पर क्या होता है।
1: अगर आपके ऊपर बृहस्पति का अशुभ प्रभाव पड़े, आपकी कुंडली के माध्यम से बृहस्पति आपके ऊपर अशुभ असर डाले तो क्या होता है? बृहस्पति के कमजोर होने पर या बृहस्पति के निगेटिव होने पर व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या के मामले में और धन प्राप्ति के मामले में बाधा आती है और व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किलें आती हैं। अगर बृहस्पति गड़बड़ हुआ तो व्यक्ति का पाचन तंत्र यानी डाइजेशन कमजोर होता है, पेट की बीमारियां होती हैं, कैंसर और लिवर, इसकी सारी गंभीर बीमारियां बृहस्पति ही जीवन में देता है। अगर बृहस्पति गड़बड़ हुआ तो संतान पक्ष की समस्या भी व्यक्ति को परेशान करती है और अगर ज्यादा गड़बड़ हुआ तो कभी कभी संतान हो ही नहीं पाती। अगर बृहस्पति संतान भाव में बैठे तो संतान के लिए बहुत ही नकारात्मक है और अगर बृहस्पति विवाह भाव में बैठ जाए, विवाह के स्थान में बैठे, तो विवाह होना

0: आ है आसानी से, लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का निवारण इतना आसान नहीं होता। बृहस्पति के बुरे असर का निवारण बहुत मुश्किल होता है।
1: और आगे बढ़ने से पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल जानने का वक्त हो गया है।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं आज पंडित जी सबसे पहला सवाल किसका रहेगा
0: जी। आज का पहला प्रश्न राकेश जी ने हमें लिखा है और राकेश जी हमें पटना बिहार से मेल लिखते हैं। 15 अक्टूबर 1975 का जन्म है। दोपहर के 3:10 जन्म स्थान है दरभंगा बिहार। राकेश जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है और काफी समय से मैं अपना कर्ज उतारने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन मेरा कर्ज उतर नहीं पा रहा है, तो मेरा कर्जा कब तक उतरेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। राकेश जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपके कर्ज साल 2027 के आखिरी तक काफी हद तक उतर जाएंगे। उस समय तक आपके कर्जे उतरने की संभावना दिख रही है। हो सकता है कर्ज उतारने के लिए आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी सेल करनी पड़े, ये संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। कर्ज आपका जल्दी उतरे और आर्थिक स्थिति जल्दी बेहतर हो इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह 1 बार ऋण मोचन मंग

0: मंगल स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी आज दूसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न हमें प्रेमलता जी ने लिखा है और प्रेमलता जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मार्च 1980, जन्म का समय रात में 11:15, जन्म स्थान है लखनऊ। प्रेमलता जी कह रही हैं कि काफी समय से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं रह रहा है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। प्रेमलता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको केवल अपने खान पान का और अपने डाइजेशन का ध्यान रखना है, बाकी मामले आपके लिए निगेटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी मामले आपके लिए नकारात्मक नहीं हैं। केवल खान पान में सावधानी रखें, डाइजेशन का ध्यान रखें तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें और रोज सुबह 108 बार बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
1: और चलिए अब बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर करने का सबसे अचूक उपाय क्या है, पंडित जी से जान लेते हैं।
0: तो अगर बृहस्पति आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए अशुभ हो रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? बृहस्पति को स्वयं शिव जी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए शिव जी की भक्ति से, शिव जी की साधना से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। अगर बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे रहा है तो रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, रुद्राक्ष की माला से या उंगली पर नमः शिवाय का सुबह शाम जप करिए। अपना आहार, व्यवहार और विचार ये पूरी तरह से सात्विक रखिए, अपने खान पान में शुद्धता और पवित्रता बनाए।
1: और चलिए आगे बढ़ने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल जान लेते हैं।
0: तुला राशि, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।

0: ये होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे कि अगर बृहस्पति की अशुभ या मारक दशा चल रही है तो क्या कुछ उपाय करके इसे दूर करें।
0: बहुत बार ऐसा होता है कि बृहस्पति की कोई अशुभ दशा चल रही होती है या कोई मारक दशा चल रही होती है जिसके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। तो अगर बृहस्पति की कोई अशुभ या मारक दशा चल रही है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अपने घर से एक लोटा जल भर करके ले जाइए और शिवलिंग पर चढ़ाइए। बृहस्पति की अगर मारक दशा है या अशुभ दशा है तो सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हर बृहस्पतिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को चने की दाल का या केले का दान करिए। और अगर बृहस्पति की अशुभ दशा है या मारक दशा है तो सोना और पीला रंग प्रयोग करने से आपको परहेज करना चाहिए। और अपने आहार को, अपने खान पान को सात्विक बना लीजिए। मांस मदिरा का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए।
1: और अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के जातकों का दैनिक राशिफल जानने का।
0: मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज के आपके तीसरे सवाल का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आपकी टीवी स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिसपे आप मेल करके पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी आज का तीसरा सवाल किसका रहने वाला है।
0: जी अगला प्रश्न हमें गोविंद जी ने लिखा है और गोविंद जी हमें मेल लिखते हैं अलीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 13 जुलाई 1984। जन्म का समय रात में 9:15। जन्म स्थान है अलीगढ़। गोविंद जी कह रहे हैं कि मेरा व्यापार बंद हो गया है, व्यापार में नुकसान बहुत हो रहा था, तो मैं अब विचार कर रहा हूं कि अपने परिवार के साथ अलीगढ़ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊं तो क्या स्थान बदलना मेरे लिए बेहतर होगा, और स्थान बदल के आगे क्या मुझे कोई और व्यापार करना चाहिए। गोविंद जी, आपकी कुंडली में वैसे भी स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपका स्थान परिवर्तन होगा। किसी नई जगह पर जाने से और वहां पर व्यापार शुरू करने से आपको लाभ होगा, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। तो स्थान परिवर्तन करना आपके लिए कुल मिला जुला के बेहतर है। एक मोती बनवा के पहनिए, 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने और रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: और अब वक्त हो चला है आज के आपके चौथे और अंतिम सवाल का। पंडित जी, चौथा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी अंतिम प्रश्न हमें संध्या शर्मा जी ने लिखा है, फरीदाबाद से मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 28 दिसंबर 1994। जन्म का समय है 4:45 और पुत्री का जन्म स्थान है फरीदाबाद। ये कह रही हैं कि अपनी पुत्री के विवाह के लिए काफी समय से परेशान हैं, तो पुत्री का विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए संध्या जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और ज्यादातर संभावना बनती है कि 2027 के आरंभ में इनका विवाह होगा और बहुत दूर नहीं होगा, आस पास में ही इनके विवाह की संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के ठीक है, वैवाहिक जीवन में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बेटी का विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो, इसके लिए आप अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको ओपल धारण कराएं और अपनी पुत्री से कहें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके अगर ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि बृहस्पति के होने से अगर जीवन में अशुभता आ रही है तो क्या कुछ रत्न पहनने का भी इस पर प्रभाव पड़ सकता है, क्या ये बाधाएं दूर कर सकते हैं?
0: जी देखिए, बृहस्पति का रत्न है पीला पुखराज। अगर बृहस्पति की वजह से जीवन में अशुभता आ रही है या बृहस्पति की वजह से आपकी सेहत में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आपको लीवर की प्रॉब्लम है, पेट की समस्या है, कैंसरस प्रॉब्लम अगर आपको हो गई है, तो इन स्थितियों में बृहस्पति का रत्न बिल्कुल धारण ना करें। अशुभ होने पर बृहस्पति अगर आप पीला पुखराज पहनेंगे यानी बृहस्पति का रत्न पहनेंगे तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर बृहस्पति नकारात्मक है, अगर बृहस्पति अशुभ है, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा फायदा होता है पन्ना पहनने से। बृहस्पति को काउंटर करने के लिए अगर आप पन्ना पहने या सलाह लेकर के एक ओपल धारण करें तो इससे बृहस्पति की अशुभता कम होती है, बृहस्पति संबंधी समस्याओं से आप बच सकते हैं।
1: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 14 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।

0: 14 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति में सुधार होता जाएगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी, स्वास्थ्य के उतार चढ़ावों से बचाव करना होगा और विवाह के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणेश जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पतिवार का व्रत रखने से महिलाओं का विवाह जल्दी हो जाता है? देखिए, बृहस्पति महिलाओं के विवाह का कारक है। कुछ स्थितियों में बृहस्पतिवार का व्रत रखने से लाभ हो सकता है, लेकिन हर स्थिति में बृहस्पतिवार का व्रत रखने से विवाह हो जाए ये आवश्यक नहीं है।
1: चलिए अब जान लेते हैं कि 14 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार का शुभ पहर क्या रहने वाला है।
0: दिनांक 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 14 अगस्त शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेंगे कि आज की आपकी गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग भगवान शिव को क्या अर्पित करें जिससे उनको लाभ हो। आज की गुडलक राशि है सिंह। आपको शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में संघर्ष कम होगा।
1: तो चलिए बृहस्पति के प्रभावों के बारे में हमने जान लिया। अब पंडित जी से वक्त हो चला है ये जानने का कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके व्यापार में, बिजनेस में बार बार उतार चढ़ाव हो रहा हो तो क्या करेंगे? अपने काम की शुरुआत करने के पहले रोज सुबह संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा और काम की समाप्ति के समय माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा और रोज कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आप व्यापार के उतार चढ़ाव से बच जाएंगे।
1: पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: पवित्र सावन महीने की शुरुआत से हो चुकी है, गुजरात में अमान पंचांग का पालन होता है, जिसके कारण उत्तर भारत के मुकाबले गुजरात में सावन करीब 15 दिन बाद शुरू होता है। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ से लेकर तमाम शिव मंदिरों में पूजा पाठ के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं राजकोट के पंचनाथ महादेव मंदिर में भी सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है।
6: द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान रखने वाली भगवान सोमनाथ के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवाधिदेव महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के श्रद्धालुओं में ये उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास इसलिए है क्योंकि गुजरात में आज से सावन महीने की पावन शुरुआत हुई है। सावन महीने के पहले दिन देश विदेश से श्रद्धालु भगवान सोमनाथ के धाम पूजा पाठ के लिए आते हैं। कोई परिवार संग पहुंचा तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के संग आया। दिन भर भक्तों का ये रेला यूं ही लगा रहा।
7: सावन के प्रथम सोमवार के दिन शीश नमाते हुए मैं बहुत भावुक हो चुका हूं, और ये सोमनाथ का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे चंद्रमा जी को जो श्राप हुआ था वहाँ से भी मुक्ति मिली थी, तो हम हमारा शीश नमा के शिव जी के चरणों में हम साक्षात खुद को प्रसन्न मानेंगे और शिव जी के कृपा सब पर बनी रहे। श्रावण मास की शुभकामनाएं सबकी।
6: परंपरा के मुताबिक सुबह सबसे पहले मंत्रोच्चार के बीच पंचामृत से भगवान का अभिषेक हुआ। इसके बाद चंदन बेलपत्र और फूलों से मनोहारी और मनमोहक श्रृंगार किया गया, और फिर साज सज्जा के साथ भगवान सोमनाथ की मंगला आरती हुई। इसके बाद भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए। भगवान सोमनाथ के दरबार में कोई परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेने आया है, तो कोई कारोबार में तरक्की की कामना लेकर पहुंचा है, और किसी ने सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की।
8: से और हम पहले यहाँ पे काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आए थे, बैद्यनाथ बाबा के दर्शन करके आए थे, फिर महाकालेश्वर के दर्शन किए, और अब हम सोमनाथ के दर्शन करने आए हुए हैं। हम यहाँ आकर के तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, चाहे यहाँ का दृश्य हो, चाहे यहाँ की व्यवस्था हो, बहुत ही मनमोहक।
6: सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक आज से भगवान महादेव की धरती पर 30 दिवसीय श्रावण शिव महोत्सव शुरू हो चुका है, जिसमें कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान मंदिर में किए जाएंगे, और इस दौरान अलग अलग धार्मिक महत्व वाले श्रृंगार भी भगवान के किए जाएंगे, जिसे देखने के लिए हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है।
9: सबके लिए यहाँ पर्याप्त बंदोबस्त है, साथ साथ ऑनलाइन बिली पूजा का जो कार्यक्रम सिर्फ 21 रुपये में लिया है, वो कार्यक्रम अंतर्गत यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की पूजा की बुकिंग हो चुकी है, और सारे महीने के बाद शायद ये 2.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसके साथ साथ हमारे वहाँ रहने की भी अच्छी सुविधा है, भोजन की भी सुविधा है, और पार्किंग में एक इतना बड़ा इंतजाम किया गया है कि वहां से लोग यहाँ टूरिज्म की एक ट्रेन से आ सकते हैं, जिसे कम से कम असुविधा हो।
10: बहुत अच्छा अनुभव हुआ मुझे।
11: यहाँ के सोमनाथ ट्रस्ट की कैसी व्यवस्था है?
10: ट्रस्ट की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा
5: लाइन मैनेजमेंट सारा चीज सब चीज सही है, बहुत कम टाइम में ही दर्शन हो जा रहे भगवान।
10: मुझे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं काफी अच्छी लगी, काफी क्लीन सिटी है, खान पीन की व्यवस्था काफी अच्छी है, बाकी जो सारी सुविधाएं हैं वो काफी अच्छी लगी मुझे, तो ओवरऑल सारा सब कुछ अच्छा है यहाँ।
6: प्रशासन ने श्रद्धालुओं के सुलभ और सुरक्षित दर्शन के लिए पुख्ता तैयारी की है, चाहे खाने पीने और ठहरने का इंतजाम हो या फिर पार्किंग और सुरक्षा की बात हो।
11: गुजरात में पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। श्रावण मास निमित्त पूरे देश भर से, दुनिया भर से सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में यात्री आएंगे और सोमनाथ महादेव के दर्शन करेंगे। इस संबंध में हर रोज लाखों की संख्या में जो यात्री आएंगे उनकी व्यवस्था करने के लिए, ताकि उनके दर्शन, सोमनाथ महादेव के दर्शन खूब अच्छे तरीके से हो सके और उनके लिए ये जीवन का एक यादगार मोमेंट हो, ऐसा हमारी आयोजन किया है। इसके तहत गिर सोमनाथ जिला पुलिस ने तकरीबन 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी अधिकारियों की तैनाती की है।
6: सोमनाथ ही नहीं, गुजरात में राजकोट के पंचनाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लग रहा है। भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और फूल चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा की और आशीर्वाद लिया।
12: श्रावण का पहला दिन है और सभी लोग यहाँ पे बहुत आते हुए, पंचनाथ महादेव का बहुत महात्मा है और दर्शन करके आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, और श्रावण महीना है तो आपकी जो भी विश है वो एक बार श्रावण महीने शंकर भगवान से मांगते हैं वो पूरी हो जाती है।
6: गुजरात के तमाम शिव मंदिरों में सावन के पहले दिन भगवान शिव का सुंदर फूलों और आभूषणों से श्रृंगार किया गया और विधि विधान से पूजन अर्चन कर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए।
13: सौराष्ट्र देश

0: అవతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రమధ్య. ఆజ్ శురు హో రా శ్రావణ మాస. భగవాన్ శివ్ శివ్ కి పూజా అర్చనా కర్నే కా బార్ బార్ సౌభాగ్య ప్రాప్త నహీ హోతా. శాస్త్రో మే లిఖా హై కి జన్మంతర బహుత్ పుణ్యం కర్మం ఆయుష్య విద్యతే. జన్మో జన్మంతర కే పుణ్య ప్రాప్త హోతే హై తబ్ హమ్ శివ్ పూజా కా ప్రారంభ కర్తే హై. జబ్ శివ్ కిస్కో బులాతే హై, జబ్ శివ్ కే చరణ మే జబ్ లోక్ ఆతే హై ఉస్కో శివ్ హీ అర్పణ కర్తే హై.
1: भगवान शिव का पवित्र महीना शुरू हुआ तो क्या आम और क्या खास, हर कोई शिव भक्ति में जमा नजर आ रहा है. श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. ऐसे में 30 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव सोमनाथ को शिव भक्ति के रंग में रंग देगा. गिर सोमनाथ से दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
2: बात अयोध्या की, जहाँ राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस में फिर से बदलाव किया गया है. नई व्यवस्था के तहत राम मंदिर पुजारी अब बिना सिले हुए वस्त्र ही पहनेंगे. पिछले दिनों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी धार्मिक न्यास समिति ने इस ड्रेस कोड के प्रस्ताव को अपनी सहमति दी थी. श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहले भी एक ड्रेस कोड लागू किया था, जिसके तहत पुजारियों को पगड़ी, पीली शोबंदी और सफेद धोती पहननी अनिवार्य थी. लेकिन इन कपड़ों को वैष्णव परंपराओं के खिलाफ माना गया था और इसीलिए ड्रेस कोड बदलने का फैसला किया गया.
3: ध्यान रखा जाए, उसके लिए सिल्क के वस्त्र, पीत वस्त्र में अपने ड्रेस में रहेंगे, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनेंगे और ऊपर उत्तरीय धारण करेंगे. शरद कालीन होगा तो उसी ढंग से कुछ ऊनी वस्त्र धारण करेंगे, जिससे वहाँ के पुजारियों की भी और वहाँ स्वच्छता पवित्रता भी बनी रहे.
2: अनीप करौरी के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. 7 अगस्त को सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसके बाद इसे जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है. फिल्म में बाबा अनीप करौरी का किरदार निभाने वाले एक्टर शुभनव सत्य ने फिल्म की मेकिंग और इसमें बाबा अनीप करौरी के किरदार के बारे में खुलकर बात की.
4: मेरे माइंड में ये सब चल रहा था कि सर ने मुझे कास्ट तो कर दिया है, लेकिन अगर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने बोला कि पता नहीं किसको बाबा बना दिया है, क्या कर दिया है, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी. लेकिन ये सबसे पहले जो कहानी है वो ये है कि मैंने इस फिल्म में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया था. मैं इस फिल्म में एज सेकेंड एडी था और हमारे जो इससे पहले लीड एक्टर थे उनकी कुछ कारणोंवश तबीयत खराब हो जाती है, तो सर वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेते हैं कि भाई फिल्म को रुकने नहीं देना है. बहुत सारे लोग वहाँ पर आ गए थे, बहुत सारे लोगों की मेहनत थी.
5: चित्रकूट में थे.
4: एग्जैक्टली, चित्रकूट. यस, तो सर ने मुझे कास्ट करने के लिए मेरा टेस्ट लिया. अब वो टेस्ट 5 घंटे तक चला, जिसमें से 4.5 घंटे तो मेरे माइंड में सिर्फ यही बात चल रही थी कि अरे क्या होगा, मैं वही पत्रकार बन गया कि दुनिया क्या कहेगी, कहीं मुझे जो है कुछ तो ऐसा चल रहा था. सर ने वहाँ पे मुझे काम किया और सर ने बोला कि ये सब सोचना तुम्हारी वो जिम्मेदारी नहीं है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है. तो मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मैं मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था. तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो. वैसा एक दिन में कोई कैरेक्टर, इतना बड़ा कैरेक्टर, वो भी एक काइंड ऑफ बायोपिक ही है, आप उसको जस्टिफाई कर पाओ एक दिन में नहीं पॉसिबल है. सो सर ने क्या किया कि कॉम्प्लिकेट करने की बजाय मुझे मेरी जो पर्सनल आदतें थी उससे कैरेक्टर को कनेक्ट कर दिया सर ने, तो मेरे लिए और आसान हो गया. बाबा का नेचर ऐसा था कि इट्स लाइक के वो तो हंसते ही रहते थे, हरदम हंसते रहते थे. हाँ, हरदम हंसते रहते थे. लेकिन वहाँ पे ना एक बड़ा प्यारा सा है, एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, हल्का सा, हल्का दिखा था ना. वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल गोपाल कहते, गोपाल गोपाल, तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़ी गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया. तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है. जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ, तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे.
2: आजादी की लड़ाई के उन गुमनाम नायकों की जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन न तो उन्हें सम्मान मिला और न ही पहचान। ऐसे ही गुमनाम नायकों में से एक क्रांतिकारी ने दिल्ली के चांदनी चौक में गुमनाम क्रांतिकारियों के लिए एक मंदिर बनवाया ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो गुमनाम न रह जाए।
5: लाल किले के पास मौजूद ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा या तस्वीरें नहीं है, बल्कि उन लोगों के चित्र हैं जिनके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया। शुरुआती दौर में इतिहास लिखने वाला एक फोकस कुछ गिने चुने बड़े नेताओं और संगठनों तक ही सीमित रह गया। पूरा हिंदुस्तान जिस जश्न आजादी की तैयारी में जुटा है, वो किसी एक व्यक्ति के बलिदान और संघर्ष का नतीजा नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई ऐसे बलिदानी थे जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, फिर भी आने वाली पीढ़ियों के लिए गुमनाम रह गए। अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद इतिहास ने उनके योगदान का सही मूल्यांकन नहीं किया। आजादी के किस्से कहानियों या उससे जुड़े इतिहास के पन्नों में उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। सैकड़ों हजारों या लाखों क्रांतिकारी गुमनाम नायकों की तरह रह गए। देश की स्वाधीनता के लिए साझा संघर्ष, त्याग और बलिदान के बावजूद उन्हें आजादी की लड़ाई के चर्चित चेहरों या नायकों की तरह न सम्मान मिला और न ही पहचान।
6: मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ना, अमूमन आप मंदिर जाते हैं तो आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं। कोई मंदिर राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, तो कोई किसी माता का है। लेकिन आज दिल्ली के चांदनी चौक में मैं आपको ऐसे मंदिर में लेकर आया हूँ जहाँ पर कोई ईश्वर कोई देवता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी जान गंवाने वाले, उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले वीर बलिदानियों की यहाँ फोटो लगी है, तस्वीर लगी है, उनके बारे में जानकारी लिखी गई है। ये वो वीर बलिदानी हैं जिनके बारे में इतिहास में लिखा ही नहीं गया, अगर लिखा गया तो एक दो लाइनों में निपटा दिया गया। आइए आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के भीतर।
5: दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद शिव शक्ति नाम का ये मंदिर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गुमनाम क्रांतिकारियों को भी उनके हिस्से का यश दिलाता है। इस अनोखे मंदिर को एक पूर्व क्रांतिकारी ने ही बनवाया था जिन्हें देश की आजादी के बाद गुमनाम नायकों के साथ जाने अनजाने हुई अनदेखी परेशान करने लगी थी। अलग अलग राज्यों से 100 क्रांतिकारियों की तस्वीर तब से इस बलिदानी मंदिर की शोभा बढ़ा रही है।
6: चांदनी चौक में इस मंदिर का निर्माण स्वर्गीय स्वर्णलाल पारूथी जी ने करवाया था। उन्हें ये देखकर बहुत टीस पहुंची थी कि कई सारे ऐसे क्रांतिकारी जिनकी बड़ी भूमिका थी उनके बारे में इतिहास में लिखा नहीं गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश भर से ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में सूचनाएं जुटाई और उनकी तस्वीरों के साथ लगभग 100 बलिदानियों की तस्वीर यहाँ पर लगाई, उनके बारे में लिखा। ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है और यहाँ पर भी आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शहीद भगत राम जी की। इनके बारे में लिखा ये गया है कि शहीद हरिकिशन लाल के भाई भगत राम महान देशभक्त थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया और 5 वर्षों तक जेल में रहे। मुद्दे की बात अब ये, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारत से बाहर जाने लगे तो भगत राम जी ने अपनी जान पर खेल कर उन्हें काबुल तक पहुँचाया। आप सोचिए, वो इंसान जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी, उनका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। उनकी तस्वीर ढूंढकर उनके बारे में मुख्य जानकारी निकालकर यहां पर लगाया गया है।
5: पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के रहने वाले क्रांतिकारी नवजीवन घोष भी उन गुमनाम नायकों में शामिल थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। फिर भी आजादी से जुड़े मुख्य धारा के इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिली। जबकि ब्रिटिश पुलिस के भीषण अत्याचार और अमानवीय शारीरिक प्रताड़ना के कारण सितंबर 1934 में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी क्रूरता पर पर्दा डालते हुए उनके मृत्यु को आत्महत्या करार दिया था।
6: ये नाम है नवजीवन घोष का। इनके बारे में लिखा है, मिदनापुर के जिला न्यायाधीश वर्ज की हत्या के बाद नवजीवन के भाई निर्मल जीवन को फांसी पर लटका दिया गया।
5: आजादी से जुड़े इतिहास में खास मुकाम पाने में नाकाम रहे एक क्रांतिकारी ने राष्ट्रवाद का ऐसा बीज बोया कि उनकी पूरा परिवार ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के रास्ते पर चल पड़ा। क्रांति की पाठशाला में उन्होंने अपने बेटों को हथियारों का इस्तेमाल करना और सटीक निशाना लगाना सिखाया। देश के लिए बलिदान, त्याग और संघर्ष की ऐसी अनगिनत कहानियां यहां मौजूद हैं, जिनकी गवाही के तौर पर कई और क्रांतिकारियों की तस्वीर यहां लगी है। करीब 56 साल से यह जगह स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों और आजादी से जुड़े उनके योगदान को अपने भीतर समेटे हुए है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आजादी की उस लड़ाई का स्मरण करवाता है जिसके लिए ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: 15 अगस्त देश के लिए आजादी का दिन और क्रिकेट के लिए इतिहास रचने का। एक तरफ तिरंगे की शान में देश जश्न मनाएगा जबकि दूसरी तरफ गोल में टीम इंडिया एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।
7: पंद्रह अगस्त को एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा होगा तो दूसरी तरफ टीम इंडिया इतिहास रचने के लिए क्रिकेट के मैदान में उतरेगी। 15 अगस्त को भारत और मेजबान श्रीलंका के बीच गोल में टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास का 600वां टेस्ट मैच होगा। टीम इंडिया की टेस्ट जर्नी अपने आप में बेहद शानदार और ऐतिहासिक रही है। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था जबकि 1967 में 100वां टेस्ट भी इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला गया। टीम इंडिया ने 1982 में अपना 200वां टेस्ट खेला था और तब सामने पाकिस्तान की टीम थी। इसी तरह 1996 में 300वां टेस्ट मैच खेला गया और तब सामने दक्षिण अफ्रीका टीम थी। 2006 में भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना 400वां टेस्ट खेला था और 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 500वां टेस्ट मैच खेला गया था। अब उसी ऐतिहासिक सफर का 600वां पड़ाव 15 अगस्त को श्रीलंका के खिलाफ आने वाला है। माना जा रहा है कि श्रीलंका की स्पिन और टर्न वाले पिचेस भारतीय खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। ऐसे में अपने 600वें टेस्ट में फतह हासिल करने के लिए भारतीय टीम ने रणनीति भी खास बनाई है। हेड कोच गौतम गंभीर ने कोलंबो में एनसीसी मैदान के एक हिस्से में 22 गज की अनक्यूरेटेड पिच तैयार करवाई। इस पिच पर घास, दरारें और ढीली मिट्टी जानबूझकर छोड़ी गई ताकि बल्लेबाज गोल टेस्ट के चौथे और पांचवें दिन जैसी टर्न और अनियमित उछाल वाली परिस्थितियों में पहले से प्रैक्टिस कर सके। यानी टीम इंडिया ने नेट्स पर ही ऐसी पिच तैयार कर ली जहां गेंद घूमे, बल्लेबाजों की परीक्षा हो और स्पिन के खिलाफ मुकाबले की पूरी तैयारी की जा सके। मतलब टीम का मकसद 600वें टेस्ट को सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि यादगार भी बनाना है। ये सीरीज सिर्फ 600वें टेस्ट के लिहाज से भी अहम नहीं है बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस के लिए भी टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक

0: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर दिखा जवानों का जोश। मीटिंग रिट्रीट के फाइनल रिहर्सल में बीएसएफ के जांबाजों ने की पारंपरिक ड्रिल। देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल, बड़ा तालाब में नावों की निकाली गई तिरंगा रैली, हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न में शिरकत। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें, हजारों महिलाओं ने सर पर कलश रख कर निकाली यात्रा, भोले की भक्ति में झूमे। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान का नया अंदाज, बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर, स्वर्ण श्रृंगार घेवर की कीमत 21,000 रुपए। रायपुर में देखी बदलाव वाली गुड न्यूज, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक।

नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिली। गोलगप्पे का खट्टा खट्टा पानी, मुंबई का तीखा वड़ा पाव और जयपुर की करारी प्याज वाली कचौरी, मुंह में पानी आ गया ना। पानी आना लाजमी है। अब देखिए, स्ट्रीट फूड का जादू ही कुछ ऐसा होता है कि पेट भले ही भर जाए लेकिन नियत भरती ही नहीं है। और अब तो देखिए, हमारी इस देसी जायके की दीवानी पूरी दुनिया हो चुकी है, क्योंकि टाइम आउट मैगजीन ने दुनिया के बेस्ट स्ट्रीट फूड शहरों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के एक दो नहीं बल्कि तीन तीन शहरों के नाम शामिल हैं। टॉप 20 में जहां मुंबई 10वें स्थान पर है, तो वहीं पिंक सिटी जयपुर 15वें और दिलवालों की दिल्ली है 19वें नंबर पर। अब दिल्ली की पुरानी गलियों की चाट हो, छोले भटूरे हो, मुंबई का चटपटा वड़ा पाव हो, भेलपुरी हो, या फिर जयपुर की कचौरी या घेवर हो, भाई जितने मर्जी नाम ले लो, ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इन शहरों के जायके में ऐसा कुछ खास है जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना सा बना दिया है। अब क्या कुछ खास है इसमें, ये जानने के लिए हमारे साथ तीन साथी तीनों शहरों के स्ट्रीट फूड का जायका आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रीट फूड के सुपर थ्री।

0: वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपुरी, प्याज कचौड़ी, समोसा, मिर्ची वड़ा, चाट, गोलगप्पे और छोले भटूरे जैसे कई स्ट्रीट फूड्स हैं जिनको देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। ये ऐसे स्ट्रीट फूड हैं जो शहर की पहचान हैं। शहर दर शहर व्यंजन बदलते हैं, स्वाद बदलता है, जायका बदलता है, लेकिन इनकी पहचान शहर की गलियां होती हैं। कहने का मतलब है कि हर शहर की अपनी खासियत होती है, हर शहर का अपना स्वाद, खुशबू और पहचान होती है। कहीं चटपटा स्ट्रीट फूड लोगों का दिल जीत लेता है तो कहीं शाही अंदाज में बना लजीज खाना आकर्षित करता है। हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। हर राज्य का भोजन, मिठाइयाँ और स्ट्रीट फूड की अपनी खासियत है। अगर बात स्ट्रीट फूड की ही होती है तो देश में कई शहर ऐसे हैं जहाँ का स्ट्रीट फूड काफी फेमस है। ऐसा सिर्फ हमारे देश में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में कई शहरों की पहचान तो स्ट्रीट फूड की वजह से ही होती है। स्ट्रीट फूड को लेकर लोगों में ऐसी दीवानगी है कि वो सिर्फ खाने के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ऐसे में टाइम आउट ने एक सर्वेक्षण कराया है। बेस्ट स्ट्रीट फूड सिटीज जैसी वैश्विक शहर रैंकिंग और पाक कला सर्वेक्षणों के अनुसार सबसे ज्यादा चर्चित स्ट्रीट फूड स्थल एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में फैले हुए हैं। जिनमें सबसे आगे हैं वियतनाम में हो ची मिन सिटी, मलेशिया का कुआलालंपुर दूसरे पायदान पर है, जबकि इंडोनेशिया का जकार्ता तीसरे नंबर पर है। भारत से मुंबई 10वें नंबर पर, जयपुर 15वें और दिल्ली 19वें नंबर पर है। आज हम भारत के तीन उन मशहूर शहरों के स्ट्रीट फूड की बात करेंगे जिन्होंने टाइम आउट के सर्वे में टॉप 20 में जगह बनाई है। सबसे पहले बात आमची मुंबई की। तो मुंबई का वड़ा पाव स्ट्रीट फूड का बादशाह माना जाता है। मसालेदार आलू के पकौड़े से भरा नरम ब्रेड रोल, चटपटी चटनी और साथ में तली हुई हरी मिर्च, इसकी तुलना आप बर्गर से भी कर सकते हैं। लेकिन वड़ा पाव मुंबई में हर तबके का फूड है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। हर मुंबईकर या बाहर से आने वाले लोग भी वड़ा पाव के दीवाने नजर आते हैं। मुंबई में वैसे तो वड़ा पाव के कई स्वरूप सामने आ गए हैं, यानी भाजी पाव, समोसा पाव, लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा वड़ा पाव की ही है।
1: जो चौपाटी पे फेमस पानी पूरी, भेलपुरी, सेव पूरी, दही पूरी, चाट, बहुत अच्छा है।
2: यहाँ पे आते हैं सब लोग?
1: सब नहीं, बहुत अच्छा आता है, पब्लिक सही देख के आता है, साफ सफाई अच्छा रहता है ना।
2: सबसे पहले क्या मांगते हैं लोग पानी पूरी?
1: पहले तो बच्चे लोग भी आते ही तो भैया जी पानी पूरी दो, पानी पूरी दो, पानी पूरी देना पड़ता है। फिर बाद में सेव पूरी खाते हैं, टिक्की खाते हैं, समोसा खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बस ये आइटम।
2: लास्ट में सूखी पूरी,
1: लास्ट में वो तो पहली है, रोड शू भी आ जाता है वापिस।
2: और भी मांगते
1: हैं? हाँ, वो तो देना ही पड़ता है। रोड पर भैया जी सूखा पूरी तो दिया ही नहीं है, लो साहब देना ही पड़ता है।
3: वैसे तो यहाँ पर खाने लायक कई चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पसंद की जाती है वो है वड़ा पाव। मैं भी काफी जद्दोजहद के बाद इस वड़ा पाव को पा सका हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी तस्वीरों में देखें, अच्छी खासी लाइन, अच्छी खासी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लगभग 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे लोग खड़े रहते हैं, फिर काउंटर पे जाते हैं, पर्ची फड़वाते हैं और उसके बाद जहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा छन रहा है वहां जाकर के वड़ा पाव लेते हैं। कोई यहीं पर रुककर खाता है तो कोई अपने मंजिल पर जाकर खाता है। देख रहे हैं लगातार ये जो लाइन है ये बढ़ती ही जा रही है, और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वाकई में वड़ा पाव का स्वाद एक नंबर होता है। थोड़ा सा इस वड़ा पाव की साइज भी देखें, 25 रुपए का एक है, इतना ज्यादा बड़ा है कि एक से ही मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन अगर इसे दो खा लिया जाए तो दिन एकदम मस्त हो जाता है, आदमी एकदम सस्त हो जाता है। चलिए कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर ऐसा है तो क्या खास बात है। मुझे लगता है वड़ा पाव खा चुकी।
4: हाँ, मैंने अभी एक मस्त बड़ा सा वड़ा पाव खाया है।
3: एक में हो गया, पेट भर गया।
4: हाँ, साइज तो अच्छी बड़ी है, सो वो काफी फिलिंग हो जाता है।
3: अच्छा, ये बताएं मुझे कि महीने में कितनी बार खाना होता है?
4: महीने में चार से पांच बार तो वड़ा पाव मतलब लगता ही है।
3: महाराष्ट्र में ही रहती है? महाराष्ट्र में
4: हूँ।
3: वड़ा पाव की जब भी बात आती है क्या चलता है जहन में? घर में भी तो लोग इसे बनाते हैं, बचपन से खा रहे हैं।
4: यस यस, बचपन से। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र हो, तो वड़ा पाव बेसिकली और लाइफ लाइन। मतलब जैसे ट्रेन को, रेलवे को मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है, वैसे जब मुंबई के स्टेपल फूड की बात आती है तो आई कैन इजिली से कि वड़ा पाव मुंबई का स्टेपल फूड है। मतलब काफी लोग, एंड ऐसे भी नहीं कि आपको मतलब वड़ा पाव खा रहे हो तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप गरीब हो या ऐसे कुछ कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, आते जाएंगे, हजारों की शॉपिंग करेंगे, आके खड़े रहना है वड़ा पाव की दुकान पे, आना है, खाना है और मस्त मजे से खाते हैं, एकदम स्वाद ले लेके खाते हैं। एंड यस, मतलब जहाँ तक कि मुंबई के स्ट्रीट फूड की बात आती है, जैसे आपने भी कहा कि वड़ा पाव हो, भेलपूरी हो, पाव भाजी हो, ये सारी चीज़ें, तो मतलब अगेन एज अ सर कि ये मुंबई का स्टेपल फूड है। मतलब मुंबई रह ही नहीं सकती इसके बिना। जो बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरे भले दूसरे स्टेट से हो या दूसरे देशों से हो, उन्होंने भी आके एक ना एक बार तो यहाँ का चाट खाना ही, और वो भी ठेले पे खड़े रह के, एक ना एक बार तो टपरी की चाय पीनी ही है या वड़ा पाव खाना ही है। मतलब उससे, उसके अलावा, उसके बगैर कोई जा नहीं सकता यहाँ से। और अगर वो एक बार चख लेना तो बस, उनको एक बार वो स्वाद आ जाए तो बस, मतलब दे क्रेव फॉर इट।
3: महीने में कितना खाते हैं वड़ा पाव?
5: हर रोज कॉलेज छूटने के बाद।
3: रोज?
5: हाँ,
3: प्रतिदिन यही खाना है?
5: प्रतिदिन खाना ही खाना है, नहीं तो पेट नहीं भरता है।
3: पेट नहीं भरता? और टेस्ट कैसा लगता है?
5: बहुत मजेदार।
3: यही मुंबई में?
5: मुंबई में रहता हूँ, घाटकोपर में, असलफा। स्ट्रीट फूड में जो मिलेगा भाई सब कुछ खाते हैं अपन।
3: जैसे?
5: हाँ, जो मतलब खा के खुशी मिलती है। स्पाइसी हो गया ज्यादा करके, वड़ा पाव भी अपना फेवरेट है
3: स्ट्रीट फूड को लेकर।
5: हाँ, स्ट्रीट फूड अपन सब कुछ खाते हैं।
3: आपको पता है कि मुंबई में जो है ना, मुंबई ने 10वां नंबर हासिल किया है खाने के मामले में, स्ट्रीट फूड के मामले में, तो क्या रिएक्शन होगा एक मुंबईकर होने के नाते?
5: होना ही चाहिए, क्योंकि वड़ा पाव अभी बहुत जने जो जिनका मतलब जिनके पास खाना नहीं रहता, वो वड़ा पाव पे ही जीते।
3: आप ये बताएं, महीने में कितना ज्यादा वड़ा पाव खाते होंगे? कितने?
6: 30-40-50 खा लेते हैं डेली का, एकदम खाली एक शौक के लिए खाते हैं, खाने खाने पेट भरने के लिए, हम लोग मजा लेने का थोड़ा शाम को।
3: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या पसंद है फास्ट फूड में, बात करें आपको?
6: सब कुछ है खाने में, सब कुछ, किस खाने को ना बोलने कोई भी, हर चीज एकदम मजे से खाने का, टेस्ट इंजॉय करने का बारिश का मौसम में।
0: वड़ा पाव मुंबई की पहचान है, लेकिन कई और व्यंजन हैं जो आए तो किसी दूसरे राज्य से हैं, लेकिन मुंबई के रंग में रंगते हुए और चटपटे हो गए हैं।
7: हमारे दुकान में इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, दाल वड़ा, चाय, कॉफी, सब सब लोग को पसंद हो जाता
8: है। मुंबई का नाम है खाने पीने में, जो बीच में ज्यादा है।
3: जो बीच में?
8: तो
3: क्या क्या आपकी दुकान पे क्या मिलता?
8: अपना पाव भाजी है, पुलाव राइस है, ये फेमस है यहाँ का, स्पेशल बनता है। हाँ,
3: मुंबई की पाव भाजी बहुत फेमस,
8: बहुत फेमस है मुंबई की पाव भाजी। जो बीच में तो और भी टेस्टी है पाव भाजी।
3: और वर्ल्ड में ऐसे ही 10वां नंबर मुंबई ने नहीं हासिल किया है, उसमें न केवल एक वड़ा पाव बल्कि समोसा आता है, भजिया पाव आता है, भेलपूरी, पानीपुरी, मुंह में पानी आ गया। पाव भाजी भी आजकल तरह तरह की आने लगी हैं, डोसा, चटनी, साउथ इंडियन डिश, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सैंडविच है, जिन्हें खाने के लिए लोग आते हैं, और बहुत ही कम भाव में ये सारी चीज़ें मिलती भी हैं। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, स्वाद बड़ा अच्छा होता है, और मुझे लगता है कि ऐसा सुनने को भी नहीं मिला है कि इस तरह के स्ट्रीट फूड खा करके स्वास्थ्य को किसी तरीके से कोई परेशानी हुई है। तो आप देखें, लगातार ये कतार बढ़ती जा रही है, और ये जो कतार है न केवल एक वड़ा पाव की दुकान पर आपको मिलेगी, बल्कि वो सारे खाने के जो स्टेशन थे वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल खड़े हैं, अभी तो आए ही हैं, लेकिन और भी देखिए 15 मिनट 20 मिनट से लगातार लोग खड़े हैं, और जब वड़ा पाव मिल जाता है तो कुछ इस तरीके से चटकारे लगाते हैं। वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव, भेलपूरी, पानीपूरी, सैंडविच, इसके अलावा साउथ इंडियन डिशेज जिसमें इडली, मेंदू वड़ा, डोसा, तमाम वो चीज़ें आती हैं, और यही चीज़ें मुंबई वाले तो बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन मुंबई के साथ साथ

आपको बता दें कि 15वें नंबर पर जयपुर है और जयपुर से रिधिमा जैन हमारी सहयोगी अब आपको वहां के जो व्यंजन है वहां का जायका आपको बताएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।

0: गर्मा गर्म कचौड़ी से उठती खुशबू, कुल्हड़ में जमी मोटी मलाई वाली लस्सी और तवे पर बनते मूंग दाल के चीले, जयपुर की गलियों में कदम रखते ही स्वाद जैसे हर मोड़ पर ही आपका इंतजार कर रहा हो। यहाँ स्ट्रीट फूड सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि शहर की पहचान, उसकी संस्कृति और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का स्वाद है।
1: जहाँ बात स्वाद और चटकारों की आती है, जायके की आती है, वहाँ राजस्थान का नाम जरूर आता है, खास करके चटपटे मसालेदार खाने की बात जब हो। हम ये बता दें कि जयपुर का खाना वाकई में बहुत ज़्यादा जायकेदार होता है, मसालेदार होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी कुछ भी खाने आता है वो एक बार और वापस ज़रूर आता है, चाहे यहाँ की कचौरी हो, समोसा हो या फिर यहाँ की बेजड़ की रोटी हो। जो यहाँ का लोकल फूड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दाल बाटी चूरमा को भी आजकल एक स्ट्रीट फूड स्टाइल में परोसा जा रहा है, तो ये एक मेन कोर्स नहीं बल्कि स्टार्टर्स के रूप में, स्ट्रीट फूड के रूप में यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जयपुर के कैसे मार्केट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं वो लगाए जाते हैं यहाँ पे। आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन या जो आपका जंक फूड में बहुत सारे ऑप्शन होता है, वो सब एक ही जगह पे अवेलेबल है। ऐसी जो जगह है, ऐसे जो जॉइंट्स हैं, हर शाम यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी होती है, हर कोई अपने मन पसंद का जो भी उनको खाना है वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो चीज़ यहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो ऐसे में सिर्फ जयपुर के एक ये मार्केट नहीं, ऐसे कई सारे स्ट्रीट फूड मार्केट्स हैं जहाँ पर हर शाम लोगों की भीड़ नज़र आती है। क्योंकि इनोवेशन की मैं बात करूँ तो इनोवेशन भी जयपुर के अब स्ट्रीट फूड में काफ़ी देखने को मिली है। सिर्फ जंक नहीं, हेल्दी ऑप्शंस भी अब स्ट्रीट पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इनोवेशन काफ़ी देखने को मिल रही है। जहाँ पे अगर आप कोई किसी भी तरीके का डोसा ले रहे हैं तो उसमें मूंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर हेल्दी ऑप्शंस कैसे निकाले जा सकते हैं स्ट्रीट फूड में, उसका सॉल्यूशन भी जयपुर के यहाँ पे जो फूड जॉइंट्स हैं वहाँ मिल रहा है।
0: जयपुर के स्ट्रीट फूड बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। यहाँ के हर व्यंजन में राजस्थानी मसालों की खुशबू, देसी घी या पारंपरिक तेल का स्वाद, स्थानीय सामग्री और वर्षों पुरानी रेसिपी का मेल मिलता है। यही वजह है कि यहाँ का हर निवाला सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक विरासत का एहसास कराता है। जयपुर के मशहूर कलकत्ती चाट भंडार पर जायके का बाजार सजता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। ये दुकान 1970 से लगातार लोगों को अपने जायकेदार चीला की महक से आकर्षित करती रही है।
1: कुछ तीखापन, कुछ मिठास तो कुछ चटपटे मसाले, यही चीजें हैं जो किसी भी खाने को और भी ज्यादा जायकेदार बनाती है। और यही खाना है जो विश्व भर में अभी भारत का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। और सिर्फ भारत का ही नहीं, भारत के तीन ऐसी सिटीज हैं, एक मुंबई, दूसरा जयपुर और तीसरा दिल्ली। ये तीन सिटीज हैं जो टाइम आउट की लिस्टिंग में टॉप 20 में आई हैं बेस्ट स्ट्रीट फूड के लिए। और जयपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि जयपुर में कौन सा जायकेदार खाना जो है, जो स्ट्रीट फूड है और सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। कितने साल से यहाँ स्टॉल लग रहे? बहुत सालों से तो हम यहाँ आ रहे हैं, आप बता दीजिए कि कुल कितने साल?
2: ये मैडम हमारी दूसरी पीढ़ी है, 56 साल हो गए, 1970 की दुकान है।
1: तो अब देखिए वहाँ बन रहे हैं चीले, तो कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो तो आप हमें पहले बता भी दीजिए और हमारी भी एक प्लेट लगा दीजिए जिससे हम भी वापस से एक बार टेस्ट करें।
2: ये जो चीला बनता है ये 81 आइटम से बनता है। इसमें मूंग की दाल, गरम मसाले, ड्राई फ्रूट्स, पाचक चीजें, गैस्ट्रिक आइटम नहीं है, चना नहीं है, उड़द नहीं है, मोट नहीं है, बेसन नहीं है, उसके अलावा ये चीला तैयार किया है। इसके साथ चार तरह की चटनी, दो तरह का दही, पूरा सिंगार करके चीला देते हैं हम।
1: अच्छा, यहाँ पे दही बड़े भी सर बना रहे हैं, आप उसका भी बता दीजिए कि क्या क्या उसमें डल रहे हैं।
2: वो दही बड़ा मूंग की दाल का बनता है, पेवर पेवर छिलके वाली दाल का बनता है, और उसके ऊपर वही चार तरह की चटनी दही डाल के ऐसे सर

0: किया जाता है। और हमारे जो चटनी है उनमें भी इमली अमचूर का प्रयोग नहीं करते हम बिल्कुल भी। जो आप हमारी मीठी चटनी खाओगे ना वो खाली खजूर और डाबर के चमनप्रास से बनती है। वो
1: यहाँ बनने वाला चीला सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि हाई प्रोटीन भी माना गया है। मूंग दाल के साथ कई पौष्टिक सामग्री और खास मसालों का मिश्रण इसे सामान्य स्ट्रीट फूड से कुछ अलग पहचान देता है। वहीं मूंग दाल से तैयार दही भल्ले हल्के मुलायम और स्वाद से भरपूर होते हैं। यही कारण है कि सुबह से ही यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।
2: बहुत ही अच्छा था, टेस्ट वाइज ऑसम था। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बस टेस्ट वाइज रियली गुड, रियली हेल्दी। यस यस,
3: दही बड़ा और मूंग की दाल का चीला एब्सोल्युटली फुल ऑफ प्रोटीन, आयुर्वेदिक। इनके जब पिताजी यहाँ बैठा करते थे तब जब हम पे करने जाते थे 60 रुपया, तब उस टाइम पर मैं वो साथ में एक आयुर्वेदिक गोली देते थे जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती थी। मुझे आज भी रिकॉल होता है वो दिन जब यहाँ पर मैं इनके बैक साइड के अंदर में एक 3-व्हीलर रखा होता था। आज हमने यहाँ खड़े होके खाया, उस टाइम पर मैं हम लोग उस रिक्शा के अंदर में बैठ के खाया करते थे।
1: अगर किसी व्यंजन ने जयपुर की पहचान देश दुनिया तक पहुँचाई है तो वो है प्याज की कचौड़ी। बाहर से सुनहरी कुरकुरी और अंदर से मसालेदार हल्की मीठी और रसदार प्याज की भरावन वाली ये कचौड़ी हर किसी की पसंद है। प्याज को धीमी आंच पर मसालों के साथ इस तरह पकाया जाता है कि उसका स्वाद ही पूरी तरह निखर कर सामने आता है। कई लोग तो इसे बिना चटनी के ही खाना पसंद करते हैं। जयपुर की लस्सी की बात ही कुछ और है। जयपुर के स्ट्रीट फूड की चर्चा लस्सी वाला के बगैर अधूरी मानी गई है। 1944 में शुरू हुई इस दुकान को आज चौथी पीढ़ी आगे ले जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ आज भी आधुनिक फ्लेवर की जगह पारंपरिक स्वाद को ही तरजीह दी जाती है।
4: चटपटे मसालेदार दही बड़े और साथ ही में जो हेल्दी प्रोटीन चीला है वो तो हमने आपको दिखा दिया, और उसके साथ साथ में जो मसालेदार कचौरियाँ हैं एकदम खस्ता वो भी हमने आपको जयपुर की दिखा दी है। तो जैसे हमने कहा था कि चटपटा तीखा और मीठा जो है वो तीनों चीजें जो राजस्थान में फेमस है वो तीनों हम आपको दिखाएंगे। तो अब बारी है मिठास की, और मिठास में हम कोई मिठाई नहीं आपको लेके आएंगे, एकदम रिफ्रेशिंग जगह जो कि है जयपुर का ये बहुत ही फेमस लस्सी वाला जो कि 1944 से यहाँ पे है।
5: और लस्सी की बात करें तो आज हम जहाँ रोड के सामने जिस लस्सी वाले खड़े हैं मेरे हिसाब से मोर देन 50 to 80 ईयर्स की लेगेसी है इनकी, और इनके अलावा यहाँ पे लस्सी कोई और नहीं देता है। और खासियत ये है कि ये बहुत अर्ली मॉर्निंग खोलते हैं और 12 से पहले क्लोज भी कर जाते हैं, उसके बाद ये ओपन नहीं करते हैं, और ऐसी लस्सी तो जयपुर में कोई दे ही नहीं पा रहा है। और मुझे मेरे हिसाब से 30 ईयर्स हो गए आज इनकी लस्सी पीते हुए।
1: जयपुर की हर दुकान अपने साथ कई दशक पुरानी कहानी लेकर खड़ी है और हर रेसिपी में पीढ़ियों का अनुभव शामिल है। शायद इसलिए दुनिया के बेहतरीन स्ट्रीट फूड शहरों की सूची में जयपुर ने अपनी जगह बनाई है।
4: जयपुर की कचौरी और लस्सी का स्वाद तो आपने चख ही लिया है। अब हम आपको लेके चलेंगे तीसरी सिटी यानी कि चटोरों की गली के नाम से जो फेमस है, और वो सिटी है दिल्ली 6 जहाँ मिलेगी चाट पापड़ी। तो आइए लिए चलते हैं आपको दिल्ली 6 और वहाँ के चटपटे चाट की गलियों में।

0: अब बात दिल्ली के स्ट्रीट फूड की, क्योंकि दुनिया की मशहूर टाइम आउट मैगजीन ने साल 2026 की वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रीट फूड सिटीज की जो लिस्ट जारी की है, राजधानी दिल्ली 19वें पायदान पर है। यहाँ के चटपटे फूड से लेकर मसालेदार खाने तक हर जायके का लोग बड़े ही चाव से लुत्फ उठाते हैं। कमला नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की पहली पसंद, शॉपिंग का बड़ा ठिकाना और स्ट्रीट फूड का ऐसा अड्डा जहां सुबह से लेकर देर रात तक स्वाद की महफिल जमी रहती है। यहां हर 10 कदम पर एक नई खुशबू मिलेगी और हर गली में एक नया स्वाद।
1: दिल्ली के खाने को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर दिल्ली वाले का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा कर दिया है, मेरा भी कर दिया है, क्योंकि मैं खुद एक दिल्ली वाली हूँ। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड की सूची में दिल्ली का भी नाम है। हालांकि जयपुर का भी नाम है, बॉम्बे का भी नाम है, लेकिन मेरी दिल्ली का भी नाम है। और इस वक्त मैं आ गई हूँ कमला नगर मार्केट में, क्योंकि जब बात दिल्ली की हो तो मैं ये मार्केट डेफिनेटली नहीं भूल सकती। और उससे भी ज़्यादा खास ये हो गया है कि दिल्ली का जो खाना है वो देश भर में तो राज कर रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, अब वो पूरी दुनिया में भी अपना जादू जो है वो फैला रहा है। तो दिल्ली के स्वाद में क्या है कुछ खास, किस तरीके का स्वाद यहाँ पर मिलता है, हर गली में आपको एक खुशबूदार अच्छी खुशबू जो है वो उठती हुई नजर आएगी, हर दुकान पर आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी और हर स्वाद में आपको एक ना एक कहानी वो नजर आएगी। तो कैसा स्वाद है दिल्ली का, ये दिखाने के लिए ले आई हूँ मैं आपको आज कमला नगर मार्केट में।
0: दिल्ली दिल वालों की तो है ही, लेकिन अब स्वाद वालों की भी पसंद बन चुकी है। जरा सोचिए, अगर दुनिया आपसे पूछे कि सबसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड कहाँ मिलता है, तो इसका जवाब सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे रही है। ऐसी ही दिल्ली को स्ट्रीट फूड ऑफ कैपिटल नहीं कहा जाता। अगर दिल्ली की पहचान में व्यंजन की एक प्लेट रखनी हो तो शायद सबसे पहले नाम आएगा छोले भटूरे का। गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे, मसालेदार छोले, ऊपर से अचार, हरी मिर्च और प्याज, बस एक प्लेट और पूरा दिन बन जाएगा।
2: लेन है ना, आप पूरी लेन देखेंगे, डोसा भी मिलता है, चाट पापड़ी मिलती है, परांठा भी मिलता है, कुल्फी भी मिलती है और बहुत ही रीजनेबल है। कहीं से भी कंपेयर करें, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे हाउस होल्ड के लिए, किसी के लिए है।
0: दिल्ली की कचौड़ी के तो कहने ही क्या, बाहर से जितनी कुरकुरी, अंदर मसालेदार भरावन, ऊपर से आलू की सब्जी और फिर शुरू होता है असली स्वाद का धमाका। ये सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं है बल्कि इमोशन है।
1: दिल्ली में अगर कोई रहता है तो वो बिना छोले भटूरे के तो बिल्कुल नहीं रह सकता। और जब बात लंच की हो तो इस तरीके से लाइन जो है आपको हर एक छोले भटूरे की शॉप पे नजर आएगी। अच्छा, मैं इस वक्त हूँ ओमदी हट्टी में, ओमदी हट्टी हो, चाचा की छोले भटूरे हो, इन सब जगह पे सबसे ज्यादा लोगों की जो भीड़ है वो नजर आती है। गरम गरम भटूरे जो है वो निकलते हुए आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से जो स्वाद है वो यहाँ पर आपको तलता हुआ नजर आ जाएगा। और साथ में ये जो काले छोले हैं, जो भरपूर मसालेदार, जो चटपटा स्वाद है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके की जो भीड़ है वो डेफिनेटली जो है मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सर छोले भटूरे का स्वाद ले रहे हैं, दिख भी रहा है।
3: एक्चुअली मेरा स्कूल यहाँ होता था 15 नंबर 2 में। मैं 92 में यहाँ पढ़ता था। मैं अब रोहिणी शिफ्ट हो गया हूँ, फिर भी मैं आज कमला नगर आया था बहुत दिन बाद। तब तो इनके रेट बहुत कम थे, अब तो 120 फुल प्लेट हो गए। उस टाइम समोसे हम स्कूल के सारे दोस्त यार खाते थे, कई तो ऐसे भाग जाते थे, बिगड़ पैसे थे चले जाते थे, फिर भी कुछ नहीं कहते थे भैया, क्योंकि स्कूल का सब रश नहीं जाता था। बहुत टाइम से आ रहे
1: दिल्ली वाले चटोरे हैं ना, मतलब
3: बहुत ज्यादा।
1: लेकिन ये जो चटोरे हैं वो दिल्ली की वजह से, क्योंकि दिल्ली में जो स्वाद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता,
3: कहीं नहीं मिलता। यस,
1: अच्छा दिल्ली में अगर मैं स्ट्रीट फूड की बात करूँ, नंबर वन नाम लिस्ट में कौन सी डिश का रहता है
3: स्ट्रीट डिश
1: स्ट्रीट फूड में?
3: छोले भटूरे आएंगे सबसे पहले।
1: छोले भटूरे के बाद
3: ब्रेड पकौड़ा।
0: बेड़मी पूरी की खुशबू, पुरानी दिल्ली का असली स्वाद, उड़द दाल से बनी बेड़मी, मसालेदार आलू, दही और ऊपर से अचार, यानी एक प्लेट और पूरा पेट खुश।
4: हमने तो जी आज तक इनके इनसे बढ़िया बेड़मी पूरी का खाई नहीं है। और हमारे संडे का जो सुबह ब्रेकफास्ट होता है वो यहीं पे ही होता है। अभी हमारे कॉलेजेस खुले हैं तो हम यहाँ दिन में एक बार जरूर आते हैं, या तो बेड़मी पूरी खाने या इनकी लस्सी। इनकी लस्सी भी बहुत अच्छी है, जो क्वालिटी ये देते हैं हमारे आसपास कहीं नहीं मिलती।
1: अच्छा, दिल्ली की अगर स्ट्रीट फूड की मैं बात करूं तो क्या सबसे पहले आप कौन सी डिश नाम सबसे पहले आता है?
5: बेड़मी पूरी होती है वो हर कोई इन जैसी नहीं दे पाएगा मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जो ये फ्लेवर्स देते हैं ना, मतलब अल्टीमेट मेरे को पसंद नहीं है सच, बट मैं यहाँ खाना पसंद करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है जैसे देखना बिल्कुल ऐसी मोटी मोटी, मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है इसके।
1: दिल्ली वाले छोले भटूरे की भी फैन होते हैं?
5: हमें ये ज्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों।
0: दिल्ली के स्ट्रीट फूड की बात हो और चाट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आलू टिक्की, दही, हरी चटनी, मीठी चटनी, अनार, सेब और मसालों का ऐसा तड़का कि पहली प्लेट खत्म होते ही दूसरी का मन कर जाए, और अगर मसाले के बाद मीठा चाहिए तो कुल्फी तैयार है। यानी दिल्ली वालों को टेस्ट बैलेंस करना भी बखूबी आता है।
6: बट या द टेस्ट इज गुड, इट्स रिफ्रेशिंग, इट्स कूल, सो या इट वाज गुड।
7: बहुत अच्छा लगा है जी, स्पाइसी है यहाँ का, राजस्थान का थोड़ा सा नॉर्मल टेस्ट रहता है, इसलिए दिल्ली यहाँ का खाने आए हैं स्पेशली। हाँ, स्पेशली स्ट्रीट फूड।
1: पहले आपने चाट ही ट्राई करी है या फिर इसके अलावा भी आपने और व्यंजन ट्राई करे?
7: गोलगप्पे करे हैं ट्राई, और अब ये सेकंड मेरी आइटम पापड़ी चाट है।
0: दिल्ली के स्ट्रीट फूड में इतनी वैरायटीज हैं, आप एक दिन में सभी पकवानों का स्वाद तो ले ही नहीं सकते। लेकिन दिल्ली 6 यानी पुरानी दिल्ली में ऐसी कई दुकानें आपको मिल जाएंगी जो सालों से लोगों का दिल जीतती आई हैं।
1: दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं है बल्कि स्वाद की राजधानी भी, और यहाँ पर आपको हर तरीके का स्वाद एक ही जगह पर मिलेगा, चाहे आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, लेकिन दिल्ली वाले जो स्वाद पसंद करते हैं वो यहाँ डेफिनेटली मिलने वाला है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज चले।
8: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर दिखा जवानों का जोश। मीटिंग रिट्रीट के फाइनल रिहर्सल में बीएसएफ के जांबाजों ने की पारंपरिक ड्रिल। देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल, बड़ा तालाब में नावों की निकाली गई तिरंगा रैली, हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न में शिरकत। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें, हजारों महिलाओं ने सर पर कलश रख कर निकाली यात्रा, भोले की भक्ति में झूमे। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान का नया अंदाज, बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर, स्वर्ण श्रृंगार घेवर की कीमत 21,000 रुपए। रायपुर में देखिए बदलाव वाली गुड न्यूज। कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक।
11: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
12: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर होती है। नतीजा ये है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहाँ वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। ऐसी दो खबरों की पड़ताल आज हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह अरुणाचल प्रदेश का है जहां पर चीनी सेना ने घुसपैठ की है। क्या इसकी सच्चाई, आगे जानिए। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल में अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। क्या है वायरल वीडियो और इस दावे की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते फैक्ट चेक।
11: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
12: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आमने सामने खड़े सैनिक आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश का है जहां पर चीनी सेना ने घुसपैठ कर ली है, ये वही का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
13: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसकर कब्जा जमा चुकी है। वीडियो में एक व्यक्ति सेल्फी कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ दूरी पर आमने सामने खड़े सैनिक आपस में बहस करते हुए देखे जा सकते हैं। इस दौरान वहां पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन वाले 60 किलोमीटर अंदर भारत में घुसकर कब्जा कर रहे, चीन का हिस्सा बना रहा है अरुणाचल प्रदेश को। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
12: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा ये कर रहे हैं कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसकर कब्जा जमा चुकी है। वीडियो में एक व्यक्ति सेल्फी कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ दूरी पर आमने सामने खड़े सैनिक भी आपस में बहस करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी पुख्ता प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर तक चीनी सेना के घुसने की बात बताई गई हो। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि चीन की ओर से अरुणाचल में कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे सुना तो ये साफ हुआ कि ये बांग्ला भाषा है और वीडियो अरुणाचल प्रदेश का है तो फिर जाहिर सी बात है कि यहां पर बांग्ला आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं। ये अपने आप में वीडियो की सत्यता और संदेह पैदा करता है। ऐसा लग रहा है कि ये बांग्लादेश बॉर्डर का वीडियो हो सकता है। साथ ही सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए।
13: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और इसे सर्च किया। इस दौरान हमें इससे हूबहू मिलता जुलता एक वीडियो बांग्लादेशी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मिला। यहां इसे 20 जून को पोस्ट किया गया था। कैप्शन के मुताबिक ये घटना बांग्लादेश के चंपई नवाबगंज सीमा की है, जहां भारतीय बीएसएफ और बांग्लादेश के फोर्स बीजीबी आमने सामने आ गई थी। इस वीडियो में गुलाबी शर्ट पहने उसी शख्स को देखा जा सकता है जो वायरल क्लिप में भी मौजूद है। इसके अलावा हाथ में डंडा लिए हुए एक व्यक्ति भी दोनों वीडियो में देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें कई बांग्लादेशी आउटलेट्स की रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत से बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश कर रहे 20 लोगों को बांग्लादेशी सुरक्षा बल ने रोक दिया था, जिसे लेकर बीएसएफ और बीजीबी के बीच कहासुनी हो गई थी। वैसे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों को अपने देश लौट जाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश वापस जाने के लिए हजारों लोग सीमा पर एकजुट हुए थे। उसी समय बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसे लोगों की वापसी रोकने की कोशिश की गई, जिसे लेकर दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश का नहीं बल्कि भारत बांग्लादेश सीमा का है और भारत की बीएसएफ और बांग्लादेशी फोर्स बीजीबी के बीच हुई कहासुनी को दिखाता है। रिद्धेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
14: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट करते नोकझोंक करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह नेपाल का हालिया वीडियो है, जहां पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।

0: हाल ही में नेपाल के कुछ इलाकों, खासकर सुनसरी जिले के देवानगंज इलाके में दो समुदाय के बीच तनाव और हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई थी। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट और नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये नेपाल का हालिया वीडियो है, जहां पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर नेपाल से भगाया जा रहा है, जो कस्बाए नेपाल बनाने की साजिश के तहत बसाए गए थे। सरकार इनसे वोटिंग राइट्स वापस ले रही है। डेमोग्राफी परिवर्तन पर अलर्ट हुए नेपाल के हिंदू। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: असल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में किसी सड़क पर लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान वहां पर भगदड़ का माहौल भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं, नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल का हालिया वीडियो है, जहां धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये बांग्ला निकली। वीडियो अगर नेपाल का है तो फिर यहां सिर्फ बांग्ला में ही लोग बात क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ अटपटा सा लगा। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और नेपाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। वीडियो अगर वाकई सच्चा है तो फिर ये अपने आप में एक बड़ी खबर होती। मीडिया आउटलेट्स में ये खबर जरूर होती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं दो गुटों के बीच हुई झड़प को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक बांग्लादेशी समाचार के फेसबुक पेज पर 4 जुलाई को पोस्ट किया गया मिला। पोस्ट के कैप्शन के अनुसार ये वीडियो गुलिस्तान में बीएनपी और जमाते कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का है, और इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। पड़ताल के दौरान हमें 4 जुलाई 2026 को बांग्लादेश की प्रमुख समाचार वेबसाइट पर भी एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में हमें वायरल क्लिप वाले दृश्य भी नजर आए। रिपोर्ट में बताया गया था कि ये वीडियो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गुलिस्तान का है। यहाँ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के कार्यकर्ता जुलूस के दौरान आपस में भिड़ गए थे। इस हिंसक झड़प में लाठी डंडे भी चले, पथराव हुआ और चाकूबाजी में जमात इस्लामी के एक नेता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सर्च के दौरान हमें एक और बांग्लादेशी समाचार संस्थान के फेसबुक पेज पर भी 4 जुलाई को अपलोड हुआ ये वीडियो मिला। यहाँ भी बताया गया था कि ये घटना बांग्लादेश के गुलिस्तान की है, जहाँ पर बीएनपी और जमात के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो नेपाल का नहीं है, ये वीडियो बांग्लादेश का है, जहां एक जुलूस के दौरान बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: स्कूल के मंच पर बच्चों की परफॉर्मेंस हमेशा खास होती है। उनकी छोटी छोटी गलतियां और मासूम हरकतें कई बार ऐसा पल बना देती हैं जिसे लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एक नन्ही बच्ची माँ दुर्गा का रूप बनकर स्टेज पर पहुंचती है, लेकिन परफॉर्मेंस के बीच अचानक अपनी लाइन भूल जाती है। इसके बाद बच्ची जो करती है उसे देखकर वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे ने श्लोक की दो लाइनें तो आसानी से बोल दी, लेकिन तीसरी लाइन पर पहुंचते ही वो अटक गई। कुछ पल तक बच्ची सोचती रही कि आगे क्या बोलना है। जब उसे कुछ याद नहीं आया तो उसने स्टेज के सामने खड़े एक व्यक्ति की तरफ देखा और बेहद सहज अंदाज में पूछ लिया, और क्या था? बस बच्ची का इतना कहना था कि पूरा माहौल हंसी और तालियों से गूंज उठा। दर्शकों के साथ साथ वहां मौजूद शिक्षक भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। खास बात ये थी कि बच्ची ने अपनी गलती को लेकर घबराने के बजाय बेहद मासूम अंदाज में मदद मांग ली। उसका यही प्यारा सा रिएक्शन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। अक्सर कहा जाता है कि इंसान की किस्मत की लकीरें उसके हाथों में होती हैं, लेकिन बिहार के कटिहार जिले की रहने वाली मासूम लक्ष्मी ने इस कहावत को पूरी तरह बदल दिया है। जन्म से ही दोनों हाथ न होने के बावजूद लक्ष्मी आज अपने पैरों से अपनी तकदीर की इबारत लिख रही हैं। उसका ये अटूट जज्बा और हिम्मत देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं और सिर सम्मान से झुक जाता है। स्कूल के कमरे में जब लक्ष्मी बैठती है तो उसकी कुछ करने की इच्छा देखने लायक होती है। वो बिना किसी की मदद के अपने पैरों की उंगलियों से बैग के जिप खोलती है, पैर से ही कॉपी निकालती है और पन्ने पलटती है। फिर पैरों के अंगूठे और उंगलियों के बीच पेन दबाकर पन्नों पर इतनी सफाई से लिखती है कि अच्छे अच्छे देखकर दंग रह जाएं।

कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल देखने को मिल जाते हैं जो बिना कुछ कहे ही दिल को छू जाते हैं। ना कोई बड़ा भाषण, ना कोई खास दिखावा, बस एक छोटी सी हरकत और उसका मतलब बहुत गहरा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक अघोरी बाबा के सामने एक छोटी बच्ची नजर आती है। आमतौर पर लोग अघोरी साधुओं के पास आशीर्वाद लेने और उसका सम्मान करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला। अघोरी बाबा ने खुद इस छोटी बच्चे के सामने झुककर उसका सम्मान किया। उनका ये अंदाज देखकर वहाँ मौजूद लोग भी हैरान रह गए।

सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दो भाइयों का अपनापन, भरोसा और भरपूर प्यार देखने को मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे एक लाइन में बैठकर खाना खा रहे हैं। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ है। जब वो अपने भाई को अकेले बैठा हुआ देखता है तो वो उसके पास पहुँचता है और फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगता है। छोटे भाई आराम से खाना खाए इसका वो खास ख्याल रखता है। इस वीडियो को यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं और दिल खोल कर इस पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। दो भाइयों की इस बॉन्डिंग पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बच्चे और प्यारे पपी का एक साथ खेलते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों की मासूम हरकतें और एक दूसरे के प्रति बेइंतहा प्यार लोगों का दिल जीत रहा है। पपी का बच्चे के पास बार बार जाना, कूदना और प्यार जताना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। लोग इस वीडियो को सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला बता रहे हैं। वीडियो को देखकर यूजर्स यही कह रहे हैं कि कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें ऐसे ही छोटे छोटे पलों में छिपी होती हैं।

0: सोशल मीडिया पर एक पपी का वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पपी एक मजदूर के साथ काम करने की बड़े ही प्यारे ढंग से नकल उतार रहा है। पपी सीधे तौर पर कोई मदद तो नहीं कर पाता, लेकिन फावड़े से मिट्टी हटाते इंसान के पीछे पीछे अपनी नन्ही टांगों से मिट्टी को वैसे ही पीछे ढकेलता नजर आता है। पपी पूरी शिद्दत के साथ इंसान के काम को कॉपी करने की कोशिश करता है। इंटरनेट यूजर्स को पपी की मासूमियत और काम करने का अंदाज बहुत पसंद आ रहा है।
1: पनीर से बनता है और उसके साथ जो चीनी और वो मिक्स करा हुआ है। अच्छा अच्छा।
0: माँ को लगता है कि बेटा दुबला होता जा रहा है, इस चक्कर में वो उसे खूब खिलाती है, लेकिन बेटा फिटनेस फ्रीक हो तो मामला थोड़ा कठिन हो जाता है। एक माँ के सामने ये स्थिति आई तो उन्होंने उसको हैंडल करने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। वीडियो के शुरू में माँ अपने बेटे से कहती हैं, कुछ नहीं होता है, पनीर से बनता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करता बेटा कहता है कि अच्छा पनीर से बनता है, मीठा नहीं होता इसमें? माँ कहती है नहीं। इस दौरान बेड के कोने में छड़ी रखी दिखती है, फिर माँ हाथ में रसगुल्ला लिए हुए ही डंडा उठाती है, मारने को भी होती है, लेकिन वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। यूजर्स माँ बेटे के इस क्यूट क्लेश पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के बहुत से मौके अक्सर वायरल हो जाते हैं। कई बार सफर करते हुए लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जो इंटरनेट को खूब पसंद आ जाता है। एक सरदार जी के साथ यही हुआ है। उन्होंने दिल्ली में सफर के दौरान ऐसा गाना गाया कि लोग उनके दीवाने हो गए हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं, इस पर जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं।
2: बाजी ताली बजाओ ना, बाजी ताली, हाँ ताली।

कभी कभी जानवरों के साथ बिताया गया एक छोटा सा पल भी चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी होता है। कुछ ऐसा ही नजारा उस वक्त देखने को मिला जब भारतीय वन सेवा अधिकारी परवीन कासवान दो रेस्क्यू किए गए हाथियों से मिले। फलों से शुरू हुई ये मुलाकात देखते ही देखते हाथियों के अपने ही अंदाज वाले टोल टैक्स तक पहुंच गई। वीडियो में परवीन कासवान दोनों हाथियों से लोगों की मुलाकात करवाते हैं। दरअसल गजराज और तीस्ता रानी को उस वक्त रेस्क्यू किया गया था जब हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ा। इसके बाद दोनों को सुरक्षित जगह पर लाया गया और अब उनकी अच्छी तरह देखभाल की जा रही है। हालांकि इन दोनों की खास आदत भी है, जब भी कासवान उनके पास पहुंचते हैं तो हाथी उनसे अपना टोल टैक्स वसूलना नहीं भूलते। वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। कासवान उन्हें फल खिलाते हैं और दोनों हाथी बड़े आराम से उनके पास पहुँचकर अपने हिस्से का फल लेते नजर आते हैं।

0: इन दिनों तो विशाल कछुओं का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बड़े जॉइंट टॉर्टॉइज एक दूसरे को धक्का देते हैं और पलटने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें चिड़ियाघर का कर्मचारी दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। वीडियो में दोनों की लड़ाई देखने में काफी मजेदार लगती है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों कछुए आमने सामने हैं। दोनों अपने सिर को आगे कर एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। कभी एक कछुआ दूसरे को पलटने की कोशिश करता है तो कभी दूसरा पलट कर जवाब देता है। कछुओं की लड़ाई देखकर लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इतने भारी और धीमे दिखने वाले जानवर इतने आक्रामक भी हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहे कछुए सुलकाटा टॉर्टॉइज हैं, जिन्हें अफ्रीकन स्पर्ड टॉर्टॉइज भी कहा जाता है। ये कछुए काफी बड़े होते हैं और इनका व्यवहार कई बार बेहद आक्रामक हो सकता है। खासकर नर कछुओं के बीच इलाके और प्रभुत्व को लेकर टकराव देखने को मिलता है। वे अपने मजबूत शरीर और गले के नीचे मौजूद सख्त हिस्से की मदद से दूसरे कछुए को धक्का देते हैं। कई बार उनका मकसद सामने वाले को पलट देना होता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: आजादी की लड़ाई के उन गुमनाम नायकों की जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन न तो उन्हें सम्मान मिला और न ही पहचान। ऐसे ही गुमनाम नायकों में से एक क्रांतिकारी ने दिल्ली के चांदनी चौक में गुमनाम क्रांतिकारियों के लिए एक मंदिर बनवाया, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो गुमनाम न रह जाए।
2: लाल किले के पास मौजूद ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा या तस्वीरें नहीं है, बल्कि उन लोगों के चित्र हैं जिनके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया। शुरुआती दौर में इतिहास लिखने वाला एक फोकस कुछ गिने चुने बड़े नेताओं और संगठनों तक ही सीमित रह गया। पूरा हिंदुस्तान जिस जश्न आजादी की तैयारी में जुटा है, वो किसी एक व्यक्ति के बलिदान और संघर्ष का नतीजा नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई ऐसे बलिदानी थे जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, फिर भी आने वाली पीढ़ियों के लिए गुमनाम रह गए। अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद इतिहास ने उनके योगदान का सही मूल्यांकन नहीं किया। आजादी के किस्से कहानियों या उससे जुड़े इतिहास के पन्नों में उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। सैकड़ों हजारों या लाखों क्रांतिकारी गुमनाम नायकों की तरह रह गए। देश की स्वाधीनता के लिए साझा संघर्ष, त्याग और बलिदान के बावजूद उन्हें आजादी की लड़ाई के चर्चित चेहरों या नायकों की तरह न सम्मान मिला और न ही पहचान।
3: मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ना, अमूमन आप मंदिर जाते हैं तो आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं। कोई मंदिर राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, तो कोई किसी माता का है। लेकिन आज दिल्ली के चांदनी चौक में मैं आपको ऐसे मंदिर में लेकर आया हूँ जहाँ पर कोई ईश्वर कोई देवता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी जान गंवाने वाले, उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले वीर बलिदानियों की यहाँ फोटो लगी है, तस्वीर लगी है, उनके बारे में जानकारी लिखी गई है। ये वो वीर बलिदानी हैं जिनके बारे में इतिहास में लिखा ही नहीं गया, अगर लिखा गया तो एक दो लाइनों में निपटा दिया गया। आइए आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के भीतर।
2: दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद शिव शक्ति नाम का ये मंदिर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गुमनाम क्रांतिकारियों को भी उनके हिस्से का यश दिलाता है। इस अनोखे मंदिर को एक पूर्व क्रांतिकारी ने ही बनवाया था, जिन्हें देश की आजादी के बाद गुमनाम नायकों के साथ जाने अनजाने हुई अनदेखी परेशान करने लगी थी। अलग अलग राज्यों से 100 क्रांतिकारियों की तस्वीर तब से इस बलिदानी मंदिर की शोभा बढ़ा रही है।
3: चांदनी चौक में इस मंदिर का निर्माण स्वर्गीय स्वर्णलाल पारूथी जी ने करवाया था। उन्हें ये देखकर बहुत टीस पहुंची थी कि कई सारे ऐसे क्रांतिकारी जिनकी बड़ी भूमिका थी उनके बारे में इतिहास में लिखा नहीं गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश भर से ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में सूचनाएं जुटाई और उनकी तस्वीरों के साथ लगभग 100 बलिदानियों की तस्वीर यहाँ पर लगाई, उनके बारे में लिखा। ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है और यहाँ पर भी आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शहीद भगत राम जी की। इनके बारे में लिखा ये गया है कि शहीद हरि किशन लाल के भाई भगत राम महान देशभक्त थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया और 5 वर्षों तक जेल में रहे। मुद्दे की बात अब ये, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारत से बाहर जाने लगे तो भगत राम जी ने अपनी जान पर खेल कर उन्हें काबुल तक पहुँचाया। आप सोचिए, वो इंसान जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी, उनका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। उनकी तस्वीर ढूंढकर उनके बारे में मुख्य जानकारी निकालकर यहां पर लगाया गया है।
2: पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के रहने वाले क्रांतिकारी नवजीवन घोष भी उन गुमनाम नायकों में शामिल थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। फिर भी आजादी से जुड़े मुख्य धारा के इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिली। जबकि ब्रिटिश पुलिस के भीषण अत्याचार और अमानवीय शारीरिक प्रताड़ना के कारण सितंबर 1934 में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी क्रूरता पर पर्दा डालते हुए उनके मृत्यु को आत्महत्या करार दिया था।
3: ये नाम है नवजीवन घोष का। इनके बारे में लिखा है, मिदनापुर के जिला न्यायाधीश वर्ष की हत्या के बाद नवजीवन के भाई निर्मल जीवन को फांसी पर लटका दिया गया।
2: आजादी से जुड़े इतिहास में खास मुकाम पाने में नाकाम रहे एक क्रांतिकारी ने राष्ट्रवाद का ऐसा बीज बोया कि पूरा परिवार ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के रास्ते पर चल पड़ा। क्रांति की पाठशाला में उन्होंने अपने बेटों को हथियारों का इस्तेमाल करना और सटीक निशाना लगाना सिखाया। देश के लिए बलिदान, त्याग और संघर्ष की ऐसी अनगिनत कहानियां यहां मौजूद हैं, जिनकी गवाही के तौर पर कई और क्रांतिकारियों की तस्वीर यहां लगी है। करीब 56 साल से यह जगह स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों और आजादी से जुड़े उनके योगदान को अपने भीतर समेटे हुए है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आजादी की उस लड़ाई का स्मरण करवाता है जिसके लिए ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर दिखा जवानों का जोश, मीटिंग रिट्रीट के फाइनल रिहर्सल में बीएसएफ के जांबाजों ने की पारंपरिक ड्रिल। देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल, बड़ा तालाब में नावों की निकाली गई तिरंगा रैली, हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न में शिरकत। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें, हजारों महिलाओं ने सर पर कलश रख कर निकाली यात्रा, भोले की भक्ति में झूमे। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान का नया अंदाज, बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर, स्वर्ण श्रृंगार घेवर की कीमत 21,000 रुपए। रायपुर में देखी बदलाव वाली गुड न्यूज, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक।

नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिले। गोलगप्पे का खट्टा खट्टा पानी, मुंबई का तीखा वड़ा पाव और जयपुर की करारी प्याज वाली कचौरी, मुंह में पानी आ गया ना। पानी आना लाजमी है। आप देखिए, स्ट्रीट फूड का जादू ही कुछ ऐसा होता है कि पेट भले ही भर जाए लेकिन नियत भरती ही नहीं है। और अब तो देखिए, हमारी इस देसी जायके की दीवानी पूरी दुनिया हो चुकी है, क्योंकि टाइम आउट मैगजीन ने दुनिया के बेस्ट स्ट्रीट फूड शहरों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के एक दो नहीं बल्कि तीन तीन शहरों के नाम शामिल हैं। टॉप 20 में जहां मुंबई 10वें स्थान पर है, तो वहीं पिंक सिटी जयपुर 15वें और दिलवालों की दिल्ली है 19वें नंबर पर। अब दिल्ली की पुरानी गलियों की चाट हो, छोले भटूरे हो, मुंबई का चटपटा वड़ा पाव हो, भेलपुरी हो या फिर जयपुर की कचौरी या घेवर हो, भाई जितने मर्जी नाम ले लो, ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इन शहरों के जायके में ऐसा कुछ खास है जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना सा बना दिया है। अब क्या कुछ खास है इसमें, ये जानने के लिए हमारे साथ तीन साथी तीनों शहरों के स्ट्रीट फूड का जायका आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रीट फूड के सुपर थ्री।

0: वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपुरी, प्याज कचौड़ी, समोसा, मिर्ची वड़ा, चाट, गोलगप्पे और छोले भटूरे जैसे कई स्ट्रीट फूड्स हैं जिनको देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। ये ऐसे स्ट्रीट फूड हैं जो शहर की पहचान हैं। शहर दर शहर व्यंजन बदलते हैं, स्वाद बदलता है, जायका बदलता है, लेकिन इनकी पहचान शहर की गलियां होती हैं। कहने का मतलब है कि हर शहर की अपनी खासियत होती है, हर शहर का अपना स्वाद, खुशबू और पहचान होती है। कहीं चटपटा स्ट्रीट फूड लोगों का दिल जीत लेता है तो कहीं शाही अंदाज में बना लजीज खाना आकर्षित करता है। हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। हर राज्य का भोजन, मिठाइयाँ और स्ट्रीट फूड की अपनी खासियत है। अगर बात स्ट्रीट फूड की ही होती है तो देश में कई शहर ऐसे हैं जहाँ का स्ट्रीट फूड काफी फेमस है। ऐसा सिर्फ हमारे देश में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में कई शहरों की पहचान तो स्ट्रीट फूड की वजह से ही होती है। स्ट्रीट फूड को लेकर लोगों में ऐसी दीवानगी है कि वो सिर्फ खाने के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ऐसे में टाइम आउट ने एक सर्वेक्षण कराया है। बेस्ट स्ट्रीट फूड सिटीज जैसी वैश्विक शहर रैंकिंग और पाक कला सर्वेक्षणों के अनुसार सबसे ज्यादा चर्चित स्ट्रीट फूड स्थल एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में फैले हुए हैं। जिनमें सबसे आगे हैं वियतनाम में हो ची मिन सिटी, मलेशिया का कुआलालंपुर दूसरे पायदान पर है, जबकि इंडोनेशिया का जकार्ता तीसरे नंबर पर है। भारत से मुंबई 10वें नंबर पर, जयपुर 15वें और दिल्ली 19वें नंबर पर है। आज हम भारत के तीन उन मशहूर शहरों के स्ट्रीट फूड की बात करेंगे जिन्होंने टाइम आउट के सर्वे में टॉप 20 में जगह बनाई है। सबसे पहले बात आमची मुंबई की। तो मुंबई का वड़ा पाव स्ट्रीट फूड का बादशाह माना जाता है। मसालेदार आलू के पकौड़े से भरा नरम ब्रेड रोल, चटपटी चटनी और साथ में तली हुई हरी मिर्च, इसकी तुलना आप बर्गर से भी कर सकते हैं। लेकिन वड़ा पाव मुंबई में हर तबके का फूड है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। हर मुंबईकर या बाहर से आने वाले लोग भी वड़ा पाव के दीवाने नजर आते हैं। मुंबई में वैसे तो वड़ा पाव के कई स्वरूप सामने आ गए हैं, यानी भाजी पाव, समोसा पाव, लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा वड़ा पाव की ही है।
1: जो चौपाटी पे फेमस पानी पूरी, भेलपुरी, सेव पूरी, दही पूरी, चाट, बहुत अच्छा है।
2: यहाँ पे आते हैं सब लोग?
1: सब नहीं, बहुत अच्छा आता है, पब्लिक सही देख के आता है, साफ सफाई अच्छा रहता है ना।
2: सबसे पहले क्या मांगते हैं लोग पानी पूरी?
1: पहले तो बच्चे लोग भी आते ही तो भैया जी पानी पूरी दो, पानी पूरी दो, पानी पूरी देना पड़ता है। फिर बाद में सेव पूरी खाते हैं, टिक्की खाते हैं, समोसा खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बस ये आइटम।
2: लास्ट में सूखी पूरी
1: भी? लास्ट में वो तो पहली है, रोड शो भी आ जाता है वापिस।
2: और भी मांगते
1: हैं? हाँ, वो तो देना ही पड़ता है। रोड पर भैया जी सूखा पूरी तो दिया ही नहीं है, लो साहब देना ही पड़ता है।
3: वैसे तो यहाँ पर खाने लायक कई चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पसंद की जाती है वो है वड़ा पाव। मैं भी काफी जद्दोजहद के बाद इस वड़ा पाव को पा सका हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी तस्वीरों में देखें, अच्छी खासी लाइन, अच्छी खासी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लगभग 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे लोग खड़े रहते हैं, फिर काउंटर पे जाते हैं, पर्ची फड़वाते हैं और उसके बाद जहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा छन रहा है वहाँ जाकर के वड़ा पाव लेते हैं। कोई यहीं पर रुककर खाता है तो कोई अपने मंजिल पर जाकर खाता है। देख रहे हैं लगातार ये जो लाइन है ये बढ़ती ही जा रही है, और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वाकई में वड़ा पाव का स्वाद एक नंबर होता है। थोड़ा सा इस वड़ा पाव की साइज भी देखें, 25 रुपए का एक है, इतना ज्यादा बड़ा है कि एक से ही मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन अगर इसे दो खा लिया जाए तो दिन एकदम मस्त हो जाता है, आदमी एकदम स्वस्थ हो जाता है। चलिए कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर ऐसा है तो क्या खास बात है। मुझे लगता है आप वड़ा पाव खा चुकी।
4: हाँ, मैंने अभी एक मस्त बड़ा सा वड़ा पाव खाया है।
3: एक में हो गया, पेट भर गया।
4: हाँ, साइज तो अच्छी बड़ी है, सो काफी फिलिंग हो जाता है।
3: अच्छा, ये बताएं मुझे कि महीने में कितनी बार खाना होता है?
4: महीने में चार से पांच बार तो वड़ा पाव मतलब लगता ही है।
3: महाराष्ट्र में ही रहती है? महाराष्ट्र
4: में ही हूँ।
3: वड़ा पाव की जब भी बात आती है क्या चलता है जहन में? घर में भी तो लोग इसे बनाते हैं, बचपन से खा रहे हैं।
4: यस यस, बचपन से। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र हो, तो वड़ा पाव बेसिकली और लाइफ लाइन। मतलब जैसे ट्रेन को, रेलवे को मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है, वैसे जब मुंबई के स्टेपल फूड की बात आती है तो आई कैन इजिली से कि वड़ा पाव मुंबई का स्टेपल फूड है। मतलब काफी लोग, एंड ऐसे भी नहीं कि आपको मतलब वड़ा पाव खा रहे हो तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप गरीब हो या ऐसे कुछ कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, आते जाएंगे, हजारों की शॉपिंग करेंगे, आके खड़े रहना है वड़ा पाव की दुकान पे, आना है, खाना है और मस्त मजे से खाते हैं, एकदम स्वाद ले लेके खाते हैं। एंड यस, मतलब जहाँ तक कि मुंबई के स्ट्रीट फूड की बात आती है, जैसे आपने भी कहा कि वड़ा पाव हो, भेलपूरी हो, पाव भाजी हो, ये सारी चीजें, तो मतलब अगेन एज अ सेड कि ये मुंबई का स्टेपल फूड है। मतलब मुंबई रह ही नहीं सकती इसके बिना। जो बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरे भले दूसरे स्टेट से हो या दूसरे देशों से हो, उन्होंने भी आके एक ना एक बार तो यहाँ का चाट खाना ही, और वो भी ठेले पे खड़े रह के, एक ना एक बार तो टपरी की चाय पीनी ही है या वड़ा पाव खाना ही है। मतलब उससे, उसके अलावा, उसके बगैर कोई जा नहीं सकता यहाँ से। और अगर वो एक बार चख ले ना तो बस, उनको एक बार वो स्वाद आ जाए तो बस, मतलब दे क्रेव फॉर इट।
3: महीने में कितना खाते हैं वड़ा पाव?
5: हर रोज कॉलेज छूटने के बाद।
3: रोज?
5: हाँ,
3: प्रतिदिन यही खाना?
5: प्रतिदिन, प्रतिदिन खाना ही खाना है, नहीं तो पेट नहीं भरता है।
3: पेट नहीं भरता? और टेस्ट कैसा लगता है?
5: बहुत मजेदार।
3: यही मुंबई में?
5: मुंबई में रहता हूँ, घाटकोपर में, असलफा। स्ट्रीट फूड में जो मिलेगा भाई सब कुछ खाते हैं अपन।
3: जैसे?
5: हाँ, जो मतलब खा के खुशी मिलती है, स्पाइसी हो गया ज्यादा करके। वड़ा पाव भी अपना फेवरेट है,
3: स्ट्रीट फूड।
5: हाँ, स्ट्रीट फूड अपन सब कुछ खाते हैं।
3: अच्छा, आपको पता है कि मुंबई में जो है ना, मुंबई ने 10वां नंबर हासिल किया है खाने के मामले में, स्ट्रीट फूड के मामले में, तो क्या रिएक्शन होगा एक मुंबईकर होने के नाते?
5: होना ही चाहिए, क्योंकि वड़ा पाव अभी बहुत जने जो जिनका मतलब जिनके पास खाना नहीं रहता, वो वड़ा पाव पे ही जीते।
3: आप ये बताएं, महीने में कितना ज्यादा वड़ा पाव खाते होंगे? कितने?
6: 30-40-50 खा लेते हैं डेली का, एकदम खाली एक शौक के लिए खाते हैं, खाने खाने पेट भरने के लिए, हम लोग मजा लेने का थोड़ा शाम को।
3: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या पसंद है फास्ट फूड में, बात करें आपको?
6: सब कुछ है खाने में, सब कुछ, किस खाने को ना नहीं बोलने का कोई भी, हर चीज एकदम मजे से खाने का, टेस्ट इंजॉय करने का बारिश का मौसम है।
0: वड़ा पाव मुंबई की पहचान है, लेकिन कई और व्यंजन हैं जो आए तो किसी दूसरे राज्य से हैं, लेकिन मुंबई के रंग में रंगते हुए और चटपटे हो गए हैं।
7: हमारे दुकान में इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, दाल वड़ा, चाय, कॉफी, सब सब लोग को पसंद हो जाता है।
8: मुंबई का नाम है खाने पीने में, जो बीच में ज्यादा है।
3: जो बीच में ज्यादा है?
8: जो बीच में।
3: तो क्या क्या आपकी दुकान पे क्या मिलता है?
8: अपना पाव भाजी है, पुलाव राइस है, ये फेमस है यहाँ का, स्पेशल बनता है। हाँ,
3: मुंबई की पाव भाजी बहुत फेमस,
8: बहुत फेमस है मुंबई की पाव भाजी। जो पीच में तो और भी टेस्टी है पाव भाजी।
3: और वर्ल्ड में ऐसे ही 10वां नंबर मुंबई ने नहीं हासिल किया है, उसमें न केवल एक वड़ा पाव बल्कि समोसा आता है, भजिया पाव आता है, भेलपूरी, पानीपुरी, मुंह में पानी आ गया। पाव भाजी भी आजकल तरह तरह की आने लगी हैं, डोसा, चटनी, साउथ इंडियन डिश, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सैंडविच है, जिन्हें खाने के लिए लोग आते हैं, और बहुत ही कम भाव में ये सारी चीजें मिलती भी हैं। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, स्वाद बड़ा अच्छा होता है, और मुझे लगता है कि ऐसा सुनने को भी नहीं मिला है कि इस तरह के स्ट्रीट फूड खा करके स्वास्थ्य को किसी तरीके से कोई परेशानी हुई है। तो आप देखें, लगातार ये कतार बढ़ती जा रही है, और ये जो कतार है न केवल एक वड़ा पाव की दुकान पर आपको मिलेगी, बल्कि वो सारे खाने के जो स्टेशन रहे वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल खड़े हैं, अभी तो आए ही हैं, लेकिन और भी देखिए, 15-20 मिनट से लगातार लोग खड़े हैं, और जब वड़ा पाव मिल जाता है तो कुछ इस तरीके से चटकारे लगाते हैं कि वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव, भेलपूरी, पानीपूरी, सैंडविच, इसके अलावा साउथ इंडियन डिशेज जिसमें इडली, मेंदू वड़ा, डोसा, तमाम वो चीज़ें आती हैं। और यही चीज़ें मुंबई वाले तो बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के कोने से भी लोग जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं वो होता है वड़ा पाव। और वड़ा पाव के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वाकई में बहुत कम बजट में होती हैं, अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं, हाइजीन होता है, और जिसे खाकर लोग स्वस्थ होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 15वें नंबर पर जयपुर है, और जयपुर से रिधिमा जैन हमारी सहयोगी अब आपको वहाँ के जो व्यंजन है वहाँ का जायका आपको बताएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।

0: गर्मा गर्म कचौड़ी से उठती खुशबू, कुल्हड़ में जमी मोटी मलाई वाली लस्सी और तवे पर बनते मूंग दाल के चीले, जयपुर की गलियों में कदम रखते ही स्वाद जैसे हर मोड़ पर ही आपका इंतजार कर रहा हो। यहाँ स्ट्रीट फूड सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि शहर की पहचान, उसकी संस्कृति और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का स्वाद है।
1: जहाँ बात स्वाद और चटकारों की आती है, जायके की आती है, वहाँ राजस्थान का नाम जरूर आता है, खास करके चटपटे मसालेदार खाने की बात जब हो। हम ये बता दें कि जयपुर का खाना वाकई में बहुत ज़्यादा जायकेदार होता है, मसालेदार होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी कुछ भी खाने आता है वो एक बार और वापस ज़रूर आता है, चाहे यहाँ की कचौरी हो, समोसा हो, या फिर यहाँ की बेजड़ की रोटी हो। जो यहाँ का लोकल फूड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दाल बाटी चूरमा को भी आजकल एक स्ट्रीट फूड स्टाइल में परोसा जा रहा है, तो ये एक मेन कोर्स नहीं बल्कि स्टार्टर्स के रूप में, स्ट्रीट फूड के रूप में यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जयपुर के कैसे मार्केट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं वो लगाए जाते हैं। यहाँ पे आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन या जो आपका जंक फूड में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वो सब एक ही जगह पे अवेलेबल है। ऐसी जो जगह है, ऐसे जो जॉइंट्स हैं, हर शाम यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी होती है, हर कोई अपने मन पसंद का जो भी उनको खाना है वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो चीज़ यहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो ऐसे में सिर्फ जयपुर के एक ये मार्केट नहीं, ऐसे कई सारे स्ट्रीट फूड मार्केट्स हैं जहाँ पर हर शाम लोगों की भीड़ नज़र आती है। क्योंकि इनोवेशन की मैं बात करूँ तो इनोवेशन भी जयपुर के अब स्ट्रीट फूड में काफ़ी देखने को मिली है। सिर्फ जंक नहीं, हेल्दी ऑप्शंस भी अब स्ट्रीट पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इनोवेशन काफ़ी देखने को मिल रही है। जहाँ पे अगर आप कोई किसी भी तरीके का डोसा ले रहे हैं तो उसमें मूंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर हेल्दी ऑप्शंस कैसे निकाले जा सकते हैं स्ट्रीट फूड में, उसका सॉल्यूशन भी जयपुर के यहाँ पे जो फूड जॉइंट्स हैं वहाँ मिल रहा है।
0: जयपुर के स्ट्रीट फूड बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। यहाँ के हर व्यंजन में राजस्थानी मसालों की खुशबू, देसी घी या पारंपरिक तेल का स्वाद, स्थानीय सामग्री और वर्षों पुरानी रेसिपी का मेल मिलता है। यही वजह है कि यहाँ का हर निवाला सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक विरासत का एहसास कराता है। जयपुर के मशहूर कलकत्ती चाट भंडार पर जायके का बाजार सजता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। ये दुकान 1970 से लगातार लोगों को अपने जायकेदार चीला की महक से आकर्षित करती रही है।
1: कुछ तीखापन, कुछ मिठास तो कुछ चटपटे मसाले, यही चीजें हैं जो किसी भी खाने को और भी ज्यादा जायकेदार बनाती है। और यही खाना है जो विश्व भर में अभी भारत का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। और सिर्फ भारत का ही नहीं, भारत के तीन ऐसी सिटीज हैं, एक मुंबई, दूसरा जयपुर और तीसरा दिल्ली। ये तीन सिटीज हैं जो टाइम आउट की लिस्टिंग में टॉप 20 में आई हैं बेस्ट स्ट्रीट फूड के लिए। और जयपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि जयपुर में कौन सा जायकेदार खाना जो है, जो स्ट्रीट फूड है और सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। कितने साल से यहाँ स्टॉल लग रहे हैं? बहुत सालों से तो हम यहाँ आ रहे हैं, आप बता दीजिए कि कुल कितने साल?
2: ये मैडम हमारी दूसरी पीढ़ी है, 56 साल हो गए, 1970 की दुकान है।
1: तो अब देखिए वहाँ बन रहे हैं चीले, तो कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो तो आप हमें पहले बता भी दीजिए और हमारी भी एक प्लेट लगा दीजिए जिससे हम भी वापस से एक बार टेस्ट करें।
2: ये जो चीला बनता है ये 81 आइटम से बनता है। इसमें मूंग की दाल, गरम मसाले, ड्राई फ्रूट्स, पाचक चीजें, गैस्ट्रिक आइटम नहीं है, चना नहीं है, उड़द नहीं है, मोट नहीं है, बेसन नहीं है। उसके अलावा ये चीला तैयार किया है। इसके साथ चार तरह की चटनी, दो तरह का दही, पूरा सिंगार करके चीला देते हैं हम।
1: अच्छा, यहाँ पे दही बड़े भी सर बना रहे हैं आप, उसका भी बता दीजिए कि क्या क्या उसमें डल रहे हैं।
2: वो दही बड़ा मूंग की दाल का बनता है, पेवर। अच्छा। पेवर छिलके वाली दाल का बनता है और उसके ऊपर वही चार तरह की चटनी दही डाल के ऐसे सर्व किया जाता है। और हमारे जो चटनी है उनमें भी इमली अमचूर का प्रयोग नहीं करते हम बिल्कुल भी। जो आप हमारी मीठी चटनी खाओगे ना, वो खाली खजूर और डाबर के चमनप्रास से बनती है।
0: यहाँ बनने वाला चीला सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि हाई प्रोटीन भी माना गया है। मूंग दाल के साथ कई पौष्टिक सामग्री और खास मसालों का मिश्रण इसे सामान्य स्ट्रीट फूड से कुछ अलग पहचान देता है। वहीं मूंग दाल से तैयार दही भल्ले हल्के, मुलायम और स्वाद से भरपूर होते हैं। यही कारण है कि सुबह से ही यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।
3: बहुत ही अच्छा था, टेस्ट वाइज ऑसम था, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बस टेस्ट वाइज रियली गुड, रियली हेल्दी। हाँ, यस यस,
4: दही बड़ा और मूंग की दाल का चीला, एब्सोल्युटली फुल ऑफ।

0: प्रोटीन आयुर्वेदिक। इनके जब पिताजी यहाँ बैठा करते थे तब जब हम पे करने जाते थे 60 रुपया, तब उस टाइम पर मैं वो साथ में एक आयुर्वेदिक गोली देते थे जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती थी। मुझे आज भी रिकॉल होता है वो दिन जब यहाँ पर मैं इनके बैक साइड के अंदर में एक 3-व्हीलर रखा होता था। आज हमने यहाँ खड़े होके खाया, उस टाइम पर मैं हम लोग उस रिक्शा के अंदर में बैठ के खाया करते थे।
1: अगर किसी व्यंजन ने जयपुर की पहचान देश दुनिया तक पहुंचाई है तो वो है प्याज की कचौड़ी। बाहर से सुनहरी कुरकुरी और अंदर से मसालेदार, हल्की मीठी और रसदार प्याज की भरावन वाली ये कचौड़ी हर किसी की पसंद है। प्याज को धीमी आंच पर मसालों के साथ इस तरह पकाया जाता है कि उसका स्वाद ही पूरी तरह निखर कर सामने आता है। कई लोग तो इसे बिना चटनी के ही खाना पसंद करते हैं। जयपुर की लस्सी की बात ही कुछ और है। जयपुर के स्ट्रीट फूड की चर्चा लस्सी वाला के बगैर अधूरी मानी गई है। 1944 में शुरू हुई इस दुकान को आज चौथी पीढ़ी आगे ले जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ आज भी आधुनिक फ्लेवर की जगह पारंपरिक स्वाद को ही तरजीह दी जाती है।
2: चटपटे मसालेदार दही बड़े और साथ ही में जो हेल्दी प्रोटीन चीला है वो तो हमने आपको दिखा दिया, और उसके साथ साथ में जो मसालेदार कचौरियां हैं एकदम खस्ता वो भी हमने आपको जयपुर की दिखा दी है। तो जैसे हमने कहा था कि चटपटा तीखा और मीठा जो है वो तीनों चीजें जो राजस्थान में फेमस है वो तीनों हम आपको दिखाएंगे। तो अब बारी है मिठास की, और मिठास में हम कोई मिठाई नहीं आपको लेके आएंगे, एकदम रिफ्रेशिंग जगह जो कि है जयपुर का ये बहुत ही फेमस लस्सी वाला जो कि 1944 से यहाँ पे है।
3: और लस्सी की बात करें तो आज हम जहाँ एमआई रोड के सामने जिस लस्सी वाले खड़े हैं, मेरे हिसाब से मोर देन 50 to 80 ईयर्स की लेगेसी है इनकी। और इनके अलावा यहाँ पे लस्सी कोई और नहीं देता है, और खासियत ये है कि ये बहुत अर्ली मॉर्निंग खोलते हैं और 12 से पहले क्लोज भी कर जाते हैं, उसके बाद ये ओपन नहीं करते हैं। और ऐसी लस्सी तो जयपुर में कोई दे ही नहीं पा रहा है, और मुझे मेरे हिसाब से 30 इयर्स हो गए आज इनकी लस्सी पीते हुए।
1: जयपुर की हर दुकान अपने साथ कई दशक पुरानी कहानी लेकर खड़ी है, और हर रेसिपी में पीढ़ियों का अनुभव शामिल है। शायद इसलिए दुनिया के बेहतरीन स्ट्रीट फूड शहरों की सूची में जयपुर ने अपनी जगह बनाई है।
2: जयपुर की कचौरी और लस्सी का स्वाद तो आपने चख ही लिया है। अब हम आपको लेके चलेंगे तीसरी सिटी यानी कि चटोरों की गलीज के नाम से जो फेमस है, और वो सिटी है दिल्ली 6 जहां मिलेगी चाट पापड़ी। तो आइए लिए चलते हैं आपको दिल्ली 6 और वहां के चटपटे चाट की गलियों में।

0: अब बात दिल्ली के स्ट्रीट फूड की, क्योंकि दुनिया की मशहूर टाइम आउट मैगजीन ने साल 2026 की वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रीट फूड सिटीज की जो लिस्ट जारी की है, राजधानी दिल्ली 19वें पायदान पर है। यहाँ के चटपटे फूड से लेकर मसालेदार खाने तक हर जायके का लोग बड़े ही चाव से लुत्फ उठाते हैं। कमला नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की पहली पसंद, शॉपिंग का बड़ा ठिकाना और स्ट्रीट फूड का ऐसा अड्डा जहां सुबह से लेकर देर रात तक स्वाद की महफिल जमी रहती है। यहां हर 10 कदम पर एक नई खुशबू मिलेगी और हर गली में एक नया स्वाद।
1: दिल्ली के खाने को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर दिल्ली वाले का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा कर दिया है, मेरा भी कर दिया है, क्योंकि मैं खुद एक दिल्ली वाली हूँ। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड की सूची में दिल्ली का भी नाम है। हालांकि जयपुर का भी नाम है, बॉम्बे का भी नाम है, लेकिन मेरी दिल्ली का भी नाम है। और इस वक्त मैं आ गई हूँ कमला नगर मार्केट में, क्योंकि जब बात दिल्ली की हो तो मैं ये मार्केट डेफिनेटली नहीं भूल सकती। और उससे भी ज़्यादा खास ये हो गया है कि दिल्ली का जो खाना है वो देश भर में तो राज कर रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, अब वो पूरी दुनिया में भी अपना जादू जो है वो फैला रहा है। तो दिल्ली के स्वाद में क्या है कुछ खास, किस तरीके का स्वाद यहाँ पर मिलता है, हर गली में आपको एक खुशबूदार अच्छी खुशबू जो है वो उठती हुई नजर आएगी, हर दुकान पर आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी और हर स्वाद में आपको एक ना एक कहानी वो नजर आएगी। तो कैसा स्वाद है दिल्ली का, ये दिखाने के लिए ले आई हूँ मैं आपको आज कमला नगर मार्केट में।
0: दिल्ली दिल वालों की तो है ही, लेकिन अब स्वाद वालों की भी पसंद बन चुकी है। जरा सोचिए, अगर दुनिया आपसे पूछे कि सबसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड कहाँ मिलता है, तो इसका जवाब सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे रही है। ऐसी ही दिल्ली को स्ट्रीट फूड ऑफ कैपिटल नहीं कहा जाता। अगर दिल्ली की पहचान में व्यंजन की एक प्लेट रखनी हो तो शायद सबसे पहले नाम आएगा छोले भटूरे का। गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे, मसालेदार छोले, ऊपर से अचार, हरी मिर्च और प्याज, बस एक प्लेट और पूरा दिन बन जाएगा।
2: लेन है ना, आप पूरी लेन देखेंगे, डोसा भी मिलता है, चाट पापड़ी मिलती है, परांठा भी मिलता है, कुल्फी भी मिलती है और बहुत ही रीजनेबल है। कहीं से भी कंपेयर करें, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे हाउस होल्ड के लिए, किसी के लिए है।
0: दिल्ली की कचौड़ी के तो कहने ही क्या, बाहर से जितनी कुरकुरी, अंदर मसालेदार भरावन, ऊपर से आलू की सब्जी और फिर शुरू होता है असली स्वाद का धमाका। ये सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं है बल्कि इमोशन है।
1: दिल्ली में अगर कोई रहता है तो वो बिना छोले भटूरे के तो बिल्कुल नहीं रह सकता। और जब बात लंच की हो तो इस तरीके से लाइन जो है आपको हर एक छोले भटूरे की शॉप पे नजर आएगी। अच्छा, मैं इस वक्त हूँ ओमदी हट्टी में, ओमदी हट्टी हो, चाचा की छोले भटूरे हो, इन सब जगह पे सबसे ज्यादा लोगों की जो भीड़ है वो नजर आती है। गरम गरम भटूरे जो है वो निकलते हुए आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से जो स्वाद है वो यहाँ पर आपको तलता हुआ नजर आ जाएगा। और साथ में ये जो काले छोले हैं, जो भरपूर मसालेदार, जो चटपटा स्वाद है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके की जो भीड़ है वो डेफिनेटली जो है मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सर छोले भटूरे का स्वाद ले रहे हैं, दिख भी रहा है।
3: एक्चुअली मेरा स्कूल यहाँ होता था 15 नंबर 2 में। हाँ। मैं 92 में यहाँ पढ़ता था। हाँ। मैं अब रोहिणी शिफ्ट हो गया हूँ, फिर भी मैं आज कमला नगर आया था बहुत दिन बाद। तब तो इनके रेट बहुत कम थे, अब तो 120 फुल प्लेट हो गए। उस टाइम समोसे हम स्कूल के सारे दोस्त यार खाते थे, कई तो ऐसे भाग जाते थे, बिगड़ पैसे थे चले जाते थे, फिर भी कुछ नहीं कहते थे भैया, क्योंकि स्कूल का सब रश नहीं जाता था। हाँ। बहुत टाइम से आ रहे
1: हैं दिल्ली वाले, चटोरे हैं ना, मतलब
3: बहुत ज़्यादा।
1: लेकिन ये जो चटोरे हैं वो दिल्ली की वजह से, क्योंकि दिल्ली में जो स्वाद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता,
3: कहीं नहीं मिलता। हाँ?
1: अच्छा, दिल्ली में अगर मैं स्ट्रीट फूड की बात करूँ, नंबर वन नाम लिस्ट में कौन सी डिश का रहता है?
3: स्वीट डिश
1: स्ट्रीट फूड में
3: छोले भटूरे आएंगे सबसे पहले।
1: छोले भटूरे के बाद
3: ब्रेड पकौड़ा,
0: बेड़मी पूरी की खुशबू, पुरानी दिल्ली का असली स्वाद, उड़द दाल से बनी बेड़मी, मसालेदार आलू, दही और ऊपर से अचार, यानी एक प्लेट और पूरा पेट खुश।
4: हमने तो जी आज तक इनके इनसे बढ़िया बेड़मी पूरी का खाई नहीं है। और हमारे संडे का जो सुबह ब्रेकफास्ट होता है वो यहीं पे ही होता है। अभी हमारे कॉलेजेस खुले हैं तो हम यहाँ दिन में एक बार जरूर आते हैं, या तो बेड़मी पूरी खाने या इनकी लस्सी। इनकी लस्सी भी बहुत अच्छी है, जो क्वालिटी है देते हैं हमारे आसपास कहीं नहीं मिलती।
1: दिल्ली की अगर स्ट्रीट फूड की मैं बात करूं तो क्या सबसे पहले आप कौन सी डिश नाम सबसे पहले आता
5: है? बेडमी पूरी होती है, वो हर कोई इन जैसी नहीं दे पाएगा मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जो ये फ्लेवर्स देते हैं ना, मतलब अल्टीमेट मेरे को पसंद नहीं है सच, बट मैं यहाँ खाना पसंद करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है जैसे देखना बिल्कुल ऐसी मोटी मोटी, मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है इसके।
1: दिल्ली वाले छोले भटूरे की भी फैन होते हैं,
5: हमें ये ज्यादा अच्छी लगती है पता नहीं क्यों।
0: दिल्ली के स्ट्रीट फूड की बात हो और चाट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आलू टिक्की, दही, हरी चटनी, मीठी चटनी, अनार, सेब और मसालों का ऐसा तड़का कि पहली प्लेट खत्म होते ही दूसरी का मन कर जाए, और अगर मसाले के बाद मीठा चाहिए तो कुल्फी तैयार है। यानी दिल्ली वालों को टेस्ट बैलेंस करना भी बखूबी आता है।
6: बट या द टेस्ट इज गुड, इट्स रिफ्रेशिंग, इट्स कूल, सो या इट वाज गुड।
7: बहुत अच्छा लगा है जी, स्पाइसी है यहाँ का, राजस्थान का थोड़ा सा नॉर्मल टेस्ट रहता है, इसलिए दिल्ली यहाँ का खाने आए हैं स्पेशली। हाँ, स्पेशली स्ट्रीट फूड।
1: पहले आपने चाट ही ट्राई करी है या फिर इसके अलावा भी आपने और व्यंजन ट्राई करे?
7: गोलगप्पे करे हैं ट्राई, और अब ये सेकंड मेरी आइटम पापड़ी चाट है।
0: दिल्ली के स्ट्रीट फूड में इतनी वैरायटीज हैं, आप एक दिन में सभी पकवानों का स्वाद तो ले ही नहीं सकते। लेकिन दिल्ली 6 यानी पुरानी दिल्ली में ऐसी कई दुकानें आपको मिल जाएंगी जो सालों से लोगों का दिल जीतती आई हैं।
1: दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं है बल्कि स्वाद की राजधानी भी, और यहाँ पर आपको हर तरीके का स्वाद एक ही जगह पर मिलेगा, चाहे आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, लेकिन दिल्ली वाले जो स्वाद पसंद करते हैं वो यहाँ डेफिनेटली मिलने वाला है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ चुरे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे।
1: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर दिखा जवानों का जोश। मीटिंग रिट्रीट के फाइनल रिहर्सल में बीएसएफ के जांबाजों ने की पारंपरिक ड्रिल। देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल, बड़ा तालाब में नावों की निकाली गई तिरंगा रैली, हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न में शिरकत। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें, हजारों महिलाओं ने सर पर कलश रख कर निकाली यात्रा, भोले की भक्ति में झूम लोग। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान का नया अंदाज, बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर, स्वर्ण श्रृंगार घेवर की कीमत 21,000 रुपए। रायपुर में देखी बदलाव वाली गुड न्यूज, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर होती है। नतीजा ये है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, इन्हें शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहाँ वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। ऐसी दो खबरों की पड़ताल आज हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का है जहां पर चीनी सेना ने घुसपैठ की है। क्या इसकी सच्चाई, आगे जानिए। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल में अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। क्या है वायरल वीडियो और इस दावे की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते फैक्ट चेक।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आमने सामने खड़े सैनिक आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश का

0: जहां पर चीनी सेना ने घुसपैठ कर ली है। ये वही का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसकर कब्जा जमा चुकी है। वीडियो में एक व्यक्ति सेल्फी कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ दूरी पर आमने सामने खड़े सैनिक आपस में बहस करते हुए देखे जा सकते हैं। इस दौरान वहां पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन वाले 60 किलोमीटर अंदर भारत में घुसकर कब्जा कर रहे, चीन का हिस्सा बना रहा है अरुणाचल प्रदेश को। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा यह कर रहे हैं कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसकर कब्जा जमा चुकी है। वीडियो में एक व्यक्ति सेल्फी कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ दूरी पर आमने सामने खड़े सैनिक भी आपस में बहस करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी पुख्ता प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर तक चीनी सेना के घुसने की बात बताई गई हो। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि चीन की ओर से अरुणाचल में कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे सुना तो ये साफ हुआ कि ये बांग्ला भाषा है और वीडियो अरुणाचल प्रदेश का है, तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बांग्ला आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं। ये अपने आप में वीडियो की सत्यता और संदेह पैदा करता है। ऐसा लग रहा है कि ये बांग्लादेश बॉर्डर का वीडियो हो सकता है। साथ ही सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जाँच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और इसे सर्च किया। इस दौरान हमें इससे हूबहू मिलता जुलता एक वीडियो बांग्लादेशी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मिला। यहाँ इसे 20 जून को पोस्ट किया गया था। कैप्शन के मुताबिक ये घटना बांग्लादेश के चंपई नवाबगंज सीमा की है, जहाँ भारतीय बीएसएफ और बांग्लादेश के फोर्स बीजीबी आमने सामने आ गई थी। इस वीडियो में गुलाबी शर्ट पहने उसी शख्स को देखा जा सकता है जो वायरल क्लिप में भी मौजूद है। इसके अलावा हाथ में डंडा लिए हुए एक व्यक्ति भी दोनों वीडियो में देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें कई बांग्लादेशी आउटलेट्स की रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत से बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश कर रहे 20 लोगों को बांग्लादेशी सुरक्षा बल ने रोक दिया था, जिसे लेकर बीएसएफ और बीजीबी के बीच कहासुनी हो गई थी। वैसे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों को अपने देश लौट जाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश वापस जाने के लिए हजारों लोग सीमा पर एकजुट हुए थे। उसी समय बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसे लोगों की वापसी रोकने की कोशिश की गई, जिसे लेकर दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश का नहीं बल्कि भारत बांग्लादेश सीमा का है और भारत की बीएसएफ और बांग्लादेशी फोर्स बीजीबी के बीच हुई कहासुनी को दिखाता है। रिद्धेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट करते नोकझोंक करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि नेपाल का हालिया वीडियो है, जहां पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।

0: हाल ही में नेपाल के कुछ इलाकों, खासकर सुनसरी जिले के देवानगंज इलाके में दो समुदाय के बीच तनाव और हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई थी। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट और नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये नेपाल का हालिया वीडियो है, जहां पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर नेपाल से भगाया जा रहा है, जो कस्बाए नेपाल बनाने की साजिश के तहत बसाए गए थे। सरकार इनसे वोटिंग राइट्स वापस ले रही है। डेमोग्राफी परिवर्तन पर अलर्ट हुए नेपाल के हिंदू। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: असल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में किसी सड़क पर लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान वहां पर भगदड़ का माहौल भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं, नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि यह नेपाल का हालिया वीडियो है, जहां धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये बांग्ला निकली। वीडियो अगर नेपाल का है तो फिर यहां सिर्फ बांग्ला में ही लोग बात क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ अटपटा सा लगा। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और नेपाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। वीडियो अगर वाकई सच्चा है तो फिर ये अपने आप में एक बड़ी खबर होती। मीडिया आउटलेट्स में ये खबर जरूर होती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं दो गुटों के बीच हुई झड़प को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक बांग्लादेशी समाचार के फेसबुक पेज पर 4 जुलाई को पोस्ट किया गया मिला। पोस्ट के कैप्शन के अनुसार ये वीडियो गुलिस्तान में बीएनपी और जमाते कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का है, और इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। पड़ताल के दौरान हमें 4 जुलाई 2026 को बांग्लादेश की प्रमुख समाचार वेबसाइट पर भी एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में हमें वायरल क्लिप वाले दृश्य भी नजर आए। रिपोर्ट में बताया गया था कि ये वीडियो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गुलिस्तान का है। यहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के कार्यकर्ता जुलूस के दौरान आपस में भिड़ गए थे। इस हिंसक झड़प में लाठी डंडे भी चले, पथराव हुआ और चाकूबाजी में जमात इस्लामी के एक नेता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सर्च के दौरान हमें एक और बांग्लादेशी समाचार संस्थान के फेसबुक पेज पर भी 4 जुलाई को अपलोड हुआ ये वीडियो मिला। यहां भी बताया गया था कि यह घटना बांग्लादेश के गुलिस्तान की है, जहां पर बीएनपी और जमात के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो नेपाल का नहीं है, ये वीडियो बांग्लादेश का है, जहां एक जुलूस के दौरान बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: स्कूल के मंच पर बच्चों की परफॉर्मेंस हमेशा खास होती है। उनकी छोटी छोटी गलतियां और मासूम हरकतें कई बार ऐसा पल बना देती हैं जिसे लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एक नन्ही बच्ची माँ दुर्गा का रूप बनकर स्टेज पर पहुंचती है, लेकिन परफॉर्मेंस के बीच अचानक अपनी लाइन भूल जाती है। इसके बाद बच्ची जो करती है उसे देखकर वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे ने श्लोक की दो लाइनें तो आसानी से बोल दी, लेकिन तीसरी लाइन पर पहुंचते ही वो अटक गई। कुछ पल तक बच्ची सोचती रही कि आगे क्या बोलना है। जब उसे कुछ याद नहीं आया तो उसने स्टेज के सामने खड़े एक व्यक्ति की तरफ देखा और बेहद सहज अंदाज में पूछ लिया, और क्या था। बस बच्ची का इतना कहना था कि पूरा माहौल हंसी और तालियों से गूंज उठा। दर्शकों के साथ साथ वहां मौजूद शिक्षक भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। खास बात ये थी कि बच्ची ने अपनी गलती को लेकर घबराने के बजाय बेहद मासूम अंदाज में मदद मांग ली। उसका यही प्यारा सा रिएक्शन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। अक्सर कहा जाता है कि इंसान की किस्मत की लकीरें उसके हाथों में होती हैं, लेकिन बिहार के कटिहार जिले की रहने वाली मासूम लक्ष्मी ने इस कहावत को पूरी तरह बदल दिया है। जन्म से ही दोनों हाथ न होने के बावजूद लक्ष्मी आज अपने पैरों से अपनी तकदीर की इबारत लिख रही हैं। उसका ये अटूट जज्बा और हिम्मत देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं और सिर सम्मान से झुक जाता है। स्कूल के कमरे में जब लक्ष्मी बैठती है तो उसकी कुछ करने की इच्छा देखने लायक होती है। वो बिना किसी की मदद के अपने पैरों की उंगलियों से बैग के जिप खोलती है, पैर से ही कॉपी निकालती है और पन्ने पलटती है। फिर पैरों के अंगूठे और उंगलियों के बीच पेन दबाकर पन्नों पर इतनी सफाई से लिखती है कि अच्छे अच्छे देखकर दंग रह जाएं।

कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल देखने को मिल जाते हैं जो बिना कुछ कहे ही दिल को छू जाते हैं। न कोई बड़ा भाषण, न कोई खास दिखावा, बस एक छोटी सी हरकत और उसका मतलब बहुत गहरा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक अघोरी बाबा के सामने एक छोटी बच्ची नजर आती है। आमतौर पर लोग अघोरी साधुओं के पास आशीर्वाद लेने और उसका सम्मान करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला। अघोरी बाबा ने खुद इस छोटी बच्चे के सामने झुककर उसका सम्मान किया। उनका ये अंदाज देखकर वहाँ मौजूद लोग भी हैरान रह गए।

सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दो भाइयों का अपनापन, भरोसा और भरपूर प्यार देखने को मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे एक लाइन में बैठकर खाना खा रहे हैं। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ है। जब वो अपने भाई को अकेले बैठा हुआ देखता है तो वो उसके पास पहुँचता है और फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगता है। छोटे भाई आराम से खाना खाए इसका वो खास ख्याल रखता है। इस वीडियो को यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं और दिल खोल कर इस पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। दो भाइयों की इस बॉन्डिंग पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बच्चे और प्यारे पपे का एक साथ खेलते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों की मासूम हरकतें और एक दूसरे के प्रति बेइंतहा प्यार लोगों का दिल जीत रहा है। पपे का बच्चे के पास बार बार जाना, कूदना और प्यार जताना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। लोग इस वीडियो को सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला बता रहे हैं। वीडियो को देखकर यूजर्स यही कह रहे हैं कि कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें ऐसे ही छोटे छोटे पलों में छिपी होती हैं।

0: सोशल मीडिया पर एक पपी का वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पपी एक मजदूर के साथ काम करने की बड़े ही प्यारे ढंग से नकल उतार रहा है। पपी सीधे तौर पर कोई मदद तो नहीं कर पाता, लेकिन फावड़े से मिट्टी हटाते इंसान के पीछे पीछे अपनी नन्ही टांगों से मिट्टी को वैसे ही पीछे ढकेलता नजर आता है। पपी पूरी शिद्दत के साथ इंसान के काम को कॉपी करने की कोशिश करता है। इंटरनेट यूजर्स को पपी की मासूमियत और काम करने का अंदाज बहुत पसंद आ रहा है।
1: पनीर से बनता है और उसके साथ जो चीनी और वो मिक्स करा हुआ है। अच्छा।
0: माँ को लगता है कि बेटा दुबला होता जा रहा है, इस चक्कर में वो उसे खूब खिलाती है, लेकिन बेटा फिटनेस फ्रीक हो तो मामला थोड़ा कठिन हो जाता है। एक माँ के सामने ये स्थिति आई तो उन्होंने उसको हैंडल करने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। वीडियो के शुरू में माँ अपने बेटे से कहती है, कुछ नहीं होता है, पनीर से बनता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करता बेटा कहता है कि अच्छा, पनीर से बनता है, मीठा नहीं होता इसमें? माँ कहती है नहीं। इस दौरान बेड के कोने में छड़ी रखी दिखती है, फिर माँ हाथ में रसगुल्ला लिए हुए ही डंडा उठाती है। मारने को भी होती है, लेकिन वीडियो यही खत्म हो जाते हैं। यूजर्स माँ बेटे के इस क्यूट क्लेश पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के बहुत से मौके अक्सर वायरल हो जाते हैं। कई बार सफर करते हुए लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जो इंटरनेट को खूब पसंद आ जाता है। एक सरदार जी के साथ यही हुआ है। उन्होंने दिल्ली में सफर के दौरान ऐसा गाना गाया कि लोग उनके दीवाने हो गए हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं, इस पर जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं।
2: ताली बताओ ना, ताली।

कभी कभी जानवरों के साथ बिताया गया एक छोटा सा पल भी चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी होता है। कुछ ऐसा ही नजारा उस वक्त देखने को मिला जब भारतीय वन सेवा अधिकारी परवीन कासवान दो रेस्क्यू किए गए हाथियों से मिले। फलों से शुरू हुई ये मुलाकात देखते ही देखते हाथियों के अपने ही अंदाज वाले टोल टैक्स तक पहुंच गई। वीडियो में परवीन कासवान दोनों हाथियों से लोगों की मुलाकात करवाते हैं। दरअसल गजराज और तीस्ता रानी को उस वक्त रेस्क्यू किया गया था जब हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ा। इसके बाद दोनों को सुरक्षित जगह पर लाया गया और अब उनकी अच्छी तरह देखभाल की जा रही है। हालांकि इन दोनों की खास आदत भी है, जब भी कासवान उनके पास पहुंचते हैं तो हाथी उनसे अपना टोल टैक्स वसूलना नहीं भूलते। वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। कासवान उन्हें फल खिलाते हैं और दोनों हाथी बड़े आराम से उनके पास पहुँच कर अपने हिस्से का फल लेते नजर आते हैं।

0: इन दिनों तो विशाल कछुओं का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बड़े जॉइंट टॉर्टोइज एक दूसरे को धक्का देते हैं और पलटने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें चिड़ियाघर का कर्मचारी दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। वीडियो में दोनों की लड़ाई देखने में काफी मजेदार लगती है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों कछुए आमने सामने हैं। दोनों अपने सिर को आगे कर एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। कभी एक कछुआ दूसरे को पलटने की कोशिश करता है तो कभी दूसरा पलट कर जवाब देता है। कछुओं की लड़ाई देखकर लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इतने भारी और धीमे दिखने वाले जानवर इतने आक्रामक भी हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहे कछुए सुलकाटा टॉर्टोइज हैं, जिन्हें अफ्रीकन स्पर्ड टॉर्टोइज भी कहा जाता है। ये कछुए काफी बड़े होते हैं और इनका व्यवहार कई बार बेहद आक्रामक हो सकता है। खासकर नर कछुओं के बीच इलाके और प्रभुत्व को लेकर टकराव देखने को मिलता है। वे अपने मजबूत शरीर और गले के नीचे मौजूद सख्त हिस्से की मदद से दूसरे कछुए को धक्का देते हैं। कई बार उनका मकसद सामने वाले को पलट देना होता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: आजादी की लड़ाई की उन गुमनाम नायकों की, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन न तो उन्हें सम्मान मिला और न ही पहचान। ऐसे ही गुमनाम नायकों में से एक क्रांतिकारी ने दिल्ली के चांदनी चौक में गुमनाम क्रांतिकारियों के लिए एक मंदिर बनवाया, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो गुमनाम न रह जाए।
7: लाल किले के पास मौजूद ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा या तस्वीरें नहीं है, बल्कि उन लोगों के चित्र हैं जिनके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया। शुरुआती दौर में इतिहास लिखने वाला एक फोकस कुछ गिने चुने बड़े नेताओं और संगठनों तक ही सीमित रह गया। पूरा हिंदुस्तान जिस जश्न आजादी की तैयारी में जुटा है, वो किसी एक व्यक्ति के बलिदान और संघर्ष का नतीजा नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई ऐसे बलिदानी थे जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, फिर भी आने वाली पीढ़ियों के लिए गुमनाम रह गए। अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद इतिहास ने उनके योगदान का सही मूल्यांकन नहीं किया। आजादी के किस्से कहानियों या उससे जुड़े इतिहास के पन्नों में उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। सैकड़ों हजारों या लाखों क्रांतिकारी गुमनाम नायकों की तरह रह गए। देश की स्वाधीनता के लिए साझा संघर्ष, त्याग और बलिदान के बावजूद उन्हें आजादी की लड़ाई के चर्चित चेहरों या नायकों की तरह न सम्मान मिला और न ही पहचान।
8: मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ना, अमूमन आप मंदिर जाते हैं तो आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं। कोई मंदिर राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, तो कोई किसी माता का है। लेकिन आज दिल्ली के चांदनी चौक में मैं आपको ऐसे मंदिर में लेकर आया हूँ जहाँ पर कोई ईश्वर कोई देवता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी जान गंवाने वाले, उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले वीर बलिदानियों की यहाँ फोटो लगी है, तस्वीर लगी है, उनके बारे में जानकारी लिखी गई है। ये वो वीर बलिदानी हैं जिनके बारे में इतिहास में लिखा ही नहीं गया, अगर लिखा गया तो एक दो लाइनों में निपटा दिया गया। आइए आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के भीतर।
7: दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद शिव शक्ति नाम का ये मंदिर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गुमनाम क्रांतिकारियों को भी उनके हिस्से का यश दिलाता है। इस अनोखे मंदिर को एक पूर्व क्रांतिकारी ने ही बनवाया था, जिन्हें देश की आजादी के बाद गुमनाम नायकों के साथ जाने अनजाने हुई अनदेखी परेशान करने लगी थी। अलग अलग राज्यों से 100 क्रांतिकारियों की तस्वीर तब से इस बलिदानी मंदिर की शोभा बढ़ा रही है।
8: चांदनी चौक में इस मंदिर का निर्माण स्वर्गीय स्वर्णलाल पारूथी जी ने करवाया था। उन्हें ये देखकर बहुत टीस पहुंची थी कि कई सारे ऐसे क्रांतिकारी जिनकी बड़ी भूमिका थी उनके बारे में इतिहास में लिखा नहीं गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश भर से ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में सूचनाएं जुटाई और उनकी तस्वीरों के साथ लगभग 100 बलिदानियों की तस्वीर यहाँ पर लगाई, उनके बारे में लिखा। ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है और यहाँ पर भी आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शहीद भगत राम जी की। इनके बारे में लिखा ये गया है कि शहीद हरि किशन लाल के भाई भगत राम महान देशभक्त थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया और 5 वर्षों तक जेल में रहे। मुद्दे की बात अब ये, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारत से बाहर जाने लगे तो भगत राम जी ने अपनी जान पर खेल कर उन्हें काबुल तक पहुँचाया। आप सोचिए, वो इंसान जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी, उनका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। उनकी तस्वीर ढूंढकर उनके बारे में मुख्य जानकारी निकालकर यहां पर लगाया गया है।
7: पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के रहने वाले क्रांतिकारी नवजीवन घोष भी उन गुमनाम नायकों में शामिल थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। फिर भी आजादी से जुड़े मुख्य धारा के इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिली। जबकि ब्रिटिश पुलिस के भीषण अत्याचार और अमानवीय शारीरिक प्रताड़ना के कारण सितंबर 1934 में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी क्रूरता पर पर्दा डालते हुए उनके मृत्यु को आत्महत्या करार दिया था।
8: ये नाम है नवजीवन घोष का। इनके बारे में लिखा है, मिदनापुर के जिला न्यायाधीश वर्ज की हत्या के बाद नवजीवन के भाई निर्मल जीवन को फांसी पर लटका दिया गया।
7: आजादी से जुड़े इतिहास में खास मुकाम पाने में नाकाम रहे एक क्रांतिकारी ने राष्ट्रवाद का ऐसा बीज बोया कि पूरा परिवार ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के रास्ते पर चल पड़ा। क्रांति की पाठशाला में उन्होंने अपने बेटों को हथियारों का इस्तेमाल करना और सटीक निशाना लगाना सिखाया। देश के लिए बलिदान, त्याग और संघर्ष की ऐसी अनगिनत कहानियां यहां मौजूद हैं, जिनकी गवाही के तौर पर कई और क्रांतिकारियों की तस्वीर यहां लगी है। करीब 56 साल से यह जगह स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों और आजादी से जुड़े उनके योगदान को अपने भीतर समेटे हुए है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आजादी की उस लड़ाई का स्मरण करवाता है जिसके लिए ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: इसीलिए
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार
1: था, जवानों का जोश। मीटिंग रिट्रीट के फाइनल रिहर्सल में बीएसएफ के जांबाजों ने की पारंपरिक ड्रिल। देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल, बड़ा तालाब में नावों की निकाली गई तिरंगा रैली, हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न में शिरकत। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें, हजारों महिलाओं ने सर पर कलश रख कर निकाली यात्रा, भोले की भक्ति में झूमे। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान का नया अंदाज, बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर, स्वर्ण श्रृंगार घेवर की कीमत 21,000 रुपए। रायपुर में देखी बदलाव वाली गुड न्यूज, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक।

नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिले। गोलगप्पे का खट्टा खट्टा पानी, मुंबई का तीखा वड़ा पाव और जयपुर की करारी प्याज वाली कचौरी, मुंह में पानी आ गया ना। पानी आना लाजमी है। अब देखिए, स्ट्रीट फूड का जादू ही कुछ ऐसा होता है कि पेट भले ही भर जाए लेकिन नियत भरती ही नहीं है। और अब तो देखिए, हमारी इस देसी जायके की दीवानी पूरी दुनिया हो चुकी है, क्योंकि टाइम आउट मैगजीन ने दुनिया के बेस्ट स्ट्रीट फूड शहरों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के एक दो नहीं बल्कि तीन तीन शहरों के नाम शामिल हैं। टॉप 20 में जहां मुंबई 10वें स्थान पर है, तो वहीं पिंक सिटी जयपुर 15वें और दिलवालों की दिल्ली है 19वें नंबर पर। अब दिल्ली की पुरानी गलियों की चाट हो, छोले भटूरे हो, मुंबई का चटपटा वड़ा पाव हो, भेलपुरी हो या फिर जयपुर की कचौरी या घेवर हो, भाई जितने मर्जी नाम ले लो ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इन शहरों के जायके में ऐसा कुछ खास है जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना सा बना दिया है। अब क्या कुछ खास है इसमें, ये जानने के लिए हमारे साथ तीन साथी तीनों शहरों के स्ट्रीट फूड का जायका आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रीट फूड के सुपर थ्री।

0: वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपुरी, प्याज कचौड़ी, समोसा, मिर्ची वड़ा, चाट, गोलगप्पे और छोले भटूरे जैसे कई स्ट्रीट फूड्स हैं जिनको देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। ये ऐसे स्ट्रीट फूड हैं जो शहर की पहचान हैं। शहर दर शहर व्यंजन बदलते हैं, स्वाद बदलता है, जायका बदलता है, लेकिन इनकी पहचान शहर की गलियां होती हैं। कहने का मतलब है कि हर शहर की अपनी खासियत होती है, हर शहर का अपना स्वाद, खुशबू और पहचान होती है। कहीं चटपटा स्ट्रीट फूड लोगों का दिल जीत लेता है तो कहीं शाही अंदाज में बना लजीज खाना आकर्षित करता है। हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। हर राज्य का भोजन, मिठाइयाँ और स्ट्रीट फूड की अपनी खासियत है। अगर बात स्ट्रीट फूड की ही होती है तो देश में कई शहर ऐसे हैं जहाँ का स्ट्रीट फूड काफी फेमस है। ऐसा सिर्फ हमारे देश में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में कई शहरों की पहचान तो स्ट्रीट फूड की वजह से ही होती है। स्ट्रीट फूड को लेकर लोगों में ऐसी दीवानगी है कि वो सिर्फ खाने के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ऐसे में टाइम आउट ने एक सर्वेक्षण कराया है। बेस्ट स्ट्रीट फूड सिटीज जैसी वैश्विक शहर रैंकिंग और पाक कला सर्वेक्षणों के अनुसार सबसे ज्यादा चर्चित स्ट्रीट फूड स्थल एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में फैले हुए हैं। जिनमें सबसे आगे हैं वियतनाम में हो ची मिन सिटी, मलेशिया का कुआलालंपुर दूसरे पायदान पर है, जबकि इंडोनेशिया का जकार्ता तीसरे नंबर पर है। भारत से मुंबई 10वें नंबर पर, जयपुर 15वें और दिल्ली 19वें नंबर पर है। आज हम भारत के तीन उन मशहूर शहरों के स्ट्रीट फूड की बात करेंगे जिन्होंने टाइम आउट के सर्वे में टॉप 20 में जगह बनाई है। सबसे पहले बात आमची मुंबई की। तो मुंबई का वड़ा पाव स्ट्रीट फूड का बादशाह माना जाता है। मसालेदार आलू के पकौड़े से भरा नरम ब्रेड रोल, चटपटी चटनी और साथ में तली हुई हरी मिर्च, इसकी तुलना आप बर्गर से भी कर सकते हैं। लेकिन वड़ा पाव मुंबई में हर तबके का फूड है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। हर मुंबईकर या बाहर से आने वाले लोग भी वड़ा पाव के दीवाने नजर आते हैं। मुंबई में वैसे तो वड़ा पाव के कई स्वरूप सामने आ गए हैं, यानी भाजी पाव, समोसा पाव, लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा वड़ा पाव की ही है।
1: जो चौपाटी पे फेमस पानी पूरी, भेलपुरी, सेव पूरी, दही पूरी, चाट, बहुत अच्छा है।
2: यहाँ पे आते हैं सब लोग?
1: सब नहीं, बहुत अच्छा आता है, पब्लिक सही देख के आता है, साफ सफाई अच्छा रहता है ना।
2: सबसे पहले क्या मांगते हैं लोग पानी पूरी?
1: पहले तो बच्चे लोग भी आते ही तो भैया जी पानी पूरी दो, पानी पूरी दो, पानी पूरी देना पड़ता है। फिर बाद में सेव पूरी खाते हैं, टिक्की खाते हैं, समोसा खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बस ये आइटम।
2: लास्ट में सूखी पूरी
1: भी? लास्ट में वो तो पहली है, रोड शू भी आ जाता है वापिस।
2: और भी मांगते
1: हैं? हाँ, वो तो देना ही पड़ता है। रोड पर भैया जी सूखा पूरी तो दिया ही नहीं है, लो साहब देना ही पड़ता है।
3: वैसे तो यहाँ पर खाने लायक कई चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पसंद की जाती है वो है वड़ा पाव। मैं भी काफी जद्दोजहद के बाद इस वड़ा पाव को पा सका हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी तस्वीरों में देखें, अच्छी खासी लाइन, अच्छी खासी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लगभग 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे लोग खड़े रहते हैं, फिर काउंटर पे जाते हैं, पर्ची फड़वाते हैं और उसके बाद जहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा छन रहा है वहां जाकर के वड़ा पाव लेते हैं। कोई यहीं पर रुककर खाता है तो कोई अपने मंजिल पर जाकर खाता है। देख रहे हैं लगातार ये जो लाइन है ये बढ़ती ही जा रही है, और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वाकई में वड़ा पाव का स्वाद एक नंबर होता है। थोड़ा सा इस वड़ा पाव की साइज भी देखें, 25 रुपए का एक है, इतना ज्यादा बड़ा है कि एक से ही मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन अगर इसे दो खा लिया जाए तो दिन एकदम मस्त हो जाता है, आदमी एकदम स्वस्थ हो जाता है। चलिए कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर ऐसा है तो क्या खास बात है। मुझे लगता है वड़ा पाव खा चुकी।
4: हाँ, मैंने अभी एक मस्त बड़ा सा वड़ा पाव खाया है।
3: एक में हो गया, पेट भर गया।
4: हाँ, साइज तो अच्छी बड़ी है, सो वो काफी फिलिंग हो जाता है।
3: अच्छा, ये बताएं मुझे कि महीने में कितनी बार खाना होता है?
4: महीने में चार से पांच बार तो वड़ा पाव मतलब लगता ही है।
3: महाराष्ट्र में ही रहती है? महाराष्ट्र में
4: हूँ।
3: वड़ा पाव की जब भी बात आती है क्या चलता है जहन में? घर में भी तो लोग इसे बनाते हैं, बचपन से खा रहे हैं।
4: यस यस, बचपन से। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र हो, तो वड़ा पाव बेसिकली और लाइफ लाइन। मतलब जैसे ट्रेन को, रेलवे को मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है, वैसे जब मुंबई के स्टेपल फूड की बात आती है तो आई कैन इजिली से कि वड़ा पाव मुंबई का स्टेपल फूड है। मतलब काफी लोग, एंड ऐसे भी नहीं कि आपको मतलब वड़ा पाव खा रहे हो तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप गरीब हो या ऐसे कुछ कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, आते जाएंगे, हजारों की शॉपिंग करेंगे, आके खड़े रहना है वड़ा पाव की दुकान पे, आना है, खाना है और मस्त मजे से खाते हैं, एकदम स्वाद ले लेके खाते हैं। एंड यस, मतलब जहाँ तक कि मुंबई के स्ट्रीट फूड की बात आती है, जैसे आपने भी कहा कि वड़ा पाव हो, भेलपूरी हो, पाव भाजी हो, ये सारी चीज़ें, तो मतलब अगेन एज अ सेड कि ये मुंबई का स्टेपल फूड है। मतलब मुंबई रह ही नहीं सकती इसके बिना। जो बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरे भले दूसरे स्टेट से हो या दूसरे देशों से हो, उन्होंने भी आके एक ना एक बार तो यहाँ का चाट खाना ही, और वो भी ठेले पे खड़े रह के, एक ना एक बार तो टपरी की चाय पीनी ही है या वड़ा पाव खाना ही है। मतलब उससे, उसके अलावा, उसके बगैर कोई जा नहीं सकता यहाँ से। और अगर वो एक बार चख ले ना तो बस, उनको एक बार वो स्वाद आ जाए तो बस, मतलब दे क्रेव फॉर इट।
3: महीने में कितना खाते हैं वड़ा पाव?
5: हर रोज कॉलेज छूटने के बाद।
3: रोज?
5: हाँ,
3: प्रतिदिन यही खाना?
5: प्रतिदिन, प्रतिदिन खाना ही खाना है, नहीं तो पेट नहीं भरता है।
3: पेट नहीं भरता? और टेस्ट कैसा लगता है?
5: बहुत मजेदार।
3: यही मुंबई में?
5: मुंबई में रहता हूँ, घाटकोपर में, असलफा। स्ट्रीट फूड में जो मिलेगा भाई सब कुछ खाते हैं अपन।
3: जैसे?
5: हाँ, जो मतलब खा के खुशी मिलती है, स्पाइसी हो गया ज्यादा करके। वड़ा पाव भी अपना फेवरेट है
3: स्ट्रीट फूड को लेकर।
5: हाँ, स्ट्रीट फूड अपन सब कुछ खाते हैं।
3: अच्छा, आपको पता है कि मुंबई में जो है ना, मुंबई ने 10वां नंबर हासिल किया है खाने के मामले में, स्ट्रीट फूड के मामले में, तो क्या रिएक्शन होगा एक मुंबईकर होने के नाते?
5: होना ही चाहिए, क्योंकि वड़ा पाव अभी बहुत जने जो जिनका मतलब जिनके पास खाना नहीं रहता, वो वड़ा पाव पे ही जीते।
3: आप ये बताएं, महीने में कितना ज्यादा वड़ा पाव खाते होंगे? कितने?
6: 30-40-50 खा लेते हैं डेली का, एकदम खाली एक शौक के लिए खाते हैं, खाने पेट भरने के लिए, हम लोग मजा लेने का थोड़ा शाम को।
3: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या पसंद है फास्ट फूड में, बात करें आपको?
6: सब कुछ है खाने में, सब कुछ, किस खाने को ना बोले कोई भी, हर चीज एकदम मजे से खाने का, टेस्ट इंजॉय करने का बारिश का मौसम है।
0: वड़ा पाव मुंबई की पहचान है, लेकिन कई और व्यंजन हैं जो आए तो किसी दूसरे राज्य से हैं, लेकिन मुंबई के रंग में रंगते हुए और चटपटे हो गए हैं।
7: हमारे दुकान में इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, दाल वड़ा, चाय, कॉफी, सब सब लोग को पसंद हो जाता है।
8: मुंबई का नाम है खाने पीने में, जो बीच में ज्यादा है।
3: जो बीच में ज्यादा है?
8: जो बीच में।
3: तो क्या क्या आपकी दुकान पे क्या मिलता है?
8: अपना पाव भाजी है, पुलाव राइस है, ये फेमस है यहाँ का, स्पेशल बनता है। हाँ,
3: मुंबई की पाव भाजी बहुत फेमस है,
8: बहुत फेमस है मुंबई की पाव भाजी। जो बीच में तो और भी टेस्टी है पाव भाजी।
3: और वर्ल्ड में ऐसे ही 10वां नंबर मुंबई ने नहीं हासिल किया है, उसमें न केवल एक वड़ा पाव बल्कि समोसा आता है, भजिया पाव आता है, भेलपूरी, पानीपुरी, मुंह में पानी आ गया। पाव भाजी भी आजकल तरह तरह की आने लगी हैं, डोसा, चटनी, साउथ इंडियन डिश, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सैंडविच है, जिन्हें खाने के लिए लोग आते हैं, और बहुत ही कम भाव में ये सारी चीजें मिलती भी हैं। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, स्वाद बड़ा अच्छा होता है, और मुझे लगता है कि ऐसा सुनने को भी नहीं मिला है कि इस तरह के स्ट्रीट फूड खा करके स्वास्थ्य को किसी तरीके से कोई परेशानी हुई है। तो आप देखें, लगातार ये कतार बढ़ती जा रही है, और ये जो कतार है न केवल एक वड़ा पाव की दुकान पर आपको मिलेगी, बल्कि वो सारे खाने के जो स्टेशन थे वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल खड़े हैं, अभी तो आए ही हैं, लेकिन और भी देखिए 15 मिनट 20 मिनट से लगातार लोग खड़े हैं, और जब वड़ा पाव मिल जाता है तो कुछ इस तरीके से चटकारे लगाते हैं कि वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव, भेलपूरी, पानीपूरी, सैंडविच, इसके अलावा साउथ इंडियन डिशेज जिसमें इडली, मेंदू वड़ा, डोसा, तमाम वो चीज़ें आती हैं। और यही चीज़ें मुंबई वाले तो बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के कोने से भी लोग जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं वो होता है वड़ा पाव। और वड़ा पाव के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वाकई में बहुत कम बजट में होती हैं, अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं, हाइजीन होता है, और जिसे खाकर लोग स्वस्थ होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 15वें नंबर पर जयपुर है, और जयपुर से रिधिमा जैन, हमारी सहयोगी, अब आपको वहाँ के जो व्यंजन है वहाँ का जायका आपको बताएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।

0: गर्मा गर्म कचौड़ी से उठती खुशबू, कुल्हड़ में जमी मोटी मलाई वाली लस्सी और तवे पर बनते मूंग दाल के चीले, जयपुर की गलियों में कदम रखते ही स्वाद जैसे हर मोड़ पर ही आपका इंतजार कर रहा हो। यहाँ स्ट्रीट फूड सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि शहर की पहचान, उसकी संस्कृति और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का स्वाद है।
1: जहाँ बात स्वाद और चटकारों की आती है, जायके की आती है, वहाँ राजस्थान का नाम जरूर आता है, खास करके चटपटे मसालेदार खाने की।

0: चाहे यहाँ की कचौरी हो, समोसा हो, या फिर यहाँ की बेजड़ की रोटी हो। जो यहाँ का लोकल फूड है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दाल बाटी चूरमा को भी आजकल एक स्ट्रीट फूड स्टाइल में परोसा जा रहा है, तो ये एक मेन कोर्स नहीं बल्कि स्टार्टर्स के रूप में, स्ट्रीट फूड के रूप में यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जयपुर के कैसे मार्केट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं वो लगाए जाते हैं यहाँ पे। आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन या जो आपका जंक फूड में बहुत सारे ऑप्शन होता है वो सब एक ही जगह पे अवेलेबल है। ऐसी जो जगह है, ऐसे जो जॉइंट्स हैं, हर शाम यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी होती है। हर कोई अपने मन पसंद का जो भी उनको खाना है वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो चीज़ यहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो ऐसे में सिर्फ जयपुर के एक ये मार्केट नहीं, ऐसे कई सारे स्ट्रीट फूड मार्केट्स हैं जहाँ पर हर शाम लोगों की भीड़ नज़र आती है। क्योंकि इनोवेशन की मैं बात करूँ तो इनोवेशन भी जयपुर के अब स्ट्रीट फूड में काफ़ी देखने को मिली है। सिर्फ जंक नहीं, हेल्दी ऑप्शन भी अब स्ट्रीट पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनोवेशन काफ़ी देखने को मिल रही है। जहाँ पर अगर आप कोई किसी भी तरीके का डोसा ले रहे हैं तो उसमें मूंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर हेल्दी ऑप्शन कैसे निकाल ले जा सकते हैं स्ट्रीट फूड में, उसका सॉल्यूशन भी जयपुर के यहाँ पे जो फूड जॉइंट्स हैं वहाँ मिल रहा है।
1: जयपुर के स्ट्रीट फूड बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। यहाँ के हर व्यंजन में राजस्थानी मसालों की खुशबू, देसी घी या पारंपरिक तेल का स्वाद, स्थानीय सामग्री और वर्षों पुरानी रेसिपी का मेल मिलता है। यही वजह है कि यहाँ का हर निवाला सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक विरासत का एहसास कराता है। जयपुर के मशहूर कलकत्ती चाट भंडार पर जायके का बाजार सजता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। ये दुकान 1970 से लगातार लोगों को अपने जायकेदार चीला की महक से आकर्षित करती रही है।
0: कुछ तीखापन, कुछ मिठास तो कुछ चटपटे मसाले, यही चीजें हैं जो किसी भी खाने को और भी ज्यादा जायकेदार बनाती है। और यही खाना है जो विश्व भर में अभी भारत का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। और सिर्फ भारत का ही नहीं, भारत के तीन ऐसी सिटीज हैं, एक मुंबई, दूसरा जयपुर और तीसरा दिल्ली। ये तीन सिटीज हैं जो टाइम आउट की लिस्टिंग में टॉप 20 में आई हैं बेस्ट स्ट्रीट फूड के लिए। और जयपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि जयपुर में कौन सा जायकेदार खाना जो है, जो स्ट्रीट फूड है और सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। कितने साल से यहाँ स्टॉल लग रहे? बहुत सालों से तो हम यहाँ आ रहे हैं, आप बता दीजिए कि कुल कितने साल?
2: ये मैडम हमारी दूसरी पीढ़ी है, 56 साल हो गए, 1970 की दुकान है।
0: तो अब देखिए वहाँ बन रहे हैं चीले, तो कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो तो आप हमें पहले बता भी दीजिए और हमारी भी एक प्लेट लगा दीजिए जिससे हम भी वापस से एक बार टेस्ट करें।
2: ये जो चीला बनता है ये 81 आइटम से बनता है। इसमें मूंग की दाल, गरम मसाले, ड्राई फ्रूट, पाचक चीजें, गैस्ट्रिक आइटम नहीं है, चना नहीं है, उड़द नहीं है, मोठ नहीं है, बेसन नहीं है। उसके अलावा ये चीला तैयार किया है। इसके साथ चार तरह की चटनी, दो तरह का दही, पूरा सिंगार करके चीला देते हैं हम।
0: अच्छा, यहाँ पे दही बड़े भी सर बना रहे हैं आप, उसका भी बता दीजिए कि क्या क्या उसमें डल रहे हैं।
2: वो दही बड़ा मूंग की दाल का बनता है, पेवर पेवर छिलके वाली दाल का बनता है और उसके ऊपर वही चार तरह की चटनी दही डाल के ऐसे सर्व किया जाता है। और हमारे जो चटनी है उनमें भी इमली अमचूर का प्रयोग नहीं करते हम बिल्कुल भी। जो आप हमारी मीठी चटनी खाओगे ना वो खाली खजूर और डाबर के चमनप्रास से बनती है।
1: यहाँ बनने वाला चीला सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि हाई प्रोटीन भी माना गया है। मूंग दाल के साथ कई पौष्टिक सामग्री और खास मसालों का मिश्रण इसे सामान्य स्ट्रीट फूड से कुछ अलग पहचान देता है। वहीं मूंग दाल से तैयार दही भल्ले हल्के, मुलायम और स्वाद से भरपूर होते हैं। यही कारण है कि सुबह से ही यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।
3: बहुत ही अच्छा था, टेस्ट वाइज ऑसम था, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बस टेस्ट वाइज रियली गुड, रियली हेल्दी। हाँ यस यस,
4: दही बड़ा और मूंग की दाल का चीला, एब्सोल्युटली फुल ऑफ प्रोटीन, आयुर्वेदिक। इनके जब पिताजी यहाँ बैठा करते थे तब जब हम पे करने जाते थे 60 रुपया, तब उस टाइम पर मैं वो साथ में एक आयुर्वेदिक गोली देते थे जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती थी। मुझे आज भी रिकॉल होता है वो दिन जब यहाँ पर मैं इनके बैक साइड के अंदर में एक 3-व्हीलर रखा होता था, आज हमने यहाँ खड़े होके खाया, उस टाइम पर मैं हम लोग उस रिक्शा के अंदर में बैठ के खाया करते थे।
1: अगर किसी व्यंजन ने जयपुर की पहचान देश दुनिया तक पहुँचाई है तो वो है प्याज की कचौड़ी। बाहर से सुनहरी कुरकुरी और अंदर से मसालेदार, हल्की मीठी और रसदार प्याज की भरावन वाली ये कचौड़ी हर किसी की पसंद है। प्याज को धीमी आंच पर मसालों के साथ इस तरह पकाया जाता है कि उसका स्वाद ही पूरी तरह निखर कर सामने

0: आता है। कई लोग तो इसे बिना चटनी के ही खाना पसंद करते हैं। जयपुर की लस्सी की बात ही कुछ और है। जयपुर के स्ट्रीट फूड की चर्चा लस्सी वाला के बगैर अधूरी मानी गई है। 1944 में शुरू हुई इस दुकान को आज चौथी पीढ़ी आगे ले जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ आज भी आधुनिक फ्लेवर की जगह पारंपरिक स्वाद को ही तरजीह दी जाती है।
1: चटपटे मसालेदार दही बड़े और साथ ही में जो हेल्दी प्रोटीन चीला है वो तो हमने आपको दिखा दिया, और उसके साथ साथ में जो मसालेदार कचौरियां हैं एकदम खस्ता वो भी हमने आपको जयपुर की दिखा दी है। तो जैसे हमने कहा था कि चटपटा, तीखा और मीठा जो है वो तीनों चीजें जो राजस्थान में फेमस है वो तीनों हम आपको दिखाएंगे। तो अब बारी है मिठास की, और मिठास में हम कोई मिठाई नहीं आपको लेके आएंगे, एकदम रिफ्रेशिंग जगह जो कि है जयपुर का ये बहुत ही फेमस लस्सी वाला जो कि 1944 से यहाँ पे है।
2: और लस्सी की बात करें तो आज हम जयमा रोड के सामने जिस लस्सी वाले खड़े हैं, मेरे हिसाब से मोर देन 50 to 80 ईयर्स की लेगेसी इनकी, और इनके अलावा यहाँ पे लस्सी कोई और नहीं देता है। और खासियत ये है कि ये बहुत अर्ली मॉर्निंग खोलते हैं और 12 से पहले क्लोज भी कर जाते हैं, उसके बाद ये ओपन नहीं करते हैं, और ऐसी लस्सी तो जयपुर में कोई दे ही नहीं पा रहा है। और मुझे मेरे हिसाब से 30 इयर्स हो गए आज इनकी लस्सी पीते हुए।
0: जयपुर की हर दुकान अपने साथ कई दशक पुरानी कहानी लेकर खड़ी है और हर रेसिपी में पीढ़ियों का अनुभव शामिल है। शायद इसलिए दुनिया के बेहतरीन स्ट्रीट फूड शहरों की सूची में जयपुर ने अपनी जगह बनाई है।
1: जयपुर की कचौरी और लस्सी का स्वाद तो आपने चख ही लिया है। अब हम आपको लेके चलेंगे तीसरी सिटी यानी कि चटोरों की गली के नाम से जो फेमस है, और वो सिटी है दिल्ली 6 जहाँ मिलेगी चाट पापड़ी। तो आइए लिए चलते हैं आपको दिल्ली 6 और वहाँ के चटपटे चाट की गलियों में।

0: अब बात दिल्ली के स्ट्रीट फूड की, क्योंकि दुनिया की मशहूर टाइम आउट मैगजीन ने साल 2026 की वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रीट फूड सिटीज की जो लिस्ट जारी की है, राजधानी दिल्ली 19वें पायदान पर है। यहाँ के चटपटे फूड से लेकर मसालेदार खाने तक हर जायके का लोग बड़े ही चाव से लुत्फ उठाते हैं। कमला नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की पहली पसंद, शॉपिंग का बड़ा ठिकाना और स्ट्रीट फूड का ऐसा अड्डा जहां सुबह से लेकर देर रात तक स्वाद की महफिल जमी रहती है। यहां हर 10 कदम पर एक नई खुशबू मिलेगी और हर गली में एक नया स्वाद।
1: दिल्ली के खाने को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर दिल्ली वाले का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा कर दिया है, मेरा भी कर दिया है, क्योंकि मैं खुद एक दिल्ली वाली हूँ। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड की सूची में दिल्ली का भी नाम है। हालांकि जयपुर का भी नाम है, बॉम्बे का भी नाम है, लेकिन मेरी दिल्ली का भी नाम है। और इस वक्त मैं आ गई हूँ कमला नगर मार्केट में, क्योंकि जब बात दिल्ली की हो तो मैं ये मार्केट डेफिनेटली नहीं भूल सकती। और उससे भी ज़्यादा खास ये हो गया है कि दिल्ली का जो खाना है वो देश भर में तो राज कर रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, अब वो पूरी दुनिया में भी अपना जादू जो है वो फैला रहा है। तो दिल्ली के स्वाद में क्या है कुछ खास, किस तरीके का स्वाद यहाँ पर मिलता है, हर गली में आपको एक खुशबूदार अच्छी खुशबू जो है वो उठती हुई नजर आएगी, हर दुकान पर आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी और हर स्वाद में आपको एक ना एक कहानी वो नजर आएगी। तो कैसा स्वाद है दिल्ली का, ये दिखाने के लिए ले आई हूँ मैं आपको आज कमला नगर मार्केट में।
0: दिल्ली दिल वालों की तो है ही, लेकिन अब स्वाद वालों की भी पसंद बन चुकी है। जरा सोचिए, अगर दुनिया आपसे पूछे कि सबसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड कहाँ मिलता है, तो इसका जवाब सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे रही है। ऐसी ही दिल्ली को स्ट्रीट फूड ऑफ कैपिटल नहीं कहा जाता। अगर दिल्ली की पहचान में व्यंजन की एक प्लेट रखनी हो तो शायद सबसे पहले नाम आएगा छोले भटूरे का। गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे, मसालेदार छोले, ऊपर से अचार, हरी मिर्च और प्याज, बस एक प्लेट और पूरा दिन बन जाएगा।
2: लेन है ना, आप पूरी लेन देखेंगे, डोसा भी मिलता है, चाट टापरी मिलती है, परांठा भी मिलता है, कुल्फी भी मिलती है और बहुत ही रीजनेबल है। कहीं से भी कंपेयर करें, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे हाउस होल्ड के लिए, किसी के लिए है।
0: दिल्ली की कचौड़ी के तो कहने ही क्या, बाहर से जितनी कुरकुरी, अंदर मसालेदार भरावन, ऊपर से आलू की सब्जी और फिर शुरू होता है असली स्वाद का धमाका। ये सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं है बल्कि इमोशन है।
1: दिल्ली में अगर कोई रहता है तो वो बिना छोले भटूरे के तो बिल्कुल नहीं रह सकता। और जब बात लंच की हो तो इस तरीके से लाइन जो है आपको हर एक छोले भटूरे की शॉप पे नजर आएगी। अच्छा, मैं इस वक्त हूँ ओमदी हट्टी में, ओमदी हट्टी हो, चाचा की छोले भटूरे हो, इन सब जगह पे सबसे ज्यादा लोगों की जो भीड़ है वो नजर आती है। गरम गरम भटूरे जो है वो निकलते हुए आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से जो स्वाद है वो यहाँ पर आपको तलता हुआ नजर आ जाएगा। और साथ में ये जो काले छोले हैं, जो भरपूर मसालेदार, जो चटपटा स्वाद है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके की जो भीड़ है वो डेफिनेटली जो है मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सर छोले भटूरे का स्वाद ले रहे हैं, दिख भी रहा है।
3: एक्चुअली मेरा स्कूल यहाँ होता था 15 नंबर 2 में, मैं 92 में यहाँ पढ़ता था। मैं अब रोहिणी शिफ्ट हो गया हूँ, फिर भी मैं आज कमला नगर आया था बहुत दिन बाद। तब तो इनके रेट बहुत कम थे, अब तो 120 फुल प्लेट हो गए। उस टाइम समोसे हम स्कूल के सारे दोस्त यार खाते थे, कई तो ऐसे भाग जाते थे, बिगड़ पैसे थे चले जाते थे, फिर भी कुछ नहीं कहते थे भैया, क्योंकि स्कूल का सब रश यहीं आता था। बहुत टाइम से आ रहे
1: दिल्ली वाले चटोरे हैं ना, मतलब
3: बहुत ज्यादा।
1: लेकिन ये जो चटोरे हैं वो दिल्ली की वजह से, क्योंकि दिल्ली में जो स्वाद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता,
3: कहीं नहीं मिलता। यस,
1: अच्छा दिल्ली में अगर मैं स्ट्रीट फूड की बात करूँ, नंबर वन नाम लिस्ट में कौन सी डिश का रहता है
3: स्वीट डिश
1: स्ट्रीट फूड में?
3: छोले भटूरे आएंगे सबसे पहले।
1: छोले भटूरे के बाद
3: ब्रेड पकौड़ा।
0: बेड़मी पूरी की खुशबू, पुरानी दिल्ली का असली स्वाद, उड़द दाल से बनी बेड़मी, मसालेदार आलू, दही और ऊपर से अचार, यानी एक प्लेट और पूरा पेट खुश।
4: हमने तो जी आज तक इनके इनसे बढ़िया बेड़मी पूरी का खाई नहीं है। और हमारे संडे का जो सुबह ब्रेकफास्ट होता है वो यहीं पे ही होता है। अभी हमारे कॉलेजेस खुले हैं तो हम यहाँ दिन में एक बार जरूर आते हैं, या तो बेड़मी पूरी खाने या इनकी लस्सी। इनकी लस्सी भी बहुत अच्छी है, जो क्वालिटी ये देते हैं हमारे आसपास कहीं नहीं मिलती।
1: अच्छा, दिल्ली की अगर स्ट्रीट फूड की मैं बात करूं तो क्या सबसे पहले आप कौन सी डिश नाम
5: सबसे पहले आता है?
6: बेड़मी पूरी होती है, वो हर कोई इन जैसी नहीं दे पाएगा मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जो ये फ्लेवर्स देते हैं ना, मतलब अल्टीमेट मेरे को पसंद नहीं है सच, बट मैं यहाँ खाना पसंद करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है जैसे देखना बिल्कुल ऐसी मोटी मोटी, मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है इसके।
1: दिल्ली वाले छोले भटूरे की भी फैन होते हैं,
6: हमें ये ज्यादा अच्छी लगती है पता नहीं क्यों।
0: दिल्ली के स्ट्रीट फूड की बात हो और चाट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आलू टिक्की, दही, हरी चटनी, मीठी चटनी, अनार, सेब और मसालों का ऐसा तड़का कि पहली प्लेट खत्म होते ही दूसरी का मन कर जाए, और अगर मसाले के बाद मीठा चाहिए तो कुल्फी तैयार है। यानी दिल्ली वालों को टेस्ट बैलेंस करना भी बखूबी आता है।
7: बट या द टेस्ट इज गुड, इट्स रिफ्रेशिंग, इट्स कूल, सो या इट वाज गुड।
8: बहुत अच्छा लगा है जी, स्पाइसी है यहाँ का, राजस्थान का थोड़ा सा नॉर्मल टेस्ट रहता है, इसलिए दिल्ली यहाँ का खाने आए हैं स्पेशली। हाँ, स्पेशली स्ट्रीट फूड।
1: पहले आपने चाट ही ट्राई करी है या फिर इसके अलावा भी आपने और व्यंजन ट्राई करे?
8: गोलगप्पे करे हैं ट्राई, और अब ये सेकंड मेरी आइटम पापड़ी चाट है।
0: दिल्ली के स्ट्रीट फूड में इतनी वैरायटीज हैं, आप एक दिन में सभी पकवानों का स्वाद तो ले ही नहीं सकते। लेकिन दिल्ली 6 यानी पुरानी दिल्ली में ऐसी कई दुकानें आपको मिल जाएंगी जो सालों से लोगों का दिल जीतती आई हैं।
1: दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं है बल्कि स्वाद की राजधानी भी, और यहाँ पर आपको हर तरीके का स्वाद एक ही जगह पर मिलेगा, चाहे आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, लेकिन दिल्ली वाले जो स्वाद पसंद करते हैं वो यहाँ डेफिनेटली मिलने वाला है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ चले।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
0: स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर दिखा जवानों का जोश। मीटिंग रिट्रीट के फाइनल रिहर्सल में बीएसएफ के जांबाजों ने की पारंपरिक ड्रिल। देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल, बड़ा तालाब में नावों की निकाली गई तिरंगा रैली, हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें, हजारों महिलाओं ने सर पर कलश रख कर निकाली यात्रा, भोले की भक्ति में झूमे लोग। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान का नया अंदाज, बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर, स्वर्ण श्रृंगार घेवर की कीमत 21,000 रुपए। रायपुर में देखी बदलाव वाली गुड न्यूज, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर होती है। नतीजा ये है कि लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे पर इन्हें सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहाँ वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। ऐसी दो खबरों की पड़ताल आज हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह अरुणाचल प्रदेश का है जहां पर चीनी सेना ने घुसपैठ की है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे जानिए। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल में अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। क्या है वायरल वीडियो और इस दावे की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आमने सामने खड़े सैनिक आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश का है, जहां पर चीनी सेना ने घुसपैठ कर ली है, ये वही का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
4: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसकर कब्जा जमा चुकी है। वीडियो में एक व्यक्ति सेल्फी कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ दूरी पर आमने सामने खड़े सैनिक आपस में बहस करते हुए देखे जा सकते हैं। इस दौरान वहां पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन वाले 60 किलोमीटर अंदर भारत में घुसकर कब्जा कर रहे, चीन का हिस्सा बना रहा है अरुणाचल प्रदेश को। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा ये कर रहे हैं कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसकर कब्जा जमा चुकी है। वीडियो में एक व्यक्ति सेल्फी कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ दूरी पर आमने सामने खड़े सैनिक भी आपस में बहस करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी पुख्ता प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर तक चीनी सेना के घुसने की बात बताई गई हो। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि चीन की ओर से अरुणाचल में कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे सुना तो ये साफ हुआ कि ये बांग्ला भाषा है और वीडियो अरुणाचल प्रदेश का है, तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बांग्ला आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं। ये अपने आप में वीडियो की सत्यता और संदेह पैदा करता है। ऐसा लग रहा है कि ये बांग्लादेश बॉर्डर का वीडियो हो सकता है। साथ ही सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए।
4: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जाँच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इससे हूबहू मिलता जुलता एक वीडियो बांग्लादेशी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मिला। यहां इसे 20 जून को पोस्ट किया गया था। कैप्शन के मुताबिक ये घटना बांग्लादेश के चंपई नवाबगंज सीमा की है, जहां भारतीय बीएसएफ और बांग्लादेश के फोर्स बीजीबी आमने सामने आ गई थी। इस वीडियो में गुलाबी शर्ट पहने उसी शख्स को देखा जा सकता है जो वायरल क्लिप में भी मौजूद है। इसके अलावा हाथ में डंडा लिए हुए एक व्यक्ति भी दोनों वीडियो में देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें कई बांग्लादेशी आउटलेट्स की रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत से बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश कर रहे 20 लोगों को बांग्लादेशी सुरक्षा बल ने रोक दिया था, जिसे लेकर बीएसएफ और बीजीबी के बीच कहासुनी हो गई थी। वैसे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों को अपने देश लौट जाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश वापस जाने के लिए हजारों लोग सीमा पर एकजुट हुए थे। उसी समय बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसे लोगों की वापसी रोकने की कोशिश की गई, जिसे लेकर दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश का नहीं बल्कि भारत बांग्लादेश सीमा का है और भारत की बीएसएफ और बांग्लादेशी फोर्स बीजीबी के बीच हुई कहासुनी को दिखाता है। रिद्धेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट करते नोकझोंक करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि नेपाल का हालिया वीडियो है जहां पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।

0: हाल ही में नेपाल के कुछ इलाकों, खासकर सुनसरी जिले के देवानगंज इलाके में दो समुदाय के बीच तनाव और हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई थी। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट और नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये नेपाल का हालिया वीडियो है, जहां पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर नेपाल से भगाया जा रहा है, जो कस्बाए नेपाल बनाने की साजिश के तहत बसाए गए थे। सरकार इनसे वोटिंग राइट्स वापस ले रही है। डेमोग्राफी परिवर्तन पर अलर्ट हुए नेपाल के हिंदू। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: असल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में किसी सड़क पर लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान वहां पर भगदड़ का माहौल भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं, नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि यह नेपाल का हालिया वीडियो है, जहां धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये बांग्ला निकली। वीडियो अगर नेपाल का है तो फिर यहां सिर्फ बांग्ला में ही लोग बात क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ अटपटा सा लगा। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और नेपाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। वीडियो अगर वाकई सच्चा है तो फिर ये अपने आप में एक बड़ी खबर होती, मीडिया आउटलेट्स में ये खबर जरूर होती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं दो गुटों के बीच हुई झड़प को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक बांग्लादेशी समाचार के फेसबुक पेज पर 4 जुलाई को पोस्ट किया गया मिला। पोस्ट के कैप्शन के अनुसार ये वीडियो गुलिस्तान में बीएनपी और जमाते कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का है, और इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। पड़ताल के दौरान हमें 4 जुलाई 2026 को बांग्लादेश की प्रमुख समाचार वेबसाइट पर भी एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में हमें वायरल क्लिप वाले दृश्य भी नजर आए। रिपोर्ट में बताया गया था कि ये वीडियो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गुलिस्तान का है। यहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के कार्यकर्ता जुलूस के दौरान आपस में भिड़ गए थे। इस हिंसक झड़प में लाठी डंडे भी चले, पथराव हुआ और चाकूबाजी में जमात इस्लामी के एक नेता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सर्च के दौरान हमें एक और बांग्लादेशी समाचार संस्थान के फेसबुक पेज पर भी 4 जुलाई को अपलोड हुआ ये वीडियो मिला। यहां भी बताया गया था कि ये घटना बांग्लादेश के गुलिस्तान की है, जहां पर बीएनपी और जमात के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो नेपाल का नहीं है, ये वीडियो बांग्लादेश का है, जहां एक जुलूस के दौरान बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: स्कूल के मंच पर बच्चों की परफॉर्मेंस हमेशा खास होती है। उनकी छोटी छोटी गलतियां और मासूम हरकतें कई बार ऐसा पल बना देती हैं जिसे लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एक नन्ही बच्ची माँ दुर्गा का रूप बनकर स्टेज पर पहुंचती है, लेकिन परफॉर्मेंस के बीच अचानक अपनी लाइन भूल जाती है। इसके बाद बच्ची जो करती है उसे देखकर वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे ने श्लोक की दो लाइनें तो आसानी से बोल दी, लेकिन तीसरी लाइन पर पहुंचते ही वो अटक गई। कुछ पल तक बच्ची सोचती रही कि आगे क्या बोलना है। जब उसे कुछ याद नहीं आया तो उसने स्टेज के सामने खड़े एक व्यक्ति की तरफ देखा और बेहद सहज अंदाज में पूछ लिया, और क्या था? बस बच्ची का इतना कहना था कि पूरा माहौल हंसी और तालियों से गूंज उठा। दर्शकों के साथ साथ वहां मौजूद शिक्षक भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। खास बात ये थी कि बच्ची ने अपनी गलती को लेकर घबराने के बजाय बेहद मासूम अंदाज में मदद मांग ली। उसका यही प्यारा सा रिएक्शन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। अक्सर कहा जाता है कि इंसान के किस्मत की लकीरें उसके हाथों में होती हैं, लेकिन बिहार के कटिहार जिले की रहने वाली मासूम लक्ष्मी ने इस कहावत को पूरी तरह बदल दिया है। जन्म से ही दोनों हाथ न होने के बावजूद लक्ष्मी आज अपने पैरों से अपनी तकदीर की इबारत लिख रही हैं। उसका ये अटूट जज्बा और हिम्मत देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं और सिर सम्मान से झुक जाता है। स्कूल के कमरे में जब लक्ष्मी बैठती है तो उसकी कुछ करने की इच्छा देखने लायक होती है। वो बिना किसी की मदद के अपने पैरों की उंगलियों से बैग के जिप खोलती है, पैर से ही कॉपी निकालती है और पन्ने पलटती है। फिर पैरों के अंगूठे और उंगलियों के बीच पेन दबाकर पन्नों पर इतनी सफाई से लिखती है कि अच्छे अच्छे देखकर दंग रह जाएं।

कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल देखने को मिल जाते हैं जो बिना कुछ कहे ही दिल को छू जाते हैं। ना कोई बड़ा भाषण, ना कोई खास दिखावा, बस एक छोटी सी हरकत और उसका मतलब बहुत गहरा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक अघोरी बाबा के सामने एक छोटी बच्ची नजर आती है। आमतौर पर लोग अघोरी साधुओं के पास आशीर्वाद लेने और उसका सम्मान करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला। अघोरी बाबा ने खुद इस छोटी बच्चे के सामने झुककर उसका सम्मान किया। उनका ये अंदाज देखकर वहाँ मौजूद लोग भी हैरान रह गए।

सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दो भाइयों का अपनापन, भरोसा और भरपूर प्यार देखने को मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे एक लाइन में बैठकर खाना खा रहे हैं। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ है। जब वो अपने भाई को अकेले बैठा हुआ देखता है तो वो उसके पास पहुंचता है और फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगता है। छोटे भाई आराम से खाना खाए इसका वो खास ख्याल रखता है। इस वीडियो को यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं और दिल खोल कर इस पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। दो भाइयों की इस बॉन्डिंग पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बच्चे और प्यारे पपी का एक साथ खेलते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों की मासूम हरकतें और एक दूसरे के प्रति बेइंतहा प्यार लोगों का दिल जीत रहा है। पपी का बच्चे के पास बार बार जाना, कूदना और प्यार जताना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। लोग इस वीडियो को सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला बता रहे हैं। वीडियो को देखकर यूजर्स यही कह रहे हैं कि कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें ऐसे ही छोटे छोटे पलों में छिपी होती हैं।

0: सोशल मीडिया पर एक पपी का वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पपी एक मजदूर के साथ काम करने की बड़े ही प्यारे ढंग से नकल उतार रहा है। पपी सीधे तौर पर कोई मदद तो नहीं कर पाता, लेकिन फावड़े से मिट्टी हटाते इंसान के पीछे पीछे अपनी नन्ही टांगों से मिट्टी को वैसे ही पीछे ढकेलता नजर आता है। पपी पूरी शिद्दत के साथ इंसान के काम को कॉपी करने की कोशिश करता है। इंटरनेट यूजर्स को पपी की मासूमियत और काम करने का अंदाज बहुत पसंद आ रहा है।
1: पनीर से बनता है और उसके साथ जो चीनी और वो मिक्स करा हुआ है। अच्छा अच्छा।
0: माँ को लगता है कि बेटा दुबला होता जा रहा है, इस चक्कर में वो उसे खूब खिलाती है, लेकिन बेटा फिटनेस फ्रीक हो तो मामला थोड़ा कठिन हो जाता है। एक माँ के सामने ये स्थिति आई तो उन्होंने उसको हैंडल करने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। वीडियो के शुरू में माँ अपने बेटे से कहती हैं, कुछ नहीं होता है, पनीर से बनता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करता बेटा कहता है कि अच्छा पनीर से बनता है, मीठा नहीं होता इसमें? माँ कहती है नहीं। इस दौरान बेड के कोने में छड़ी रखी दिखती है, फिर माँ हाथ में रसगुल्ला लिए हुए ही डंडा उठाती है, मारने को भी होती है, लेकिन वीडियो यहीं खत्म हो जाते हैं। यूजर्स माँ बेटे के इस क्यूट क्लेश पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के बहुत से मौके अक्सर वायरल हो जाते हैं। कई बार सफर करते हुए लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जो इंटरनेट को खूब पसंद आ जाता है। एक सरदार जी के साथ यही हुआ है। उन्होंने दिल्ली में सफर के दौरान ऐसा गाना गाया कि लोग उनके दीवाने हो गए हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं, इस पर जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं।
2: बाजी ताली बजाओ ना, बाजी ताली, हाँ ताली।

तो डांस करना है, डांस करना है, करो।

कभी कभी जानवरों के साथ बिताया गया एक छोटा सा पल भी चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी होता है। कुछ ऐसा ही नजारा उस वक्त देखने को मिला जब भारतीय वन सेवा अधिकारी परवीन कासवान दो रेस्क्यू किए गए हाथियों से मिले। फलों से शुरू हुई ये मुलाकात देखते ही देखते हाथियों के अपने ही अंदाज वाले टोल टैक्स तक पहुंच गई। वीडियो में परवीन कासवान दोनों हाथियों से लोगों की मुलाकात करवाते हैं। दरअसल गजराज और तीस्ता रानी को उस वक्त रेस्क्यू किया गया था जब हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ा। इसके बाद दोनों को सुरक्षित जगह पर लाया गया और अब उनकी अच्छी तरह देखभाल की जा रही है। हालांकि इन दोनों की खास आदत भी है, जब भी कासवान उनके पास पहुंचते हैं तो हाथी उनसे अपना टोल टैक्स वसूलना नहीं भूलते। वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। कासवान उन्हें फल खिलाते हैं और दोनों हाथी बड़े आराम से उनके पास पहुँचकर अपने हिस्से का फल लेते नजर आते हैं।

0: इन दिनों तो विशाल कछुओं का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बड़े जॉइंट टॉर्टॉइज एक दूसरे को धक्का देते हैं और पलटने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें चिड़ियाघर का कर्मचारी दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। वीडियो में दोनों की लड़ाई देखने में काफी मजेदार लगती है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों कछुए आमने सामने हैं। दोनों अपने सिर को आगे कर एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। कभी एक कछुआ दूसरे को पलटने की कोशिश करता है तो कभी दूसरा पलटकर जवाब देता है। कछुओं की लड़ाई देखकर लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इतने भारी और धीमे दिखने वाले जानवर इतने आक्रामक भी हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहे कछुए सुलकाटा टॉर्टॉइज हैं, जिन्हें अफ्रीकन स्पर्ड टॉर्टॉइज भी कहा जाता है। ये कछुए काफी बड़े होते हैं और इनका व्यवहार कई बार बेहद आक्रामक हो सकता है। खासकर नर कछुओं के बीच इलाके और प्रभुत्व को लेकर टकराव देखने को मिलता है। वे अपने मजबूत शरीर और गले के नीचे मौजूद सख्त हिस्से की मदद से दूसरे कछुए को धक्का देते हैं। कई बार उनका मकसद सामने वाले को पलट देना होता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: आजादी की लड़ाई के उन गुमनाम नायकों की, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन न तो उन्हें सम्मान मिला और न ही पहचान। ऐसे ही गुमनाम नायकों में से एक क्रांतिकारी ने दिल्ली के चांदनी चौक में गुमनाम क्रांतिकारियों के लिए एक मंदिर बनवाया, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो गुमनाम न रह जाए।
7: लाल किले के पास मौजूद ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा या तस्वीरें नहीं है, बल्कि उन लोगों के चित्र हैं जिनके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया। शुरुआती दौर में इतिहास लिखने वाला एक फोकस कुछ गिने चुने बड़े नेताओं और संगठनों तक ही सीमित रह गया। पूरा हिंदुस्तान जिस जश्न आजादी की तैयारी में जुटा है, वो किसी एक व्यक्ति के बलिदान और संघर्ष का नतीजा नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई ऐसे बलिदानी थे जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, फिर भी आने वाली पीढ़ियों के लिए गुमनाम रह गए। अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद इतिहास ने उनके योगदान का सही मूल्यांकन नहीं किया। आजादी के किस्से कहानियों या उससे जुड़े इतिहास के पन्नों में उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। सैकड़ों हजारों या लाखों क्रांतिकारी गुमनाम नायकों की तरह रह गए। देश की स्वाधीनता के लिए साझा संघर्ष, त्याग और बलिदान के बावजूद उन्हें आजादी की लड़ाई के चर्चित चेहरों या नायकों की तरह न सम्मान मिला और न ही पहचान।
8: मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ना, अमूमन आप मंदिर जाते हैं तो आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं। कोई मंदिर राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, तो कोई किसी माता का है। लेकिन आज दिल्ली के चांदनी चौक में मैं आपको ऐसे मंदिर में लेकर आया हूँ जहाँ पर कोई ईश्वर कोई देवता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी जान गंवाने वाले, उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले वीर बलिदानियों की यहाँ फोटो लगी है, तस्वीर लगी है, उनके बारे में जानकारी लिखी गई है। ये वो वीर बलिदानी हैं जिनके बारे में इतिहास में लिखा ही नहीं गया, अगर लिखा गया तो एक दो लाइनों में निपटा दिया गया। आइए आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के भीतर।
7: दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद शिव शक्ति नाम का ये मंदिर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गुमनाम क्रांतिकारियों को भी उनके हिस्से का यश दिलाता है। इस अनोखे मंदिर को एक पूर्व क्रांतिकारी ने ही बनवाया था, जिन्हें देश की आजादी के बाद गुमनाम नायकों के साथ जाने अनजाने हुई अनदेखी परेशान करने लगी थी। अलग अलग राज्यों से 100 क्रांतिकारियों की तस्वीर तब से इस बलिदानी मंदिर की शोभा बढ़ा रही है।
8: चांदनी चौक में इस मंदिर का निर्माण स्वर्गीय स्वर्णलाल पारूथी जी ने करवाया था। उन्हें ये देखकर बहुत टीस पहुंची थी कि कई सारे ऐसे क्रांतिकारी जिनकी बड़ी भूमिका थी उनके बारे में इतिहास में लिखा नहीं गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश भर से ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में सूचनाएं जुटाई और उनकी तस्वीरों के साथ लगभग 100 बलिदानियों की तस्वीर यहाँ पर लगाई, उनके बारे में लिखा। ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है और यहाँ पर भी आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शहीद भगत राम जी की। इनके बारे में लिखा ये गया है कि शहीद हरिकिशन लाल के भाई भगत राम महान देशभक्त थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया और 5 वर्षों तक जेल में रहे। मुद्दे की बात अब ये, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारत से बाहर जाने लगे तो भगत राम जी ने अपनी जान पर खेल कर उन्हें काबुल तक पहुँचाया। आप सोचिए, वो इंसान जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी, उनका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। उनकी तस्वीर ढूंढकर उनके बारे में मुख्य जानकारी निकालकर यहां पर लगाया गया है।
7: पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के रहने वाले क्रांतिकारी नवजीवन घोष भी उन गुमनाम नायकों में शामिल थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। फिर भी आजादी से जुड़े मुख्य धारा के इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिली। जबकि ब्रिटिश पुलिस के भीषण अत्याचार और अमानवीय शारीरिक प्रताड़ना के कारण सितंबर 1934 में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी क्रूरता पर पर्दा डालते हुए उनके मृत्यु को आत्महत्या करार दिया था।
8: ये नाम है नवजीवन घोष का। इनके बारे में लिखा है, मिदनापुर के जिला न्यायाधीश वर्ष की हत्या के बाद नवजीवन के भाई निर्मल जीवन को फांसी पर लटका दिया गया।
7: आजादी से जुड़े इतिहास में खास मुकाम पाने में नाकाम रहे एक क्रांतिकारी ने राष्ट्रवाद का ऐसा बीज बोया कि पूरा परिवार ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के रास्ते पर चल पड़ा। क्रांति की पाठशाला में उन्होंने अपने बेटों को हथियारों का इस्तेमाल करना और सटीक निशाना लगाना सिखाया। देश के लिए बलिदान, त्याग और संघर्ष की ऐसी अनगिनत कहानियां यहां मौजूद हैं जिनकी गवाही के तौर पर कई और क्रांतिकारियों की तस्वीर यहां लगी है। करीब 56 साल से यह जगह स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों और आजादी से जुड़े उनके योगदान को अपने भीतर समेटे हुए है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आजादी की उस लड़ाई का स्मरण करवाता है जिसके लिए ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
9: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: और आपको समझाएंगे, देखिए
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर दिखा जवानों का जोश। मीटिंग रिट्रीट के फाइनल रिहर्सल में बीएसएफ के जांबाजों ने की पारंपरिक ड्रिल। देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल। बड़ा तालाब में नावों की निकाली गई तिरंगा रैली। हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न में शिरकत की। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें। हजारों महिलाओं ने सर पर कलश रख कर निकाली यात्रा। भोले की भक्ति में राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान का नया अंदाज। बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर। स्वर्ण श्रृंगार घेवर की कीमत 21,000 रुपए। रायपुर में देखिए बदलाव वाली गुड न्यूज, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक।

नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिले। गोलगप्पे का खट्टा खट्टा पानी, मुंबई का तीखा वड़ा पाव और जयपुर की करारी प्याज वाली कचौरी, मुंह में पानी आ गया ना। पानी आना लाजमी है। अब देखिए, स्ट्रीट फूड का जादू ही कुछ ऐसा होता है कि पेट भले ही भर जाए लेकिन नीयत भरती ही नहीं है। और अब तो देखिए, हमारी इस देसी जायके की दीवानी पूरी दुनिया हो चुकी है, क्योंकि टाइम आउट मैगजीन ने दुनिया के बेस्ट स्ट्रीट फूड शहरों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के एक दो नहीं बल्कि तीन तीन शहरों के नाम शामिल हैं। टॉप 20 में जहां मुंबई 10वें स्थान पर है, तो वहीं पिंक सिटी जयपुर 15वें और दिलवालों की दिल्ली है 19वें नंबर पर। अब दिल्ली की पुरानी गलियों की चाट हो, छोले भटूरे हो, मुंबई का चटपटा वड़ा पाव हो, भेलपुरी हो, या फिर जयपुर की कचौरी या घेवर हो, भाई जितने मर्जी नाम ले लो, ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इन शहरों के जायके में ऐसा कुछ खास है जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना सा बना दिया है। अब क्या कुछ खास है इसमें, ये जानने के लिए हमारे साथ तीन साथी तीनों शहरों के स्ट्रीट फूड का जायका आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रीट फूड के सुपर थ्री।

0: वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपुरी, प्याज कचौड़ी, समोसा, मिर्ची वड़ा, चाट, गोलगप्पे और छोले भटूरे जैसे कई स्ट्रीट फूड्स हैं जिनको देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। ये ऐसे स्ट्रीट फूड हैं जो शहर की पहचान हैं। शहर दर शहर व्यंजन बदलते हैं, स्वाद बदलता है, जायका बदलता है, लेकिन इनकी पहचान शहर की गलियां होती हैं। कहने का मतलब है कि हर शहर की अपनी खासियत होती है, हर शहर का अपना स्वाद, खुशबू और पहचान होती है। कहीं चटपटा स्ट्रीट फूड लोगों का दिल जीत लेता है तो कहीं शाही अंदाज में बना लजीज खाना आकर्षित करता है। हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। हर राज्य का भोजन, मिठाइयाँ और स्ट्रीट फूड की अपनी खासियत है। अगर बात स्ट्रीट फूड की ही होती है तो देश में कई शहर ऐसे हैं जहाँ का स्ट्रीट फूड काफी फेमस है। ऐसा सिर्फ हमारे देश में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में कई शहरों की पहचान तो स्ट्रीट फूड की वजह से ही होती है। स्ट्रीट फूड को लेकर लोगों में ऐसी दीवानगी है कि वो सिर्फ खाने के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ऐसे में टाइम आउट ने एक सर्वेक्षण कराया है। बेस्ट स्ट्रीट फूड सिटीज जैसी वैश्विक शहर रैंकिंग और पाक कला सर्वेक्षणों के अनुसार सबसे ज्यादा चर्चित स्ट्रीट फूड स्थल एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में फैले हुए हैं। जिनमें सबसे आगे हैं वियतनाम में हो ची मिन सिटी, मलेशिया का कुआलालंपुर दूसरे पायदान पर है, जबकि इंडोनेशिया का जकार्ता तीसरे नंबर पर है। भारत से मुंबई 10वें नंबर पर, जयपुर 15वें और दिल्ली 19वें नंबर पर है। आज हम भारत के तीन उन मशहूर शहरों के स्ट्रीट फूड की बात करेंगे जिन्होंने टाइम आउट के सर्वे में टॉप 20 में जगह बनाई है। सबसे पहले बात आमची मुंबई की। तो मुंबई का वड़ा पाव स्ट्रीट फूड का बादशाह माना जाता है। मसालेदार आलू के पकौड़े से भरा नरम ब्रेड रोल, चटपटी चटनी और साथ में तली हुई हरी मिर्च, इसकी तुलना आप बर्गर से भी कर सकते हैं। लेकिन वड़ा पाव मुंबई में हर तबके का फूड है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। हर मुंबईकर या बाहर से आने वाले लोग भी वड़ा पाव के दीवाने नजर आते हैं। मुंबई में वैसे तो वड़ा पाव के कई स्वरूप सामने आ गए हैं, यानी भाजी पाव, समोसा पाव, लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा वड़ा पाव की ही है।
1: जो चौपाटी पे फेमस पानी पूरी, भेलपुरी, सेव पूरी, दही पूरी, चाट, बहुत अच्छा है।
2: यहाँ पे आते हैं सब लोग?
1: सब नहीं, बहुत अच्छा आता है, पब्लिक सही देख के आता है, साफ सफाई अच्छा रहता है ना।
2: सबसे पहले क्या मांगते हैं लोग पानी पूरी?
1: पहले तो बच्चे लोग भी आते ही तो भैया जी पानी पूरी दो, पानी पूरी दो, पानी पूरी देना पड़ता है। फिर बाद में सेव पूरी खाते हैं, टिक्की खाते हैं, समोसा खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बस ये आइटम।
2: लास्ट में सूखी पूरी,
1: लास्ट में वो तो पहली है, रोड शू भी आ जाता है वापिस।
2: और भी मांगते
1: हैं? हाँ, वो तो देना ही पड़ता है। रोड पर भैया जी सूखा पूरी तो दिया ही नहीं है, लो साहब देना ही पड़ता है।
3: वैसे तो यहाँ पर खाने लायक कई चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पसंद की जाती है वो है वड़ा पाव। मैं भी काफी जद्दोजहद के बाद इस वड़ा पाव को पा सका हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी तस्वीरों में देखें, अच्छी खासी लाइन, अच्छी खासी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लगभग 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे लोग खड़े रहते हैं, फिर काउंटर पे जाते हैं, पर्ची फड़वाते हैं और उसके बाद जहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा छन रहा है वहाँ जाकर के वड़ा पाव लेते हैं। कोई यहीं पर रुककर खाता है तो कोई अपने मंजिल पर जाकर खाता है। देख रहे हैं लगातार ये जो लाइन है ये बढ़ती ही जा रही है, और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वाकई में वड़ा पाव का स्वाद एक नंबर होता है। थोड़ा सा इस वड़ा पाव की साइज भी देखें, 25 रुपए का एक है, इतना ज्यादा बड़ा है कि एक से ही मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन अगर इसे दो खा लिया जाए तो दिन एकदम मस्त हो जाता है, आदमी एकदम स्वस्थ हो जाता है। चलिए कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर ऐसा है तो क्या खास बात है। मुझे लगता है वड़ा पाव खा चुकी।
4: हाँ, मैंने अभी एक मस्त बड़ा सा वड़ा पाव खाया है।
3: एक में हो गया, पेट भर गया।
4: हाँ, साइज तो अच्छी बड़ी है, सो वो काफी फिलिंग हो जाता है।
3: अच्छा, ये बताएं मुझे कि महीने में कितनी बार खाना होता है?
4: महीने में चार से पांच बार तो वड़ा पाव मतलब लगता ही है।
3: महाराष्ट्र में ही रहती है? महाराष्ट्र में,
4: महाराष्ट्र में हूँ।
3: वड़ा पाव की जब भी बात आती है क्या चलता है जहन में? घर में भी तो लोग इसे बनाते हैं, बचपन से खा रहे हैं।
4: यस यस, बचपन से। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र हो, तो वड़ा पाव बेसिकली और लाइफ लाइन। मतलब जैसे ट्रेन को, रेलवे को मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है, वैसे जब मुंबई के स्टेपल फूड की बात आती है तो आई कैन इजिली से कि वड़ा पाव मुंबई का स्टेपल फूड है। मतलब काफी लोग, एंड ऐसे भी नहीं कि आपको मतलब वड़ा पाव खा रहे हो तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप गरीब हो या ऐसे कुछ कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, आते जाएंगे, हजारों की शॉपिंग करेंगे, आके खड़े रहना है वड़ा पाव की दुकान पे, आना है, खाना है और मस्त मजे से खाते हैं, एकदम स्वाद ले लेके खाते हैं। एंड यस, मतलब जहाँ तक कि मुंबई के स्ट्रीट फूड की बात आती है, जैसे आपने भी कहा कि वड़ा पाव हो, भेलपूरी हो, पाव भाजी हो, ये सारी चीजें, तो मतलब अगेन एज अ सर कि ये मुंबई का स्टेपल फूड है। मतलब मुंबई रह ही नहीं सकती इसके बिना। जो बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरे भले दूसरे स्टेट से हो या दूसरे देशों से हो, उन्होंने भी आके एक ना एक बार तो यहाँ का चाट खाना ही, और वो भी ठेले पे खड़े रह के, एक ना एक बार तो टपरी की चाय पीनी ही है या वड़ा पाव खाना ही है। मतलब उससे, उसके अलावा, उसके बगैर कोई जा नहीं सकता यहाँ से। और अगर वो एक बार चख ले ना तो बस, उनको एक बार वो स्वाद आ जाए तो बस, मतलब दे क्रेव फॉर इट।
3: महीने में कितना खाते हैं वड़ा पाव?
5: हर रोज कॉलेज छूटने के बाद।
3: रोज?
5: हाँ,
3: प्रतिदिन यही खाना?
5: प्रतिदिन, प्रतिदिन खाना ही खाना है, नहीं तो पेट नहीं भरता है।
3: पेट नहीं भरता? और टेस्ट कैसा लगता है?
5: बहुत मजेदार।
3: यही मुंबई में?
5: मुंबई में रहता हूँ, घाटकोपर में, असलफा। स्ट्रीट फूड में जो मिलेगा भाई सब कुछ खाते हैं अपन।
3: जैसे?
5: हाँ, जो मतलब खा के खुशी मिलती है, स्पाइसी हो गया ज्यादा करके। वड़ा पाव भी अपना फेवरेट है
3: स्ट्रीट फूड को लेकर।
5: हाँ, स्ट्रीट फूड अपन सब कुछ खाते हैं।
3: अच्छा, आपको पता है कि मुंबई में जो है ना, मुंबई ने 10वां नंबर हासिल किया है खाने के मामले में, स्ट्रीट फूड के मामले में, तो क्या रिएक्शन होगा एक मुंबईकर होने के नाते?
5: होना ही चाहिए, क्योंकि वड़ा पाव अभी बहुत जने जो जिनका मतलब जिनके पास खाना नहीं रहता, वो वड़ा पाव पे ही जीते।
3: आप ये बताएं, महीने में कितना ज्यादा वड़ा पाव खाते होंगे? कितने?
6: 30-40-50 खा लेते हैं डेली का, एकदम खाली एक शौक के लिए खाते हैं, खाने खाने पेट भरने के लिए, हम लोग मजा लेने का थोड़ा शाम को।
3: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या पसंद है फास्ट फूड में, बात करें आपको?
6: सब कुछ है खाने में, सब कुछ, किस खाने को ना नहीं बोलने को भी, हर चीज एकदम मजे से खाने का, टेस्ट इंजॉय करने का बारिश का मौसम में।
0: वड़ा पाव मुंबई की पहचान है, लेकिन कई और व्यंजन हैं जो आए तो किसी दूसरे राज्य से हैं, लेकिन मुंबई के रंग में रंगते हुए और चटपटे हो गए हैं।
7: हमारे दुकान में इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, दाल वड़ा, चाय, कॉफी, सब सब लोग को पसंद हो जाता है।
8: मुंबई का नाम है खाने पीने में, जो बीच में ज्यादा है।
3: जो बीच में ज्यादा है?
8: जो बीच में।
3: तो क्या क्या आपकी दुकान पे क्या मिलता है?
8: अपना पाव भाजी है, पुलाव राइस है, ये फेमस है यहाँ का, स्पेशल बनता है। हाँ,
3: मुंबई की पाव भाजी बहुत फेमस,
8: बहुत फेमस है मुंबई की पाव भाजी, जो बीच में तो और भी टेस्टी है पाव भाजी।
3: और वर्ल्ड में ऐसे ही 10वां नंबर मुंबई ने नहीं हासिल किया है, उसमें न केवल एक वड़ा पाव बल्कि समोसा आता है, भजिया पाव आता है, भेलपूरी, पानीपुरी, मुंह में पानी आ गया, पाव भाजी भी आजकल तरह तरह की आने लगी हैं, डोसा, चटनी, साउथ इंडियन डिश, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सैंडविच है, जिन्हें खाने के लिए लोग आते हैं, और बहुत ही कम भाव में ये सारी चीजें मिलती भी हैं। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, स्वाद बड़ा अच्छा होता है, और मुझे लगता है कि ऐसा सुनने को भी नहीं मिला है कि इस तरह के स्ट्रीट फूड खा करके स्वास्थ्य को किसी तरीके से कोई परेशानी हुई है। तो आप देखें, लगातार ये कतार बढ़ती जा रही है, और ये जो कतार है न केवल एक वड़ा पाव की दुकान पर आपको मिलेगी, बल्कि वो सारे खाने के जो स्टेशन थे वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल खड़े हैं, अभी तो आए ही हैं, लेकिन और भी देखिए 15 मिनट 20 मिनट से लगातार लोग खड़े हैं, और जब वड़ा पाव मिल जाता है तो कुछ इस तरीके से चटकारे लगाते हैं कि वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव, भेलपूरी, पानीपूरी, सैंडविच, इसके अलावा साउथ इंडियन डिशेज जिसमें इडली, मेंदू वड़ा, डोसा, तमाम वो चीज़ें आती हैं। और यही चीज़ें मुंबई वाले तो बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के कोने से भी लोग जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं वो होता है वड़ा पाव। और वड़ा पाव के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वाकई में बहुत कम बजट में होती हैं, अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं, हाइजीन होता है, और जिसे खाकर लोग स्वस्थ होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 15वें नंबर पर जयपुर है, और जयपुर से रिधिमा जैन, हमारी सहयोगी, अब आपको वहाँ के जो व्यंजन है वहाँ का जायका आपको बताएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।

0: गर्मा गर्म कचौड़ी से उठती खुशबू, कुल्हड़ में जमी मोटी मलाई वाली लस्सी और तवे पर बनते मूंग दाल के चीले, जयपुर की गलियों में कदम रखते ही स्वाद जैसे हर मोड़ पर ही आपका इंतजार कर रहा हो। यहाँ स्ट्रीट फूड सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि शहर की पहचान, उसकी संस्कृति और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का स्वाद है।
1: जहाँ बात स्वाद और चटकारों की आती है, जायके की आती है, वहाँ राजस्थान का नाम जरूर आता है, खास करके चटपटे मसालेदार खाने की बात जब हो। हम ये बता दें कि जयपुर का खाना वाकई में बहुत ज़्यादा जायकेदार होता है, मसालेदार होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी कुछ भी खाने आता है वो एक बार और वापस ज़रूर आता है, चाहे यहाँ की कचौरी हो, समोसा हो या फिर यहाँ की बेजड़ की रोटी हो। जो यहाँ का लोकल फूड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दाल बाटी चूरमा को भी आजकल एक स्ट्रीट फूड स्टाइल में परोसा जा रहा है, तो ये एक मेन कोर्स नहीं बल्कि स्टार्टर्स के रूप में, स्ट्रीट फूड के रूप में यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जयपुर के कैसे मार्केट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं वो लगाए जाते हैं। यहाँ पे आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन या जो आपका जंक फूड में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वो सब एक ही जगह पे अवेलेबल है। ऐसी जो जगह है, ऐसे जो जॉइंट्स हैं, हर शाम यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी होती है, हर कोई अपने मन पसंद का जो भी उनको खाना है वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो चीज़ यहाँ पर इंजॉय करते हैं। तो ऐसे में सिर्फ

0: स्ट्रीट फूड में काफी देखने को मिली है। सिर्फ जंक नहीं, हेल्दी ऑप्शंस भी अब स्ट्रीट पर नजर आ रहे हैं, जहाँ पे इनोवेशन काफी देखने को मिल रही है। जहाँ पे अगर आप कोई किसी भी तरीके का डोसा ले रहे हैं तो उसमें मूंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर हेल्दी ऑप्शंस कैसे निकाले जा सकते हैं स्ट्रीट फूड में, उसका सॉल्यूशन भी जयपुर के यहाँ पे जो फूड जॉइंट्स हैं वहाँ मिल रहा है।
1: जयपुर के स्ट्रीट फूड बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। यहाँ के हर व्यंजन में राजस्थानी मसालों की खुशबू, देसी घी या पारंपरिक तेल का स्वाद, स्थानीय सामग्री और वर्षों पुरानी रेसिपी का मेल मिलता है। यही वजह है कि यहाँ का हर निवाला सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक विरासत का एहसास कराता है। जयपुर के मशहूर कलकत्ती चाट भंडार पर जायके का बाजार सजता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। ये दुकान 1970 से लगातार लोगों को अपने जायकेदार चीला की महक से आकर्षित करती रही है।
0: कुछ तीखापन, कुछ मिठास तो कुछ चटपटे मसाले, यही चीजें हैं जो किसी भी खाने को और भी ज्यादा जायकेदार बनाती है, और यही खाना है जो विश्व भर में अभी भारत का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। और सिर्फ भारत का ही नहीं, भारत के तीन ऐसी सिटीज हैं, एक मुंबई, दूसरा जयपुर और तीसरा दिल्ली। ये तीन सिटीज हैं जो टाइम आउट की लिस्टिंग में टॉप 20 में आई हैं बेस्ट स्ट्रीट फूड के लिए। और जयपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि जयपुर में कौन सा जायकेदार खाना जो है, जो स्ट्रीट फूड है और सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। कितने साल से यहाँ स्टॉल लग रहे? बहुत सालों से तो हम यहाँ आ रहे हैं, बता दीजिए कि कुल कितने साल?
2: ये मैडम हमारी दूसरी पीढ़ी है, 56 साल हो गए, 1970 की दुकान है।
0: तो अब देखिए वहाँ बन रहे हैं चीले, तो कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो तो आप हमें पहले बता भी दीजिए और हमारी भी एक प्लेट लगा दीजिए जिससे हम भी वापस से एक बार टेस्ट करें।
2: ये जो चीला बनता है ये 81 आइटम से बनता है। इसमें मूंग की दाल, गरम मसाले, ड्राई फ्रूट्स, पाचक चीजें, गैस्ट्रिक आइटम नहीं है, चना नहीं है, उड़द नहीं है, मोट नहीं है, बेसन नहीं है। उसके अलावा ये चीला तैयार किया है। इसके साथ चार तरह की चटनी, दो तरह का दही, पूरा सिंगार करके चिला देते हैं हम।
0: अच्छा, यहाँ पे दही बड़े भी सर बना रहे हैं आप, उसका भी बता दीजिए कि क्या क्या उसमें डल रहे हैं।
2: वो दही बड़ा मूंग की दाल का बनता है, पेवर। अच्छा। पेवर छिलके वाली दाल का बनता है और उसके ऊपर वही चार तरह की चटनी दही डाल के ऐसे सर्व किया जाता है। और हमारे जो चटनी है उनमें भी इमली अमचूर का प्रयोग नहीं करते हम बिल्कुल भी। जो आप हमारी मीठी चटनी खाओगे ना, वो खाली खजूर और डाबर के चमनप्रास से बनती है।
1: यहाँ बनने वाला चीला सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि हाई प्रोटीन भी माना गया है। मूंग दाल के साथ कई पौष्टिक सामग्री और खास मसालों का मिश्रण इसे सामान्य स्ट्रीट फूड से कुछ अलग पहचान देता है। वहीं मूंग दाल से तैयार दही भल्ले हल्के, मुलायम और स्वाद से भरपूर होते हैं। यही कारण है कि सुबह से ही यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।
3: बहुत ही अच्छा था, टेस्ट वाइज ऑसम था। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बस टेस्ट वाइज रियली गुड, रियली हेल्दी। हाँ, यस यस।
4: दही बड़ा और मूंग की दाल का चीला एब्सोल्युटली फुल ऑफ प्रोटीन, आयुर्वेदिक। इनके जब पिताजी यहाँ बैठा करते थे, तब जब हम पे करने जाते थे 60 रुपया, तब उस टाइम पर मैं वो साथ में एक आयुर्वेदिक गोली देते थे जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती थी। मुझे आज भी रिकॉल होता है वो दिन जब यहाँ पर मैं इनके बैक साइड के अंदर में एक 3-व्हीलर रखा होता था। आज हमने यहाँ खड़े होके खाया, उस टाइम पर मैं हम लोग उस रिक्शा के अंदर में बैठ के खाया करते थे।
1: अगर किसी व्यंजन ने जयपुर की पहचान देश दुनिया तक पहुँचाई है तो वो है प्याज की कचौड़ी। बाहर से सुनहरी कुरकुरी और अंदर से मसालेदार, हल्की मीठी और रसदार प्याज की भरावन वाली ये कचौड़ी हर किसी की पसंद है। प्याज को धीमी आंच पर मसालों के साथ इस तरह पकाया जाता है कि उसका स्वाद ही पूरी तरह निखर कर सामने आता है। कई लोग तो इसे बिना चटनी के ही खाना पसंद करते हैं। जयपुर की लस्सी की बात ही कुछ और है। जयपुर के स्ट्रीट फूड की चर्चा लस्सी वाला के बगैर अधूरी मानी गई है। 1944 में शुरू हुई इस दुकान को आज चौथी पीढ़ी आगे ले जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ आज भी आधुनिक फ्लेवर की जगह पारंपरिक स्वाद को ही तरजीह दी जाती है।
0: चटपटे मसालेदार दही बड़े और साथ ही में जो हेल्दी प्रोटीन चीला है वो तो हमने आपको दिखा दिया, और उसके साथ साथ में जो मसालेदार कचौरियां हैं एकदम खस्ता, वो भी हमने आपको जयपुर की दिखा दी है। तो जैसे हमने कहा था कि चटपटा, तीखा और मीठा जो है वो तीनों चीजें जो राजस्थान में फेमस है वो तीनों हम आपको दिखाएंगे। तो अब बारी है मिठास की, और मिठास में हम कोई मिठाई नहीं आपको लेके आएंगे, एकदम रिफ्रेशिंग जगह जो कि है जयपुर का ये

0: बहुत ही फेमस लस्सी वाला जो कि 1944 से यहाँ पे है।
1: और लस्सी की बात करें तो आज हम जो एम आई रोड के सामने जिस लस्सी वाले खड़े हैं, मेरे हिसाब से मोर देन 50 to 80 ईयर्स की लेगेसी है इनकी। और इनके अलावा यहाँ पे लस्सी कोई और नहीं देता है। और खासियत ये है कि ये बहुत अर्ली मॉर्निंग खोलते हैं और 12 से पहले क्लोज भी कर जाते हैं, उसके बाद ये ओपन नहीं करते हैं। और ऐसी लस्सी तो जयपुर में कोई दे ही नहीं पा रहा है। और मुझे मेरे हिसाब से 30 ईयर्स हो गए आज इनकी लस्सी पीते हुए।
2: जयपुर की हर दुकान अपने साथ कई दशक पुरानी कहानी लेकर खड़ी है और हर रेसिपी में पीढ़ियों का अनुभव शामिल है। शायद इसलिए दुनिया के बेहतरीन स्ट्रीट फूड शहरों की सूची में जयपुर ने अपनी जगह बनाई है।
0: जयपुर की कचौरी और लस्सी का स्वाद तो आपने चख ही लिया है। अब हम आपको लेके चलेंगे तीसरी सिटी, यानी कि चटोरों की गली के नाम से जो फेमस है, और वो सिटी है दिल्ली 6, जहाँ मिलेगी चाट पापड़ी। तो आइए लिए चलते हैं आपको दिल्ली 6 और वहाँ के चटपटे चाट की गलियों में।

0: अब बात दिल्ली के स्ट्रीट फूड की, क्योंकि दुनिया की मशहूर टाइम आउट मैगजीन ने साल 2026 की वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रीट फूड सिटीज की जो लिस्ट जारी की है, राजधानी दिल्ली 19वें पायदान पर है। यहाँ के चटपटे फूड से लेकर मसालेदार खाने तक हर जायके का लोग बड़े ही चाव से लुत्फ उठाते हैं। कमला नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की पहली पसंद, शॉपिंग का बड़ा ठिकाना और स्ट्रीट फूड का ऐसा अड्डा जहां सुबह से लेकर देर रात तक स्वाद की महफिल जमी रहती है। यहां हर 10 कदम पर एक नई खुशबू मिलेगी और हर गली में एक नया स्वाद।
1: दिल्ली के खाने को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर दिल्ली वाले का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा कर दिया है, मेरा भी कर दिया है क्योंकि मैं खुद एक दिल्ली वाली हूँ। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड की सूची में दिल्ली का भी नाम है। हालांकि जयपुर का भी नाम है, बॉम्बे का भी नाम है, लेकिन मेरी दिल्ली का भी नाम है। और इस वक्त मैं आ गई हूँ कमला नगर मार्केट में, क्योंकि जब बात दिल्ली की हो तो मैं ये मार्केट डेफिनेटली नहीं भूल सकती। और उससे भी ज़्यादा खास ये हो गया है कि दिल्ली का जो खाना है वो देश भर में तो राज कर रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, अब वो पूरी दुनिया में भी अपना जादू जो है वो फैला रहा है। तो दिल्ली के स्वाद में क्या है कुछ खास, किस तरीके का स्वाद यहाँ पर मिलता है, हर गली में आपको एक खुशबूदार अच्छी खुशबू जो है वो उठती हुई नजर आएगी, हर दुकान पर आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी और हर स्वाद में आपको एक ना एक कहानी वो नजर आएगी। तो कैसा स्वाद है दिल्ली का, ये दिखाने के लिए ले आई हूँ मैं आपको आज कमला नगर मार्केट में।
0: दिल्ली दिल वालों की तो है ही, लेकिन अब स्वाद वालों की भी पसंद बन चुकी है। जरा सोचिए, अगर दुनिया आपसे पूछे कि सबसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड कहाँ मिलता है, तो इसका जवाब सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे रही है। ऐसी ही दिल्ली को स्ट्रीट फूड ऑफ कैपिटल नहीं कहा जाता। अगर दिल्ली की पहचान में व्यंजन की एक प्लेट रखनी हो तो शायद सबसे पहले नाम आएगा छोले भटूरे का। गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे, मसालेदार छोले, ऊपर से अचार, हरी मिर्च और प्याज, बस एक प्लेट और पूरा दिन बन जाएगा।
2: लेन है ना, आप पूरी लेन देखेंगे, डोसा भी मिलता है, चाट टापरी मिलती है, परांठा भी मिलता है, कुल्फी भी मिलती है और बहुत ही रीजनेबल है। कहीं से भी कंपेयर करें, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे हाउस होल्ड के लिए, किसी के लिए।
0: दिल्ली की कचौड़ी के तो कहने ही क्या, बाहर से जितनी कुरकुरी, अंदर मसालेदार भरावन, ऊपर से आलू की सब्जी और फिर शुरू होता है असली स्वाद का धमाका। ये सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं है बल्कि इमोशन है।
1: दिल्ली में अगर कोई रहता है तो वो बिना छोले भटूरे के तो बिल्कुल नहीं रह सकता। और जब बात लंच की हो तो इस तरीके से लाइन जो है आपको हर एक छोले भटूरे की शॉप पे नजर आएगी। अच्छा, मैं इस वक्त हूँ ओमदी हट्टी में, ओमदी हट्टी हो, चाचा की छोले भटूरे हो, इन सब जगह पे सबसे ज्यादा लोगों की जो भीड़ है वो नजर आती है। गरम गरम भटूरे जो है वो निकलते हुए आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से जो स्वाद है वो यहाँ पर आपको तलता हुआ नजर आ जाएगा। और साथ में ये जो काले छोले हैं, जो भरपूर मसालेदार, जो चटपटा स्वाद है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके की जो भीड़ है वो डेफिनेटली जो है मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सर छोले भटूरे का स्वाद ले रहे हैं, दिख भी रहा है।
3: एक्चुअली मेरा स्कूल यहाँ होता था 15 नंबर 2 में, मैं 92 में यहाँ पढ़ता था। मैं अब रोहिणी शिफ्ट हो गया हूँ, फिर भी मैं आज कमला नगर आया था बहुत दिन बाद। तब तो इनके रेट बहुत कम थे, अब तो 120 फुल प्लेट हो गए। उस टाइम समोसे हम स्कूल के सारे दोस्त यार खाते थे, कई तो ऐसे भाग जाते थे, बिगड़ पैसे थे चले जाते थे, फिर भी कुछ नहीं कहते थे भैया, क्योंकि स्कूल का सब रश यहीं आता था। बहुत टाइम से आ रहे
1: दिल्ली वाले चटोरे हैं ना, मतलब
3: बहुत ज़्यादा।
1: लेकिन ये जो चटोरे हैं वो दिल्ली की वजह से, क्योंकि दिल्ली में जो स्वाद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता,
3: कहीं नहीं मिलता।
1: अच्छा, दिल्ली में अगर मैं स्ट्रीट फूड की बात करूँ, नंबर वन नाम लिस्ट में कौन सी डिश का रहता है?
3: स्वीट डिश
1: स्ट्रीट फूड में
3: छोले भटूरे आएंगे सबसे पहले।
1: छोले भटूरे के बाद
3: ब्रेड पकौड़ा।
0: बेड़मी पूरी की खुशबू, पुरानी दिल्ली का असली स्वाद, उड़द दाल से बनी बेड़मी, मसालेदार आलू, दही और ऊपर से अचार, यानी एक प्लेट और पूरा पेट खुश।
4: हमने तो जी आज तक इनके इनसे बढ़िया बेड़मी पूरी का खाई नहीं है। और हमारे संडे का जो सुबह ब्रेकफास्ट होता है वो यहीं पे ही होता है। अभी हमारे कॉलेजेस खुले हैं तो हम यहाँ दिन में एक बार जरूर आते हैं, या तो बेड़मी पूरी खाने या इनकी लस्सी। इनकी लस्सी भी बहुत अच्छी है, जो क्वालिटी ये देते हैं हमारे आसपास कहीं नहीं मिलती।
1: दिल्ली की अगर स्ट्रीट फूड की मैं बात करूं तो क्या सबसे पहले आप कौन सी डिश नाम सबसे पहले आता है?
5: बेड़मी पूरी होती है, वो हर कोई इन जैसी नहीं दे पाएगा मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जो ये फ्लेवर्स देते हैं ना, मतलब अल्टीमेट मेरे को पसंद नहीं है सच, बट मैं यहाँ खाना पसंद करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। जैसे देखना बिल्कुल ऐसी मोटी मोटी, मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है इसके।
1: दिल्ली वाले छोले भटूरे की भी फैन होते हैं,
5: हमें ये ज्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों।
0: दिल्ली के स्ट्रीट फूड की बात हो और चाट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आलू टिक्की, दही, हरी चटनी, मीठी चटनी, अनार, सेव और मसालों का ऐसा तड़का कि पहली प्लेट खत्म होते ही दूसरी का मन कर जाए। और अगर मसाले के बाद मीठा चाहिए तो कुल्फी तैयार है। यानी दिल्ली वालों को टेस्ट बैलेंस करना भी बखूबी आता है।
6: बट या द टेस्ट इज गुड, इट्स रिफ्रेशिंग, इट्स कूल, सो या इट वाज गुड।
7: बहुत अच्छा लगा है जी, स्पाइसी है यहाँ का, राजस्थान का थोड़ा सा नॉर्मल टेस्ट रहता है, इसलिए दिल्ली यहाँ का खाने आए हैं स्पेशली। हाँ, स्पेशली स्ट्रीट फूड।
1: पहले आपने चाट ही ट्राई करी है या फिर इसके अलावा भी आपने और व्यंजन ट्राई करे?
7: गोलगप्पे करे हैं ट्राई, और अब ये सेकंड मेरी आइटम पापड़ी चाट है।
0: दिल्ली के स्ट्रीट फूड में इतनी वैरायटीज हैं, आप एक दिन में सभी पकवानों का स्वाद तो ले ही नहीं सकते। लेकिन दिल्ली 6 यानी पुरानी दिल्ली में ऐसी कई दुकानें आपको मिल जाएंगी जो सालों से लोगों का दिल जीतती आई हैं।
1: दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं है बल्कि स्वाद की राजधानी भी, और यहाँ पर आपको हर तरीके का स्वाद एक ही जगह पर मिलेगा। चाहे आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, लेकिन दिल्ली वाले जो स्वाद पसंद करते हैं वो यहाँ डेफिनेटली मिलने वाला है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ चले।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर दिखा जवानों का जोश। मीटिंग रिट्रीट के फाइनल रिहर्सल में बीएसएफ के जांबाजों ने की पारंपरिक ड्रिल। देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल, बड़ा तालाब में नावों की निकाली गई तिरंगा रैली, हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न में शिरकत। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें, हजारों महिलाओं ने सर पर कलश रख कर निकाली यात्रा, भोले की भक्ति में झूम लोग। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान का नया अंदाज, बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर, स्वर्ण श्रृंगार घेवर की कीमत 21,000 रुपए। रायपुर में देखी बदलाव वाली गुड न्यूज, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर होती है। नतीजा ये है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, उन्हें शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहाँ वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। ऐसी दो खबरों की पड़ताल आज हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह अरुणाचल प्रदेश का है जहां पर चीनी सेना ने घुसपैठ की है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे जानिए। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल में अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। क्या है वायरल वीडियो और इस दावे की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आमने सामने खड़े सैनिक आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश का है जहां पर चीनी सेना ने घुसपैठ कर ली है, ये वही का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
3: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसकर कब्जा जमा चुकी है। वीडियो में एक व्यक्ति सेल्फी कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ दूरी पर आमने सामने खड़े सैनिक आपस में बहस करते हुए देखे जा सकते हैं। इस दौरान वहां पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन वाले 60 किलोमीटर अंदर भारत में घुसकर कब्जा कर रहे, चीन का हिस्सा बना रहा है अरुणाचल प्रदेश को। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो के जरिए दावा ये कर रहे हैं कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसकर कब्जा जमा चुकी है। वीडियो में एक व्यक्ति सेल्फी कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ दूरी पर आमने सामने खड़े सैनिक भी आपस में बहस करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी पुख्ता प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर तक चीनी सेना के घुसने की बात बताई गई हो। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि चीन की ओर से अरुणाचल में कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वीडियो के हर फ्रेम को ध्यान से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे सुना तो ये साफ हुआ कि ये बांग्ला भाषा है और वीडियो अरुणाचल प्रदेश का है, तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बांग्ला आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं। ये अपने आप में वीडियो की सत्यता और संदेह पैदा करता है। ऐसा लग रहा है कि ये बांग्लादेश बॉर्डर का वीडियो हो सकता है। साथ ही सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इससे हूबहू मिलता जुलता एक वीडियो बांग्लादेशी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मिला। यहाँ इसे 20 जून को पोस्ट किया गया था। कैप्शन के मुताबिक ये घटना बांग्लादेश के चंपई नवाबगंज सीमा की है, जहाँ भारतीय बीएसएफ और बांग्लादेश के फोर्स बीजीबी आमने सामने आ गई थी। इस वीडियो में गुलाबी शर्ट पहने उसी शख्स को देखा जा सकता है जो वायरल क्लिप में भी मौजूद है। इसके अलावा हाथ में डंडा लिए हुए एक व्यक्ति भी दोनों वीडियो में देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें कई बांग्लादेशी आउटलेट्स की रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत से बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश कर रहे 20 लोगों को बांग्लादेशी सुरक्षा बल ने रोक दिया था, जिसे लेकर बीएसएफ और बीजीबी के बीच कहासुनी हो गई थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों को अपने देश लौट जाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश वापस जाने के लिए हजारों लोग सीमा पर एकजुट हुए थे। उसी समय बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसे लोगों की वापसी रोकने की कोशिश की गई, जिसे लेकर दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश का नहीं बल्कि भारत बांग्लादेश सीमा का है और भारत की बीएसएफ और बांग्लादेशी फोर्स बीजीबी के बीच हुई कहासुनी को दिखाता है। रिद्धेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट करते नोकझोंक करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह नेपाल का हालिया वीडियो है, जहां पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।

0: हाल ही में नेपाल के कुछ इलाकों, खासकर सुनसरी जिले के देवानगंज इलाके में दो समुदाय के बीच तनाव और हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई थी। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट और नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये नेपाल का हालिया वीडियो है, जहां पर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर नेपाल से भगाया जा रहा है, जो कस्बाए नेपाल बनाने की साजिश के तहत बसाए गए थे। सरकार इनसे वोटिंग राइट्स वापस ले रही है। डेमोग्राफी परिवर्तन पर अलर्ट हुए नेपाल के हिंदू। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: असल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में किसी सड़क पर लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान वहां पर भगदड़ का माहौल भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं, नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि यह नेपाल का हालिया वीडियो है, जहां धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये बांग्ला निकली। वीडियो अगर नेपाल का है तो फिर यहां सिर्फ बांग्ला में ही लोग बात क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ अटपटा सा लगा। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और नेपाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। वीडियो अगर वाकई सच्चा है तो फिर ये अपने आप में एक बड़ी खबर होती। मीडिया आउटलेट्स में ये खबर जरूर होती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं दो गुटों के बीच हुई झड़प को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक बांग्लादेशी समाचार के फेसबुक पेज पर 4 जुलाई को पोस्ट किया गया मिला। पोस्ट के कैप्शन के अनुसार ये वीडियो गुलिस्तान में बीएनपी और जमाते कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का है, और इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। पड़ताल के दौरान हमें 4 जुलाई 2026 को बांग्लादेश की प्रमुख समाचार वेबसाइट पर भी एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में हमें वायरल क्लिप वाले दृश्य भी नजर आए। रिपोर्ट में बताया गया था कि ये वीडियो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गुलिस्तान का है। यहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के कार्यकर्ता जुलूस के दौरान आपस में भिड़ गए थे। इस हिंसक झड़प में लाठी डंडे भी चले, पथराव हुआ और चाकूबाजी में जमात इस्लामी के एक नेता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सर्च के दौरान हमें एक और बांग्लादेशी समाचार संस्थान के फेसबुक पेज पर भी 4 जुलाई को अपलोड हुआ ये वीडियो मिला। यहां भी बताया गया था कि ये घटना बांग्लादेश के गुलिस्तान की है, जहां पर बीएनपी और जमात के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो नेपाल का नहीं है, ये वीडियो बांग्लादेश का है, जहां एक जुलूस के दौरान बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: स्कूल के मंच पर बच्चों की परफॉर्मेंस हमेशा खास होती है। उनकी छोटी छोटी गलतियां और मासूम हरकतें कई बार ऐसा पल बना देती हैं जिसे लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एक नन्ही बच्ची माँ दुर्गा का रूप बनकर स्टेज पर पहुंचती है, लेकिन परफॉर्मेंस के बीच अचानक अपनी लाइन भूल जाती है। इसके बाद बच्ची जो करती है उसे देखकर वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा, वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे ने श्लोक की दो लाइनें तो आसानी से बोल दी, लेकिन तीसरी लाइन पर पहुंचते ही वो अटक गई। कुछ पल तक बच्ची सोचती रही कि आगे क्या बोलना है। जब उसे कुछ याद नहीं आया तो उसने स्टेज के सामने खड़े एक व्यक्ति की तरफ देखा और बेहद सहज अंदाज में पूछ लिया, और क्या था। बस बच्ची का इतना कहना था कि पूरा माहौल हंसी और तालियों से गूंज उठा। दर्शकों के साथ साथ वहां मौजूद शिक्षक भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। खास बात ये थी कि बच्ची ने अपनी गलती को लेकर घबराने के बजाय बेहद मासूम अंदाज में मदद मांग ली। उसका यही प्यारा सा रिएक्शन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। अक्सर कहा जाता है कि इंसान के किस्मत की लकीरें उसके हाथों में होती हैं, लेकिन बिहार के कटिहार जिले की रहने वाली मासूम लक्ष्मी ने इस कहावत को पूरी तरह बदल दिया है। जन्म से ही दोनों हाथ न होने के बावजूद लक्ष्मी आज अपने पैरों से अपनी तकदीर की इबारत लिख रही हैं। उसका ये अटूट जज्बा और हिम्मत देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं और सिर सम्मान से झुक जाता है। स्कूल के कमरे में जब लक्ष्मी बैठती है तो उसकी कुछ करने की इच्छा देखने लायक होती है। वो बिना किसी की मदद के अपने पैरों की उंगलियों से बैग के जिप खोलती है, पैर से ही कॉपी निकालती है और पन्ने पलटती है। फिर पैरों के अंगूठे और उंगलियों के बीच पेन दबाकर पन्नों पर इतनी सफाई से लिखती है कि अच्छे अच्छे देखकर दंग रह जाएं।

कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल देखने को मिल जाते हैं जो बिना कुछ कहे ही दिल को छू जाते हैं। न कोई बड़ा भाषण, न कोई खास दिखावा, बस एक छोटी सी हरकत और उसका मतलब बहुत गहरा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक अघोरी बाबा के सामने एक छोटी बच्ची नजर आती है। आमतौर पर लोग अघोरी साधुओं के पास आशीर्वाद लेने और उसका सम्मान करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला। अघोरी बाबा ने खुद इस छोटी बच्चे के सामने झुककर उसका सम्मान किया। उनका ये अंदाज देखकर वहाँ मौजूद लोग भी हैरान रह गए।

सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दो भाइयों का अपनापन, भरोसा और भरपूर प्यार देखने को मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे एक लाइन में बैठकर खाना खा रहे हैं। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ है। जब वो अपने भाई को अकेले बैठा हुआ देखता है तो वो उसके पास पहुँचता है और फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगता है। छोटे भाई आराम से खाना खाए इसका वो खास ख्याल रखता है। इस वीडियो को यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं और दिल खोल कर इस पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। दो भाइयों की इस बॉन्डिंग पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बच्ची और प्यारे पपी का एक साथ खेलते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों की मासूम हरकतें और एक दूसरे के प्रति बेइंतहा प्यार लोगों का दिल जीत रहा है। पपी का बच्चे के पास बार बार जाना, कूदना और प्यार जताना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। लोग इस वीडियो को सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला बता रहे हैं। वीडियो को देखकर यूजर्स यही कह रहे हैं कि कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें ऐसे ही छोटे छोटे पलों में छिपी होती हैं।

0: सोशल मीडिया पर एक पपी का वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पपी एक मजदूर के साथ काम करने की बड़े ही प्यारे ढंग से नकल उतार रहा है। पपी सीधे तौर पर कोई मदद तो नहीं कर पाता, लेकिन फावड़े से मिट्टी हटाते इंसान के पीछे पीछे अपनी नन्ही टांगों से मिट्टी को वैसे ही पीछे ढकेलता नजर आता है। पपी पूरी शिद्दत के साथ इंसान के काम को कॉपी करने की कोशिश करता है। इंटरनेट यूजर्स को पपी की मासूमियत और काम करने का अंदाज बहुत पसंद आ रहा है।
1: पनीर से बनता है और उसके साथ जो चीनी और वो मिक्स करा हुआ है। अच्छा।
0: माँ को लगता है कि बेटा दुबला होता जा रहा है, इस चक्कर में वो उसे खूब खिलाती है, लेकिन बेटा फिटनेस फ्रीक हो तो मामला थोड़ा कठिन हो जाता है। एक माँ के सामने ये स्थिति आई तो उन्होंने उसको हैंडल करने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। वीडियो के शुरू में माँ अपने बेटे से कहती है, कुछ नहीं होता है, पनीर से बनता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करता बेटा कहता है कि अच्छा, पनीर से बनता है, मीठा नहीं होता इसमें? माँ कहती है नहीं। इस दौरान बेड के कोने में छड़ी रखी दिखती है, फिर माँ हाथ में रसगुल्ला लिए हुए ही डंडा उठाती है। मारने को भी होती है, लेकिन वीडियो यही खत्म हो जाती है। यूजर्स माँ बेटे के इस क्यूट क्लेश पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के बहुत से मौके अक्सर वायरल हो जाते हैं। कई बार सफर करते हुए लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जो इंटरनेट को खूब पसंद आ जाता है। एक सरदार जी के साथ यही हुआ है। उन्होंने दिल्ली में सफर के दौरान ऐसा गाना गाया कि लोग उनके दीवाने हो गए हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं, इस पर जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं।
2: ताली बजाओ ना, ताली, हाँ ताली।

कभी कभी जानवरों के साथ बिताया गया एक छोटा सा पल भी चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी होता है। कुछ ऐसा ही नजारा उस वक्त देखने को मिला जब भारतीय वन सेवा अधिकारी परवीन कासवान दो रेस्क्यू किए गए हाथियों से मिले। फलों से शुरू हुई ये मुलाकात देखते ही देखते हाथियों के अपने ही अंदाज वाले टोल टैक्स तक पहुंच गई। वीडियो में परवीन कासवान दोनों हाथियों से लोगों की मुलाकात करवाते हैं। दरअसल गजराज और तीस्ता रानी को उस वक्त रेस्क्यू किया गया था जब हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ा। इसके बाद दोनों को सुरक्षित जगह पर लाया गया और अब उनकी अच्छी तरह देखभाल की जा रही है। हालांकि इन दोनों की खास आदत भी है, जब भी कासवान उनके पास पहुंचते हैं तो हाथी उनसे अपना टोल टैक्स वसूलना नहीं भूलते। वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। कासवान उन्हें फल खिलाते हैं और दोनों हाथी बड़े आराम से उनके पास पहुँचकर अपने हिस्से का फल लेते नजर आते हैं।

0: इन दिनों तो विशाल कछुओं का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बड़े जॉइंट टॉर्टोइज एक दूसरे को धक्का देते हैं और पलटने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें चिड़ियाघर का कर्मचारी दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। वीडियो में दोनों की लड़ाई देखने में काफी मजेदार लगती है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों कछुए आमने सामने हैं। दोनों अपने सिर को आगे कर एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। कभी एक कछुआ दूसरे को पलटने की कोशिश करता है तो कभी दूसरा पलट कर जवाब देता है। कछुओं की ये लड़ाई देखकर लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इतने भारी और धीमे दिखने वाले जानवर इतने आक्रामक भी हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहे कछुए सुलकाटा टॉर्टोइस हैं, जिन्हें अफ्रीकन स्पर्ड टॉर्टोइस भी कहा जाता है। ये कछुए काफी बड़े होते हैं और इनका व्यवहार कई बार बेहद आक्रामक हो सकता है। खासकर नर कछुओं के बीच इलाके और प्रभुत्व को लेकर टकराव देखने को मिलता है। वे अपने मजबूत शरीर और गले के नीचे मौजूद सख्त हिस्से की मदद से दूसरे कछुए को धक्का देते हैं। कई बार उनका मकसद सामने वाले को पलट देना होता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: आजादी की लड़ाई की उन गुमनाम नायकों की, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन न तो उन्हें सम्मान मिला और न ही पहचान। ऐसे ही गुमनाम नायकों में से एक क्रांतिकारी ने दिल्ली के चांदनी चौक में गुमनाम क्रांतिकारियों के लिए एक मंदिर बनवाया, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो गुमनाम न रह जाए।
7: लाल किले के पास मौजूद ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा या तस्वीरें नहीं है, बल्कि उन लोगों के चित्र हैं जिनके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया। शुरुआती दौर में इतिहास लिखने वाला एक फोकस कुछ गिने चुने बड़े नेताओं और संगठनों तक ही सीमित रह गया। पूरा हिंदुस्तान जिस जश्न आजादी की तैयारी में जुटा है, वो किसी एक व्यक्ति के बलिदान और संघर्ष का नतीजा नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई ऐसे बलिदानी थे जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, फिर भी आने वाली पीढ़ियों के लिए गुमनाम रह गए। अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद इतिहास ने उनके योगदान का सही मूल्यांकन नहीं किया। आजादी के किस्से कहानियों या उससे जुड़े इतिहास के पन्नों में उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। सैकड़ों हजारों या लाखों क्रांतिकारी गुमनाम नायकों की तरह रह गए। देश की स्वाधीनता के लिए साझा संघर्ष, त्याग और बलिदान के बावजूद उन्हें आजादी की लड़ाई के चर्चित चेहरों या नायकों की तरह न सम्मान मिला और न ही पहचान।
8: मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ना, अमूमन आप मंदिर जाते हैं तो आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं। कोई मंदिर राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, तो कोई किसी माता का है। लेकिन आज दिल्ली के चांदनी चौक में मैं आपको ऐसे मंदिर में लेकर आया हूँ जहाँ पर कोई ईश्वर कोई देवता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी जान गंवाने वाले, उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले वीर बलिदानियों की यहाँ फोटो लगी है, तस्वीर लगी है, उनके बारे में जानकारी लिखी गई है। ये वो वीर बलिदानी हैं जिनके बारे में इतिहास में लिखा ही नहीं गया, अगर लिखा गया तो एक दो लाइनों में निपटा दिया गया। आइए आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के भीतर।
7: दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद शिव शक्ति नाम का ये मंदिर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गुमनाम क्रांतिकारियों को भी उनके हिस्से का यश दिलाता है। इस अनोखे मंदिर को एक पूर्व क्रांतिकारी ने ही बनवाया था, जिन्हें देश की आजादी के बाद गुमनाम नायकों के साथ जाने अनजाने हुई अनदेखी परेशान करने लगी थी। अलग अलग राज्यों से 100 क्रांतिकारियों की तस्वीर तब से इस बलिदानी मंदिर की शोभा बढ़ा रही है।
8: चांदनी चौक में इस मंदिर का निर्माण स्वर्गीय स्वर्णलाल पारूथी जी ने करवाया था। उन्हें ये देखकर बहुत टीस पहुंची थी कि कई सारे ऐसे क्रांतिकारी जिनकी बड़ी भूमिका थी उनके बारे में इतिहास में लिखा नहीं गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश भर से ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में सूचनाएँ जुटाई और उनकी तस्वीरों के साथ लगभग 100 बलिदानियों की तस्वीर यहाँ पर लगाई, उनके बारे में लिखा। ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है और यहाँ पर भी आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शहीद भगत राम जी की। इनके बारे में लिखा ये गया है कि शहीद हरि किशन लाल के भाई भगत राम महान देशभक्त थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया और 5 वर्षों तक जेल में रहे। मुद्दे की बात अब ये, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारत से बाहर जाने लगे तो भगत राम जी ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें काबुल तक पहुंचाया। आप सोचिए, वो इंसान जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी, उनका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। उनकी तस्वीर ढूंढकर उनके बारे में मुख्य जानकारी निकालकर यहां पर लगाया गया है।
7: पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के रहने वाले क्रांतिकारी नवजीवन घोष भी उन गुमनाम नायकों में शामिल थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। फिर भी आजादी से जुड़े मुख्य धारा के इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिली। जबकि ब्रिटिश पुलिस के भीषण अत्याचार और अमानवीय शारीरिक प्रताड़ना के कारण सितंबर 1934 में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी क्रूरता पर पर्दा डालते हुए उनके मृत्यु को आत्महत्या करार दिया था।
8: ये नाम है नवजीवन घोष का। इनके बारे में लिखा है, मिदनापुर के जिला न्यायाधीश वर्ष की हत्या के बाद नवजीवन के भाई निर्मल जीवन को फांसी पर लटका दिया गया।
7: आजादी से जुड़े इतिहास में खास मुकाम पाने में नाकाम रहे एक क्रांतिकारी ने राष्ट्रवाद का ऐसा बीज बोया कि पूरा परिवार ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के रास्ते पर चल पड़ा। क्रांति की पाठशाला में उन्होंने अपने बेटों को हथियारों का इस्तेमाल करना और सटीक निशाना लगाना सिखाया। देश के लिए बलिदान, त्याग और संघर्ष की ऐसी अनगिनत कहानियां यहां मौजूद हैं, जिनकी गवाही के तौर पर कई और क्रांतिकारियों की तस्वीर यहां लगी है। करीब 56 साल से यह जगह स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों और आजादी से जुड़े उनके योगदान को अपने भीतर समेटे हुए है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आजादी की उस लड़ाई का स्मरण करवाता है जिसके लिए ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर दिखा जवानों का जोश। मीटिंग रिट्रीट के फाइनल रिहर्सल में बीएसएफ के जांबाजों ने की पारंपरिक ड्रिल। देशभक्ति के रंग में रंगा भोपाल, बड़ा तालाब में नावों की निकाली गई तिरंगा रैली, हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी के जश्न। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें, हजारों महिलाओं ने सर पर कलश रख कर निकाली यात्रा, भोले की भक्ति में झूमे। राजस्थान में सावन में मिलने वाले पारंपरिक मिष्ठान का नया अंदाज, बाजार में आए घेवर के कई फ्लेवर, स्वर्ण श्रृंगार घेवर की कीमत 21,000 रुपए। रायपुर में देखी बदलाव वाली गुड न्यूज, कभी सक्रिय नक्सली रही महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में किया रैंप वॉक।

नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिले। गोलगप्पे का खट्टा खट्टा पानी, मुंबई का तीखा वड़ा पाव और जयपुर की करारी प्याज वाली कचौरी, मुंह में पानी आ गया ना। पानी आना लाजमी है। आप देखिए, स्ट्रीट फूड का जादू ही कुछ ऐसा होता है कि पेट भले ही भर जाए लेकिन नियत भरती ही नहीं है। और अब तो देखिए, हमारी इस देसी जायके की दीवानी पूरी दुनिया हो चुकी है, क्योंकि टाइम आउट मैगजीन ने दुनिया के बेस्ट स्ट्रीट फूड शहरों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के एक दो नहीं बल्कि तीन तीन शहरों के नाम शामिल हैं। टॉप 20 में जहां मुंबई 10वें स्थान पर है, तो वहीं पिंक सिटी जयपुर 15वें और दिलवालों की दिल्ली है 19वें नंबर पर। अब दिल्ली की पुरानी गलियों की चाट हो, छोले भटूरे हो, मुंबई का चटपटा वड़ा पाव हो, भेलपुरी हो या फिर जयपुर की कचौरी या घेवर हो, भाई जितने मर्जी नाम ले लो, ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इन शहरों के जायके में ऐसा कुछ खास है जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना सा बना दिया है। अब क्या कुछ खास है इसमें, ये जानने के लिए हमारे साथ तीन साथी तीनों शहरों के स्ट्रीट फूड का जायका आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रीट फूड के सुपर थ्री।

0: वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपुरी, प्याज कचौड़ी, समोसा, मिर्ची वड़ा, चाट, गोलगप्पे और छोले भटूरे जैसे कई स्ट्रीट फूड्स हैं जिनको देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। ये ऐसे स्ट्रीट फूड हैं जो शहर की पहचान हैं। शहर दर शहर व्यंजन बदलते हैं, स्वाद बदलता है, जायका बदलता है, लेकिन इनकी पहचान शहर की गलियां होती हैं। कहने का मतलब है कि हर शहर की अपनी खासियत होती है, हर शहर का अपना स्वाद, खुशबू और पहचान होती है। कहीं चटपटा स्ट्रीट फूड लोगों का दिल जीत लेता है तो कहीं शाही अंदाज में बना लजीज खाना आकर्षित करता है। हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। हर राज्य का भोजन, मिठाइयाँ और स्ट्रीट फूड की अपनी खासियत है। अगर बात स्ट्रीट फूड की ही होती है तो देश में कई शहर ऐसे हैं जहाँ का स्ट्रीट फूड काफी फेमस है। ऐसा सिर्फ हमारे देश में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में कई शहरों की पहचान तो स्ट्रीट फूड की वजह से ही होती है। स्ट्रीट फूड को लेकर लोगों में ऐसी दीवानगी है कि वो सिर्फ खाने के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ऐसे में टाइम आउट ने एक सर्वेक्षण कराया है। बेस्ट स्ट्रीट फूड सिटीज जैसी वैश्विक शहर रैंकिंग और पाक कला सर्वेक्षणों के अनुसार सबसे ज्यादा चर्चित स्ट्रीट फूड स्थल एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में फैले हुए हैं। जिनमें सबसे आगे हैं वियतनाम में हो ची मिन सिटी, मलेशिया का कुआलालंपुर दूसरे पायदान पर है, जबकि इंडोनेशिया का जकार्ता तीसरे नंबर पर है। भारत से मुंबई 10वें नंबर पर, जयपुर 15वें और दिल्ली 19वें नंबर पर है। आज हम भारत के तीन उन मशहूर शहरों के स्ट्रीट फूड की बात करेंगे जिन्होंने टाइम आउट के सर्वे में टॉप 20 में जगह बनाई है। सबसे पहले बात आमची मुंबई की। तो मुंबई का वड़ा पाव स्ट्रीट फूड का बादशाह माना जाता है। मसालेदार आलू के पकौड़े से भरा नरम ब्रेड रोल, चटपटी चटनी और साथ में तली हुई हरी मिर्च, इसकी तुलना आप बर्गर से भी कर सकते हैं। लेकिन वड़ा पाव मुंबई में हर तबके का फूड है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। हर मुंबईकर या बाहर से आने वाले लोग भी वड़ा पाव के दीवाने नजर आते हैं। मुंबई में वैसे तो वड़ा पाव के कई स्वरूप सामने आ गए हैं, यानी भाजी पाव, समोसा पाव, लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा वड़ा पाव की ही है।
1: जो चौपाटी पे फेमस पानी पूरी, भेलपुरी, सेव पूरी, दही पूरी, चाट, बहुत अच्छा है।
2: यहाँ पे आते हैं सब लोग?
1: सब नहीं, बहुत अच्छा आता है, पब्लिक सही देख के आता है, साफ सफाई अच्छा रहता है ना।
2: सबसे पहले क्या मांगते हैं लोग पानी पूरी?
1: पहले तो बच्चे लोग भी आते ही तो भैया जी पानी पूरी दो, पानी पूरी दो, पानी पूरी देना पड़ता है। फिर बाद में सेव पूरी खाते हैं, टिक्की खाते हैं, समोसा खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बस ये आइटम।
2: लास्ट में सूखी पूरी भी?
1: लास्ट में वो तो पहली है, रोड शू भी आ जाता है वापस।
2: और भी मांगते
1: हैं? हाँ, वो तो देना ही पड़ता है। रोड पर भैया जी सूखा पूरी तो दिया ही नहीं है, लो साहब देना ही पड़ता है।
3: वैसे तो यहाँ पर खाने लायक कई चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पसंद की जाती है वो है वड़ा पाव। मैं भी काफी जद्दोजहद के बाद इस वड़ा पाव को पा सका हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी तस्वीरों में देखें, अच्छी खासी लाइन, अच्छी खासी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लगभग 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे लोग खड़े रहते हैं, फिर काउंटर पे जाते हैं, पर्ची फड़वाते हैं और उसके बाद जहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा छन रहा है वहाँ जाकर के वड़ा पाव लेते हैं। कोई यहीं पर रुककर खाता है तो कोई अपने मंजिल पर जाकर खाता है। देख रहे हैं लगातार ये जो लाइन है ये बढ़ती ही जा रही है, और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वाकई में वड़ा पाव का स्वाद एक नंबर होता है। थोड़ा सा इस वड़ा पाव की साइज भी देखें, 25 रुपए का एक है, इतना ज्यादा बड़ा है कि एक से ही मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन अगर इसे दो खा लिया जाए तो दिन एकदम मस्त हो जाता है, आदमी एकदम सस्त हो जाता है। चलिए कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर ऐसा है तो क्या खास बात है। मुझे लगता है वड़ा पाव खा चुकी।
4: हाँ, मैंने अभी एक मस्त बड़ा सा वड़ा पाव खाया है।
3: एक में हो गया, पेट भर गया।
4: हाँ, साइज तो अच्छी बड़ी है, सो काफी फिलिंग हो जाता है।
3: अच्छा, ये बताएं मुझे कि महीने में कितनी बार खाना होता है?
4: महीने में चार से पांच बार तो वड़ा पाव मतलब लगता ही है।
3: महाराष्ट्र में ही रहती है? महाराष्ट्र
4: में। महाराष्ट्र नहीं हूँ।
3: वड़ा पाव की जब भी बात आती है क्या चलता है जहन में? घर में भी तो लोग इसे बनाते हैं, बचपन से खा रहे हैं।
4: यस यस, बचपन से। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र हो, तो वड़ा पाव बेसिकली और लाइफ लाइन। मतलब जैसे ट्रेन को, रेलवे को मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है, वैसे जब मुंबई के स्टेपल फूड की बात आती है तो आई कैन इजिली से कि वड़ा पाव मुंबई का स्टेपल फूड है। मतलब काफी लोग, एंड ऐसे भी नहीं कि आपको मतलब वड़ा पाव खा रहे हो तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप गरीब हो या ऐसे कुछ कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, आते जाएंगे, हजारों की शॉपिंग करेंगे, आके खड़े रहना है वड़ा पाव की दुकान पे, आना है, खाना है और मस्त मजे से खाते हैं, एकदम स्वाद ले लेके खाते हैं। एंड यस, मतलब जहाँ तक कि मुंबई के स्ट्रीट फूड की बात आती है, जैसे आपने भी कहा कि वड़ा पाव हो, भेलपूरी हो, पाव भाजी हो, ये सारी चीजें, तो मतलब अगेन एज अ सेड कि ये मुंबई का स्टेपल फूड है। मतलब मुंबई रह ही नहीं सकती इसके बिना। जो बाहर से भी लोग आते हैं, दूसरे भले दूसरे स्टेट से हो या दूसरे देशों से हो, उन्होंने भी आके एक ना एक बार तो यहाँ का चाट खाना ही, और वो भी ठेले पे खड़े रह के, एक ना एक बार तो टपरी की चाय पीनी ही है या वड़ा पाव खाना ही है। मतलब उससे, उसके अलावा, उसके बगैर कोई जा नहीं सकता यहाँ से। और अगर वो एक बार चख ले ना, तो बस उनको एक बार वो स्वाद आ जाए तो बस, मतलब दे क्रेव फॉर इट।
3: महीने में कितना खाते हैं वड़ा पाव?
5: हर रोज कॉलेज छूटने के बाद।
3: रोज?
5: हाँ,
3: प्रतिदिन यही खाते हैं?
5: प्रतिदिन खाना ही खाना है, नहीं तो पेट नहीं भरता है।
3: पेट नहीं भरता? और टेस्ट कैसा लगता है?
5: बहुत मजेदार।
3: यही मुंबई में?
5: मुंबई में रहता हूँ, घाटकोपर में, असलफा। स्ट्रीट फूड में जो मिलेगा भाई सब कुछ खाते हैं अपन।
3: जैसे?
5: हाँ, जो मतलब खा के खुशी मिलती है। स्पाइसी हो गया ज्यादा करके, वड़ा पाव भी अपना फेवरेट है
3: स्ट्रीट फूड।
5: हाँ, स्ट्रीट फूड अपन सब कुछ खाते हैं।
3: अच्छा, आपको पता है कि मुंबई में जो है ना, मुंबई ने 10वां नंबर हासिल किया है खाने के मामले में, स्ट्रीट फूड के मामले में, तो क्या रिएक्शन होगा एक मुंबईकर होने के नाते?
5: होना ही चाहिए, क्योंकि वड़ा पाव अभी बहुत जने जो जिनका मतलब जिनके पास खाना नहीं रहता, वो वड़ा पाव पे ही जीते।
3: आप ये बताएं, महीने में कितना ज्यादा वड़ा पाव खाते होंगे? कितने?
6: 30-40-50 खा लेते हैं डेली का, एकदम खाली एक शौक के लिए खाते हैं, खाने खाने पेट भरने के लिए, हम लोग मजा लेने का थोड़ा शाम को।
3: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या पसंद है फास्ट फूड में, बात करें आपको?
6: सब कुछ है खाने में, सब कुछ, किस खाने को ना बोले हैं कोई भी, हर चीज एकदम मजे से खाने का, टेस्ट इंजॉय करने का बारिश का मौसम है।
0: वड़ा पाव मुंबई की पहचान है, लेकिन कई और व्यंजन हैं जो आए तो किसी दूसरे राज्य से हैं, लेकिन मुंबई के रंग में रंगते हुए और चटपटे हो गए हैं।
7: हमारे दुकान में इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, दाल वड़ा, चाय, कॉफी, सब सब लोग को पसंद हो जाता है।
8: मुंबई का नाम है खाने पीने में, जो बीच में ज्यादा है।
3: जो बीच में ज्यादा है?
8: जो बीच में।
3: तो क्या क्या आपकी दुकान पे क्या मिलता है?
8: अपना पाव भाजी है, पुलाव राइस है, ये फेमस है यहाँ का, स्पेशल बनता है। हाँ,
3: मुंबई की पाव भाजी बहुत फेमस,
8: बहुत फेमस है मुंबई की पाव भाजी। जो बीच में तो और भी टेस्टी है पाव भाजी।
3: और वर्ल्ड में ऐसे ही 10वां नंबर मुंबई ने नहीं हासिल किया है, उसमें न केवल एक वड़ा पाव बल्कि समोसा आता है, भजिया पाव आता है, भेलपूरी, पानीपुरी, मुंह में पानी आ गया। पाव भाजी भी आजकल तरह तरह की आने लगी हैं, डोसा, चटनी, साउथ इंडियन डिश, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सैंडविच है, जिन्हें खाने के लिए लोग आते हैं, और बहुत ही कम भाव में ये सारी चीजें मिलती भी हैं। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, स्वाद बड़ा अच्छा होता है, और मुझे लगता है कि ऐसा सुनने को भी नहीं मिला है कि इस तरह के स्ट्रीट फूड खा करके स्वास्थ्य को किसी तरीके से कोई परेशानी हुई है। तो आप देखें, लगातार ये कतार बढ़ती जा रही है, और ये जो कतार है न केवल एक वड़ा पाव की दुकान पर आपको मिलेगी, बल्कि वो सारे खाने के जो स्टेशन थे वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल खड़े हैं, अभी तो आए ही हैं, लेकिन और भी देखिए 15 मिनट 20 मिनट से लगातार लोग खड़े हैं, और जब वड़ा पाव मिल जाता है तो कुछ इस तरीके से चटकारे लगाते हैं कि वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव, भेलपूरी, पानीपूरी, सैंडविच, इसके अलावा साउथ इंडियन डिशेज जिसमें इडली, मेंदू वड़ा, डोसा, तमाम वो चीज़ें आती हैं। और यही चीज़ें मुंबई वाले तो बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के कोने से भी लोग जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं वो होता है वड़ा पाव। और वड़ा पाव के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वाकई में बहुत कम बजट में होती हैं, अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं, हाइजीन होता है, और जिसे खाकर लोग स्वस्थ होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 15वें नंबर पर जयपुर है, और जयपुर से रिधिमा जैन हमारी सहयोगी अब आपको वहाँ के जो व्यंजन है वहाँ का जायका आपको बताएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।

0: गर्मा गर्म कचौड़ी से उठती खुशबू, कुल्हड़ में जमी मोटी मलाई वाली लस्सी और तवे पर बनते मूंग दाल के चीले, जयपुर की गलियों में कदम रखते ही स्वाद जैसे हर मोड़ पर ही आपका इंतजार कर रहा हो। यहाँ स्ट्रीट फूड सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि शहर की पहचान, उसकी संस्कृति और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का स्वाद है।
1: जहाँ बात स्वाद और चटकारों की आती है, जायके की आती है, वहाँ राजस्थान का नाम जरूर आता है, खास करके चटपटे मसालेदार खाने की बात जब हो। हम ये बता दें कि जयपुर का खाना वाकई में बहुत ज़्यादा जायकेदार होता है, मसालेदार होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी कुछ भी खाने आता है वो एक बार और वापस ज़रूर आता है, चाहे यहाँ की कचौरी हो, समोसा हो या फिर यहाँ की बेजड़ की रोटी हो। जो यहाँ का लोकल फूड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दाल बाटी चूरमा को भी आजकल एक स्ट्रीट फूड स्टाइल में परोसा जा रहा है, तो ये एक मेन कोर्स नहीं बल्कि स्टार्टर्स के रूप में, स्ट्रीट फूड के रूप में यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जयपुर के कैसे मार्केट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं वो लगाए जाते हैं। यहाँ पे आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन या जो आपका जंक फूड में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वो सब एक ही जगह पे अवेलेबल है। ऐसी जो जगह है, ऐसे जो जॉइंट्स हैं, हर शाम यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी होती है, हर कोई अपने मन पसंद का जो भी उनको खाना है वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो चीज़ यहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो ऐसे में सिर्फ जयपुर के एक ये मार्केट नहीं, ऐसे कई सारे स्ट्रीट फूड मार्केट्स हैं जहाँ पर हर शाम लोगों की भीड़ नज़र आती है। क्योंकि इनोवेशन की मैं बात करूँ तो इनोवेशन भी जयपुर के अब स्ट्रीट फूड में काफ़ी देखने को मिली है। सिर्फ जंक नहीं, हेल्दी ऑप्शंस भी अब स्ट्रीट पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इनोवेशन काफ़ी देखने को मिल रही है। जहाँ पे अगर आप कोई किसी भी तरीके का डोसा ले रहे हैं तो उसमें मूंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर हेल्दी ऑप्शंस कैसे निकाले जा सकते हैं स्ट्रीट फूड में, उसका सॉल्यूशन भी जयपुर के यहाँ पे जो फूड जॉइंट्स हैं वहाँ मिल रहा है।
0: जयपुर के स्ट्रीट फूड बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। यहाँ के हर व्यंजन में राजस्थानी मसालों की खुशबू, देसी घी या पारंपरिक तेल का स्वाद, स्थानीय सामग्री और वर्षों पुरानी रेसिपी।

0: बल्कि एक विरासत का एहसास कराता है। जयपुर के मशहूर कलकत्ती चाट भंडार पर जायके का बाजार सजता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। ये दुकान 1970 से लगातार लोगों को अपने जायकेदार चीला की महक से आकर्षित करती रही है।
1: कुछ तीखापन, कुछ मिठास तो कुछ चटपटे मसाले, यही चीजें हैं जो किसी भी खाने को और भी ज्यादा जायकेदार बनाती है। और यही खाना है जो विश्व भर में अभी भारत का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। और सिर्फ भारत का ही नहीं, भारत के तीन ऐसी सिटीज हैं, एक मुंबई, दूसरा जयपुर और तीसरा दिल्ली। ये तीन सिटीज हैं जो टाइम आउट की लिस्टिंग में टॉप 20 में आई हैं बेस्ट स्ट्रीट फूड के लिए। और जयपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि जयपुर में कौन सा जायकेदार खाना जो है, जो स्ट्रीट फूड है और सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। कितने साल से यहाँ स्टॉल लग रहे? बहुत सालों से तो हम यहाँ आ रहे हैं, आप बता दीजिए कि कुल कितने साल?
2: ये मैडम हमारी दूसरी पीढ़ी है, 56 साल हो गए, 1970 की दुकान है।
1: तो अब देखिए वहाँ बन रहे हैं चीले, तो कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो तो आप हमें पहले बता भी दीजिए और हमारी भी एक प्लेट लगा दीजिए जिससे हम भी वापस से एक बार टेस्ट करें।
2: ये जो चीला बनता है ये 81 आइटम से बनता है। इसमें मूंग की दाल, गरम मसाले, ड्राई फ्रूट्स, पाचक चीजें, गैस्ट्रिक आइटम नहीं है, चना नहीं है, उड़द नहीं है, मोठ नहीं है, बेसन नहीं है। उसके अलावा ये चीला तैयार किया है। इसके साथ चार तरह की चटनी, दो तरह का दही, पूरा सिंगार करके चीला देते हैं हम।
1: अच्छा, यहाँ पे दही बड़े भी सर बना रहे हैं आप, उसका भी बता दीजिए कि क्या क्या उसमें डल रहे हैं।
2: वो दही बड़ा मूंग की दाल का बनता है, पेवर पेवर छिलके वाली दाल का बनता है और उसके ऊपर वही चार तरह की चटनी दही डाल के ऐसे सर्व किया जाता है। और हमारे जो चटनी है उनमें भी इमली अमचूर का प्रयोग नहीं करते हम बिल्कुल भी। जो आप हमारी मीठी चटनी खाओगे ना, वो खाली खजूर और डाबर के चमनप्रास से बनती है।
0: यहाँ बनने वाला चीला सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि हाई प्रोटीन भी माना गया है। मूंग दाल के साथ कई पौष्टिक सामग्री और खास मसालों का मिश्रण इसे सामान्य स्ट्रीट फूड से कुछ अलग पहचान देता है। वहीं मूंग दाल से तैयार दही भल्ले हल्के, मुलायम और स्वाद से भरपूर होते हैं। यही कारण है कि सुबह से ही यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।
3: बहुत ही अच्छा था, टेस्ट वाइज ऑसम था, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बस टेस्ट वाइज रियली गुड, रियली हेल्दी। हाँ यस यस,
4: दही बड़ा और मूंग की दाल का चीला, एब्सोल्युटली फुल ऑफ प्रोटीन, आयुर्वेदिक। इनके जब पिताजी यहाँ बैठा करते थे, तब जब हम पे करने जाते थे 60 रुपया, तब उस टाइम पर मैं वो साथ में एक आयुर्वेदिक गोली देते थे जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती थी। मुझे आज भी रिकॉल होता है वो दिन जब यहाँ पर मैं इनके बैक साइड के अंदर में एक थ्री व्हीलर रखा होता था, आज हमने यहाँ खड़े होके खाया, उस टाइम पर मैं हम लोग उस रिक्शा के अंदर में बैठ के खाया करते थे।
0: अगर किसी व्यंजन ने जयपुर की पहचान देश दुनिया तक पहुँचाई है तो वो है प्याज की कचौड़ी। बाहर से सुनहरी कुरकुरी और अंदर से मसालेदार, हल्की मीठी और रसदार प्याज की भरावन वाली ये कचौड़ी हर किसी की पसंद है। प्याज को धीमी आंच पर मसालों के साथ इस तरह पकाया जाता है कि उसका स्वाद ही पूरी तरह निखर कर सामने आता है। कई लोग तो इसे बिना चटनी के ही खाना पसंद करते हैं। जयपुर की लस्सी की बात ही कुछ और है। जयपुर के स्ट्रीट फूड की चर्चा लस्सी वाला के बगैर अधूरी मानी गई है। 1944 में शुरू हुई इस दुकान को आज चौथी पीढ़ी आगे ले जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ आज भी आधुनिक फ्लेवर की जगह पारंपरिक स्वाद को ही तरजीह दी जाती है।
1: चटपटे मसालेदार दही बड़े और साथ ही में जो हेल्दी प्रोटीन चीला है वो तो हमने आपको दिखा दिया, और उसके साथ साथ में जो मसालेदार कचौरियां हैं एकदम खस्ता, वो भी हमने आपको जयपुर की दिखा दी है। तो जैसे हमने कहा था कि चटपटा, तीखा और मीठा जो है, वो तीनों चीजें जो राजस्थान में फेमस है वो तीनों हम आपको दिखाएंगे। तो अब बारी है मिठास की, और मिठास में हम कोई मिठाई नहीं आपको लेके आएंगे, एकदम रिफ्रेशिंग जगह जो कि है जयपुर का ये बहुत ही फेमस लस्सी वाला, जो कि 1944 से यहाँ पे है।
5: और लस्सी की बात करें तो आज हम जयमा रोड के सामने जिस लस्सी वाले खड़े हैं, मेरे हिसाब से मोर देन 50 to 80 ईयर्स की लेगेसी है इनकी, और इनके अलावा यहाँ पे लस्सी कोई और नहीं देता है। और खासियत ये है कि ये बहुत अर्ली मॉर्निंग खोलते हैं और 12 से पहले क्लोज भी कर जाते हैं, उसके बाद ये ओपन नहीं करते हैं, और ऐसी लस्सी तो जयपुर में कोई दे ही नहीं पा रहा है। और मुझे मेरे हिसाब से 30 ईयर्स हो गए आज इनकी लस्सी पीते हुए।
0: जयपुर की हर दुकान अपने साथ कई दशक पुरानी कहानी लेकर खड़ी है और हर रेसिपी में पीढ़ियों का अनुभव शामिल है। शायद इसलिए

0: दुनिया के बेहतरीन स्ट्रीट फूड शहरों की सूची में जयपुर ने अपनी जगह बनाई है।
1: जयपुर की कचौरी और लस्सी का स्वाद तो आपने चख ही लिया है। अब हम आपको लेके चलेंगे तीसरी सिटी, यानी कि चटोरों की गलीज के नाम से जो फेमस है, और वो सिटी है दिल्ली 6, जहां मिलेगी चाट पापड़ी। तो आइए लिए चलते हैं आपको दिल्ली 6 और वहां के चटपटे चाट की गलियों में।

0: अब बात दिल्ली की स्ट्रीट फूड की, क्योंकि दुनिया की मशहूर टाइम आउट मैगजीन ने साल 2026 की वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रीट फूड सिटीज की जो लिस्ट जारी की है, राजधानी दिल्ली 19वें पायदान पर है। यहाँ के चटपटे फूड से लेकर मसालेदार खाने तक हर जायके का लोग बड़े ही चाव से लुत्फ उठाते हैं। कमला नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की पहली पसंद, शॉपिंग का बड़ा ठिकाना और स्ट्रीट फूड का ऐसा अड्डा जहां सुबह से लेकर देर रात तक स्वाद की महफिल जमी रहती है। यहां हर 10 कदम पर एक नई खुशबू मिलेगी और हर गली में एक नया स्वाद।
1: दिल्ली के खाने को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर दिल्ली वाले का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा कर दिया है, मेरा भी कर दिया है, क्योंकि मैं खुद एक दिल्ली वाली हूँ। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड की सूची में दिल्ली का भी नाम है। हालांकि जयपुर का भी नाम है, बॉम्बे का भी नाम है, लेकिन मेरी दिल्ली का भी नाम है। और इस वक्त मैं आ गई हूँ कमला नगर मार्केट में, क्योंकि जब बात दिल्ली की हो तो मैं ये मार्केट डेफिनेटली नहीं भूल सकती। और उससे भी ज़्यादा खास ये हो गया है कि दिल्ली का जो खाना है वो देश भर में तो राज कर रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, अब वो पूरी दुनिया में भी अपना जादू जो है वो फैला रहा है। तो दिल्ली के स्वाद में क्या है कुछ खास, किस तरीके का स्वाद यहाँ पर मिलता है, हर गली में आपको एक खुशबूदार अच्छी खुशबू जो है वो उठती हुई नजर आएगी, हर दुकान पर आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी और हर स्वाद में आपको एक ना एक कहानी वो नजर आएगी। तो कैसा स्वाद है दिल्ली का, ये दिखाने के लिए ले आई हूँ मैं आपको आज कमला नगर मार्केट में।
0: दिल्ली दिल वालों की तो है ही, लेकिन अब स्वाद वालों की भी पसंद बन चुकी है। जरा सोचिए, अगर दुनिया आपसे पूछे कि सबसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड कहाँ मिलता है, तो इसका जवाब सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे रही है। ऐसी ही दिल्ली को स्ट्रीट फूड ऑफ कैपिटल नहीं कहा जाता। अगर दिल्ली की पहचान में व्यंजन की एक प्लेट रखनी हो तो शायद सबसे पहले नाम आएगा छोले भटूरे का। गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे, मसालेदार छोले, ऊपर से अचार, हरी मिर्च और प्याज, बस एक प्लेट और पूरा दिन बन जाएगा।
2: लेन है ना, आप पूरी लेन देखेंगे, डोसा भी मिलता है, चाट पापड़ी मिलती है, परांठा भी मिलता है, कुल्फी भी मिलती है और बहुत ही रीजनेबल है। कहीं से भी कंपेयर करें, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे हाउस होल्ड के लिए, किसी के लिए है।
0: दिल्ली की कचौड़ी के तो कहने ही क्या, बाहर से जितनी कुरकुरी, अंदर मसालेदार भरावन, ऊपर से आलू की सब्जी और फिर शुरू होता है असली स्वाद का धमाका। ये सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं है बल्कि इमोशन है।
1: दिल्ली में अगर कोई रहता है तो वो बिना छोले भटूरे के तो बिल्कुल नहीं रह सकता। और जब बात लंच की हो तो इस तरीके से लाइन जो है आपको हर एक छोले भटूरे की शॉप पे नजर आएगी। अच्छा, मैं इस वक्त हूँ ओम दी हट्टी में, ओम दी हट्टी हो, चाचा की छोले भटूरे हो, इन सब जगह पे सबसे ज्यादा लोगों की जो भीड़ है वो नजर आती है। गरम गरम भटूरे जो है वो निकलते हुए आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से जो स्वाद है वो यहाँ पर आपको तलता हुआ नजर आ जाएगा। और साथ में ये जो काले छोले हैं, जो भरपूर मसालेदार जो चटपटा स्वाद है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके की जो भीड़ है वो डेफिनेटली जो है मिलने वाली। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सर छोले भटूरे का स्वाद ले रहे हैं, दिख भी रहा है।
3: एक्चुअली मेरा स्कूल यहाँ होता था 15 नंबर 2 में, मैं 92 में यहाँ पढ़ता था, मैं अब रोहिणी शिफ्ट हो गया हूँ, फिर भी मैं आज कमलनगर आया था बहुत दिन बाद। तब तो इनके रेट बहुत कम थे, अब तो 120 फुल प्लेट हो गए। उसके समोसे हम स्कूल के सारे दोस्त यार खाते थे, कई तो ऐसे भाग जाते थे, बिगड़ पैसे थे चले जाते थे, फिर भी कुछ नहीं कहते थे भैया, क्योंकि स्कूल का सब रश नहीं जाता था। बहुत टाइम से आ रहे
1: दिल्ली वाले चटोरे हैं ना, मतलब
3: बहुत ज्यादा,
1: लेकिन ये जो चटोरे हैं वो दिल्ली की वजह से, क्योंकि दिल्ली में जो स्वाद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता,
3: कहीं नहीं मिलता। यस,
1: अच्छा दिल्ली में अगर मैं स्ट्रीट फूड की बात करूँ, नंबर वन नाम लिस्ट में कौन सी डिश का रहता है
3: स्ट्रीट डिश
1: स्ट्रीट फूड में?
3: छोले भटूरे आएंगे सबसे पहले। यस,
1: छोले भटूरे के बाद
3: ब्रेड पकौड़ा।
0: बेड़मी पूरी की खुशबू, पुरानी दिल्ली का असली स्वाद, उड़द दाल से बनी बेड़मी, मसालेदार आलू, दही और ऊपर से अचार, यानी एक प्लेट और पूरा पेट खुश।
4: हमने तो जी आज तक इनके इनसे बढ़िया बेड़मी पूरी का खाई नहीं है। और हमारे संडे का जो सुबह ब्रेकफास्ट होता है वो यहीं पे ही होता है। अभी हमारे कॉलेजेस खुले हैं तो हम यहाँ दिन में एक बार जरूर आते हैं, या तो बेड़मी पूरी खाने या इनकी लस्सी। इनकी लस्सी भी बहुत अच्छी है, जो क्वालिटी ये देते हैं हमारे आसपास कहीं नहीं मिलती।
1: अच्छा, दिल्ली की अगर स्ट्रीट फूड की मैं बात करूं तो क्या सबसे पहले आप कौन सी डिश नाम सबसे पहला आता है?
5: बेडमी पूरी होती है, वो हर कोई जैसे नहीं दे पाएगा मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जो ये फ्लेवर्स देते हैं ना, मतलब अल्टीमेट मेरे को पसंद नहीं है सच, बट मैं यहाँ खाना पसंद करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है जैसे देखना बिल्कुल ऐसे मोटी मोटी, मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है इसके।
1: दिल्ली वाले छोले भटूरे की भी फैन होते हैं,
5: हमें ये ज्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों।
0: दिल्ली के स्ट्रीट फूड की बात हो और चाट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आलू टिक्की, दही, हरी चटनी, मीठी चटनी, अनार, सेब और मसालों का ऐसा तड़का कि पहली प्लेट खत्म होते ही दूसरी का मन कर जाए। और अगर मसाले के बाद मीठा चाहिए तो कुल्फी तैयार है। यानी दिल्ली वालों को टेस्ट बैलेंस करना भी बखूबी आता है।
6: बट या द टेस्ट इज गुड, इट्स रिफ्रेशिंग, इट्स कूल, सो या इट वाज गुड।
7: बहुत अच्छा लगा है जी, स्पाइसी है यहाँ का, राजस्थान का थोड़ा सा नॉर्मल टेस्ट रहता है, इसलिए दिल्ली यहाँ का खाने आए हैं स्पेशली। हाँ, स्पेशली स्ट्रीट फूड।
1: पहले आपने चाट ही ट्राई करी है या फिर इसके अलावा भी आपने और व्यंजन ट्राई करे?
7: गोलगप्पे करे हैं ट्राई, और अब ये सेकंड मेरी आइटम पापड़ी चाट है।
0: दिल्ली के स्ट्रीट फूड में इतनी वैरायटीज हैं, आप एक दिन में सभी पकवानों का स्वाद तो ले ही नहीं सकते। लेकिन दिल्ली 6 यानी पुरानी दिल्ली में ऐसी कई दुकानें आपको मिल जाएंगी जो सालों से लोगों का दिल जीतती आई हैं।
1: दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं है बल्कि स्वाद की राजधानी भी, और यहाँ पर आपको हर तरीके का स्वाद एक ही जगह पर मिलेगा, चाहे आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, लेकिन दिल्ली वाले जो स्वाद पसंद करते हैं वो यहाँ डेफिनेटली मिलने वाला है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ चले।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है।